0: जा सकता है, तो कारें और मकान तो तिनके के समान हैं। और सोचिए, जब तिब्बत से ग्लेशियर टूटा होगा तो न जाने ऐसी कितनी चट्टाने टूट कर आई होंगी। यही वजह है कि नेपाल के 3 जिलों में सब कुछ तहस नहस हो गया है। लेकिन अब इससे भी 5 गुना बड़ा खतरा नेपाल में फिर से विनाश लीला मचाने को तैयार है। 26 अगस्त को तिब्बत में कैसे ग्लेशियर टूटा और उसके बाद जल विस्फोट होता है, ये उसका रियल वीडियो है। चीन के ड्रोन कैमरे में ये वीडियो कैद हुआ है और फिर नेपाल में जो महाप्रलय आया है उसका मंजर सबके सामने है। लेकिन अब इससे भी बड़ी तबाही फिर से नेपाल पर मंडरा रही है और इस महातबाही की चेतावनी चीन ने दी है। जी हाँ, चीन ने आगाह किया है कि नेपाल में एक और जल विस्फोट की संभावना बन रही है, क्योंकि नेपाल तिब्बत सीमा के पास बनी एक और झील फट गई है। ये झील चोचेन नदी और पुरेपू सांगपो नदी के संगम के पास बनी थी, जिसकी आशंका चीन ने एक दिन पहले ही जताई थी। मतलब 26 अगस्त को गिरोंग में झील फटी तो इसके 2 दिन बाद तोफान में झील फट गई। चीनी अधिकारी इस झील पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और इसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीचों बीच बनी झील की ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक झील में अभी 20 लाख घन मीटर पानी का अनुमान है और अगले कुछ घंटों में इस झील में 30 लाख घन मीटर पानी और आने की आशंका है। झील टूट चुकी है, पानी तिब्बत से बहकर नेपाल की नदियों में आना शुरू हो गया है। अब अगर कोई ग्लेशियर टूटा, अगर हिमस्खलन हुआ तो नेपाल में और भयंकर विनाश लीला मच सकती है। और इस महाखतरे को देखते हुए नेपाल में भोटे कोशी नदी और त्रिशूली नदी के आसपास के इलाकों को खाली करने के लिए ऐलान कर दिया गया है।
1: मेरे ठीक पीछे बिल्कुल त्रिशूली नदी है और ये अपने साथ सैलाब लेकर के आई थी और एक बार फिर इसका पानी बढ़ने को है, जिसके बाद इलाके में पूरा पैनिक फैला है, लोग डरे हुए हैं, इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। दुनिया भर के जर्नलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर किसी को अब यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। सर, किस तरह का अलर्ट इश्यू हुआ अभी यहाँ पे?
2: अभी यहाँ पे जस्ट टिमोरे से एक खबर आया है कि वहाँ का जो बांध बना था, प्राकृतिक बांध, वो फिर से टूट गया है। उससे जो आया था उससे 5 गुना ज्यादा बाढ़ आने वाला है यहाँ पे, इसीलिए आप लोग कृपया करके ऊपर चलिए, यहाँ पे हाई अलर्ट पे।
1: तो हाई अलर्ट इश्यू कर दिया गया है, तो जो बांध जिस तरह का सैलाब आया था, जलाशय में पानी था, वो एक बार फिर बढ़ चुका है और अब कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से जल्दी निकल जाएं, 5 गुना ज्यादा पानी आ सकता है। और इसीलिए देखिए, धुंडे जो इलाका है, मैं उससे काफी ऊंचाई पर हूँ और अब इन इलाकों में भी लोगों को जाने के लिए तत्काल कह दिया गया है, हाई अलर्ट वार्निंग यहाँ पर इश्यू कर दी गई है। कितनी देर में पानी पहुंच रहा है यहाँ पे?
3: 20-25 मिनट में, नेपाल पुलिस ने बोला है 20-25 मिनट में इधर आएगा।
1: तो आप लोग क्या वार्निंग दे रहे हैं लोगों को?
3: हम शिफ्ट साइड में जाइए,
1: यहाँ से हटा रहे हैं लोगों को।
3: हाँ, यहाँ से हटा रहे हैं।
1: तो नुआकोटी का आखिरी जो धुंडे इलाका, मैं आपको दिखा दूं कि जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा था, अब यहाँ से पुलिस जो है लोगों को हटा रही है और वो इसलिए क्योंकि खतरा बड़ा है और वो कह रहे हैं 20 से 25 मिनट में पानी फिर से यहाँ पहुंच सकता है। सर, वार्निंग इश्यू हुई है लोगों को जाने के लिए? वार्निंग इश्यू हुई और देखिए आप पुलिस से, ये देखिए पूरी तरह से अनाउंसमेंट की जा रही है, आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर अनाउंसमेंट करके लोगों को हटाया जा रहा है।
0: आपको बता दें कि तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर जिन चोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास ये झील फटी है, वो चोचेन और पुरुपे नदियां तिब्बत से निकलती हैं और नेपाल में प्रवेश करने से पहले आपस में मिल जाती हैं, जहां इसे भोटे कोशी नदी के नाम से जाना जाता है। भोटे कोशी त्रिशूली नदी की प्रमुख ऊपरी सहायक नदी है।
4: ये त्रिशूली नदी के बढ़ते आवेग को मेरे पीछे आप देख रहे हैं, उसकी लहरों को देखिए कि किस तरीके से बहुत तेज़ी से उसमें पानी का स्तर आपको इस समय ज़्यादा दिख रहा है। बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई है, जो मौसम है बहुत ज़्यादा ख़राब यहाँ पर हो रहा है और उसके साथ ही जो नेपाल तिब्बत सीमा पर भोटेकाशी का उद्गम स्थल है, वहाँ पर जो झील है उसका बांध टूटने के कारण बहुत सारा पानी उसमें आया है। चीन की तरफ से चेतावनी भी दी गई इसको लेकर और ये भी बताया गया कि 5 गुना ज्यादा खतरा 26 अगस्त की तुलना में अगर देखा जाए तो 5 गुना ज्यादा खतरा हो सकता है।
0: नेपाल में अगली विनाश लीला छोटे कोशी नदी से आएगी। ऐसे में महाप्रलय का अलर्ट जारी किया जा रहा है,
5: क्योंकि हमारा जो ऊपर का अवस्था है इसीलिए तुरंत जो भी हो सकता है, इसीलिए हम सब कर रहे हैं। नेपाल सरकार कुछ भी लोकल गवर्नमेंट प्रोविंस हम तीनों स्थानीय निकाय संघ प्रदेश और स्थानीय निकाय हम सब कर रहे हैं।
0: नेपाल में एक ग्लेशियर ने इतनी बड़ी तबाही मचाई, बर्फ का पहाड़ टूटकर नदी में गिरा और नदी का रास्ता रुकने से झील बनी और ज्यादा पानी भरने से मलबा हटा और पानी किसी बम की तरह नेपाल पर फूट पड़ा। नेपाल में जो हुआ उसका खतरा भारत को लेकर भी कम नहीं है, क्योंकि भारत में 189 ग्लेशियल झील फटने की स्थिति में है। इसरो और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़े डराने वाले हैं, जो बताते हैं कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 7,500 से ज्यादा ग्लेशियल झीलें हैं। इनमें से 189 रेड जोन में हैं और किसी भी वक्त फूट सकती हैं। ये झीलें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की चोटियों पर छोटी बड़ी झीलें हैं। पहाड़ों पर झीलें बनने की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ लद्दाख में ही 3219 झीलों की पहचान की गई है। नेपाल का यह हादसा बता रहा है कि हिमालयी क्षेत्र में आपदा का जोखिम बढ़ रहा है, ग्लेशियर अस्थिर हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय हिमालयी इलाके की कुल 7,500 से ज्यादा झीलों में से 189 का रेड जोन में होना बहुत चिंताजनक है।
6: ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है उसके रिट्रीट होने से, उसमें यानी बड़े ग्लेशियर लेक्स बन रहे हैं और उसमें नेचुरल मोरेन डैम पर प्रेशर बढ़ा रहा है और उसमें आइस या रॉक का एवलेंच होने का खतरा और ग्लोफ होने की संभावना ये बढ़ जाती है।
0: इस तरह हिमालय में लगातार ग्लेशियर उससे बनने वाली झीलों की निगरानी पर नजर रखकर ही इस तरह की आपदा के खतरे को कम किया जा सकता है, ताकि समय रहते लोगों को बचाया जा सके। लेकिन विशेषज्ञ भी मानते हैं कि टूटते ग्लेशियर कभी भी महातबाही का सबब बन सकते हैं। त्रिशूली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
7: और आइए अब आपको दिखाते हैं नेपाल की विनाश लीला में सैटेलाइट की तस्वीरें, जो बता रही हैं कि कैसे नेपाल के 3 जिलों में विनाशकारी बाढ़ ने सब कुछ मलबे में मिला दिया। तिब्बत से आई विनाश लीला ने नेपाल में भूगोल बदल दिया। जहां बाजार था वहां मलबा है, जहां शहर था वहां समतल हो चुका है। त्रिशूली नदी का बहाव क्षेत्र अपने मूल स्वरूप से कई गुना अधिक चौड़ा हो गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में नेपाल की पूरी महातबाही देखिए।
0: नेपाल की ये त्रासदी न सिर्फ खौफनाक है बल्कि महातबाही की तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जैसे जैसे नेपाल के 3 जिलों में मची विनाश लीला की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनसे पता लग रहा है कि नेपाल में महाप्रलय ने कैसा मंजर दिखाया। नेपाल में 26 अगस्त की बाढ़ से हुई तबाही सैटेलाइट से भी दिखाई दे रही है। सैलाब में गांव और बाजार बह गए, सड़कें और पुल मलबे में दब गए। हर तरफ मटमैला पानी और पहाड़ी मलबा नजर आ रहा है। इस बाढ़ ने नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पूरे इलाके का नक्शा बदल दिया। सभी सैटेलाइट तस्वीरें तिब्बत सीमा से लगे नेपाल के रसुवा जिले की हैं, जहां त्रिशूली नदी अपने किनारे बसे गांवों और बस्तियों को 6 घंटे की बाढ़ से लीलती चली गई। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा है कि कैसे नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पूरे के पूरे गांव, पुल और बड़े बुनियादी ढांचे ताश के पत्तों की तरह बह गए और उनकी निशानी तक नहीं बची। बाढ़ प्रभावित नेपाल के रसुवा जिले स्थित चीन नेपाल की रसुवा गढ़ी सीमा बाढ़ से बुरी तरह तबाह हुई है। विंटोर की ओर से जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों में चीन नेपाल की रसुवा गढ़ी सीमा को दिखाया गया है कि कैसे एक ही दिन में सब कुछ बदल गया है। बाढ़ से पहले की तस्वीरों में यहां बड़े पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर खराब दिख रहा है। बाढ़ के बाद ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में इसी जगह पर सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। अब अंदाजा लगा लीजिए कि यहां जो लोग मौजूद रहे होंगे उनका क्या हुआ होगा। आज की स्थिति यह है कि इस चीनी इमिग्रेशन चेक पोस्ट की इमारत का कोई अस्तित्व नहीं है। सैटेलाइट और हेलीकॉप्टर तस्वीरों में कहीं भी इस इमारत का नामो निशान नहीं है। रसुआ, धडिंग, नुवाकोट की बस्तियों की हालत देखिए। पहले नदी की पतली सी धारा दिख रही थी, लेकिन फ्लैश फ्लड के बाद त्रिशूली नदी का पार्ट दोगुने से अधिक दिख रहा है। इस विनाशकारी बाढ़ ने जिन तीन जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है उनके नाम हैं रसुआ, नुवाकोट और धाडिंग। यहीं से त्रिशूली नदी गुजरती है जिसमें ये बाढ़ आई है। 2021 की जनगणना के मुताबिक इन तीन जिलों में करीब 6,35,790 लोग रहते हैं, जो नेपाल की कुल जनसंख्या के 2% है।
1: यहाँ से पता चलता है कि शहर में बचा कुछ भी नहीं है। ज्यादातर जो घर हैं, तो आप देखिए सड़क का एक हिस्सा है ना, यहाँ पर सारी दुकानें, ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस है, और इस तरफ सारी रिहायश इलाके थी, तो जो दुकान मकान वो तो डूबे ही हैं। मकान जो है इस तरफ उनको भी नुकसान हुआ है। अब देखिए कैसे वो दंपत्ति गया हुआ है जेसीबी के सहारे के किस तरह अपने घर तक पहुंच जाए, बचा कुचा सामान लेकर के अगर वो आ जाए तो कम से कम जीविका तो चलती रहे, जिंदगी चलती रहे। लेकिन यहाँ जिंदगी पर ब्रेक नहीं बल्कि पूरे शहर की रफ्तार पर ही ब्रेक इस सैलाब ने लगाया है। सारे मकान जो है यहाँ पर ध्वस्त हो चुके हैं। जो पहली दूसरी मंजिल है वो लगभग मलबे में तब्दील हो चुकी है।
0: त्रिशूली नदी किनारे बसे इन शहरों में किस तरह की तबाही हुई है उसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि कंक्रीट के बड़े पुल भी बह गए, हाईवे बह गए, बाजारों घरों तक मलबा आ गया।
4: पैंतीस मोटरेबल ब्रिज, 45 सस्पेंशन ब्रिज और लगभग 40 किलोमीटर सड़क बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस सैलाब से, इस मलबे से। यहां पर ऐसी ही एक ब्रिज का हिस्सा आप देख सकते हैं जिस पर पेड़ पूरी तरीके से टूटकर गिर गए हैं, उनका कुछ हिस्सा काटकर हटाया गया है, लेकिन मलबा पूरी तरीके से कैसे इस ब्रिज को लेते हुए धस गया है। ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया। आवेग भी कैसा, ऐसा जिसके सामने कॉन्क्रीट का एक ब्रिज नहीं टिक पाया। सोचिए इंसानों की क्या ही बिसात।
0: नेपाल को इतना नुकसान हो चुका है कि जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। नेपाल के कस्बे तबाह हो चुके हैं। ये सेंट्रल नेपाल के वो इलाके थे जहां बहुत टूरिज्म फल फूल रहा था। देसी विदेशी पर्यटक यहां आते थे और यहीं से कैलाश मानसरोवर का रूट जाता था। सैकड़ों करोड़ का कारोबार था, लेकिन अब सब कुछ जैसे तहस नहस हो गया है। आज तक ब्यूरो।
7: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे विनाश लीला नेपाल में आई, लेकिन दर्द दुनिया के कई देशों को दे गई। सैकड़ों भारतीय नेपाल में लापता हैं। महातबाही की तस्वीरें देखकर परिजन सहमे हुए हैं। अनहोनी की आशंकाएं हैं, लेकिन मन में उम्मीद भी है कि शायद कोई चमत्कार हो, परिजन मिल जाएं।

0: अभी तो फिलहाल नहीं हो पा रहा क्योंकि वहाँ पे लाइट नेटवर्क नहीं है और वो लोगों के पास भी चार्जर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मोबाइल ऑफ है।
1: दीक्षा चौरसिया यूपी के बलिया की रहने वाली हैं। नेपाल की त्रासदी में इनकी ताई और इनका भाई लापता है। दीक्षा के ताऊ अशोक चौरसिया का पूरा परिवार इस आपदा से प्रभावित है। दीक्षा बताती हैं, 26 अगस्त को सुबह बड़े पिता का फोन आया था कि बाढ़ का अलर्ट नेपाल प्रशासन की ओर से आया है। इससे पहले की बात पूरी हो पाती फोन कट गया। चौरसिया परिवार करीब 20 साल पहले नेपाल शिफ्ट हो गया था। नेपाल के त्रिशूली में उन्होंने अपना ठिकाना बनाया, वहीं पर उनकी दुकान थी, वहीं कारोबार था, लेकिन 26 अगस्त की आपदा ने सब कुछ खत्म कर दिया।
0: सुबह 9 बजे फोन आया तो अचानक से पापा का फोन आया तो बोल रहे हैं कि इधर बाढ़ उड़ आने वाला है, कुछ भी हो सकता है। इतना बोलने के बाद फोन कट गया, फिर फोन लग नहीं रहा था। फिर बाद में बात हुआ तो पता चला कि वो लोग सुरक्षित हैं, बड़ी मम्मी और राहुल, जो कि मिल नहीं रहे हैं।
1: इसी त्रासदी में भोपाल का एक परिवार भी लापता है। भोपाल की रहने वाली देविका अधिकारी के परिवार के 4 सदस्य नेपाल आपदा में लापता हैं, जिसमें उनके बड़े भाई, छोटे भाई और दोनों भाभियां शामिल हैं।
2: वो 6:30 बजे घर से निकले थे और 9:30 बजे बेतरा वेदी करके कोई जगह है वहाँ जाके वो लोग खाना खा रहे थे। तो खाना खाते समय वहाँ पे उनको पता चला कि मतलब बाढ़ आ रही है कि अपने अपने जान बचा लो और कहीं भी मतलब अपने अपने जान बचा लो करके ऐसा करके अलाउंस हुआ। और वो लोग वहीं गाड़ी घोड़ा जो भी छोड़ के अपने झोला झापटा जो के छोड़ के वो अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ चढ़ गए, किसी के मकान के छत में जाके बैठे। तो छत में जाने के बाद उनको ने जैसा देखा कि ये घर भी डूब रहा है तो अपने परिवार फैमिली वाले को फोन करके उनने ये मैसेज कर दिया कि हम लोग हमारी गाड़ी तो पहले भी गई है और अब हम लोग भी जाने वाले, अब हम भी नहीं बचेंगे, अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे को देखभाल रेख कर देना करके बस उनने इतना बोला था। और उसके बाद पूरा फोन भी नहीं हो पाया, उसके बाद संपर्क भी नहीं है, उसके बाद बात नहीं हो पाई, अभी तक किसी से कोई संपर्क नहीं है।
1: चारों ओर हाहाकार है, विनाश का मंजर है, गूंज रही है चीखें, टूट रही है जीवन की डोर। काल के इस तांडव से पल भर में सब मलबा बन गया है, थम गई है सांसें, रुक गई है सृष्टि की चाल। विनाश लीला के आगे इंसान बेबस है। महातबाही की इन तस्वीरों को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर का ये परिवार भी देख रहा है, लेकिन फिर भी मन में कहीं उम्मीद जिंदा है कि शायद उनके परिजन बच गए हों।
3: सियाबुरु से कल के डिपार्ट करे छे एवं आज के ओदर ओखान थेके बेरिये जावार कथा छिलो कैलाशेर उद्देश्य। तो कैलाशेर उद्देश्य बेरिये जावार कथा छिलो किन्तु आज के ई धरनेर क्लाउड बास्ट होवार पर थेके आर ओई मेयेओ कोनो ओदेर साथे कन्टैक्ट करते पारेनि प्लस आमरा।
1: दुर्गापुर की मौसमी और दिलीप बंदोपाध्याय 21 अगस्त को घर से निकले थे। नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना था, लेकिन अब ये लोग कहाँ हैं, किस हालत में हैं, इसको लेकर परिवार वाले चिंतित हैं। सिलीगुड़ी के सुमार मंडल का परिवार भी चिंतित है क्योंकि नेपाल त्रासदी के बाद सुमार मंडल का कुछ पता नहीं चल रहा।
4: नहीं हो रहा है, बार बार स्विच ऑफ बोल रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है।
1: हावड़ा की अनीता दास का भी नेपाल त्रासदी के बाद से कुछ पता नहीं चल पाया है। उनके परिजन दिन भर मोबाइल में उनका नंबर डायल करते हैं, लेकिन फोन लग नहीं रहा। मन में अनहोनी की आशंका भी होती है, लेकिन आस फिर भी है कि शायद वो सुरक्षित हों।
5: हमारा खबर मिला है ये गतकाल 8 बजे को कथा हुआ उसका शैलेश नेपाल के तिब्बत बॉर्डर में ढुकेगा। पुलिस हमारा घर में आया था,
6: सुबह में
5: आया था, उन्होंने बोलेगा कि वो मिसिंग है।
1: अनीता दास के परिजन बता रहे हैं कि तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर उनका स्टे था, उसके बाद से कोई खबर नहीं है। कोलकाता की शुभ्रा चक्रवर्ती से भी परिवार का संपर्क नहीं हो पा रहा है।
6: 21 अगस्त को शाम को निकले थे चौलोजाई ट्रैवल क्लब के सामने से, और ये है मैम की फोटो। और मेरे साथ उनका बात हुआ था घटना के दिन ही सुबह 8:03 पे अंतिम वार्तालाप हुआ था। उसमें ये आया था कि उन लोग ऑलरेडी नेपाल कस्टम्स हो गया था उनका इमिग्रेशन प्रोसेस, अब चाइना का इमिग्रेशन प्रोसेस बाकी था। अब उसके बाद से उनसे कोई संबंध नहीं हो पा रहा है।
1: पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर की टीचर केया प्रमाणिक लापता हो गई हैं। वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के सपने के साथ अपने सहयोगियों संग नेपाल गई थी।
7: यात्रा कर रहे थे कैलाश मानसरोवर।
8: और किसी के साथ कितना ग्रुप गया था?
7: ग्रुप थे 30 वो।
8: आपने आपका जो बहन है क्या काम कर रहा था?
7: स्कूल टीचर।
1: हैदराबाद की कांदी मल्ला सुहासिनी के परिवार का दिल भी बैठा जा रहा है। नेपाल त्रासदी के बाद से सुहासिनी भी लापता हैं।
9: संडे के दिन काठमांडू के रास्ते इधर से यहाँ से दिल्ली टू काठमांडू गए। वो संडे के दिन शाम में बात करे, मंडे के दिन शाम में बात करे, 2-3 फोटो भी जाए मंदिर को जाके, और ट्यूजडे के लास्ट 7:30 को बात करे, फिर वहाँ से कनेक्शन कट हुआ। कोई जल्दी से जल्दी हमारा को कुछ रूट के कुछ इंफॉर्मेशन दिखाए तो वहाँ कौन भी नहीं रेस्पेक्ट कर रहा, हो टोल फ्री नंबर में कौन भी बात नहीं कर रहा, वो फोन ही छूटा रहा नहीं।
1: इसी तरह से बहुत से ऐसे भारतीय परिवार हैं जिनके अपने नेपाल में आए महाप्रलय में लापता हैं। भारतीयों की तलाश में सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारत की तरफ से नेपाल को पूरी मदद भेजी जा रही है। तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली की 49 साल की विमला रवि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से लापता हैं। परिवार की आंखों में आंसू हैं, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। आज तक ब्यूरो।
10: नेपाल में आपदा से बहुत कुछ बर्बाद हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो तहस नहस हो गया। हम आपको ये बता दें कि लापता लोगों को खोजने में नेपाल ने पूरी शक्ति लगा दी। ऐसे में देवदूत बनकर आई नेपाल की सेना। नेपाल की सेना ने एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट की टनल में एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जो बहुत मुश्किल था। 350 से अधिक मजदूरों को नेपाल की सेना ने सुरक्षित बचाया। देखिए,
1: नेपाल में भीषण बाढ़ के 3 दिनों के बाद सबसे बड़ा संकट है रेस्क्यू ऑपरेशन का। चीन बॉर्डर से शुरू हुई बाढ़ ने भारत के बॉर्डर तक तबाही मचाई है, तो सोचिए नेपाल में किस कदर ये बर्बादी हुई होगी। लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हैं, हजारों की संख्या में लापता हैं और सैकड़ों की संख्या में मारे गए हैं। लगातार शव मिल रहे हैं और लापता लोगों को खोजने में नेपाली आर्मी देवदूत बनी है।

और इस रेस्क्यू ऑपरेशन का सबसे खतरनाक वीडियो ये आया है। ये रसुआ की एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल से बचाए गए मजदूरों का वीडियो है। यहाँ से नेपाल की सेना ने 350 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला है। ये ऑपरेशन बहुत कठिन था। नेपाली सेना ऐसे ही हेलीकॉप्टर के जरिए कहीं भी किसी इलाके में फंसे लोगों को खोज रही है। जैसे ही नेपाली सेना का हेलीकॉप्टर रसुआ के त्रिशूली इलाके में पहुंचा, इस सुरंग के बाहर एक मजदूर खड़ा दिखा। सेना के हेलीकॉप्टर को देखते ही उसने हाथ हिलाया। सुरंग के बाहर मलबा और भीषण कीचड़ है। सेना के हेलीकॉप्टर को देखते ही ये मजदूर कीचड़ की तरफ भाग रहा था, लेकिन सेना के जवानों ने उसे रोका और वापस भेजा और फिर उसे बचाने की कोशिशें शुरू हुई। सेना ने एक ट्रॉली तैयार की जिससे दो जवान नीचे उतरे। इस ट्रॉली में बैठकर इन जवानों को नीचे भेजा गया। ये जवान नीचे उतरकर उस मजदूर के पास पहुंचे, उस मजदूर को इस ट्रॉली में बिठाया। एक जवान मजदूर के साथ ट्रॉली में बैठा और फिर हेलीकॉप्टर में ट्रॉली को वापस खींचा गया और इस तरह से इस मजदूर की जान बची। तब तक ये जानकारी मिल चुकी थी कि इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की इस टनल के अंदर सैकड़ों मजदूर फंसे हैं। तुरंत नेपाली सेना ने पूरा ऑपरेशन शुरू किया। नेपाली सेना के जवान सबसे पहले इस टनल के मुहाने पर पहुंचे। यहाँ पूरा कीचड़ भरा हुआ था। आप देख सकते हैं कि कैसे इन जवानों को क्रॉल करके अंदर जाना पड़ रहा है। यहाँ कीचड़ ही इतना था। फिर एक जवान बड़ी मुश्किल से अंदर गया, फिर दूसरा जवान भी गया और वहाँ हेलीकॉप्टर से एक ट्रॉली लटकाई गई ताकि जो मजदूर अंदर से आए इसके सहारे उनका रेस्क्यू हो। इन जवानों ने अपनी कमर पर रस्सी बांधी हुई थी ताकि इस कीचड़ के दलदल में वो फंसे नहीं। फिर हाथों के सहारे देखते हुए ये जवान इस टनल के अंदर दाखिल हुए, क्योंकि मिट्टी में चलते तो फंस जाते। और फिर इस तरह से वो टनल के अंदर दाखिल हुए। अंदर बहुत से मजदूर फंसे हुए थे जिन्हें बाद में एक एक करके बाहर निकाला गया।

0: एक एक मजदूर को ऐसे बाहर निकाल कर लाना कितना मुश्किल था, ये इन तस्वीरों से समझिए। इन मजदूरों को ऐसे ही नेपाली सेना के जवान अपने कंधों पर उठाकर बाहर लाए। इस दलदल में जब वो चल रहे थे, पैर इसमें फंस रहे थे। एक मजदूर तो इस मलबे में बुरी तरह से फंस गया, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। उसको यहाँ से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया, क्योंकि सुरंग के मुहाने पर मलबा ही मलबा है। नेपाली सेना की तरफ से बताया गया है कि त्रिशूली हाइड्रो पावर टनल में फंसे 350 मजदूरों को बचाया गया। अभी भी 100 और मजदूर यहां फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम चल रहा है। सुरंग के अंदर लगातार नेपाली सेना के जवानों की तैनाती है। ये लोग इसलिए बच पाए क्योंकि दावा है कि जब त्रिशूली नदी में बाढ़ का उफान आया तो ये लोग टनल की तरफ भागे, जहां भीतर ऊंचाई तक बाढ़ का जानलेवा मलबा नहीं पहुंच पाया, वरना इसी टनल के नीचे त्रिशूली में देवी घाट आता है। ये त्रिशूली देवी घाट मुख्य रूप से नेपाल के नुवाकोट जिले में त्रिशूली और तादी नदियों के संगम पर स्थित एक ऐतिहासिक, धार्मिक और आर्थिक महत्व का क्षेत्र है। जहां ऊपर के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में 350 लोग बच गए, वहीं नीचे देवी घाट तक बहाव ने बहुत कुछ खत्म कर दिया। ये रसवा के लांगतांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की एरियल तस्वीरें हैं। सब कुछ बर्बाद नजर आ रहा है। जहां ये प्रोजेक्ट था, वहां नीचे पूरा मैदान दिख रहा है। 3 दिन बाद भी तबाही के नए वीडियो आते जा रहे हैं, और ये वीडियो बता रहे हैं कि बाढ़ कितनी भीषण थी। इसी तबाही में हजारों लोग बिछड़ गए, सैकड़ों लोग मारे गए। अभी भी लापता लोगों की तलाश चल रही है। कुछ खुशकिस्मत हैं जो मिल जा रहे हैं, और कुछ बदकिस्मत ऐसे भी हैं जिनका कुछ भी पता नहीं चल रहा। नेपाल के रसवा से आशुतोष मिश्रा आज तक।
1: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक,
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

ज्यादा लोगों की गई जान, करीब 2000 लापता। भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने से त्रिशूली नदी के आसपास हाई अलर्ट। त्रासदी की मार झेल रहे नेपाल में भारत ने भेजी मदद की तीसरी खेप। 10 टन राहत सामग्री के साथ काठमांडू पहुंचा विमान। दिल्ली में नेपाल से लौटे भारतीयों से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। सिंगर अंकित बालियान की हत्या पर यूपी में सियासी जंग। गायक के पिता से मुलाकात के बाद बोले अखिलेश, आज नहीं तो कल इंसाफ होगा जब बदलाव होगा। जयंत चौधरी का पलटवार, मृतक की जाति तलाशना संवेदनहीनता। आज न्यूयॉर्क में कार्यक्रम से पहले इस कॉल में मोहन भागवत का संबोधन, कहा दुनिया में कहीं अभी बहुत सारे टकराव और विरोधाभास। मेयर ममदानी ने किया है संघ प्रमुख का विरोध।

नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। सबसे पहले बात नेपाल की करेंगे। क्या नेपाल में एक और विनाश लीला तैयार खड़ी है? नेपाल में तिब्बत से आई विनाशकारी बाढ़ अब तक 550 से ज्यादा जिंदगी ले चुकी है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, करीब 1000 लोग अभी भी लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत सी चुनौतियां हैं, ऊपर से महाप्रलय का एक और खतरा मंडराना शुरू हो गया। नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास बनी एक और झील फट गई। ऐसे में अगर खुदा ना खास्ता एक और ग्लेशियर टूटा तो नेपाल में क्या होगा, ये सोचकर दहशत होने लगी है।

0: महाप्रलय के बाद नेपाल में जल विस्फोट 2.0। तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर झील बम फूटा, दहशत में लोग। नदियों में बढ़ने लगा पानी, महातबाही का अलर्ट भारी। फिर से ग्लेशियर टूटा तो 5 गुना बड़ी तबाही का खतरा। विनाशकारी बाढ़ का खौफ, नेपाल में विनाश लीला रिटर्न। इससे सैलाब का जोर पता चलता है। विनाशकारी बाढ़ में बहकर आती ये चट्टान बता रही है क्यों नेपाल में सब कुछ मलबे में दफन हो गया है। सोचिए, जब इतनी भारी भरकम चट्टान को सैलाब बहाकर ले जा सकता है तो कारें और मकान तो तिनके के समान हैं। और सोचिए, जब तिब्बत से ग्लेशियर टूटा होगा तो न जाने ऐसी कितनी चट्टानें टूट कर आई होंगी। यही वजह है कि नेपाल के 3 जिलों में सब कुछ तहस नहस हो गया है। लेकिन अब इससे भी 5 गुना बड़ा खतरा नेपाल में फिर से विनाश लीला मचाने को तैयार है। 26 अगस्त को तिब्बत में कैसे ग्लेशियर टूटा और उसके बाद जल विस्फोट होता है, ये उसका रियल वीडियो है। चीन के ड्रोन कैमरे में ये वीडियो कैद हुआ है। और फिर नेपाल में जो महाप्रलय आया है उसका मंजर सबके सामने है। लेकिन अब इससे भी बड़ी तबाही फिर से नेपाल पर मंडरा रही है और इस महातबाही की चेतावनी चीन ने दी है। जी हाँ, चीन ने आगाह किया है कि नेपाल में एक और जल विस्फोट की संभावना बन रही है, क्योंकि नेपाल तिब्बत सीमा के पास बनी एक और झील फट गई है। ये झील चोचेन नदी और पुरेपु सांको नदी के संगम के पास बनी थी, जिसकी आशंका चीन ने एक दिन पहले ही जताई थी। मतलब 26 अगस्त को गिरोंग में झील फटी तो इसके 2 दिन बाद तूफान में झील फट गई। चीनी अधिकारी इस झील पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और इसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीचों बीच बनी झील की ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक झील में अभी 20 लाख घन मीटर पानी का अनुमान है और अगले कुछ घंटों में इस झील में 30 लाख घन मीटर पानी और आने की आशंका है। झील टूट चुकी है, पानी तिब्बत से बहकर नेपाल की नदियों में आना शुरू हो गया है। अब अगर कोई ग्लेशियर टूटा, अगर हिमस्खलन हुआ तो नेपाल में और भयंकर विनाश लीला मच सकती है। और इस महाखतरे को देखते हुए नेपाल में भोटे कोशी नदी और त्रिशूली नदी के आसपास के इलाकों को खाली करने के लिए ऐलान कर दिया गया है।
1: मेरे ठीक पीछे बिल्कुल त्रिशूली नदी है और ये अपने साथ सैलाब लेकर के आई थी और एक बार फिर इसका पानी बढ़ने को है, जिसके बाद इलाके में पूरा पैनिक फैला है। लोग डरे हुए हैं, इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। दुनिया भर के जर्नलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर किसी को अब यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। सर, किस तरह का अलर्ट इशू हुआ है अभी यहाँ पे?
2: अभी यहाँ पे जस्ट टिमोरे से एक खबर आया है कि वहाँ का जो बांध बना था, प्राकृतिक बांध, वो फिर से टूट गया है। उससे जो आया था उससे 5 गुना ज्यादा बाढ़ आने वाला है यहाँ पे, इसीलिए आप लोग कृपया करके ऊपर चलिए, यहाँ पे हाई अलर्ट पे।
1: तो हाई अलर्ट इश्यू कर दिया गया है। तो जो बांध, जिस तरह का सैलाब आया था, जलाशय में पानी था, वो एक बार फिर बढ़ चुका है और अब कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से जल्दी निकल जाएं, 5 गुना ज्यादा पानी आ सकता है। और इसीलिए देखिए, धुंडे जो इलाका है, मैं उससे काफी ऊंचाई पर हूँ और अब इन इलाकों में भी लोगों को जाने के लिए तत्काल कह दिया गया है, हाई अलर्ट वार्निंग यहाँ पर इश्यू कर दी गई है। कितनी देर में पानी पहुंच रहा है यहाँ पे?
3: 20-25 मिनट में, नेपाल पुलिस ने बोला है 20-25 मिनट में इधर आएगा।
1: तो आप लोग क्या वार्निंग दे रहे हैं लोगों को?
3: हम शिफ्ट साइड में जाइए,
1: यहाँ से हटा रहे हैं लोगों को।
3: हाँ, यहाँ से हटा रहे हैं।
1: तो नुआकोटी का आखिरी जो धुंडे इलाका, मैं आपको दिखा दूं कि जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा था, अब यहाँ से पुलिस जो है लोगों को हटा रही है और वो इसलिए क्योंकि खतरा बड़ा है और वो कह रहे हैं 20 से 25 मिनट में पानी फिर से यहाँ पहुंच सकता है। सर, वार्निंग इश्यू हुई है लोगों को जाने के लिए? वार्निंग इश्यू हुई और देखिए आप पुलिस से, ये देखिए पूरी तरह से अनाउंसमेंट की जा रही है, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर अनाउंसमेंट करके लोगों को हटाया जा रहा है।
4: सब जाना कृपया माथि माथि बस्दै हुनुहोला। हामी
0: आपको बता दें कि तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर जिन चोचेन खोला और पुरेपु सांगपो नदियों के संगम के पास ये झील फटी है। वो चोचेन और पुरुपे नदियाँ तिब्बत से निकलती हैं और नेपाल में प्रवेश करने से पहले आपस में मिल जाती हैं, जहाँ इसे भोटेकोशी नदी के नाम से जाना जाता है। भोटेकोशी त्रिशूली नदी की प्रमुख ऊपरी सहायक नदी है।
4: ये त्रिशूली नदी के बढ़ते आवेग को मेरे पीछे आप देख रहे हैं, उसकी लहरों को देखिए कि किस तरीके से बहुत तेजी से उसमें पानी का स्तर आपको इस समय ज्यादा दिख रहा है। बारिश बहुत तेज शुरू हो गई है, जो मौसम है बहुत ज्यादा खराब यहाँ पर हो रहा है, और उसके साथ ही जो नेपाल तिब्बत सीमा पर भोटेकाशी का उद्गम स्थल है, वहाँ पर जो झील है उसका बांध टूटने के कारण बहुत सारा पानी उसमें आया है। चीन की तरफ से चेतावनी भी दी गई इसको लेकर, और ये भी बताया गया कि 5 गुना ज्यादा खतरा 26 अगस्त की तुलना में अगर देखा जाए तो 5 गुना ज्यादा खतरा हो सकता है।
0: नेपाल में अगली विनाश लीला भोटेकोशी नदी से आएगी, ऐसे में महाप्रलय का अलर्ट जारी किया जा रहा है,
5: क्योंकि हमारा जो ऊपर का अवस्था है इसीलिए तुरंत जो भी हो सकता है, इसीलिए हम सब कर रहे हैं। नेपाल सरकार कुछ भी से लोकल गवर्नमेंट प्रोविंस, हम तीनों स्थानीय निकाय संघ प्रदेश और स्थानीय निकाय, हम सब कर रहे हैं।
0: नेपाल में एक ग्लेशियर ने इतनी बड़ी तबाही मचाई, बर्फ का पहाड़ टूटकर नदी में गिरा और नदी का रास्ता रुकने से झील बनी और ज्यादा पानी भरने से मलबा हटा और पानी किसी बम की तरह नेपाल पर फूट पड़ा। नेपाल में जो हुआ उसका खतरा भारत को लेकर भी कम नहीं है, क्योंकि भारत में 189 ग्लेशियल झील फटने की स्थिति में है। इसरो और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़े डराने वाले हैं, जो बताते हैं कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 7,500 से ज्यादा ग्लेशियल झीलें हैं, इनमें से 189 रेड जोन में हैं और किसी भी वक्त फूट सकती हैं। ये झीलें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की चोटियों पर छोटी बड़ी झीलें हैं। पहाड़ों पर झीलें बनने की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ लद्दाख में ही 3219 झीलों की पहचान की गई है। नेपाल का यह हादसा बता रहा है कि हिमालयी क्षेत्र में आपदा का जोखिम बढ़ रहा है, ग्लेशियर अस्थिर हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय हिमालयी इलाके की कुल 7,500 से ज्यादा झीलों में से 189 का रेड जोन में होना बहुत चिंताजनक है।
6: ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है उसके रिट्रीट होने से, उसमें यानी बड़े ग्लेशियर लेक्स बन रहे हैं और उसमें नेचुरल मोरेन डैम पर प्रेशर बढ़ा रहा है और उसमें आइस या रॉक का एवलेंच होने का खतरा और ग्लोफ होने की संभावना ये बढ़ जाती है।
0: इस तरह हिमालय में लगातार ग्लेशियर उससे बनने वाली झीलों की निगरानी पर नजर रखकर ही इस तरह की आपदा के खतरे को कम किया जा सकता है, ताकि समय रहते लोगों को बचाया जा सके। लेकिन विशेषज्ञ भी मानते हैं कि टूटते ग्लेशियर कभी भी महातबाही का सबब बन सकते हैं। त्रिशूली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
7: और अब आपको दिखाते हैं कैसे विनाश लीला नेपाल में आई, लेकिन दर्द दुनिया के कई देशों को दे गई। सैकड़ों भारतीय नेपाल में लापता हैं। महातबाही की जो तस्वीरें हैं वो देखकर परिजन सहमे हुए हैं। अनहोनी की आशंकाएं हैं, लेकिन मन में उम्मीद भी है कि शायद भगवान का कोई चमत्कार हो जाए और उनके परिजन मिल जाएं।

0: अभी तो फिलहाल नहीं हो पा रहा क्योंकि वहाँ पे लाइट नेटवर्क नहीं है और वो लोगों के पास भी चार्जर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मोबाइल ऑफ है।
1: दीक्षा चौरसिया यूपी के बलिया की रहने वाली हैं। नेपाल की त्रासदी में इनकी ताई और इनका भाई लापता है। दीक्षा के ताऊ अशोक चौरसिया का पूरा परिवार इस आपदा से प्रभावित है। दीक्षा बताती हैं, 26 अगस्त को सुबह बड़े पिता का फोन आया था कि बाढ़ का अलर्ट नेपाल प्रशासन की ओर से आया है। इससे पहले की बात पूरी हो पाती फोन कट गया। चौरसिया परिवार करीब 20 साल पहले नेपाल शिफ्ट हो गया था। नेपाल के त्रिशूली में उन्होंने अपना ठिकाना बनाया, वहीं पर उनकी दुकान थी, वहीं कारोबार था, लेकिन 26 अगस्त की आपदा ने सब कुछ खत्म कर दिया।
0: सुबह 9 बजे फोन आया तो अचानक से पापा का फोन आया, तो बोल रहे हैं कि इधर बाढ़ उड़ आने वाला है, कुछ भी हो सकता है। इतना बोलने के बाद फोन कट गया, फिर फोन लग नहीं रहा था। फिर बाद में बात हुआ तो पता चला कि वो लोग सुरक्षित हैं, बड़ी मम्मी और राहुल, जो कि मिल नहीं रहे हैं।
1: इसी त्रासदी में भोपाल का एक परिवार भी लापता है। भोपाल की रहने वाली देविका अधिकारी के परिवार के 4 सदस्य नेपाल आपदा में लापता हैं, जिसमें उनके बड़े भाई, छोटे भाई और दोनों भाभियां शामिल हैं।
2: वो 6:30 बजे घर से निकले थे और 9:30 बजे बेतरा वेदी करके कोई जगह है वहाँ जाके वो लोग खाना खा रहे थे, तो खाना खाते समय वहाँ पे उनको पता चला कि मतलब बाढ़ आ रही है, कि अपने अपने जान बचा लो और कहीं भी मतलब अपने अपने जान बचा लो करके ऐसा करके अलाउंस हुआ। और वो लोग वहीं गाड़ी घोड़ा जो भी छोड़ के, अपने झोला झांपटा जो के छोड़ के वो अपने जान बचाने के लिए पहाड़ चढ़ गए, किसी के मकान के छत में जाके बैठे। तो छत में जाने के बाद उनको ने जैसा देखा कि ये घर भी डूब रहा है, तो अपने परिवार फैमिली वाले को फोन करके उनने ये मैसेज कर दिया कि हम लोग, हमारी गाड़ी तो पहले भी गई है और अब हम लोग भी जाने वाले, अब हम भी नहीं बचेंगे, अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे को देखभाल रेख देख कर देना करके बस उनने इतना बोला था। और उसके बाद पूरा फोन भी नहीं हो पाया, उसके बाद संपर्क बिंदे है, उसके बाद बात नहीं हो पाई, अभी तक किसी से कोई संपर्क नहीं है।
1: चारों ओर हाहाकार है, विनाश का मंजर है, गूंज रही है चीखें, टूट रही है जीवन की डोर। काल के इस तांडव से पल भर में सब मलबा बन गया है, थम गई है सांसें, रुक गई है सृष्टि की चाल, विनाश लीला के आगे इंसान बेबस है। महातबाही की इन तस्वीरों को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर का ये परिवार भी देख रहा है, लेकिन फिर भी मन में कहीं उम्मीद जिंदा है कि शायद उनके परिजन बच गए हों।
3: সিয়াবরুসুতে কালকে ডিপার্ট করেছে এবং আজকে ওদের ওখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল কৈলাসের উদ্দেশ্যে। তো কৈলাসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আজকে এই ধরনের ক্লাউড বাস্ট হওয়ার পর থেকে আর ওর মেয়েও কোনো ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেনি, প্লাস আমরা।
1: दुर्गापुर की मौसमी और दिलीप बंदोपाध्याय 21 अगस्त को घर से निकले थे। नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना था, लेकिन अब ये लोग कहाँ हैं, किस हालत में हैं, इसको लेकर परिवार वाले चिंतित हैं। सिलीगुड़ी के सुमार मंडल का परिवार भी चिंतित है, क्योंकि नेपाल त्रासदी के बाद सुमार मंडल का कुछ पता नहीं चल रहा,
4: नहीं हो रहा है, बार-बार स्विच अप बोल रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है।
1: हावड़ा की अनीता दास का भी नेपाल त्रासदी के बाद से कुछ पता नहीं चल पाया है। उनके परिजन दिन भर मोबाइल में उनका नंबर डायल करते हैं, लेकिन फोन लग नहीं रहा। मन में अनहोनी की आशंका भी होती है, लेकिन आस फिर भी है कि शायद वो सुरक्षित हों।
5: हमारा खबर मिला है ये गतकाल 8 बजे को कथा हुआ उसका, नेपाल के तिब्बत बॉर्डर में ढुकेगा। पुलिस हमारा घर में आया था,
6: सुबह में
5: आया था, उन्होंने बोलेगा कि वो मिसिंग है।
1: अनीता दास के परिजन बता रहे हैं कि तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर उनका स्टे था, उसके बाद से कोई खबर नहीं है। कोलकाता की शुभ्रा चक्रवर्ती से भी परिवार का संपर्क नहीं हो पा रहा है।
6: 21 अगस्त को शाम को निकले थे चलोजाई ट्रैवल क्लब के सामने से, और ये है मैम की फोटो। और मेरे साथ उनका बात हुआ था घटना के दिन ही सुबह 8:03 पे अंतिम वार्तालाप हुआ था। उसमें ये आया था कि उन लोग ऑलरेडी नेपाल कस्टम्स हो गया था उनका इमिग्रेशन प्रोसेस, अब चाइना का इमिग्रेशन प्रोसेस बाकी था। अब उसके बाद से उनसे कोई संबंध नहीं हो पा रहा है।
1: पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर की टीचर केया प्रमाणिक लापता हो गई हैं। वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के सपने के साथ अपने सहयोगियों संग नेपाल गई थी।
7: यात्रा कर रहे थे कैलाश मानसरोवर,
8: और किसी के साथ कितना ग्रुप गया था?
7: ग्रुप थे 30 वन।
8: आपका जो बहन है क्या काम कर रहा था?
7: स्कूल टीचर।
1: हैदराबाद की कांदी बल्ला सुहासिनी के परिवार का दिल भी बैठा जा रहा है। नेपाल त्रासदी के बाद से सुहासिनी भी लापता हैं।
9: संडे के दिन काठमांडू के रास्ते इधर से यहाँ से दिल्ली, दिल्ली टू काठमांडू गए। वो संडे के दिन शाम में बात करे, मंडे के दिन शाम में बात करे, 2-3 फोटो भी जाए मंदिर को जाके, और ट्यूजडे के लास्ट 7:30 को बात करे, फिर वहाँ से कनेक्शन कट हुआ। वही जल्दी से जल्दी हमारे को कुछ रूट के कुछ इंफॉर्मेशन दिखाए तो वहाँ कौन भी नहीं रेस्पेक्ट कर रहा, वो टोल फ्री नंबर में कौन भी बात नहीं कर रहा, वो फोन ही छूटा रहा नहीं।
1: इसी तरह से बहुत से ऐसे भारतीय परिवार हैं जिनके अपने नेपाल में आए महाप्रलय में लापता हैं। भारतीयों की तलाश में सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारत की तरफ से नेपाल को पूरी मदद भेजी जा रही है। तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली की 49 साल की विमला रवि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से लापता हैं। परिवार की आंखों में आंसू हैं, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। आज तक ब्यूरो।
10: नेपाल में आपदा आई और बहुत कुछ बर्बाद हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर तो तहस नहस हो गया। अब आपको बता दें कि लापता लोगों को खोजने में नेपाल ने पूरी ताकत लगाई हुई है। ऐसे में देवदूत बनकर आई है नेपाल की सेना। नेपाल की सेना ने एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट की टनल्स में एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जो बहुत मुश्किल था। यहां 350 से ज्यादा मजदूरों को नेपाल की सेना सुरक्षित बचाकर बाहर लाई।

नेपाल में भीषण बाढ़ के तीन दिनों के बाद सबसे बड़ा संकट है रेस्क्यू ऑपरेशन का। चीन बॉर्डर से शुरू हुई बाढ़ ने भारत के बॉर्डर तक तबाही मचाई है, तो सोचिए नेपाल में किस कदर ये बर्बादी हुई होगी। लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हैं, हजारों की संख्या में लापता हैं और सैकड़ों की संख्या में मारे गए हैं। लगातार शव मिल रहे हैं और लापता लोगों को खोजने में नेपाली आर्मी देवदूत बनी है।

और इस रेस्क्यू ऑपरेशन का सबसे खतरनाक वीडियो ये आया है। ये रसुआ की एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल से बचाए गए मजदूरों का वीडियो है। यहाँ से नेपाल की सेना ने 350 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला है। ये ऑपरेशन बहुत कठिन था। नेपाली सेना ऐसे ही हेलीकॉप्टर के जरिए कहीं भी किसी इलाके में फंसे लोगों को खोज रही है। जैसे ही नेपाली सेना का हेलीकॉप्टर रसुआ के त्रिशूली इलाके में पहुंचा, इस सुरंग के बाहर एक मजदूर खड़ा दिखा। सेना के हेलीकॉप्टर को देखते ही उसने हाथ हिलाया। सुरंग के बाहर मलबा और भीषण कीचड़ है। सेना के हेलीकॉप्टर को देखते ही ये मजदूर कीचड़ की तरफ भाग रहा था, लेकिन सेना के जवानों ने उसे रोका और वापस भेजा और फिर उसे बचाने की कोशिशें शुरू हुई। सेना ने एक ट्रॉली तैयार की जिससे दो जवान नीचे उतरे। इस ट्रॉली में बैठकर इन जवानों को नीचे भेजा गया। ये जवान नीचे उतरकर उस मजदूर के पास पहुंचे, उस मजदूर को इस ट्रॉली में बिठाया। एक जवान मजदूर के साथ ट्रॉली में बैठा और फिर हेलीकॉप्टर में ट्रॉली को वापस खींचा गया और इस तरह से इस मजदूर की जान बची। तब तक ये जानकारी मिल चुकी थी कि इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की इस टनल के अंदर सैकड़ों मजदूर फंसे हैं। तुरंत नेपाली सेना ने पूरा ऑपरेशन शुरू किया। नेपाली सेना के जवान सबसे पहले इस टनल के मुहाने पर पहुंचे। यहाँ पूरा कीचड़ भरा हुआ था। आप देख सकते हैं कि कैसे इन जवानों को क्रॉल करके अंदर जाना पड़ रहा है। यहाँ कीचड़ ही इतना था। फिर एक जवान बड़ी मुश्किल से अंदर गया, फिर दूसरा जवान भी गया और वहाँ हेलीकॉप्टर से एक ट्रॉली लटकाई गई ताकि जो मजदूर अंदर से आए इसके सहारे उनका रेस्क्यू हो। इन जवानों ने अपनी कमर पर रस्सी बांधी हुई थी ताकि इस कीचड़ के दलदल में वो फंसे नहीं। फिर हाथों के सहारे देखते हुए ये जवान इस टनल के अंदर दाखिल हुए, क्योंकि मिट्टी में चलते तो फंस जाते। और फिर इस तरह से वो टनल के अंदर दाखिल हुए। अंदर बहुत से मजदूर फंसे हुए थे जिन्हें बाद में एक एक करके बाहर निकाला गया।

0: एक एक मजदूर को ऐसे बाहर निकाल कर लाना कितना मुश्किल था, ये इन तस्वीरों से समझिए। इन मजदूरों को ऐसे ही नेपाली सेना के जवान अपने कंधों पर उठाकर बाहर लाए। इस दलदल में जब वो चल रहे थे, पैर इसमें फंस रहे थे। एक मजदूर तो इस मलबे में बुरी तरह से फंस गया, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। उसको यहाँ से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया, क्योंकि सुरंग के मुहाने पर मलबा ही मलबा है। नेपाली सेना की तरफ से बताया गया है कि त्रिशूली हाइड्रो पावर टनल में फंसे 350 मजदूरों को बचाया गया। अभी भी 100 और मजदूर यहां फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम चल रहा है। सुरंग के अंदर लगातार नेपाली सेना के जवानों की तैनाती है। ये लोग इसलिए बच पाए क्योंकि दावा है कि जब त्रिशूली नदी में बाढ़ का उफान आया तो ये लोग टनल की तरफ भागे, जहां भीतर ऊंचाई तक बाढ़ का जानलेवा मलबा नहीं पहुंच पाया, वरना इसी टनल के नीचे त्रिशूली में देवी घाट आता है, जहां आज तक संवाददाता श्वेता सिंह पहुंची हैं।
1: ये देवी घाट की प्रहरी चौकी हम आपको दिखा रहे हैं और आगे देवी घाट बाजार है पूरा। त्रिशूली बाजार का हाल आपने देखा। ये देवी घाट की तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। ये भी पूरी तरीके से इस मलबे और मिट्टी के नीचे ये पूरा बाजार का हिस्सा जा चुका है। चाहे आप छोटी सी एक चाय की दुकान को देख लें, यहां पर खड़े हुए ट्रैक्टर्स को देखकर शायद आपको वो पैमाना ज्यादा समझ में आएगा, और साथ ही वो दुकानों के शेड्स, इधर मंदिर का भी हिस्सा है जो पूरी तरीके से मिट्टी और मलबे के नीचे।
0: श्वेता सिंह नेपाल में जहां से रिपोर्ट कर रही हैं, ये त्रिशूली देवी घाट मुख्य रूप से नेपाल के नुवाकोट जिले में त्रिशूली और तादी नदियों के संगम पर स्थित एक ऐतिहासिक, धार्मिक और आर्थिक महत्व का क्षेत्र है। जहां ऊपर के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में 350 लोग बच गए, वहीं नीचे देवी घाट तक बहाव ने बहुत कुछ खत्म कर दिया।
1: ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से बह चुका है। बाजार से पहले का जो ये हिस्सा है, ये रेसिडेंशियल एरिया है और घरों की आग का हाल देखकर आप समझ लीजिए। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि इस गांव में उस समय लोग सभी थे मौजूद इवैक्यूएशन के लिए। कुछ बातें कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि इवैक्यूएशन के लिए कहा गया था, लेकिन यहां पर गांव वाले थे, अपना सामान ले जाने की कोशिश कर रहे थे जल्दी से जल्दी, लेकिन देखकर ही पता चल रहा है कि शायद ये संभव नहीं हो सका होगा।
0: देवी घाट के इस इलाके में अब केवल चंद लोग मिलते हैं। जो बचे हैं वो बताते हैं कि यहाँ लोगों का बचना कितना खतरनाक रहा है।
2: अभी चैलेंजेस, सबसे बड़ी चैलेंजेस तो ये है कि रास्ता, इधर अभी कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, कितने लोग दबे हुए हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उधर तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है।
3: तो कितना फुट मिट्टी है ये जो आप कह रहे हो इसके नीचे लोग दबे हो सकते हैं?
2: इधर तकरीबन आपका ये बोले कि 2-3 इंसान इसमें आराम से अंदर जा सकता है, इतना ऊपर तक मिट्टी आ चुका है, रमल आ चुका है। तो अभी इधर पैदल तो कोई भी सोच भी नहीं सकता है कि इधर से आगे जाए,
3: धस सकते नीचे,
2: पूरा धस जाता है। हम लोग सुबह कोशिश भी किए थे, सुबह इधर नीचे से आपका दो आपका सब निकाला गया। एक सब निकालने के लिए तकरीबन 45 मिनट लग गया था। इतना मुश्किल, इतना कठिनाई है।
3: दलदल में कोई आदमी उतरे तो वो नीचे चला जाएगा?
2: हाँ जी, और उसको खींचने के लिए भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई दूसरा बंदा उधर जा ही नहीं सकता है।
1: यहाँ पर आप जो रिलीफ वर्कर्स हैं उनको देख रहे हैं। ये पूरा एरिया, इसके आगे फिर बाजार का एरिया हो जाता है जो मिट चुका है, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है।

0: देख सकते हैं क्योंकि आगे भी हमने देखा कई स्निफर डॉग्स यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि रेस्क्यू एफर्ट्स में काम कर रहे हैं, क्योंकि कोशिशें ये हो रही हैं कि यहाँ जो गांव वाले जो अधिकांश लापता बताए जा रहे हैं उनको किसी तरीके से ढूंढा जा सके।
1: बुधवार को नेपाली सेना की एक यूनिट ने स्याफ रुबेसी, तिमुरे, बेलोंग, ठुलो हाकू और हाकू बेसी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कई जगहों से 533 और नागरिकों को सुरक्षित निकाला। इसके अलावा गुरुवार को रसुआ के अलग अलग हिस्सों से 883 लोगों को बचाया गया। ये रसुआ के लांगतांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की एरियल तस्वीरें हैं। सब कुछ बर्बाद नजर आ रहा है। जहाँ ये प्रोजेक्ट था वहाँ नीचे पूरा मैदान दिख रहा है। 3 दिन बाद भी तबाही के नए नए वीडियो आते जा रहे हैं और ये वीडियो बता रहे हैं कि बाढ़ कितनी भीषण थी। इसी तबाही में हजारों लोग बिछड़ गए, सैकड़ों लोग मारे गए, अभी भी लापता लोगों की तलाश चल रही है। कुछ खुशकिस्मत हैं जो मिल जा रहे हैं और कुछ बदकिस्मत ऐसे भी हैं जिनका कुछ भी पता नहीं चल रहा। नेपाल के रसुआ से आशुतोष मिश्रा आज तक।
2: बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
4: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
5: है भाद्रपद महीने की महिमा। भाद्रपद महीने में किस देवता की पूजा का है विधान? भाद्रपद महीने की क्या हैं सावधानियां और भाद्रपद महीने में मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।

ज्यादा लोगों की गई जान, करीब 2000 लापता। भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने से त्रिशूली नदी के आसपास हाई अलर्ट। त्रासदी की मार झेल रहे नेपाल में भारत ने भेजी मदद की तीसरी खेप। 10 टन राहत सामग्री के साथ काठमांडू पहुंचा विमान। दिल्ली में नेपाल से लौटे भारतीयों से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। सिंगर अंकित बालियान की हत्या पर यूपी में सियासी जंग। गायक के पिता से मुलाकात के बाद बोले अखिलेश, आज नहीं तो कल इंसाफ होगा जब बदलाव होगा। जयंत चौधरी का पलटवार, मृतक की जाति तलाशना संवेदनहीनता। आज न्यूयॉर्क में कार्यक्रम से पहले इस कॉल में मोहन भागवत का संबोधन, कहा दुनिया में कहीं अभी बहुत सारे टकराव और विरोधाभास। मेयर बमदारी ने किया है संघ प्रमुख का विरोध। दिल्ली में बढ़े सीएनजी के दाम, कीमत में प्रति किलो 3.89 रुपए की बढ़ोतरी, आज से लागू हुई नई दर। क्या नेपाल में एक और विनाश लीला तैयार खड़ी है? नेपाल में तिब्बत से आई विनाशकारी बाढ़ अब तक 550 से ज्यादा जिंदगी ले चुकी है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, करीब 1000 लोग अब भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। ऊपर से महाप्रलय का एक और खतरा

मंडराना शुरू हो गया। नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास बनी एक और झील फट गई और ऐसे में अगर खुदा न खास्ता एक और ग्लेशियर टूटा तो नेपाल में क्या होगा, यह सोचकर दहशत होने लगी है।

0: महाप्रलय के बाद नेपाल में जल विस्फोट 2.0। तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर झील बम फूटा, दहशत में लोग। नदियों में बढ़ने लगा पानी, महातबाही का अलर्ट भारी। फिर से ग्लेशियर टूटा तो 5 गुना बड़ी तबाही का खतरा। विनाशकारी बाढ़ का खौफ, नेपाल में विनाश लीला रिटर्न। इससे सैलाब का जोर पता चलता है। विनाशकारी बाढ़ में बहकर आती ये चट्टान बता रही है क्यों नेपाल में सब कुछ मलबे में दफन हो गया है। सोचिए, जब इतनी भारी भरकम चट्टान को सैलाब बहाकर ले जा सकता है तो कारें और मकान तो तिनके के समान हैं। और सोचिए, जब तिब्बत से ग्लेशियर टूटा होगा तो न जाने ऐसी कितनी चट्टाने टूट कर आई होंगी। यही वजह है कि नेपाल के 3 जिलों में सब कुछ तहस नहस हो गया है। लेकिन अब इससे भी 5 गुना बड़ा खतरा नेपाल में फिर से विनाश लीला मचाने को तैयार है। 26 अगस्त को तिब्बत में कैसे ग्लेशियर टूटा और उसके बाद जल विस्फोट होता है, ये उसका रियल वीडियो है। चीन के ड्रोन कैमरे में ये वीडियो कैद हुआ है और फिर नेपाल में जो महाप्रलय आया है उसका मंजर सबके सामने है। लेकिन अब इससे भी बड़ी तबाही फिर से नेपाल पर मंडरा रही है और इस महातबाही की चेतावनी चीन ने दी है। जी हाँ, चीन ने आगाह किया है कि नेपाल में एक और जल विस्फोट की संभावना बन रही है, क्योंकि नेपाल तिब्बत सीमा के पास बनी एक और झील फट गई है। ये झील चोचेन नदी और पुरेपू सांको नदी के संगम के पास बनी थी, जिसकी आशंका चीन ने एक दिन पहले ही जताई थी। मतलब 26 अगस्त को गिरोंग में झील फटी तो इसके 2 दिन बाद तोफान में झील फट गई। चीनी अधिकारी इस झील पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और इसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीचों बीच बनी झील की ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक झील में अभी 20 लाख घन मीटर पानी का अनुमान है और अगले कुछ घंटों में इस झील में 30 लाख घन मीटर पानी और आने की आशंका है। झील टूट चुकी है, पानी तिब्बत से बहकर नेपाल की नदियों में आना शुरू हो गया है। अब अगर कोई ग्लेशियर टूटा, अगर हिमस्खलन हुआ तो नेपाल में और भयंकर विनाश लीला मच सकती है। और इस महा खतरे को देखते हुए नेपाल में भोटे कोशी नदी और त्रिशूली नदी के आस पास के इलाकों को खाली करने के लिए ऐलान कर दिया गया है।
1: मेरे ठीक पीछे बिल्कुल त्रिशूली नदी है और ये अपने साथ सैलाब लेकर के आई थी और एक बार फिर इसका पानी बढ़ने को है, जिसके बाद इलाके में पूरा पैनिक फैला है, लोग डरे हुए हैं, इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। दुनिया भर के जर्नलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर किसी को अब यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। सर, किस तरह का अलर्ट इश्यू हुआ अभी यहाँ पे?
2: अभी यहाँ पे जस्ट टिमोरे से एक खबर आया कि वहाँ का जो बांध बना था, प्राकृतिक बांध, वो फिर से टूट गया है। उससे जो आया था उससे 5 गुना ज्यादा बाढ़ आने वाला है यहाँ पे, इसीलिए आप लोग कृपया करके ऊपर चलिए, यहाँ पे हाई अलर्ट पे।
1: तो हाई अलर्ट इश्यू कर दिया गया है। तो जो बांध, जिस तरह का सैलाब आया था, जलाशय में पानी था, वो एक बार फिर बढ़ चुका है और अब कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से जल्दी निकल जाएं, 5 गुना ज्यादा पानी आ सकता है। और इसीलिए देखिए, धुंडे जो इलाका है, मैं उससे काफी ऊंचाई पर हूँ और अब इन इलाकों में भी लोगों को जाने के लिए तत्काल कह दिया गया है, हाई अलर्ट वार्निंग यहाँ पर इश्यू कर दी गई है। इतनी देर में पानी पहुंच रहा है यहाँ पे?
3: 20-25 मिनट में, नेपाल पुलिस ने बोला है 20-25 मिनट में इधर आएगा।
1: तो आप लोग क्या वार्निंग दे रहे हैं लोगों को?
3: हम शिफ्ट साइड में जाइए,
1: यहाँ से हटा रहे हैं लोगों को।
3: हाँ, यहाँ से हटा रहे हैं।
1: तो नुआकोटी का आखिरी जो धुंडे इलाका, मैं आपको दिखा दूं कि जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा था, अब यहाँ से पुलिस जो है लोगों को हटा रही है और वो इसलिए क्योंकि खतरा बड़ा है और वो कह रहे हैं 20 से 25 मिनट में पानी फिर से यहाँ पहुंच सकता है। सर, वार्निंग इश्यू हुई है लोगों को जाने के लिए? वार्निंग इश्यू हुई और देखिए आप पुलिस सही है, देखिए पूरी तरह से अनाउंसमेंट की जा रही है, आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर अनाउंसमेंट करके लोगों को हटाया जा रहा है।
4: कृपया माथि माथि बस्दै हुनुहोला। हामी
0: आपको बता दें कि तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर जिन चोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास ये झील फटी है। वो चोचेन और पुरुपे नदियाँ तिब्बत से निकलती हैं और नेपाल में प्रवेश करने से पहले आपस में मिल जाती हैं, जहाँ इसे भोटेकोशी नदी के नाम से जाना जाता है। भोटेकोशी त्रिशूली नदी की प्रमुख ऊपरी सहायक नदी है।
4: ये त्रिशूली नदी के बढ़ते आवेग को मेरे पीछे आप देख रहे हैं, उसकी लहरों को देखिए कि किस तरीके से बहुत तेजी से उसमें पानी का स्तर आपको इस समय ज्यादा दिख रहा है। बारिश बहुत तेज शुरू हो गई है, जो मौसम है बहुत ज्यादा खराब यहाँ पर हो रहा है, और उसके साथ ही जो नेपाल तिब्बत सीमा पर भोटेकाशी का उद्गम स्थल है, वहाँ पर जो झील है उसका बांध टूटने के कारण बहुत सारा पानी उसमें आया है। चीन की तरफ से चेतावनी भी दी गई इसको लेकर, और ये भी बताया गया कि 5 गुना ज्यादा खतरा 26 अगस्त की तुलना में अगर देखा जाए तो 5 गुना ज्यादा खतरा हो सकता है।
0: नेपाल में अगली विनाश लीला भोटेकोशी नदी से आएगी, ऐसे में महाप्रलय का अलर्ट जारी किया जा रहा है,
5: क्योंकि हमारा जो ऊपर का अवस्था है इसीलिए तुरंत जो भी हो सकता है, इसीलिए हम सब कर रहे हैं। नेपाल सरकार कुछ भी से लोकल गवर्नमेंट प्रोविंस, हम तीनों स्थानीय निकाय संघ प्रदेश और स्थानीय निकाय, हम सब कर रहे हैं।
0: नेपाल में एक ग्लेशियर ने इतनी बड़ी तबाही मचाई, बर्फ का पहाड़ टूटकर नदी में गिरा और नदी का रास्ता रुकने से झील बनी और ज्यादा पानी भरने से मलबा हटा और पानी किसी बम की तरह नेपाल पर फूट पड़ा। नेपाल में जो हुआ उसका खतरा भारत को लेकर भी कम नहीं है, क्योंकि भारत में 189 ग्लेशियल झील फटने की स्थिति में है। इसरो और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़े डराने वाले हैं, जो बताते हैं कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 7,500 से ज्यादा ग्लेशियल झीलें हैं, इनमें से 189 रेड जोन में हैं और किसी भी वक्त फूट सकती हैं। ये झीलें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की चोटियों पर छोटी बड़ी झीलें हैं। पहाड़ों पर झीलें बनने की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ लद्दाख में ही 3219 झीलों की पहचान की गई है। नेपाल का यह हादसा बता रहा है कि हिमालयी क्षेत्र में आपदा का जोखिम बढ़ रहा है, ग्लेशियर अस्थिर हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय हिमालयी इलाके की कुल 7,500 से ज्यादा झीलों में से 189 का रेड जोन में होना बहुत चिंताजनक है।
6: ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है उसके रिट्रीट होने से, उसमें यानी बड़े ग्लेशियर लेक्स बन रहे हैं और उसमें नेचुरल मोरेन डैम पर प्रेशर बढ़ा रहा है और उसमें आइस या रॉक का एवलेंच होने का खतरा और ग्लोफ होने की संभावना ये बढ़ जाती है।
0: इस तरह हिमालय में लगातार ग्लेशियर उससे बनने वाली झीलों की निगरानी पर नजर रखकर ही इस तरह की आपदा के खतरे को कम किया जा सकता है, ताकि समय रहते लोगों को बचाया जा सके। लेकिन विशेषज्ञ भी मानते हैं कि टूटते ग्लेशियर कभी भी महातबाही का सबब बन सकते हैं। त्रिशूली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
7: और अब आपको दिखाते हैं नेपाल में विनाश लीला की सैटेलाइट तस्वीरें, जो बता रही हैं कि कैसे नेपाल के 3 जिलों में विनाशकारी बाढ़ ने सब कुछ मलबे में मिला दिया। तिब्बत से आई विनाश लीला ने नेपाल में भूगोल ही बदल दिया। जहां बाजार था वहां मलबा है, जहां शहर था वहां समतल हो गया है। त्रिशूली नदी का बहाव क्षेत्र अपने मूल स्वरूप से कई गुना ज्यादा चौड़ा हो गया। तो आइए देखते हैं सैटेलाइट तस्वीरों में नेपाल की पूरी महातबाही।
0: नेपाल की ये त्रासदी न सिर्फ खौफनाक है, बल्कि महातबाही की तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जैसे जैसे नेपाल के 3 जिलों में मची विनाश लीला की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनसे पता लग रहा है कि नेपाल में महाप्रलय ने कैसा मंजर दिखाया। नेपाल में 26 अगस्त की बाढ़ से हुई तबाही सैटेलाइट से भी दिखाई दे रही है। सैलाब में गांव और बाजार बह गए, सड़कें और पुल मलबे में दब गए, हर तरफ मटमैला पानी और पहाड़ी मलबा नजर आ रहा है। इस बाढ़ ने नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पूरे इलाके का नक्शा बदल दिया। सभी सैटेलाइट तस्वीरें तिब्बत सीमा से लगे नेपाल के रसुवा जिले की हैं, जहां त्रिशूली नदी अपने किनारे बसे गांवों और बस्तियों को 6 घंटे की बाढ़ से लीलती चली गई। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा है कि कैसे नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पूरे के पूरे गांव, पुल और बड़े बुनियादी ढांचे ताश के पत्तों की तरह बह गए और उनकी निशानी तक नहीं बची। बाढ़ प्रभावित नेपाल के रसुवा जिले स्थित चीन नेपाल की रसुवा गढ़ी सीमा बाढ़ से बुरी तरह तबाह हुई है। विंटोर की ओर से जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों में चीन नेपाल की रसुवा गढ़ी सीमा को दिखाया गया है कि कैसे एक ही दिन में सब कुछ बदल गया है। बाढ़ से पहले की तस्वीरों में यहां बड़े पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर खराब दिख रहा है। बाढ़ के बाद ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में इसी जगह पर सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। अब अंदाजा लगा लीजिए कि यहां जो लोग मौजूद रहे होंगे उनका क्या हुआ होगा। आज की स्थिति यह है कि इस चीनी इमिग्रेशन चेक पोस्ट की इमारत का कोई अस्तित्व नहीं है। सैटेलाइट और हेलीकॉप्टर तस्वीरों में कहीं भी इस इमारत का नामो निशान नहीं है। रसुवा, धडिंग, नुवाकोट की बस्तियों की हालत देखिए। पहले नदी की पतली सी धारा दिख रही थी, लेकिन फ्लैश फ्लड के बाद त्रिशूली नदी का पाट दोगुने से अधिक दिख रहा है। इस विनाशकारी बाढ़ ने जिन 3 जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है उनके नाम हैं रसुवा, नुवाकोट और धडिंग। यहीं से त्रिशूली नदी गुजरती है जिसमें ये बाढ़ आई है। 2021 की जनगणना के मुताबिक इन 3 जिलों में करीब 6,35,790 लोग रहते हैं, जो नेपाल की कुल जनसंख्या के 2% हैं।
1: यहाँ से पता चलता है कि शहर में बचा कुछ भी नहीं है। ज्यादातर जो घर हैं, तो आप देखिए सड़क का एक हिस्सा है ना, यहाँ पर सारी दुकानें, ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस है, और इस तरफ सारी रिहायश इलाके थी, तो जो दुकान मकान वो तो डूबे ही हैं। मकान जो है इस तरफ उनको भी नुकसान हुआ है। अब देखिए कैसे वो दंपत्ति गया हुआ है जेसीबी के सहारे कि किस तरह अपने घर तक पहुंचा है, बचा कुचा सामान लेकर के। अगर वो आ जाए तो कम से कम जीविका तो चलती रहे, जिंदगी चलती रहे, लेकिन यहाँ जिंदगी पर ब्रेक नहीं बल्कि पूरे शहर की रफ्तार पर ही ब्रेक इस सैलाब ने लगाया है। सारे मकान जो है यहाँ पर ध्वस्त हो चुके हैं, जो पहली दूसरी मंजिल है वो लगभग मलबे में तब्दील हो चुकी है।
0: त्रिशूली नदी किनारे बसे इन शहरों में किस तरह की तबाही हुई है उसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि कंक्रीट के बड़े पुल भी बह गए, हाईवे बह गए, बाजारों घरों तक मलबा आ गया।
4: पैंतीस मोटरेबल ब्रिज, 45 सस्पेंशन ब्रिज और लगभग 40 किलोमीटर सड़क बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस सैलाब से, इस मलबे से। यहां पर ऐसी ही एक ब्रिज का हिस्सा आप देख सकते हैं जिस पर पेड़ पूरी तरीके से टूटकर गिर गए हैं, उनका कुछ हिस्सा काटकर हटाया गया है, लेकिन मलबा पूरी तरीके से कैसे इस ब्रिज को लेते हुए धस गया है। ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया। आवेग भी कैसा, ऐसा जिसके सामने कंक्रीट का एक ब्रिज नहीं टिक पाया। सोचिए इंसानों की क्या ही बिसात।
0: नेपाल को इतना नुकसान हो चुका है कि जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। नेपाल के कस्बे तबाह हो चुके हैं। ये सेंट्रल नेपाल के वो इलाके थे जहां बहुत टूरिज्म फल फूल रहा था। देसी विदेशी पर्यटक यहां आते थे और यहीं से कैलाश मानसरोवर का रूट जाता था। सैकड़ों करोड़ का कारोबार था, लेकिन अब सब कुछ जैसे तहस नहस हो गया है। आज तक ब्यूरो।
7: और अब आपको दिखाते हैं कैसे विनाश लीला नेपाल में आई, लेकिन दर्द दुनिया के कई देशों को दे गई। सैकड़ों भारतीय नेपाल में लापता हैं। महातबाही की तस्वीरें देखकर परिजन सहमे हुए हैं, अनहोनी की आशंकाएं हैं, लेकिन मन में उम्मीद भी है कि शायद भगवान का कोई चमत्कार हो जाए और उनके परिजन वापस मिल जाएं।

0: अभी तो फिलहाल नहीं हो पा रहा क्योंकि वहाँ पे लाइट नेटवर्क नहीं है और वो लोगों के पास भी चार्जर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मोबाइल ऑफ है।
1: दीक्षा चौरसिया यूपी के बलिया की रहने वाली हैं। नेपाल की त्रासदी में इनकी ताई और इनका भाई लापता है। दीक्षा के ताऊ अशोक चौरसिया का पूरा परिवार इस आपदा से प्रभावित है। दीक्षा बताती हैं, 26 अगस्त को सुबह बड़े पिता का फोन आया था कि बाढ़ का अलर्ट नेपाल प्रशासन की ओर से आया है। इससे पहले की बात पूरी हो पाती फोन कट गया। चौरसिया परिवार करीब 20 साल पहले नेपाल शिफ्ट हो गया था। नेपाल के त्रिशूली में उन्होंने अपना ठिकाना बनाया, वहीं पर उनकी दुकान थी, वहीं कारोबार था, लेकिन 26 अगस्त की आपदा ने सब कुछ खत्म कर दिया।
0: सुबह 9 बजे फोन आया तो अचानक से पापा का फोन आया तो बोल रहे हैं कि इधर बाढ़ उड़ आने वाला है, कुछ भी हो सकता है। इतना बोलने के बाद फोन कट गया, फिर फोन लग नहीं रहा था। फिर बाद में बात हुआ तो पता चला कि वो लोग सुरक्षित हैं, बड़ी मम्मी और राहुल, जो कि मिल नहीं रहे हैं।
1: इसी त्रासदी में भोपाल का एक परिवार भी लापता है। भोपाल की रहने वाली देविका अधिकारी के परिवार के 4 सदस्य नेपाल आपदा में लापता हैं, जिसमें उनके बड़े भाई, छोटे भाई और दोनों भाभियां शामिल हैं।
2: वो 6:30 बजे घर से निकले थे और 9:30 बजे बेतरा वेदी करके कोई जगह है वहाँ जाके वो लोग खाना खा रहे थे। तो खाना खाते समय वहाँ पे उनको पता चला कि मतलब बाढ़ आ रही है कि अपने अपने जान बचा लो और कहीं भी मतलब अपने अपने जान बचा लो करके ऐसा करके अलाउंस हुआ। और वो लोग वहीं गाड़ी घोड़ा जो भी छोड़ के अपने झोला झापटा जो के छोड़ के वो अपने जान बचाने के लिए पहाड़ चढ़ गए, किसी के मकान के छत में जाके बैठे। तो छत में जाने के बाद उनको ने जैसा देखा कि ये घर भी डूब रहा है तो अपने परिवार फैमिली वाले को फोन करके उनने मैसेज कर दिया कि हम लोग हमारी गाड़ी तो पहले भी गई है और अब हम लोग भी जाने वाले, अब हम भी नहीं बचेंगे, अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे को देखभाल रेख देख कर देना करके बस उनने इतना बोला था। और उसके बाद पूरा फोन भी नहीं हो पाया, उसके बाद संपर्क भी नहीं, उसके बाद बात नहीं हो पाई, अभी तक किसी से कोई संपर्क नहीं है।
1: चारों ओर हाहाकार है, विनाश का मंजर है, गूंज रही है चीखें, टूट रही है जीवन की डोर। काल के इस तांडव से पल भर में सब मलबा बन गया है, थम गई है सांसें, रुक गई है सृष्टि की चाल। विनाश लीला के आगे इंसान बेबस है। महातबाही की इन तस्वीरों को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर का ये परिवार भी देख रहा है, लेकिन फिर भी मन में कहीं उम्मीद जिंदा है कि शायद उनके परिजन बच गए हों।
3: সিয়া বরুসতে কালকে ডিপার্ট করেছে এবং আজকে ওদের ওখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল কৈলাসের উদ্দেশ্যে। তো কৈলাসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু আজকে এই ধরনের ক্লাউড বাস্ট হওয়ার পর থেকে আর ওর মেয়েও কোনো ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেনি, প্লাস আমরা।
1: दुर्गापुर की मौसमी और दिलीप बंदोपाध्याय 21 अगस्त को घर से निकले थे। नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना था, लेकिन अब ये लोग कहाँ हैं, किस हालत में हैं, इसको लेकर परिवार वाले चिंतित हैं। सिलीगुड़ी के सुमार मंडल का परिवार भी चिंतित है क्योंकि नेपाल त्रासदी के बाद सुमार मंडल का कुछ पता नहीं चल रहा,
4: नहीं हो रहा है, बार बार स्विच ऑफ बोल रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है।
1: हावड़ा की अनीता दास का भी नेपाल त्रासदी के बाद से कुछ पता नहीं चल पाया है। उनके परिजन दिन भर मोबाइल में उनका नंबर डायल करते हैं लेकिन फोन लग नहीं रहा। मन में अनहोनी की आशंका भी होती है लेकिन आस फिर भी है कि शायद वो सुरक्षित हों।
5: हमारा खबर मिला है ये गतकाल 8 बजे को कथा हुआ उसका शैलेश नेपाल के तिब्बत बॉर्डर में ढुकेगा। पुलिस हमारा घर में आया था
6: सुबह में
5: आया था, उन्होंने बोलेगा कि वो मिसिंग है।
1: अनीता दास के परिजन बता रहे हैं कि तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर उनका स्टे था, उसके बाद से कोई खबर नहीं है। कोलकाता की शुभ्रा चक्रवर्ती से भी परिवार का संपर्क नहीं हो पा रहा है।
6: 21 अगस्त को शाम को निकले थे चलो जाई ट्रैवल क्लब के सामने से, और ये है मैम की फोटो, और मेरे साथ उनका बात हुआ था घटना के दिन ही सुबह 8:03 पे अंतिम वार्तालाप हुआ था। उसमें ये आया था कि उन लोग ऑलरेडी नेपाल कस्टम्स हो गया था उनका इमिग्रेशन प्रोसेस, अब चाइना का इमिग्रेशन प्रोसेस बाकी था। अब उसके बाद से उनसे कोई संबंध नहीं हो पा रहा है।
1: पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर की टीचर केया प्रमाणिक लापता हो गई हैं। वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के सपने के साथ अपने सहयोगियों संग नेपाल गई थी।
7: यात्रा कर रहे थे कैलाश मानसरोवर,
8: और किसी के साथ कितना ग्रुप गया था?
7: ग्रुप थे 30 वन।
8: आपका जो बहन है क्या काम कर रहा था?
7: स्कूल टीचर।
1: हैदराबाद की कांदी बल्ला सुहासिनी के परिवार का दिल भी बैठा जा रहा है। नेपाल त्रासदी के बाद से सुहासिनी भी लापता हैं।
9: संडे के दिन काठमांडू के रास्ते इधर से यहाँ से दिल्ली, दिल्ली टू काठमांडू गए। वो संडे के दिन शाम में बात करे, मंडे के दिन शाम में बात करे, 2-3 फोटो भी जाए मंदिर को जाके, और ट्यूजडे के लास्ट 7:30 को बात करे, फिर वहाँ से कनेक्शन कट हुआ। कोई जल्दी से जल्दी हमारा को कुछ रूट के कुछ इंफॉर्मेशन दिखाए तो वहाँ कौन भी नहीं रेस्पेक्ट कर रहा, वो टोल फ्री नंबर में कौन भी बात नहीं कर रहा, वो फोन ही छूटा रहा नहीं।
1: इसी तरह से बहुत से ऐसे भारतीय परिवार हैं जिनके अपने नेपाल में आए महाप्रलय में लापता हैं। भारतीयों की तलाश में सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारत की तरफ से नेपाल को पूरी मदद भेजी जा रही है। तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली की 49 साल की विमला रवि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से लापता हैं। परिवार की आंखों में आंसू हैं, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। आज तक ब्यूरो।
10: बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए आज तक।
11: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: है भाद्रपद महीने की महिमा। भाद्रपद महीने में किस देवता की पूजा का है विधान? भाद्रपद महीने की क्या है सावधानियां? और भाद्रपद महीने में मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

जान करीब 2000 लापता। भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने से त्रिशूली नदी के आसपास हाई अलर्ट। त्रासदी की मार झेल रहे नेपाल में भारत ने भेजी मदद की तीसरी खेप। 10 टन राहत सामग्री के साथ काठमांडू पहुंचा विमान। दिल्ली में नेपाल से लौटे भारतीयों से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। सिंगर अंकित बालियान की हत्या पर यूपी में सियासी जंग। गायक के पिता से मुलाकात के बाद बोले अखिलेश, आज नहीं तो कल इंसाफ होगा जब बदलाव होगा। जयंत चौधरी का पलटवार, मृतक की जाति तलाशना संवेदनहीनता। आज न्यूयॉर्क में कार्यक्रम से पहले इस कॉल में मोहन भागवत का संबोधन, कहा दुनिया में कहीं अभी बहुत सारे टकराव और विरोधाभास। मेयर ममदानी ने किया है संघ प्रमुख का विरोध। दिल्ली में बढ़े सीएनजी के दाम। कीमत में प्रति किलो 3 रुपए 89 पैसे की बढ़ोतरी। आज से लागू हुई नई दर।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भाद्रपद के पावन महीने का आरंभ हो रहा है और आज हम आपको आपके कार्यक्रम में बताएंगे कि भाद्रपद महीने की महिमा क्या है, इसका पूजा विधान क्या है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 29 अगस्त 2026 दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः 9:56 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 9:37 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9:10 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार आज से भाद्रपद के महीने का, भादो महीने का आरंभ हो रहा है। भाद्रपद महीने की महिमा क्या है पहले ये जानते हैं। देखिए, भाद्रपद का पहला शब्द है भाद्र। भाद्र का अर्थ है कल्याण देने वाला और भाद्रपद का अर्थ है भद्र परिणाम देने वाले व्रतों का महीना, शुभ परिणाम देने वाले व्रतों का महीना। ये महीना लोगों को व्रत, उपवास, नियम और निष्ठा का पालन करवाता है। अपनी गलतियों को याद करके उनका प्रायश्चित करने के लिए भाद्रपद का महीना सर्वोत्तम महीना है। मन को शुद्ध करने के लिए और मन में पवित्रता लाने के लिए, पवित्र भाव भरने के लिए ये महीना बहुत कारगर है। भाद्रपद के महीने में गणेश चतुर्थी का और गणेश महोत्सव का बड़ा पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और कलंक चतुर्थी भी इसी महीने में आती है, यानी भाद्रपद से भगवान कृष्ण का और भगवान गणेश का दोनों का संबंध है और दोनों की कृपा इस महीने में मिल सकती है। इस बार भाद्रपद का महीना 29 अगस्त से आरंभ हो रहा है और ये महीना 26 सितंबर तक रहेगा। भाद्रपद के महीने पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ
और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ हो सकता है, परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, यात्रा पर जा सकते हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मिथुन राशि, धन की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी, रिश्तों पर थोड़ा ध्यान बनाए रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। तो भाद्रपद का महीना आज से शुरू हो चुका है और अगले एक महीने तक हमें भाद्रपद महीने के नियमों और सावधानियों का पालन करना चाहिए। तो भाद्रपद महीने के नियम क्या हैं और सावधानियां क्या हैं? भाद्रपद के महीने में कच्ची चीजें खाने से परहेज करिए, उबाल कर पका करके ही चीजों को खाइएगा। भाद्रपद के महीने में दही का प्रयोग करना पूरी तरह से वर्जित है, भाद्रपद में दही का प्रयोग नहीं किया जाता। इस महीने में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना काफी होती है, भाद्रपद के महीने में इसका ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में आलस्य बहुत होता है, इसलिए भाद्रपद में शीतल जल से दोनों समय नहाना चाहिए ताकि आलस्य दूर हो जाए। भगवान कृष्ण को नियमित रूप से तुलसी दल अर्पित करना चाहिए और तुलसी दल को चाय में या दूध में उबाल करके पीना चाहिए। भाद्रपद के महीने में आप जितनी पवित्रता से रहें, जितना धर्म का पालन करें, जितनी पूजा उपासना करें, उनके बहुत ज्यादा शुभ फल आपको जीवन में प्राप्त होंगे। भाद्रपद पर महत्वपूर्ण बातें आगे जारी रहेंगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा प्रयोग किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।
कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, चोट चपेट से सावधान रहें, परिवार में शांति बनाए रखें, शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कन्या राशि, रुका हुआ काम बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न सयाली ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 29 जून 2002, जन्म का समय सुबह 7:15, जन्म स्थान है कोलकाता। सयाली कह रही हैं कि मैं बैंकिंग सर्विसेज की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे बैंक में या फाइनेंस के क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? सयाली, आपकी कुंडली के हिसाब से बैंकिंग में, फाइनेंस में, अकाउंट्स में आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साल 2028-29 में आपकी सफलता का अच्छा समय दिखाई दे रहा है। दिमाग तेज है लेकिन एकाग्रता की समस्या है, थोड़ी मेहनत में कमी है, उसको बढ़ाइए। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए, आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि भाद्रपद महीने के महत्वपूर्ण व्रत कौन से हैं और कौन कौन से त्योहार इस महीने में आते हैं। भाद्रपद के महीने में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, साल की सबसे बड़ी गणेश चतुर्थी है और गणेश महोत्सव का पर्व भी इस महीने में आता है। इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण, श्री बलराम जी और भगवती राधा का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। भाद्रपद के महीने में महिलाओं के सौभाग्य का पर्व हरितालिका तीज भी आता है और भाद्रपद के महीने में अनंत पुण्य प्राप्त करने का पर्व अनंत चतुर्दशी भी मनाया जाता है। भाद्रपद के महीने में
भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को। तो कृष्ण पक्ष में मुख्यतः भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और शुक्ल पक्ष में गणपति महोत्सव होता है। तो शुक्ल पक्ष में मुख्यतः भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। भगवान कृष्ण और भगवान गणेश की कृपा कैसे मिले इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति की समस्या दूर होगी, इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। धनु राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, धन लाभ के योग हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। तो भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण की और भगवान गणेश दोनों की कृपा मिलती है। तो पहले ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा पाने के लिए भाद्रपद में क्या करें। देखिए, सामान्यतः भाद्रपद में दही का प्रयोग वर्जित है, लेकिन जरा सी दही का प्रयोग करके अगर पूरे महीने भगवान कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराया जाए तो तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण को पंचामृत अर्पित करना चाहिए। जिन लोगों के पास संतान नहीं है, जिन लोगों को संतान का सुख नहीं है, उन लोगों को भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना चाहिए और भगवान कृष्ण का जन्म कराना चाहिए, या भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होना चाहिए। इस महीने में आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भगवद् गीता का पाठ करना चाहिए, खास तौर से भगवद् गीता के 11वें अध्याय का।
भाद्रपद के महीने में लड्डू गोपाल की स्थापना और शंख की अगर आप स्थापना करें तो घर में धन और संपन्नता आएगी। भाद्रपद के पहले 15 दिन में यानी कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण की पूजा करें, गोपाल सहस्त्र नाम का, भगवत गीता का, श्री कृष्ण के मंत्र का, जितना ज्यादा जप आप भाद्रपद कृष्ण पक्ष में करें उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। भाद्रपद के महीने का भगवान गणेश से भी संबंध है, तो भगवान गणेश के आशीर्वाद के लिए क्या करेंगे? विद्या बुद्धि और ज्ञान के लिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष में भगवान गणेश की उपासना करिएगा। पीले रंग के भगवान गणेश की स्थापना करें, रोज सुबह उनको दूर्वा और मोदक या लड्डू का भोग लगाएं, पूरे महीने में सात्विकता बनाए रखें। अगर आप भाद्रपद शुक्ल पक्ष में ऐसा करते हैं तो जीवन की हर प्रकार की बाधा का नाश होगा। पूरे शुक्ल पक्ष में रोज सुबह भगवान गणेश की पूजा करें, संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करें, या अगर संतान की कामना है तो संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करें या भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें। अगर पूरे भाद्रपद शुक्ल पक्ष में आप भगवान गणेश की उपासना करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा है, किसी भी प्रकार की रुकावट है तो वो दूर हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कुंभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

पारिवारिक विवादों से बचाव करें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भाद्रपद के महीने में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, दही एक बैक्टीरिया से बनती है, लैक्टोबैसिलस, और भाद्रपद में माहौल में मौसम में नमी बहुत होती है, इसीलिए दही बहुत जल्दी खराब होती है। आपको पता भी नहीं चलेगा और दही इंटरनली खराब हो जाएगी। जब ऐसे दही का सेवन करेंगे तो आपकी सेहत बिगड़ सकती है, पेट में त्वचा में दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए प्रकृति को देखते हुए और दही के गुण को समझते हुए ऐसा कहा गया है कि भाद्रपद के महीने में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी टिप के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 4, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। नंबर 5, संतान पक्ष की उन्नति होगी। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, वाहन सावधानी से चलाएं। नंबर 8, करियर में नए अवसर मिलेंगे। नंबर 9, संपत्ति का लाभ हो सकता है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। शुभ समय है आज का शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल चढ़ा दीजिए।

वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न अनंत जी ने हमें लिखा है और अनंत जी हमें मेल लिखते हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 18 फरवरी 1989, जन्म का समय शाम के 7 बजे और जन्म का स्थान है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। अनंत जी कह रहे हैं कि मेरी नौकरी अभी छूट गई है और मैं नई नौकरी का प्रयास कर रहा हूं, तो मुझे नई नौकरी कब तक मिलेगी और आगे मेरा करियर कैसा रहेगा? अनंत जी, आपकी नौकरी मिलने का समय नवंबर दिसंबर में इस साल के आखिरी में दिख रहा है, तो इस साल के आखिरी में आपको नौकरी मिलने की संभावना बनती है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि नई नौकरी पाने के लिए आपको गुड़गांव छोड़ना पड़े, कहीं और जाना पड़े, ऐसी संभावना आपकी कुंडली में बन रही है। करियर और भविष्य आपका अच्छा है, आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार शनि चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान।

कुंभ राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि वालों के लिए, सेहत में सुधार होगा, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा वृश्चिक राशि वालों को, चिंताएं और तनाव आपके बढ़ सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज प्रतिपदा तिथि है, आज परिवार में शांति बनाए रखें और आज अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब आदमी को खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: नेपाल में कुदरत का कहर, त्रासदी में मौत का आंकड़ा 580 के पार पहुंचा। नेपाल बाढ़ में फंसे 21 तमिल तीर्थयात्री सुरक्षित दिल्ली पहुंचे, भारत ने राहत अभियान तेज किया। चीन में फंसे 400 भारतीय सुरक्षित, भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन के साथ निकासी में जुटा। नेपाल में तबाही के बीच बड़ा खतरा, भोटेकोशी नदी उफान पर, त्रिशूल नदी के आसपास बाढ़ का अलर्ट, प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा। नेपाल की मदद के लिए भारत का राहत अभियान तेज, राहत सामग्री की तीसरी खेप लेकर विमान काठमांडू पहुंचा, 10 टन जरूरी सामान भेजा गया। नेपाल त्रासदी में करीब 2000 लोग अब भी लापता हैं, 13 पनबिजली परियोजनाओं में काम कर रहे 933 कर्मचारी भी शामिल। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने बड़ा दावा करते हुए कहा, विदेशी सहयोग ठुकराने का प्रचार भ्रामक है। नेपाल सरकार ने हाइड्रो पावर टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए भारत से मांगी मदद, पीएम बालेन्द्र शाह ने जानकारी दी। नेपाल के 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में अभी भी करीब 1000 लोगों के फंसे होने की आशंका। दिल्ली एयरपोर्ट पर नेपाल से लौटे 21 भारतीयों से मिले विदेश मंत्री जयशंकर, तमिलनाडु के रहने वाले ये लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे नेपाल। त्रिशूली वन हाइड्रो प्रोजेक्ट से 63 भारतीय सुरक्षित निकाले गए, कई लोगों की तलाश अब भी जारी। नेपाल तिब्बत सीमा पर भीषण आपदा, 96 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंचे, निकासी की तैयारी। हिमालय में लगातार बारिश से खतरा बढ़ गया है, बैरियर झील टूटी तो आ सकती है नई बाढ़ और भूस्खलन। नेपाल चीन सीमा पर ग्लेशियर तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई, ग्लेशियर धंसने वाली जगह पर दिखी दो झीलें। नेपाल में बाढ़ के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो, नेपाली सेना ने हेलीकॉप्टर से कई लोगों को निकाला। आज से 4 दिवसीय सेंट्रल एशिया दौरे पर पीएम मोदी, 1 सितंबर तक उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य में रहेंगे। ताशकंद में पीएम मोदी की राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव से अहम मुलाकात, भारत उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी और व्यापार रक्षा सहयोग पर चर्चा। बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी, पुतिन से द्विपक्षीय मुलाकात और शी जिनपिंग से आमना सामना पर नजर। एससीओ के मंच पर आतंकवाद के खिलाफ भारत का फोकस, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की मौजूदगी में आतंकवाद अलगाववाद के खिलाफ उठेगी आवाज। सेंट्रल एशिया दौरे से भारत के रिश्तों को मिलेगी नई मजबूती, सुरक्षा कनेक्टिविटी और व्यापार पर पीएम मोदी का खास जोर। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में आज मोहन भागवत का संबोधन, आरएसएस के शताब्दी वर्ष में यूनिवर्सल ऑनलाइन सेलिब्रेशन का आयोजन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का अमेरिका में बड़ा कार्यक्रम, न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के बीच यूनिवर्सल ऑनेस का संदेश देंगे। मोहन भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम से पहले विरोध की तैयारी का एक्टिविस्ट संगठन मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर प्रदर्शन करेंगे। न्यूयॉर्क में मोहन भागवत के कार्यक्रम पर सियासत तेज, मेयर ममदानी के विरोध के बीच आज मेडिसन स्क्वायर गार्डन में यूनिवर्सल ऑनेस सेलिब्रेशन। न्यूयॉर्क में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का इस्कॉन मंदिर दौरा, पूजा अर्चना के साथ बेघर लोगों के लिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन अभियान में भी हिस्सा लिया। दिमागी नक्सल पर सियासी संग्राम तेज, आरएसएस से जुड़े ऑर्गेनाइजर ने सोनिया गांधी की एनएसी को बताया दिमागी नक्सलों का क्लासिक टेकओवर। पीएम मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान का नया विवाद, ऑर्गेनाइजर ने यूपीए सरकार की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल पर निशाना साधा। दिमागी नक्सल की परिभाषा पर बड़ा सियासी बहस, ऑर्गेनाइजर का आरोप एनएसी के जरिए शासन व्यवस्था पर प्रभाव डालने की कोशिश। सोनिया गांधी की किताब पर सियासी घमासान, कांग्रेस का आरोप बिलोंगिंग के प्रकाशन पर दबाव, अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल। सोनिया गांधी की किताब को लेकर कांग्रेस का हमला, अशोक गहलोत बोले दुनिया में छप रही किताब भारत में क्यों नहीं। पार्टी लाइन के खिलाफ बयान पर बीजेपी पंजाब सख्त, संगरूर के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत 3 नेताओं से 7 दिन में जवाब मांगा। नीट विवाद के बीच एनटीए में केंद्र का बड़ा फेरबदल, 2 डायरेक्टर 1 ज्वाइंट डायरेक्टर की नियुक्ति। एनटीए में रवि कुमार सिंह और प्रसन्ना वेंकटेश बने डायरेक्टर, अमित समदरिया को ज्वाइंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी। जीएसएससी सीजीएल परीक्षा में अनियमितता की जांच के दौरान सीआईटी एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, सफल 4 अभ्यर्थी गिरफ्तार। स्मृति ईरानी ने गिराई जनधन योजना की उपलब्धियां, बोली 12 साल में 59 करोड़ खाते खुले, महिलाओं और ग्रामीण परिवारों को मिला बड़ा फायदा। वाल्मीकि घोटाले के आरोपों के बीच कर्नाटक के मंत्री नागेंद्र का मंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान, बोले मुझे दलित होने के कारण निशाना बनाया जा रहा है। जादवपुर में 10,000 लोगों के साथ वंदे मातरम कार्यक्रम में पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, बोले जेएनयू और उस्मानिया के बाद अब जादवपुर यूनिवर्सिटी की बारी, राष्ट्रवादी उभार नहीं रुकेगा। जादवपुर यूनिवर्सिटी के कथित देश विरोधी नारों पर शुभेंदु अधिकारी का कड़ा संदेश, कहा कैंपस में ड्रग्स की जांच के लिए ड्रोन इस्तेमाल होंगे। शुभेंदु अधिकारी के वंदे मातरम कार्यक्रम के दौरान जादवपुर यूनिवर्सिटी के गेट बंद, सड़क पर भी आवाजाही रोकी गई। टीएमसी छात्र कार्यक्रम में ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, बोली एसआईआर के जरिए वोट लूटा, हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। ममता का केंद्र और पुलिस पर निशाना, कहा सत्ता के दम पर चुनाव हाईजैक किया, अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सवाल। टीएमसी छात्र कार्यक्रम में अभिषेक बनर्जी का हुंकार, बोले जब तक मैं मरा नहीं तब तक हारा नहीं, एजेंसियों की कार्रवाई से नहीं झुकेंगे। अभिषेक बनर्जी ने सीबीआई ईडी समेत सभी एजेंसियों को चुनौती दी, कहा जितनी ताकत लगानी है लगा लो, हम जॉय बांग्ला और जय ममता बोलते रहेंगे। सीएम फडणवीस की पहल से तिब्बत में फंसे कैलाश मानसरोवर के 37 श्रद्धालु सुरक्षित रवाना, सागर से काठमांडू की यात्रा शुरू। मुंबई करों पर महंगाई की मार, 1 सितंबर से तबेले का दूध 9 रुपए हुआ महंगा, 93 रुपए की जगह 102 रुपए लीटर मिलेगा। रिएक्शन प्लस मामले में सिप्ला पर बड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र एफडीए ने पुणे सीएनएफ का ड्रग लाइसेंस निरस्त किया। दवाओं के स्टॉक रिकॉर्ड में गड़बड़ी और मिस ब्रांडिंग पर सिप्ला का लाइसेंस रद्द, रिएक्शन प्लस का 11,91,000 का स्टॉक जब्त। पीएम नरेंद्र मोदी जैन अल्फा संघ रक्षा मंदिर मनाते दिखे, बच्चियों ने पीएम मोदी की कलाई पर राखी बांधी। बच्चियों के साथ पीएम मोदी का दिखा खास अंदाज, राखी के बाद पीएम ने बच्चियों के साथ हाईफाइव किया। महाकाल के प्रसाद पर बच्चे से पीएम मोदी की प्यारी बात, बोले पीएम मोदी अगली बार मेरे लिए महाकाल के प्रसाद लेते आना। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में बेटियों संग मनाया रक्षाबंधन, टाइप 1 डायबिटीज से जूझ रही बेटियों से बनवाई राखी। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने छात्राओं और एनसीसी कैडेट से राखी बनवाई, रक्षाबंधन के पावन पर की शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रवीन चव्हाण ने कल्याण डोंबिवली की हजारों महिलाओं के साथ मनाया रक्षाबंधन, महिलाओं ने राखी बांधकर स्नेह जताया। ओडिशा की महिलाओं पर रक्षाबंधन पर सीएम मोहन चरण मांझी का बड़ा तोहफा, सुभद्रा योजना की 5वीं किस्त जारी, 1,03,00,000 से ज्यादा महिलाओं को खाते में 5,000 रुपए। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने मनाया रक्षाबंधन, छात्राओं ने सेनाध्यक्ष कलाई पर राखी बांधी। आर्मी हाउस में 14 स्कूल की 38 छात्राओं ने मनाया रक्षाबंधन, स्नेह और सम्मान का संगम दिखा। आईआईटी दिल्ली में इंडिया 2047 समिट, सरकार की पहल में सामाजिक बदलाव के योगदान पर डॉक्टर रविन्द्रनाथ मुखर्जी को शशि थरूर ने नवाजा। दतिया में युवक के निकलते ही भरभराकर गिरी जर्जर दीवार, बाल बाल बची जान। पुणे सतारा हाईवे पर युवक की चाकू से कूदकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, आरोपित गिरफ्तार हुआ। धनबाद में आवारा कुत्तों का आतंक, 5 साल की मासूम पर झुंड ने हमला किया, नोच कर घायल किया। विशाखापट्टनम में 4 साल की बच्ची का आधी रात अपहरण, माता पिता के पास सड़क पर सो रही थी, सीसीटीवी में स्कूटर सवार युवक युवती बच्चों को ले जाते दिखे। ग्वालियर में डिलीवरी बॉय की गोली मारकर हत्या, 12 घंटे बाद भी आरोपित फरार, आक्रोश लोगों में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा, खड़े ट्रक से टकराई वॉल्वो बस, 1 की मौत, 36 यात्री घायल। रक्षाबंधन पर कुल्लू में बड़ा हादसा हुआ, ब्रेक फेल होने के बाद पहाड़ी से टकराई एचआरटीसी बस, 45 लोग घायल, घायलों में अधिकांश महिलाएं, चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। केरल के कुटियाट्टूर कन्नूर रूट पर चल रही बस में चढ़ते समय गिरने लगा बुजुर्ग यात्री, क्लीनर ने समय रहते संभाल कर बचाई जान। इंदौर में चलती बाइक पर अचानक युवक के हाथ से लिपट गया सांप, युवक ने चलती बाइक गिराकर बचाई अपनी जान। हिसार में हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मियों ने पुलिस पर कचरा फेंका, धक्का मुक्की हुई, कचरे के थैले सिर पर पटके। पुरानी गाड़ियों के लिए E10 पेट्रोल के वापस आने के बयान से पलटे बीपीसीएल चेयरमैन, एजीएम के बाद कहा था कि पुराने वाहनों के लिए कम इथेनॉल वाला पेट्रोल ऑफर कर सकती है कंपनी। थोक बाजार में चीनी, गुड़, गेहूं और खाने के तेलों की कीमतों में नरमी आने से त्योहारों से पहले महंगाई में मामूली राहत के आसार, जल्द ही रिटेल बाजार में भी कीमतों की कमी का दिख सकता है असर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 से पहले योगेश शर्मा होंगे नए राष्ट्रीय सलाहकार, ब्रिक्स सीसीआई चेयरमैन ने दी शुभकामनाएं। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद S&P ने बरकरार रखी भारत की BBB सोवरेन रेटिंग और स्टेबल आउटलुक, इस साल भारतीय इकोनॉमी के 6.6% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान। ब्लिंकिट, जेप्टो, डीमार्ट समेत कई रिटेल और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने तय की चीनी खरीदने की लिमिट, 1 महीने में 35.5% महंगी होने के बाद एक बार में केवल 2 से 5 किलो तक चीनी मिलेगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण के मुकाबले में 55% की बढ़ोतरी की, किसानों के लिए 6% आबादी भूखंड का प्रावधान भी दोबारा से लागू। सीआरई जीएआई ने यूपी रेरा के 4 महीने की एक्सटेंशन पॉलिसी का विरोध किया, शर्तों की वजह से ज्यादातर डेवलपर्स को फायदा न मिलने की बात कहते हुए पॉलिसी वापस लेने की उठाई मांग। इंडीड हायरिंग लैब हेल्थ केयर सेक्टर में नौकरियां बढ़ने और आईटी सेक्टर में सुस्ती आने का दावा किया, जुलाई में जॉब पोस्टिंग सालाना आधार पर 8.5% बढ़ने की जानकारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय ईवी बाजार का आकार 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपए का होने का दावा किया, इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर से इकोनॉमी और रोजगार दोनों को बड़ा सहारा मिलने का भरोसा। रेड सी की रिपोर्ट का खुलासा हुआ, जिम से निकलकर किचन तक पहुंच चुका है प्रोटीन का क्रेज, क्विक कॉमर्स पर प्रोटीन सप्लीमेंट्स के विकल्पों में 230% तक की बढ़ोतरी। 5वें महिला T20 एशिया का भारत पाकिस्तान महामुकाबला 5 सितंबर को दुबई में। इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू दिखाने पर पीसीबी की धमकी, इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट से हटने की चेतावनी। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड इजाफा, $729 बिलियन के पार पहुंचा आंकड़ा, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वृद्धि दर में आई गिरावट। सोने की चमक फीकी। लगातार तीसरे दिन 3,300 टूटा भाव। दिल्ली में 10 ग्राम 1,62,000 पर पहुंचा। डॉलर की मजबूती और मुनाफा वसूली से सोने चांदी पर दबाव। सोना 3 दिन में 4,700 और चांदी 5,000 रुपए सस्ती। 16 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म राणा वाली। इंटरनेशनल एक्टर आर्नोल्ड वॉसलू भी अहम भूमिका में दिखेंगे। अनुपम खेर की कॉमेडी फिल्म घोसले का घोसला 2 रिलीज। लगभग 20 साल बाद सीक्वल। आलिया भट्ट की स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा ओटीटी पर रिलीज हो गई है नेटफ्लिक्स पर। सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद ओटीटी पर धमाल मचाएगी बॉबी देओल की बंदर। Zee5 पर स्ट्रीम। मॉडर्न अर्बन हाउसिंग सोसाइटी पर बेस्ड चुंबक भी आज से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध। विवाह के बाद रामदेव की कंगना से रिश्ते सुधारने की पहल। रक्षाबंधन पर भेजा मिठाई और खास तोहफा। रामदेव के तोहफे पर कंगना ने जताया आभार। रक्षाबंधन पर बोली, त्योहार भूल चूक माफ करने का होता है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टॉक्सिक की कमाई में 64% की गिरावट। नेगेटिव रिव्यू का असर। पहले दिन से 3 गुना कम कमाई हुई। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 137 करोड़। कृति सना के कपड़ों पर दिए बयानों से पलटी कंगना। बोली, उन्हें कौन रोक रहा है, जो मन करे पहने। पहले कहा बिकनी में राखी क्यों बांधी। धर्म बदलकर राखी पर मक्का पहुंची एक्ट्रेस। बुरके में बदला हुलिया। रोते हुए अल्लाह से जेंजी के लिए मांगी नौकरी की दुआ। यूक्रेन युद्ध में ब्रिटेन की भूमिका को रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने बताया बेहद नकारात्मक। एक दिन पहले रूसी सरकार ने ब्रिटेन को दी चेतावनी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की तरफ से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों पर साधा निशाना। आर्थिक कदमों को बताया आतंकवाद। यह अवैध और निंदनीय है। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम का 89 वर्ष की आयु में निधन। क्राउन प्रिंस हैकॉन बने नॉर्वे के नए किंग। पिता के निधन के बाद संभाली नॉर्वे की गद्दी। हेराल्ड पंचम के निधन पर दुनिया भर में दुख जताया गया नेताओं की तरफ से। चीन से फिर टकराया नया समुद्री तूफान। चीन के जेजियांग प्रांत में सोजेल तूफान के कारण हो रही भारी बारिश। प्रशासन में उच्चतम स्तर की इमरजेंसी लागू। पुर्तगाल समेत यूरोप और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के कई देशों में देखा गया चंद्रग्रहण। ग्रीनलैंड आइसलैंड और स्पेन समेत कई देशों में 2 हफ्ते पहले हुआ था पूर्ण सूर्य ग्रहण।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: बहुत टायर्ड हो गई.
2: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स.
3: लायन डेट नट बाइट्स.
4: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय. मुल्तानी खू का कॉफ सिरप.
5: Hey Maya, let's go. The new BE6 Sportage.
6: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा. अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया.
7: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद. लायन कश्मीर हनी,
6: असली शहद असली स्वाद.

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश तक विपक्षी दल चीनी, गुड़, प्याज, सब्जी के दामों को लेकर तरह तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई विरोध का प्रदर्शन ऐसा कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को एक एक किलो चीनी उपहार के रूप में भेंट कर दी।
1: भाई साहब की शक्कर को तोहफे के रूप में आपने क्यों चुना, क्योंकि आमतौर पर लिफाफा दिया जाता है बहनों को।
2: शक्कर के भाव जो किसी जमाने में 20-25-30 थे, आज 70-75 हो गए।
0: शक्कर के भाव से पूरा हिंदुस्तान परेशान था। इस बीच विपक्ष ने तमाम आंकड़े पेश करने शुरू कर दिए। चीनी एक महीने में 20%, गुड़ 15 दिन में 25%, चाय पत्ती 2 महीनों में 20%, प्याज 1 महीने में 45%, हरी सब्जियां 2 दिनों में 30%, धनिया 15 दिन में 100%, और ये सिलसिला थमता ही नहीं। हाँ, प्याज की महंगाई का उपाय सरकार ने जरूर तलाश लिया। नासिक से 450 टन से ज्यादा प्याज लेकर प्याज एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच चुकी है। सरकार की तरफ से सड़क मार्ग से प्याज की सप्लाई चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे दूसरे बाजारों तक की जा रही है। लेकिन मामला सिर्फ प्याज की महंगाई का नहीं, त्योहारी सीजन में चीनी की महंगाई का भी मुद्दा है। विपक्ष चीनी की महंगाई को लेकर एथेनॉल वाला डबल अटैक कर रहा है।
3: ये बात हो रही है और महंगी हो गई चीनी, वही सोचिए मिलावट के लिए कानून होता है, क्या मिलावट नहीं कर सकते? लेकिन सरकार तो पेट्रोल में मिलावट कर रही है, एथेनॉल का लाभ, चीनी महंगी का लाभ, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बहुत सोची समझी रणनीति के तहत कुछ लोगों को लाभ पहुंचा करके, क्योंकि चुनाव आने वाला है, उसे चंदा तो नहीं लिया जाएगा।
4: चीनी घोटाला तो जरूर हुए हैं, चीनी घोटाला होने के चलते और बाजार में सारे चीनी के दाम में आग लग चुके हैं, तो सारे गन्ने जब इथेनॉल के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे तो चीनी बनाने के लिए गन्ने कहाँ मिलेगा।
0: हालांकि चीनी की महंगाई का एथेनॉल कनेक्शन सरकार पहले ही खारिज कर चुकी है, पर महंगाई का शोर सिर्फ चीनी तक सीमित नहीं। पिछले साल इसी अगस्त महीने की तुलना में देखा जाए तो अगर 41 रुपए किलो की चीनी 63 रुपए किलो है तो 40 रुपए का गुड़ 66 रुपए किलो है, 250 रुपए किलो की चाय पत्ती 276 रुपए किलो है, 27 रुपए किलो वाला प्याज 55 रुपए किलो है, 140 रुपए का लहसुन 250 रुपए किलो में है, पेट्रोल 94.77 रुपए से 7.35 रुपए बढ़कर 102.12 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, डीजल 14.53 रुपए महंगा होकर 102.15 रुपए प्रति लीटर का मिल रहा है, सीएनजी का दाम 76.09 रुपए से 6 रुपए ज्यादा बढ़कर 83.09 रुपए हो चुका है, रसोई गैस 853 रुपए से 89 रुपए बढ़कर 942 रुपए। वैसे चीनी की महंगाई पर विपक्षी दलों के आरोपों के बीच चीनी उत्पादक संघ ने दावा किया है कि अगले हफ्ते तक चीनी के दाम स्थिर हो जाएंगे, लेकिन प्याज और बाकी सब्जियों के दाम की अस्थिरता का इंतजार देश को अब भी बना हुआ है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

अभी भी बना हुआ है नई झील के फटने का खतरा। ओवरफ्लो से नेपाल की भोटे कोशी नदी में लगातार बढ़ रहा है पानी। हाई अलर्ट पर नेपाल, मौत का आंकड़ा 587 पार।

नेपाल में हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत ने भेजी तकनीकी सामानों के साथ रेस्क्यू टीम। 10 टन राहत सामग्री की तीसरी खेप लेकर विमान पहुंचा काठमांडू। आज न्यूयॉर्क में कार्यक्रम से पहले इस कॉल में मोहन भागवत का संबोधन का दुनिया में अभी बहुत सारे टकराव और विरोधाभास। मेयर बमदारी ने किया है संघ प्रमुख का विरोध। रंजित बालियान की हत्या पर यूपी में सियासी जंग। गायक के पिता से मुलाकात के बाद बोले अखिलेश, आज नहीं तो कल इंसाफ होगा जब बदलाव होगा। जयंत चौधरी का पलटवार, मृतक की जाति तलाशना संवेदनहीनता। और दिल्ली एनसीआर में सीएनजी फिर हुई महंगी, वाहन चालकों पर बड़ा बोझ। 3.89 रुपए प्रति किलो की सीधी बढ़ोतरी। दिल्ली में अब 86.98 रुपए प्रति किलो दाम। सुबह 6 बजे से नया रेट लागू हुआ। इस साल सीएनजी की 5वीं बढ़ोतरी।

0: इस मलबे और मिट्टी के नीचे ये पूरा बाजार का हिस्सा जा चुका है। चाहे आप छोटी सी एक चाय की दुकान को देख लें, कैनाइन स्क्वाड के भी दस्तों को इसमें शामिल देख सकते हैं, क्योंकि आगे भी हमने देखा कई स्निफर डॉग्स यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि रेस्क्यू एफर्ट्स में काम कर रहे हैं।
1: सारे हेलीकॉप्टर ठप पड़े हैं क्योंकि मौसम अचानक से, बीती रात लगातार बारिश हो रही है और अगर ऐसा हुआ तो सर्च ऑपरेशन में, बचाव कार्य में काफी देरी हो सकती है।

मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। आज चौथा दिन है नेपाल में तबाही का, और इस तबाही के बाद सबसे बड़ी चुनौती ये मौसम है मेरे पीछे, जहां बादल लगातार बरस रहे हैं। बीती रात से हो रही इस बरसात के चलते राहत बचाव कार्य में बाधा आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। ये सीधा बुलेटिन आप देख रहे हैं नुआकोट से। नुआकोट वो आखिरी शहर पहाड़ों पे नीचे आते हुए जो पूरी तरह तबाह हो गया। इस नुआकोट का धुंडे इलाका जहां पहले शहर गुलजार था, लेकिन अब सब कुछ मलबे में दबा हुआ है। स्थिति ऐसी है कि लगातार राहत बचाव कार्य में अब मौसम बाधा बन रही है। बीती रात दरअसल जब चेतावनी आई, उस चेतावनी के बाद भागी इसलिए देखा गया कि भटकोशी का स्तर बढ़ेगा, त्रिशूली का स्तर बढ़ेगा, नारायणी का स्तर बढ़ेगा। लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले जो जानकारी आई है कि इन नदियों का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से नीचे है, यानी चीन की तरफ से छोड़ा गया कल जो पानी जो जलाशय टूट करके नीचे आया, वो सेकेंड दूसरे दौर की उस तबाही से नेपाल को बचा लिया। वो इसलिए क्योंकि समय रहते जानकारी थी, उस जानकारी के चलते लोगों को इस पूरे इलाके से बाहर निकाला गया था। हम जब यहीं पर थे, अचानक से सायरन बजा, अचानक लोगों को अलर्ट किया जाने लगा, लोग यहां से छोड़कर जाने लगे। लेकिन तबाही का जो मंजर अब तक नेपाल ने देखा है, उसे उबरने में समय लगेगा, क्योंकि राहत बचाव कार्य में कई चुनौतियां हैं। इस बीच नेपाल सरकार ने फैसला लिया है कि वो उन देशों के तकनीकी रूप से विशेषज्ञ टीमों को यहां आने देगा जिनकी दक्षता है टनल ऑपरेशन में, सुरंगों के बीच जाकर के लोगों को बचाकर निकालने में, और उसी के साथ साथ जो शव बरामद हुए हैं उनके डीएनए, उनके फॉरेंसिक को लेकर के। नेपाल के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं, रास्ता मुश्किल है, आज अभी चौथा दिन है और ऊपर से अब मौसम भी चुनौती ले रहा है। तो इन सब के बीच कई सारे घटनाक्रम हुए हैं। मरने वालों का आंकड़ा 600 के करीब पहुंचा है, जबकि सैकड़ों अभी भी लापता हैं। लापता लोगों के लिए हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, जहां पर लोग अपनों की जानकारी दे रहे हैं। इसमें कई सारे विदेशी नागरिक हैं, उन विदेशी नागरिकों में भारतीय नागरिक हैं जिनकी जानकारी बहुत सारी अब तक नहीं मिल पाई है। जिन्हें बचाया गया है उन्हें उनके गंतव्यों की ओर रवाना किया जा रहा है, लेकिन जिनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है उन्हें लगातार खोजने की कोशिश की जा रही है। जब जंग जिंदगी से हो और ऐसे में लड़ाई वक्त के साथ हो, और ऐसे में मौसम अगर चुनौती बन जाए, तो समझिए किसी देश पर क्या बीतेगी। और खासकर तब जब नेपाल की सेना, नेपाल की पुलिस, आर्म पुलिस, सिविल डिफेंस, स्काउट, वो तमाम वॉलंटियर अपनी जान की बाजी लगाकर उन तमाम इलाकों से हर किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। न वो नागरिकता देखते हैं, न ये देखते हैं कि सामने कौन है। वो एक फर्ज है, वो फर्ज ये है कि हर वो इंसान जो इस समय नेपाल में है, उस मुश्किल में है, उसे वहां से बचा करके निकाला जाए। तो बड़ी खबर ये कि जो घटकोशी और त्रिशूली नदियों का स्तर बढ़ रहा था, वो अब खतरे के निशान से नीचे है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि 48 घंटे के अंदर जो चेतावनी नेपाल चीन की ओर से आई है, जिसमें दो नदियों के ऊपर, खासकर तिब्बत के इलाके में जो नदियां हैं वहां पर लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख जो क्यूबिक मीटर पानी है वो जमा हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो वो फिर एक बार जलाशय के बांध को तोड़ेगा, और तोड़ेगा तो पानी नीचे आएगा और उसके बाद फिर एक बार तबाही आ सकती है। नेपाल पिछली बार से ज्यादा तैयार है, नदियों के किनारे रहने वालों ने 50 मीटर की दूरी पर तैयारी करा लिया गया है, और इस बात की तैयारी ऐसी है कि नारायणी से लेकर के गुप्तुपा से लेकर नेपाल तक 1200 लोगों की टीम नदी के किनारे तैनात है, जिनकी ड्यूटी ये है कि नदियों के किनारे पर लोग नहीं रह पाए, निकाल लिया जाए, इवैक्यूएट करा लिया जाए, और हर पल वॉर्निंग के साथ साथ राहत बचाव कार्य के लिए जो लोग इवैक्यूएट कराए गए हैं उन तक मदद पहुंचाए। मेरे पीछे आपने देखा है कि रेड क्रॉस की गाड़ी जो है वो भी गुजरती हुई जा रही है। दुनिया भर के अलग अलग मुल्क नेपाल की मदद के लिए आए हैं। कोई मानवीय मदद दे रहा है, कोई आर्थिक मदद दे रहा है, तो कोई अपने विशेषज्ञों की टीम को नेपाल भेजना चाहता था। नेपाल सरकार ने पहले कहा कि 2015 की त्रासदी को देखते हुए हम दुनिया के सभी मुल्कों को न्योता नहीं दे सकते ताकि कोऑर्डिनेशन की कमी हो। लेकिन अब ये खबर ये है कि अब भारत, चीन, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया से विशेषज्ञों की टीम नेपाल की मदद करने के लिए इस राहत बचाव कार्य अभियान में आएगी। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस घाटी से जो इस समय बादलों से ढका हुआ है, तेज बरसात है, तो आखिर वहां तक मदद कैसे पहुंचेगी।

0: पड़ोसी देश नेपाल इस सदी की सबसे बड़ी तबाही से गुजरा है। 26 अगस्त को आए प्रलय ने नेपाल के त्रासदी प्रभावित इलाकों का भूगोल बदल दिया है। जहां बाजार था वहां मलबा है, जहां आशियाना था वहां पत्थरों का ढेर है। नेपाल के फ्लैश फ्लड ने तिब्बत बॉर्डर से लेकर रसुआ, त्रिशूली, नुवाकुंड तक की ज्योग्राफी बदल दी है। तबाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सैकड़ों शव बरामद की जा चुके हैं, हजारों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, कई परिवार अपनों की तलाश में हैं, जबकि दुर्गम इलाकों तक पहुंचना राहत टीमों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। बाढ़ और मलबे के बीच फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। जिन इलाकों का सड़क संपर्क टूट गया है वहां हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। लेकिन नेपाल के सामने सबसे बड़ा सवाल अब भी खतरे का है। ग्लेशियर और मलबे से बनी झीलों में पानी बढ़ने की वजह से दोबारा बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। इस तबाही ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। कई परियोजनाओं में मजदूरों के फंसे होने की आशंका है और सुरंगों में तलाश अभियान चलाया जा रहा है। यानी नेपाल में एक तरफ जिंदगी बचाने की जंग है तो दूसरी तरफ नई बाढ़ का खतरा चुनौती बढ़ा रहा है। नेपाल में तबाही का यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। रेस्क्यू टीमें मलबे में जिंदगी तलाश रही हैं। परिजनों को अपनों के लौटने का इंतजार है और प्रशासन की सबसे बड़ी कोशिश है कि किसी नई आपदा से पहले लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा सके। आज तक ब्यूरो।
1: इन मुश्किलों के बीच नेपाल सरकार की आखिर तैयारियां क्या हैं उसको लेकर के ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं। पंकज दास हमारे सहयोगी काठमांडू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, पहले अब सरकार ने ये कम से कम अनुमति दे दी इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप ने कि हम कुछ देशों को आने देंगे जिनकी दक्षता है। सरकार की आगे तैयारी क्या है क्योंकि मौसम ऊपर खराब है। हेली ऑपरेशन अभी मैं देख रहा हूं, एक कोई बड़ा सा शायद Mi-17 हेलीकॉप्टर है जो यहां पर आ रहा है। राहत बचाव कार्य में जो मुश्किलें आ रही हैं, इन चुनौतियों से आगे लड़ने की क्या तैयारी है?
2: सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि कल रात को ही जो भारत की टेक्निकल टीम है रेस्क्यू में, खासकर जो टनल वाला इलाका है जहां लोग फंसे हैं, सैकड़ों लोग फंसे हैं, जो हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स चलते हैं इन इलाकों में, वहां पे उनको निकालने के लिए कल नेपाल सरकार ने जो है इंडिया से रिक्वेस्ट किया और तत्काल कल रात को ही जो कल शाम को भारत से टेक्निकल टीम यहाँ काठमांडू पहुंच गई है और आज से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। लेकिन जैसा आपने बताया कि मौसम की खराबी की वजह से अभी शुरू नहीं हुआ हो पाया, सारे लोगों को स्टैंड बाय में रखा गया है। जैसे ही मौसम थोड़ा अनुकूल होगा, हेलीकॉप्टर इस एरिया में जाने के लिए उनको परमिशन मिलेगा, वैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती जो सरकार के सामने है वो ये है कि एक तो जो डेड बॉडी मिल रहे उनको रखने का जगह नहीं है। मैं इस वक्त यहाँ पे किसी हॉस्पिटल में हूँ जहाँ काफी भीड़ लगे, लोग अपने को घूमने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग उसमें नाम लिस्ट जो यहाँ लगा हुआ है वो नाम देखना चाह रहे हैं, इसमें नहीं है कि जो मर्चरी है वहाँ जाने की, वहाँ जाकर अपने को खोज रहे हैं। उनके डेड बॉडी को रखने के इतने बड़े तादाद में जो डेड बॉडी मिल रहे हैं उनको रखने के लिए जगह नहीं होने के कारण सरकार के सामने ये परेशानी है कि इसको कैसे, जब तक उनकी पहचान नहीं हो जाती है, जब तक उनके लोग अपने शवों को ले नहीं जाते हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाए। दूसरा, जो फ्लड के लिए जो दुनिया भर से यहाँ पे राहत सामग्री आ रही है उसको वितरण कैसे किया जाए, इसको लेकर भी थोड़ा मैन पावर का भी कहीं ना कहीं एक कमी दिखाई दे रहा है। सरकार अपने तरफ से पूरा प्रयास तो कर रही है लेकिन रेस्क्यू में
1: नेपाल वो देश जो हर साल लाखों सैलानियों का स्वागत करता है, किसने सोचा था कि एक ऐसा वक्त आएगा जब उसके पास लोगों के शव रखने की जगह कम पड़ जाएगी। आप बने रहे हमारे साथ, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो ऐसे में दुनिया के तमाम देश नेपाल की मदद के लिए सामने आए हैं। भारत की ओर से बीती रात ग्लोब मास्टर एक बड़ा हरक्यूलिस जहाज नेपाल में मदद के लिए पहुंचा है। न सिर्फ वो मदद जो नेपाल में राहत बचाव कार्य के लिए चाहिए बल्कि सुरंगों में विशेष दक्षता के लिए टेक्निकल टीम भी नेपाल पहुंच चुकी है। बीती रात ग्लोब मास्टर भारत की ओर से टेक्निकल टीम, विशेषज्ञों की टीम पहुंची है। नेपाल ने जैसे ही इच्छा जताई, मदद की उम्मीद की, दुनिया के कई सारे देश मदद के लिए आ गए हैं और भारत सबसे पहला पड़ोसी देश जो अपनी टेक्निकल टीम को यहां भेज चुका है और वो टनल में यानी जिन सुरंगों में अभी भी लोगों के लापता होने की बात कही जा रही है वहां जाकर के उनकी विशेषज्ञों की टीम नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम करेगी ताकि जल्दी से जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, तो उसकी जिंदगी के साथ ये जंग दरअसल जंग वक्त के साथ भी है। इसी के साथ राहत बचाव सामग्री भी भारत से लगातार खेप तीसरी खेप भी पहुंची है, और ऐसे में मदद के लिए तमाम दुनिया के देश कोई आर्थिक मदद दे रहा है, कोई संसाधनों भेज रहा है, कोई राहत बचाव कार्य सामग्री भेज रहे। पंकज दास हमारे साथ लगातार बने हुए। पंकज, जो विशेषज्ञों की टीम है वो अब अपना काम कब से शुरू करेगी, क्योंकि अभी जो चुनौती है वो मौसम है, तो क्या तैयारियां हैं, आखिर उनको कहां से लगाया जाएगा और किस इलाके से ये अब ऑपरेशन शुरू किया जाएगा?
2: इन सारे टीमों को जो भारत से टेक्निकल टीम आई है, उसके साथ में नेपाल की जो रेस्क्यू टीम है, ये सभी जो है त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्टैंड बाई है। जैसे ही मौसम में थोड़ा सुधार होगा और उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा एटीसी की तरफ से, वैसे ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। सबसे पहले जो टनल है, करीब 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो बर्बाद हो गए हैं इस सैलाब में, तो वहाँ अब हाइड्रो पावर में एक टनल होता है जहाँ पे मजदूर जो है वो फंसे हुए हैं, तो वहां से ही स्टार्ट किया जाएगा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसे इसलिए से कल कई सारे लोगों को बचाया जा सका है। लेकिन कई सारे ऐसे हैं जैसे लॉन्ग टर्म में पिछले 4 दिन से वहाँ मालूम है कि 18 मजदूर फंसे हैं, लेकिन ना वहाँ हेलीकॉप्टर लैंड कर पा रहा है, एयर ड्रॉप किया जा रहा है। ऐसे में अब टेक्निकल टीम आई है, तो इन सब जगहों पर जहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वहाँ सब जगह टनल है, वहीं से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है आज से शुरू किया जाएगा।
1: ठीक है पंकज, आप बने रहे हमारे साथ। लेकिन खतरा क्या नेपाल पर टल चुका है? वो इसलिए क्योंकि जिन इलाकों से ये सैलाब की शुरुआत हुई उन इलाकों में कई सारे जलाशय बने हुए हैं। बीती रात से भटकोशी और त्रिशूली नदी का जलस्तर बढ़ता रहा, सरकार चेतावनी देती रही, वो कहती रही कि नदियों के किनारे से लोग चले जाएं। जिस शहर में मैं हूं यहां से लोगों को हमने जाते हुए देखा, हम सबको ये शहर छोड़ना पड़ा था। आज कुछ लोग वापस आए हैं क्योंकि पानी का स्तर घटा, लेकिन खतरा टला नहीं है। खासकर अगले 2 दिन जब तक जलाशय में ये माना जा रहा है कि कुल 50 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा हो सकता है, और उसने अगर अपनी सीमा तोड़ी तो न जाने सैलाब का क्या मंजर नेपाल फिर से देखेगा। देखिए विशेष रिपोर्ट, कैसे नेपाल पर अभी भी खतरा टला नहीं है।
0: नेपाल में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन ने ऐसा कहर बरपाया कि कई इलाके मलबे में तब्दील हो गए। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 2000 लोग अब भी लापता है। हालांकि राहत की बात यह है कि अलग अलग देशों के कई विदेशी नागरिकों को सुरक्षित खोज लिया गया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक 33 देशों के 632 विदेशी नागरिक इस आपदा से प्रभावित हुए, इनमें से 121 लोगों को खोज निकाला गया है, लेकिन 511 विदेशी नागरिक अब भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं नेपाल आपदा प्राधिकरण के मुताबिक कुल 1924 लोगों का अब भी कोई पता नहीं चल पाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच नेपाल के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। भोटे कोशी नदी के ऊपरी हिस्से में जलस्तर तेजी से बढ़ने की खबर है। चीनी अधिकारियों से मिली जानकारी के बाद रसुआ जिला प्रशासन अलर्ट पर है। नेपाल के बाढ़ पूर्वानुमान महाशाखा और आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है। त्रिशूली नदी के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की गई है। मुगलिंग तक नदी किनारे रहने वाले लोग, यात्री और राहत कर्मी खास तौर पर सतर्क रहें। यानी एक तरफ मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है, तो दूसरी तरफ पानी का बढ़ता स्तर नई आफत का संकेत दे रहा है। नेपाल की सेना, सशस्त्र पुलिस बल, नेपाल पुलिस, स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मी लगातार राहत और बचाव अभियान में जुटे हैं। घायलों को इलाज मुहैया कराया जा रहा है, प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना और फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना है। नेपाल सरकार का कहना है कि पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए जरूरत के मुताबिक विदेशों से मदद ली जाएगी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि आपदा का असर देश के सिर्फ कुछ हिस्सों में है, इसलिए नेपाल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और पर्यटकों के लिए खुला है। लापता और फंसे विदेशी नागरिकों की जानकारी जुटाने के लिए नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी बनाया है। इसके जरिए अलग अलग देशों के दूतावासों के साथ लगातार संपर्क और समन्वय किया जा रहा है। नेपाल में तबाही का मंजर अभी थमा नहीं है। मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है। हजारों परिवार अपनों की सलामती की उम्मीद लगाए बैठे हैं, और अब भोटे कोशी और त्रिशूली में बढ़ता जल स्तर एक नई चुनौती बन गया है। यानी नेपाल में इस वक्त रेस्क्यू भी जारी है और खतरे की घंटी भी बज रही है। आज तक ब्यूरो।
1: ग्राउंड जीरो से आज तक की कवरेज लगातार जारी है, पल पल के हम अपडेट आपको दे रहे हैं। नेपाल में राहत बचाव कार्य के साथ जो तस्वीरें हैं वो भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। बुलेटिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एक श्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
2: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: आज तक ना होता तो हमारी बात देश दुनिया तक नहीं पहुंचती।
3: हम लोग को बड़े चैनल का सहयोग नहीं मिला था, हम लोग गरीब छात्र लोग हैं, तो आज आप लोग का सहयोग मिला है तो पूरा भारत और पूरा दुनिया में यहाँ की आवाज गूंज रही है।
2: खबरों के साथ पक्षपात नहीं।
4: 19 साल के छात्र साहिल लजा पे दावा किया, उन पर सुरक्षा बलों ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया जिससे उनकी एक आंख की रोशनी जाने की नौबत आ गई।
2: हर बात देश के सामने।
5: अंजना मैम, सबसे पहले तो हम लोग आवाज को बुलंद किए इसके लिए आपके पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं।
2: मुद्दा कोई भी हो, सोए हुए सिस्टम को जगाता है आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: नेपाल आपदा ने सैकड़ों परिवारों को जीवन भर का दर्द दे दिया। इस आपदा में अभी भी लापता लोगों की खोजबीन जारी है। त्रासदी की चपेट में कई भारतीय परिवार भी आए। इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो नेपाल में रोजी रोटी के लिए गए थे, कई ऐसे भी हैं जो अमेरिका से आए और नेपाल घूमने चले गए थे। नेपाल के जल प्रलय में गुजरात के विमल पटेल भी लापता हैं। तिब्बत नेपाल सीमा पर चीन के इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर जब आपदा आई तो विमल पटेल भी अपनी पत्नी के साथ वहां मौजूद थे, लेकिन उस तबाही के बाद विमल और उनकी पत्नी का कुछ पता नहीं चला।
1: जो लापता हुए वो मेरा छोटा भाई और उसकी वाइफ है, उसका नाम है विमल पटेल और उसकी वाइफ का नाम है जयमीना बेन पटेल। वो नेपाल गए हुए थे, वहां से वो चाइना के लिए वो इमिग्रेशन करना पड़ता है ना, तो उसके लिए वो इमिग्रेशन के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद कोई अता पता नहीं है उसका। मानसरोवर जाने के लिए इमिग्रेशन के लिए खड़े हुए थे,
2: लेकिन
1: वो कल सुबह गए थे मानसरोवर के लिए, लेकिन इमिग्रेशन में जब गए उसके बाद उसका कोई कांटेक्ट एजेंट से भी नहीं हुआ और हमारे से भी नहीं हुआ।
0: अब परिवार में मातम है, परिजन परेशान है, खोजबीन के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं लेकिन कोई खबर नहीं मिल रही। मासूम बच्चों को पता भी नहीं है कि उसके माता पिता के साथ नेपाल में क्या हुआ।
1: मालूम है वहाँ पे जो नेपाल के टूरिज्म है उसके नमस्ते नेपाल, उसके थ्रू वो नेपाल में घूमने गए थे, उसके बाद वहाँ से वो मानसरोवर के लिए जाने वाले थे। वो लीप होलीडे है उसमें मानसरोवर जाने के लिए जाने वाले थे। उसका लड़का है वो हमारे पास है, लेकिन अभी तक हमने उसको कुछ बताया नहीं है कि उसके माँ बाप ऐसे है ऐसे, कुछ अभी तक उसको कुछ मालूम ही नहीं है।
0: पटेल परिवार के अलावा गुजरात के तीन और लोग भी नेपाल में लापता हैं। ये लोग नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले थे, लेकिन अब संपर्क नहीं हो पा रहा। सूरत के आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम में अफसर ने बताया कि उनमें से कुछ लोग अमेरिका से आए थे।
3: स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर द्वारा हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार तीन यात्री मिसिंग है जो सूरत के बताए जाते, और जो हमें प्राप्त माहिती के अनुसार उसमें से दो USA के निवासी है, एक मुंबई के निवासी है। उनके किसी पहचान वाले गीताबेन ने ये सूचना दी है, उसके अनुसार ये स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से हमें ये सूचना मिली है। जो सूचना है उसके अनुसार ये तीनों यात्री पिछले 24 आवर्स से मिसिंग है।
0: सूरत के इस आपदा कंट्रोल रूम में लगातार लोग फोन कर रहे हैं, अपनों के बारे में जानकारियां मांग रहे हैं, लेकिन आपदा कंट्रोल रूम भी वही जानकारी दे पाता है जो उनके पास मौजूद रहती है। नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर जाने के लिए चीन के इमिग्रेशन चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है, लेकिन चीन का वो चेक पोस्ट भी पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। वहाँ जो लोग चेकिंग के लिए आए थे उनकी कोई खोज खबर नहीं है। आज तक ब्यूरो

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

झील के फटने का खतरा, ओवरफ्लो से नेपाल की भोटे कोशी नदी में लगातार बढ़ रहा है पानी। हाई अलर्ट पर नेपाल, मौत का आंकड़ा 587 के पार। नेपाल में हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत ने भेजी तकनीकी सामानों के साथ रेस्क्यू टीम। 10 टन राहत सामग्री की तीसरी खेप लेकर विमान पहुंचा काठमांडू। आज न्यूयॉर्क में कार्यक्रम से पहले इस कॉल में मोहन भागवत के संबोधन का, दुनिया में अभी बहुत सारे टकराव और विरोधाभास, मेयर ममदानी ने किया है संघ प्रमुख का विरोध। सिंगर अंकित बालियान की हत्या पर यूपी में सियासी जंग, गायक के पिता से मुलाकात के बाद बोले अखिलेश, आज नहीं तो कल इंसाफ होगा जब बदलाव होगा। जयंत चौधरी का पलटवार, मृतक की जाति तलाशना संवेदनहीनता। और दिल्ली एनसीआर में सीएनजी फिर महंगी, वाहन चालकों पर बड़ा बोझ, 3.89 रुपए प्रति किलो की सीधी बढ़ोतरी। दिल्ली में अब 86.98 रुपए प्रति किलो का दाम, सुबह 6 बजे से नया रेट लागू, इस साल सीएनजी में पांचवी बढ़ोतरी।

0: तो त्रासदी से जूझ रहे नेपाल से आज तक की कवरेज लगातार जारी है। मैं इस समय नुवाकोट में हूँ, वो शहर जो मलबे की चपेट में आया। शहर खाली हो गए, लोगों को सुरक्षित इलाकों की ओर ले जा रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर यह कि नेपाल में राहत बचाव कार्य में और भी तेजी आएगी, खासकर उन हाइड्रो प्रोजेक्ट, उन परियोजनाओं के पास जहां सुरंगों में लोग अभी भी फंसे हुए हैं। नेपाल की मदद की अपील के बाद भारत ने अपने विशेषज्ञों की टीम नेपाल भेजी है। बीती रात भारतीय वायुसेना के जहाज से नेपाल में भारत के टनल रेस्क्यू एक्सपर्ट जो है उनकी टीम काठमांडू पहुंच चुकी है। हालांकि इस समय मौसम खराब है और जैसे मौसम ठीक होता है वो काठमांडू से एयरलिफ्ट करके उन इलाकों तक पहुंचाए जाएंगे जहां नेपाल की सेना, नेपाल की पुलिस मिलकर के बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। पूरी मुस्तैदी के साथ नेपाल की सेना पूरी बहादुरी के साथ उन टनल में उन जगहों पर जाकर के लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन जितनी बड़ी ये त्रासदी है, जितना बड़ा वो इलाका है, ऐसे में जितनी मदद हो उतनी कम हो जाती है। और ऐसे में नेपाल ने अब दुनिया के तमाम मुल्कों से भी कहा है वो अपने विशेषज्ञों की टीम भेजे। भारत ने सबसे पहले पड़ोसी ने अपने विशेषज्ञों की टीम भारतीय वायुसेना के विशेष जहाज से यहाँ रवाना कर दिया है। वो अपनी एक्सपर्ट स्किल्ड इक्विपमेंट्स के साथ यहाँ पहुंचे हैं, जिसके बाद अब इस राहत बचाव कार्य में तेजी आएगी। जैसे ही मौसम शांत होगा विशेषज्ञों की टीम वहां पहुंचेगी। लेकिन यही मौसम इस राहत बचाव कार्य में बाधा बन रही है। हेलीकॉप्टर्स की रफ्तार रुक गई है, वो पंखे रुक गए हैं, क्योंकि जब तक ये मौसम साफ नहीं होगा, बारिश ठीक नहीं होती, मलबा ऐसे ही भीगता रहेगा, वहां नमी बढ़ती जाएगी, राहत बचाव कार्य की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। नेपाल में त्रासदी का चौथा दिन है और चौथे दिन देखिए मौसम जिस कदर खराब हुआ है, जिसके बाद से सर्च रेस्क्यू इवैक्यूएशन जो ऑपरेशन है उसे रोकना पड़ा है। इसी के साथ साथ भटकोशी और त्रिशूली नदियों का जो जलस्तर है वो भी बढ़ा है। मैं जहां पर इस हेलीपैड पर हूं, सारे हेलीकॉप्टर ठप पड़े हैं क्योंकि मौसम अचानक से, बीती रात से लगातार बारिश हो रही है और अगर ऐसा हुआ तो सर्च ऑपरेशन में, बचाव कार्य में काफी देरी हो सकती है। अब यहां पर जब रेस अगेंस्ट टाइम है, ऐसे में मौसम भी इम्तिहान ले रहा है, परीक्षा ले रहा है, और ऐसे खराब मौसम में ये जो हेलीज हैं ये उड़ान नहीं भर सकते। दूसरी तरफ जो लोग हैं, जो अपनों की तलाश में इंतजार में लोग हैं, उनका जमावड़ा इन कैंपों में लगातार बना हुआ है। वो इंतजार कर रहे हैं कि राहत बचाव कार्य शुरू हो, उनके अपने बचा कर लाए जाएं तो फिर उन्हें कुछ खोज खबर मिले। लेकिन इस बीच मौसम एक बड़ी चुनौती बन गया है। नुवाकोट एयरबेस से मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।
1: कहते हैं जब ऐसी आपदा आती है तो मदद के लिए जितने हाथ आए वो कम होते हैं। हालांकि नेपाल सरकार ने पहले यह फैसला लिया था कि वो दुनिया के दूसरे देशों की एजेंसियों को यहां पर इस बचाव कार्य में नहीं आने देंगे, क्योंकि 2015 में उनका अनुभव अच्छा नहीं था। लेकिन उसके बाद सरकार में मंथन हुआ, ये दोबारा विचार हुआ कि जिस तरह की परेशानी है, मुश्किल है, दो और दो हाथ मिलकर चार हो जाएंगे, और अब उसके बाद उसने दुनिया की तमाम एजेंसियों को आने की अनुमति दे दी है। भारत, चीन, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमें अब नेपाल की मदद के लिए अपने विशेषज्ञों की टीम नेपाल भेज रही है।
2: तबाही की इन तस्वीरों के बीच इंसान पूरी तरह से लाचार नजर आ रहा है। बस कोशिश जारी है जिंदगियों को बचाने की, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वहीं भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भी सरकार ने कमर कस रखी है। नेपाल त्रासदी में 650 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है, जिसमें भारतीय भी शामिल है। वहीं कई लापता लोगों की तलाश जारी है। अब तक 300 से ज्यादा भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। नेपाल में विदेशी मदद को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने स्थिति साफ की है। उन्होंने कहा है कि नेपाल द्वारा विदेशी सहयोग ठुकराए जाने का प्रचार भ्रामक है। प्रधानमंत्री शाह के मुताबिक भारत, चीन और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ बचाव और राहत के लिए जरूरी सहयोग और सामग्री को लेकर लगातार समन्वय किया जा रहा है।
1: और आखिरकार नेपाल सरकार ने फैसला लिया है कि वो राहत बचाव कार्य में दुनिया भर की दक्ष जो देश हैं, टीम हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में, उनकी मदद लेगी। हालांकि इसके पहले नेपाल सेना ने कहा कि 2015 में हमने सबक लिया था कि कोऑर्डिनेशन की कमी थी, बहुत सारी एजेंसियां थी, लेकिन अब जब आंतरिक मंत्रियों की बैठक हुई उसमें फैसला लिया गया कि उन देशों को जरूर एजेंसियों को यहां आने देना चाहिए जिनकी विशेषज्ञता है। ऐसे में भारत, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे वो देश हैं जिनके पास एनडीआरएफ, जैसे भारत के पास एनडीआरएफ है, उसकी अपनी दक्षता है। इस समय नेपाल को इन विशेषज्ञों की जरूरत इसलिए है कि जिन टनल्स के अंदर, जहां पर हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, जहां नेपाल की सेना ने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए रेस्क्यू ऑपरेशंस किया है, इसके अलावा डीएनए हो, फॉरेंसिक हो, बॉडी की आइडेंटिफिकेशन हो, इन सब प्रक्रियाओं के लिए उसे विशेषज्ञों की जरूरत पड़ेगी।
2: बचाव अभियान में हेलीकॉप्टरों की तैनाती को लेकर भी प्रधानमंत्री शाह ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टरों को तैनात करते वक्त

0: हवाई सुरक्षा, भौगोलिक पहुंच और वास्तविक जरूरत को ध्यान में रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को सरकार की तरफ से किए गए प्रमुख कामों और अब तक की प्रगति की जानकारी भी 20 बिंदुओं में साझा की। नेपाल में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन के बाद तबाही का मंजर है। ऐसे मुश्किल वक्त में भारत लगातार राहत और बचाव के लिए मदद भेज रहा है। 2 विमान राहत सामग्री लेकर नेपाल पहुंच चुके हैं। वहीं राहत सामग्री की तीसरी खेप भी भेजी गई है। नेपाल सरकार के अनुरोध पर भारत अब टनल रेस्क्यू टीम भेजने की तैयारी में है। इससे पहले एक रेकी टीम नेपाल भेजी जा रही है। ये टीम मौके पर जाकर हालात का जायजा लेगी और पता लगाएगी कि रेस्क्यू के लिए किस तरह के उपकरणों की जरूरत होगी। इसके साथ ही मेडिकल टीम भेजने की भी तैयारी है।
1: लापता लोगों का जो लिस्ट है वो अभी 320 का है, लेकिन ये मान के चलिए चूंकि स्थिति हर घड़ी बदल रही है, इसमें कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसके अलावा 100 ऐसे लोग हैं करीबन जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनसे भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है।
0: उधर नेपाल से लौटे भारतीयों से विदेश मंत्री जयशंकर ने दिल्ली एयरपोर्ट पर मुलाकात की और भरोसा दिया कि देशवासियों को सुरक्षित वापस लाने की हर संभव कोशिश की जाएगी।
2: I want to say right now, we are still very much focused on contacting all the Indians who are dead. We believe little more than 300, exact number keeps going up and down. About 315 Indians are still not been contacted. Roughly about 85 Indians have been rescued from various places, including this group of 21 people who have just arrived.
0: बाढ़ प्रभावित इलाकों से रेस्क्यू किए गए 21 भारतीय को काठमांडू से दिल्ली पहुंच गए। इससे पहले त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना में काम कर रहे 63 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया था। वहीं चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। बाढ़ और मलबे ने नेपाल के कई इलाकों का संपर्क तोड़ दिया है। ऐसे में भारत ने बेली ब्रिज और उसकी तकनीकी टीम भेजने की पेशकश की है। मकसद साफ है, प्रभावित इलाकों में सड़क संपर्क जल्द बहाल हो और राहत बचाव अभियान को रफ्तार मिले। नेपाल में एक बेली ब्रिज पहले से मौजूद है जिसका इस्तेमाल राहत कार्यों में किया जा सकता है। भारत ने नेपाल को NDRF की टीमें और जरूरी उपकरण भेजने का प्रस्ताव भी दिया है। ये टीमें खोज और बचाव अभियान में मदद कर सकती हैं, साथ ही आपदा प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभा सकती है। अब भारत को नेपाल सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है। नेपाल की इस त्रासदी के बीच विदेशों में बसे नेपाली और भारतीय मूल के लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं ने नेपाल के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत राशि जुटाई। दक्षिण पूर्वी लंदन के प्लमस्टेड स्थित एक मंदिर में रक्षाबंधन कार्यक्रम को नेपाल के बाढ़ पीड़ितों और बचाव अभियान के लिए फंड जुटाने से जोड़ा गया, यानी नेपाल की त्रासदी के खिलाफ मदद की मुहिम देश की सीमाओं से बाहर भी पहुंच चुकी है।
3: अभी तो नेपाल इस महात्रासदी के दौर से उभरा भी नहीं था, जख्म भरे भी नहीं थे कि अब इस पर दूसरे सैलाब का खतरा मंडरा रहा है। तिब्बत के पास से भरे हुए जलाशय से अगर बांध टूटता है तो पानी नीचे आएगा और चीन ने इसी तरह की चेतावनी जारी की है कि जलाशय भर रहे हैं, एक बार फिर वो बांध टूट सकता है और उसके बाद सैलाब का दूसरा दौर नेपाल को फिर से अपनी चपेट में ले सकता है।

0: ये तबाही का सिर्फ ट्रेलर था। अब नेपाल में इससे 5 गुना ज्यादा तबाही की आशंका जताई जा रही है। नेपाल में तबाही टूटने का खतरा बना हुआ है, जो पहले से 5 गुना ज्यादा हो सकती है। तिब्बत के पहाड़ पर बनी झील फिर फट गई है। नेपाल के अधिकारियों को सूचना मिली कि झील ने अपने किनारे तोड़ दिए हैं। चीनी सरकारी प्रसारक CCTV ने भी बताया कि ग्यूरोंग बॉर्डर पोर्ट के ऊपर बनी डैम झील ओवरफ्लो करने लगी है। ग्यूरोंग बॉर्डर पोर्ट के ऊपर बैरियर झील हाल ही में बनी है, जो नेपाल और तिब्बत के बीच की सीमा के पास है। ये एक बांध की तरह है। इसके बनने की वजह भी 26 अगस्त को नेपाल चीन सीमा के पास अचानक आई बाढ़ ही है। चीन की सीमा में बनी झील में 30 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा होने की आशंका है। ये पानी 1200 ओलंपिक स्विमिंग पूल के बराबर है। इतनी बड़ी तादाद में पानी जमा होने पर झील के टूटने का भारी खतरा है। बताया जा रहा है कि 1 सितंबर के आसपास पानी का बहाव सबसे ज्यादा होने की उम्मीद है। गुरुवार को चीनी बचाव दल ने हवाई फुटेज में मलबे से बनी झील को देखा। फुटेज में भूरे रंग का पानी एक ऐसे बेसिन में जमा होता दिख रहा था, जिसका कोई स्पष्ट निकास मार्ग नहीं था। पानी पहले ही झाड़ियों और पेड़ों को डुबो चुका था और अब मलबों और पत्थरों की रुकावट पर दबाव डालता हुआ दिख रहा था। सैटेलाइट तस्वीरों में पता चला है कि 24 से 27 अगस्त के बीच इस झील में पानी जमा हो रहा है। तस्वीरों में जमीन और आसपास का पूरा इलाका भी पहाड़ और मलबे से काफी बदला हुआ दिखाई दिया। यानी जो मलबा पहले बाढ़ की वजह बना, वही अब पानी रोकने वाली प्राकृतिक दीवार बन गया है। अब ये ओवरफ्लो करने लगी है। 26 अगस्त को महाविनाश लाने वाली भोटे कोशी नदी में पानी का स्तर बढ़ रहा है। स्थानीय जिला अधिकारी के मुताबिक उन्हें नोटिस मिला है कि झील ने अपने किनारे छोड़ दिए हैं। अब उसका पानी बाहर निकलने लगा है। अगर ऊपर से पानी का दबाव और बढ़ा तो तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल है।
1: सर, किस तरह का अलर्ट इश्यू हुआ अभी यहाँ पे?
2: अभी यहाँ पे जस्ट टिमोरे से एक खबर आया कि वहाँ का जो बांध बना था प्राकृतिक बांध, वो फिर से टूट गया है। उससे जो आया था उससे 5 गुना ज्यादा बाढ़ आने वाला है यहाँ पे। इसीलिए आप लोग कृपया करके ऊपर चलिए, यहाँ पे हाई अलर्ट पे।
1: तो हाई अलर्ट इश्यू कर दिया गया है। तो जो बांध जिस तरह का सैलाब आया था, जलाशय में पानी था, वो एक बार फिर बढ़ चुका है और अब कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से जल्दी निकल जाएं, 5 गुना ज्यादा पानी आ सकता है। और इसीलिए देखिए, धुंडे जो इलाका है, मैं उससे काफी ऊंचाई पर हूं और अब इन इलाकों में भी लोगों को जाने के लिए तत्काल कह दिया गया है, हाई अलर्ट वार्निंग यहाँ पर इश्यू कर दी गई है। पूरी तरह से अनाउंसमेंट की जा रही है, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर अनाउंसमेंट करके लोगों को हटाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नदी के किनारे जो है वो लोग वहाँ से चले जाएं और इनको खाली कराया जा रहा है।
0: इसका असर अब सीधे राहत और बचाव अभियान पर दिखाई दे रहा है। नेपाल आर्मी के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है, क्योंकि नदी का पानी बढ़ रहा है और नदी में उतरना रेस्क्यू टीमों के लिए भी जानलेवा हो सकता है। रसुआ में हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन भी रोक दिया गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने पहाड़ी की तरफ भागकर ऊंचाई पर जाना शुरू कर दिया है। जिस इलाके में कल तक लोग दूसरों की जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे, आज वही लोग खुद अपनी जान बचाने के लिए ऊंचाई की तरफ भाग रहे हैं। समस्या यह है कि यह कोई मजबूत बांध नहीं है। झील को रोकने वाली दीवार चट्टानों और बाढ़ के मलबे से बनी है। अगर झील में पानी बढ़ता रहा और ये प्राकृतिक बांध कमजोर हुआ तो वो टूट सकता है। ऐसी स्थिति में झील का पानी अचानक नीचे की ओर बह सकता है, इससे फिर से तेज बाढ़ आ सकती है। नई बनी ये झील उस इलाके में है जहां पहले ही बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। अगर झील का पानी अचानक नीचे आता है तो सबसे पहले भोटे कोशी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। इसी वजह से NDRRMA ने भोटे कोशी इलाके में पानी का बहाव फिर बढ़ने की सूचना के बाद नया हाई अलर्ट जारी किया है। भोटे कोशी के बाद चिंता त्रिशूली नदी को लेकर है। तिब्बत से आने वाली चौत्वेन खोला और पूर्वित सांगपो नदियां आगे जाकर मिलती हैं। नेपाल में प्रवेश के बाद ये नदी तंत्र भोटे कोशी कहलाता है और भोटे कोशी आगे त्रिशूली नदी तंत्र का हिस्सा बनती है। ऊपर पहाड़ों में पानी का अचानक रिलीज होना नीचे नदी किनारे बसे इलाकों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए नेपाल का फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम भोटे कोशी और त्रिशूली नदी के आसपास के इलाकों को अलर्ट पर रख रहा है। लोगों से नदी किनारे और जोखिम वाले इलाकों से दूर रहने को कहा गया है।
3: चीन की तरफ से जो चेतावनी दी गई है, उसके बाद यहाँ पर उन सभी कनेक्टेड नदियों का जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरे सामने जो आप नदी देख रहे हैं, इसी में जब वो बाढ़ आई तो ये पूरा त्रिशूली बाजार और नुवाकोट का पूरा एरिया फ्लड हो गया था। उनमें से अनेकों अनेक अभी भी मिसिंग है। सरकार की तरफ से यहां पर जरूर 1500 का आंकड़ा दिया जा रहा है। लोग बहुत सारे आपको अलग अलग यहां पर फिगर्स देंगे, लेकिन अब एक बार फिर इस नदी का जो स्तर है वो बढ़ रहा है और पानी का आवेग बढ़ रहा है।
0: अगर ये प्राकृतिक बांध पूरी तरह से टूटा तो सिर्फ पानी नहीं आएगा, पानी के साथ जमा मलबा, पत्थर और चट्टाने भी नीचे की तरफ दौड़ सकती हैं। और चीन की तरफ से जो आंकड़े आए हैं वो इस खतरे की गंभीरता को और बढ़ाते हैं। चीनी अधिकारियों के मुताबिक बैरियर लेक में 25 लाख घन मीटर से ज्यादा पानी जमा है, इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसी स्थिति में समझा जा सकता है कि नई झील के टूटने से कैसी तबाही आएगी। श्वेता सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, नुवाकोट, नेपाल, आज तक।
1: त्रिशूली नदी के किनारे कई सारे शहर गुलजार थे। उनकी खूबसूरती पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होती थी। ये रास्ता आगे मानसरोवर की ओर भी जाता था, लेकिन किसने सोचा था कि ये त्रिशूली ऐसा सैलाब लेकर के आएगी। आज तक की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर है। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह की वो रिपोर्ट देखिए, जिसमें वो दिखा रही है कि कैसे त्रिशूली की धारा ने जब अपनी दिशा बदली तो एक पूरे शहर को मलबे में तब्दील कर दिया।
3: ये देवीघाट की प्रहरी चौकी हम आपको दिखा रहे हैं और आगे देवीघाट बाजार है। पूरा त्रिशूली बाजार का हाल आपने देखा। ये देवीघाट की तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। ये भी पूरी तरीके से इस मलबे और मिट्टी के नीचे ये पूरा बाजार का हिस्सा जा चुका है। चाहे आप छोटी सी एक चाय की दुकान को देख लें, यहां पर खड़े हुए ट्रैक्टर्स को देखकर शायद आपको वो पैमाना ज्यादा समझ में आएगा, और साथ ही वो दुकानों के शेड्स, इधर मंदिर का भी हिस्सा है जो पूरी तरीके से मिट्टी और मलबे के नीचे है। श्वेता सिंह नेपाल में जहां से रिपोर्ट कर रही हैं, ये त्रिशूली देवीघाट मुख्य रूप से नेपाल के नुवाकोट जिले में त्रिशूली और तादी नदियों के संगम पर मौजूद एक ऐतिहासिक, धार्मिक और आर्थिक महत्व का क्षेत्र है। जहां ऊपर के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में 350 लोग तो बच गए, लेकिन नीचे देवीघाट तक बहाव ने बहुत कुछ खत्म कर दिया। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से बह चुका है। बाजार से पहले का जो ये हिस्सा है ये रेजिडेंशियल एरिया है और घरों के यहाँ का हाल देखकर आप समझ लीजिए। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि इस गांव में उस समय लोग सभी थे मौजूद इवैक्यूएशन के लिए। कुछ बातें कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि इवैक्यूएशन के लिए कहा गया था, लेकिन यहां पर गांव वाले थे, अपना सामान ले जाने की कोशिश कर रहे थे जल्दी से जल्दी, लेकिन देखकर ही पता चल रहा है कि शायद ये संभव नहीं हो सका होगा।
4: देवीघाट के इस इलाके में अब कुछ चंद लोग मिलते हैं। जो बचे हैं वो बताते हैं कितना खतरनाक रहा है लोगों को यहाँ बचाना तक।
5: अभी चैलेंजेस, सबसे बड़ी चैलेंजेस तो ये है कि रास्ता, इधर अभी कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, कितने लोग दबे हुए हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उधर तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है।
6: तो कितना फुट मिट्टी है ये जो आप कह रहे हो इसके नीचे लोग दबे हो सकते हैं?
5: इधर तकरीबन आपका ये बोले कि 2-3 इंसान इसमें आराम से अंदर जा सकता है। इतना ऊपर तक मिट्टी आ चुका है, रमल आ चुका है। तो अभी इधर पैदल तो कोई भी सोच भी नहीं सकता है कि इधर से आगे जाए। पूरा धस जाता है। हम लोग सुबह कोशिश भी किए थे, सुबह इधर नीचे से आपका दो आपका सब निकाला गया। एक सब निकालने के लिए तकरीबन 45 मिनट लग गया था। इतना मुश्किल, इतना कठिन है।
6: दलदल में कोई आदमी उतरे तो वो नीचे चला जाएगा।
5: हाँ जी, और उसको खींचने के लिए भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई दूसरा बंदा उधर जा ही नहीं सकता है।
3: यहाँ पर आप जो रिलीफ वर्कर्स हैं उनको देख रहे हैं। ये पूरा एरिया, इसके आगे फिर बाजार का एरिया हो जाता है जो मिट चुका है, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और कोशिशें यही जारी हैं कि किसी तरीके से जल्दी रिलीफ का ये काम किया जा सके। जो हमारे ये आप कैनाइन स्क्वाड के भी दस्तों को इसमें शामिल देख सकते हैं, क्योंकि आगे भी हमने देखा कई स्निफर डॉग्स यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि रेस्क्यू एफर्ट्स में काम कर रहे हैं। क्योंकि कोशिशें ये हो रही हैं कि यहाँ जो गांव वाले जो अधिकांश लापता बताए जा रहे हैं उनको किसी तरीके से ढूंढा जा सके।
7: घर थे सब पूरा घर ही घर थे नहीं था,
8: मंदिर भी
7: मंदिर थे, घर थे, रोड थे, अनि राम्रो ठाउँ थियो नि,
8: सब अच्छा था यहाँ।
7: छैन अब, अहिले केही छैन,
8: अब कुछ नहीं।
4: त्रिशूलू में ऊपर से नीचे तक 3 दिन बाद भी तबाही के नए वीडियो सामने आते हैं जो बताते हैं कि बाढ़ किस तरह तबाही मचाती गई। सैलाब में सब कुछ बहा, नीचे बने निर्माण तो ऐसे टूटे जैसे कागज के हों। ये भी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का ही वीडियो बताया जाता है। ऊपर से बहुत वेग के साथ पानी आया और तमाम मजबूत निर्माणों को तोड़ता चला गया। जहां तबाही के सैलाब के बाद जिंदगी की तलाश जारी है। श्वेता सिंह, देवीघाट, त्रिशूली, नेपाल आज तक।
1: जब रुसवा से सैलाब नीचे की ओर आना शुरू हुआ तो उसने चपेट में सब कुछ मलबे में तब्दील कर दिया। फिर चाहे वो दुकान हो, मकान हो, होटल हो या फिर हाइड्रो प्रोजेक्ट। और जब हाइड्रो प्रोजेक्ट मलबे में दबे तो उन सुरंगों के नीचे से लोगों को निकालना बड़ी कठिन चुनौती थी। और ऐसे में नेपाल की सेना ने वो मिसाल कायम की है, दलदल में अपनी जान खतरे में डालकर लोगों को वहां से निकाला। कई मजदूरों को निकाला गया और अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है। मुश्किलें ये हैं कि एक तरफ दलदल है, दूसरी तरफ सुरंग का अंधेरा है और ऐसे में जो लड़ाई है जिंदगी और समय की है, और इनके बीच नेपाल की सेना, उसकी एजेंसियां जान जोखिम में डालकर इस राहत बचाव अभियान को अंजाम दे रही है।
4: क्या ये टनल ना होती तो 350 लोग जिंदा ना बचते। क्या त्रिशूली की टनल ने ही त्रिशूली नदी में आई प्रलयंकारी बाढ़ से सैकड़ों को बचाया है। क्या त्रिशूली की टनल ही नेपाल में प्राण बचाने वाली रक्षक बनी। नेपाल आर्मी के ऑपरेशन त्रिशूली की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। 26 अगस्त की सुबह से लेकर अब तक नेपाल में 50 किलोमीटर से लंबा दायरा है जहां किसी का बचना अब चमत्कार माना जाता है। जहां त्रिशूली नदी में आए विनाशकारी फ्लैश फ्लड ने अपने साथ मकान, दुकान, इंसानों को या तो बहा दिया या फिर मलबे में समेट दिया। आसमानी तस्वीर बताती है नेपाल में अब जो भी जिंदा बचता है उसका बचना नामुमकिन था, लेकिन वो बच पाया क्योंकि या तो वो ऊपर की तरफ भागा या फिर उसने सहारा लिया एक टनल का। जिसे खोजा नेपाल आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हेलीकॉप्टर ने, जिन्हें अचानक एक मजदूर त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल नंबर 3A के पास बचाव की मदद मांगता नजर आया। हेलीकॉप्टर देखकर मानो इस शख्स को लगा कि प्राण मिल गए, ये तुरंत आगे की तरफ भागने लगा। लेकिन सेना के जवान नेपाल में जानते थे खतरा आगे कितना बड़ा है, इसलिए जैसे ही सुरंग के बाहर फैले फ्लैश फ्लड के मलबे की तरफ ये भागता है, इसे रोका जाता है। ये वापस टनल के मुहाने के पास चट्टान के करीब जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये मलबा ऐसा है जिसमें तेजी से भागने पर पैर फंस जाता है तो उसे बाहर निकालना पहले से ज्यादा कठिन हो जाता है। इसीलिए दलदली मलबे से दूर इस शख्स को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ट्रॉली तैयार की जाती है, जिससे दो जवान नीचे आते हैं। फिर इस ट्रॉली में बैठकर नीचे उतरे जवान मजदूर के पास पहुंचते हैं, उसे ट्रॉली में बैठाया जाता है। एक जवान मजदूर के साथ ट्रॉली में बैठता है और फिर हेलीकॉप्टर से ट्रॉली को ऊपर खींचा गया। इस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन इसका पूरा हुआ। इसी के बाद सेना को पता चलता है कि त्रिशूली के इस 4 किलोमीटर लंबी टनल में अंदर सैकड़ों मजदूर फंसे। फिर तुरंत नेपाली सेना ऑपरेशन को और विस्तार देती है। नेपाली सेना के जवान सबसे पहले इस टनल के मुहाने पर पहुंचे। यहां दलदल वाला कीचड़ भरा हुआ था। आप देख सकते हैं कि कैसे इन जवानों को क्रॉल यानी रेंगते हुए भीतर जाना पड़ रहा है। यहाँ मलबा इतना था कि एक जवान बड़ी मुश्किल से भीतर गया, फिर दूसरा जवान आता है और वहाँ हेलीकॉप्टर से एक ट्रॉली लटकाई गई ताकि जो मजदूर अंदर से आए इसके सहारे उनका रेस्क्यू हो सके। इन जवानों ने अपनी कमर पर रस्सी बांधी हुई है ताकि इस कीचड़ के दलदल में वो खुद ना फंसे। फिर हाथों के सहारे रेंगते हुए जवान इस टनल के अंदर दाखिल हुए, क्योंकि मिट्टी में चलते तो फंस जाते। और फिर इस तरह से टनल के अंदर दाखिल हुए। अंदर बहुत से मजदूर फंसे थे जिन्हें बाद में एक एक करके बाहर निकाला गया है। हर मजदूर को ऐसे यहाँ पर रेस्क्यू करके बाहर लाना कितना मुश्किल था, ये इन तस्वीरों में दर्ज है। इन मजदूरों को ऐसे ही नेपाली सेना के जवान अपने कंधे पर भी उठाकर बाहर लाए। इस दलदल में जब वो चलते हैं तो पैर इनके धस रहे हैं। एक मजदूर तो इस मलबे में पूरी तरह फंस गया, वो आगे बढ़ तक नहीं पा रहा था। उसको यहाँ से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया, क्योंकि इस गेट पर मलबा ही मलबा दिखता है। नेपाली सेना का दावा है यहाँ पर 350 मजदूरों को बचाया गया है। ये लोग इसलिए बच पाए क्योंकि दावा है कि जब त्रिशूली नदी में बाढ़ का उफान आया तो ये लोग टनल की तरफ भागे, जहाँ भीतर ऊंचाई तक बाढ़ का जानलेवा मलबा नहीं पहुंच पाया। श्वेता सिंह, देवीघाट, त्रिशूली, नेपाल, आज तक।
1: तो ग्राउंड जीरो पर आज तक की बड़ी टीम तैनात है। पल पल की अपडेट, हर जगह की ग्राउंड रिपोर्ट हम आज तक आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इन जानकारियों के चलते नेपाल सरकार को भी मदद मिले, ताकि राहत बचाव कार्य में उनको और ज्यादा मदद मिल सके। लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आपको लिए चलते हैं स्टूडियो हमारे सहयोगी हिमांशु के साथ।
9: थैंक यू आशुतोष। और अब बात करते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की। इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। शुक्रवार को न्यूयॉर्क में एक राउंड टेबल मीटिंग के दौरान उन्होंने भारतीय अमेरिकियों से मुलाकात की और कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। ये बातचीत उनके इस दौरे का अहम हिस्सा है जो आरएसएस की शताब्दी से जुड़े कार्यक्रम के तहत हो रहा है। इस दौरे की काफी चर्चा है क्योंकि अमेरिका में कई संगठनों और खासतौर से न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने भागवत के मेडिसन स्क्वायर गार्डन के कार्यक्रम का विरोध किया है। और न्यूयॉर्क से हमारी सहयोगी पवनी मित्तल इस वक्त जुड़ चुकी हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते बात करते। पवनी, आज न्यूयॉर्क में संघ प्रमुख मोहन भागवत का कार्यक्रम हो रहा है, इसे लेकर अमेरिका में क्या हलचल है, खासतौर पर भारतीय समुदाय के बीच, साथ ही अमेरिका की राजनीति और मीडिया में इसे लेकर क्या हो रहा है, क्या खबरें हैं?
10: आरएसएस के मुख्य मोहन भागवत के जो कार्यक्रम है उसको लेकर यहाँ पे काफी चर्चा है। मैं न्यूयॉर्क में हूँ और यही थोड़ी दूर में एक स्टेडियम है, मैडिसन स्क्वायर गार्डन। वहाँ 5,000 लोग कल आने वाले हैं ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक, जो मोहन भागवत का जो कार्यक्रम है उसको अटेंड करने वाले हैं। उनकी स्पीच तो होगी पर उसके साथ काफी नाच गाना और इंडियन कल्चर का काफी सेलिब्रेशन भी होने वाला है। सो जो लोग अटेंड करने आ रहे हैं उनको काफी एक्साइटमेंट है, वो कहते हैं वो कार्यक्रम एंजॉय करेंगे, स्पीच सुनेंगे और एक एकता का जो विषय है जो इस कार्यक्रम का है उसको वो सेलिब्रेट करने आ रहे हैं। पर ये भी है कि काफी लोग इस कार्यक्रम का विरोध कर चुके हैं, काफी ग्रुप्स हैं जिन्होंने, काफी संस्थाएं हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है, जिन्होंने धरना किया है। तो दोनों बात लेकर जो जो लोग अटेंड करने वाले हैं और जो लोग विरोध करने कर रहे हैं, दोनों को मिला के काफी काफी चर्चा है। उसके अलावा जो इंडियन अमेरिकन हैं यूएस में, वेरी पावरफुल माइनॉरिटी कहा जाता है, वन ऑफ छोटी माइनॉरिटी है पर कंपैरेटिवली यू नो अमीर है, एडुकेटेड है। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि काफी इंडियन अमेरिकन हैं जो अमेरिकन राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं। न्यूयॉर्क के मेयर है जोहरान ममदानी, कुछ साल पहले कमला हैरिस नॉमिनी थी प्रेसिडेंट की, वो वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। तो यू नो पूरा मिला के ये काफी इंटरेस्टिंग टाइम है इंडियन अमेरिकन के लिए और इस कार्यक्रम के लिए यहाँ न्यूयॉर्क में।
9: शुक्रिया शुक्रिया पवनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और अब पंडित शैलेंद्र पांडे के साथ देखिए भाग्य चक्र।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भाद्रपद के पावन महीने का आरंभ हो रहा है और आज हम आपको आपके कार्यक्रम में बताएंगे कि भाद्रपद महीने की महिमा क्या है, इसका पूजा विधान क्या है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 29 अगस्त 2026 दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः 9:56 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 9:37 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9:10 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार आज से भाद्रपद के महीने का भादो महीने का आरंभ हो रहा है। भाद्रपद महीने की महिमा क्या है पहले ये जानते हैं। देखिए, भाद्रपद का पहला शब्द है भाद्र। भाद्र का अर्थ है कल्याण देने वाला और भाद्रपद का अर्थ है भद्र परिणाम देने वाले व्रतों का महीना, शुभ परिणाम देने वाले व्रतों का महीना। ये महीना लोगों को व्रत, उपवास, नियम और निष्ठा का पालन करवाता है। अपनी गलतियों को याद करके उनका प्रायश्चित करने के लिए भाद्रपद का महीना सर्वोत्तम महीना है। मन को शुद्ध करने के लिए और मन में पवित्रता लाने के लिए, पवित्र भाव भरने के लिए ये महीना बहुत कारगर है। भाद्रपद के महीने में गणेश चतुर्थी का और गणेश महोत्सव का बड़ा पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और कलंक चतुर्थी भी इसी महीने में आती है, यानी भाद्रपद से भगवान कृष्ण का और भगवान गणेश का दोनों का संबंध है और दोनों की कृपा इस महीने में मिल सकती है। इस बार भाद्रपद का महीना 29 अगस्त से आरंभ हो रहा है और ये महीना 26 सितंबर तक रहेगा। भाद्रपद के महीने पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ
और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ हो सकता है, परिवार में शुभ कार्य होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, यात्रा पर जा सकते हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मिथुन राशि, धन की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी, रिश्तों पर थोड़ा ध्यान बनाए रखें, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। तो भाद्रपद का महीना आज से शुरू हो चुका है और अगले एक महीने तक हमें भाद्रपद महीने के नियमों और सावधानियों का पालन करना चाहिए। तो भाद्रपद महीने के नियम क्या हैं और सावधानियां क्या हैं? भाद्रपद के महीने में कच्ची चीजें खाने से परहेज करिए, उबाल कर पका करके ही चीजों को खाइएगा। भाद्रपद के महीने में दही का प्रयोग करना पूरी तरह से वर्जित है, भाद्रपद में दही का प्रयोग नहीं किया जाता। इस महीने में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना काफी होती है, भाद्रपद के महीने में इसका ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में आलस्य बहुत होता है, इसलिए भाद्रपद में शीतल जल से दोनों समय नहाना चाहिए ताकि आलस्य दूर हो जाए। भगवान कृष्ण को नियमित रूप से तुलसी दल अर्पित करना चाहिए और तुलसी दल को चाय में या दूध में उबाल करके पीना चाहिए। भाद्रपद के महीने में आप जितनी पवित्रता से रहें, जितना धर्म का पालन करें, जितनी पूजा उपासना करें, उनके बहुत ज्यादा शुभ फल आपको जीवन में प्राप्त होंगे। भाद्रपद पर महत्वपूर्ण बातें आगे जारी रहेंगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा प्रयोग किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।
कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, चोट चपेट से सावधान रहें, परिवार में शांति बनाए रखें, शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न सयाली ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 29 जून 2002, जन्म का समय सुबह 7:15, जन्म स्थान है कोलकाता। सयाली कह रही हैं कि मैं बैंकिंग सर्विसेज की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे बैंक में या फाइनेंस के क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? सयाली, आपकी कुंडली के हिसाब से बैंकिंग में, फाइनेंस में, अकाउंट्स में आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साल 2028-29 में आपकी सफलता का अच्छा समय दिखाई दे रहा है। दिमाग तेज है लेकिन एकाग्रता की समस्या है, थोड़ी मेहनत में कमी है, उसको बढ़ाइए। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए, आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि भाद्रपद महीने के महत्वपूर्ण व्रत कौन से हैं और कौन कौन से त्योहार इस महीने में आते हैं। भाद्रपद के महीने में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, साल की सबसे बड़ी गणेश चतुर्थी है और गणेश महोत्सव का पर्व भी इस महीने में आता है। इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण, श्री बलराम जी और भगवती राधा का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। भाद्रपद के महीने में महिलाओं के सौभाग्य का पर्व हरितालिका तीज भी आता है और भाद्रपद के महीने में अनंत पुण्य प्राप्त करने का पर्व अनंत चतुर्दशी भी मनाया जाता है। भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को, तो कृष्ण पक्ष में मुख्यतः भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और शुक्ल पक्ष में गणपति महोत्सव होता है, तो शुक्ल पक्ष में मुख्यतः भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। भगवान कृष्ण और भगवान गणेश की कृपा कैसे मिले इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति की समस्या दूर होगी, इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है,
खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। धनु राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, धन लाभ के योग हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। तो भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण की और भगवान गणेश दोनों की कृपा मिलती है, तो पहले ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा पाने के लिए भाद्रपद में क्या करें। देखिए, सामान्यतः भाद्रपद में दही का प्रयोग वर्जित है, लेकिन जरा सी दही का प्रयोग करके अगर पूरे महीने भगवान कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराया जाए तो तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण को पंचामृत अर्पित करना चाहिए। जिन लोगों के पास संतान नहीं है, जिन लोगों को संतान का सुख नहीं है, उन लोगों को भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना चाहिए और भगवान कृष्ण का जन्म कराना चाहिए, या भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होना चाहिए। इस महीने में आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भगवद् गीता का पाठ करना चाहिए, खास तौर से भगवद् गीता के 11वें अध्याय का। भाद्रपद के महीने में लड्डू गोपाल की स्थापना और शंख की अगर आप स्थापना करें तो घर में धन और संपन्नता आएगी। भाद्रपद के पहले 15 दिन में यानी कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण की पूजा करें, गोपाल सहस्त्र नाम का, भगवत गीता का, श्री कृष्ण के मंत्र का, जितना ज्यादा जप आप भाद्रपद कृष्ण पक्ष में करें उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। भाद्रपद के महीने का भगवान गणेश से भी संबंध है, तो भगवान गणेश के आशीर्वाद के लिए क्या करेंगे। विद्या बुद्धि और ज्ञान के लिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष में भगवान गणेश की उपासना करिएगा। पीले रंग के भगवान गणेश की स्थापना करें, रोज सुबह उनको दूर्वा और मोदक
या लड्डू का भोग लगाएं, पूरे महीने में सात्विकता बनाए रखें। अगर आप भाद्रपद शुक्ल पक्ष में ऐसा करते हैं तो जीवन की हर प्रकार की बाधा का नाश होगा। पूरे शुक्ल पक्ष में रोज सुबह भगवान गणेश की पूजा करें, संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करें, या अगर संतान की कामना है तो संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करें या भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें। अगर पूरे भाद्रपद शुक्ल पक्ष में आप भगवान गणेश की उपासना करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा है, किसी भी प्रकार की रुकावट है तो वो दूर हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कुंभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

पारिवारिक विवादों से बचाव करें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भाद्रपद के महीने में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, दही एक बैक्टीरिया से बनती है, लैक्टोबैसिलस, और भाद्रपद में माहौल में मौसम में नमी बहुत होती है, इसीलिए दही बहुत जल्दी खराब होती है। आपको पता भी नहीं चलेगा और दही इंटरनली खराब हो जाएगी। जब ऐसे दही का सेवन करेंगे तो आपकी सेहत बिगड़ सकती है, पेट में त्वचा में दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए प्रकृति को देखते हुए और दही के गुण को समझते हुए ऐसा कहा गया है कि भाद्रपद के महीने में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी टिप के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 4, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। नंबर 5, संतान पक्ष की उन्नति होगी। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, वाहन सावधानी से चलाएं। नंबर 8, करियर में नए अवसर मिलेंगे। नंबर 9, संपत्ति का लाभ हो सकता है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। शुभ समय है आज का शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल चढ़ा दीजिएगा, आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न अनंत जी ने हमें लिखा है और अनंत जी हमें मेल लिखते हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 18 फरवरी 1989, जन्म का समय शाम के 7 बजे और जन्म का स्थान है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। अनंत जी कह रहे हैं कि मेरी नौकरी अभी छूट गई है और मैं नई नौकरी का प्रयास कर रहा हूं, तो मुझे नई नौकरी कब तक मिलेगी और आगे मेरा करियर कैसा रहेगा। अनंत जी, आपकी नौकरी मिलने का समय नवंबर दिसंबर में इस साल के आखिरी में दिख रहा है, तो इस साल के आखिरी में आपको नौकरी मिलने की संभावना बनती है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि नई नौकरी पाने के लिए आपको गुड़गांव छोड़ना पड़े, कहीं और जाना पड़े, ऐसी संभावना आपकी कुंडली में बन रही है।
करियर और भविष्य आपका अच्छा है, आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार शनि चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान।

कुंभ राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि वालों के लिए, सेहत में सुधार होगा, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा वृश्चिक राशि वालों को, चिंताएं और तनाव आपके बढ़ सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज प्रतिपदा

करें तो आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: अभी भी बना हुआ है नई झील के फटने का खतरा। ओवरफ्लो से नेपाल की भोटे कोशी नदी में लगातार बढ़ रहा है पानी। हाई अलर्ट पर नेपाल, मौत का आंकड़ा 626 तक पहुंचा। नेपाल में हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत ने भेजी तकनीकी सामानों के साथ रेस्क्यू टीम। 10 टन राहत सामग्री की तीसरी खेप लेकर विमान पहुंचा काठमांडू। उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान दौरे पर रवाना पीएम मोदी, ताशकंद में राष्ट्रपति मिर्जियोयेव से होगी वार्ता। बिश्केक में एससीओ समिट, पुतिन शी जिनपिंग समेत कई नेताओं से मुलाकात संभव। आज न्यूयॉर्क में कार्यक्रम से पहले इस कॉल में मोहन भागवत का संबोधन का दुनिया में अभी बहुत सारे टकराव और विरोधाभास। मेयर ममदानी ने किया है संघ प्रमुख का विरोध। और दिल्ली एनसीआर में सीएनजी फिर महंगी, वाहन चालकों पर बड़ा बोझ। 3.89 रुपए प्रति किलो की सीधी बढ़ोतरी। दिल्ली में अब 86.98 रुपए प्रति किलो दाम हुए। सुबह 6 बजे से नया रेट लागू। इस साल सीएनजी की 5वीं बढ़ोतरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। सबसे पहले बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 दिन विदेश दौरे पर वो रवाना हो गए हैं पीएम मोदी। और पीएम मोदी का पहला पड़ाव उज्बेकिस्तान है, जहां राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के साथ एक अहम द्विपक्षीय बातचीत होगी। व्यापार, निवेश, डिफेंस, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी। और सबसे बड़ा कूटनीतिक पड़ाव होगा इस दौरे का किर्गिस्तान का बिश्केक, जहां 31 अगस्त और 1 सितंबर को एससीओ का 26वां शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। और यहां दुनिया की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकातों पर होगी। सबसे अहम मुलाकात मोदी पुतिन की होगी, क्रेमलिन ने इसकी पुष्टि की है। दोनों नेता 31 अगस्त को एससीओ के तर मुलाकात करेंगे। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी एससीओ में मौजूद रहेंगे। ऐसे में मोदी शी जिनपिंग की संभावित मुलाकात पर भी नजरें बनी हुई हैं। प्रणव उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। प्रणय, दो देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कितनी अहमियत रखता है यह दौरा?
1: देखिए हिमांशु, भारत की सेंट्रल एशिया स्ट्रैटेजी के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 4 दिनों का और 2 देशों का दौरा खासी अहमियत रखता है। अगर आप बात करें उज्बेकिस्तान की, ताशकंद के साथ में उज्बेकिस्तान के साथ भारत के बड़े पुराने ऐतिहासिक रिश्ते तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ रणनीतिक अहमियत भी है उज्बेकिस्तान की। और अगर बीते 26 सालों के दौरान देखें तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में बहुत सारी चीजें जो है वो बढ़ी है। यानी अगर आप व्यापार कारोबार के लिहाज से देखें तो भारत उज्बेकिस्तान का 10वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। करीब $1 बिलियन भारत का ट्रेड है, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो। ये सारे वो क्षेत्र हैं जहां भारत एक बड़े महत्वपूर्ण किरदार और एक बड़े महत्वपूर्ण साझेदार के तौर पर उज्बेकिस्तान में नजर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 4थी उज्बेकिस्तान की यात्रा है और दूसरी द्विपक्षीय यात्रा आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले वो एससीओ बैठक के लिए उज्बेकिस्तान गए हैं। लेकिन उज्बेकिस्तान के बाद प्रधानमंत्री मोदी बिश्केक में पहुंचेंगे एससीओ की शिखर बैठक के लिए। तो आपने खुद अभी जिक्र किया कितनी अहम वो मुलाकात होगी। और अगले 15 दिनों के अंदर दुनिया दो तस्वीरें देखेगी, बिश्केक और नई दिल्ली से, जहां एससीओ और ब्रिक्स की बैठक के अंदर वैकल्पिक वैश्विक व्यवस्था क्या हो सकती है, अल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर कैसे बन रहा है,
0: सबकी नजर इन मुलाकातों पर रहेगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ प्रणय जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का।

नेपाल में कुदरत का कहर जारी, त्रास में मौत का आंकड़ा 626 के पार पहुंचा। नेपाल बाढ़ में फंसे 21 तमिल तीर्थयात्री सुरक्षित दिल्ली पहुंचे, भारत ने राहत अभियान तेज किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर नेपाल से लौटे भारतीयों से मिले विदेश मंत्री जयशंकर, तमिलनाडु निवासी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे नेपाल। चीन में फंसे 400 भारतीय सुरक्षित, भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन के साथ निकासी में जुटे। नेपाल में तबाही के बीच बड़ा नया खतरा, भोटेकोशी नदी उफान पर, त्रिशूली नदी के आसपास बाढ़ का अलर्ट, प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा। नेपाल में सुरंगों में फंसे लोगों के बचाव के लिए भारत ने भेजी 11 सदस्यीय मेडिकल और टनल रेस्क्यू टीम, साथ में राहत सामग्री भी पहुंचाई। नेपाल की मदद के लिए भारत का राहत अभियान तेज, राहत सामग्री की तीसरी खेप लेकर विमान काठमांडू पहुंचा, 10 टन जरूरी सामान। नेपाल में एक त्रासदी में अपनों की तलाश में अस्पतालों के बाहर जुटे परिजन, अब भी हजारों लोग लापता है। नेपाल त्रासदी में करीब 2000 लोग अब भी लापता, 13 पनबिजली परियोजनाओं में काम कर रहे 933 कर्मचारी शामिल। नेपाल के पीएम बालेन्द्र शाह ने बड़ा दावा करते हुए कहा, विदेशी सहयोग ठुकराने का प्रचार भ्रामक है। त्रिशूली वन हाइड्रो प्रोजेक्ट से 63 भारतीय सुरक्षित निकाले गए, कई लोगों की तलाश अब भी जारी। नेपाल तिब्बत सीमा पर भीषण आपदा, 96 भारतीय चीन में सुरक्षित नेपाल पहुंचे, निकासी की तैयारी। हिमालय में लगातार बारिश से बड़ा खतरा, बैरियर झील टूटी तो आगे आ सकती है बाढ़ और भूस्खलन। नेपाल चीन सीमा पर ग्लेशियर तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई, ग्लेशियर धंसने वाली जगह पर दिखी दो झील। नेपाल में बाढ़ के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो, नेपाली सेना ने हेलीकॉप्टर से कई लोगों को सुरक्षित निकाला। 4 दिवसीय सेंट्रल एशिया दौरे पर पीएम मोदी रवाना, आज से 1 सितंबर तक उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य में रहेंगे। पीएम मोदी के उज्बेकिस्तान दौरे के बीच तिरंगे के रंग में रोशन हुआ ताशकंद का हिल्टन होटल। बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी, पुतिन से द्विपक्षीय मुलाकात और शी जिनपिंग से आमना सामने पर नजर। एससीओ के मंच पर आतंकवाद के खिलाफ भारत का फोकस, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की मौजूदगी में आतंकवाद अलगाववाद के खिलाफ उठेगी आवाज। सेंट्रल एशिया दौरे से भारत के रिश्तों को मिलेगी नई मजबूती, सुरक्षा कनेक्टिविटी और व्यापार पर पीएम मोदी का खास जोर। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मोहन भागवत का संबोधन, आरएसएस के शताब्दी वर्ष में यूनिवर्सल ऑननेस सेलिब्रेशन का आयोजन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का अमेरिका में बड़ा कार्यक्रम, न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के बीच यूनिवर्सल ऑननेस का संदेश। मोहन भागवत के न्यूयॉर्क का कार्यक्रम पर कई एक्टिविस्ट संगठनों का मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर प्रदर्शन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का इस्कॉन मंदिर दौरा, पूजा अर्चना के साथ बेघर लोगों के लिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन अभियान में हिस्सा लिया। दिमागी नक्सल पर सियासी संग्राम तेज, आरएसएस से जुड़े ऑर्गेनाइजर ने सोनिया गांधी की एनएसी को बताया दिमागी नक्सलों का क्लासिक टेकओवर। दिमागी नक्सल की परिभाषा पर बड़ी सियासी बहस, ऑर्गेनाइजर का आरोप एनएसी के जरिए शासन व्यवस्था पर प्रभाव डालने की कोशिश। सोनिया गांधी की किताब पर सियासी घमासान, कांग्रेस का आरोप बिलोंगिंग के प्रकाशन पर दबाव, अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल। सोनिया की किताब को लेकर कांग्रेस का हमला, अशोक गहलोत बोले दुनिया में छप रही किताब भारत में क्यों नहीं। पार्टी लाइन के खिलाफ बयान पर बीजेपी पंजाब सख्त, संगरूर के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत 3 नेताओं से 7 दिन में जवाब मांगा। नीट विवाद के बीच एनटीए में केंद्र का बड़ा फेरबदल, 2 डायरेक्टर और 1 जॉइंट डायरेक्टर की नियुक्ति। एनटीए में रवि कुमार सिंह और प्रसन्ना वेंकटेश बने डायरेक्टर, अमित समदरिया को जॉइंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी। जीएसएससी सीजीआई परीक्षा में अनियमितता की जांच के दौरान सीआईडी एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, 4 सफल अभ्यर्थी गिरफ्तार। स्मृति ईरानी ने गिराई जनधन योजना की उपलब्धियां, बोली 12 साल में 59 करोड़ खाते खुले, महिलाओं और ग्रामीण परिवारों को फायदा मिला। वाल्मीकि घोटाले के आरोपों के बीच कर्नाटक के मंत्री नागेंद्र का मंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान, बोले मुझे दलित होने के कारण निशाना बनाया गया। जादवपुर में 10,000 लोगों के साथ वंदे मातरम कार्यक्रम में पहुंचे शिवेंदु अधिकारी, बोले जेएनयू और ओस्मानिया के बाद अब जादवपुर यूनिवर्सिटी की बारी। जादवपुर यूनिवर्सिटी के कथित देश विरोधी नारों पर शिवेंदु अधिकारी का कड़ा संदेश, कहा कैंपस में ड्रग्स की जांच के लिए ड्रोन इस्तेमाल होंगे। शिवेंदु अधिकारी के वंदे मातरम कार्यक्रम के दौरान जादवपुर यूनिवर्सिटी के गेट बंद, सड़क पर भी आवाजाही रोकी गई। टीएमसी छात्र कार्यक्रम में ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, बोली एसआईआर के जरिए वोट लूटा, हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। ममता का केंद्र और पुलिस पर निशाना, कहा सत्ता के दम पर चुनाव हाईजैक किया। अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सवाल। टीएमसी छात्र कार्यक्रम में अभिषेक बनर्जी का हुंकार, बोले जब तक मैं मरा नहीं तब तक हारा नहीं, एजेंसियों की कार्रवाई से नहीं झुकेंगे। अभिषेक बनर्जी ने सीबीआई ईडी समेत सभी एजेंसियों को चुनौती दी, कहा जिनकी ताकत लगानी है लगा लो, हम जय बांग्ला जय ममता बोलते रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी फिर हुई महंगी, 3.89 रुपए प्रति किलो बढ़े दाम, दिल्ली में अब सीएनजी 86.98 रुपए प्रति लीटर। मुंबई करों पर महंगाई की मार, 1 सितंबर से तबेले का दूध 9 रुपए हुआ महंगा, 93 रुपए की जगह 102 रुपए लीटर मिलेगा। रिएक्शन प्लस मामले में सिप्ला पर बड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र एफडीए ने पुणे सीएनएफ का ड्रग्स लाइसेंस रद्द किया। दवाओं के स्टॉक रिकॉर्ड में गड़बड़ी और मिस ब्रांडिंग पर सिप्ला का लाइसेंस रद्द, रिएक्शन प्लस पर 11,91,000 का माल जब्त। बांदा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, कार्रवाई के बीच जल निकासी रुकी तो सैकड़ों किसानों के घरों में पानी भर गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 गुटों में हिंसक झड़प, 2 लोग घायल हुए, पथराव के बीच मोर्चा संभालते हुए पुलिसकर्मी भी घायल। गुजरात के वाबी रेलवे स्टेशन पर सो रहे यात्री का मोबाइल चोरी, सीसीटीवी में कैद आरोपित, आरपीएफ जीआरपी की सतर्कता से गिरफ्तार। झांसी में साइबर ठगों की गैंग का भंडाफोड़, 403 करोड़ रुपए का लेन देन, ठगी की रकम यूएसडीटी में बदलकर विदेशी हैंडलर्स को देते थे।
टिहरी गढ़वाल में बड़ा हादसा, ब्रेक फेल होने से यात्री बस पलटी, स्कूटी सवार दो लोगों की मौत, 11 यात्री घायल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बिश्नोई गैंग के हेड श्यामलाल पुनिया समेत दो गिरफ्तार, पुलिस को देखकर जिला कोर्ट परिसर से भागने की कोशिश। बिलासपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान एलियांस एयर फ्लाइट का टायर फटा, 34 यात्री सुरक्षित, विमान की आगे की उड़ान प्रयागराज की रद्द। बिहार के मुंगेर में बीएसएनएल के अंडरग्राउंड तार चोरी की साजिश का खुलासा, ठेकेदार बन 26 मजदूरों से खुदवाई सड़क, मामले में 6 गिरफ्तार। झारखंड के लोहरदगा में बाईपास निर्माण सड़क पर अपराधियों का आतंक, बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, गार्ड को लगी गोली, वाहन में लगाई आग। छत्तीसगढ़ के जशपुर में 520 किलो गांजा जब्त, 3 वाहन समेत करीब 3 करोड़ की संपत्ति बरामद, 4 महिला तस्कर गिरफ्तार। दुर्गापुर में 21 साल के मेडिकल छात्र का हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला शव, जांच जारी है। दतिया में युवक के निकलते ही बरबराकर गिरी जर्जर दीवार, बाल बाल बची जान। पूरी सतारा हाईवे पर युवक की चाकू से गोदकर हत्या, सीसीटीवी में कैद, आरोपित गिरफ्तार। धनबाद में आवारा कुत्तों का आतंक, 5 साल की मासूम पर झुंडे ने किया हमला, नोच कर घायल कर दिया। विशाखापट्टनम में 4 साल की बच्ची का आधी रात अपहरण, माता पिता के पास सड़क पर सो रही थी, सीसीटीवी में स्कूटर सवार युवक युवती बच्ची को ले जाते दिखे। ग्वालियर में डिलीवरी बॉय की गोली मारकर हत्या, 12 घंटे बाद भी आरोपित फरार, भड़का आक्रोश। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई वॉल्वो बस, 1 की मौत, 36 घायल। रक्षाबंधन पर कुल्लू में बड़ा हादसा, ब्रेक फेल होने के बाद पहाड़ी से टकराई एचआरटीसी बस, 45 लोग घायल हुए। केरल के कट्टियाटूर कन्नूर रूट पर चल रही बस में चढ़ते समय गिरने लगा बुजुर्ग यात्री, क्लीनर ने समय रहते संभाला। बिजनौर में चलती बाइक पर अचानक युवक के हाथ से लिपट गया सांप, युवक ने चलती बाइक गिराकर अपनी जान बचाई। हिसार में हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मियों ने पुलिस पर कचरा फेंक दिया, धक्का मुक्की हुई, कचरे के थैले सिर पर पटके। आज से महिला टी20 एशिया का भारत पाकिस्तान महामुकाबला 5 सितंबर को दुबई में। इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू दिखाने पर पीसीबी की धमकी, इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट से हटने की चेतावनी। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड इजाफा, $729 बिलियन के पार पहुंचा आंकड़ा, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वृद्धि दर में आई गिरावट। सोने की चमक फीकी, लगातार तीसरे दिन 3,300 टूटा भाव, दिल्ली में 10 ग्राम 1,62,000 पर पहुंचा। डॉलर की मजबूती और मुनाफा वसूली से सोने चांदी पर दबाव, सोना 3 दिन में 4,700 रुपए, चांदी 5,000 रुपए सस्ती। 16 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म राणा बाली, इंटरनेशनल एक्टर आर्नोल्ड वॉसलू भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। अनुपम खेर की कॉमेडी फिल्म घोसला का घोसला 2 रिलीज हुई, लगभग 20 साल बाद आ रहा है सीक्वल। आलिया भट्ट की स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा ओटीटी पर रिलीज हो गई, नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम। सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद ओटीटी पर धमाल मचाएगी बॉबी देओल की बंदर, G5 पर हुई स्ट्रीम। मॉडर्न अर्बल हाउसिंग सोसाइटी पर बेस्ड चुंबक भी आज से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। विवाद के बाद रामदेव की कंगना से रिश्ते सुधारने की पहल, रक्षाबंधन पर भेजा मिठाई और खास तोहफा। रामदेव के तोहफे पर कंगना ने जताया आभार, रक्षाबंधन पर बोली, त्योहार भूल चूक माफ करने का होता है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, टॉक्सिक की कमाई में 64% की गिरावट, नेगेटिव रिव्यू का असर। कृति सैनन के कपड़ों पर दिए बयान से पलटी कंगना, बोली, उन्हें कौन रोक रहा है, जो पहनना है वो पहने, जो मन कर रहा है वो करें। धर्म बदलकर राखी पर मक्का पहुंची एक्ट्रेस, बुरके में होलिया बदला, रोते हुए अल्लाह से जेंजी के लिए मांगी नौकरी की दुआ। पुरानी गाड़ियों के लिए E10 पेट्रोल के वापस आने के बयान से पलटी बीपीसीएल चेयरमैन, EGM के बाद कहा था कि पुराने वाहनों के लिए कम इथेनॉल वाला पेट्रोल ऑफर कर सकती है कंपनी। थोक बाजार में चीनी, गुड़, गेहूं और खाने के तेलों की कीमतों में नरमी आने से त्योहारों से पहले महंगाई से मामूली राहत के आसार, जल्द ही रिटेल बाजार में भी कीमतों में कमी दिख सकती है। डेलॉयट इंडिया सर्वे में भर्ती में AI का बड़ा इस्तेमाल, 86% कंपनियों में CV स्क्रीनिंग से कैंडिडेट असेसमेंट तक बदला। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद S&P बरकरार रखी भारत की BBB सॉवरेन रेटिंग और स्टेबल आउटलुक, इस साल भारतीय इकोनॉमी के 6.6% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान। ब्लिंकिट, जेप्टो, डीमार्ट समेत कई रिटेल और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने तय की चीनी खरीदने की लिमिट, 1 महीने में 35% महंगी होने के बाद एक बार में केवल 2 से 5 किलो तक चीनी मिलेगी।

0: दिल्ली में अब सीएनजी भी महंगी हो गई है। वेस्ट एशिया में जारी संकट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलएनजी की कीमतों में तेज उछाल का असर अब सीएनजी की कीमतों पर पड़ रहा है। आईजीएल ने दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 3.89 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई। दिल्ली में सीएनजी की पुरानी कीमत 83.09 रुपए प्रति लीटर थी, प्रति किलोग्राम थी, जो अब बढ़कर 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम हो चुकी है।
1: सीएनजी के कीमत में लगभग 4 रुपए का इजाफा दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से हो गया। इस वक्त हम आईजीएल के एक पंप पे हैं। अगर आप रेट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि तकरीबन 3.98 रुपए का इजाफा सीएनजी के पर केजी रेट में हुआ है, यानी कि 86 रुपए से ज्यादा का कीमत इस वक्त दिल्ली में सीएनजी की अब प्राइजेस में हो गया है। 86.98 रुपए सीएनजी अब हो गया। अहम बात क्या है कि ये कीमतों में इजाफा क्यों हुआ है। देखिए, आप 86.98 रुपए प्रति केजी सीएनजी अब आपको दिल्ली में आईजीएल के पंप में मिलेगा और पहले 83.09 रुपए प्रति केजी इसकी कीमत थी। इजाफे का कारण आईजीएल बता रही है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस फिर से एस्केलेट कर रहा है और जिसकी वजह से एलएनजी से भरे हुए शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इसके साथ साथ यूरोपियन मार्केट में क्योंकि अब ठंड आने वाला है तो उसकी वजह से एलएनजी की स्टॉकपाइल्स की जा रही है, तो डिमांड सप्लाई का भी एक मसला है जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण यह भी बताया जा रहा है कि दिल्ली में दुनिया में सबसे कम रेट सीएनजी का फिलहाल है और इसकी वजह से आईजीएल के पास कोई ऑप्शन था नहीं कीमतों में इजाफा करने के अलावा। लेकिन आपके और हमारी जेब पे इसका असर कैसे पड़ने वाला है ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अभी आप सर पता था आपको सुबह सुबह रेट बढ़ गया है।
2: बताइए, रेट तो मालूम है बढ़ गया है।
1: 4 रुपए इजाफा हो गया लगभग।
2: 3 रुपए लगभग।
1: 3.98 रुपए
2: 84 रुपए था ना पहले।
1: 83.09 रुपए थे।
2: अच्छा, हाँ, 4 रुपए।
1: तो इससे आपकी जेब पे कितना असर पड़ता है सर? ये
2: जेब पे परसेंटेज वाइज तो आप हिसाब लगा लो कितना पड़ेगा। 5% हो गया, 5% का असर पड़ेगा।
1: और 6 महीने में मैं अगर बताऊं कि 10 रुपए तकरीबन बढ़ गया है तो फिर
2: तो आप लगा लीजिए 12%
1: फर्क पड़ रहा है।
2: हाँ, पड़ रहा है।
1: आप पीछे कैब्स हैं जो लाइन में खड़ी हैं, उनकी कीमतें बढ़ेंगी। ऑटो वाले हैं, उनके लिए कीमत जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट वो बढ़ता है और ऑटो वालों के लिए अलग मुश्किल होती है क्योंकि उनका रेट जो है वो सरकार तय करती है, मीटर तय करती है। 200 रुपए बिकनी चाहिए। ठीक है, चलिए। एक सार्कैज़म भी है, लेकिन ये सार्कैज़म क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर आप इसको फरवरी के महीने से कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन बीते 6 महीने में 10 रुपए का इजाफा हुआ है। तो जो लिमिटेड आय वाले हैं, सैलरीड पर्सन हैं, उनके लिए मुश्किलें हैं। जो कमर्शियल एक्टिविटी में है तो कॉस्ट ऑफ जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसे में आम लोगों को दिक्कतें होती हैं, जिस दिक्कत का इजहार वो फिलहाल करते हुए सुनाई दे रहे हैं। वीडियो सहयोगी नासिर के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
0: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Papa.
1: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
1: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
1: हाँ ओले ला भाई मेरा बैट।
3: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
4: वो अभी तो चार्ज हुआ यार।
5: ओले बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: एक दो एक
8: ए श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: मुल्तानी को का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी को का कॉफ सिरप।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बाय एकदम सॉलिड।

0: 今や、レッツゴー。 The new BE6 Sporter。
1: Oh no, बहुत बोर लग रहा है। Take a
2: date, not bites. No added sugar, preservative के बिना। Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया। Lion Dates Nut Bites.
3: Lion Date Nut Bites.

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है।
3: हालांकि मुख्य सड़क, आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है, लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है, दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास अमित वधवार के साथ में आशुतोष मिश्रा आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: सो सॉरी।

0: उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश तक विपक्षी दल चीनी, गुड़, प्याज, सब्जी के दामों को लेकर तरह तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई विरोध का प्रदर्शन ऐसा कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को एक एक किलो चीनी उपहार के रूप में भेंट कर दी।
1: भाई साहब, की शक्कर को तोहफे के रूप में आपने क्यों चुना, क्योंकि आमतौर पर लिफाफा दिया जाता है बहनों को।
2: शक्कर के भाव जो किसी जमाने में 20-25-30 थे, आज 70-75 हो गए।
0: शक्कर के भाव से पूरा हिंदुस्तान परेशान था। इस बीच विपक्ष ने तमाम आंकड़े पेश करने शुरू कर दिए। चीनी एक महीने में 20%, गुड़ 15 दिन में 25%, चाय पत्ती 2 महीनों में 20%, प्याज 1 महीने में 45%, हरी सब्जियां 2 दिनों में 30%, धनिया 15 दिन में 100%, और ये सिलसिला थमता ही नहीं। हाँ, प्याज की महंगाई का उपाय सरकार ने जरूर तलाश लिया। नासिक से 450 टन से ज्यादा प्याज लेकर प्याज एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच चुकी है। सरकार की तरफ से सड़क मार्ग से प्याज की सप्लाई चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे दूसरे बाजारों तक की जा रही है। लेकिन मामला सिर्फ प्याज की महंगाई का नहीं, त्योहारी सीजन में चीनी की महंगाई का भी मुद्दा है। विपक्ष चीनी की महंगाई को लेकर एथेनॉल वाला डबल अटैक कर रहा है।
3: ये बात हो रही है और महंगी हो गई चीनी, वही सोचिए मिलावट के लिए कानून होता है, क्या मिलावट नहीं कर सकते? लेकिन सरकार तो पेट्रोल में मिलावट कर रही है, एथेनॉल का लाभ, चीनी महंगी का लाभ, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बहुत सोची समझी रणनीति के तहत कुछ लोगों को लाभ पहुंचा करके, क्योंकि चुनाव आने वाला है, उसे चंदा तो नहीं लिया जाएगा।
4: चीनी घोटाला तो जरूर हुए हैं, चीनी घोटाला होने के चलते और बाजार में सारे चीनी के दाम में आग लग चुके हैं, तो सारे गन्ने जब इथेनॉल के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे तो चीनी बनाने के लिए गन्ने कहाँ मिलेगा।
0: हालांकि चीनी की महंगाई का एथेनॉल कनेक्शन सरकार पहले ही खारिज कर चुकी है, पर महंगाई का शोर सिर्फ चीनी तक सीमित नहीं। पिछले साल इसी अगस्त महीने की तुलना में देखा जाए तो अगर 41 रुपए किलो की चीनी 63 रुपए किलो है तो 40 रुपए का गुड़ 66 रुपए किलो है, 250 रुपए किलो की चाय पत्ती 276 रुपए किलो है, 27 रुपए किलो वाला प्याज 55 रुपए किलो है, 140 रुपए का लहसुन 250 रुपए किलो में है, पेट्रोल 94.77 रुपए से 7.35 रुपए बढ़कर 102.12 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, डीजल 14.53 रुपए महंगा होकर 102.15 रुपए प्रति लीटर का मिल रहा है, सीएनजी का दाम 76.09 रुपए से 6 रुपए ज्यादा बढ़कर 83.09 रुपए हो चुका है, रसोई गैस 853 रुपए से 89 रुपए बढ़कर 942 रुपए। वैसे चीनी की महंगाई पर विपक्षी दलों के आरोपों के बीच चीनी उत्पादक संघ ने दावा किया है कि अगले हफ्ते तक चीनी के दाम स्थिर हो जाएंगे, लेकिन प्याज और बाकी सब्जियों के दाम की अस्थिरता का इंतजार देश को अब भी बना हुआ है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

भोटे कोशी नदी में लगातार बढ़ रहा है पानी, हाई अलर्ट पर नेपाल, मौत का आंकड़ा 626 के पार। नेपाल में हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत ने भेजी तकनीकी सामानों के साथ रेस्क्यू टीम, 10 टन राहत सामग्री की तीसरी खेप लेकर विमान काठमांडू पहुंचा। उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी, ताशकंद में राष्ट्रपति मिर्जोयेव से होगी वार्ता, बिश्केक में सीओ समिट, पुतिन शी जिनपिंग समेत कई नेताओं से मुलाकात संभव। आज न्यूयॉर्क में कार्यक्रम से पहले इस कॉल में मोहन भागवत का संबोधन, कहा दुनिया में अभी बहुत सारे टकराव और विरोधाभास, मेयर ममदानी ने किया है संघ प्रमुख का विरोध। और दिल्ली एनसीआर में सीएनजी फिर से महंगी, वाहन चालकों पर बड़ा बोझ, 3.89 रुपए प्रति किलो की सीधी बढ़ोतरी, दिल्ली में अब 86.98 रुपए प्रति किलो दाम, सुबह 6 बजे से नई कीमतें लागू, इस साल सीएनजी की 5वीं बढ़ोतरी।

0: इस मलबे और मिट्टी के नीचे ये पूरा बाजार का हिस्सा जा चुका है। चाहे आप छोटी सी एक चाय की दुकान को देख लें, कैनाइन स्क्वाड के भी दस्तों को इसमें शामिल देख सकते हैं, क्योंकि आगे भी हमने देखा कई स्निफर डॉग्स यहां पर दिख रहे हैं जो कि रेस्क्यू एफर्ट्स में काम कर रहे हैं।
1: सारे हेलीकॉप्टर ठप पड़े हैं क्योंकि मौसम अचानक से, बीती रात से लगातार बारिश हो रही है और अगर ऐसा हुआ तो सर्च ऑपरेशन में, बचाव कार्य में काफी देरी हो सकती है।
0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। मैं इस समय उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर जितने लोगों को रेस्क्यू करके लाया जाता है उनकी सूची सबसे पहले अपडेट होकर आती है, और यही कारण है कि यहां पर आप सबसे बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा देखते हैं जो आकर ये जानना चाहते हैं कि क्या कुछ पता लग पाया जिनको वो ढूंढ रहे हैं उनके बारे में। यही वो जगह है जहां पर हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोगों को लाया भी जाता है, यही वो जगह है जहां से रिलीफ सामग्री भी ले जाई जाती है। आज हम आपको नेपाल का पूरा हाल बताएंगे, इस त्रासदी का पूरा हाल बताएंगे, लेकिन पहली अपडेट जो हम आपको दे रहे हैं वो है 626 मौतों की अब तक पुष्टि हो चुकी है, 2000 लोग अभी भी लापता इसमें आधिकारिक रूप से बताए जा रहे हैं, जिसमें एक बड़ी संख्या में भारतीय भी शामिल हैं, विदेशी भी शामिल हैं। इस समय राहत और बचाव कार्य दोनों में दोहरी चुनौती है, एक तरफ मलबे में जिंदगी की तलाश है, दूसरी तरफ नई बाढ़ का खतरा है। नेपाल चीन सीमा के पास दो दिन पहले भीषण फ्लैश फ्लड के बाद लापता ईशा फाउंडेशन के 77 तीर्थयात्रियों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर ने जानकारी दी, 77 लोगों का समूह लगातार संपर्क के बाहर है। बहरहाल बड़ी खबर जो है वो है नेपाल और तिब्बत की सीमा पर क्या एक दूसरा ऐसा जो लेक बना, यानी कि जब वो ग्लेशियर टूटा, ग्लेशियर के टूटने से जो टुकड़े वहां पर मौजूद रहे उसकी वजह से पानी का जो 2 लाख घन पानी का जमावड़ा वहां पर रहा उसके एक बार फिर टूटने का खतरा बनता है, ये एक बड़ा सवाल है। कल भी नेपाल में हाई अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद जब 3 घंटे के लिए राहत कार्य यहां पर रोका गया, एक बार फिर वहां हमने देखा कि राहत कार्य को दोबारा शुरू किया गया, अलर्ट को रोका गया, लेकिन रोजाना इसी खतरे के साए में ये पूरा का पूरा क्षेत्र जी रहा है। तो सबसे बड़े संकट का सवाल यही है कि खतरा जो है वो टला नहीं है, जो ग्लेशियर के टूटने के बाद मलबे से लेक बना, जो वहां पर झील बनी है उसको चाइना भी मॉनिटर कर रहा है लगातार, और उसकी तरफ से अगर वहां पर कोई भी हलचल उसे दिखती है तो संकेत और चेतावनी दी जाती है। इस बार किस तरह के हालात हैं इस रिपोर्ट में देखिए।

0: ये तबाही का सिर्फ ट्रेलर था। अब नेपाल में से 5 गुना ज्यादा तबाही की आशंका जताई जा रही है। नेपाल में तबाही डुआने का खतरा बना हुआ है, जो पहले से 5 गुना ज्यादा हो सकती है। ग्युरांग बॉर्डर पोर्ट के ऊपर बैरियर झील हाल ही में बनी है, जो नेपाल और तिब्बत के बीच की सीमा के पास है। ये एक बांध की तरह है। इसके बनने की वजह भी 26 अगस्त को नेपाल चीन सीमा के पास अचानक आई बाढ़ ही है। चीन की सीमा में बनी झील में 30 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा होने की आशंका है। ये पानी 1200 ओलंपिक स्विमिंग पूल के बराबर है। इतनी बड़ी तादाद में पानी जमा होने पर झील के टूटने का भारी खतरा है। बताया जा रहा है कि 1 सितंबर के आसपास पानी का बहाव सबसे ज्यादा होने की उम्मीद है। गुरुवार को चीनी बचाव दल ने हवाई फुटेज में मलबे से बनी झील को देखा। फुटेज में भूरे रंग का पानी एक ऐसे बेसिन में जमा होता दिख रहा था, जिसका कोई स्पष्ट निकास मार्ग नहीं था। पानी पहले ही झाड़ियों और पेड़ों को डुबो चुका था और अब मलबों और पत्थरों की रुकावट पर दबाव डालता हुआ दिख रहा था। सैटेलाइट तस्वीरों में पता चला है कि 24 से 27 अगस्त के बीच इस झील में पानी जमा हो रहा है। तस्वीरों में जमीन और आसपास का पूरा इलाका भी पहाड़ और मलबे से काफी बदला हुआ दिखाई दिया। यानी जो मलबा पहले बाढ़ की वजह बना, वही अब पानी रोकने वाली प्राकृतिक दीवार बन गया है। अब ये ओवरफ्लो करने लगी है। समस्या ये है कि ये कोई मजबूत बांध नहीं है। झील को रोकने वाली दीवार चट्टानों और बाढ़ के मलबे से बनी है। अगर झील में पानी बढ़ता रहा और ये प्राकृतिक बांध कमजोर हुआ तो वो टूट सकता है। ऐसी स्थिति में झील का पानी अचानक नीचे की ओर बह सकता है। इससे फिर से तेज बाढ़ आ सकती है। नई बनी ये झील उस इलाके में है जहां पहले ही बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। अगर झील का पानी अचानक नीचे आता है तो सबसे पहले भोटे कोशी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। इसी वजह से NDRRMA ने भोटे कोशी इलाके में पानी का बहाव फिर बढ़ने की सूचना के बाद नया हाई अलर्ट जारी किया है। भोटे कोशी के बाद चिंता त्रिशूली नदी को लेकर है। तिब्बत से आने वाली चोत्वेनखोला और पूर्वित सांगपो नदियां आगे जाकर मिलती हैं। नेपाल में प्रवेश के बाद ये नदी तंत्र भोटे कोशी कहलाता है और भोटे कोशी आगे त्रिशूली नदी तंत्र का हिस्सा बनती है। ऊपर पहाड़ों में पानी का अचानक रिलीज होना नीचे नदी किनारे बसे इलाकों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए नेपाल का फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम भोटे कोशी और त्रिशूली नदी के आसपास के इलाकों को अलर्ट पर रख रहा है। लोगों से नदी किनारे और जोखिम वाले इलाकों से दूर रहने को कहा गया है।
1: चीन की तरफ से जो चेतावनी दी गई है उसके बाद यहाँ पर उन सभी कनेक्टेड नदियों का जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरे सामने जो आप नदी देख रहे हैं, इसी में जब वो बाढ़ आई तो ये पूरा त्रिशूली बाजार और नुआकोट का पूरा एरिया फ्लड हो गया था। उनमें से अनेकों अनेक अभी भी मिसिंग है। सरकार की तरफ से यहाँ पर जरूर 1500 का आंकड़ा दिया जा रहा है। लोग बहुत सारे आपको अलग अलग यहाँ पर फिगर्स देंगे, लेकिन अब एक बार फिर इस नदी का जो स्तर है वो बढ़ रहा है और पानी का आवेग बढ़ रहा है।
0: अगर ये प्राकृतिक बांध पूरी तरह से टूटा तो सिर्फ पानी नहीं आएगा, पानी के साथ जमा मलबा, पत्थर और चट्टाने भी नीचे की तरफ दौड़ सकती है। और चीन की तरफ से जो आंकड़े आए हैं वो इस खतरे की गंभीरता को और बढ़ाते हैं। चीनी अधिकारियों के मुताबिक बैरियर लेक में 25 लाख घन मीटर से ज्यादा पानी जमा है। इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसी स्थिति में समझा जा सकता है कि नई झील के टूटने से कैसी तबाही आएगी। श्वेता सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, नुआकोट, नेपाल, आज तक।
1: राहत, बचाव और इंतजार। इंतजार जो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर, लेकिन जब वो एक व्यक्ति के रूप में आपके सामने होता है तो आपको दर्द उसका समझ में आता है। संजीव जी हमारे साथ इस समय हैं, बॉस्टन से आए हैं। उनकी वाइफ यहाँ कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आई थी। रसुआ जिस जगह पर ये हादसा हुआ है वहां पर थी। आप कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे हैं?
2: नहीं, तो मेरा उनसे जो लास्ट कॉन्टेक्ट हुआ था वो नेपाल का टाइम था 26 को, और यहाँ पे मॉर्निंग 8:35 AM पे, एग्जैक्टली 8:35 AM पे मेरा उनसे बात हुआ फोन पे, और वो कॉल मेरा उनसे 11 मिनट चला, 10-11 मिनट। सो ऑलमोस्ट 8:45 तक, 8:45 तक मैं उनसे कॉल में था, और उसके बाद उन्होंने बोला कि उनको कॉल आ रहा है, बाकी टीम बुला रही है, तो वो चली गई। एंड उसके शायद 2 मिनट के बाद ये हो गया, उसके बाद से कोई कॉन्टेक्ट नहीं।
1: क्या उनकी तस्वीर देख सकते हैं?
2: हाँ जी।
1: क्या नाम है?
2: जीवन ज्योति।
1: जीवन ज्योति,
2: हाँ।
1: ये अकेले आई थी बॉस्टन से,
2: अकेले सोलो ट्रिप पे आई थी। इनका 50th बर्थडे था जुलाई 19th को, तो मुझे बोलते हैं कि मेरे को कैलाश मानसरोवर जाना है। हाँ। मैं अपने आप को गिफ्ट करना चाहती हूँ और मैं सोलो ट्रिप पे जाऊंगी।
1: आप उनके ब्रदर हैं?
3: मैं उनका ब्रदर।
1: आप दिल्ली से आए?
3: मैं दिल्ली से आया।
1: एकदम कोई कांटेक्ट आप लोग नहीं कर पा रहे?
3: बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा।
1: उसके बाद से फोन का सिग्नल चल रहा है, रिंग जा रहा है या
3: नहीं? बिल्कुल भी नहीं जा रहा, रिंग भी नहीं जा रहा, नहीं। उनके लास्ट लास्ट लास्ट लोकेशन भी वहीं की है, होटल की, जिस होटल में वो थे। हाँ, होटल कैलाश,
1: होटल कैलाश,
3: यस।
2: और हमको ये नहीं मालूम कि क्योंकि वहां पर सब कनेक्शन चला गया, ठीक है, सब मोबाइल टावर चले गए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो अगर वो मूव हुआ भी होगा फोन कहीं पे और किसी जगह पे, तो मगर वो लोकेशन वही दिखा रहा है सर।
1: तो चाइना की तरफ से बहुत सारे इंडियन जो पिलग्रिम्स थे वो क्रॉस किया उन्होंने, उनमें नाम नहीं आपको दिखाया?
2: नहीं नहीं, क्योंकि वो चाइना साइड पे भी पहुंचे ही नहीं थे। अच्छा। उनको सुबह 12 बजे का उनको टाइम मिला था कि जब उन्होंने जाना था वो पोस्ट पे नेपाल चाइना बॉर्डर पे, वहां से फिर उनको आगे जाना था, तो उन्होंने बोला कि अभी 8:30-9 का टाइम हो रहा है, तो मेरे पास अभी भी 3 घंटे हैं, 3 घंटे के तो हमको फिर जाना है, तो अभी वो लोग गए नहीं थे, तो अभी तो उनकी एक्चुअली जर्नी स्टार्ट हुई थी।
1: आज तक के जरिए वो तस्वीर दिखाकर यही कोशिश है कि उस पूरे एरिया में जितने भी लोग देख रहे हो, टीवी पर इस तस्वीर को देख रहे हो, वो अगर कोई भी जानकारी रखते हैं तो कॉल करवाएं। किसी भी तरह का अगर कोई किसी को इन्फॉर्मेशन हो, आप दिल्ली से आए हैं उनके साथ, ये तस्वीर वो दिखाकर एक ही अपील आप लोग कर रहे हैं?
4: जस्ट हम हाथ जोड़कर विनती, अगर कोई भी जरा सी भी इन्फॉर्मेशन हो किसी के पास भी, तो प्लीज प्लीज आज तक की टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम लोग दिल्ली से हैं सर, बॉस्टन से आए हुए हैं,
1: बहुत ही मुश्किल ये टाइम होता है। यहाँ पर जो लिस्ट लगती है और बार बार, कल हमने आपको दिखाया था सिर्फ ऊपर का लेयर था और 3 और पन्ने इस पे लगे थे, आज वो 3 लेयर्स में लग चुकी है, लेकिन यही सबकी प्रार्थना, सबकी दुआ यही रहती है कि अपने जिसको आप ढूंढ रहे हैं उनका नाम मिल जाए। हम भी आपके लिए यही प्रार्थना करेंगे और हमारे दर्शक अगर कोई भी जानकारी उनको होगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे सर। इसी तरह का इंतजार हमें यहां पर हर जगह देखने के लिए मिल रहा है, बहुत व्यथित, बहुत दुख पहुंचाने वाली स्थिति यह होती है। हालांकि अब भारत की तरफ से भी जो टीमें हैं वो यहां पर पहुंची हैं। पंकज, बालन शाह की तरफ से भी ये क्लैरिफाई किया गया है इस बात को लेकर कि इंटरनेशनल मदद को लेकर उनकी तरफ से क्या उनका रुख क्या है? पंकज
5: जी, बिल्कुल, कल रात को बालन शाह की तरफ से एक फेसबुक पे पोस्ट किया गया कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से उनको ऑफर किया गया है इसके लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि नेपाल इस तरह के ऑफर को ठुकरा रहा है। हाँ, ये बात जरूर है, जो मदद के लिए जो रेस्क्यू टीमें बाहर से आना चाह रही है उसको लेकर थोड़ा रिस्ट्रिक्ट नेपाल गवर्नमेंट जरूर है, क्योंकि पिछली बार जब भूकंप आया था तो इस समय जिस तरह से अफरा तफरी मच गई थी और होड़ लग गया था एक दूसरे देशों में कौन कहां जल्दी पहुंचेगा, तो इस बात को लेकर सरकार थोड़ा सा सतर्क है। इसलिए सबसे पहले जो है नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से भारत सरकार को कल जो रेस्क्यू टीम मंगाया गया, अभी तक सिर्फ भारत को ही ये कहा गया है कि आप अपना रेस्क्यू टीम भेजिए, खासकर वो टनल में जो लोग फंसे हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए उनका एक्सपर्ट भारत से कल रात को ही पहुंच गया और आज से रेस्क्यू का काम शुरू भी कर दिया गया। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि टनल में जितने लोग फंसे हैंगे कम से कम 13 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा और हर हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट का अपना अपना एक टनल होता है, तो उन सभी टनल में कुछ लोग फंसे हुए जो हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उनके उनसे कल हमारी बातचीत करते करते हमारे करीब 1000 लोग अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं, संपर्क में नहीं आ रहे हैं, तो इनको बचाने के लिए भारत की तरफ से एक स्पेशल टीम आ चुकी है और आज से रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया है।
1: रोहित सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित ने चितवन की भी वो रिपोर्ट्स दिखाई थी, क्योंकि जब ऊपर से बहाव आया था तो नेपाल के चितवन तक, जो कि बिल्कुल भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, वहां से रिपोर्ट दिखाई थी। इस समय नवल परासी में हमारे साथ मौजूद है रोहित, बताएं क्या वहां की परिस्थितियां, क्योंकि उस सब पूरे इलाके में भी तलाशी अभियान लगातार जारी है कि कहीं कोई निशान मिले।
6: देखिए श्वेता, आपकी आवाज़ पूरी तरीके से आ नहीं पाई थी, लेकिन देखिए इस वक्त नवलपरासी में हम लोग मौजूद हैं और लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से जो पानी में बहकर लाशें पहुंच रही हैं विभिन्न स्थानों में, चाहे वो त्रिशूली नदी हो, नारायणी नदी हो, उसको जब निकाला जा रहा है तो अस्पतालों में अब क्या हो गया है समस्या कि अस्पताल को इतनी लाशें रखने की जगह नहीं है, क्योंकि देखिए नेपाल में जो अस्पताल जिस तरीके से बनाए गए हैं, कहीं भी किसी भी अस्पताल में मॉर्चुरी ऐसा नहीं है कि वहां 100-100 200-200 आप लाशों को रख सकते हो, कोई भी शव गृह ऐसा नहीं है, मुश्किल से 2-4-5 की ही व्यवस्था होती है। तो ऐसे में जो अब जानकारी आ रही है कि विभिन्न अस्पतालों में जहां जहां बॉडीज रखा गया है वहां पर ओवर कह सकते हैं ओवर स्टॉक हो गया है, ओवरलोडिंग हो गया है, इसीलिए आसपास के ज़िलों में अब आर्टिफिशियल मॉर्चुरी बनाया जा रहा है। चितवन में भी जो है जो जानकारी है कि वहाँ पर भी आर्टिफिशियल मॉर्चुरी बनाया जा रहा है ताकि बॉडीज़ जो पहुँच रही हैं, जो शव पहुँच रहे हैं, उनको वहाँ रखा जा सके, उनका सैंपल जल्दी से जल्दी लिया जा सके, DNA सैंपल, और उसके बाद बॉडी का जो है वो अंतिम संस्कार भी किया जा सके, क्योंकि जो अब लाशें हैं वो कह सकते हैं सड़ना गलना जो है डिकम्पोज होना शुरू हो चुकी हैं, और इसीलिए अस्पताल के ने भी अब एक बहुत गंभीर चुनौती हो गई है कि कितनी इतनी संख्या में जो लाशें आ रही हैं, शव पहुंच रहे हैं वहां पर, उनको किस तरीके से रखा जाए और जल्द से जल्द उनका DNA सैंपल लेकर या तो उनकी शिनाख्त हो ताकि परिजन को हैंडओवर किया जा सके, और अगर नहीं हो पा रहा है तो उनको किस तरीके से फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाए, ये अब चुनौती बनी हुई है खासकर अस्पताल प्रशासन के सामने। श्वेता,
1: मुश्किल स्थिति है क्योंकि अभी तक 626 मौतें बताई जा रही हैं, 626 जो बॉडीज हैं वो निकाली गई हैं। यहाँ पर देखिए ये बहुत मार्मिक तस्वीरें होती है, लोग अपनों के लिए पहुंचते हैं यहाँ पर, या तो तलाश अधूरी रह जाती है, 3 से ज्यादा दिन हो चुके, कई घंटे बीत चुके, लोग बिलख उठते हैं, फूट फूट कर रोने लगते हैं। भले ही एक आंकड़ा हो रोहित, जब हम अस्पतालों की या सरकारी आंकड़ों की बात करें, लेकिन 626 जिंदगियां, 626 परिवार, 626 रिश्ते सब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और ईशा फाउंडेशन की भी जो कई सदस्य हैं वो मिसिंग हैं, उनमें से एक मुझे मेरा ख्याल है कि नवलपरासी में उनके देवर से आपकी बातचीत भी हुई, तलाश तो वहां भी चल रही होगी।
6: जी बिल्कुल श्वेता, देखिए खासकर मैं ईशा फाउंडेशन का यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। 2 दिन पहले हमने देखा था सदगुरु ने किस तरीके से आकर ये इस बात की चिंता जताई थी कि ईशा फाउंडेशन के तरफ से जो ग्रुप 70-80 लोगों का गया हुआ था मानसरोवर यात्रा करने के लिए, वो मिसिंग है, उसको लेकर उन्होंने चिंता जताई थी। और नवलपरासी में जब हम थोड़ी देर पहले मौजूद थे तो वहाँ के एक सरकारी अस्पताल में जब हम एक जगह रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमें वहाँ पर एक परिवार मिला जिनके एक महिला सदस्य जो हैं वो भी ईशा फाउंडेशन के उस ग्रुप की हिस्सा थी, ऑस्ट्रेलिया की वो नागरिक हैं, नाम उनका सुमी अधिकारी है, तकरीबन सुमी अधिकारी, वो ऑस्ट्रेलिया से अकेले आई थी अपने परिवार को छोड़कर, अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर वो ईशा फाउंडेशन के जरिए वो मानसरोवर यात्रा करने गई हुई थी। और जिस दिन वो भयंकर सैलाब आया और वो इमिग्रेशन ऑफिस के ऊपर से वो पूरा सैलाब गुजरता हुआ नजर आया, उस वक्त वो वहीं पर मौजूद थी, उनकी यात्रा समाप्त हो गई थी मानसरोवर की और वापस आ रही थी, उसी दौरान वो सैलाब आया। और उसके बाद पिछले 3-4 दिनों से उनका कोई अता पता नहीं है, उनके परिवार वालों से हमारी बात हुई, जीवन अधिकारी जो उनके देवर हैं वो अस्पताल अस्पताल घूम रहे हैं, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल पोखरा में ढूंढ रहे हैं,
1: चिपक रहे हैं दर दर पर। यहाँ भी हम अपने दर्शकों को बताएं कि ये हम उस जगह पर आपको बता रहे हैं जो इस समय सेंटर है पूरा, जहां से कोई भी जानकारी मिल सकती है। यहाँ पर नेपाल के गृह मंत्री बताया जा रहा है कि आए हैं, जो कि यहाँ पर जायजा ले रहे हैं इस सब कामकाज का और आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे तेजी लाया जाए, उन सारी चीजों की जानकारी ले रहे हैं। नेपाल की सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण भी दिया गया है, बताया गया है कि विदेशी मदद को लेकर उनका रुख क्या है। देखिए इस रिपोर्ट में।
7: तबाही की इन तस्वीरों के बीच इंसान पूरी तरह से लाचार नजर आ रहा है, बस कोशिश जारी है जिंदगियों को बचाने की, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वहीं भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भी सरकार ने कमर कस रखी है। नेपाल त्रासदी में 650 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है, जिसमें भारतीय भी शामिल है। वहीं कई लापता लोगों की तलाश जारी है। अब तक 300 से ज्यादा भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। नेपाल में विदेशी मदद को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने स्थिति साफ की है। उन्होंने कहा है कि नेपाल द्वारा विदेशी सहयोग ठुकराए जाने का प्रचार भ्रामक है। प्रधानमंत्री शाह के मुताबिक भारत, चीन और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ बचाव और राहत के लिए जरूरी सहयोग और सामग्री को लेकर लगातार समन्वय किया जा रहा है।
8: और आखिरकार नेपाल सरकार ने फैसला लिया है कि वो राहत बचाव कार्य में दुनिया भर की दक्ष जो देश हैं, टीम हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में, उनकी मदद लेगी। हालांकि इसके पहले नेपाल सेना ने कहा कि 2015 में हमने सबक लिया था कि कोऑर्डिनेशन की कमी थी, बहुत सारी एजेंसियां थी, लेकिन अब जब आंतरिक मंत्रियों की बैठक हुई इसमें फैसला लिया गया कि उन देशों को जरूर एजेंसियों को यहां आने देना चाहिए जिनकी विशेषज्ञता है। ऐसे में भारत, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे वो देश हैं जिनके पास एनडीआरएफ, जैसे भारत के पास एनडीआरएफ है, उसकी अपनी दक्षता है। इस समय नेपाल को इन विशेषज्ञों की जरूरत इसलिए है कि जिन टनल्स के अंदर, जहां पर हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, जहां नेपाल की सेना ने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए रेस्क्यू ऑपरेशंस किया है, इसके अलावा डीएनए हो, फॉरेंसिक हो, बॉडी की आइडेंटिफिकेशन हो, इन सब प्रक्रियाओं के लिए उसे विशेषज्ञों की जरूरत पड़ेगी।
7: बचाव अभियान में हेलीकॉप्टरों की तैनाती को लेकर भी प्रधानमंत्री शाह ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टरों को तैनात करते वक्त हवाई सुरक्षा, भौगोलिक पहुंच और वास्तविक जरूरत को ध्यान में रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को सरकार की तरफ से किए गए प्रमुख कामों और अब तक की प्रगति की जानकारी भी 20 बिंदुओं में साझा की। नेपाल में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन के बाद तबाही का मंजर है। ऐसे मुश्किल वक्त में भारत लगातार राहत और बचाव के लिए मदद भेज रहा है। 2 विमान राहत सामग्री लेकर नेपाल पहुंच चुके हैं। वहीं राहत सामग्री की तीसरी खेप भी भेजी गई है। नेपाल सरकार के अनुरोध पर भारत अब टनल रेस्क्यू टीम भेजने की तैयारी में है। इससे पहले एक रेकी टीम नेपाल भेजी जा रही है। ये टीम मौके पर जाकर हालात का जायजा लेगी और पता लगाएगी कि रेस्क्यू के लिए किस तरह के उपकरणों की जरूरत होगी। इसके साथ ही मेडिकल टीम भेजने की भी तैयारी है।
9: लापता लोगों का जो लिस्ट है वो अभी 320 का है, लेकिन ये मान के चलिए चूंकि स्थिति हर घड़ी बदल रही है, इसमें कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसके अलावा 100 ऐसे लोग हैं करीबन जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनसे भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है।
7: उधर नेपाल से लौटे भारतीयों से विदेश मंत्री जयशंकर ने दिल्ली एयरपोर्ट पर मुलाकात की और भरोसा दिया कि देशवासियों को सुरक्षित वापस लाने की हर संभव कोशिश की जाएगी।
10: Want to say right now, we are still very much focused on contacting all the Indians who are dead. We believe little more than 300. Exact number keeps going up and down. About 315 Indians are still not been contacted. Roughly about 85 Indians have been rescued from various places, including this group of 21 people who have.
7: बाढ़ प्रभावित इलाकों से रेस्क्यू किए गए 21 भारतीय को काठमांडू से दिल्ली पहुंच गए। इससे पहले त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना में काम कर रहे 63 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया था। वहीं चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। बाढ़ और मलबे ने नेपाल के कई इलाकों का संपर्क तोड़ दिया है। ऐसे में भारत ने बेली ब्रिज और उसकी तकनीकी टीम भेजने की पेशकश की है। मकसद साफ है, प्रभावित इलाकों में सड़क संपर्क जल्द बहाल हो और राहत बचाव अभियान को रफ्तार मिले। नेपाल में एक बेली ब्रिज पहले से मौजूद है जिसका इस्तेमाल राहत कार्यों में किया जा सकता है। भारत ने नेपाल को एनडीआरएफ की टीमें और जरूरी उपकरण भेजने का प्रस्ताव भी दिया है। ये टीमें खोज और बचाव अभियान में मदद कर सकती हैं, साथ ही आपदा प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभा सकती है। अब भारत को नेपाल सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है। नेपाल की इस त्रासदी के बीच विदेशों में बसे नेपाली और भारतीय मूल के लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं ने नेपाल के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत राशि जुटाई। दक्षिण पूर्वी लंदन के प्लमस्टेड स्थित एक मंदिर में रक्षाबंधन कार्यक्रम को नेपाल के बाढ़ पीड़ितों और बचाव अभियान के लिए फंड जुटाने से जोड़ा गया। यानी नेपाल की त्रासदी के खिलाफ मदद की मुहिम देश की सीमाओं से बाहर भी पहुंच चुकी है।
11: रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
15: एक तो एक
16: इश्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: पापा।
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया
3: है।
5: ला भाई मेरा बैट,
6: वो अभी तो ठीक हुआ। तो
7: चार्ज हुआ यार।
8: बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बाय एकदम सॉलिड।

0: The new BE6 Sportage. In association with
1: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega. Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera.
2: आज तक ना होता तो हमारी बात देश दुनिया तक नहीं पहुंचती।
3: हम लोग को बड़े चैनल का सहयोग नहीं मिला था, हम लोग गरीब छात्र लोग हैं, तो आज आप लोग का सहयोग मिला है तो पूरा भारत और पूरा दुनिया में यहाँ की आवाज गूंज रही है।
2: खबरों के साथ पक्षपात नहीं।
4: 19 साल के छात्र साहिल रजा पे दावा किया, उन पर सुरक्षा बलों ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया जिससे उनकी एक आंख की रोशनी जाने की नौबत आ गई।
2: हर बात देश के सामने।
3: अंजना मैम, सबसे पहले तो हम लोग आवाज को बुलंद किए इसके लिए आपके पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं।
2: मुद्दा कोई भी हो, सोए हुए सिस्टम को जगाता है आज तक।

0: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: The new BE6 Sportec. In association with
1: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega. Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera.
2: आज तक ना होता तो हमारी बात देश दुनिया तक नहीं पहुंचती।
3: हम लोग को बड़े चैनल का सहयोग नहीं मिला था, हम लोग गरीब छात्र लोग हैं, तो आज आप लोग का सहयोग मिला है तो पूरा भारत और पूरा दुनिया में यहाँ की आवाज गूंज रही है।
2: खबरों के साथ पक्षपात नहीं।
4: 19 साल के छात्र साहिल लजा पे दावा किया, उन पर सुरक्षा बलों ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया जिससे उनकी एक आंख की रोशनी जाने की नौबत आ गई।
2: हर बात देश के सामने।
5: अंजना मैम, सबसे पहले तो हम लोग आवाज को बुलंद किए, इसके लिए आपके पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं।
2: मुद्दा कोई भी हो, सोए हुए सिस्टम को जगाता है आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नेपाल की भोटे कोशी नदी में लगातार बढ़ रहा है पानी, हाई अलर्ट पर नेपाल, मौत का आंकड़ा 626 के पार। नेपाल में हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत ने भेजी तकनीकी सामानों के साथ रेस्क्यू टीम, 10 टन राहत सामग्री की तीसरी खेप लेकर विमान काठमांडू पहुंचा। उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी, ताशकंद में राष्ट्रपति मिर्जोयेव से होगी वार्ता, बिश्केक में सीओ समिट, पुतिन शी जिनपिंग समेत कई नेताओं से मुलाकात संभव। आज न्यूयॉर्क में कार्यक्रम से पहले इस कॉल में मोहन भागवत का संबोधन, कहा दुनिया में अभी बहुत सारे टकराव और विरोधाभास, मेयर ममदानी ने किया है संघ प्रमुख का विरोध। और दिल्ली एनसीआर में सीएनजी फिर से महंगी, वाहन चालकों पर बड़ा बोझ, 3.89 रुपए प्रति किलो की सीधी बढ़ोतरी, दिल्ली में अब 86.98 रुपए प्रति किलो दाम, सुबह 6 बजे से नई कीमतें लागू, इस साल सीएनजी की 5वीं बढ़ोतरी।

0: हूं श्वेता सिंह और नेपाल के सबसे बुरी तरीके से प्रभावित जो जिला रहा है और जहां पर वो केंद्र बनाया गया है जहां से रिलीफ पहुंचाया जा रहा है, राहत का काम चल रहा है और तलाशी अभियान जो है उसके लिए लोग निकल रहे हैं, वो सब कुछ यहीं से हो रहा है। दरअसल एक तरफ राहत का कार्य है, बचाव का कार्य है, दूसरी तरफ यहां पर है एक नई बाढ़ का खतरा।
1: नेपाल में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन ने ऐसा कहर बरपाया कि कई इलाके मलबे में तब्दील हो गए। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है जबकि करीब 2000 लोग अब भी लापता हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अलग अलग देशों के कई विदेशी नागरिकों को सुरक्षित खोज लिया गया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक 33 देशों के 632 विदेशी नागरिक इस आपदा से प्रभावित हुए। इनमें से 121 लोगों को खोज निकाला गया है लेकिन 511 विदेशी नागरिक अब भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं नेपाल आपदा प्राधिकरण के मुताबिक कुल 1924 लोगों का अब भी कोई पता नहीं चल पाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच नेपाल के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। भोटे कोशी नदी के ऊपरी हिस्से में जलस्तर तेजी से बढ़ने की खबर है। चीनी अधिकारियों से मिली जानकारी के बाद रसुआ जिला प्रशासन अलर्ट पर है। नेपाल के बाढ़ पूर्वानुमान महाशाखा और आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है। त्रिशूली नदी के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की गई है। मुगलिंग तक नदी किनारे रहने वाले लोग, यात्री और राहत कर्मी खास तौर पर सतर्क रहें। यानी एक तरफ मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है तो दूसरी तरफ पानी का बढ़ता स्तर नई आफत का संकेत दे रहा है। नेपाल की सेना, सशस्त्र पुलिस बल, नेपाल पुलिस, स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मी लगातार राहत और बचाव अभियान में जुटे हैं। घायलों को इलाज मुहैया कराया जा रहा है। प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना और फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना है। नेपाल सरकार का कहना है कि पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए जरूरत के मुताबिक विदेशों से मदद ली जाएगी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि आपदा का असर देश के सिर्फ कुछ हिस्सों में है, इसलिए नेपाल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और पर्यटकों के लिए खुला है। लापता और फंसे विदेशी नागरिकों की जानकारी जुटाने के लिए नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी बनाया है। इसके जरिए अलग अलग देशों के दूतावासों के साथ लगातार संपर्क और समन्वय किया जा रहा है। नेपाल में तबाही का मंजर अभी थमा नहीं है। मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है। हजारों परिवार अपनों की सलामती की उम्मीद लगाए बैठे हैं और अब भोटे कोशी और त्रिशूली में बढ़ता जल स्तर एक नई चुनौती बन गया है। यानी नेपाल में इस वक्त रेस्क्यू भी जारी है और खतरे की घंटी भी बज रही है। आज तक ब्यूरो।
0: त्रिशूली नदी के किनारे किनारे जो भी इलाका ऐसा आया जिसकी ऊंचाई उतनी नहीं थी, वो सारे क्षेत्र जो है वो तबाह होते चले गए क्योंकि नदी ने जब अपने बांध को तोड़ा तो वो फर्क नहीं करती रही कि कौन सा इलाका जंगल पहाड़ है और कौन सा इलाका ऐसा है जहां इंसान बसते हैं। ऐसा ही एक इलाका देवी घाट जहां रिहायशी इलाके, बाजार, सब कुछ तबाह हो गया। देखिए मेरी ये रिपोर्ट। ये देवी घाट की प्रहरी चौकी हम आपको दिखा रहे हैं और आगे देवी घाट बाजार है। पूरा त्रिशूली बाजार का हाल आपने देखा। ये देवी घाट की तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। ये भी पूरी तरीके से इस मलबे और मिट्टी के नीचे ये पूरा बाजार का हिस्सा जा चुका है। चाहे आप छोटी सी एक चाय की दुकान को देख लें, यहां पर खड़े हुए ट्रैक्टर्स को देखकर शायद आपको वो पैमाना ज्यादा समझ में आएगा और साथ ही वो दुकानों के शेड्स, इधर मंदिर का भी हिस्सा है जो पूरी तरीके से मिट्टी और मलबे के नीचे है।
2: श्वेता सिंह नेपाल में जहां से रिपोर्ट कर रही हैं, ये त्रिशूली देवी घाट मुख्य रूप से नेपाल के नुवाकोट जिले में त्रिशूली और तादी नदियों के संगम पर मौजूद एक ऐतिहासिक, धार्मिक और आर्थिक महत्व का क्षेत्र है जहां ऊपर के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में 350 लोग तो बच गए लेकिन नीचे देवी घाट तक बहाव ने बहुत कुछ खत्म कर दिया।
0: ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से बह चुका है। बाजार से पहले का जो ये हिस्सा है ये रेसिडेंशियल एरिया है और घरों के यहाँ का हाल देखकर आप समझ लीजिए। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि इस गांव में उस समय लोग सभी थे मौजूद इवैक्यूएशन के लिए। कुछ बातें कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि इवैक्यूएशन के लिए कहा गया था लेकिन यहां पर गांव वाले थे, अपना सामान ले जाने की कोशिश कर रहे थे जल्दी से जल्दी, लेकिन देखकर ही पता चल रहा है कि शायद ये संभव नहीं हो सका होगा।
2: देवीघाट के इस इलाके में अब कुछ चंद लोग मिलते हैं, जो बचे हैं वो बताते हैं कितना खतरनाक रहा है लोगों को यहाँ बचाना तक।
3: अभी चैलेंजेस, सबसे बड़ी चैलेंजेस तो ये है कि रास्ता, इधर अभी कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, कितने लोग दबे हुए हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उधर तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है।
4: तो कितना फुट मिट्टी है ये जो आप कह रहे हो इसके नीचे लोग दबे हो सकते हैं?
3: इधर तकरीबन आपका ये बोले कि 2-3 इंसान इसमें आराम से अंदर जा सकता है, इतना ऊपर तक मिट्टी आ चुका है, रमल आ चुका है। तो अभी इधर पैदल तो कोई भी सोच भी नहीं सकता है कि इधर से आगे जाए, पूरा धस जाता है। हम लोग सुबह कोशिश भी किए थे, सुबह इधर नीचे से आपका दो आपका सब निकाला गया, एक सब निकालने के लिए तकरीबन 45 मिनट लग गया था। इतना मुश्किल, इतना कठिन है।
4: दलदल में कोई आदमी उतरे तो वो नीचे चला जाएगा?
3: हाँ जी, और उसको खींचने के लिए भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई दूसरा बंदा उधर जा ही नहीं सकता है।
0: यहाँ पर आप जो रिलीफ वर्कर्स हैं उनको देख रहे हैं, ये पूरा एरिया, इसके आगे फिर बाजार का एरिया हो जाता है जो मिट चुका है, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और कोशिशें यही जारी हैं कि किसी तरीके से जल्दी रिलीफ का ये काम किया जा सके। जो हमारे ये आप कैनाइन स्क्वाड के भी दस्तों को इसमें शामिल देख सकते हैं, क्योंकि आगे भी हमने देखा कई स्निफर डॉग्स यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि रेस्क्यू एफर्ट्स में काम कर रहे हैं, क्योंकि कोशिशें ये हो रही हैं कि यहाँ जो गांव वाले जो अधिकांश लापता बताए जा रहे हैं उनको किसी तरीके से ढूंढा जा सके।
5: घर थे सब पूरा घर ही घर थे, नहीं मंदिर भी मंदिर थे, घर थे, रोड थे, अनि राम्रो ठाउँ थियो नि,
0: सब अच्छा था यहाँ।
5: छैन अब, अहिले केही छैन,
0: अब कुछ नहीं।
2: त्रिशूलू में ऊपर से नीचे तक 3 दिन बाद भी तबाही के नए वीडियो सामने आते हैं जो बताते हैं कि बाढ़ किस तरह तबाही मचाती गई। सैलाब में सब कुछ बहा, नीचे बने निर्माण तो ऐसे टूटे जैसे कागज गेहूं। ये भी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का ही वीडियो बताया जाता है। ऊपर से बहुत वेग के साथ पानी आया और तमाम मजबूत निर्माणों को तोड़ता चला गया। जहां तबाही के सैलाब के बाद जिंदगी की तलाश जारी है। श्वेता सिंह, देवीघाट, त्रिशूली, नेपाल आज तक।
0: आधिकारिक रूप से जो आंकड़ा यहां पर दिया गया है वो 2000 लोगों के मिसिंग होने का दिया गया है। लोग यहां पर इस पूरे हिस्से में आप देखिएगा अपनों की तस्वीरें लेकर बैठे हुए हैं, उस लिस्ट में अपनों के नाम की तलाश कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति 26 अगस्त की उस त्रासदी के बाद से इसी जगह पर जमा हुआ है ये जानने के लिए कि कोई खबर उसके अपनों के बारे में उसे मिल जाए।
6: से बात हुई थी उससे और उसके बाद कुछ भी पता नहीं, किसी से हम लोग को कहीं किसी से कोई।
7: अगर कोई सुविधा मिले तो मैं खुद जाना चाहती हूँ, सुविधा मिले तो
8: ढूंढने के लिए।
9: भाई के पता नहीं है, किधर है मालूम नहीं है, हम बहुत दुखी है।
10: कॉल किया, कॉल नहीं लगा, इधर गांव में भी ढूंढ रहा है नहीं मिला, अभी हम लोग भी हॉस्पिटल इधर ढूंढ रहे नहीं मिला है।
0: नेपाल की त्रासदी में दुनिया भर के कई देशों के लोग प्रभावित हुए, कई भारतीय अभी भी लापता हैं। जो उनके परिवार है भारत में वो उम्मीदों के साथ बैठे हैं, इंतजार में है कि कहीं से कोई अच्छी खबर आ जाए।
1: नेपाल आपदा ने सैकड़ों परिवारों को जीवन भर का दर्द दे दिया। इस आपदा में अभी भी लापता लोगों की खोजबीन जारी है। त्रासदी की चपेट में कई भारतीय परिवार भी आए हैं। इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो नेपाल में रोजी रोटी के लिए गए थे, कई ऐसे भी हैं जो अमेरिका से आकर नेपाल घूमने गए थे। मध्य प्रदेश के विदिशा की रहने वाली और कनाडा के टोरंटो में रह रही इंजीनियर स्वाति बागरेचा कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान चीन तिब्बत सीमा के पास से लापता हो गई है। 26 अगस्त की सुबह 9 बजे परिवार से संपर्क टूट गया। स्वाति के मोबाइल पर अभी भी रिंग जा रही है, लेकिन वह कॉल रिसीव नहीं कर रही है। परिवार का कहना है कि नेपाल तिब्बत सीमा पर आई बाढ़ के दिन से ही स्वाति लापता है। मोबाइल की लोकेशन चीन बॉर्डर के आसपास आ रही है। परिजन ने संबंधित एजेंसियों से मोबाइल लोकेशन तकनीकी रूप से ट्रैक कर स्वाति की सही स्थिति का पता लगाने की मांग की है।
11: ये एक्चुअली वहां से निकली थी कैलाश से और वापस आ रही थी नेपाल के लिए, तो बीच में इमिग्रेशन सेंटर पड़ता है चाइना बॉर्डर पे, तो इमिग्रेशन सेंटर में थी ये, शायद ये सब लोग उस वक्त उसी में थे और उसी वक्त ये इंसिडेंस हुआ। तो पूरा पानी का इतना तेज बहाव था कि उसमें इतने तेज बहाव में हम किसी को नहीं मालूम पड़ रहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
12: आखिरी बार आपकी उनसे कब बात हुई?
11: नहीं, एक्चुअली बात तो टेलीफोन से हो नहीं पाती है, चाइना में है वो
12: जी,
11: तो मैसेज नेट हंसी मैसेज आता है उसका बराबर रेगुलर, तो वो उसी दिन इंसिडेंस हुआ उस दिन रात में मैसेज था 4:30 बजे, मतलब वहाँ का टाइम रहा होगा 7 बजे करीब का कि हम निकल रहे हैं वहाँ पर इमिग्रेशन सेंटर जाके, और वो आज सुबह उसका यहाँ आने का था विदिशा आने का
12: जी,
11: परंतु त्रासदी कांड वो नहीं आ पाई।
1: इसी जल प्रलय के बीच हरियाणा के भिवानी जिले के बड़सी गांव की रहने वाली और वर्तमान में फिनलैंड में डॉक्टर के तौर पर सेवाएं दे रही डॉक्टर प्रियंका चौधरी भी लापता हो गई है। प्रियंका करीब 70 साथी डॉक्टरों के दल के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा और नेपाल भ्रमण के लिए गई थी। परिवार के मुताबिक 25 अगस्त की रात वीडियो कॉल पर प्रियंका से आखिरी बार बात हुई थी। इसके करीब 1 घंटे बाद उनका मोबाइल फोन बंद हो गया और तब से परिवार का उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है।
13: ये डॉक्टर की फिनलैंड में रहती थी, वहां पे कुछ दिन पहले ही 14 तारीख को अपने ईशा फाउंडेशन की तरफ से टूर में आए थे घूमने के लिए। उनको अपना सब वहां पे अपने यात्रा के ऊपर में थे, वहां पे वो गए हुए थे वो देखने के लिए मानसरोवर वगैरह। लगभग ये लोग 77 यात्री इकट्ठे थे। इन्होंने अपनी इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी करके काठमांडू लौट रहे थे। रास्ते में उनको सुबह संपर्क हुआ था 8-9 बजे के करीब, उसके बाद से कोई संपर्क में नहीं है।
1: उधर कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नेपाल में लापता हुए कल्याण डोंबिवली के 3 तीर्थयात्रियों के परिवारों में भी चिंता फैल गई है। तीर्थयात्री पिछले 3 दिनों से अपने परिवारों से संपर्क में नहीं है, जिससे उनके ठिकाने और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। परिवारों के अनुसार वे पिछले 3 दिनों से तीनों तीर्थयात्रियों से संपर्क स्थापित करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उनकी कॉल का कोई जवाब नहीं मिला है और अब तक कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है। उनका सटीक स्थान और संपर्क टूटने के कारण अज्ञात है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए गुजरात के लोगों के परिजनों की चिंता बढ़ गई है। सूरत के एक परिवार के 3 सदस्य परेश पटेल, उनकी पत्नी ज्योति और बेटी मीनाक्षी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहीं गांधीनगर से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए अमिता अमीन, तेजल और जितेंद्र पटेल के परिजन भी उनकी जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। परिवारों ने सरकार से जल्द अपने परिजनों की स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने और सुरक्षित वापस लाने में मदद की अपील की है। इस आपदा में कई परिवार लापता हो गए जिनकी तलाश जारी है।
0: नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इस एरिया में क्योंकि बहुत बने हुए हैं, सबको नुकसान पहुंचा है। कई जगह पर जो मजदूर फंसे थे उन्हें निकाल लिया गया, कुछ अभी भी फंसे हुए हैं।
14: क्या ये टनल ना होती तो 350 लोग जिंदा ना बचते। क्या त्रिशूली की टनल ने ही त्रिशूली नदी में आई प्रलयंकारी बाढ़ से सैकड़ों को बचाया। क्या त्रिशूली की टनल ही नेपाल में प्राण बचाने वाली रक्षक बनी। नेपाल आर्मी के ऑपरेशन त्रिशूली की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। 26 अगस्त की सुबह से लेकर अब तक नेपाल में 50 किलोमीटर से लंबा दायरा है जहां किसी का बचना अब चमत्कार माना जाता है। जहां त्रिशूली नदी में आए विनाशकारी फ्लैश फ्लड ने अपने साथ मकान, दुकान, इंसानों को या तो बहा दिया या फिर मलबे में समेट दिया। आसमानी तस्वीर बताती है नेपाल में अब जो भी जिंदा बचता है उसका बचना नामुमकिन था, लेकिन वो बच पाया क्योंकि या तो वो ऊपर की तरफ भागा या फिर उसने सहारा लिया एक टनल का। जिसे खोजा नेपाल आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हेलीकॉप्टर ने, जिन्हें अचानक एक मजदूर त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल नंबर 3A के पास बचाव की मदद मांगता नजर आया। हेलीकॉप्टर देखकर मानो इस शख्स को लगा कि प्राण मिल गए, ये तुरंत आगे की तरफ भागने लगा। लेकिन सेना के जवान नेपाल में जानते थे खतरा आगे कितना बड़ा है, इसलिए जैसे ही सुरंग के बाहर फैले फ्लैश फ्लड के मलबे की तरफ ये भागता है, इसे रोका जाता है। ये वापस टनल के मुहाने के पास चट्टान के करीब जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये मलबा ऐसा है जिसमें तेजी से भागने पर पैर फंस जाता है, तो उसे बाहर निकालना पहले से ज्यादा कठिन हो जाता है। इसीलिए दलदली मलबे से दूर इस शख्स को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ट्रॉली तैयार की जाती है, जिससे दो जवान नीचे आते हैं। फिर इस ट्रॉली में बैठकर नीचे उतरे जवान मजदूर के पास पहुंचते हैं, उसे ट्रॉली में बैठाया जाता है। एक जवान मजदूर के साथ ट्रॉली में बैठता है और फिर हेलीकॉप्टर से ट्रॉली को ऊपर खींचा गया। इस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन इसका पूरा हुआ। इसी के बाद सेना को पता चलता है कि त्रिशूली के इस 4 किलोमीटर लंबी टनल में अंदर सैकड़ों मजदूर फंसे। फिर तुरंत नेपाली सेना ऑपरेशन को और विस्तार देती है। नेपाली सेना के जवान सबसे पहले इस टनल के मुहाने पर पहुंचे। यहाँ दलदल वाला कीचड़ भरा हुआ था। आप देख सकते हैं कि कैसे इन जवानों को क्रॉल यानी रेंगते हुए भीतर जाना पड़ रहा है। यहाँ मलबा इतना था कि एक जवान बड़ी मुश्किल से भीतर गया, फिर दूसरा जवान आता है और वहाँ हेलीकॉप्टर से एक ट्रॉली लटकाई गई ताकि जो मजदूर अंदर से आए इसके सहारे उनका रेस्क्यू हो सके। इन जवानों ने अपनी कमर पर रस्सी बांधी हुई है ताकि इस कीचड़ के दलदल में वो खुद ना फंसे। फिर हाथों के सहारे रेंगते हुए जवान इस टनल के अंदर दाखिल हुए, क्योंकि मिट्टी में चलते तो फंस जाते। और फिर इस तरह से टनल के अंदर दाखिल हुए। अंदर बहुत से मजदूर फंसे थे जिन्हें बाद में एक एक करके बाहर निकाला गया है। हर मजदूर को ऐसे यहाँ पर रेस्क्यू करके बाहर लाना कितना मुश्किल था, ये इन तस्वीरों में दर्ज है। इन मजदूरों को ऐसे ही नेपाली सेना के जवान अपने कंधे पर भी उठाकर बाहर लाए। इस दलदल में जब वो चलते हैं तो पैर इनके धस रहे हैं। एक मजदूर तो इस मलबे में पूरी तरह फंस गया, वो आगे बढ़ तक नहीं पा रहा था। उसको यहाँ से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया, क्योंकि इस गेट पर मलबा ही मलबा दिखता है। नेपाली सेना का दावा है यहाँ पर 350 मजदूरों को बचाया गया है। ये लोग इसलिए बच पाए क्योंकि दावा है कि जब त्रिशूली नदी में बाढ़ का उफान आया तो ये लोग टनल की तरफ भागे, यहाँ भीतर ऊंचाई तक बाढ़ का जानलेवा मलबा नहीं पहुंच पाया। श्वेता सिंह, देवीघाट, त्रिशूली, नेपाल आज तक।
0: नेपाल से लगातार इस त्रासदी के बारे में हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

भोटे कोशी नदी में लगातार बढ़ रहा है पानी, हाई अलर्ट पर नेपाल, मौत का आंकड़ा 626 के पार। नेपाल में हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत ने भेजी तकनीकी सामानों के साथ रेस्क्यू टीम, 10 टन राहत सामग्री की तीसरी खेप लेकर विमान काठमांडू पहुंचा। उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी, ताशकंद में राष्ट्रपति मिर्जोयेव से होगी वार्ता, बिश्केक में सीओ समिट, पुतिन शी जिनपिंग समेत कई नेताओं से मुलाकात संभव। आज न्यूयॉर्क में कार्यक्रम से पहले इस्कॉन में मोहन भागवत का संबोधन, कहा दुनिया में अभी बहुत सारे टकराव और विरोधाभास, मेयर ममदानी ने किया है संघ प्रमुख का विरोध। और दिल्ली एनसीआर में सीएनजी फिर से महंगी, वाहन चालकों पर बड़ा बोझ, ₹3.89 प्रति किलो की सीधी बढ़ोतरी, दिल्ली में अब ₹86.98 प्रति किलो दाम, सुबह 6 बजे से नई कीमतें लागू, इस साल सीएनजी की 5वीं बढ़ोतरी।

0: इस मलबे और मिट्टी के नीचे ये पूरा बाजार का हिस्सा जा चुका है। चाहे आप छोटी सी एक चाय की दुकान को देख लें, कैनाइन स्क्वाड के भी दस्तों को इसमें शामिल देख सकते हैं, क्योंकि आगे भी हमने देखा कई स्निफर डॉग्स यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि रेस्क्यू एफर्ट्स में काम कर रहे हैं।
1: सारे हेलीकॉप्टर ठप पड़े हैं क्योंकि मौसम अचानक से, बीती रात से लगातार बारिश हो रही है और अगर ऐसा हुआ तो सर्च ऑपरेशन में, बचाव कार्य में काफी देरी हो सकती है।
2: तो नेपाल त्रासदी पर हमारी लगातार बड़ी खबरें जारी है। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, नेपाल की महातबाही में मौत का आंकड़ा बढ़कर 626 तक पहुंच गया है। अभी भी करीब 2400 लोग लापता हैं, कुछ अता पता नहीं है उनका। अब इनमें 320 भारतीय भी हैं और इनकी तलाश की जा रही है। तो मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 600 के ऊपर निकल गया, 626 पहुंच चुका है मरने वालों का आंकड़ा। 320 भारतीय लापता हैं और कुल जो लापता लोगों की संख्या है वो 2400 है। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है बहुत से लोग आ रहे हैं कि उनके अपने लापता हैं, जैसे कि माँ बाप भाई बहन पति पत्नी। अब वो लोग प्रशासन के पास जा रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं कि उनके अपनों को ढूंढा जाए। तो ऐसे में लापता लोगों की संख्या भी अब बढ़ती जा रही है। शुरुआत में 1000, फिर 1500 और अब यह बताया जा रहा है कि 2400 लोग लापता हैं और इनकी तलाश में दिन रात एक इस वक्त नेपाल की सेना ने किया हुआ है। 320 भारतीय भी इसमें शामिल है जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनको ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। 626 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है और यह आंकड़ा वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। 2265 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। नेपाल की आपदा प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हर जगह विषम परिस्थितियों में इस वक्त लोगों की मदद की जा रही है नेपाल की सेना की तरफ से। और आइए अब देखते हैं शतक आस्था। नेपाल में कुदरत का कहर जारी, त्रासदी में मौत का आंकड़ा 626 के पार पहुंचा। नेपाल बाढ़ में फंसे 21 तमिल तीर्थयात्री सुरक्षित दिल्ली पहुंचे, भारत ने राहत अभियान तेज किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर नेपाल से लौटे भारतीयों से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, तमिलनाडु निवासी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे नेपाल। चीन में फंसे 400 भारतीय सुरक्षित, भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन के साथ निकासी में जुटा। नेपाल में तबाही के बीच बड़ा नया खतरा, भोटेकोशी नदी उफान पर, त्रिशूली नदी के आसपास बाढ़ का अलर्ट, प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा। नेपाल में सुरंगों में फंसे लोगों के बचाव के लिए भारत ने भेजी 11 सदस्यीय मेडिकल और टनल रेस्क्यू टीम, साथ में राहत सामग्री भी पहुंचाई। नेपाल की मदद के लिए भारत का राहत अभियान तेज, राहत सामग्री की तीसरी खेप लेकर विमान काठमांडू पहुंचा, 10 टन जरूरी सामान भेजा गया। नेपाल में आई त्रासदी में अपनों की तलाश में अस्पतालों के बाहर जुटे परिजन, अब भी हजारों लोग लापता हैं। नेपाल त्रासदी में करीब 2000 लोग अब भी लापता, 13 पनबिजली परियोजनाओं में काम कर रहे 933 कर्मचारी भी शामिल। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा बड़ा दावा किया, विदेशी सहयोग ठुकराने का प्रचार भ्रामक है। त्रिशूली वन हाइड्रो प्रोजेक्ट से 63 भारतीय सुरक्षित निकाले गए, कई लोगों की तलाश अब भी जारी है। नेपाल तिब्बत सीमा पर भीषण आपदा, 96 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंचे, निकासी की तैयारी। हिमालय में लगातार बारिश से खतरा बढ़ा, बैरियर झील टूटी तो आ सकती है नई बाढ़। नेपाल चीन सीमा पर ग्लेशियर तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई, ग्लेशियर धंसने वाली जगह पर दिखी दो झीलें। नेपाल में बाढ़ के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो, नेपाली सेना ने हेलीकॉप्टर से कई लोगों को सुरक्षित निकाला। चुनौतियों के बीच नेपाल में मिशन जिंदगी जारी, नेपाली सेना ने अब तक 2600 लोगों को एयरलिफ्ट किया, 163 विदेशी नागरिक भी शामिल। नेपाल हादसे में मानसरोवर यात्रा पर गई दिशा। ईशा फाउंडेशन की ऑस्ट्रेलियाई नागरिक सुमी अधिकारी लापता, परिवार अस्पताल में तलाश कर रहा है। नेपाल में मुसीबत के बीच 8 साल के बच्चे ने पेड़ पर चढ़कर बचाई जान। एक दिन बाद किया गया एयरलिफ्ट, बच्चे से मिलकर भावुक हुई मां। नेपाल में भोटे कोशी बाढ़ का कहर, 5 जिलों के 15 स्थानीय निकाय 3 महीने के लिए आपदा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित। पीएम मोदी उज्बेकिस्तान दौरे के लिए रवाना, विदेश मंत्रालय ने भारत उज्बेकिस्तान के खास रिश्तों की झलकियां की साझा। 4वीं बार ताशकंद दौरे पर हैं पीएम। 4 दिवसीय सेंट्रल एशिया दौरे पर पीएम मोदी आज से 1 सितंबर तक उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य में रहेंगे। पीएम मोदी के स्वागत में तिरंगे के रंग में रोशन हुआ ताशकंद का हिल्टन होटल। ताशकंद में पीएम मोदी की राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव से अहम मुलाकात। बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी, पुतिन से द्विपक्षीय मुलाकात और शी जिनपिंग से आमना सामने पर नजर। एससीओ के मंच पर आतंकवाद के खिलाफ भारत का फोकस, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की मौजूदगी में आतंकवाद अलगाववाद के खिलाफ उठेगी आवाज। सेंट्रल एशिया दौरे से भारत के रिश्तों को मिलेगी नई मजबूती, सुरक्षा कनेक्टिविटी और व्यापार पर पीएम मोदी का खास जोर। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर मोहन भागवत का पोस्टर, आज मेडिसन स्क्वायर गार्डन में यूनिवर्सल ऑनलाइन सेलिब्रेशन कार्यक्रम में संबोधन देंगे। न्यूयॉर्क में मोहन भागवत का बड़ा कार्यक्रम, आरएसएस के शताब्दी वर्ष में यूनिवर्सल ऑनेस सेलिब्रेशन का आयोजन। इस कार्यक्रम के तहत कनाडा और ब्रिटेन की भी यात्रा करेंगे आरएसएस प्रमुख। न्यूयॉर्क में इस्कॉन की 60वीं वर्षगांठ समारोह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, कृष्ण चेतना ही दुनिया को एकजुट कर सकती है। न्यूयॉर्क में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का इस्कॉन मंदिर दौरा, पूजा अर्चना के साथ बेघर लोगों के लिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन अभियान में लिया हिस्सा। मोहन भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम पर कई एक्टिविस्ट संगठनों का मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर प्रदर्शन। दिमागी नक्सल पर सियासी संग्राम तेज, आरएसएस से जुड़े ऑर्गेनाइजर ने सोनिया गांधी की एनएससी को बताया दिमागी नक्सलों का क्लासिक टेकओवर। दिमागी नक्सल की परिभाषा पर बड़ा सियासी बहस है, ऑर्गेनाइजर का आरोप, एनएसी के जरिए शासन व्यवस्था पर प्रभाव डालने की कोशिश। सोनिया गांधी की किताब पर सियासी घमासान, कांग्रेस का आरोप, बिलोंगिंग के प्रकाशन पर दबाव, अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल। सोनिया गांधी की किताब को लेकर कांग्रेस का हमला, अशोक गहलोत बोले, दुनिया में छप रही किताब भारत में क्यों नहीं। पार्टी लाइन के खिलाफ बयान पर बीजेपी पंजाब सख्त, संगरूर के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत 3 नेताओं से 7 दिन में जवाब मांगा। नीट विवाद के बीच एनटीए में केंद्र का बड़ा फेरबदल, 2 डायरेक्टर और 1 जॉइंट डायरेक्टर की नियुक्ति। एनटीए में रवि कुमार सिंह और प्रसन्न वेंकटेश बने डायरेक्टर, अमित समदरिया को जॉइंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में अनियमितता की जांच के दौरान सीआईजी एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, सफल 4 अभ्यर्थी गिरफ्तार। स्मृति ईरानी ने गिराई जनधन योजना की उपलब्धियां, बोली 12 साल में 59 करोड़ खाते खुले, महिलाओं और ग्रामीण परिवारों को मिला बड़ा फायदा। वाल्मीकि घोटाले के आरोपों के बीच कर्नाटक के मंत्री नागेंद्र का मंत्री पद से इस्तीफा, और उन्होंने बोला, मुझे दलित होने के कारण निशाना बनाया जा रहा है। जादवपुर में 10,000 लोगों के साथ वंदे मातरम कार्यक्रम में पहुंचे शिवेंदु अधिकारी, बोले जेएनयू और उस्मानिया के बाद अब जादवपुर यूनिवर्सिटी की बारी, राष्ट्रवादी उभार नहीं रुकेगा। जादवपुर यूनिवर्सिटी के कथित देश विरोधी नारों पर शिवेंदु अधिकारी का कड़ा संदेश, का कैंपस में ड्रग्स की जांच के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। शुभेंदु अधिकारी के वंदे मातरम कार्यक्रम के दौरान जादवपुर यूनिवर्सिटी के गेट बंद, सड़क पर भी आवाजाही पर रोक। टीएमसी छात्र कार्यक्रम में ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, बोली एसआईआर के जरिए वोट टूटा, हजारों कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया। ममता का केंद्र और पुलिस पर निशाना, कहा सत्ता के दम पर चुनाव हाईजैक किया। अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सवाल। टीएमसी छात्र कार्यक्रम में अभिषेक बनर्जी की हुंकार, बोले जब तक मैं मरा नहीं तब तक हरा नहीं, एजेंसियों की कार्रवाई से नहीं झुकूंगा। अभिषेक बनर्जी ने सीबीआई ईडी समेत सभी एजेंसियों को दी चुनौती, कहा जितनी ताकत लगानी है लगा लो, हम जॉय बांग्ला और जय ममता बोलते रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर से सुनी लोगों की समस्याएं, फरियादियों से लिया शिकायतों का ब्यौरा। स्वाइन फ्लू को लेकर यूपी में अलर्ट, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों के साथ की बैठक, स्वास्थ्य विभाग को लेकर सतर्क रहने के निर्देश। बी नागेंद्र ने भ्रष्टाचार मामले के बीच दिया इस्तीफा, हुए इमोशनल। यूजीसी नेट के 84 विषयों के नतीजे घोषित, 4,000 से ज्यादा छात्रों ने क्वालिफाई किया जेआरएफ, यूजीसी की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं नतीजे। हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस, स्वास्थ्य फिटनेस के साथ खेल की संस्कृति को बढ़ावा देना मकसद। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी फिर हुई महंगी, 3.89 रुपए प्रति किलो दाम बढ़ गए हैं, नई कीमत 86.98 रुपए प्रति किलो। मुंबई करों पर महंगाई की मार, 1 सितंबर से तबेले का दूध 9 रुपए हुआ महंगा, 93 रुपए की जगह 102 रुपए लीटर मिलेगा। वैक्सीन प्लस मामले में सिप्ला पर बड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र एफडीए ने पुणे सीएनएफ का ड्रग लाइसेंस रद्द किया। दवाओं के स्टॉक रिकॉर्ड में गड़बड़ी और मिस ब्रांडिंग पर सिप्ला का लाइसेंस रद्द, वैक्सीन प्लस का 11,91,000 का स्टॉक जब्त। बांदा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, कार्रवाई के बीच जल निकासी रुकी तो सैकड़ों किसानों के घरों में पानी भर गया, लापरवाही के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच के आदेश। दिल्ली एनसीआर में आज हो सकती है बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में आंधी चलने की भी संभावना है। आज देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, यूपी उत्तराखंड के अलावा बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लिए चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई झमाझम बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट, सैलानी मौसम का मजा ले रहे हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी फिर उफान पर, खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है, घाटों पर सैकड़ों दुकानें जलमग्न। केरलम में बस में चढ़ते वक्त फिसला बुजुर्ग का पैर, क्लीनर ने फुर्ती दिखाकर यात्री को गिरने से बचा लिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 गुटों में हिंसक झड़प, 2 लोग घायल, पथराव के बीच मोर्चा संभालने पहुंचे पुलिसकर्मी भी घायल। गुजरात की वापी रेलवे स्टेशन पर सो रहे यात्री का मोबाइल चोरी, सीसीटीवी में कैद, आरोपित आरपीएफ जीआरपी की सतर्कता से गिरफ्तार। झांसी में साइबर ठगों के गैंग का भांडाफोड़, 403 करोड़ रुपए का लेन देन, ठगी की रकम यूएस डॉलर में बदलकर विदेशी एंडर्स को देते थे। टिहरी गढ़वाल में बड़ा हादसा, ब्रेक फेल होने से यात्री बस पलटी, स्कूटी सवार 2 की मौत, 11 घायल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बिश्नोई गैंग के हेड श्यामलाल पुनिया समेत 2 गिरफ्तार, पुलिस को देखकर जिला कोर्ट परिसर से भागने की कर रहे थे कोशिश। बिलासपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान एलायंस एयर फ्लाइट का टायर फटा, 34 यात्री सुरक्षित, विमान को आगे की उड़ान प्रयागराज की रद्द की गई। बिहार के मुंगेर में बीएसएल के अंडरग्राउंड तार चोरी की साजिश का खुलासा, ठेकेदार बन 26 मजदूरों से खुदवाई सड़क, मामले में 6 गिरफ्तार। झारखंड के लोहरदगा में बाईपास निर्माण साइट पर अपराधियों का आतंक, बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, गार्ड को लगी गोली, वाहन में लगाई आग, पुलिस ने बढ़ाई सतर्कता। छत्तीसगढ़ के जशपुर में 520 किलो गांजा जब्त, 3 वाहन समेत करीब 3 करोड़ की संपत्ति बरामद, महिला समेत 4 तस्कर गिरफ्तार। दुर्गापुर में 21 साल के मेडिकल छात्र का हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला शव, पुलिस जांच जारी है। दतिया में युवक के निकलते ही भरभराकर गिरी जर्जर दीवार, बाल बाल बची जान। पूरे सतारा हाईवे पर युवक की चाकू से गोद कर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, आरोपित गिरफ्तार। धनबाद में आवारा कुत्तों का आतंक, 5 साल की मासूम को झुंड बनाकर हमला किया, नोच कर घायल किया। विशाखापट्टनम में 4 साल की बच्ची का आधी रात अपहरण, माता पिता के साथ सड़क पर सो रही थी, सीसीटीवी स्कूटर सवार युवक युवती दिखे बच्ची ले जाते हुए। ग्वालियर में डिलीवरी बॉय की गोली मारकर हत्या, 12 घंटे बाद भी आरोपित फरार, लोगों में गुस्सा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, खड़े ट्रक से टकराई वॉल्वो बस, 1 की मौत, 36 यात्री घायल। रक्षाबंधन पर कुल्लू में बड़ा हादसा, ब्रेक फेल होने के बाद पहाड़ी से टकराई एचआरटीसी बस, 45 लोग घायल, घायलों में अधिकांश महिलाएं। केरल के कुट्टियाट्टूर कन्नूर रूट पर चल रही बस में चढ़ते समय गिरने लगा बुजुर्ग, क्लीनर ने बचा लिया। बिजनौर में चलती बाइक पर अचानक युवक के हाथ से लिपट गया सांप, युवक ने चलती बाइक गिराकर बचाई अपनी जान। हिसार में हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मियों ने पुलिस पर कचरा फेंका, धक्का मुक्की हुई, कचड़े के थैले पुलिस वालों के सर पर पटके। प्रयागराज में स्वामी नारायण मंदिर का 3 मंजिला हिस्सा भरभराकर गिरा, निर्माण कार्य के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे में समाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आज से महिला टी20 एशिया का भारत पाकिस्तान महामुकाबला 5 सितंबर को दुबई में। इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू दिखाने पर पीसीबी की धमकी, इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट से हटने की चेतावनी। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड इजाफा, $729 बिलियन के पार पहुंचा आंकड़ा, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वृद्धि दर में आई गिरावट। सोने की चमक फीकी, लगातार तीसरे दिन 3,300 टूटा भाव, दिल्ली में 10 ग्राम 1,65,000 पर पहुंचा। 16 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म राणावाली, इंटरनेशनल एक्टर आर्नोल्ड वास्लू भी अहम भूमिका में। अनुपम खेर की कौसला का कौसला 2 रिलीज हो गई, 20 साल बाद सीक्वल आया। आलिया भट्ट की स्प्राइट थ्रिलर अल्फा नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद ओटीटी पर धमाल मचा रही है बॉबी देओल की बंदर, Zee5 पर स्ट्रीम। मॉडर्न अर्बन हाउसिंग सोसाइटी पर बेस्ड चुंबक भी आज से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध। विवाद के बाद रामदेव की कंगना से रिश्ते सुधारने की पहल, रक्षाबंधन पर मिठाई और खास तोहफा भेजा। रामदेव के तोहफे पर कंगना ने जताया आभार, रक्षाबंधन पर बोली, त्योहार भूल चूक माफ करने का होता है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, टॉक्सिक की कमाई में 64% की गिरावट, नेगेटिव रिव्यू का असर। कृति सैनन के कपड़ों पर दिए बयान से पलटी कंगना, बोली उन्हें कौन रोक रहा है, जो मन करे पहने। धर्म बदलकर राखी पर मक्का पहुंची एक्ट्रेस, बुरके में बदला हुलिया, रोते हुए अल्लाह से जेंजी के लिए नौकरी की दुआ मांगी।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएट।
2: दिल्ली में अब से एनजीपी महंगी हो गई है। वेस्ट एशिया में जारी संकट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलएनजी की कीमतों में तेज उछाल का असर अब सीएनजी की कीमतों पर पड़ रहा है। आईजीएल ने दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 3.89 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। दिल्ली में सीएनजी की पुरानी कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम थी, अब ये बढ़कर 86.98 रुपए यानी लगभग मान के चलिए 87 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। 2 पैसे कम 87 रुपए से।
4: आम आदमी पर महंगाई की मार एक बार फिर से पड़ती हुई दिख रही है। अगर कल रात को आप ये सोच कर सोए थे कि कल सुबह उठ करके सीएनजी डलवा लेंगे तो ये खबर आपके लिए है। आज सुबह सीएनजी की दरों में करीब करीब 3.89 रुपए यानी कि करीब 4 रुपए के प्रति किलो के हिसाब से बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसका मतलब ये है कि दिल्ली में जो सीएनजी कल तक 83 रुपए की मिल रही थी वो अब करीब 87 रुपए के आसपास मिल रही है। 86.98 करीब 87 रुपए प्रति किलो का जो रेट है वो सीएनजी का बढ़ गया है। इससे पहले एक तरफ जहां चीनी के दाम बढ़ रहे थे, प्याज के दाम बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अब सीएनजी के दाम भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिससे जनता को काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो सीएनजी के दाम है आप देखें, सुबह से ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं सीएनजी भरवाने, ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से दाम ये बढ़े हैं काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता हुआ दिख रहा है लोगों पे। भाई साहब आप ये ऑटो चलाते हैं, कितना फ़र्क पड़ेगा सीएनजी 4 रुपए बढ़ गया अचानक से?
5: कहाँ कीजिएगा, अब तो चलाना ही पड़ेगा, कितना बढ़ जाएगा तो भी तो खाना ही पड़ेगा। चीनी कांग्रेस रेट में था, कांग्रेस का टाइम है, अभी का रेट है, सब कुछ भाइयों बहनों।
4: तो कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी ज़्यादा, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी तो होती हुई दिख ही रही है, जिस तरीके से एक के बाद एक दाम बढ़े जा रहे हैं। जो सीएनजी कंपनियां हैं उनका ये कहना है कि पहला तो हरमोस में जो डिस्टर्बेंस चल रहा है वो एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा जो दूसरी वजह बताई जा रही है वो ये है कि सर्दियां आने वाली हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप में गैस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो गैस को अब स्टॉक किया जा रहा है वहाँ पर, जिसके वजह से कहीं ना कहीं अन्य जगहों पर अब जो सीएनजी की कमी है वो होते हुए दिख रही है और दामों में बढ़ोतरी होते हुए दिख रही है। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से जो भारत सरकार है वो अब इन दरों को कंट्रोल में लाने की कोशिश करती है या ये सुनिश्चित करती है कि जिस तरीके से आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ती हुई इस वक्त दिख रही है ये मार कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो और लोगों को कुछ राहत मिल पाए। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेंद्र पांडे के साथ अंशुल सिंह, आज तक।
2: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है, ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है।
3: हालांकि मुख्य सड़क, आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है, लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है, दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास अमित वधवा के साथ में आशुतोष मिश्रा आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

अभी बना हुआ है नई झील के फटने का खतरा। ओवरफ्लो से नेपाल की भोटे कोशी नदी में लगातार बढ़ रहा है पानी। हाई अलर्ट पर नेपाल, मौत का आंकड़ा 626 पार, 2400 से ज्यादा लापता। नेपाल में हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत ने भेजी तकनीकी सामानों के साथ रेस्क्यू टीम। 10 टन राहत सामग्री की तीसरी खेप लेकर विमान पहुंचा काठमांडू। उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान दौरे पर रवाना पीएम मोदी, ताशकंद में राष्ट्रपति मिर्जियोयेव से होगी वार्ता। बिश्केक में एससीओ समिट, पुतिन शी जिनपिंग समेत कई नेताओं से मुलाकात संभव। मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में मोहन भागवत के यूनिवर्सल ऑनर्स कार्यक्रम के लिए लगे बैनर पोस्टर। इस्कॉन मंदिर के संबोधन में आरएसएस प्रमुख ने कहा, दुनिया में अभी बहुत सारे टकराव और विरोधाभास। और दिल्ली एनसीआर में सीएनजी फिर हुई महंगी, वाहन चालकों पर बड़ा बोझ। 3.89 रुपए प्रति किलो की सीधी बढ़ोतरी। दिल्ली में अब 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम हुए दाम। सुबह 6 बजे से नया रेट लागू। इस साल सीएनजी की पांचवी बढ़ोतरी।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। नेपाल में आई भीषण बाढ़ से बड़ी तबाही मची है। नेपाल में आई बाढ़ में अब तक 626 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2400 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका कुछ अता पता नहीं, लापता है। और इस बीच नेपाल में एक बार फिर दहशत के साए में है। लैंडस्लाइड से बनी एक नई झील के टूटने का खतरा बना हुआ है, जिसे लेकर चीन ने नेपाल को चेतावनी भी दी। झील में 25 लाख घन मीटर पानी इकट्ठा हो चुका है और पानी बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। अगर झील टूटी तो भोटे कोशी और त्रिशूली नदी के जलस्तर में तेजी से इजाफा हो जाएगा और एक बार फिर यहां कुदरत का विनाश देखा जा सकता है। इस खतरे के बीच नेपाल में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिसका असर रेस्क्यू

पीड़ित दुनिया के कई देशों के लोग हुए। ये त्रासदी कई परिवारों को कभी ना भरने वाला जख्म दे गई। सैकड़ों भारतीय भी इस वक्त नेपाल में लापता हैं। आपदा की तस्वीरें देखकर परिजन सहमे हुए, रो रहे हैं, आंखों से आंसू उनके रुक नहीं रहे। अनहोनी की आशंकाएं हैं, लेकिन मन में उम्मीद भी है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और उनके परिजन सही सलामत मिल जाए। और इसी उम्मीद के साथ परिवार वाले अपनों की तलाश में जुटे हुए हैं।

0: दिल में डर और किसी अनहोनी की आशंका के बीच आंखों में आंसू लिए ये लोग अपनों की तलाश में लगे हैं। इसी उम्मीद के साथ इधर उधर भटक रहे हैं कि किसी तरह अपनों का पता लग सके, उनके सलामत होने की खबर मिले। किसी के हाथों में तस्वीर है, कोई मोबाइल पर तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछताछ कर रहा है, कोई अस्पताल में लगी तस्वीरों के बीच अपनों को तलाश रहा है। नेपाल में आई सैलाबी त्रासदी ने कई परिवारों को दर्द में डुबो दिया है। रेस्क्यू सेंटर से लेकर अस्पताल तक लोग भटक रहे हैं, अपनों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब कोई खबर नहीं मिल रही, कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो आंखें भर आ रही हैं।
1: 8 बजे बात हुई थी उससे, और उसके बाद कुछ भी पता नहीं है। किसी से हम लोग को कहीं किसी से कोई
0: किसी का बेटा लापता, किसी का पति, किसी की बहन, तो किसी का भाई, दिल में आस लेकर उनकी तलाश जारी है।
2: भाई के पता नहीं है, किधर है मालूम नहीं है, हम बहुत दुखी है।
0: नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद से लापता अपने बेटे की तलाश के लिए ये माँ दर दर के चक्कर काट रही है। पहले कई गांव में बच्चों को ढूंढा, फिर रेस्क्यू सेंटर गई, अस्पताल पहुंची, लेकिन बेटे की कोई खबर नहीं लगी।
3: कॉल किया, कॉल नहीं लगा, इधर गांव में भी ढूंढ रहे नहीं मिला, अभी हम लोग भी हॉस्पिटल इधर ढूंढ रहे नहीं मिला।
0: लापता लोगों के परिवार वाले बेहद परेशान हैं। हर दिन बीतने के साथ कई आशंकाएं दिल को भारी कर रही हैं। स्थिति ऐसी है कि मांग हो रही है कि सरकार सुविधा दे, तो खुद रेस्क्यू में शामिल होने के लिए तैयार हैं।
4: अगर कोई सुविधा मिले तो मैं खुद जाना चाहती हूँ, सुविधा मिले तो
5: ढूंढने के लिए।
0: नेपाल की त्रासदी में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिससे अपनों को खोने वालों के मन में खौफ बढ़ता जा रहा है। अस्पताल के बाहर बरामद शवों की तस्वीर लगाई गई है, लोग दिल पर पत्थर रखकर इन तस्वीरों को देख रहे हैं।
6: ये काठमांडू का वो जगह है जहां से बाहर से डेड बॉडी लाके रखी गई है। आप ये पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि उन डेड बॉडी की यह तस्वीर रखी गई है, ताकि इनके जो अपने लोग हैं, इनके रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पे आके इनकी पहचान कर सके और यहाँ से डेड बॉडी ले जा सके। इन तस्वीरों को देखकर आप देख सकते हैं कितनी भयावह तस्वीरें हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, विक्षिप्त कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये लोग जब इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जा रहे हैं।
0: आपदा में कई लोग घायल हुए हैं, कई को गंभीर चोटें भी आई हैं, कई घायलों का इलाज काठमांडू के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। नेपाल की कुदरत की तबाही ने कई परिवारों को जीवन भर का जख्म दिया है, कई लोग अब भी लापता हैं, परिवार वाले उनकी तलाश में भटक रहे हैं। नेपाल से श्वेता सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा और पंकज दास आज तक।
7: लापता लोगों में से कई मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गए थे, लेकिन भीषण बाढ़ के बाद से उनका कुछ पता नहीं। परिवार वाले उनकी तलाश में बहुत कोशिशों में जुटे हुए हैं कि कहीं से उनकी कोई खबर लग जाए।
8: राहत

0: बचाओ और इंतजार, इंतजार जो हम आपको दिखाते हैं यहां पर, लेकिन जब वो एक व्यक्ति के रूप में आपके सामने होता है तो आपको दर्द उसका समझ में आता है। संजीव जी हमारे साथ इस समय हैं, बोस्टन से आए हैं, उनकी वाइफ यहाँ कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आई थी, रसुआ जिस जगह पर ये हादसा हुआ है वहां पर थी, आप कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे हैं?
1: नहीं, तो मेरा उनसे जो लास्ट कॉन्टेक्ट हुआ था वो नेपाल का टाइम था 26 तारीख को, और यहाँ पे मॉर्निंग 8:35 AM पे, एग्जैक्टली 8:35 AM पे मेरा उनसे बात हुआ फोन पे, और वो कॉल मेरा उनसे 11 मिनट चला, 10-11 मिनट, सो ऑलमोस्ट 8:45 तक, 8:45 तक मैं उनसे साथ कॉल में था, और उसके बाद उन्होंने बोला कि उनको कॉल आ रहा है, बाकी टीम बुला रही है, तो वो चली गई, एंड उसके शायद 2 मिनट के बाद ये हो गया, उसके बाद से कोई कॉन्टेक्ट नहीं।
0: क्या उनकी तस्वीर देख सकते हैं? क्या नाम है?
1: जीवन ज्योति।
0: जीवन ज्योति,
1: हाँ।
0: ये अकेले आई थी बोस्टन से?
1: अकेले सोलो ट्रिप पे आई थी, इनका 50th बर्थडे था July 19 को, तो मुझे बोलती है कि मेरे को कैलाश मानसरोवर जाना है, मैं अपने आप को गिफ्ट करना चाहती हूँ और मैं सोलो ट्रिप पे जाऊंगी।
0: आप उनके ब्रदर हैं?
2: मैं उनका ब्रदर।
0: आप दिल्ली से आए?
2: मैं दिल्ली से आए।
0: एकदम कोई कांटेक्ट आप लोग नहीं कर पा रहे?
2: बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा।
0: उसके बाद से फोन का सिग्नल चल रहा है, रिंग जा रहा है?
2: नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा रहा, रिंग भी नहीं जा रहा, नहीं। उनके लास्ट लोकेशन भी वहीं की है, होटल की, जिस होटल में वो थे। हाँ, होटल कैलाश। यस।
1: और हमको ये नहीं मालूम कि क्योंकि वहां पर सब कनेक्शन चला गया, ठीक है, सब मोबाइल टावर चले गए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो अगर वो मूव हुआ भी होगा फोन कहीं पे और किसी जगह पे, तो मगर वो लोकेशन वही दिखा रहा है सब।
0: तो चाइना की तरफ से बहुत सारे इंडियन जो पिलग्रिम्स थे वो क्रॉस किया उन्होंने, उनमें नाम नहीं आपको दिखाया?
1: नहीं नहीं, क्योंकि वो चाइना साइड पे भी पहुंचे ही नहीं थे। अच्छा। उनको सुबह 12 बजे का उनको टाइम मिला था कि जब उन्होंने जाना था वो पोस्ट पे नेपाल चाइना बॉर्डर पे, वहां से फिर उनको आगे जाना था, तो उन्होंने बोला कि अभी 8:30-9 का टाइम हुआ है, तो मेरे पास अभी भी 3 घंटे हैं, 3 घंटे के, तो हमको फिर जाना, तो अभी वो लोग गए नहीं थे, तो अभी तो उनकी एक्चुअली जर्नी स्टार्ट हुई थी।
0: आज तक के जरिए वो तस्वीर दिखाकर यही कोशिश है कि उस पूरे एरिया में जितने भी लोग देख रहे हो, टीवी पर इस तस्वीर को देख रहे हो, वो अगर कोई भी जानकारी रखते हैं तो कॉल करवाए, किसी भी तरह का अगर कोई किसी को इन्फॉर्मेशन हो। आप दिल्ली से आए हैं, उनके साथ ये तस्वीर वो दिखाकर एक ही अपील आप लोग कर रहे हैं,
3: जस्ट हम हाथ जोड़कर विनती, अगर कोई भी जरा सी भी इन्फॉर्मेशन हो किसी के पास भी, तो प्लीज प्लीज आज तक की टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम लोग दिल्ली से हैं, सर बॉस्टन से आए हुए हैं, बहुत परेशान।
4: और देखिए, नेपाल चीन सीमा के पास 2 दिन पहले आई भीषण फ्लैश फ्लड के बाद लापता ईचा फाउंडेशन के 77 तीर्थयात्रियों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर ने जानकारी दी कि 77 लोगों का एक ग्रुप लगातार संपर्क से बाहर है, कोई बात नहीं हो पा रही, पता नहीं चल पा रहा है। सुमी अधिकारी ऑस्ट्रेलिया से, ईशा फाउंडेशन सदगुरु कैलाश यात्रा, 77 लोग थे तीर्थयात्री, सब के सब लापता, किसी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है।
5: जीवन, ये बताइए, ये सुमी अधिकारी कब कहाँ की रहने वाली थी और ये ईशा फाउंडेशन के जरिए कहाँ गई हुई थी?
6: ये भाभी जो है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली है, और वो 10-12 दिन पहले ईशा फाउंडेशन से वो मानसरोवर कैलाश पर्वत को दर्शन करने के लिए जा रही थी। वहीं से जो सुबह वो बाढ़ आने के पहले वो हमको मालूम तो यकीन नहीं है, लेकिन वहाँ से उसी दिन पर वो कैलाश पर्वत से लौट रही थी, और उसके बाद जो बाढ़ आया उसके बाद अभी तक कुछ भी खबर नहीं है, वो कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है, और कुछ भी जानकारी अभी तक नहीं आई है, और इसलिए हम लोग खोज तलाश के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, और काठमांडू में वो है हमारा दाई है, वो ऑस्ट्रेलिया से कॉल आए हैं, और वो काठमाडौँ में भी और पोखरा और चितवन में भी खोज तलाश कर रहे हैं। मलपरासी के हॉस्पिटल में मालूम करने के लिए आए हैं, अभी तक यहाँ बॉडी नहीं दिखाई जा रही है और बाद में हम लोग यहाँ से देखकर और पता चल जाएगा।
5: आपके जो मतलब और रिलेटिव्स हैं वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी मतलब खोज रहे हैं,
6: खोज रहे हैं।
5: इनका कोई जानकारी नहीं मिली
6: अभी तक। कोई
5: ऑस्ट्रेलियाई नागरिक थी, सिटीजन
6: वही ऑस्ट्रेलिया की सिटीजन थी।
4: मानसरोवर यात्रा के लिए गए डॉक्टर दंपति भी नेपाल में एक बाढ़ के बाद से लापता है। मुंबई के अंधेरी इलाके के रहने वाले डॉक्टर मिलिंग और उनकी पत्नी डॉक्टर जानवी कुछ दिन पहले ही नेपाल गए थे, लेकिन नेपाल में कुदरत के कहर के बाद से उनका कुछ भी पता नहीं चल सका है। उनकी क्लिनिक पर 6 सितंबर तक बंद होने की सूचना भी लगी हुई है। तो इस आपदा में कई भारतीय परिवार उजड़ गए, सैकड़ों भारतीय लापता हैं और अब भारत में उनके परिजन इस इंतजार में हैं कि कभी कोई तो अच्छी खबर आ जाए कि आखिर वो लोग कहां हैं, किस हाल में हैं।
7: नेपाल आपदा ने सैकड़ों परिवारों को जीवन भर का दर्द दे दिया। इस आपदा में अभी भी लापता लोगों की खोजबीन जारी है। त्रासदी की चपेट में कई भारतीय परिवार भी आए हैं। इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो नेपाल में रोजी रोटी के लिए गए थे, कई ऐसे भी हैं जो अमेरिका से आकर नेपाल घूमने गए थे। मध्य प्रदेश के विदिशा की रहने वाली और कनाडा के टोरंटो में रह रही इंजीनियर स्वाति बागरेचा कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान चीन तिब्बत सीमा के पास से लापता हो गई है। 26 अगस्त की सुबह 9 बजे परिवार से संपर्क टूट गया। स्वाति के मोबाइल पर अभी भी रिंग जा रही है, लेकिन वह कॉल रिसीव नहीं कर रही है। परिवार का कहना है कि नेपाल तिब्बत सीमा पर आई बाढ़ के दिन से ही स्वाति लापता है। मोबाइल की लोकेशन चीन बॉर्डर के आसपास आ रही है। परिजन ने संबंधित एजेंसियों से मोबाइल लोकेशन तकनीकी रूप से ट्रैक कर स्वाति की सही स्थिति का पता लगाने की मांग की है।
8: ये एक्चुअली वहां से निकली थी कैलाश से और वापस आ रही थी नेपाल के लिए, तो बीच में इमिग्रेशन सेंटर पड़ता है चाइना बॉर्डर पे, तो इमिग्रेशन सेंटर में थी ये, शायद ये सब लोग उस वक्त उसी में थे और उसी वक्त इंसिडेंस हुआ। तो पूरा पानी का इतना तेज बहाव था कि उसमें इतने तेज बहाव में हम किसी को नहीं मालूम पड़ रहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
9: आखिरी बार आपकी उनसे कब बात हुई?
8: नहीं, एक्चुअली बात तो टेलीफोन से हो नहीं पाती है, वो चाइना में है वो
9: जी।
8: तो मैसेज नेट हंसी मैसेज आता है उसका बराबर रेगुलर, तो वो उस दिन रात में मैसेज था 4:30 बजे, मतलब वहाँ का टाइम रहा होगा 7 बजे करीब का कि हम निकल रहे हैं वहाँ पर इमिग्रेशन सेंटर जाके, और वो आज सुबह उसका यहाँ आने का था विदिशा आने का
9: जी,
8: परंतु त्रासदी कारण वो नहीं आ पाई।
7: इसी जल प्रलय के बीच हरियाणा के भिवानी जिले के बड़सी गांव की रहने वाली और वर्तमान में फिनलैंड में डॉक्टर के तौर पर सेवाएं दे रही डॉक्टर प्रियंका चौधरी भी लापता हो गई है। प्रियंका करीब 70 साथी डॉक्टरों के दल के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा और नेपाल भ्रमण के लिए गई थी। परिवार के मुताबिक 25 अगस्त की रात वीडियो कॉल पर प्रियंका से आखिरी बार बात हुई थी। इसके करीब 1 घंटे बाद उनका मोबाइल फोन बंद हो गया और तब से परिवार का उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है।
10: ये डॉक्टर थी, फिनलैंड में रहती थी, वहां पे कुछ दिन पहले ही 14 तारीख को अपने ईशा फाउंडेशन की तरफ से टूर में आए थे घूमने के लिए। उनको अपना सब वहां पे अपने यात्रा के ऊपर में थे, वहां पे वो गए हुए थे वो देखने के लिए मानसरोवर वगैरह। लगभग ये लोग 77 यात्री इकट्ठे थे, इन्होंने अपनी इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी करके काठमांडू लौट रहे थे। रास्ते में उनको सुबह संपर्क हुआ था 8-9 बजे के करीब, उसके बाद से कोई संपर्क में नहीं है।
7: उधर कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नेपाल में लापता हुए कल्याण डोंबिवली के 3 तीर्थयात्रियों के परिवारों में भी चिंता फैल गई है। तीर्थयात्री पिछले 3 दिनों से अपने परिवारों से संपर्क में नहीं है, जिससे उनके ठिकाने और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। परिवारों के अनुसार वे पिछले 3 दिनों से तीनों तीर्थयात्रियों से संपर्क स्थापित करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उनकी कॉल का कोई जवाब नहीं मिला है और अब तक कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है। उनका सटीक स्थान और संपर्क टूटने के कारण अज्ञात है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए गुजरात के लोगों के परिजनों की चिंता बढ़ गई है। सूरत के एक परिवार के 3 सदस्य परेश पटेल, उनकी पत्नी ज्योति और बेटी मीनाक्षी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहीं गांधीनगर से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए अमिता अमीन, तेजल और जितेंद्र पटेल के परिजन भी उनकी जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। परिवारों ने सरकार से जल्द अपने परिजनों की स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने और सुरक्षित वापस लाने में मदद की अपील की है। इस आपदा में कई परिवार लापता हो गए जिनकी तलाश जारी है।
4: नेपाल में हुई तबाही से कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए। जहां घर मकान थे, अब वहां सिर्फ और सिर्फ इस तरह का मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है।
7: नेपाल की जल त्रासदी किस तीव्रता की थी, इसका अनुमान जब तक लगाया जा रहा होता है तब तक उससे भी विनाशकारी तस्वीरें आ जाती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि कितना विनाश हुआ है, किस स्तर का हुआ है, उसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह, आशुतोष मिश्रा, पंकज दास इस समय नेपाल में मौजूद हैं। संवाददाता आशुतोष मिश्रा जब नुआकोटी के ढुंगे बाजार पहुंचे तो वहां के हालात देखकर हैरान रह गए कि तबाही इस स्तर की भी हो सकती है।
11: इसके आगे जाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, ये लोगों के घर थे, मकान थे, सब कुछ कैसे पूरी तरह बर्बाद हो गया है। एक ऐसी आपदा और मानो जैसे कयामत बरसी हुई शहर पर, सब कुछ तबाह कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5 मंजिल, नीचे की जो 2 मंजिल है वो पूरी तरह मलबे में जा चुकी है और यहीं से ऊंचाई से सोचिए पूरा मलबा आया हुआ होगा। लोग जो घर में होंगे, अगर उन्होंने भागने की भी कोशिश की होगी, वो कैसे भागे होंगे? ऊपरी मंजिल के लोग नीचे कैसे आए होंगे? और क्या इस मलबे में अभी, क्योंकि यहां से लगभग 30 से ज्यादा लोगों को यहां से बरामद किए गए थे शव, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया था, यहां से एयरलिफ्ट किया गया था, लेकिन न जाने कितने लोग, क्योंकि 10,000 की आबादी वाला शहर, न जाने कितने लोग इस शहर के मलबे में अभी भी होंगे।
7: ये नुआकोट का प्रमुख बाजार था, लेकिन अब इन तस्वीरों को देखिए, बाजार का कहीं नामो निशान नहीं है। ढूंगे के इस बाजार में कई होटल रेस्टोरेंट थे जो अब मलबे में सिमट चुके हैं। सामने एक पेट्रोल पंप भी था, लेकिन अब कुछ दिखाई नहीं देता।
11: ढूंगे बाजार के जिन इलाकों में अब मैं आया हूँ, थोड़े थोड़े करके दिखाई दे रहे हैं। ये जो इमारत है दरअसल निर्माणाधीन थी। अब सोचिए कि कोई अपना आशियाना बना रहा था, परिवार के लिए घर बना रहा था, उसके पहले ही वो घर तबाह हो गया। लोग कहाँ गए कोई नहीं जानता। यहाँ पर कई मंजिला थी, इसमें कुछ कमर्शियल होटल चलते थे। मैं कोशिश करता हूँ क्या इस इलाके तक जाया जा सकता है, लेकिन नहीं जाया जा सकते। देखिए, जूते डालते ही ना जूते यहाँ पर धंस रहे हैं, और इसी के साथ साथ ये जो मलबा है ये थोड़ा ज्यादा रिस्की है, ये लूज मलबा है। हाँ, ये देखिए पूरा दलदल, इसके ऊपर जाया नहीं जा सकता। दिखने में लग रहा होगा कि मिट्टी का जमावड़ा है, लेकिन जैसे जैसे पानी नमी इसमें जा रही है, ये और पूरा दलदल बनता जा रहा है। आप सोचिए कि अगर इन जगहों से किसी को जाना भी हो, संभावना भी हो, अब आप समझिए कि जहां पर रेस्क्यू बचाव कार्य चल रहे हैं, वहां इस दलदल से लोगों को निकालना कितना मुश्किल होगा, खासकर अगर कोई इमारतों से SOS कॉल भी देता। और इसीलिए हेलीकॉप्टर के जरिए वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, वहां से विंचिंग किए जाते हैं, उन्हें नीचे से जो है लिफ्ट कर लिया जाता है। एयरलिफ्ट एकमात्र ऑप्शन बचा है, क्योंकि इस दलदल में आप चॉपर जो है लैंड नहीं कर सकते। इन इलाकों में देखिए, यहाँ से निकलना जो है ना, ये पूरा कीचड़ है, तो बहुत, अब आप समझिए कि राहत बचाव कार्य यहाँ पर कितना मुश्किल हो रहा होगा।
7: नुआकोटी के ढूंगे बाजार में अब कोई नहीं बचा है। यहाँ का बाजार, यहाँ का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सब खंडहर बन चुके हैं। एक ऐसा खंडहर जो मलबे से भरा हुआ है।
11: तो ढूंगे बाजार की सीमा यहाँ से मेरे लिए खत्म हो रही है, क्योंकि बाजार तो आगे तक है, लेकिन इसके आगे मलबे ने रास्ता रोक रखा है और वो इतना खतरनाक है कि जोखिम भरा है। लेकिन यहाँ आकर के त्रासदी की जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ, वो बता रही हैं कि आखिर यहाँ जो लोग होंगे वो कितने डरे होंगे, कितने सहमे होंगे। समय था ही नहीं भागने के लिए, और जब तक वो भाग के ऊपर पहुंचते तब तक न जाने कितनी इसकी चपेट में आ गए थे। कहीं पेट्रोल पंप दब चुका है, कहीं कई मंजिला जो इमारत है वो खंडहर बन चुकी है। न जाने कितने लोग थे जो भाग पाए होंगे, न जाने कितने लोग थे जो मलबे में दफन होंगे। कई सारे लोग, निर्दोष लोग, जिन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला होगा। नेपाल की इस तबाही ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है।
7: नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर आसमान पर बनराते रहते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कोई फंसा तो नहीं। त्रिशूली नदी ढूंगे बाजार के बिल्कुल बगल से बहती है। यहीं पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी था। 26 अगस्त की आपदा में वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गया।
11: ये वो त्रिशूली के पास का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, दरअसल पाइपलाइन आपको दिखाई दे रही है, ये भी मलबे में पूरी तरह बह गया, क्योंकि आगे जो त्रिशूली की धारा आप देख रहे हैं ये इतनी खतरनाक थी कि इसके साथ ये देखो पानी का स्तर जो है ये इतना ऊपर गया 20 से 25 फीट, और उसके बाद इसने पूरे हाइड्रो प्रोजेक्ट को अपने साथ बहा ले गए। दरअसल पुल की कनेक्टिविटी इस इमारत के साथ लगती थी, लेकिन ये सब कुछ बह गया। और अब बड़ा खतरा इस बात का है कि जिस तरह से चीन ने चेतावनी दी है, उस चेतावनी के बाद दरअसल इसी त्रिशूली में, नारायणी में, भटकोशी में जिनका स्तर बढ़ा था, वो पानी फिर बढ़ सकता है। और ऐसे में हालांकि इन इलाके की तबाही अब इतनी हो चुकी है कि और नुकसान क्या ही होगा, लोग बचे नहीं है, जो बचे हैं वो पहाड़ी इलाकों पर चले गए हैं, बाकी की चेतावनी जारी की गई है। लेकिन ये तस्वीरें देख करके आपको अंदाजा लग सकता है कि जो नदी आज इतने नीचे से बह रही है, जिसका बहाव लगभग इतना ही है, वो भी तब जब बरसात हो रही है, वो जब जमीन से 60 से 70 फीट की ऊंचाई पर ले गई होगी, तो अपने साथ कितनी तीव्रता और ताकत लेकर के आई कि उन्हें इन बड़ी बड़ी इमारतों को, पुलों को, हाइड्रो प्रोजेक्ट को सब कुछ नष्ट कर दिया।
7: ढूंगे बाजार से नेपाली सेना ने कई लोगों के शव बरामद किए हैं। जो लोग किसी तरह से यहां से बच निकले थे, अब वो अपने घरों को देखने के लिए लौटे हैं। लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि नेपाली पुलिस लोगों को आगे जाने से रोक रही है।
11: आपका घर कहाँ पर है? अच्छा, ऊपर की तरफ।
12: थैंक यू वाला।
11: आप, अच्छा, आप थे उस समय घर पे जब ये सब हो रहा था?
12: पूरा डूब जाए।
11: आप थे यहाँ पे जब देखा था आपने सब कुछ?
12: हाँ, देखा था। ऐसे से आया कि ऐसा उभर के, ऐसा मार के, सब मार के चल गया। उसके लिए हम बाद में इधर भी आ सकता है, समझ गया। उसके बाद हम ऊपर गए।
11: ढूंगे बाजार जैसे ही खत्म होता है, उसके आगे त्रिशूली बाजार शुरू होता है। और अब ये जो पुलिस वाले हैं, वो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि लोग आगे ना जाएं। अभी देखिए, महिलाएं, बच्चे हैं, जिनका अपना जरूरत का सामान है, ये लोग। आप कहाँ जा रही हैं? आपका घर है आगे? आप आगे जा रही हैं? देखिए, कई सारे लोग हैं जो अपने घरों की ओर या उन इलाकों की ओर जाना चाहते हैं देखने, लेकिन ये कितना जोखिम भरा है। देखिए, देख रहे हैं, पूरा रास्ता जो है कीचड़ में दबा हुआ है। इसके आगे जाने की पुलिस भी अनुमति नहीं दे रही, इसलिए जो स्थानीय प्रहरी हैं वो भी पहुंचे हैं। लोग अब आए हैं देखने के लिए कि वो इन इलाकों में आगे ना जाएं।
7: आशुतोष मिश्रा, नुआकोटी, नेपाल, आज तक।
4: वक्त हो गया एक और बहुत छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।
13: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: अब भी बना हुआ है नई झील के फटने का खतरा। ओवरफ्लो से नेपाल की भोटे कोशी नदी में लगातार बढ़ रहा है पानी। हाई अलर्ट पर नेपाल, मौत का आंकड़ा 626 पार, 2400 से ज्यादा लापता। नेपाल में हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत ने भेजी तकनीकी सामानों के साथ रेस्क्यू टीम। 10 टन राहत सामग्री की तीसरी खेप लेकर विमान पहुंचा काठमांडू। उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान दौरे पर रवाना पीएम मोदी, ताशकंद में राष्ट्रपति मिर्जियोयेव से होगी वार्ता। बिश्केक में एससीओ समिट, पुतिन शी जिनपिंग समेत कई नेताओं से मुलाकात संभव। मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में मोहन भागवत के यूनिवर्सल ऑनेस कार्यक्रम के लिए लगे बैनर पोस्टर। इस्कॉन मंदिर के संबोधन में आरएसएस प्रमुख ने कहा, दुनिया में अभी बहुत सारे टकराव और विरोधाभास। और दिल्ली एनसीआर में सीएनजी फिर हुई महंगी, वाहन चालकों पर बड़ा बोझ। 3.89 रुपए प्रति किलो की सीधी बढ़ोतरी। दिल्ली में अब 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम हुए दाम। सुबह 6 बजे से नया रेट लागू। इस साल सीएनजी की 5वीं बढ़ोतरी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: जो स्वतंत्रता हमको मिली है
3: I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction on canceling a private event.
4: RSS का जो कैप्चर है हिंदुस्तान के सिस्टम पर, दीमक का काम RSS ने किया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया है।
5: सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है एक प्रकार से।
6: न्यूयॉर्क में भागवत बोलेंगे, भारत तक शोले भड़केंगे। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। इसी महीने मुंबई में जेनजी से संवाद के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का पहला बड़ा कार्यक्रम न्यूयॉर्क में होने जा रहा है। कल हो रहे इस कार्यक्रम को लेकर आरएसएस ने जहां बड़ी तैयारियां की है, वहीं इसे लेकर राजनीति गर्म हो गई है। अखिलेश यादव ने मोहन भागवत के न्यूयॉर्क इवेंट पर 21 सवाल पूछे। अखिलेश यादव के सवाल आरएसएस के स्वदेशी से लेकर कथित सांप्रदायिकता, कथित सीक्रेट्स जैसे मसलों पर है। अखिलेश यादव को ये सवाल पूछने का मौका इसलिए मिला क्योंकि इस कार्यक्रम को जो आयोजन कर रहे हैं, करने वाला इस वाली संस्था है, क्योंकि कार्यक्रम के जो आयोजक हैं अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट इन डायलॉग, उनका एक्स अकाउंट कुछ समय के लिए सस्पेंड हो गया था। अभी अकाउंट बहाल तो हो चुका है, लेकिन राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी भी मोहन भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम का विरोध कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इसको मैं रुकवा नहीं सकता क्योंकि ये हम एक प्राइवेट इवेंट है। उधर कर्नाटक में आरएसएस के मार्च में हिस्सा लेने वाले 2 सरकारी टीचर्स सस्पेंड हुए हैं। सोनिया गांधी की आत्मकथा के भारत में प्रकाशन पर अड़चन के बाद कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने आरएसएस को विवाद में घसीटा है। तो सवाल है आज संघ को लेकर, संघ की विचारधारा को लेकर। सवाल यह है कि आरएसएस पर विपक्ष का यह हंगामा क्या सिर्फ विचारधारा का विरोध कहा जा सकता है? मोहन भागवत के न्यूयॉर्क इवेंट पर हंगामा क्यों बरपा है? न्यूयॉर्क में भागवत बोलेंगे, भारत तक शोले भड़केंगे। इससे पहले कि हम आपको रिपोर्ट दिखाएं, चर्चा की शुरुआत करें, सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के इस चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इससे पहले कि हम अन्य मेहमानों से आपका परिचय कराएं, जल्दी से आपको पहले ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। न्यूयॉर्क में मोहन भागवत क्या बोलेंगे, उससे पहले वो वहां क्यों बोलेंगे, ये सवाल अमेरिका की सियासत से लेकर हिंदुस्तान की सियासत में गूंज उठा है। आरएसएस की विचारधारा के विरोध के नाम पर पहले न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने मोहन भागवत के कार्यक्रम का विरोध किया।
3: You know, I also stand here as the first Indian American mayor in our city's history. And my mother's family is all still in India. I grew up being very familiar with was of a pluralistic society, of a secular republic that believed in the belonging of each and every person who was from India. And it has been incredibly troubling to see the rise of a movement that is predicated on an exclusionary vision.
7: Should the rally be canceled, though, at MSG this weekend?
3: I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction on canceling a private event.
6: इधर भारत में अखिलेश यादव ने इवेंट के आयोजक अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग यानी अहेड फोरम का एक्स अकाउंट सस्पेंड होने पर लिखा, विदेशों में जब अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड लोग उभर कर आएंगे तो उनके एक्स अकाउंट तो सस्पेंड किए ही जाएंगे। इसी के साथ अखिलेश ने 21 सवाल पूछ डाले। सवालों में शामिल था, स्वदेशी का नारा लगाने वाले विदेश आखिर क्या लेने गए हैं? क्या वहां भी सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने गए हैं? क्या भविष्य में वहां राजनीतिक प्रश्रय लेने की संभावना तलाशने गए हैं? वैसे अखिलेश यादव के सवालों की लिस्ट पड़ी ही जा रही थी कि एक्स ने अहेड फोरम का अकाउंट बहाल कर दिया। इसके बाद अहेड फोरम ने एक्स पर लिखा, गुमराह विरोधियों का हम पर बॉट हमला हुआ जिन्होंने एक्स के एल्गोरिथम को प्रभावित कर हमारे हैंडल को ब्लॉक करवाने की कोशिश की। मोहन भागवत का न्यूयॉर्क कार्यक्रम आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम है। 29 अगस्त को मैडिसन स्क्वायर गार्डन में करीब 5,000 लोगों को मोहन भागवत संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम की थीम है सेलिब्रेटिंग यूनिवर्सल हार्मनी एंड यूनिवर्सल वननेस। आरएसएस ने इसे सर्वधर्म, मल्टीकल्चरल और विविधता वाला कार्यक्रम बताया है, जिसमें वो लोग भी शामिल हो रहे हैं जो आरएसएस से सीधे नहीं जुड़े हैं।
8: आदरणीय मोहन भागवत जी का जो आगमन हो रहा है और मैं भी उस कार्यक्रम में रहूंगा, तो वो एक संदेश लेकर हम आए हैं कि पूरी धरती एक परिवार है और उस धरती के हम सारे मनुष्य एक हैं, तो सभी के सम्मान और स्वाभिमान की हमको सजगता रहनी चाहिए। हम अत्यंत संवेदनशील प्राणी हैं, हम तो कभी नहीं चाहते कि किसी वनस्पति का अहित हो, किसी भी प्राणी का, हम सभी को अपना मानते हैं।
6: मोहन भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम पर शुरू हुई सियासत के बीच कर्नाटक में आरएसएस पर फिर हंगामा मचा है। कर्नाटक में आरएसएस के मार्च में शामिल होने वाले दो सरकारी स्कूल टीचर अन्ना साहेब देशमुख और गुरुराज जोशी को सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले कर्नाटक में आरएसएस के रजिस्ट्रेशन को लेकर संग्राम हो चुका है।
9: That's left to the education department. See, if somebody has complained and if the department thinks it's not fit to be participating, they will take action. And why should our employees take part in an unregistered organization?
10: This government showing a vengeance against the RSS. RSS is not a political outfit. So when the social organization and all the patriots of this country, so that any officer or anybody can join any organization which is a patriotic and the social organization.
6: RSS ko lekar ladai sirf Karnatak mein nahi. Congress neta Gaurav Gogoi ne Sonia Gandhi ki atmakatha ke prakashan par samne aaye vivad mein bhi RSS ko ghasit liya hai. पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के स्पष्टीकरण पर गौरव गोगोई ने लिखा, ये कितना कमजोर बयान है। पेंगुइन इंडिया को एग्जाम वॉरियर्स और आरएसएस पर लिखी गई कई किताबें प्रकाशित करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बीजेपी सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जो अब इस बात से डरने लगे हैं कि भारत की जनता कोई किताब पढ़ लेगी। आज तक ब्यूरो। तो सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद राष्ट्र प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए, आलोक शर्मा जी राष्ट्र प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं, विजय राठी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि निदेशक हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन के। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी, पहला प्रश्न आप ही से है। वो कह रहे हैं अखिलेश जी कि स्वदेशी की बात करते हैं और बार बार विदेश जा रहे हैं, क्या मंशा लेकर वहां पर जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या वहां पर वो सीधा कह रहे हैं कि सांप्रदायिक जहर फैलाने के लिए संघ की तरफ से मोहन भागवत जा रहे हैं।
11: मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा जरा मेरे मोबाइल पे फोकस करें। इनको पता है कार्यक्रम का क्या थीम क्या है जो न्यूयॉर्क में होने जा रहा है मोहन भागवत जी का? द थीम इज यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन। बताइए दुनिया में कौन सा ऐसे संगठन है जो यूनिवर्सल वननेस को प्रोपोगेट करने की बात करते हैं, वो सिर्फ भारतीय संस्कृति कर सकती है जो ये कहती है सर्व खलमिदम ब्रह्म, जो कहती है सर्वे भवंतु सुखिना, जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम। और इसीलिए मैं एक और बात कहना चाहता हूं, देखिए समस्या क्या है आज अमेरिका में भी, अंतर जानते क्या, वो अखिलेश जी को मैं बताना चाहता हूं, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तो ये अंतर हुआ है कि वह योग जिसे 2013 में जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू किया था तो हो हल्ला मचाया था सेकुलरों ने कि नहीं साहब ये तो हिंदुइज्म का प्रतीक है, हिंदू धर्म का प्रतीक है, विरोध किया था। और जब प्रधानमंत्री जी ने उस योग को 177 देशों के समर्थन के साथ, जिसमें कि समर्थन नहीं था, दे बिकेम द सेकंड प्रपोजल, जिसमें 40 से अधिक मुस्लिम देश थे, संयुक्त राष्ट्र संघ में योग दिवस मना, और इसी न्यूयॉर्क के जिस समय टाइम स्क्वायर के ऊपर कितने सारे लोगों ने योग किया, और 177 देशों में लोग प्रभावित होते होंगे भारत से, उस भारतीय संस्कृति से, वो है यूनिवर्सल वननेस। और आज किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा, मैं बताना चाहता हूं, 1993 में स्वामी विवेकानंद की शिकागो वक्तृता के 100 साल पूरे हुए थे, एक ऑर्गेनाइजेशन किया गया था हम लोगों की तरफ से, एक एमपी नहीं आया था, एक कांग्रेसमैन नहीं आया था, एक कांग्रेसमैन का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट आया था। आज पूरी की पूरा इंडिया कॉकस है, 125 से अधिक कांग्रेसमैन इंडिया के पक्ष में खड़े हैं। आज वो स्थिति में बदलाव आया है, क्योंकि समस्या क्या है कि भारत जब उभरता हुआ दिख रहा है तो वो पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती। मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कौन है जिस एक ऑर्गेनाइजेशन के मैक्सिमम स्कूल्स हो पूरी दुनिया में? विद्या भारती जो सरस्वती मंदिर चलाता है, 30,000 है, दुनिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एंड वो आरएसएस से वो लोग निकलते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन कौन है? विश्व हिंदू परिषद, जिसमें कि आरएसएस के प्रचारक हैं। दुनिया में ट्राइबल्स में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन है? वनवासी कल्याण आश्रम, अदर देन क्रिश्चियन मिशनरीज जो कि कन्वर्जन के उद्देश्य से जाते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रधानमंत्री आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक रहे, और इन दोनों से डर जानते क्यों लगता है? एक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आके पोखरण विस्फोट कर दिया था, और उसके बाद विपक्ष को लगा और विरोध में बैठी हुई वैश्विक शक्तियों को लगा कि आप तो भारत उभर आएगा, लगे सैंक्शन, हम नहीं झुके, और 2003-04 आते आते इंडिया सक्सेस स्टोरी। 2003-04 में हम करंट अकाउंट सरप्लस हुए, $100 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हुआ, और 2003 में हम चाइना से ट्रेड सरप्लस थे $1 बिलियन। अब मोदी जी आए, उन्होंने तो ले जाके एक नए डायमेंशन पे खड़ा कर दिया, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया, हमें डिफेंस प्रोडक्शन में दुनिया की एक महत्वपूर्ण ताकत बना दिया, और इसके साथ साथ भारत की जो वो छवि थी सॉफ्ट स्टेट की वो ओवर कर दी। टैरिफ में हम और चाइना सिर्फ दो ही नहीं झुके, तो मुझे लगता है जो जो ये उभार भारत का दिख रहा है, त्यो त्यो पेट में बल पड़ रहा है उन भारत विरोधी शक्तियों के, जो मतलब स्वाभाविक है। और एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसने अपनी आइडियोलॉजी से आज तक चेंज नहीं किया, और संघ का विचार एक पंक्ति में कह दूं, हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है, अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल, हमने तो जलना सीखा है, हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है।
6: ठीक है, इस रिश्ते पर पूछूंगी जो बीजेपी और संघ के बीच में, लेकिन आलोक शर्मा जी क्या दिक्कत है? अगर मतलब वहां पर तो आप देख रहे हैं पन्नू जैसे लोग हैं जो देश के खिलाफ आग उगलते हैं, सभी बोल रहे हैं, अगर वहां पर जा रहे हैं मोहन भागवत बोल रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? और दो टीचर्स इसलिए सस्पेंड हो जाएं क्योंकि वो संघ के मार्च में चले गए, ये तो दावा कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा सामाजिक काम, शिक्षा का काम संघ कर रहा है, आरएसएस कर रहा है।
12: हमें दिक्कत इस बात से है कि जब आरएसएस के लोग विदेशों में जाते हैं और वहां पर सरेआम सड़कों पर उनका खुला विरोध प्रदर्शन होता है, लोग बैनर और स्टिकर्स लेकर मोहन भागवत का विरोध करते हैं, देश की छवि खराब होती है, हम इस बात का विरोध करते हैं। हमें जाने पे आने पे किसी का कोई वो नहीं है, हमें उनकी जो क्रियाकलाप है उनके ऊपर सख्त आपत्ति है। अब इन्होंने आरएसएस की बात की, आरएसएस वो ऑर्गेनाइजेशन है सबसे बड़ा है और पता नहीं क्या क्या विश्व बंधुत्व और कौन कौन सी बात कर रहे हैं, और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता है वो आरएसएस। आज अपने बड़े महल बना सकता है लेकिन अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकता है। वहां पर भी प्रोग्राम अगर करने वाली कोई संस्था है, ये तो कह रहे हैं यूनिवर्सल वननेस, ऐसा ही कहा। और ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? अमेरिकन हिंदूज। अरे भाई, अमेरिकन इंडियंस कर देते, आप वहां पर भी हिंदुस्तान के जो लोग रहते हैं उनको भी हिंदू मुसलमानों में बांटना चाहते हैं। आप कहते हैं विश्व हिंदू परिषद सबसे बड़ा संस्थान है, अरे भाई वो संस्थान है जिसने राम मंदिर के यहां डकैती डाली है, चोरी की है। पूरे विश्व के अंदर हमारी कितनी थूथू हुई है कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर प्रभु राम के घर को लूट लिया, कितनी हमारी इंसल्ट। वहां पर भी हिंदुस्तान के जो लोग रहते हैं उनको भी हिंदू मुसलमानों में बांटना चाहते हैं। आप कहते हैं विश्व हिंदू परिषद सबसे बड़ा संस्थान है, अरे भाई वो संस्थान है जिसने राम मंदिर के यहां डकैती डाली है, चोरी की है। पूरे विश्व के अंदर हमारी कितनी थूथू हुई है कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर प्रभु राम के घर को लूट लिया, कितनी हमारी इंसल्ट हुई है पूरे विश्व के अंदर, वो भी आरएसएस साथ ही लेकर गई है। बीजेपी सबसे बड़ी कमजोर प्रधानमंत्री है जो एक शब्द नहीं बोल पाए। हमारे टाइम में तो 1-2-3 न्यूक्लियर डील हुई, उसके अंदर बायलेटरल डील थी, आपने ट्रेड जो डील की है उसके अंदर पूरी तरह से एक तरफा सरेंडर किया हुआ है। पाकिस्तान वाले मुद्दे पर, ऑपरेशन सिंदूर वाले मुद्दे पर, ईरान वाले मुद्दे पर, हर चीज में आपने अमेरिका के सामने पूरी तरह से घुटने टेक रखे हैं। आज मुद्दा जो है, जो अखिलेश यादव जी ने भी उठाया है, स्वदेशी की बात करते हैं और 12 गुना यहां पर इंपोर्ट बढ़ गया उस पर नहीं बोलते हैं। रुपए वर्सेस डॉलर की तुलना अगर आज देखें तो कहां पहुंच गई उस पर नहीं बोलते हैं आप। जो ट्रेड डील है उसमें किसानों को कितना नुकसान होगा, मोहन भागवत जी उस पर भी बोलिएगा। आप यहां पर तो सांप्रदायिकता फैलाते ही थे, उनको भी डर लग रहा है अमेरिका वालों को भी कि यहां ना बीज बो जाएं, और बीज बो दिए हैं। अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा जितनी बार आरएसएस के लोगों के आप वहां बुला

0: पाओगे, यही दिक्कत होगी। आप केवल ये बताइए कि आपकी आय का स्रोत क्या है। अखिलेश यादव जी ने पूछा, क्या वकील ढूंढने गए हैं क्या वहां पर? और जो धन चोरी हुई है, यहां पर तमाम मंदिरों पे आपने कब्जा कर लिया है, तमाम शिक्षण संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, और आपने शिक्षा का स्तर जो है बिल्कुल उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। मोहन भागवत जी उस पर भी बोलिएगा कि राम मंदिर में चोरी करने वाले लोग भी आरएसएस के थे, भाजपा के थे, और वो धन कहां चला गया? हजारों करोड़ रुपया प्रभु राम का आपने कर लिया, यहां पर बैठकर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 94,000 स्कूल बंद कर दिया, आप शिशु मंदिर की बात करते हैं। मोदी जी के आने के बाद 94,000 स्कूल इस देश के अंदर बंद हुए, चाहे वो राज्यों में हुए, मैक्सिमम राज्यों में आपकी सरकार है। आप शिशु मंदिर को प्रमोट करते हैं, अरे सुनिए भाई, शिशु मंदिर को आप प्रमोट करते हैं क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाता है। आप एक तरफा यूनिवर्सल आइडियोलॉजी अपनी जो है उसको थोपना चाहते हैं देश के ऊपर।
1: तो हमारी चर्चा के लिए चलेंगे, लेकिन अन्ना साहब देशमुख और जोशी जी ने क्या गलत किया था?
0: देखिए, मैं समझता हूँ एक अनरजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड संस्था है पूरी तरह से। अगर संस्था अपना
1: नौकरी से सस्पेंड
0: किया गया, उन्होंने अभी मैं जो बयान सुना है आपने पूरी तरह से सस्पेंड की, तो बात हालत यह है कि अंजना जी, एक लेखपाल ने केवल एक पोस्ट डाल दी थी सोशल मीडिया पे उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी के ऊपर, कि चीनी जो है उसके दाम बढ़ गए हैं, उसी के ऊपर सस्पेंड कर दिया। उसका क्या होगा? उसके ऊपर कोई नहीं बात कर रहा है। हम फिर कह रहे हैं, अगर उन्होंने गलत नहीं किया होगा, कोई उनकी गलत चीज संलिप्तता नहीं होगी आरएसएस के उसमें, तो मैं समझता हूं उसके ऊपर विभाग अपने आप जांच करेगा। लेकिन एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं, हाँ, तो आपको भी सतर्क रहना पड़ेगा कि तनख्वाह तो सरकार की लेंगे और काम भाजपा के लिए करेंगे, ये नहीं चलेगा।
1: चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है जितने बाकी लोग भी कांग्रेस शासित राज्यों में सुन रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि इसका क्या आशय है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, वो उनका भी पॉइंट अपनी जगह पर सही है। वो ये कह रहे हैं कि भाई वो अनऑर्गेनाइज मतलब अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर वो काम कर रहे हैं, मतलब नौकरी सरकार के लिए कर रहे हैं लेकिन काम कर रहे हैं संघ और बीजेपी
2: लोगों की। अब इसे क्या कहा जाए, शब्द थोड़ा खराब लगता है, मूर्खता कहा जाए, क्या कहा जाए भाई? अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन था तो आपने 3 बार प्रतिबंध कैसे लगाया? तो अदालत में तो लेख जाना पड़ता है ना कि साहब दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन, ये उनका ऑफिशियल स्टेटस है और हमने बैन किया है। और लास्ट बैन वो तो हमें याद है 16 दिसंबर या 17 दिसंबर 1992 को लगा और बाहरी ट्रिब्यूनल की फाइनल रिपोर्ट आई। क्योंकि रूल ये है कि 90 दिन के अंदर आपको ट्रिब्यूनल में ले जाके साबित करना पड़ता है कोर्ट में कि बैन था, और कोई जाके चेक कर ले नेट पे, अभी ट्रिब्यूनल ने कहा, बाहरी ट्रिब्यूनल ने, कोई आधार नहीं बनता और संघ पे प्रतिबंध खारिज हुआ। तो मैं प्रियांक खड़गे जी से लेके सबसे पूछना चाहता हूं, भाई साहब वो प्रतिबंध लगाया किस पे था? हवा में। अब मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे समस्या क्या है। ये कहते हैं इनके जो केरल के सीएम है वी सतीशन, अभी जब पिछले बार में नेता प्रतिपक्ष चुनाव दौरान क्या बोले, जमात इस्लामी से हमें साथ लेने में कोई समस्या नहीं है। पीएफआई की रैली अशोक गहलोत ने निकलवाई अलवर में, संभव था। अब याद करिए 2023 के चुनाव में पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि 2018 के चुनावों में कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन था जिसका कांग्रेस ने कभी खंडन नहीं किया। विदेश में जाके राहुल गांधी कहते हैं मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट, बट आरएसएस इज कम्युनल, पीएफआई इज सेकुलर, आरएसएस इज कम्युनल, सिमी इज अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और वो आरएसएस जिसने कि देश के लिए मैंने कहा हर क्षेत्र में जाकर इतना योगदान दिया, वो इनको कम्युनल नजर आ रही है। और मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, अमेरिका को भी समझना चाहिए, अमेरिकन्स आंखें खोलो और कान खोल के सुनो, 9/11 के 24 साल के अंदर जोरान ममदानी जाकर न्यूयॉर्क का मेयर बन गया। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, एक बताइए जो वहां पे आतंक के आरोपियों थे उनके खिलाफ इन्होंने कभी बोला हो? खालिद शेख, मोहम्मद अट्टा, 9/11 करने वाले, बताइए लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन में हमले करने वालों पे, सिडनी और उनपे करने वालों पे कुछ नहीं बोला। अमेरिका को समझना होगा, यदि भारत से शिक्षा ली होगी, अन्यथा जो कुछ अमेरिका में दिख रहा है आप देखिए कि आगे अमेरिका किस मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहा है।
1: अमेरिका इसको डाइवर्सिटी कहता है। एक सेकंड सवाल तो सुनिए, देखिए दूसरे तरफ का भी आर्ग्यूमेंट सुनना चाहिए।
2: बिल्कुल,
1: वो कहते हैं डाइवर्सिटी है भाई, वोट करके बने ना अगर ममदानी बने तो। और ये जो अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग है, उस पर आलोक जी कह रहे हैं कि भाई ये इंडियंस की बात नहीं है, ये एक धर्म विशेष की बात है जिसको प्रोजेक्ट और मैग्निफाई करने की कोशिश।
2: बिल्कुल,
1: दोनों पर
2: जो आपने कहा कि हिंदूज की बात, तो याद करिए 2016 में जब ट्रंप ही वॉज रनिंग फॉर हिज फर्स्ट प्रेसिडेंशियल, उन्होंने रिपब्लिकन इंडियन कोलिशन में आने से मना कर दिया था।

0: और वो रिपब्लिकन हिंदू कोलिशन में गए थे और ये डाइवर्सिटी ने अमेरिका को वहां पहुंचाया है कि खुद उनका प्रेसिडेंट बोलता है मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी एक सीधी स्वीकार्यता है अमेरिकन प्रेसिडेंट की अब अमेरिका ग्रेट नहीं रहा। इस डाइवर्सिटी के खाल में छुपे हुए डिजास्ट्रस डिटोनेटिंग एलिमेंट्स को अगर अमेरिका नहीं पहचान पाएगा, इसके लिए मैं कहना चाहता हूं भारत ने इन चीजों को पहचाना है, भारत की जनता ने मैच्योरिटी दिखाई है, तो वो बेहतर स्थिति में रहेगा, अन्यथा मागा से कहां पहुंचेगा ये देखना।
1: फिर मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास जाऊंगा। अखिलेश जी ने लंबा ट्वीट किया,
2: इस पूरी डिबेट में भी केवल हिंदू मुसलमान ही फोकस है, इसके आगे कुछ नहीं। हम कह रहे हैं आरएसएस की सोच में गड़बड़ है। एक आरएसएस का, क्योंकि केरल का नाम लिया, केरल के ही इनके एक आरएसएस के लीडर ने कहा कि अगर मैं वहां होता तो जैन जी को गोली मार देता। जिस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की ऐसी सोच हो, जिनका ब्रेन वॉश हो, उसको मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की आवश्यकता है कि वो कर क्या रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसको सांसद जी को सलाह देने की जरूरत नहीं। ये वही अमेरिकन्स थे जिनको हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप और आप लोग हवन करते घूम रहे थे, आज आप कह रहे हो कि साहब वो भी सुधर जाएं। मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर कहीं पर सुधरने की जरूरत है तो आरएसएस को है। हमने अपने गृहमान में झांकने की देखने की आवश्यकता है। हम
1: विजय राठी जी, आखिर अखिलेश जी क्या कहना चाह रहे हैं? क्या मतलब मोहन भागवत को न्यूयॉर्क में बोलना नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहिए? क्या है उनका, क्या सबसे बड़ा सवाल क्या है?
3: नहीं देखिए अंजना जी, ऐसा है,
1: सुधांशु जी से।
3: नहीं मैं सीधा ही जवाब दे रहा हूँ। अभी मैं सुधांशु त्रिवेदी जी को भी सुन रहा था। आरएसएस वाले जब कोई बड़ा नेता विदेश जाता है ना तो देश डरता ही है। अगर आप इतिहास उठाएं इनका, मैं अभी सुन रहा था इन्होंने बात करी यूनिवर्सल वननेस की। वननेस का सीधा सीधा मीनिंग होता है अनडिवाइडेड, जबकि जैसे अनडिवाइडेड हम वर्ड यूज करेंगे ये उसका उल्टा करते हैं, ये करते हैं डिविजन। इनके मैं कुछ क्रियाकलाप बताऊंगा आपको। 1931 में बीएस मुंजे जी गए थे इटली में, क्या करने गए थे, क्या थीम थी, इन्होंने बताया अभी कि आरएसएस की जो थीम थी भागवत जी की वो थी यूनिवर्सल वननेस। और उनकी थीम क्या थी उस समय, उनकी थीम थी डिसिप्लिन, कैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन हो। लेकिन उन्होंने क्या किया, वहां जो बेलीला होता है, एक बेलीला जिसमें कहते हैं कि जो बेनिटो मुसोलिनी थे वो यूथ जो था उसको प्रशिक्षण देते थे डिसिप्लिन का। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने आकर के उस तरह की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग तैयार करें उसको, और पार्कों में बैठा करके उन्हें क्या करें कि उनकी जो सोच है वो फासिस्ट बनाए। और फासिस्ट सोच क्या होती है कि कैसे राष्ट्र आपकी सोच को कंट्रोल करेगा, कैसे जब आप स्वतंत्रता से बोलेंगे तो कैसे आपको दबा दिया जाएगा, कैसे आपको यह समझना है कि एक्सट्रीम राष्ट्रवाद जिसमें लोगों को गोली मार दो, जिसमें लोगों को दबा दो, इसका सबसे बड़ा उदाहरण जैसे गोडसे को सावरकर साहब ने प्रशिक्षित किया था और गांधी जी को मारा था। तो इनकी जो थीम होती है उस थीम के पीछे आप देखो जिसको इस देश ने भुगता, इनकी तीन दो किताबें आप पढ़ लो, बंच ऑफ थॉट्स और आप पढ़ लीजिए इनकी वी और अवर नेशनहुड डिफाइंड। और बंच ऑफ थॉट्स में तो ड्रिफ्टिंग एंड ड्राफ्टिंग पूरा चैप्टर है, उस पर देखिए झंडे तिरंगे के बारे में क्या लिखा है इन्होंने। तो हमारा जो डर है वो जायज है। दूसरी बात, इन्होंने योग को लेकर के बात की कि योग पे हमने विरोध किया, योग पे हमने कोई विरोध नहीं किया, उठाइए इनकी वीडियो। लेकिन हां इन्होंने इतना जरूर किया कि एक व्यक्ति को उठा करके 20,000 करोड़ से ऊपर का बाबा बना करके उसके सारे प्रोडक्ट इस देश में बिकवा दिए। 65 ऑर्गेनाइजेशन ने विरोध किया अमेरिका में 65। आप उसमें से जो यहां के ये कह सकते हैं विपक्ष के लोग हैं चलो उन्हें हटा दो, ये कह सकते हैं मुस्लिम संगठन है उसको हटा दीजिए, लेकिन 65 में कौन लोग हैं अमेरिकन्स भी और क्यों कर रहे हैं उसका रीजन सुनिए। ये क्या करते हैं जब वैलेंटाइन डे आता, क्या करते हैं क्रिश्चियन को पकड़ पकड़ के इनके लोग मारते हैं। क्या होता है जब 25 दिसंबर आता है क्रिसमस डे, इनके लोग क्रिश्चियन को पकड़ पकड़ के मारते हैं। हमने कहा जो बोगे वो काटना पड़ेगा, जब अमेरिका में जाओगे विरोध तो झेलना पड़ेगा। मुझे आप ये जरूर बताइएगा, आरएसएस की आप बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं और मैं दो लाइनें सुधांशु जी सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूं, उसके बाद मुझे बता दीजिएगा इस देश में आरएसएस का योगदान क्या रहा। ये जो जंतर मंतर पे आपने चलाई गोलियां और जो ये जितने आतंकी हमले होते हैं आरएसएस और लेकर के, आपके लिए दो लाइन बोलता हूं, आप इतने विद्वान प्रवक्ता है लेकिन सरकार को इतना भी मत बचाइए, आरएसएस को सच्चाई बोलिए। मासूमों का खून बहा है बहने दो, झेलम में कानून बहा है बहने दो, कश्मीरी घाटी रोती है रोने दो, गांधी की लाठी रोती है रोने दो। हम दरबारों की गलती पे क्यों बोले, हम इन गलतियों पे अपना मुंह क्यों खोले, संसद में अपनी जय जयकार हो, आपकी मुट्ठी में भारत सरकार हो, इसीलिए गीत बोलूंगा दरबारों के, इसीलिए आरतियां गाऊंगा सरकारों की। ये आपका हाल है सुधांशु जी, आप जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी

0: विद्वान प्रवक्ता कम से कम सच्चाई रखा जी।
1: आपने जो बोला स्टेप बाय स्टेप जा देता हूं। ये क्रिश्चियंस को कौन मारता है, केरल में फादर जोसेफ का हाथ किसने काटा था और उस पर कौन चुप्पी रख के बैठा था,
2: और ग्राम
1: अभी पिछले साल 2000
2: उड़ीसा ग्राम स्टेंस
1: आपने टर्न पे हाँ
2: बिल्कुल कौन था बताइए ना।
1: हाँ बताइए,
2: यही बता दीजिए,
1: बताइए ग्राम स्टेंस के समय किसी ने रिकमेंडेशन किया सीबीआई की आपकी सरकार की,
2: मुझे
1: उनको
2: बोलेरो जीप में जिंदा किसने जलाया बताइए जरा।
1: आपने जो
2: बताइए जरा क्या वो बीएचपी के लोग थे कि नहीं थे, वो नहीं थे
1: और इसीलिए आप सीबीआई को रिकमेंड नहीं कर पाए।
2: रिकमेंडेशन हुआ क्या सीएम को, आरएसएस के लोग
1: चिल्ला रहे हो
2: क्या तरीका भाई,
1: कट्टरवादी लोग थे वो।
2: सरकार बताइए आगे,
1: हाथ उठाइए, किसकी थी 99 में
2: बताइए, बताइए ना आगे बढ़िए।
1: अरे उड़ीसा सरकार किसकी थी बोलो, 99 में
2: सरकार किसकी थी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सरकार किसकी थी वो
1: सरकार कांग्रेस की थी। कैथोलिक जो चर्च फेडरेशन है केरला की, उसने कहा कि लव जिहाद है, कुछ नहीं बोला। अरे क्रिश्चियंस के लिए भी अगर खड़ी रही उनकी हकीकत में तो भारतीय जनता पार्टी। अब मैं आपको एक फैक्ट बोलना चाहता
2: हूं, वैलेंटाइन पे कौन हड़दंग करता है जरा ये भी बता दीजिए भाई,
1: ये क्या तरीका है भाई,
2: मैं तो केवल सवाल पूछ रहा हूं।
1: तरीका क्या, सवाल अपने टर्न पे पूछिए
2: ना,
3: आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला, आप भी थोड़ा संयम रखिए।
1: अब मैं कोट करता हूं,
3: हाथ उठाइएगा,
1: सुनिए सुनिए। आई वेंट टू आरएसएस कैंप इन वर्धा when founder Dr. Hedgewar was alive and Mr. Jamnalal Bajaj has taken me to here. I was very much impressed with their discipline and complete absence of untouchability, rigorous simplicity, and since then the Sangh has grown. I am convinced that this organization which inspired the ideals of service, ye kisne bola, Mahatma Gandhi ne 1934 ke Wardha Shivir ke baad 1947 mein bola hai, complete works of Mahatma Gandhi volume 89 page number 193. अब सुनो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, अरे चुप रहो भाई, शांति से चिल्लाइए, मैंने एकदम शांति से बोला था,
2: गांधी ने बोला वो मेरा नहीं होगा, तो
3: आप करने लगते हैं, मैं आपसे जवाब ले लूंगी।
1: And I am surprised to find the Swayamsevaks moving in absolute equality and brotherhood without caring about the caste of others. ये बाबा साहब अंबेडकर 1939। अब आइए जेपी, जेपी आंदोलन से तो राठी जी की पार्टी निकली। जयप्रकाश नारायण 3 नवंबर 1977 पटना की रैली में क्या बोल रहे हैं, yours is a revolutionary organization within the forefront of social transformation taking place today and you have a capacity to end the casteism and wipe out the tears from the eyes of poor. ये किसने बोला, जयप्रकाश नारायण ने। अब सुनिए दलाई लामा जी ने, मैं सबका पढ़ने लगूं, 10 जनवरी 2014 को दलाई लामा जी ने बोला, जनरल करियप्पा ने बोला 1959 में, जाकिर हुसैन ने 20 नवंबर 1949 को बोला, कोका सुब्बाराव जी रिटायर्ड चीफ जस्टिस जी ने उन्होंने बोला, और तो और मदन मोहन मालवीय जी ने बोला, जस्टिस सिकंदर हयात, कैलाशनाथ काटजू जो इनकी सरकार में रक्षा मंत्री और गृह मंत्री रहे नेहरू जी की सरकार में, उन्होंने क्या बोला, संघ के शिविर में पहले ही आया हूं 1963 में बोला, चीन से लड़ाई हो चुकी है, अब एकता की जरूरत है और मैं कह सकता हूं कि संघ की शक्ति ने इसको जागृत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और सुनिए अब बोलता हूं 6 जनवरी 1948 को सरदार पटेल ने क्या बोला कलकत्ता में, कोट करके बोल रहा हूं, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के ऊपर जो भी आरोप हो मगर वो एक देशभक्त संगठन है, कुछ लोग कहते हैं उनको डंडे से डील करना चाहिए, डंडा अपराधियों के लिए होता है, उनकी कुछ बातें हमारे लिए गलत हो सकती हैं मगर वो मूलतः एक देशभक्त है। अब मैं बताऊं, मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब, अब देखिए कितनी गलत बात है, राठी जी बाबा जी के ऊपर योग वाले बाबा जी पे कमेंट करने लगे और यहां पर उनको ध्यान नहीं आता है कि जिस समाज के अखिलेश जी हैं उस समाज में शायद पिछले 1-2 शताब्दियों में इतना बड़ा योग ऋषि नहीं पैदा हुआ होगा मगर उसमें भी सकारात्मक पक्ष न देख के नकारात्मक पक्ष देखने का विचार करना मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है।
3: ठीक है आलोक जी, आप छोटा सा जवाब दीजिए, सिंह साहब इसके बाद आ रही हूं आपके पास, विनय जी।
2: देखिए मैं समझता हूं महात्मा गांधी जी के हत्यारे आरएसएस से निकले थे इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है,
1: और अरे 10 लाख हत्यारे कहां से निकले थे
2: भाई, सुन लीजिए ना, देखिए
1: जो पार्टीशन में मारे गए वो 10 लाख हत्यारे
2: हो जाएगी,
3: 2 करोड़
2: दिक्कत ये हो रही है कि अमेरिका में लोग पोस्टर लेके खड़े हैं कि गांधी के हत्यारों का नुमाइंदा अमेरिका में आ रहा है, आज वहां पर ये नारे लग रहे हैं जो हम भी सुनकर शर्मसार हो रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि अगर वो आप देशभक्त थे तो आप 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर अंग्रेजों के साथ मुखबरी क्यों कर रहे थे, आप अंग्रेजों की सेना में सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अपने युवाओं को भर्ती करने की बात क्यों कर रहे थे, एक नहीं है बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, 60 रुपए की पेंशन और बुलबुल और पता नहीं क्या क्या है, आज का विषय वो नहीं, आज का विषय यह है कि मोहन भागवत जी वहां गए हैं, हम उम्मीद करते हैं

के हथकड़ी और बेड़ी लगाकर जो हमारे नागरिक आए हैं उन पर वो दो शब्द बोलेंगे, वो ट्रेड डील पर भी बोलेंगे, वो केवल और केवल वहां पर आरएसएस के प्रचार के लिए धन इकट्ठा करने नहीं गए होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।

0: दो शब्द बोलेंगे, वो ट्रेड डील पर भी बोलेंगे, वो केवल और केवल वहां पर आरएसएस के प्रचार के लिए धन इकट्ठा करने नहीं गए होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और वो ये बताएंगे कि जो अमेरिका के से लोगों ने राम मंदिर के लिए चढ़ावा दिया था, धन दिया था उसके निर्माण के लिए, उसकी चोरी आरएसएस और बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने मिलकर क्यों की है, वहां के हिंदुओं को ये बात बता कर आएंगे।
1: चलिए विनय जी, अब आप इस पूरी
2: एक लाइन बोल दूं,
1: सिर्फ एक लाइन।
2: पहली बात तो माननीय राठी जी ने बोला था अटल जी के बारे में, अटल जी का जन्म है 25 दिसंबर 1925 और 9 अगस्त 1942 को वो 16 साल के थे, नाबालिग थे। अब दूसरी बात बोलता हूं, कोई जाके चेक कर ले, 2020 में वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का डिसरिस्पेक्ट किया गया, उस पर तथाकथित खालिस्तान झंडा फहराया गया, भारत सरकार ने विरोध किया, कांग्रेस ने नहीं बोला,
0: वो महात्मा गांधी की बात करते हैं, बड़ा दुर्भाग्य है
1: भाई, कांग्रेस
0: ने हमने विरोध किया, कब गांधीवादी होना है, गांधी जी की हत्या कर दी है ये बीजेपी और आरएसएस ही निर्भर निर्धारित करती है।
1: विनय जी,
0: गांधी जी की हत्या कर दो, गांधी
1: गांधी का अमेरिका में बोलना अब देश की पॉलिटिक्स में भी गर्म मुद्दा बन रहा है, अभी तो बयान भी नहीं, अभी तो कार्यक्रम भी नहीं हुआ है, आप इसको कैसे देख रहे हैं?
3: अंजना जी, ये शुद्ध रूप से रिसर्च का विषय है। कहानी शुरू होती है इस विरोध की कि यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यूएससीआईआर एक रिपोर्ट जारी करता है। उस रिपोर्ट में वो जून में जारी करता है आरएडब्ल्यू जो हमारी खुफिया संस्था है और आरएसएस को बैन करने की बात करता है, वहां से ये बात शुरू होती है। अब यूएससीआईआरएफ है क्या, ये अमेरिका है क्या? यूएससीआईआरएफ नहीं, अमेरिका की एक संस्था है जिसको यूएस लॉ मेकर्स, यूएस कांग्रेस ने कई बार बैन करने की बात कही है, उसकी फंडिंग रोकने की बात कही है, आपस में बहुत सारे उनके लफड़े हैं। और सन 2020 से ही उसने भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में डाल रखा है, और उसी ने भारत को नहीं डाला है, भारत की जो एमईए है उसने भी यूएससीआईआरएफ को एंटिटी ऑफ कंसर्न डाल रखा है। अब दूसरा पहलू समझिए, यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट आ गई, उसको जोहरान ममदानी ने उठाया। अब जोहरान ममदानी क्या है, एक लाइन में नहीं बता सकते कि वो मेयर है वहां के। जोहरान ममदानी कौन है उसको समझने के लिए उनकी माताजी और उनकी पत्नी के बारे में भी चर्चा करना पड़ेगा। जोहरान ममदानी की माताजी एपस्टीन की मित्र हैं, उनके फोटोज आए थे एक पार्टी में। एक मिनट, आप मत टोकिए,
0: मोदी जी वाले
3: मैंने आपको सुना है,
0: वही एपस्टीन फाइल्स वाले,
3: नहीं बहस मत कीजिए, मैं
0: चुप हो जाऊंगा, हरदीपपुरी वाले एपस्टीन की बात कर रहे हैं,
3: मैं चुप हो जाऊंगा, बता दीजिए, हो जाऊंगा, आप बेहुदा बात कर रहे हैं।
0: अरे नहीं, अच्छा ये बेहुदा बात है, बेहुदा क्या होता है,
3: प्रधानमंत्री मोदी का
0: बेहुदा, मोदी जी का नाम एपस्टीन फाइल्स में आता है और आप कहते हैं बेहुदा बात है,
3: पीएम की फोटो दिखाओ, आप लोग
0: पीएम की फोटो दिखाओ एपस्टीन के साथ, वो पूरी जो है उसका एपस्टीन फाइल्स में नाम आ रहा है, मैं केवल ये पूछा, वही एपस्टीन फाइल ना,
4: क्या तरीका,
0: वही एपस्टीन फाइल्स ना,
4: ये चिल्ला चिल्ली बहुत करते हैं भाई,
0: भाई मैं तो केवल पूछ रहा हूं, वही एपस्टीन फाइल्स की बात
3: कर रही है, स्मैश करिएगा जो रान
4: मंगा है, फिर स्मैश पैट्रियार्की करिएगा,
0: मुझे केवल बताइए वही एपस्टीन फाइल्स है ना जिसमें मोदी जी का नाम है,
4: जिसमें मोदी जी की कोई फोटो नहीं है, उनकी
1: नाम जल्दी कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कीजिए, पहुंचिए,
0: जोहरान ममदानी के तो इतिहास में चले जाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, गजब है भाई,
3: आप कंप्लीट
4: करें, बगैर रजिस्ट्रेशन के बैन कैसे लगाएंगे,
0: हां हां बगैर
4: कैसे लगाया था बैन, बोलो,
0: अरे भाई टेररिस्टाइजेशन के रजिस्टर रजिस्ट्रेशन होते हैं उन पर भी तो बैन लगते हैं,
1: लेट हिम
0: कंप्लीट, बैन लगते हैं कि नहीं लगते हैं,
1: मिस्टर शर्मा, मिस्टर सिंह को कंप्लीट करने दीजिए।
3: जोहरान ममदानी की माताजी के बारे में बताया, जोहरान ममदानी की जो पत्नी है वो प्लेन हाईजैक और बॉम्बिंग को सपोर्ट करती है, जोहरान ममदानी ने कभी विरोध नहीं किया,
1: वास्ता है,
3: वास्ता है, उसके बाद इस कहानी को लेकर के उठाते हैं राहुल गांधी। अब यूएससीआईआरएफ की जो रिपोर्ट है अंजना जी, उसको हम लोगों ने रिबट किया, और यूएससीआईआरएफ के जो चेयर हैं, जो कमिश्नर हैं, उनको हम लोगों ने पत्र लिखा था जून में, जिसका रिप्लाई नहीं आया। यूएससीआईआरएफ की जो रिपोर्ट है उसको काउंटर अमेरिका की ही जो संस्था है UNOHCR है, और वहां की उसने जो रिसर्च है उनकी फाइंडिंग की मेथोडोलॉजी डिफाइन की है, यूएससीआईआर की रिपोर्ट उसी मेथोडोलॉजी को काउंटर करती है।
0: वो बताओ,
3: कहना ये चाहता हूं कि मोहन राव भागवत वहां जाकर के पूरी धरती एक परिवार है ये बात कर रहे हैं,
0: और हिंदू हिंदुओं के प्रोग्राम में जा रहे हैं, पूरी धरती एक
3: परिवार है,
0: इंडियंस को इकट्ठा कर नहीं पा रहे वहां जाकर,
3: लड़की बहन नहीं है, लड़की मां नहीं है, लड़की बेटी नहीं है, क्या नर और मादा का संबंध क्यों होना चाहिए?
0: मोहन भागवत जी का एक बयान अंबिका भंडारी में दिखा दो मुझे,
3: है लड़की बेटी है और लड़का
0: भाई का, भंडारी में मोहन भागवत का एक बयान दिखा दो,
1: चिल्लाना नहीं, मनुस्मृति डिफेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, कहां
3: नहीं नहीं नहीं, मैं मनुस्मृति नहीं बोल रहा हूँ, आज रक्षाबंधन है अंजना जी, आज बहन भाई के संबंधों को सेलिब्रेट करके हम आ रहे हैं, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि लड़की बहन नहीं है,
5: और राहुल गांधी और जोहराम मंदानी को उस बात का खतरा है

0: कि भारत सांस्कृतिक
1: पहले बताया राहुल गांधी ने बहन के ऊपर कब्जा कर दिया
2: अरे राहुल जी के साथ इतना चिल्लाते हैं आप आलोक जी अरे उन्होंने भी राखी बंधवाई है वीडियो डाला है अपनी बहन से राखी बंधवाई
0: है
2: कहाँ कहा है
0: उन्होंने
2: चिल्लाते
0: कहा है कि लड़की बहन
1: झूठ बोल के चले जाते हैं
0: लड़की माँ नहीं है ये बहुत ये परिवार संस्था को आघात पहुंचाने वाला है
1: ये मोदी जी के अनुयायी परिवार समझाने गए हैं भाई
0: सामाजिक पूंजी से
1: अपनी घरवाली छोड़ा है दूसरों को परिवार का पाठ पढ़ा
0: सामाजिक पूंजी है जिससे कि सर्वभूत हित रहता
2: है एक सेकंड एक बुनियादी सवाल है आपसे अगर पुरुष प्रधान समाज या पितृसत्ता के खिलाफ कोई कदम उठाया जाए तो इससे परिवार की जो पूंजी आप कह रहे हो कैसे हिल जाती है
0: अंजना जी पूंजी मैं छोड़ दीजिए मेरी बात छोड़ दीजिए अमेरिका के एक फिलोसफर है रॉबर्ट पुटनम नाम
2: है वो
0: ये कहते हैं कि सामाजिक पूंजी जो है वो इंटर रिलेशंस इंट्रा रिलेशंस इवेंकुलर रिलेशंस यानी चाचा चाची भाई भतीजा इन संबंधों से बनती है और इन्हीं संबंधों पर आघात होता है जब आप कहते हैं इसमें पैट्रियार्च की लाइन से समस्या नहीं है पैट्रियार्की खत्म होनी चाहिए
2: समाज को खत्म
0: लेकिन आप बहन भाई के संबंधों को आप आघात पहुंचा रहे हैं संबंधों पे आप
1: इस प्रधान व्यवस्था को इस पैट्रियार्की सोनिया जी कहे कि मैं अपने पति का सरनेम क्या नेम भी बदल लिया ना कहे मैं अपना ओरिजिनल नाम रखूंगी एंटोनियो माइनो राहुल गांधी का स्मैश पैट्रियार्की मैं पिता का नाम नहीं रखूंगा मैं अपना नाम रखूंगा राहुल माइनो बोलो स्मैश पैट्रियार्की बोलो
3: दुर्भाग्य ये है कि अंकिता भंडारी पर एक शब्द नहीं बोलेंगे पुरुष सत्ता की जब बात करेंगे तो 2009 के कानून को पढ़िए
1: अरे सुनिए ना भाई
3: जिस समय पर सोनिया गांधी जी ने महिलाओं को बेटियों को जमीन में जायदाद में पूरे अधिकार दिए हिंदू कोर्ट बिल से लेकर आज तक अगर हिंदू महिलाओं को कोई अधिकार दिए
1: हिंदू कोर्ट में कोई अधिकार नहीं मिला डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध किया
3: सुनिए प्रभु सुनिए हिंदू
1: कोर्ट करिए
3: आप लोगों ने विरोध
1: किया अधिकार दिया गया हिंदू कोर्ट बिल में
3: सुनिए
1: कोर्ट करिए
3: अरे सुनिए ना आज हम तो केवल ये पूछ रहे हैं महिला आरक्षण का बिल अपने पीठ के नीचे क्यों दबा के बैठे हो भाई
1: उसको लागू तो पास हो चुका
3: कर दो ना
1: जब पास हो चुका तो लागू क्यों नहीं कर रहे आप नहीं हो रहे हैं
0: उसको लागू क्यों नहीं कर रहे
1: क्योंकि परिसीमन का क्लॉज है
3: पढ़े लिखे नहीं हो गलत है आप परिसीमन के माध्यम से
1: परिसीमन का क्लॉज उस एक्ट में है और इलेक्शन चाहते हैं आपको महिलाओं के अधिकारों से कोई मतलब नहीं है
2: 543 में क्यों नहीं लागू करते सुधांशु जी बदलिए ना अगर
1: परिसीमन लेना देना नहीं
2: फिर चिल्ला रहे परिसीमन को रोका जा रहा है अगर परिसीमन नहीं हो पा रहा एक सेकंड सर परिसीमन अगर नहीं हो पाता आपने वादा किया ना कि 29 में करेंगे अब परिसीमन अगर टल रहा है तो नहीं होगा
1: तो जो परिसीमन नहीं कर रहा है इसका मतलब वो खिलाफ में मान लो परिसीमन लिखा है जिस तक होता है तो 34 में लेके जाएंगे एक्ट में लिखा है कि परिसीमन के बाद होगा
0: अगर परिसीमन मान लो दो तिहाई बहुमत आपको नहीं मिलता परिसीमन नहीं होता है तो क्या 29 में भी लागू नहीं करेंगे 34 में लेकर जाएंगे
1: तो चलो
0: और आपकी सरकार चली
2: आलोक शर्मा जी अब हो गया
1: चलिए थोड़े मिनट तो मैं इनसे पूछता हूँ इन्होंने लागू कर दिया है आपकी सरकारों में एक तिहाई महिला है बोलो
3: जब आपको पता था दो तिहाई
1: बहुमत
0: इसका उत्तर दीजिए
2: आप बोले राठी जी
4: देखिए अभी दो तीन चीजें इन्होंने कही सुधांशु भाई साहब ने बोला जैसे ही मैंने योग के बाबा जी का नाम लिया तो इन्होंने सीधा जाति पे ले गए उसको
1: योग के बाबा जी ने लाला क्योंकि, लाला
4: क्योंकि,
1: राम
4: क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि इन्होंने शुरू कर दिया उस बात को
1: मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया
2: अरे पर दिलचस्प चीज है जिनको आप लाला कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं आलोक जी
4: आप गलत सही में सुन रहे
2: हैं फूले आपके भी टाइम में
4: अब सुन लीजिए
2: यही तो उनकी कला थी नहीं
4: आप
2: ना ना क्या कर रहे हैं
4: आपको
3: हाँ जी बोलिए
4: मैं बड़ी शांति से सुन रहा था अभी मैं बोल उसके बाद भी बोल लेंगे अभी सुधांशु जी ने पढ़े कई नाम और उसमें इन्होंने बताया कि आरएसएस के कैसे तारीफ की बस इतना यहां से शुरू होकर इतना खत्म हो जाता इतना शुरू होकर इतना खत्म हो जाता है लेकिन आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं बहुत सारे पेज बताते हैं आप बंच ऑफ थोड़ का 237-238 बंच ऑफ थोड़ का पढ़ सकते हैं आप पढ़ दीजिए एक बार आप बताइए तिरंगे क्या लिखा तीन नाम मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप बताइए कौन लोग हैं आपको तो बहुत जानकारी है हाँ, सुनिए तीन नाम बोलता हूँ
1: अभी मैं बगैर पढ़े बता रहा हूँ
4: आप बताइए बाबा मेंढे रमेश और दिलीप कौन है तीन लोग ये तीन लोग जानते हैं आप कौन है बताइए जानते हैं नहीं जानते क्योंकि काम की चीज नहीं है ये तीन लोग वो लड़के हैं जिन्होंने 2000 में आपके यहाँ झंडा फहराया तिरंगा और आपने जेल में डाल दिया था। 13 साल मुकदमा चला और 2013 में बरी हुए। आप इसको नहीं बोलते सबके सामने?
1: चलो चलो,
4: ये आपके सामने नहीं आया ना? एक बात
2: ठीक है, उनका स्पेसिफिक पॉइंट है,
4: इस देश को हम तो सुनते ही रहते हैं ना, सवाल और पूछ लू ना। आप मुझे बताइए, कभी भी आप तिरंगे पर, संविधान पर और गांधी जी पर जवाब नहीं देते, और ये तीनों ऐसी चीज हैं जो इस देश को जोड़ती हैं।
2: ठीक है,
4: आप बताइए, गोडसे ने गांधी जी को मारा, गोडसे क्या चेला नहीं था सावरकर का? आप प्रूव कीजिए ना उस बात को, क्यों नहीं बोल? आप इधर उधर क्यों जाते हैं कि उसने तारीफ करी, उसने करी, मान लिया हमने तारीफ करी, आप इस पे जवाब दो ना। आपने क्यों 52 साल तिरंगा नहीं लहरा? क्यों उन्होंने कहा था कि इस झंडे को
2: मैंने जी, जवाब सुन लीजिए,
4: क्यों कहा था उन्होंने?
2: चलिए जल्दी से
1: जवाब देता
2: हूं, स्पेसिफिक सवाल है,
1: बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब। पहली बात तो देखिए इनका चरित्र, कि डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी और जेपी, इनके लिए कोई लग रहा
3: है स्पेसिफिक सवाल पे? 52 साल पे जवाब दीजिए, 52 साल तिरंगा क्यों नहीं फहराया?
1: और क्या आप दो रंगों के पक्ष में नहीं थे? हाँ या ना मैं उत्तर दे दीजिए। अरे हाँ या ना मैं उत्तर दे रहा हूँ भाई, चिल्ला रहे हो बीच में, लगातार चिल्ला रहे हो।
3: अब मेरी बात सुनो, बच्चों के ऊपर 13 साल के चिल्लाया कि नहीं कि तिरंगा उन्होंने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर
1: तरीका है भाई, लगातार चिल्ला।
3: अब मैं कह रहा हूँ स्पेसिफिक सवाल,
1: स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूँ भाई, सुनो तो।
2: बंद कीजिए,
1: आपने
3: तिरंगा नहीं लहराया,
1: सुनिए,
3: तिरंगा लहराया?
1: अरे भाई ये बात सुनो,
3: अरे
1: चुप करेंगे तब तो बोलेंगे भाई,
3: सुनिए ये सुनो,
1: ये समाई
3: स्टैंड में बोलने में कितना टाइम लगता, बोल दीजिए यस नो।
2: राठी जी, राठी जी यहाँ लड़ने के लिए आए हैं क्या?
3: लड़ने के लिए?
2: शर्मा जी प्लीज अब जवाब सुनिए। नहीं राठी जी प्लीज स्टॉप,
3: यस और नो बोलने में,
2: मिस्टर राठी प्लीज स्टॉप, अब जवाब सुनिए।
1: सुनिए
2: हो गया,
1: सुनिए, नवीन जिंदल केस से पहले सरकारी संस्था के अलावा और कहीं झंडा नहीं लहराया जा सकता 15 अगस्त 26 जनवरी के अलावा? सरकार
3: 26 जनवरी 15 अगस्त में भी नहीं कह रहा, कभी नहीं फहराया 50-52 साल में, ये कह रहे हैं
4: पहले तो वो सब लोग नहीं फहरा सकते थे। अरे 26 जनवरी 15 अगस्त पे तो सब फहराते थे, आपने तब भी नहीं फोटो दिखावा, आप 2001 से पहले का फोटो दिखा दो।
1: अब मैं बोल सकता हूँ भाई, हद हो गई है भाई, बीच में डिस्टर्ब करने की, दर्शक देख सकते हैं स्कूल फैक्ट नहीं बोलने दे रहे।
2: चलिए अब आखिरी लाइन, अपनी बात पूरी
3: कीजिए।
1: 10 साल तक आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर में लाल चौक पे झंडा राज्यपाल भी नहीं फहरा सकता था, मोदी जी ने जान पे खेल के बांधने में
3: फहराया।
5: और आइए अब आपको सीधे लिए चलते राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में,
4: कि माइंड में क्या इफेक्ट जाएगा, कि बच्चे देख रहे हैं कि दूसरे बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, और जो झाड़ू लगा रहे हैं वो देख रहे हैं कि दूसरे बच्चे झाड़ू नहीं लगाते हैं। ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। कुएं पर दलितों को पानी नहीं पीने देते हैं, यहां पे इन्होंने अपना पर्सनल, इनको पर्सनल कुआं खोदना पड़ा, क्योंकि इनके गांव को, गांव के कुएं में पानी नहीं पीने दे रहे थे। चाय की दुकान पर ये देखिए दो तरीके के कप चलते हैं, एक शीशा का कप होता है, रियूजेबल कप होता है जिसको धोया जा सकता है, और दूसरा पेपर या प्लास्टिक कप होता है जिसको फेंक दिया जाता है। प्लास्टिक वाला, पेपर वाला दलितों के लिए, और कांच वाला दूसरे लोगों के लिए। और फाइनल बारात में जो खुशी का दिन होना चाहिए, उस दिन हिंदुस्तान में हजारों दलित जब घोड़े पे चढ़ते हैं, बारात में जाते हैं, तो हेलमेट पहन के जाते हैं, पत्थर फेंके जाते हैं, मारा जाता है, धमकाया जाता है, पीटा जाता है। यह हिंदुस्तान की रियलिटी है, यह उत्तर प्रदेश की रियलिटी है, नॉर्थ इंडिया की रियलिटी है, और यह आप शहरों में, गांव में देख सकते हैं। जितनी बुलंद आवाज होती है, जितना सक्सेसफुल दलित व्यक्ति होता है,
6: उतने जोरों से उस पर आक्रमण होता है। हर रोज करोड़ों लोगों पर होता है, मगर अगर कोई दलित नेता सक्सेसफुल हो जाए, चाहे बिजनेस में, क्रिकेट में, कहीं भी, तो उस पर आक्रमण होता है। यहां पर हमारे सीएलपी राजस्थान के मंदिर जाते हैं, बीजेपी के नेता शुद्धिकरण करते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी है, मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट हैं, वो रामलीला ग्राउंड में हल्द्वानी में जाते हैं भाषण देने, और वहां पर शुद्धिकरण होता है। और उनकी पार्टी का उदाहरण बिहार के चीफ मिनिस्टर मांझी जी, वो मंदिर में जाते हैं और वहां शुद्धिकरण होता है। ये करता कौन है? ये बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं, सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग ये करते हैं, और ये क्राइम है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये क्राइम है, क्रिमिनल एक्टिविटी है। और ये शुद्धिकरण हम कह रहे हैं, बट ये छुआछूत का दूसरा नाम है। अनटचेबिलिटी को इलीगल कर दिया गया था, और बीजेपी के लोग सबके सामने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब ये शुद्धिकरण करते हैं, ये कह रहे हैं कि दलित को छूना नहीं चाहिए, दलित गंदे हैं, और ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक क्राइम है। 8 अगस्त को खारगे जी की रैली होती है, 10 अगस्त को बीजेपी के आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, 2 दिन बाद वहां पे ये शुद्धिकरण करते हैं, क्राइम करते हैं। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट
7: सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में खड़गे जी की रैली हल्द्वानी में होती है, रैली
6: प्ले द फोर्थ
7: सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक बीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया, और लाखों लोग वहां पर थे। सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। दिस इज द वे इन डेमोक्रेसी, हाउ यू आर प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता। मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो।
6: तो 10 अगस्त को शुद्धिकरण होता है, 13 अगस्त को हमारे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में भाषण देते हैं और कहते हैं कि शुद्धिकरण किया गया, क्राइम है, मेरा अपमान हुआ है, हिंदुस्तान के हर दलित के अगेंस्ट क्राइम है।
8: खड़गे जी की रैली हल्द्वानी में होती है, रैली उस स्थान पर होती है जो रामलीला का मैदान है, वहां पर गंदगी होती है, ऐसे नारे लगते हैं जो नारे राम मंदिर में लग नहीं, राम स्थान पर लग नहीं सकते हैं, वहां पर गंदगी फैलाई जाती है, उसका शुद्धिकरण अगर होता है।
6: और ये बीजेपी के उत्तराखंड के लीडर हैं, इंचार्ज हैं, मेन लीडर हैं, और ये खुल के कह रहे हैं कि शुद्धिकरण किया गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 दिन हो गए हैं। ये SC ST एक्ट के खिलाफ ये काम है। लेट मी रिपीट हियर, इट इज ए क्राइम टू डू शुद्धिकरण। नो एक्शन हैज बीन टेकन। तो हमारा कहना है कि हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में उन पर FIR लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, RSS के लोगों ने शुद्धिकरण किया है। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ FIR SC ST एक्ट में FIR दर्ज किया जाए। लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन और RSS और BJP की विचारधारा के बीच में है, और ये जो इंसिडेंट है ये हमें दिखाता है BJP और RSS का माइंडसेट। वो नहीं चाहते कि इस देश के दलित प्रगति करें, वो नहीं चाहते कि इस देश के दलित रिस्पेक्ट के साथ जिए और सक्सेसफुल हो। आगे कुछ कहते हैं और सच में उनका माइंडसेट ये है। तो जल्दी से जल्दी उत्तराखंड में FIR लग जाना चाहिए। थैंक यू। और सॉरी, हम कोई इंपॉसिबल चीज नहीं मांग रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक क्राइम किया गया है, अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम, दिस इज अनटचेबिलिटी। वी आर डिमांडिंग जस्टिस फॉर द कांग्रेस प्रेसिडेंट। वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग मोर, वी आर सेइंग गिव द कांग्रेस प्रेसिडेंट जस्टिस इन उत्तराखंड, एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट खारगे जी गेट्स जस्टिस इन उत्तराखंड।
9: पूनम मेहता,
10: मैं पूनम हूं अमर उजाला से। इससे पहले आपको शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए संसद की कार्रवाई रोकनी पड़ती है, आज अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। इस देश में जिस तरह का माहौल है, अभी जो दूसरी मौजूदा पार्टी है उसका भी संगठन नया बना है, तो आप दलितों की स्थिति को कहाँ पाते हैं इस देश में, नंबर वन? और नंबर दो, जिस तरीके से आप न्याय की मांग कर रहे हैं, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा?
6: नहीं देखिए, हमारे प्रेसिडेंट हैं तो न्याय मिलेगा, आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा, ठीक है? दैट इज नॉट गोइंग टू बी ए पॉसिबिलिटी कि खारगे जी को न्याय नहीं मिला, तो ये तो आप भूल जाइए। एंड यू विल सी, मैं आपको बता रहा हूं, स्टेट से बता रहा हूं, FIR लगेगा, आज नहीं तो कल FIR लगेगा। आपका पहला सवाल क्या था?
10: अभी भारतीय जनता पार्टी का भी नया संगठन बना है, उसमें जो आरक्षित वर्ग है उसके स्थान को कहां तक पाते हैं आप?
6: आई एम नॉट इंटरेस्टेड। BJP का नया संगठन, पुराना संगठन मेरे लिए एक ही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको वो लाना चाहते हैं ले आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी लड़ाई विचारधारा की है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की है, तो वो जो भी करना चाहते हैं करें, कोई इंटरेस्ट नहीं हमें।
9: राहुल गौतम,
11: Sir, unfortunately, undoubtedly what happened is a blot on a democracy, but would you not agree that your own party colleagues didn't speak much on this issue as they should have spoken about it? There were reports that Mr. Mallikarjun
6: Kharge himself
11: expressed displeasure over this fact that he didn't get the
6: That is not actually what happened. What happened is that he said certain people did not support him. He did not in any way say that the vast majority of Congress people didn't support him. I supported him. Whole number of other people supported him. He was pointing to a set of people who he felt didn't support him. But dekhiye, ye frankly main aapko bolun aur meri iske bare mein Kharge ji se baat hui. Ye Kharge ji ke issue nahi hai. ये हिंदुस्तान का हर दलित व्यक्ति छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग लोगों तक की इशू है. ये हमने यहां रेज की है मगर ये टिप ऑफ आइसबर्ग है. ये एक हमारे प्रेसिडेंट के साथ अगर यह किया जा सकता है, अगर ऐसे व्यक्ति के साथ यह किया जा सकता है, ऐसे सीनियर व्यक्ति के साथ यह किया जा सकता है, खुलेआम किया जा सकता है, बिना झिझक के किया जा सकता है, तो आप इमेजिन कीजिए कि स्कूल में एक 4 साल के बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा. तो हम ये खारगे जी हमारे प्रेसिडेंट हैं और हम खारगे जी के लिए रेस कर रहे हैं, बट हम ये हिंदुस्तान के हर दलित व्यक्ति, हर महिला, उनके लिए रेस कर रहे हैं. ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और ये सिंबल है, ये इनकी विचारधारा है और हमारी लड़ाई इनकी विचारधारा के साथ है.
9: अनवर
12: सर, खरगे जी ने जिस दिन ये मुद्दा राज्यसभा में उठाया था उस दिन जेपी नड्डा ने खेद जताया था, उसके बाद रिग्रेट जताया था वहां पर. उसके बाद जो है बीजेपी जो उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं उसको जस्टिफाई करते हैं शुद्धिकरण को. तो क्या आपकी ये मांग है कि जो महेंद्र भट्ट हैं उत्तराखंड इकाई के बीजेपी के, उनको बर्खास्त किया जाए और प्रधानमंत्री को स्पष्टीकरण या माफी की मांग करते हैं?
6: हमारा क्लियर है, हम चाहते हैं कि ये एक क्राइम है, एक इलीगल चीज की गई है. हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी को बैन करता है, कहता है कि अनटचेबिलिटी को जो प्रैक्टिस है वो इलीगल है. शुद्धिकरण जो हो रहा है वो अनटचेबिलिटी ही है, वो दूसरे नाम से अनटचेबिलिटी है. अगर मैं शुद्धिकरण करता हूं तो उसका फाउंडेशन अनटचेबिलिटी है. अनटचेबिलिटी के बिना मैं शुद्धिकरण कर ही नहीं सकता. तो शुद्धिकरण इज ए क्राइम एंड वी वॉन्ट एक्शन अगेंस्ट द पर्सन हुज डन द क्राइम एंड वी आर गोइंग टू गेट एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन. इवन इफ बीजेपी डजंट डू इट, वी आर गोइंग टू गेट इट. ही इज नॉट गोइंग टू एस्केप. आई गारंटी यू द इंटायर कांग्रेस पार्टी इज नॉट गोइंग टू लेट दैट मैन एस्केप टूडे और टुमारो.
9: विक्रांत
13: राहुल जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं उसमें दो बड़ी चुप्पियां हैं. एक चुप्पी प्रधानमंत्री की है, वो लगातार इस मामले पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, और दूसरी चुप्पी कांशीराम की विचारधारा को लेकर चलने वाली मायावती की है. इन दोनों चुप्पियों पर आपकी क्या राय है? इतना बड़ा मामला हुआ है कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर.
6: देखिए, हमें चुप्पी से इंटरेस्ट नहीं है. ये प्रधानमंत्री की विचारधारा का रिफ्लेक्शन है कि वो कुछ बोल नहीं रहे, कर नहीं रहे, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. हमें अपने काम पर इंटरेस्ट है और हमें इलीगैलिटी पर इंटरेस्ट है. बीजेपी के जो उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं उन्होंने इस काम को सपोर्ट करके इलीगल काम किया है. जिस व्यक्ति ने यह शुद्धिकरण किया है और जिनकी वहां पे फोटो है जो कर रहे हैं उनके साथ, उन्होंने इलीगल काम किया, हम उनके खिलाफ एक्शन चाहते हैं. सिंपल सी बात है. प्रधानमंत्री इसके बारे में बोलना चाहे ना बोलना चाहे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मायावती जी बोले ना बोले हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट है कि हमारे प्रेसिडेंट के साथ जो किया गया है और ये जो सिंबल है कि एक करोड़ों दलितों के साथ रोज किया जा रहा है, इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए।
9: सिद्धार्थ सर, ये तो आपने बात खड़गे जी की कही और आप कह रहे हैं सभी दलितों के साथ होता है इस तरीके का। अभी कुछ दिन पहले ही एक दलित के साथ महाराष्ट्र में मई में एक घटना होती है, वीडियो वायरल होता है अगस्त में, तब जाकर FIR होती है। लेकिन एक और बड़ा इशू मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या ये शुद्धिकरण शब्द, प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण शब्द एक बड़ी बात है? और जहां अशुद्धिकरण हो रहा है, आप जैसा आप कह रहे हैं कि वहां पर अनटचेबिलिटी हो रही है, तो क्या इसकी टर्मिनोलॉजी भी बदलनी चाहिए? क्या इसके लिए भी आगे बात करनी चाहिए?
6: आप उसको कोई भी टर्मिनोलॉजी दे दीजिए, अगर आप यहां आए और मैंने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की, दैट इज अ क्राइम अकॉर्डिंग टू SC/ST एक्ट, इट इज अ क्राइम। आप उसको कोई भी नाम दे दो, शुद्धिकरण दे दो, सफाई दे दो, प्यूरिफिकेशन दे दो, जो भी देना है दे दो, इट इज अ क्राइम। वी आर इंटरेस्टेड इन द क्राइम। टुमारो कल वो कहेंगे नहीं भैया शुद्धिकरण बंद कर दिया, हमने सफाई शुरू कर दी, क्या मतलब है? वी आर इंटरेस्टेड इन अनटचेबिलिटी क्वेश्चन। Are you practicing untouchability or not? Are you allowing untouchability to be practiced in this country? Yes, it is a crime. We want action. Simple.
9: Naveen Gautam, Navbharat.
6: Last question.
9: Last.
14: Sir, अभी FIR कराने के लिए आप संसद मार्ग थाने पहुंचे थे, जो 30 दिन के बाद शायद FIR हुई, तो क्या यहां भी ऐसी कोई प्लानिंग है उत्तराखंड को लेके? कब जा रहे हैं आप और कौन से थाने में?
6: नहीं, हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। हमने डिसीजन ले लिया है कि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में हमारे प्रेसिडेंट को न्याय मिले, हमने डिसीजन ले लिया है। अब उनके बॉल में कोर्ट है, सॉरी कोर्ट में बॉल है, अगर वो एक्शन ले जो लेना चाहिए वेरी गुड, अगर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर हमारा कोई ना कोई रिएक्शन तो आएगा। एवरी एक्शन हैज या हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दीज डेज व्हाट इज हैपनिंग, एक्शन हैज मच बिगर रिएक्शन। थैंक यू भैया। ये आपने इसको मैं कहता हूं डाइग्रेशन स्ट्रेटजी, कि आपने मतलब ये, इसमें मुझे अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे खारगे जी के अगेंस्ट जो किया गया है, जो क्राइम है, उसमें इंटरेस्ट है।
9: हो गया हो गया हो गया हो गया।
6: थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कैन आई स्पीक? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ऑल दीज डिस्कशंस वी विल हैव एट अ फ्यूचर प्रेस कॉन्फ्रेंस। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।
5: तो देखिए, 8 अगस्त को हल्द्वानी जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके बाद आज तारीख है 29 अगस्त। 29 अगस्त को राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष को न्याय मिलना चाहिए। 21 दिन बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से मुद्दा उठाया गया था और उसके बाद इस पर जेपी नड्डा ने खेद भी जताया था और कहा था कि बीजेपी ऐसा बिल्कुल सहज नहीं करती और इस मामले में जांच की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद ये खबर आई थी, जो सूत्र बताती है, खबर आई थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी नाराज थे कि इस मुद्दे को जिस तरह से उठाना चाहिए था उस तरह से नहीं उठाया गया है। और अब 21 दिन बाद राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उत्तराखंड में शुद्धिकरण करने पर। कहा कि ये बीजेपी और RSS के लोग हैं जिन्होंने मंच का शुद्धिकरण किया।
6: हमारे CLP राजस्थान के मंदिर जाते हैं, बीजेपी के नेता शुद्धिकरण करते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी है, मिनिस्टर रहे हैं,
15: पार्टी प्रेसिडेंट हैं, वो रामलीला ग्राउंड में हल्द्वानी में जाते हैं भाषण देने, और वहां पर शुद्धिकरण होता है। और उनकी पार्टी का उदाहरण बिहार के चीफ मिनिस्टर मांझी जी, वो मंदिर में जाते हैं और वहां शुद्धिकरण होता है। ये करता कौन है? ये बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं, सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग ये करते हैं, और ये क्राइम है।
5: और उत्तराखंड के मंत्री, कैबिनेट मंत्री इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, जो सवाल उठाए गए मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान के, सुनिए।
16: राज्यसभा में लेकर के कि मेरा अपमान हुआ है, तो इसको लेकर के नड्डा जी ने कहा कि जांच की जाएगी। तो जांच जब की गई तो पता लगा कि वहां पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का उस हवन में, उस शुद्धिकरण में शामिल ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस हवन से और इस शुद्धिकरण से अपने आप को अलग करती है।
5: भारतीय जनता पार्टी इस हवन से अपने आप को बिल्कुल अलग करती है। उस हवन में बीजेपी का कोई भी शख्स नहीं था, कोई भी कार्यकर्ता नहीं था। ये उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री की तरफ से कहा गया है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको न्याय मिलना चाहिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा खास शो।
17: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। त्रिशूली नदी के किनारे किनारे नेपाल में दिख रहा है किस तरीके से रिहायशी इलाकों, बाजारों में मौत का तांडव, बर्बादी का तांडव हर तरफ है। और त्रिशूली नदी के किनारे किनारे ही हम सब आगे बढ़ते हुए आपके लिए आज तक के जरिए वो रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं। हम अगले एक घंटे में आपको वो रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे और तमाम अपडेट्स भी बताएंगे, क्योंकि रोज मौत का आंकड़ा जो है वो कुछ और बढ़ जा रहा है। जो अस्पताल हैं उनके लिए लाशों को रख पाना बहुत मुश्किल इस समय प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही जो लोग अभी भी अपने घर वालों का इंतजार कर रहे हैं उनकी आंखें पथराई हुई हैं। वो उस कैंप के बाहर लगातार इंतजार कर रहे हैं जहां रिलीफ के साथ उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू किए हुए कुछ लोगों के साथ लौटते हैं। लोग सोचते हैं कहीं कोई अपना लौट रहा हो। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि त्रिशूली नदी है, उसके किनारे किनारे पर जो इलाके थोड़े नीचे हिस्से में बसे हुए हैं वहां पर भयंकर तबाही देखने को मिली है। ऐसी ही एक इलाके से देखिए मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा की ये रिपोर्ट।
18: तिब्बत नेपाल सीमा पर बसा नेपाल का जिला रसुवा वो जगह है जहां से नेपाल में आपदा का आगमन हुआ। ये दुर्गम इलाका अब पूरी तरह से मुख्य सड़कों से कट गया है। छब्बीस अगस्त को जब यहां तबाही आई तो उसके बाद से कोई भी शख्स सड़क मार्ग से वहां पहुंच नहीं सका, क्योंकि रसुवा को बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला त्रिशूली नेशनल हाईवे कई जगहों पर बह गया है, रास्ता बंद है। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा नुआकोट से रसुवा की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सफर आसान नहीं है। हाईवे पर कई फीट तक मलबा जमा है। भोटे कोशी की विकराल धारा कमजोर तो हुई है, लेकिन नदी ने जो विनाश मचाया वो वैसा ही है।
19: भटकोशी नदी अपने साथ जो तबाही लेकर के आई उसने भद्रावती गांव को पूरी तरह उजाड़ दिया। ये सड़क आगे में जाने की भी कोशिश करूं तो नहीं जा सकता, क्योंकि 50 मीटर के बाद सब कुछ एकदम ठप पड़ चुका है। आगे दलदल है और जो लोग हैं उस पार है वो पूरी तरह डिस्कनेक्टेड है। अब जो लोग इस पार गांव में बचे भी हुए हैं, जो ऊपर चले गए थे, उन तक मदद पहुंचाने का एकमात्र जरिया है कि हेलीकॉप्टर के जरिए उन तक रसद, खाना, दवाइयां पहुंचाई जाए, क्योंकि लैंडिंग भी नहीं कर सकते। अब आप सोचिए कि ये भटकोशी की जो सीमा पूरी आपको दिखाई दे रही है, इसके आगे जो ऊंचा इलाका है वो मैदानी इलाका, वहां पर खेत थे, दुकान, मकान, घर सब कुछ थे, लेकिन जब पानी अपने साथ ये सैलाब लेकर के आई तो यहां तक। अब आप पानी के स्तर को इससे अगर तुलना कर लें तो ये आपको लगेगा कि 40 से 50 फीट की ऊंचाई है। 50 फीट की ऊंचाई तक अगर मलबा आता है तो उसके बाद नदी अपने साथ कितना बड़ा कटाव करती है वो आपको इन तस्वीरों के जरिए पता चलेगा। देखिए इस कटाव को, इसने अपने साथ सब कुछ बहा दिया है, कुछ भी यहां नहीं बचा है। और यहां आकर के जो मलबा दिखता है ये बेहद डरावना मंजर है। आगे जो नदियां हैं, ये नदी अपने आप में कई धाराओं में बट गई है, और यही भटकोशी आगे जाकर के त्रिशूली, जिसको त्रिशूली के नाम से भी जाना जाता है, ये इतनी धारा लेकर के आई कि आगे पहाड़, चट्टान, जो मकान वहां पर कुछ प्रोजेक्ट थे, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट थे, सब कुछ वो अपने साथ बहा ले गई। इतनी तबाही मचाई है कि जब हम ऊंचाई पर आ रहे हैं उन इलाकों के बेहद नजदीक, आज तक रुसवा के बेहद करीब भद्रावती इलाके तक पहुंचा है। एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे तबाही की शुरुआत जिन इलाकों से हुई, जैसे जैसे नदी के साथ मलबा आगे बढ़ा, उसके रास्ते में जो कुछ भी आया वो उस मलबे से ढक गया।
18: नुवाकोट और रसुआ जिले की सीमा पर बेतरावती पड़ता है। बेतरावती में भी 26 अगस्त को प्रलय आ गई थी। जब भोटे कोशी नदी अपने प्रवाह से कई गुना अधिक वेग से बहने लगी तो ये गुलजार इलाका भी निर्जन हो गया। नदी के उस पार उन गांवों में कोई जिंदा बचा है या नहीं, ये कहना मुश्किल है।
19: अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ भटकोशी का स्तर कितना ऊपर आया था। ये देखिए नदी का नीचे दिखाई दे रहा आपको, ये लगभग 70 से 80 फीट नीचे है। अब मैं जहां तक हूँ यहाँ तक मलबा टच करके गया था। ये जो निशान है काली मिट्टी, इससे आप इसके साथ जो आए आप समझिए कि 80-90 फीट पानी यहाँ चढ़ा था। हम इस समय ऊंचाई पर है, आगे स्लोप है, तो पानी अपने साथ बोल्डर पत्थर लेकर के जिस रफ्तार से, इसकी धारा देख लीजिए, ये जो धारा है ये लगभग 200-300 मीटर चौड़ी है। अब 300 मीटर चौड़ाई में पानी अपने प्रवाह के साथ अगर 80-90 फीट तक ऊंचाई पर बह रही है तो आप समझिए कि उसमें ताकत कितनी होगी। और इसीलिए वो नीचे गई तो आगे पर जो एक डाइवर्जन, एक चट्टान है दरअसल, वो पानी को डिवाइड करती, उसकी रास्ता बदल देती थी, उसने पहाड़ को ही हटा दिया अपने रास्ते से तो रास्ता बदल गया। और इसी के साथ कटाव इस कदर किया है, उस कटाव के साथ जो मलबा था वो भी नीचे गया, उसके रास्ते में पेड़ जंगल जो कुछ भी आया सब अपने साथ उस मलबे को बनाते हुए आगे गांव को, शहरों को, कस्बों को तबाह करती ये भटकोशी की धारा चली गई। ये भटकोशी आपदा का कारण बन गई।
18: भोटे कोशी नदी ही आगे चलकर त्रिशूली नदी बन जाती है। 26 अगस्त को भोटे कोशी के पानी ने बेतरावती को बहा ले जाने के बाद नुवाकोट में तबाही मचा दी।
19: नुवाकोट से आगे पहाड़ों के रास्ते अब मैं जहां आया हूं, मेरे पीछे बेतरावती शुरू होता है। बेतरावती सीमा है जो कि रुसवा को जोड़ती है। पहाड़ों से कोई रास्ता है ना ही आप कोई और रास्ते से जा सकते हैं। और इस कदर दलदल है मलबा, जहां मेरे पीछे जो है ये वो भटकोशी नदी है, वो त्रिशूली नदी जो इस सैलाब का कारण बढ़ गई। इस भटकोशी के चलते जो है मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इन रास्तों पर चलना इतना मुश्किल है। देखिए आगे हम कोशिश भी करें कि वहां तक जाके मैं आपको तस्वीरें दिखा सकूं, लेकिन ये सब कुछ पूरी तरह से दलदल में तब्दील है, तो बहुत आगे आप नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ जो इलाका है ये देखिए, मेरे पीछे भूमि का कटान है, भटकोशी जैसे आगे आई है कटान ले गई है। इसके पीछे एम्बैंकमेंट इलाके हैं जहां पर वो पानी का बड़ा रिजर्वायर है। ये जो सड़क है आगे जो है भद्रावती को, और फिर यही रास्ता आगे रुसवा की ओर जाता है। आज तक रुसवा के सबसे करीब पहुंचा है भद्रावती गांव के पास। आप सबसे पहले वो तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे एक पूरा गांव जहां पर हाइड्रो प्रोजेक्ट के पुल थे, पाइपलाइन की सप्लाई थी, वो सब कुछ इस समय जमी दोज मलबे में तब्दील है। यहां अब आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ना लोग दिखाई पड़ते हैं, खेत मकान दुकान सब कुछ बह चुके हैं। और ठीक मेरे पीछे वो भटकोशी नदी जो है वो बह रही है। इस इलाके में आना अभी बेहद मुश्किल है, जानलेवा है, जोखिम है। हम आपको तस्वीरें दिखाने लाए कि कैसे पूरा का पूरा यह सड़क मार्ग बह चुका है। आप सोचिए कि इसे दोबारा से रिस्टोर करने के लिए, वापस रुसवा को जोड़ने के लिए जो मशक्कत है वो बहुत ज्यादा होगी।
18: नेपाल में जो तबाही हुई उससे उबरने में समय लगेगा। अभी नेपाल सरकार की प्राथमिकता यह है कि लोगों का रेस्क्यू किया जाए, फिर कनेक्टिविटी और बाकी कार्यों को भी ठीक किया जाएगा। रसुआ नुवाकोटी बॉर्डर से आशुतोष मिश्रा, नेपाल आज तक।
17: आशुतोष ने एक इलाके की रिपोर्ट आपको दिखाई, लेकिन इसके ठीक बगल में जो दूसरा इलाका है वहां पर भी मंजर कुछ अलग नहीं है। वहां पर भी आप देखेंगे कि जितने भी बैंक हैं, रेस्टोरेंट हैं, घर हैं, वो सब मलबे के नीचे नजर आ रहे हैं। वहां के हालात देखिए मेरी इस रिपोर्ट में।
20: सबसे बुरी तरीके से प्रभावित जो जिला है नेपाल का, त्रासदी के बाद उस जिले में उसके एक रिहायशी इलाके में आए हैं। ये ऋषिका है। ऋषिका, पूरा नाम क्या हुआ आपका?
21: मेरा नाम पूरा नेम है ऋषिका कुमारी कलवार। मैं
20: किस क्लास में पढ़ती हूँ?
21: मैं अभी 12 में पढ़ती हूँ, काठमांडू।
20: अच्छा, तो यहाँ पर तुम्हारा घर था जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ है। ये क्या क्या है, पूरा एरिया हमको समझाओ कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये क्या है?
21: ये किसी विकास बैंक है जहाँ पे मतलब यहाँ के नजदीक बैंक पे यही था
0: ये बैंक था। हाँ। और ये ट्रक तो कैसे गिर गया?
21: ये ट्रक यहाँ पे जस्ट लेके पार्किंग की तरह था ना यहाँ पे तो ये पूरा धस गया। हम लोग का भी ट्रक धस गया है उधर ही है कभी वैसे ही हो गया। यहाँ पे एक और ट्रक था वो भी किसी के अंदर दबा हुआ है उधर वहाँ पे भी ट्रक है।
0: अच्छा ये पार्किंग था तो सबका जिसका भी ट्रक था वो यहाँ पे धस गया है
21: जी
0: सबका। और ऐसे पानी यहाँ पर चलने लगा है
21: जी यहाँ पे तो ये तो अभी बहुत ठीक है। दो दिन पहले तो ये जो खोला जो नदी है रोड है सब एक ही था। ये स्टडी तो यहाँ पे साइड साइड से हम लोग तो कल गए थे लोग ऊपर से ऊपर गए थे लोग यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था ये पूरा दलदल
0: ऊपर से होके गए थे
21: जी हम लोग ऊपर से होके गए थे लोग।
0: अच्छा पर आज से नीचे आ सकते हैं?
21: आज से नीचे आ सकते हैं बुलडोजर से कुछ
0: जो पूरा मलबा था उसको हटा दिया नहीं तो उसमें तो पैर जा रहा था अंदर बिल्कुल। पर नदी आप देख के डर लग रहा है इतना तेज उसमें?
21: डर तो लगेगा ही। अब डर क्यों अब स्ट्रांग बन के रहना है डरने से कुछ होने वाला तो अब है नहीं तो अब क्या ही कर सकते हैं लोग।
0: यहाँ पर क्या हुआ कैसे हुआ था उस टाइम?
21: उस टाइम मतलब मेरे पास मैं भी काठमांडू में थी मैं तो जस्ट परसों शाम को आई मुझे भी उतना खास आइडिया नहीं है लेकिन जब फोन नहीं लगा और कॉल आया मेरे पास कि पूरा इधर बड़ा पानी आ गया सुनामी की तरह हो गया है तो उसके बाद फोन पे फोन लगा रही थी मेरे पेरेंट्स को फोन रिसीव नहीं हो रहा था बट मतलब किसी के साथ इन्फॉर्मेशन मिला कि सब कुछ ठीक है लोग। और मेरे पेरेंट्स को 10 देर पहले इन्फॉर्म नहीं हुआ कि पानी आया है बस वो लोग बस गए वही मेरे लिए बहुत काफी है।
0: ऐसे पॉइंट करके दिखाओ तो उसको समझ में आएगा। पॉइंट करके ऐसे करके दिखाओ
21: वो तो जंगला खुला हुआ है ना जो हाँ। हल्का इधर हुआ है जो ग्रीन कलर का हल्का दिखाई दे रहा है।
0: अच्छा, अच्छा, जो पूरी तरीके से नीचे है सिर्फ एक मंजिल दिख रहा है जिसका ऊपर
21: जी जी जो दस्ता है ना ऊपर का उस साइड में है ना वही मेरा घर है।
0: कितनी देर पहले मम्मी पापा निकल पाए थे?
21: मम्मी पापा बोल रहे थे अगर हम लोग ऐसे मुड़ के पीछे देखते लोग तो शायद पता नहीं क्या होगा।
0: मतलब मुड़ के पीछे देखने का भी टाइम नहीं था, ना किसी का काम बचा ना घर बचा
21: कुछ भी नहीं बचा बस आदमी बच गए वही हम लोग के लिए बहुत काफी। हम लोग मैं खुशी हूँ कि मेरे पेरेंट्स बच गए बस वही काफी है। पैसा तो धन बाद में भी हो सकता है ना पहले आदमी बच गए वही काफी है।
0: बहुत अच्छी बात बोली है तुमने। थैंक यू ऋषिका अपना गांव हमें अपना इलाका दिखाने के लिए। तो अब इसके आगे जो है ना ये हौसले की कहानी हो जाती है क्योंकि जब सब कुछ तहस तहस हो चुका होता है जिसके आगे कुछ बचता नहीं है फिर यही सोच यही हौसला काम आता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह नवाकोटा आज तक।
2: मलबे को हटाते हुए उसको काटते हुए बुलडोजर्स का इस्तेमाल करके जेसीबी के जरिए किसी तरीके से जो नेपाली सेना नेपाल पुलिस के जो जवान हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। ढूंगे बाजार का जो एरिया है वहाँ पर आज सड़क का एक्सेस संभव हो पाया क्या सामने आया इस रिपोर्ट में देखिए।
0: यहाँ क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं 26 अगस्त के बाद से?
22: बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब यहाँ पे जो है सड़क का हाइट बढ़ गया है खोला इधर थोड़ा सा उधर से इधर साइड में आ गया है पहले से।
0: मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि ये बैंक और ये जो
22: डेवलपमेंट विकास बैंक
0: है ये सब नीचे है और सड़क ऊपर है ऐसा था या नहीं
22: लग रहा है? नहीं पहले नहीं था लेकिन अभी लग रहा है थोड़ा सा नीचे तो था लेकिन कम था।
0: अच्छा तो अब और नदी इसी तरीके से?
22: नदी तो बहुत परिवर्तन हुआ है पहले।
0: क्या परिवर्तन हुआ है?
22: इसका चौड़ाई बढ़ गया है पहले से।
0: हाँ।
22: ये पूरा खेत था इसके पछाड़ी पूरे खेत में
0: ये खेत था?
22: खेत था इसके पछाड़ी।
0: अच्छा
22: इस साइड में पूरे घर था यहाँ पे हर आदमी अपना बिजनेस व्यवसाय करता था लोग।
0: आपकी कौन मिसिंग है?
23: मेरी दीदी मिसिंग है और भांजी भी तीन भांजी एक हाँ। दीदी और एक नतनी मिसिंग है।
0: कहाँ रह रहे थे?
23: वो लोग रसुआ और नुआकोट के बॉर्डर पे रहते थे। क्या कहता हूँ मैं
0: रसुआ नुआकोट के बॉर्डर पे तो आप हर उस जगह आके ढूंढ रहे हैं कि
23: हर जगह जाने के वहाँ कोई साधन ही नहीं है
0: हाँ।
23: और वहाँ तक मिसिंग ही है और जा नहीं पा रहे हैं।
0: फोटो एक बार दिखा दीजिए कैमरे पे।
23: ये भांजी हुई ये भांजी की लड़की हुई।
0: कितने साल की है
23: ये बच्ची? 2 साल की है।
0: 2 साल की
23: जी। ये दीदी हुई
0: हाँ।
23: ये भांजी है ये भी भांजी है।
0: तो ये मिल नहीं पा रहे हैं?
23: नहीं मिल पा रहे हैं।
0: आप हर जगह जाके बस ढूंढ रहे हैं?
23: ढूंढ रहे हैं।
1: उस टाइम में सब खबर आ गया, भागो भागो बोल के सब खाना खा के ये रास्ता हो गया।
20: आंखों के सामने आपने आते हुए देखा?
1: हाँ।
20: कैसा डरावना था?
1: बहुत एकदम डरावना था, बहुत।
20: नुकसान कितना हो गया आपको?
1: नुकसान था उधर वो 15 रूम था गेस्ट रूम होटल का, अटैच बाथरूम रूम, एसी रूम, हॉल था, डाइनिंग किचन। नुकसान तो कितना आप सरकार ने उसको
20: जान किसी की नहीं गई। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का
5: सब कैशलेस हो गया
4: है।
6: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी हिंट एक हिंट तो देते
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
2: देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है।
3: हालांकि मुख्य सड़क आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास अमित वधवार के साथ में आशुतोष मिश्रा आज तक।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: ऐसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे। जब आगे वो त्रासदी आई, तबाही आई, बाढ़ मलबे के साथ पानी आया, तो ईश्वर को इस बात का शुक्र तो अदा किया कि अपनी जान बची, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को तिनका तिनका होते भी देखा।
3: नेपाल की जल त्रासदी किस तीव्रता की थी, इसका अनुमान जब तक लगाया जा रहा होता है तब तक उससे भी विनाशकारी तस्वीरें आ जाती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि कितना विनाश हुआ है, किस स्तर का हुआ है, उसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह, आशुतोष मिश्रा, पंकज दास इस समय नेपाल में मौजूद हैं। संवाददाता आशुतोष मिश्रा जब नुआकोटी के ढुंगे बाजार पहुंचे तो वहां के हालात देखकर हैरान रह गए कि तबाही इस स्तर की भी हो सकती है।
4: इसके आगे जाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, ये लोगों के घर थे, मकान थे, सब कुछ कैसे पूरी तरह बर्बाद हो गया है। एक ऐसी आपदा, और मानो जैसे कयामत बरसी हो शहर पर, सब कुछ तबाह कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5 मंजिल, नीचे की जो 2 मंजिल है वो पूरी तरह मलबे में जा चुकी है, और यहीं से ऊंचाई से सोचिए पूरा मलबा आया हुआ होगा। लोग जो घर में होंगे, अगर उन्होंने भागने की भी कोशिश की होगी, वो कैसे भागे होंगे? ऊपरी मंजिल के लोग नीचे कैसे आए होंगे? और क्या इस मलबे में अभी, क्योंकि यहां से लगभग 30 से ज्यादा लोगों को यहां से बरामद किए गए थे शव, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया था, यहां से एयरलिफ्ट किया गया था, लेकिन न जाने कितने लोग, क्योंकि 10,000 की आबादी वाला शहर, न जाने कितने लोग इस शहर के मलबे में अभी भी होंगे।
3: नुआकोट का प्रमुख बाजार था, लेकिन अब इन तस्वीरों को देखिए, बाजार का कहीं नामो निशान नहीं है। ढुंगे के इस बाजार में कई होटल रेस्टोरेंट थे जो अब मलबे में सिमट चुके हैं। सामने एक पेट्रोल पंप भी था, लेकिन अब कुछ दिखाई नहीं देता।
4: ढुंगे बाजार के जिन इलाकों में अब मैं आया हूँ, थोड़े थोड़े करके दिखाई दे रहे हैं। ये जो इमारत है दरअसल निर्माणाधीन थी। अब सोचिए, कोई अपना आशियाना बना रहा था, परिवार के लिए घर बना रहा था, उसके पहले ही वो घर तबाह हो गया, लोग कहाँ गए कोई नहीं जानता। यहाँ पर कई मंजिला थी, इसमें कुछ कमर्शियल होटल चलते थे। मैं कोशिश करता हूँ क्या इस इलाके तक जाया जा सकता है, लेकिन नहीं जाया जा सकते। देखिए, जूते डालते ही ना जूते यहाँ पर धंस रहे हैं, और इसी के साथ साथ ये जो मलबा है ये थोड़ा ज्यादा रिस्की है, ये लूज मलबा है। हाँ, ये देखिए पूरा दलदल है, इसके ऊपर जाया नहीं जा सकता। दिखने में लग रहा होगा कि मिट्टी का जमावड़ा है, लेकिन जैसे जैसे पानी नमी इसमें जा रही है, ये और पूरा दलदल बनता जा रहा है। आप सोचिए कि अगर इन जगहों से किसी को जाना भी हो, संभावना भी हो, अब आप समझिए कि जहां पर रेस्क्यू बचाव कार्य चल रहे हैं, वहां इस दलदल से लोगों को निकालना कितना मुश्किल होगा, खासकर अगर कोई इमारतों से SOS कॉल भी देता। और इसीलिए हेलीकॉप्टर के जरिए वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, वहां से विंचिंग किए जाते हैं, उन्हें नीचे से जो है लिफ्ट कर लिया जाता है। एयरलिफ्ट एकमात्र ऑप्शन बचा है, क्योंकि इस दलदल में आप चॉपर जो है लैंड नहीं कर सकते। इन इलाकों में देखिए, यहाँ से निकलना जो है ना, ये पूरा कीचड़ है, तो बहुत, अब आप समझिए कि राहत बचाव कार्य यहाँ पर कितना मुश्किल हो रहा होगा।
3: नुआकोटी के ढूंगे बाजार में अब कोई नहीं बचा है। यहाँ का बाजार, यहाँ का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सब खंडहर बन चुके हैं, एक ऐसा खंडहर जो मलबे से भरा हुआ है।
4: तो ढूंगे बाजार की सीमा यहाँ से मेरे लिए खत्म हो रही है, क्योंकि बाजार तो आगे तक है, लेकिन इसके आगे मलबे ने रास्ता रोक रखा है, और वो इतना खतरनाक है कि जोखिम भरा है। लेकिन यहाँ आकर के त्रासदी की जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ, वो बता रही हैं कि आखिर यहाँ जो लोग होंगे वो कितने डरे होंगे, कितने सहमे होंगे। समय था ही नहीं भागने के लिए, और जब तक वो भाग के ऊपर पहुंचते तब तक न जाने कितनी इसकी चपेट में आ गए थे। कहीं पेट्रोल पंप दब चुका है, कहीं कई मंजिला जो इमारत है वो खंडहर बन चुकी है। न जाने कितने लोग थे जो भाग पाए होंगे, न जाने कितने लोग थे जो मलबे में दफन होंगे। कई सारे लोग, निर्दोष लोग, जिन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला होगा। नेपाल की इस तबाही सब कुछ बर्बाद कर दिया है।
3: नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर आसमान पर बनराते रहते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कोई फंसा तो नहीं।

0: वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गया।
1: ये वो त्रिशूली के पास का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, दरअसल पाइपलाइन आपको दिखाई दे रही है, ये भी मलबे में पूरी तरह बह गया, क्योंकि आगे जो त्रिशूली की धारा आप देख रहे हैं ये इतनी खतरनाक थी कि इसके साथ ये पानी का स्तर जो है ये इतना ऊपर गया 20 से 25 फीट और उसके बाद इसने पूरे हाइड्रो प्रोजेक्ट को अपने साथ बहा ले गए। दरअसल पुल की कनेक्टिविटी इस इमारत के साथ लगती थी लेकिन ये सब कुछ बह गया। और अब बड़ा खतरा इस बात का है कि जिस तरह से चीन ने चेतावनी दी है, उस चेतावनी के बाद दरअसल इसी त्रिशूली में, नारायणी में, भटकोशी में जिसका स्तर बढ़ा था वो पानी फिर बढ़ सकता है। और ऐसे में हालांकि इन इलाके की तबाही अब इतनी हो चुकी है कि और नुकसान क्या ही होगा, लोग बचे नहीं है, जो बचे हैं वो पहाड़ी इलाकों पर चले गए हैं, बाकी की चेतावनी जारी की गई है। लेकिन ये तस्वीरें देख करके आपको अंदाजा लग सकता है कि जो नदी आज इतने नीचे से बह रही है, जिसका बहाव लगभग इतना ही है, वो भी तब जब बरसात हो रही है, वो जब जमीन से 60 से 70 फीट की ऊंचाई पर ले गई होगी तो अपने साथ कितनी तीव्रता और ताकत लेकर के आई कि उन्हें इन बड़ी बड़ी इमारतों को, पुलों को, हाइड्रो प्रोजेक्ट को सब कुछ नष्ट कर दिया।
0: ढुंगे बाजार से नेपाली सेना ने कई लोगों के शव बरामद किए हैं। जो लोग किसी तरह से यहाँ से बच निकले थे अब वो अपने घरों को देखने के लिए लौटे हैं। लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि नेपाली पुलिस लोगों को आगे जाने से रोक रही है।
1: आपका घर कहाँ पर है? अच्छा, ऊपर की तरफ।
2: थैंक यू।
1: आप, अच्छा, आप थे उस समय घर पे जब ये सब हो रहा था?
2: पूरा डूब जाए।
1: आप थे यहाँ पे जब देखा था आपने सब कुछ?
2: हाँ, देखा था। ऐसे से आया कि ऐसा उपहार के, ऐसा मार के, सब मार के चल गया। उसके लिए हम बाद में इधर भी आ सकता है, समझ गया। उसके बाद हम ऊपर गए।
1: ढूंगे बाजार जैसे ही खत्म होता है उसके आगे त्रिशूली बाजार शुरू होता है। और अब ये जो पुलिस वाले हैं वो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि लोग आगे ना जाएं। अभी देखिए, महिलाएं, बच्चे हैं जिनका अपना जरूरत का सामान है, ये लोग। आप कहाँ जा रही हैं? आपका घर है आगे? आप आगे जा रहे हैं? देखिए, कई सारे लोग हैं जो अपने घरों की ओर या उन इलाकों की ओर जाना चाहते हैं देखने, लेकिन ये कितना जोखिम भरा है। देखिए, देख रहे हैं पूरा रास्ता जो है कीचड़ में दबा हुआ है। इसके आगे जाने की पुलिस भी अनुमति नहीं दे रही, इसलिए जो स्थानीय प्रहरी हैं वो भी पहुंचे हैं। लोग अब आए हैं देखने के लिए कि वो इन इलाकों में आगे न जाए।
0: आशुतोष मिश्रा, नुआकोटी, नेपाल, आज तक।
3: नेपाल की इस अप्रत्याशित तबाही की जो तस्वीरें हैं वो वाकई रूह कपा देने वाली हैं। हमने जमीन से वो तस्वीरें दिखाई आपको कि पहले क्या था, अब क्या है, लेकिन सैटेलाइट के जरिए इन्हीं तस्वीरों को देखकर समझिए कि क्या परिवर्तन, क्या फर्क आया है।
4: पड़ोसी देश नेपाल इस सदी की सबसे बड़ी तबाही से गुजरा है। 26 अगस्त को आई प्रलय ने नेपाल के त्रासदी प्रभावित इलाकों का भूगोल बदल दिया है। जहां बाजार था वहां मलबा है, जहां आशियाने थे वहां पत्थरों का ढेर है। नेपाल के फ्लैश फ्लड ने तिब्बत बॉर्डर से लेकर रसुवा, त्रिशूली, नुवाकोट तक की ज्योग्राफी बदल दी है। सबसे पहले तिब्बत नेपाल सीमा पर बने इस चीनी इमिग्रेशन चेक पोस्ट को देखिए। जब यहाँ पानी आया तो इस चेक पॉइंट पर मौजूद लोग भागने लगे, लेकिन भाग कर गए कहाँ? अब अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ जो लोग मौजूद रहे होंगे उनका क्या हुआ होगा। आज की स्थिति यह है कि इस चीनी इमिग्रेशन चेक पोस्ट की इमारत का कोई अस्तित्व नहीं है। सैटेलाइट और हेलीकॉप्टर तस्वीरों में कहीं भी इस इमारत का नामो निशान तक नहीं है। रसुवा, थाडिंग, नुआकोट की बस्तियों की हालत देखिए। पहले नदी की पतली सी धारा दिख रही थी, लेकिन फ्लैश फ्लड के बाद त्रिशूली नदी का पाठ दोगुने से अधिक दिख रहा है।
1: यहाँ से पता चलता है कि शहर में बचा कुछ भी नहीं है। ज्यादातर जो घर हैं, तो आप देखिए सड़क का एक हिस्सा है ना, यहाँ पर सारी दुकानें, ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है, और इस तरफ सारी रिहायश इलाके थी। तो जो दुकान मकान वो तो डूबे ही हैं, मकान जो है इस तरफ उनको भी नुकसान हुआ है। अब देखिए कैसे वो दंपत्ति गया हुआ है जेसीबी के सहारे के किस तरह अपने घर तक पहुंच जाए, बचा खुचा सामान लेकर के अगर वो आ जाए तो कम से कम जीविका तो चलती रहे, जिंदगी चलती रहे। लेकिन यहाँ जिंदगी पर ब्रेक नहीं बल्कि पूरे शहर की रफ्तार पर ही ब्रेक इस सैलाब ने लगाया है। सारे मकान जो है यहाँ पर ध्वस्त हो चुके हैं। जो पहली दूसरी मंजिल है वो लगभग मलबे में तब्दील हो चुकी है।
4: त्रिशूली नदी किनारे बसे इन शहरों में किस तरह की तबाही हुई है उसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि कंक्रीट के बड़े पुल भी बह गए, हाईवे बह गया, बाजारों, घरों तक

0: मलबा आ गया।
1: तीस मोटरेबल ब्रिज, 45 सस्पेंशन ब्रिज और लगभग 40 किलोमीटर सड़क बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस सैलाब से, इस मलबे से। यहां पर ऐसी ही एक ब्रिज का हिस्सा आप देख सकते हैं जिस पर पेड़ पूरी तरीके से टूटकर गिर गए हैं, उनका कुछ हिस्सा काटकर हटाया गया है, लेकिन मलबा पूरी तरीके से कैसे इस ब्रिज को लेते हुए धस गया है। ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया। आवेग भी कैसा, ऐसा जिसके सामने कंक्रीट का एक ब्रिज नहीं टिक पाया। सोचिए इंसानों की क्या ही बिसात। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, नेपाल आज तक। नेपाल की मदद करने के लिए तमाम देश खड़े हुए, भारत सबसे पहले खड़ा हुआ क्योंकि पड़ोसी देश हैं हम और सबसे पहला कर्तव्य देश का बन रहा था। तो पहले रिलीफ मटेरियल भेजे गए, भारत की तरफ से ये कहा गया कि आप अगर हमारी एक्सपर्टीज चाहते हैं तो वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। नेपाल की तरफ से कहा गया कि वो टनल रेस्क्यू के जो एक्सपर्ट्स हैं अगर उन्हें भेजा जा सके। तो बड़ी खबर यही आ रही है कि भारत की तरफ से जो टनल रेस्क्यू के एक्सपर्ट्स हैं उनको नेपाल के लिए रवाना कर दिया गया है। जैसे ही नेपाल की तरफ से कहा गया वैसे ही एयरफोर्स का जो विमान था वो रेडी था, उनको लेकर वो वहां आगे निकला है। टीम यहां पर पहुंची है, टीम टनल रेस्क्यू में एक्सपर्ट है। इसके अलावा जो बेली ब्रिजेस हैं, क्योंकि यहां पर ब्रिजेस का बहुत नुकसान हुआ है, पुलों का बहुत नुकसान हुआ है, चाहे वो मोटरेबल जो ब्रिजेस हैं वो हो या सस्पेंशन ब्रिजेस, पूरे के पूरे धुल गए हैं। तो बेली ब्रिजेस को बनाने में नेपाल ने मदद मांगी है जो भारत उसे देने वाला है।
2: Oh my God!

0: काठमांडू के रनवे पर लैंड करता भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा मालवाहक विमान इस बात का प्रमाण है कि जब विपदा आती है तो भारत फर्स्ट रिस्पोंडेंट बनकर आगे आता है। पड़ोसी देश नेपाल सदी की सबसे बड़ी त्रासदी की चपेट में है, ऐसे में भारत नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। भारतीय वायुसेना के विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से उड़ते हैं और नेपाल के काठमांडू में जरूरी सामग्री पहुंचाकर वापस आ जाते हैं और फिर अगली खेप की तैयारी में जुट जाते हैं। नेपाल में तबाही इस कदर हुई है कि बाजार, गांव, शहर सब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। जरूरी सामान का संकट है, आपातकालीन दवाएं, मूलभूत सुविधाओं का अभाव हो गया है। ऐसे में भारत एक के बाद एक खेप भेज रहा है ताकि नेपाल के आपदा पीड़ितों की सहायता हो सके। तबाही की इन तस्वीरों के बीच इंसान पूरी तरह से लाचार नजर आ रहा है। बस कोशिश जारी है जिंदगियों को बचाने की। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दुनिया के कई देशों के नागरिक नेपाल में लापता हैं। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन पूरी ताकत से चल रहा है। भारत समेत कई देशों ने तलाशी अभियान में सहायता की बात कही, लेकिन नेपाल सरकार ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि साल 2015 के भूकंप में विदेशी मदद से रेस्क्यू करने का अनुभव ठीक नहीं था, इसलिए तलाशी अभियान में विदेशी मदद नहीं चाहिए। नेपाल सरकार ने साफ किया है कि तलाशी में मदद नहीं चाहिए, लेकिन बेली पुल बनाने और सुरंग में रेस्क्यू के लिए भारत से मदद मांगी गई है।
1: लोग चोरी हमसे रखता है, वो हम कर रहे हैं। मेरे काम भी एक नागरिक को सुरक्षित करने की और वहाँ पर जो भी हो सकता है नेपाल पूरी अब जो सहायता प्रदान कर सकते हैं उसके अनुभव की तरफ से वो भी कर रहे हैं।
0: नेपाल ने सहायता मांगी तो भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर हिंडन से फिर उड़ा और एक्सपर्ट टीम को काठमांडू पहुंचा दिया। इसमें वो टीम शामिल है जो सुरंग में रेस्क्यू करने में माहिर है। ये टीम अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। इसके अलावा 11 सदस्यीय मेडिकल टीम भी भारत ने नेपाल भेजी है।
2: आखिरकार नेपाल सरकार ने फैसला लिया है कि वो राहत बचाव कार्य में दुनिया भर की दक्ष जो देश हैं, टीम हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में उनकी मदद लेगी। हालांकि इसके पहले नेपाल सेना ने कहा कि 2015 में हमने सबक लिया था कि कोऑर्डिनेशन की कमी थी, बहुत सारी एजेंसियां थी, लेकिन अब जब आंतरिक मंत्रियों की बैठक हुई इसमें फैसला लिया गया कि उन देशों को जरूर एजेंसियों को यहां आने देना चाहिए जिनकी विशेषज्ञता है। ऐसे में भारत, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे वो देश हैं जिनके पास एनडीआरएफ, जैसे भारत के पास एनडीआरएफ है उसकी अपनी दक्षता है। इस समय नेपाल को इन विशेषज्ञों की जरूरत इसलिए है कि जिन टनल्स के अंदर जहां पर हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, जहां नेपाल की सेना ने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, इसके अलावा डीएनए हो, फॉरेंसिक हो, बॉडी की आइडेंटिफिकेशन हो, इन सब प्रक्रियाओं के लिए उसे विशेषज्ञों की जरूरत पड़ेगी।
0: नेपाल के रसुआ नुआकोटी में हर तरफ तबाही का मंजर है। ऐसे मुश्किल वक्त में भारत लगातार राहत और बचाव के लिए मदद भेज रहा है।
3: भारत से किस तरह की और किस किस लेवल पे असिस्टेंस की उम्मीद नेपाली कम्युनिटी इस वक्त लगातार बैठी है?
4: हम भारत सरकार के प्रति, विशेष करके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति भी आभारी है कि उन्होंने बहुत ही फास्ट जो है रिएक्ट किया है। ये हमारे साथ जो है संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए ही नहीं, हम लोगों के साथ जो है सहयोग के लिए भी, हाथ बढ़ाने के लिए भी भारत सरकार ने बहुत ही त्वरित किस्म से, बहुत ही फास्ट किस्म से एक्शन लिया है।
0: नेपाल की इस त्रासदी के बीच विदेशों में बसे नेपाली और भारतीय मूल के लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं ने नेपाल के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत राशि जुटाई। दक्षिण पूर्वी लंदन के प्लम स्टेट स्थित एक मंदिर में रक्षाबंधन कार्यक्रम को नेपाल के बाद पीड़ितों और बचाव अभियान के लिए फंड जुटाने से जोड़ा गया। 11 नेपाल की त्रासदी को लेकर मदद की मुहिम देश की सीमाओं से बाहर भी पहुंच चुकी है। आज तक ब्यूरो।
5: सदन नेपाल में आई लेकिन उससे प्रभावित दुनिया के कई देशों के लोग हुए, बड़ी संख्या में भारतीय इसमें प्रभावित हुए हैं, अभी भी लापता हैं जिनकी तलाश जारी है और अपनों की तलाश में बहुत सारे लोग आर्मी के उस अस्थायी कैंप के बाहर मौजूद हैं जहां पर वो सूची लगाई जाती है जिसमें अपनों के नाम को लोग ढूंढते हैं या फिर किसी भी लैंड किए हुए हेलीकॉप्टर्स में उनकी निगाहें तलाशती हैं कि क्या कोई अपना रेस्क्यू होकर लौट कर वापस आया है।

0: दिल में डर और किसी अनहोनी की आशंका के बीच आंखों में आंसू लिए ये लोग अपनों की तलाश में लगे हैं। इसी उम्मीद के साथ इधर उधर भटक रहे हैं कि किसी तरह अपनों का पता लग सके, उनके सलामत होने की खबर मिले। किसी के हाथों में तस्वीर है, कोई मोबाइल पर तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछताछ कर रहा है, कोई अस्पताल में लगी तस्वीरों के बीच अपनों को तलाश रहा है। नेपाल में आई सैलाबी त्रासदी ने कई परिवारों को दर्द में डुबो दिया है। रेस्क्यू सेंटर से लेकर अस्पताल तक लोग भटक रहे हैं, अपनों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब कोई खबर नहीं मिल रही, कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो आंखें भर आ रही हैं।
1: 8 बजे बात हुई थी उससे, और उसके बाद कुछ भी पता नहीं है। किसी से हम लोग को कहीं किसी से कोई
0: किसी का बेटा लापता, किसी का पति, किसी की बहन, तो किसी का भाई, दिल में आस लेकर उनकी तलाश जारी है।
2: भाई के पता नहीं है, किधर है मालूम नहीं है, हम बहुत दुखी है।
0: नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद से लापता अपने बेटे की तलाश के लिए ये माँ दर दर के चक्कर काट रही है। पहले कई गांव में बच्चों को ढूंढा, फिर रेस्क्यू सेंटर गई, अस्पताल पहुंची, लेकिन बेटे की कोई खबर नहीं लगी।
3: कॉल किया, कॉल नहीं लगा, इधर गांव में भी ढूंढ रहे नहीं मिला, अभी हम लोग भी हॉस्पिटल इधर ढूंढ रहे नहीं मिला।
0: लापता लोगों के परिवार वाले बेहद परेशान हैं। हर दिन बीतने के साथ कई आशंकाएं दिल को भारी कर रही हैं। स्थिति ऐसी है कि मांग हो रही है कि सरकार सुविधा दे, तो खुद रेस्क्यू में शामिल होने के लिए तैयार हैं।
4: अगर कोई सुविधा मिले तो मैं खुद जाना चाहती हूँ, सुविधा मिले तो
5: ढूंढने के लिए।
0: नेपाल की त्रासदी में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिससे अपनों को खोने वालों के मन में खौफ बढ़ता जा रहा है। अस्पताल के बाहर बरामद शवों की तस्वीर लगाई गई है, लोग दिल पर पत्थर रखकर इन तस्वीरों को देख रहे हैं।
6: ये काठमांडू का वो जगह है जहां से बाहर से डेड बॉडी लाके रखी गई है। आप ये पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि उन डेड बॉडी की यह तस्वीर रखी गई है, ताकि इनके जो अपने लोग हैं, इनके रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पे आके इनकी पहचान कर सके और यहाँ से डेड बॉडी ले जा सके। इन तस्वीरों को देखकर आप देख सकते हैं कितनी भयावह तस्वीरें हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, विक्षिप्त कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये लोग जब इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जा रहे हैं।
0: आपदा में कई लोग घायल हुए हैं, कई को गंभीर चोटें भी आई हैं, कई घायलों का इलाज काठमांडू के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। नेपाल की कुदरत की तबाही ने कई परिवारों को जीवन भर का जख्म दिया है, कई लोग अब भी लापता हैं, परिवार वाले उनकी तलाश में भटक रहे हैं। नेपाल से श्वेता सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा और पंकज दास आज तक।
7: हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही, लेकिन नेपाल की इस त्रासदी से जुड़े हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
11: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
12: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

झील के फटने का खतरा। ओवरफ्लो से नेपाल की भोटेकोशी नदी में लगातार बढ़ रहा है पानी। हाई अलर्ट पर नेपाल। मौत का आंकड़ा 626 के पार। 2400 से ज्यादा लापता। खड़गे के बहाने राहुल गांधी का दलित दाव। मंच के शुद्धिकरण पर घेरा। कहा संविधान और बीजेपी संघ की विचारधारा की लड़ाई। उत्तराखंड के मंत्री बोले जांच में बीजेपी का कोई नहीं मिला। लखनऊ के जेपी इंटरनेशनल सेंटर पर आर पार सीएम योगी बोले सैफई सिंडिकेट ने 200 करोड़ का काम 800 करोड़ में भी नहीं किया पूरा। अखिलेश यादव ने लगाया था बेचने का आरोप। उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान दौरे पर रवाना पीएम मोदी। ताशकंद में राष्ट्रपति मिर्जियोयेव से होगी वार्ता। बिश्केक में एससीओ समिट। पुतिन शी जिनपिंग समेत कई नेताओं से मुलाकात संभव। और मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मोहन भागवत के यूनिवर्सल ऑननेस कार्यक्रम के लिए लगे बैनर पोस्टर। इस्कॉन मंदिर के संबोधन में आरएसएस प्रमुख ने कहा दुनिया में अभी बहुत सारे टकराव और विरोधाभास।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दोपहर 2 बजे के बुलेटिन में बात चार बड़ी खबरों की करेंगे। पहली जो खबर होगी वो नेपाल से होगी। नेपाल में भीषण बाढ़ से बची तबाही की हम बात करेंगे, जहां तक 626 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच लगातार त्रासदी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो बेहद डराने वाली है। इसके साथ ही हम बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी करेंगे। हल्द्वानी में रैली हुई थी, वहां उसके बाद शुद्धिकरण हवन हुआ था, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी आए, बीजेपी को घेरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। अब इसके बाद बीजेपी की ओर से भी जवाबी हमला शुरू हो गया है। बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की भी करेंगे। अमेरिकी दौरे पर है वो, न्यूयॉर्क के एक कार्यक्रम में आज मोहन भागवत का संबोधन है, जिसे लेकर सियासत गरमाई हुई है। साथ ही बुलेटिन में हम आपको बताएंगे, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर क्या बड़ा हमला बोला है। लेकिन सबसे पहले बात नेपाल की करते हैं। नेपाल में आई भीषण बाढ़ से बड़ी तबाही मची है। नेपाल में आई बाढ़ से अब तक 626 लोगों की जान जा चुकी है। 2400 से ज्यादा अभी भी लापता है, कुछ पता नहीं चला इनका। इस बीच नेपाल में एक बार फिर दहशत के काले बादल मंडरा रहे हैं। लैंडस्लाइड से बनी एक नई झील के टूटने का खतरा बना हुआ है, जिसे लेकर चीन ने नेपाल को चेतावनी भी दी है और कल से सावधानी बरती जा रही है। झील में 25 लाख घन मीटर पानी इकट्ठा हो चुका है और पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। कल से ये कहा जा रहा है कि सावधानी बरतें। अगर झील टूटी तो बोटे, कावशी और त्रिशूली नदी के जलस्तर में बहुत तेजी से इजाफा हो जाएगा। एक बार फिर यहां कुदरत का विनाश दिख सकता है। इस खतरे के बीच नेपाल में एक बार फिर बारिश का दौर भी शुरू हुआ। रुक रुक के बारिश हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत परेशानी आ रही है। बहुत से गांव, रेस्क्यू सेंटर और अस्पतालों में लोग अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। कई लोगों को अपनों की कोई खबर नहीं मिल रही है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है। लेकिन उनके अंदर एक उम्मीद की किरण जग रही है कि कोई ना कोई अपना होगा जो यहां बचेगा, जिसकी कोई जानकारी मिलेगी। तो देखिए, एक अस्थायी झील का खतरा बढ़ गया और कभी भी अगर वो फूटती है तो पानी का बहाव बहुत तेजी के साथ नीचे आएगा, और इसीलिए चीन की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन बहुत सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब तक 626 लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा कितना आगे तक जाएगा किसी को खबर नहीं है। 2000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता, और बहुत से तो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अभी तक प्रशासन को जानकारी नहीं है। इस लिस्ट में और भी नाम जुड़ सकते हैं। बारिश रुक रुक के हो रही है, तो एक तो मिट्टी है, मलबा है, और इस वजह से बारिश होती है तो कीचड़ और ज्यादा हो जाती है, पैर उसमें धंसने लगते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में और ज्यादा दिक्कत आ रही है। इसके साथ ही अपनों की तलाश जारी है। जगह जगह जो हेल्प सेंटर बनाए गए हैं वहां पर नोटिस चस्प किए जाते हैं, वहां पर नामों की लिस्ट होती है, और नामों में लोग बाग अपनों को तलाशते हैं। कोई दिल्ली से पहुंचा है तो कहीं कोई दूसरे देश से पहुंचा है अपने को ढूंढने के लिए। नेपाल के नुवाकोट जिले में त्रिशूली नदी ने ऐसा कहर बरपाया कि अब हर ओर मलबा ही मलबा है, हर ओर बर्बादी की तस्वीरें हैं, और इस सबके बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
1: ये वो जिला है जो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ नेपाल में आई उस त्रासदी से। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मलबा हट रहा है, तो त्रासदी का पैमाना दिख रहा है। इस ऊंचाई से आप वो पूरी तस्वीर देखिए। त्रिशूली नदी अपने तटों को तोड़कर दोनों तरफ ज्यादा चौड़ाई में बह रही है। वो तस्वीरें जहां पर आपको लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, वहां तक सड़क जाती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे शायद एक पगडंडी रही हो और बाकी केवल मलबा। पर ऐसा नहीं है, यहां पर एक बड़ी सी पार्किंग हुआ करती थी। ये बैंक, एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स, और आगे आप होटल्स देख सकते हैं क्योंकि यहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में आया करते थे। अब जो इकलौता पर्यटन यहां पर है वो उन लोगों का है जो आकर देखना चाहते हैं कि कैसी विनाश लीला रही होगी। जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे। जब आगे वो त्रासदी आई, तबाही आई, बाढ़ मलबे के साथ पानी आया, तो ईश्वर को इस बात का शुक्र तो अदा किया कि अपनी जान बची, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को तिनका तिनका होते भी देखा।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ से नुवाकोट जिले में भारी तबाही मची। वहां के लोग बता रहे हैं कि कैसे वहां सैलाब बर्बादी लेकर आया। नुवाकोट के जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच लोगों के दिलों में अब भी डर है, दहशत है।
1: नेपाल की मदद करने के लिए तमाम देश खड़े हुए, भारत सबसे पहले खड़ा हुआ क्योंकि पड़ोसी देश हैं हम और सबसे पहला कर्तव्य देश का बन रहा था। तो पहले रिलीफ मटेरियल भेजे गए, भारत की तरफ से ये कहा गया कि आप अगर हमारी एक्सपर्टीज चाहते हैं तो वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। नेपाल की तरफ से कहा गया कि वो टनल रेस्क्यू के जो एक्सपर्ट्स हैं अगर उन्हें भेजा जा सके। तो बड़ी खबर यही आ रही है कि भारत की तरफ से जो टनल रेस्क्यू के एक्सपर्ट्स हैं उनको नेपाल के लिए रवाना कर दिया गया है। जैसे ही नेपाल की तरफ से कहा गया वैसे ही एयरफोर्स का जो विमान था वो रेडी था, उनको लेकर वो वहां आगे निकला है। टीम यहां पर पहुंची है, टीम टनल रेस्क्यू में एक्सपर्ट है। इसके अलावा जो बेली ब्रिजेस हैं, क्योंकि यहां पर ब्रिजेस का बहुत नुकसान हुआ है, पुलों का बहुत नुकसान हुआ है, चाहे वो मोटरेबल जो ब्रिजेस हैं वो हो या सस्पेंशन ब्रिजेस, पूरे के पूरे धुल गए हैं। तो बेली ब्रिजेस को बनाने में नेपाल ने मदद मांगी है जो भारत उसे देने वाला है।
0: और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, नेपाल में सुरंग रेस्क्यू के लिए भारत ने एक्सपर्ट टीम भेजी और ये टीम नेपाल पहुंच चुकी है। अच्छी खबर ये है कि वो नेपाल पहुंच चुकी है, टेक्निकल इक्विपमेंट से लैस ये रेस्क्यू टीम नेपाल में मौजूद है। रेस्क्यू का आज चौथा दिन है। देखिए 26 तारीख को ये आपदा आई थी, उसके बाद आज 27, 28, 29 चौथा दिन है। नेपाल ने भारत से सहायता मांगी और उसके तुरंत बाद भारतीय वायुसेना के विमान से हमारी एक्सपर्ट टीम वहां पहुंची है। ये टीम टनल रेस्क्यू में बहुत एक्सपर्ट है। इसके अलावा नेपाल ने बेली पुल बनाने में भी भारत से मदद मांगी है और भारत ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नेपाल की हर संभव मदद की जाएगी बिना किसी देरी के।

0: काठमांडू के रनवे पर लैंड करता भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा मालवाहक विमान इस बात का प्रमाण है कि जब विपदा आती है तो भारत फर्स्ट रिस्पोंडेंट बनकर आगे आता है। पड़ोसी देश नेपाल सदी की सबसे बड़ी त्रासदी की चपेट में है, ऐसे में भारत नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। भारतीय वायुसेना के विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से उड़ते हैं और नेपाल के काठमांडू में जरूरी सामग्री पहुंचाकर वापस आ जाते हैं और फिर अगली खेप की तैयारी में जुट जाते हैं। नेपाल में तबाही इस कदर हुई है कि बाजार, गांव, शहर सब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। जरूरी सामान का संकट है, आपातकालीन दवाएं, मूलभूत सुविधाओं का अभाव हो गया है। ऐसे में भारत एक के बाद एक खेप भेज रहा है ताकि नेपाल के आपदा पीड़ितों की सहायता हो सके। तबाही की इन तस्वीरों के बीच इंसान पूरी तरह से लाचार नजर आ रहा है। बस कोशिश जारी है जिंदगियों को बचाने की। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दुनिया के कई देशों के नागरिक नेपाल में लापता हैं। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन पूरी ताकत से चल रहा है। भारत समेत कई देशों ने तलाशी अभियान में सहायता की बात कही, लेकिन नेपाल सरकार ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि साल 2015 के भूकंप में विदेशी मदद से रेस्क्यू करने का अनुभव ठीक नहीं था, इसलिए तलाशी अभियान में विदेशी मदद नहीं चाहिए। नेपाल सरकार ने साफ किया है कि तलाशी में मदद नहीं चाहिए, लेकिन बेली पुल बनाने और सुरंग में रेस्क्यू के लिए भारत से मदद मांगी गई है।
1: लोग जो भी हंकार रखता है वो हंकार रहे हैं। मेरे काम भी एक नागरिक को सुरक्षित करने की और वहाँ पर जो भी हो सकता है नेपाल पूरी अब जो सहायता प्रदान कर सकते हैं उसके अनुभव की बात है वो भी कर रहे हैं।
0: नेपाल ने सहायता मांगी तो भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर हिंडन से फिर उड़ा और एक्सपर्ट टीम को काठमांडू पहुंचा दिया। इसमें वो टीम शामिल है जो सुरंग में रेस्क्यू करने में माहिर है। ये टीम अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। इसके अलावा 11 सदस्यीय मेडिकल टीम भी भारत ने नेपाल भेजी है।
2: आखिरकार नेपाल सरकार ने फैसला लिया है कि वो राहत बचाव कार्य में दुनिया भर की दक्ष जो देश है टीम है रेस्क्यू ऑपरेशंस में उनकी मदद लेगी। हालांकि इसके पहले नेपाल सेना ने कहा कि 2015 में हमने सबक लिया था कि कोऑर्डिनेशन की कमी थी, बहुत सारी एजेंसियां थी, लेकिन अब जब आंतरिक मंत्रियों की बैठक हुई उसमें फैसला लिया गया कि उन देशों को जरूर एजेंसियों को यहां आने देना चाहिए जिनकी विशेषज्ञता है। ऐसे में भारत, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे वो देश हैं जिनके पास एनडीआरएफ, जैसे जैसे भारत के पास एनडीआरएफ है उसकी अपनी दक्षता है। इस समय नेपाल को इन विशेषज्ञों की जरूरत इसलिए है कि जिन टनल्स के अंदर जहां पर हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, जहां नेपाल की सेना ने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए रेस्क्यू ऑपरेशंस किया है, इसके अलावा डीएनए हो, फॉरेंसिक हो, बॉडी की आइडेंटिफिकेशन हो, इन सब प्रक्रियाओं के लिए उसे विशेषज्ञों की जरूरत पड़ेगी।
0: नेपाल के रसुआ नुआकोटी में हर तरफ तबाही का मंजर है। ऐसे मुश्किल वक्त में भारत लगातार राहत और बचाव के लिए मदद भेज रहा है।
3: भारत से किस तरह की और किस किस लेवल पे असिस्टेंस की उम्मीद नेपाली कम्युनिटी इस वक्त लगातार बैठी है?
4: हम भारत सरकार के प्रति, विशेष करके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति भी आभारी है कि उन्होंने बहुत ही फास्ट जो है रिएक्ट किया है। ये हमारे साथ जो है संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए ही नहीं, हम लोगों के साथ जो है सहयोग के लिए भी, हाथ बढ़ाने के लिए भी भारत सरकार ने बहुत ही त्वरित किस्म से, बहुत ही फास्ट किस्म से एक्शन लिया है।
0: नेपाल की इस त्रासदी के बीच विदेशों में बसे नेपाली और भारतीय मूल के लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं ने नेपाल के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत राशि जुटाई। दक्षिण पूर्वी लंदन के प्लम स्टेट स्थित एक मंदिर में रक्षाबंधन कार्यक्रम को नेपाल के बाद पीड़ितों और बचाव अभियान के लिए फंड जुटाने से जोड़ा गया। यानी नेपाल की त्रासदी को लेकर मदद की मुहिम देश की सीमाओं से बाहर भी पहुंच चुकी है। आज तक ब्यूरो।
5: नेपाल की भोटे, कोशी और त्रिशूली नदी में फिलहाल पानी का बहाव सामान्य है, लेकिन अब भी खतरा बना हुआ है। नेपाल के भुटवल से आज तक संवाददाता रोहित सिंह बता रहे हैं कि 26 अगस्त को नेपाल की नदियों में अचानक पानी कैसे बढ़ा और कैसे तबाही मची।
6: आज तक इस वक्त पहुंचा है नेपाल के रूपनदेही जिले के भुटवल इलाके में, और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये बेहद खतरनाक नदी टिनुआ खोला नदी है। और आप फिलहाल इस नदी की धार देखिए, कितनी तेज़ रफ्तार से इसमें पानी बह रहा है, और अभी फिलहाल ये रफ्तार है पानी का और लेवल भी है पानी का देखिए। लेकिन अगर अचानक से फ्लैश फ्लड आए इस तरह की नदी में तो फिर क्या हालात होगा। और ऊपर हम आपको पहाड़ों की तस्वीर पहले आपको दिखाते हैं, चारों तरफ आप देखिए ये पूरा इलाका जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, हरे भरे पेड़ आपको नज़र आ रहे होंगे, और लैंडस्लाइड का खतरा भी लगातार बना रहता है ऐसे इलाकों में, और साथ ही साथ फ्लैश फ्लड का खतरा भी लगातार बना रहता है। तो 26 अगस्त को जब नेपाल में वो भयंकर आपदा, वो भयंकर त्रासदी आई, तो शायद इसी तरीके का कुछ माहौल रहा होगा, जब सब कुछ लग रहा होगा कि सामान्य सा है, एक नदी है उसमें पानी बह रहा है, लेकिन अचानक से जब फ्लैश फ्लड आता है तो यही नदी, ऐसी ही नदी जो है वो विकराल रूप ले लेती है, फिर पहाड़ में ऊंची ऊंचे पहाड़ पे कई मीटर ऊपर तक जो है वो नदी जो है वो पहुंच जाती है, वो उसकी धार जो है आपको वहां तक चली जाती है। इस तरह भी आप देखिए ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े पहाड़ हैं कई मीटर ऊंची लहरें जो है वैसी ऐसी नदियों में जो है वो देखने को मिलता है फ्लैश फ्लड की स्थिति में। और ऐसा ही कुछ हुआ था 26 जुलाई को उस त्रासदी में जब तिब्बत में वो फ्लैश फ्लड आया, उसके बाद नेपाल में कई पहाड़ी नदियों में जो है ज़बरदस्त कहें तो त्रासदी आया।
5: हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद हुए कथित शुद्धिकरण को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि किसी नेता की रैली की जगह का शुद्धिकरण करना गलत है। उन्होंने कहा कि संविधान हर तरह के भेदभाव को गलत मानता है। राहुल गांधी ने इस मामले में SC ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि घटना को 20 दिन हो चुके हैं लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाया और कहा कि जब उनकी पार्टी के नेता शुद्धिकरण को सही बता रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को न्याय दिलाएगी।

0: हमारे सीएलपी राजस्थान के मंदिर जाते हैं, बीजेपी के नेता शुद्धिकरण करते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी है, मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट हैं, वो रामलीला ग्राउंड में हल्द्वानी में जाते हैं भाषण देने, और वहां पर शुद्धिकरण होता है। और उनकी पार्टी का उदाहरण बिहार के चीफ मिनिस्टर मांझी जी, वो मंदिर में जाते हैं और वहां शुद्धिकरण होता है। ये करता कौन है? ये बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं, सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग ये करते हैं, और ये क्राइम है।
1: शुद्धिकरण विवाद पर राहुल गांधी के हमले के बीच आज तक संवाददाता राहुल गौतम ने भी सवाल किया कि कांग्रेस नेताओं के ही एक गुट ने इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ ना कहा, जिस पर राहुल गांधी ने भी जवाब दिया, हालांकि बीजेपी की तरफ से भी जवाब दिया गया, वो आपको सुनवाते हैं।
2: कांग्रेस जिस तरह से अफवाह फैलाने का काम कर रही है, दलित समाज को भ्रमित करने का काम कर रही है कि वहां पर हल्द्वानी में रामला ग्राउंड में शुद्धिकरण किया गया है, और जब खड़गे जी दलित समाज से आते हैं उनका अपमान हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की कोई भी मनसा नहीं रही है, और भारतीय जनता पार्टी इसको अपने आप से अलग करती है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी संस्था के माध्यम से वहां हवन किया गया, शुद्धिकरण किया गया, तो उनका काम है, किंतु इस तरह का भ्रम फैलाना ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी क्योंकि दलित के हितैषी की अगर हम बात करते हैं तो कभी भी दलितों के हितैषी नहीं रही है।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। देवरिया पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने तंज कसा और कहा कि कुछ लोग मानते हैं कि पहले लोगों के बीच एक कहावत चलती थी, देख सपाई बेटियां घबराई। सीएम योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार में अपराध और अराजकता पर लगाम लगी है और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है।
3: इस सपा का मतलब ही है लूट खसोट, इस समाजवादी पार्टी का मतलब ही है कि डकैतों का एक गिरोह। ये लोग नहीं है, 17 के पहले मां क्या क्या कहावत थी, देख सपाई बिटिया घबराई, यानी हर बेटी चिंतित रहती थी, हर अभिभावक चिंतित रहता था क्या होगा। किसी भी मां बाप के लिए सबसे संवेदनशील मुद्दा होता है बेटी की सुरक्षा, हर मां बाप के लिए चिंता होती है, हर भाई की चिंता होती है, लेकिन इन सपाइयों ने बेटी के साथ जो व्यवहार किया था, कल मैं देख रहा था जब हम फ्री में बस यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे थे 26 को, तो समाजवादी पार्टी के बबुआ की नींद भी टूटी, और वो भी एक प्रेस वार्ता जल्दी जल्दी में बुलाने लग गए।
1: वहीं मोहन भागवत, यानी संघ प्रमुख मोहन भागवत अमेरिका के दौरे पर है। आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर पर मोहन भागवत का एक बड़ा कार्यक्रम है। वैश्विक सौहार्द और सार्वभौमिक एकता का उत्सव थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 5,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख के संबोधन से पहले सियासत भी तेज हो गई। अमेरिका में कई संगठनों और खास तौर से न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने मोहन भागवत के मेडिसन स्क्वायर गार्डन के कार्यक्रम का विरोध किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अमेरिका में मोहन भागवत के कार्यक्रम पर सवाल उठाया, और इस सब की चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर संघ प्रमुख न्यूयॉर्क में अपने संबोधन में क्या बोलेंगे। और इस दौरान न्यूयॉर्क से हमारी सहयोगी पवनी मित्तल इस वक्त जुड़ चुकी हैं, सीधे उनसे हम बात करते हैं। पवनी, आज न्यूयॉर्क में संघ प्रमुख मोहन भागवत का कार्यक्रम होना है, इसे लेकर अमेरिका में क्या हलचल है, खासतौर पर भारतीय समुदाय के बीच, साथ ही अमेरिका की राजनीति और मीडिया में इसको लेकर क्या बातचीत हो रही है?
4: आरएसएस की मुख्य मुख्य मोहन भागवत के जो कार्यक्रम है उसको लेकर यहाँ पे काफी चर्चा है। मैं न्यूयॉर्क में हूँ और यही थोड़ी दूर में एक स्टेडियम है मैडिसन स्क्वायर गार्डन, वहाँ 5,000 लोग कल आने वाले हैं ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक, जो मोहन भागवत का जो कार्यक्रम है उसको अटेंड करने वाले हैं। उनकी स्पीच तो होगी पर उसके साथ काफी नाच गाना और इंडियन कल्चर का काफी सेलिब्रेशन भी होने वाला है। सो जो लोग अटेंड करने आ रहे हैं उनको काफी एक्साइटमेंट है, वो कहते हैं वो कार्यक्रम एंजॉय करेंगे, स्पीच सुनेंगे और एक एकता का जो विषय है जो इस कार्यक्रम का है उसको वो सेलिब्रेट करने आ रहे हैं। पर ये भी है कि काफी लोग इस कार्यक्रम का विरोध कर चुके हैं, काफी ग्रुप्स हैं जिन्होंने, काफी संस्थाएं हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है, जिन्होंने धरना किया है। तो दोनों बात लेकर जो लोग अटेंड करने वाले हैं और जो लोग विरोध करने कर रहे हैं दोनों को मिला के काफी काफी चर्चा है। उसके अलावा जो इंडियन अमेरिकन हैं यूएस में वेरी पावरफुल माइनॉरिटी कहा जाता है, वन ऑफ छोटी माइनॉरिटी है पर कंपैरेटिवली अमीर है, एडुकेटेड है और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि काफी इंडियन अमेरिकन हैं जो अमेरिकन राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं। न्यूयॉर्क के मेयर है ज़ोहरान ममदानी, कुछ साल पहले कमला हैरिस नॉमिनी थी प्रेसिडेंट की, वो वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। तो पूरा मिला के ये काफी इंटरेस्टिंग टाइम है इंडियन अमेरिकन के लिए और इस कार्यक्रम के लिए यहाँ न्यूयॉर्क में।
1: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाए और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: The new BE6 Sporter.
1: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
3: In association with
4: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera.

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: आज तक ना होता तो हमारी बात देश दुनिया तक नहीं पहुंचती।
3: हम लोग को बड़े चैनल का सहयोग नहीं मिला था, हम लोग गरीब छात्र लोग हैं, तो आज आप लोग का सहयोग मिला है तो पूरा भारत और पूरा दुनिया में यहाँ की आवाज गूंज रही है।
2: खबरों के साथ पक्षपात नहीं।
4: 19 साल के छात्र साहिल रजा ने दावा किया उन पर सुरक्षा बलों ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी एक आंख की रोशनी जाने की नौबत आ गई।
2: हर बात देश के सामने।
5: अंजना मैम, सबसे पहले तो हम लोग आवाज को बुलंद किए, इसके लिए आपके पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं।
2: मुद्दा कोई भी हो, सोए हुए सिस्टम को जगाता है आज तक।
6: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती।
7: ये तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। हर तरीके एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

झील के फटने का खतरा। ओवरफ्लो से नेपाल की भोटेकोशी नदी में लगातार बढ़ रहा है पानी। हाई अलर्ट पर नेपाल। मौत का आंकड़ा 626 के पार। 2400 से ज्यादा लापता। खड़गे के बहाने राहुल गांधी का दलित दाव। मंच के शुद्धिकरण पर घेरा। कहा संविधान और बीजेपी संघ की विचारधारा की लड़ाई। उत्तराखंड के मंत्री बोले, जांच में बीजेपी का कोई नहीं मिला। लखनऊ के जेपी इंटरनेशनल सेंटर पर आर पार। सीएम योगी बोले, सैफई सिंडिकेट ने 200 करोड़ का काम 800 करोड़ में भी नहीं किया पूरा। अखिलेश यादव ने लगाया था बेचने का आरोप। उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान दौरे पर रवाना पीएम मोदी। ताशकंद में राष्ट्रपति मिर्जियायेव से होगी वार्ता। बिश्केक में एससीओ समिट। पुतिन शी जिनपिंग समेत कई नेताओं से मुलाकात संभव। और मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में मोहन भागवत के यूनिवर्सल ऑननेस कार्यक्रम के लिए लगे बैनर पोस्टर। इस्कॉन मंदिर के संबोधन में आरएसएस प्रमुख ने कहा, दुनिया में अभी बहुत सारे टकराव और विरोधाभास।

नेपाल की आपदा में मरने वालों का आंकड़ा 600 पार कर चुका है। 2600 से ज्यादा लापता हैं, 320 इनमें भारतीय हैं। सैलाब वो सितम लेकर के आया कि नेपाल अभी 11 साल पुराने अर्थक्वेक के जख्म से उभरा भी नहीं था, अब उसे फिर एक सैलाब का सितम देखने को मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूँ आशुतोष मिश्रा। मैं इस समय बटार में हूँ, ये देखिए बटार की तस्वीरें। बादलों से घिरा ये पूरा इलाका पहाड़ी, और इसी वजह से जब तेज बरसात हुई तो राहत बचाव अभियान को पूरी तरह से रोकना पड़ा। आपको हवा में सिर्फ हेलीकॉप्टर गड़गड़ाते सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, वो इसलिए। नाव को बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया, और उसी के साथ साथ शहर, गांव, कस्बे सब कुछ उजड़ गए। और अब एक ही रास्ता, एक ही माध्यम, और वो है हेलीकॉप्टर के जरिए राहत बचाव का। ये देखिए यहाँ पर सोलर प्रोजेक्ट है, जो पीछे सोलर प्रोजेक्ट वो तहस नहस हो गए, आसपास के गांव कट गए, और अब नदियों में अगर कुछ बचा है तो वो है सिर्फ मलबा। पूरा का पूरा शहर मलबों में बदलते गए। 4 दिन हो चुके हैं, 4थे दिन राहत बचाव कार्य में जद्दोजहद करनी पड़ रही है, और इस बीच जो आपदा केंद्र हैं वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। अगर मौसम इस तरह खराब होता रहा, मेरे ठीक पीछे बटार के दरअसल यही वो रास्ता है जहां से तिब्बत जाते हैं, और इसी तिब्बत की ओर से आई इस नदी के सैलाब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे पीछे इन पहाड़ों से निकलते हुए भटकोशी जब अपने साथ तबाही लेकर के आई तो न जाने कितने उसकी चपेट में आए। अब लोग अपनों का इंतजार कर रहे हैं, वो फोन कॉल मिलाते हैं कि रिंग बजेगी, घंटी बजेगी, लेकिन घंटी नहीं बजती है। वो रेस्क्यू सेंटर पर जाते हैं, इंतजार करते हैं कि जब हेलीकॉप्टर आएगा तो उनमें उनके अपने आएंगे, लेकिन वो नहीं आते हैं। दुनिया भर के ऐसे कई परिवार हैं जिनके अपने बिछड़ चुके हैं, वो बस इंतजार कर रहे हैं उम्मीद के साथ कि उनके अपने जो बिछड़ गए हैं वो घर लौटेंगे।

0: दिल में डर और किसी अनहोनी की आशंका के बीच आंखों में आंसू लिए ये लोग अपनों की तलाश में लगे हैं। इसी उम्मीद के साथ इधर उधर भटक रहे हैं कि किसी तरह अपनों का पता लग सके, उनके सलामत होने की खबर मिले। किसी के हाथों में तस्वीर है, कोई मोबाइल पर तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछताछ कर रहा है, कोई अस्पताल में लगी तस्वीरों के बीच अपनों को तलाश रहा है। नेपाल में आई सैलाबी त्रासदी ने कई परिवारों को दर्द में डुबो दिया है। रेस्क्यू सेंटर से लेकर अस्पताल तक लोग भटक रहे हैं, अपनों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब कोई खबर नहीं मिल रही, कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो आंखें भर आ रही हैं।
1: 8 बजे बात हुई थी उससे, और उसके बाद कुछ भी पता नहीं है। किसी से हम लोग को कहीं किसी से कोई
0: किसी का बेटा लापता, किसी का पति, किसी की बहन, तो किसी का भाई, दिल में आस लेकर उनकी तलाश जारी है।
2: भाई के पता नहीं है, किधर है मालूम नहीं है, हम बहुत दुखी है।
0: नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद से लापता अपने बेटे की तलाश के लिए ये माँ दर दर के चक्कर काट रही है। पहले कई गांव में बच्चों को ढूंढा, फिर रेस्क्यू सेंटर गई, अस्पताल पहुंची, लेकिन बेटे की कोई खबर नहीं लगी।
3: कॉल किया, कॉल नहीं लगा, इधर गांव में भी ढूंढ रहा है, नहीं मिला। अभी हम लोग भी हॉस्पिटल इधर ढूंढ रहे, नहीं मिला।
0: लापता लोगों के परिवार वाले बेहद परेशान हैं। हर दिन बीतने के साथ कई आशंकाएं दिल को भारी कर रही हैं। स्थिति ऐसी है कि मांग हो रही है कि सरकार सुविधा दे, तो खुद रेस्क्यू में शामिल होने के लिए तैयार हैं।
4: अगर कोई सुविधा मिले तो मैं खुद जाना चाहती हूँ, सुविधा मिले तो
5: ढूंढने के लिए।
0: नेपाल की त्रासदी में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिससे अपनों को खोने वालों के मन में खौफ बढ़ता जा रहा है। अस्पताल के बाहर बरामद शवों की तस्वीर लगाई गई है, लोग दिल पर पत्थर रखकर इन तस्वीरों को देख रहे हैं।
6: ये काठमांडू का वो जगह है जहां से बाहर से डेड बॉडी लाके रखी गई है। आप ये पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि उन डेड बॉडी की यहाँ तस्वीर रखी गई है, ताकि इनके जो अपने लोग हैं, इनके रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पे आके इनकी पहचान कर सकें और यहाँ से डेड बॉडी ले जा सकें। इन तस्वीरों को देखकर आप देख सकते हैं कितनी भयावह तस्वीरें हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, विक्षिप्त कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये लोग जब इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जा रहे हैं।
0: आपदा में कई लोग घायल हुए हैं, कई को गंभीर चोटें भी आई हैं, कई घायलों का इलाज काठमांडू के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। नेपाल की कुदरत की तबाही ने कई परिवारों को जीवन भर का जख्म दिया है, कई लोग अब भी लापता हैं, परिवार वाले उनकी तलाश में भटक रहे हैं। नेपाल से श्वेता सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा और पंकज दास आज तक।
7: लापता लोगों में कई वो लोग थे जो इस रास्ते मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे थे, लेकिन जब वो इमिग्रेशन के पास रुसुबू पहुंचे उसके बाद सैलाब आया। अब सैलाब आया तो न जाने कौन कहां किससे बिछड़ गया, किसी का कोई पता नहीं है। हमारे सहयोगी श्वेता सिंह की विशेष रिपोर्ट देखिए, कैसे मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले न जाने कितने लोग अब लापता हो गए हैं।
8: राहत, बचाव और इंतजार, इंतजार जो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर, लेकिन जब वो एक व्यक्ति के रूप में आपके सामने होता है तो आपको दर्द उसका समझ में आता है। संजीव जी हमारे साथ इस समय हैं, बोस्टन से आए हैं, उनकी वाइफ यहाँ कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आई थी, रसुआ जिस जगह पर ये हादसा हुआ है वहां पर थी। आप कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे हैं?
9: नहीं, तो मेरा उनसे जो लास्ट कॉन्टेक्ट हुआ था वो नेपाल का टाइम था 26 तारीख को, और यहाँ पे मॉर्निंग 8:35 AM पे, एग्जैक्टली 8:35 AM पे मेरा उनसे बात हुआ फोन पे, और वो कॉल मेरा उनसे 11 मिनट चला, 10-11 मिनट, सो ऑलमोस्ट 8:45 तक, 8:45

0: अभी तक मैं उनके साथ कॉल में था और उसके बाद उन्होंने बोला कि उनको कॉल आ रहा है, बाकी टीम बुला रही है, तो वो चली गई एंड उसके शायद दो मिनट के बाद ये हो गया, उसके बाद से कोई कांटेक्ट नहीं।
1: क्या उनकी तस्वीर देख सकते हैं? क्या नाम है?
0: जीवन ज्योति।
1: जीवन ज्योति,
0: हाँ।
1: ये अकेले आई थी बॉस्टन से?
0: अकेले सोलो ट्रिप पे आई थी। इनका 50th बर्थडे था July 19th को, तो मुझे बोलती है कि मेरे को कैलाश मानसरोवर जाना है, मैं अपने आप को गिफ्ट करना चाहती हूँ और मैं सोलो ट्रिप पे जाऊंगी।
1: आप उनके ब्रदर हैं?
2: मैं उनका ब्रदर।
1: आप दिल्ली से आए?
2: मैं दिल्ली से आया।
1: एकदम कोई कांटेक्ट आप लोग नहीं कर पा रहे?
2: बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा।
1: उसके बाद से फोन का सिग्नल चल रहा है, रिंग जा रहा है या
2: नहीं? बिल्कुल भी नहीं जा रहा, रिंग भी नहीं जा रहा, नहीं। उनके लास्ट लास्ट लास्ट लोकेशन भी वहीं की है, होटल की, जिस होटल में वो थे। हाँ, होटल कैलाश। यस।
0: और उनको ये नहीं मालूम कि क्योंकि वहां पर सब कनेक्शन चला गया, ठीक है, सब मोबाइल टावर्स चले गए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, तो अगर वो मूव हुआ भी होगा फोन कहीं पे और किसी जगह पे, तो मगर वो लोकेशन वही दिखा रहा है सब। तो
1: चाइना की तरफ से बहुत सारे इंडियन जो पिलग्रिम्स थे वो क्रॉस किया उन्होंने, उनमें नाम नहीं आपको दिखाया?
2: नहीं
0: नहीं, क्योंकि वो चाइना साइड पे भी पहुंचे ही नहीं थे। अच्छा। उनको सुबह 12 बजे का उनको टाइम मिला था कि जब उन्होंने जाना था वो पोस्ट पे नेपाल चाइना बॉर्डर पे, वहां से फिर उनको आगे जाना था, तो उन्होंने बोला कि अभी 8:30-9 का टाइम हुआ है, तो मेरे पास अभी भी 3 घंटे हैं, 3 घंटे के, तो हमको फिर जाना है, तो अभी वो लोग गए नहीं थे, तो अभी तो उनकी एक्चुअली जर्नी स्टार्ट हुई।
1: आज तक के जरिए वो तस्वीर दिखाकर यही कोशिश है कि उस पूरे एरिया में जितने भी लोग देख रहे हो, टीवी पर इस तस्वीर को देख रहे हो, वो अगर कोई भी जानकारी रखते हैं तो कॉल करवाएं। किसी भी तरह का अगर कोई किसी को इन्फॉर्मेशन हो, आप दिल्ली से आए हैं उनके साथ ये तस्वीर वो दिखाकर एक ही अपील आप लोग कर रहे हैं?
3: जस्ट हम हाथ जोड़कर विनती, अगर कोई भी जरा सी भी इन्फॉर्मेशन हो किसी के पास भी, तो प्लीज प्लीज आज तक की टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम लोग दिल्ली से हैं, सर बॉस्टन से आए हुए हैं, बहुत परेशान।
4: यात्रा पर निकले तमाम यात्रियों में एक नाम सुमी अधिकारी का था, ईशा फाउंडेशन की सदस्य और ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली, वो भी इस यात्रा पर निकली थी। अब उनका परिवार उन्हें खोज रहा है। हमारे सहयोगी रोहित सिंह ने उनके परिवार से बातचीत की।
5: ये सुमी अधिकारी कब कहाँ की रहने वाली थी और ये ईशा फाउंडेशन के जरिए कहाँ गई हुई थी?
6: ये भाभी जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली है और वो 10-12 दिन पहले ईशा फाउंडेशन से वो मानसरोवर कैलाश पर्वत को दर्शन करने के लिए जा रही थी। वहीं से जो सुबह वो बाढ़ आने के पहले वो हमको मालूम तो यकीन नहीं है, लेकिन वहाँ से उसी दिन पर वो कैलाश पर्वत से लौट रही थी और उसके बाद जो बाढ़ आया उसके बाद अभी तक कुछ भी खबर नहीं है, वो कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है और कुछ भी जानकारी अभी तक नहीं आई है, और इसलिए हम लोग खोज तलाश के लिए इधर उधर उधर भटक रहे हैं। और काठमांडू में वो है हमारा दाई है, वो ऑस्ट्रेलिया से कल आए हैं और वो काठमांडू में भी और पोखरा और चितवन में भी खोज तलाश कर रहे हैं। मलपरासी के हॉस्पिटल में मालूम करने के लिए आए हैं, अभी तक यहाँ बॉडी नहीं दिखाई जा रही है और बाद में हम लोग यहाँ से देखकर और पता चल जाएगा।
5: आपके जो मतलब और रिलेटिव्स हैं वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी मतलब खोज रहे हैं?
6: खोज रहे हैं।
5: इनका कोई जानकारी नहीं मिली?
6: अभी तक कोई।
5: ऑस्ट्रेलियाई नागरिक थी, सिटीजन
6: वही ऑस्ट्रेलिया की सिटीजन थी।
4: लापता लोगों में एक मुंबई के डॉक्टर दंपत्ति भी थे। उनके क्लिनिक पर ताला लग चुका है कि 6 सितंबर तक क्लिनिक बंद रहेगा। वो भी इस यात्रा पर निकले थे, लेकिन यात्रा के बाद अब न घर वालों को पता है न कोई सुराग है कि आखिर वो कहां गए। देखिए हमारे सहयोगी दीपेश की ये रिपोर्ट मुंबई से।
7: हाल में हुई त्रासदी की वजह से कई लोग परेशान हैं, कई लोगों पर इसका असर हुआ है। ऐसे ही एक परिवार है जो मुंबई के अंधेरी इलाके में रहता था, डॉक्टर चितले और उनकी पत्नी जानवी चितले, जो मानसरोवर घूमने गए थे लेकिन नेपाल में जो त्रासदी हुई उसके बाद से उनका कोई संपर्क नहीं है। हम इस वक्त मुंबई के अंधेरी इलाके के उसी देव देवेश्वर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बाहर खड़े हैं, जहां पर मिलिंद चितले और उनकी पत्नी जानवी चितले रहते थे। दोनों मानसरोवर घूमने गए थे, लेकिन जब से नेपाल में जो त्रासदी घटी उसके बाद से ही दोनों का संपर्क नहीं हो रहा है। मिलिंद चितले एक डॉक्टर थे और यहीं पास में ही उनका एक क्लिनिक था। दोनों ही लोग 24 अगस्त से 6 सितंबर तक मानसरोवर घूमने गए थे। उनके जानने वालों का कहना है कि हर साल ये छुट्टियों पर या कहीं ट्रैकिंग के लिए ऐसे जाते रहते थे और इस साल वो मानसरोवर गए थे, लेकिन उन मानसरोवर में जो घटना घटी, नेपाल में जो त्रासदी हुई, उसके बाद से ही दोनों संपर्क में नहीं है। फिलहाल उनकी एक लड़की है जो यूएस में पढ़ाई कर रही है और यहां पर वो कुछ महीनों पहले ही रेंट पर शिफ्ट हुए थे और यहीं पास में ही उनका एक क्लिनिक था जहां पर वो प्रैक्टिस करते थे। फिलहाल प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द उनका संपर्क किया जा सके, उनसे संपर्क हो सके और उनकी कुशलता की खबर लोगों तक पहुंचा सके, उनके परिवार वालों तक पहुंचा सके।
4: मेरे पीछे जब इस नदी का सैलाब आया अपने साथ कई शहरों को दबा ले गया और इन्हीं में एक डूंगे बाजार भी है। कभी गुलजार रहता था 10,000 से ज्यादा की आबादी, लेकिन अब सब कुछ समतल हो चुका है, पूरा शहर मलबे में तब्दील हो चुका है।
8: नेपाल की जल त्रासदी किस तीव्रता की थी, इसका अनुमान जब तक लगाया जा रहा होता है तब तक उससे भी विनाशकारी तस्वीरें आ जाती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि कितना विनाश हुआ है, किस स्तर का हुआ है, उसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह, आशुतोष मिश्रा, पंकज दास इस समय नेपाल में मौजूद हैं। संवाददाता आशुतोष मिश्रा जब नुआकोटी के ढुंगे बाजार पहुंचे तो वहां के हालात देखकर हैरान रह गए कि तबाही इस स्तर की भी हो सकती है।
4: इसके आगे जाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, ये लोगों के घर थे, मकान थे, सब कुछ कैसे पूरी तरह बर्बाद हो गया है। एक ऐसी आपदा और मानो जैसे कयामत बरसी हो शहर पर, सब कुछ तबाह कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5 मंजिल, नीचे की जो 2 मंजिल है वो पूरी तरह मलबे में जा चुकी है और यहीं से ऊंचाई से सोचिए पूरा मलबा आया हुआ होगा। लोग जो घर में होंगे, अगर उन्होंने भागने की भी कोशिश की होगी, वो कैसे भागे होंगे, ऊपरी मंजिल के लोग नीचे कैसे आए होंगे और क्या इस मलबे में अभी, क्योंकि यहां से लगभग 30 से ज्यादा लोगों को यहां से बरामद किए गए थे शव, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया था, यहां से एयरलिफ्ट किया गया था, लेकिन न जाने कितने लोग, क्योंकि 10,000 की आबादी वाला शहर, न जाने कितने लोग इस शहर के मलबे में अभी भी होंगे।
8: नुआकोट का प्रमुख बाजार था, लेकिन अब इन तस्वीरों को देखिए, बाजार का कहीं नामो निशान नहीं है। ढूंगे के इस बाजार में कई होटल रेस्टोरेंट थे जो अब मलबे में सिमट चुके हैं। सामने एक पेट्रोल पंप भी था, लेकिन अब कुछ दिखाई नहीं देता।
4: ढूंगे बाजार के जिन इलाकों में अब मैं आया हूँ, थोड़े थोड़े करके दिखाई दे रहे हैं। ये जो इमारत है दरअसल निर्माणाधीन थी। अब सोचिए कि कोई अपना आशियाना बना रहा था, परिवार के लिए घर बना रहा था, उसके पहले ही वो घर तबाह हो गया, लोग कहाँ गए कोई नहीं जानता। यहाँ पर कई मंजिला थी, इसमें कुछ कमर्शियल होटल चलते थे। मैं कोशिश करता हूँ क्या इस इलाके तक जाया जा सकता है, लेकिन नहीं जाया जा सकते। देखिए, जूते डालते ही ना जूते यहाँ पर धंस रहे हैं, और इसी के साथ साथ ये जो मलबा है ये थोड़ा ज्यादा रिस्की है, ये लूज मलबा है। हाँ, ये देखिए पूरा दलदल है, इसके ऊपर जाया नहीं जा सकता। दिखने में लग रहा होगा कि मिट्टी का जमावड़ा है, लेकिन जैसे जैसे पानी नमी इसमें जा रही है, ये और पूरा दलदल बनता जा रहा है। आप सोचिए कि अगर इन जगहों से किसी को जाना भी हो, संभावना भी हो, अब आप समझिए कि जहां पर रेस्क्यू बचाव कार्य चल रहे हैं वहां इस दलदल से लोगों को निकालना कितना मुश्किल होगा, खासकर अगर कोई इमारतों से SOS कॉल भी देता। और इसीलिए हेलीकॉप्टर के जरिए वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, वहां से विंचिंग किए जाते हैं, उन्हें नीचे से जो है लिफ्ट कर लिया जाता है। एयरलिफ्ट एकमात्र ऑप्शन बचा है, क्योंकि इस दलदल में आप चॉपर जो है लैंड नहीं कर सकते। इन इलाकों में देखिए, यहाँ से निकलना जो है ना, ये पूरा कीचड़ है, तो बहुत, अब आप समझिए कि राहत बचाव कार्य यहाँ पर कितना मुश्किल हो रहा होगा।
8: नुआकोटी के ढूंगे बाजार में अब कोई नहीं बचा है। यहाँ का बाजार, यहाँ का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सब खंडहर बन चुके हैं, एक ऐसा खंडहर जो मलबे से भरा हुआ है।
4: तो ढूंगे बाजार की सीमा यहाँ से मेरे लिए खत्म हो रही है, क्योंकि बाजार तो आगे तक है, लेकिन इसके आगे मलबे ने रास्ता रोक रखा है और वो इतना खतरनाक है कि जोखिम भरा है। लेकिन यहाँ आकर के त्रासदी की जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ, वो बता रहे हैं कि आखिर यहाँ जो लोग होंगे वो कितने डरे होंगे, कितने सहमे होंगे। समय था ही नहीं भागने के लिए, और जब तक वो भाग के ऊपर पहुंचते तब तक न जाने कितनी इसकी चपेट में आ गए थे। कहीं पेट्रोल पंप दब चुका है, कहीं कई मंजिला जो इमारत है वो खंडहर बन चुकी है। न जाने कितने लोग थे जो भाग पाए होंगे, न जाने कितने लोग थे जो मलबे में दफन होंगे। कई सारे लोग, निर्दोष लोग, जिन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला होगा। नेपाल की इस तबाही ही ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है।
8: नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर आसमान पर बनराते रहते हैं ये देखने के लिए कि कहीं कोई फंसा तो नहीं। त्रिशूली नदी ढोंगे बाजार के बिल्कुल बगल से बहती है, यहीं पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी था। 26 अगस्त की आपदा में वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गया।
4: ये वो त्रिशूली के पास का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, दरअसल पाइपलाइन आपको दिखाई दे रही है, ये भी मलबे में पूरी तरह बह गया। क्योंकि आगे जो त्रिशूली की धारा आप देख रहे हैं ये इतनी खतरनाक थी कि इसके साथ ये पानी का स्तर जो है ये इतना ऊपर गया 20 से 25 फीट और उसके बाद इसने पूरे हाइड्रो प्रोजेक्ट को अपने साथ बहा ले गए। दरअसल पुल की कनेक्टिविटी इस इमारत के साथ लगती थी लेकिन ये सब कुछ बह गया। और अब बड़ा खतरा इस बात का है कि जिस तरह से चीन ने चेतावनी दी है उस चेतावनी के बाद दरअसल इसी त्रिशूली में नारायणी में भटकोशी में जिसका स्तर बढ़ा था वो पानी फिर बढ़ सकता है। और ऐसे में हालांकि इन इलाके की तबाही अब इतनी हो चुकी है कि और नुकसान क्या ही होगा, लोग बचे नहीं है, जो बचे हैं वो पहाड़ी इलाकों पर चले गए हैं, बाकी की चेतावनी जारी की गई है। लेकिन ये तस्वीरें देख करके आपको अंदाजा लग सकता है कि जो नदी आज इतने नीचे से बह रही है जिसका बहाव लगभग इतना ही है वो भी तब जब बरसात हो रही है वो जब जमीन से 60 से 70 फीट की ऊंचाई पर ले गई होगी तो अपने साथ कितनी तीव्रता और ताकत लेकर के आई कि उन्हें इन बड़ी बड़ी इमारतों को पुलों को हाइड्रो प्रोजेक्ट को सब कुछ नष्ट कर दिया।
8: ढूंगे बाजार से नेपाली सेना ने कई लोगों के शव बरामद किए हैं। जो लोग किसी तरह से यहाँ से बच निकले थे अब वो अपने घरों को देखने के लिए लौटे हैं। लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि नेपाली पुलिस लोगों को आगे जाने से रोक रही है।
4: आपका घर कहाँ पर है? अच्छा ऊपर की तरफ।
9: थैंक यू वाला।
4: आप अच्छा आप थे उस समय घर पे जब ये सब हो रहा था?
9: पूरा डूब जाए।
4: आप थे यहाँ पे जब देखा था आपने सब कुछ?
9: हाँ देखा था। ऐसे से आया कि ऐसा उपहार के ऐसा मार के सब मार के चल गया। उसके लिए हम बाद में इधर भी आ सकता है समझ गया। उसके बाद हम ऊपर गए।
4: ढूंगे बाजार जैसे ही खत्म होता है उसके आगे त्रिशूली बाजार शुरू होता है और अब ये जो पुलिस वाले हैं वो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि लोग आगे ना जाएं। अभी देखिए महिलाएं बच्चे हैं जिनका अपना जरूरत का सामान है ये लोग। आप कहाँ जा रही हैं? आपका घर है आगे? आप आगे जा रहे हैं? देखिए कई सारे लोग हैं जो अपने घरों की ओर या उन इलाकों की ओर जाना चाहते हैं देखने, लेकिन ये कितना जोखिम भरा है। देखिए देख रहे हैं पूरा रास्ता जो है कीचड़ में दबा हुआ है। इसके आगे जाने की पुलिस भी अनुमति नहीं दे रही, इसलिए जो स्थानीय प्रहरी हैं वो भी पहुंचे हैं। लोग अब आए हैं देखने के लिए कि वो इन इलाकों में आगे न जाए।
8: आशुतोष मिश्रा, नुआकोटी, नेपाल, आज तक।
4: आपदा ग्रस्त नेपाल में ग्राउंड जीरो से आज तक की खबरें लगातार जारी है। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: दिल्ली में अब सीएनजी भी महंगे हो गए हैं। वेस्ट एशिया में जारी संकट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलएनजी की कीमतों में तेज उछाल का असर अब सीएनजी की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। आईजीएल ने दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 3.89 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू भी हो गई है। दिल्ली में सीएनजी की पुरानी कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो कि अब बढ़कर 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए हैं।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

अभी बना हुआ है नई झील के फटने का खतरा। ओवरफ्लो से नेपाल के भोटे कोशी नदी में लगातार बढ़ रहा है पानी। हाई अलर्ट पर नेपाल, मौत का आंकड़ा 626 तक पहुंचा। 24 साल से ज्यादा लापता। खड़गे के बहाने राहुल गांधी का दलित दांव, मंच का शुद्धिकरण पर घेरा। कहा संविधान और बीजेपी संघ की विचारधारा की लड़ाई है। उत्तराखंड के मंत्री बोले जांच में बीजेपी का कोई नहीं मिला। लखनऊ के जेपी इंटरनेशनल सेंटर पर आरबर सीएम योगी बोले सेफई सिंडिकेट ने 200 करोड़ का काम 800 करोड़ में भी नहीं किया पूरा। अखिलेश यादव ने लगाया था बेचने का आरोप। उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान दौरे पर रवाना प्रधानमंत्री मोदी। ताशकंद में राष्ट्रपति मिर्जियोयेव से बातचीत होगी और बिश्केक में एससीओ समिट। पुतिन शी जिनपिंग समेत कई नेताओं से मुलाकात संभव।

और मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में मोहन भागवत के यूनिवर्सल ऑननेस कार्यक्रम के लिए लगे बैनर पोस्टर। इस्कॉन मंदिर के संबोधन में आरएसएस प्रमुख ने कहा, दुनिया में अभी बहुत सारे टकराव और विरोधाभास हैं।

नेपाल में कुदरत का कहर जारी है। त्रासदी में मौत का आंकड़ा 626 के पार पहुंचा। नेपाल बाढ़ में फंसे 21 तमिल तीर्थयात्री सुरक्षित पहुंचे दिल्ली। भारत ने राहत अभियान तेज भी किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर नेपाल से लौटे भारतीयों से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। तमिलनाडु निवासी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले थे। चीन में फंसे 400 भारतीय सुरक्षित। भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन के साथ निकासी में जुटा है। नेपाल में तबाही के बीच में नया खतरा। भोटेकोशी नदी उफान पर है। त्रिशूली नदी के आसपास बाढ़ का अलर्ट। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा। नेपाल में सुरंगों में फंसे लोगों के बचाव के लिए भारत ने भेजे 11 सदस्यीय मेडिकल और टनल रेस्क्यू टीम। भारत में राहत सामग्री भी भारत ने पहुंचाए। नेपाल की मदद के लिए भारत का राहत अभियान भी तेज। राहत सामग्री की तीसरी खेप लेकर विमान काठमांडू पहुंचा। 10 टन जरूरी सामान भेजा गया। नेपाल में आई त्रासदी में अपने को तलाश में अस्पतालों के बाहर जुटे परिजन। अब भी हजारों लापता है। नेपाल त्रासदी में लगभग 2000 लोग अभी लापता है। 13 पनबिजली परियोजनाओं में काम कर रहे 933 कर्मचारी भी इसमें शामिल। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह का बड़ा दावा, विदेशी सहयोग ठुकराने का प्रस्ताव भ्रामक है। सील के अलर्ट। रेस्क्यू टीम नेपाल पहुंची, बचाव अभियान में जुटी। नेपाल सरकार ने इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन के प्रमुख प्रोफेसर अनॉल्डिक्स से संपर्क साधा। नेपाल में फ्लैश फ्लड में फंसे महाराष्ट्र के 100 से ज्यादा तीर्थयात्रियों का सुरक्षित उनको रेस्क्यू किया गया। बिहार सरकार की मदद से ट्रेन से महाराष्ट्र के लिए रवाना हुए। नेपाल बाढ़, नुवाकोट के देवीघाट बाजार में तबाही का मंजर। मलबे में तब्दील हुआ इलाका। 10 से 15 फीट तक जमा है मलबा। कई घरों के ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह जमींदोज। नेपाल बाढ़, चिली में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में फंसे इंजीनियर की पत्नी ने रेस्क्यू की गुहार लगाई। 3 दिन से पति समेत 6 लोग लापता है। महिला बोली, मुझे मेरा पति चाहिए। नेपाल में बाढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो वायरल। नेपाली सेना ने हेलीकॉप्टर से कई लोगों को सुरक्षित निकाला। चुनौतियों के बीच में नेपाल में मिशन जिंदगी जारी। नेपाली सेना ने अब तक 2465 लोगों को एयरलिफ्ट किया है। 163 विदेशी नागरिकों का रेस्क्यू। नेपाल हादसे में मानसरोवर यात्रा पर गई ईशा फाउंडेशन की ऑस्ट्रेलियाई नागरिक सुमी अधिकारी लापता। परिवार वाले अस्पतालों में तलाश कर रहे हैं। नेपाल में मुसीबत के बीच 8 साल के बच्चे ने पेड़ पर चढ़कर बचाई जान और 1 दिन के बाद एयरलिफ्ट किया गया। बच्चे से मिलकर भावुक हुई मां। नेपाल के भूटेकोशी बाढ़ का कहर। 5 जिलों में 15 स्थानीय निकाय 3 महीनों के लिए आपदा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित। पीएम मोदी उज्बेकिस्तान दौरे के लिए रवाना। विदेश मंत्रालय ने भारत उज्बेकिस्तान के खास रिश्तों की झलकियां भी साझा की। चौथी बार ताशकंद के दौरे पर पीएम मोदी। 4 दिवसीय सेंट्रल एशिया के दौरे पर पीएम आज से 1 सितंबर तक उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य में रहेंगे और अहम बैठकों में लेंगे भाग। पीएम मोदी के स्वागत में तिरंगे के रंग से रोशन हुआ ताशकंद का हिल्टन होटल। ताशकंद में पीएम मोदी की राष्ट्रपति शावकत के साथ अहम मुलाकात। बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। पुतिन से द्विपक्षीय मुलाकात और शी जिनपिंग से भी आमना सामने पर नजर। एससीओ के मंच पर आतंकवाद के खिलाफ भारत का फोकस है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की मौजूदगी में आतंकवाद अलगाववाद के खिलाफ उठेगी आवाज। सेंट्रल एशिया दौरे से भारत के रिश्तों को मिलेगी नई मजबूती। सुरक्षा कनेक्टिविटी व्यापार पर पीएम की नजर। दलितों के मुद्दे पर राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर हमला। बोले, राजनीति 2 विचारधाराओं की लड़ाई। हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले में राहुल गांधी ने एफआईआर मांगी और बोले कि संविधान में अस्पृश्यता एक अपराध है। खड़गे के साथ हुए शुद्धिकरण पर राहुल गांधी का बार, कहा कि कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्याय तो दिलाएगी। कांग्रेस के नेताओं की चुप्पी पर सवाल पर राहुल गांधी ने माना कि एक समूह ने कम बोला था। खड़गे के हल्द्वानी दौरे के बाद शुद्धिकरण पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता खजान दास का इस पर बयान, इसे एक राजनीतिक ड्रामा बताया। सीएम योगी का सपा पर भी हमला। बोले कि देख सपाई बेटियां घबराए की कहावत अब खत्म। देवरिया में योगी का दावा कि बीजेपी सरकार में अपराध और अराजकता पर लगाम। देवरिया में सीएम योगी ने विकास की सौगात दी। जेपीएनआईसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी के एसपी पर हमला। बोले कि सरकारी खजाने से 900 से 1000 करोड़ खर्च करने की साजिश। बोले एसपी का मतलब माफियाओं का गिरोह। योगी ने एसपी पर साधा निशाना। बोले कि जेपीएनआईसी का पूरा काम कराने में 150 से 200 करोड़ और लगने का अनुमान। जेपीएनआईसी को प्राइवेट कंपनी के जरिए चलाने की थी योजना। सीएम योगी का एसपी पर आरोप। बोले पहले न विकास था न सुरक्षा थी। जेपीएनआईसी की कमाई परिवार तक पहुंचाने की साजिश का भी आरोप। योगी बोले कि सपा ने अपनी विचारधारा के मुखिया को छोड़ा तक नहीं। बलरामपुर में एआईएमआईएम नेता अब्दुल मनान समेत 3 नेताओं पर एसपी का उन्होंने दामन थाम लिया। अखिलेश का आरोप है कि पीडीएस से विरोधियों को पेट में दर्द हो रहा है। तकिया नूसी और सामंतवादी ताकतें घबरा गई।
चुनाव को लेकर अखिलेश का दावा, पीडीएफ के लोग जितने गंभीर हैं उतना कोई नहीं है। फ्री बस के सरकारी दावे पर अखिलेश यादव का हमला, बोले कि त्योहार पर किए गए कोई भी इंतजाम थे ही नहीं। अंकित बालियान हत्याकांड पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, बोले कि परिवार न्याय की मांग कर रहा है। नेपाल त्रासदी के बीच में सीएम योगी का बलिया में हवाई सर्वेक्षण, बाढ़ प्रभावित इलाकों और बॉर्डर एरिया का जायजा लिया। बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन की अध्यक्षता में 4 घंटे चली बैठक खत्म, युवाओं को लेकर बैठक में खास रणनीति तैयार की गई। सज्जन कुमार के परिवार से बीजेपी के सांसदों की मुलाकात पर सौरभ भारद्वाज का हमला, बोले कि सुखबीर बादल और हरसिमरत बादल बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे। ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, टीएमसी छात्र परिषद रैली में हाईकोर्ट आदेश के उल्लंघन का आरोप, कैथेड्रल रोड पर ट्रैफिक बाधित करने, तय समय से आगे कार्यक्रम जारी रखने का आरोप। नीरज चोपड़ा एशियन गेम्स से बाहर, टखने में लिगमेंट फटने के चलते सीजन से हुए बाहर, और लॉजेन में सीजन बेस्ट थ्रू के बाद ट्रेनिंग के दौरान लगी है चोट, अब रिकवरी पर फोकस। दिमागी नक्सल पर सियासी संग्राम तेज, आरएसएस से जुड़े ऑर्गेनाइजर ने सोनिया गांधी की एनएसी को बताया दिमागी नक्सलों का क्लासिक टेकओवर। दिमागी नक्सल की परिभाषा पर बड़ी सियासी बहस, ऑर्गेनाइजर का आरोप है कि एनएसी के जरिए शासन व्यवस्था पर प्रभाव डालने की कोशिश। सोनिया गांधी की किताब पर सियासी घमासान, कांग्रेस का आरोप है कि बिलोंगिंग के प्रकाशन पर दबाव, अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल। सोनिया गांधी की किताब को लेकर कांग्रेस का हमला, अशोक गहलोत बोले कि दुनिया में छप रही किताब भारत में क्यों नहीं। कांग्रेस पंजाब के चीफ राजा वर्डिंग की भगवंत मान को सीधी चुनौती, हिम्मत है तो कर्मचारियों पर कार्रवाई करके दिखाएं। राजा वर्डिंग की चेतावनी, कर्मचारियों पर कार्रवाई की तो पूरा कार्यकाल पूरा होने से पहले जनता उखाड़ फेंकेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में सुनी लोगों की समस्याएं, फरियादियों से शिकायतों का ब्यौरा लिया। स्वाइन फ्लू को लेकर यूपी में अलर्ट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों के साथ की बैठक, स्वास्थ्य विभाग को तैयार रहने का निर्देश। पी नागेंद्र ने भ्रष्टाचार के मामले के बीच में दिया इस्तीफा, हुए इमोशनल, बोले कि मुझे दलित होने के कारण निशाना बनाया गया और इस घोटाले में बैंकों की भूमिका भी सामने है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय वित्त मंत्री की भी तय होनी चाहिए। यूजीसी नेट के 84 विषयों के नतीजे घोषित, 4000 से ज्यादा छात्रों ने क्वालिफाई किया जेआरएफ, यूजीसी की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं नतीजे। हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस, स्वास्थ्य फिटनेस के साथ खेल की संस्कृति को बढ़ावा देना मकसद। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर मोहन भागवत का पोस्टर, आज मेडिसन स्क्वायर गार्डन में यूनिवर्सल ऑनेस सेलिब्रेशन कार्यक्रम में संबोधन है। न्यूयॉर्क में मोहन भागवत का बड़ा कार्यक्रम, आरएसएस के शताब्दी वर्ष में यूनिवर्सल ऑनेस सेलिब्रेशन का आयोजन, इस कार्यक्रम के तहत कनाडा और ब्रिटेन की भी यात्रा करेंगे मोहन भागवत। न्यूयॉर्क में इस्कॉन की 7वीं वर्षगांठ समारोह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले कि कृष्ण चेतना ही दुनिया को एकजुट कर सकती है। न्यूयॉर्क में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का इस्कॉन मंदिर का दौरा, पूजा अर्चना के साथ बेघर लोगों के लिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन अभियान में हिस्सा लिया। मोहन भागवत ने न्यूयॉर्क के कार्यक्रम पर कई एक्टिविस्ट संगठनों का मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर प्रदर्शन भी देखा। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी फिर से हुई महंगी, 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ गया है दाम, अब दिल्ली में सीएनजी 86.98 रुपए प्रति किलो मिल रहे हैं, नई दरें लागू भी। मुंबई करों पर महंगाई के मार, 1 सितंबर से तबेले में दूध 9 रुपए महंगा होगा, 93 रुपए की जगह 102 रुपए लीटर मिलेगा। रिएक्टिन प्लस मामले में सिप्ला पर बड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र एफडीए ने पुणे सीएनएफ का ड्रग लाइसेंस रद्द कर दिया। दवाइयों के स्टॉक रिकॉर्ड में गड़बड़ी और मिस ब्रांडिंग पर सिप्ला का लाइसेंस रद्द, रिएक्टिन प्लस 11,91,000 का स्टॉक जब्त किया। बांदा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, कार्रवाई के बीच में जल निकासी रुकी तो सैकड़ों किसानों के घरों में पानी भरा। आज देशभर के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है, यूपी उत्तराखंड के अलावा बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ ओडिशा में भी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में झमाझम बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट, सैलानी उठा रहे मौसम का लुत्फ। देहरादून में भारी बारिश के बाद बढ़ा तमसन नदी का जलस्तर, निचले इलाकों में अलर्ट किया गया जारी। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी फिर से उफान पर, खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है, घाटों पर सैकड़ों दुकानें जलमग्न, आवागमन बाधित। वाराणसी में रुक रुक कर हो रही है बारिश से कई इलाकों में जलभराव, वाहन चालकों की परेशानी बढ़ी। गुवाहाटी में बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा है, लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। प्रयागराज में स्वामी नारायण मंदिर का 3 मंजिला हिस्सा भर भरा कर गिरा, निर्माण कार्य के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे में समाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। देहरादून के चक्राता में बड़ा हादसा, गहरी खाई में जा गिरी यूपी के पर्यटकों की कार, हादसे में 5 लोग घायल। गोवा के कसिनो कारोबारी पर फायरिंग, बाल बाल बची जान, मौके से कारतूस बरामद, सीसीटीवी से पुलिस
और खंगाल रहे आरोपियों को। बिजनौर के खेत में मिला 15 फीट लंबा अजगर और सांप ने बछड़े को शिकार बनाया, ग्रामीणों ने छुड़ाया, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दो गुटों में हिंसक झड़प, 2 लोग घायल, पथराव के बीच में मोर्चा संभालने पहुंचे पुलिसकर्मी घायल। गुजरात के वापी रेलवे स्टेशन पर सो रहे यात्री का मोबाइल चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद, आरोपी आरपीएफ और जीआरपी की सतर्कता से गिरफ्तार कर लिया गया। झांसी में साइबर ठगों के गैंग का भंडाफोड़, 403 करोड़ रुपए की लेनदेन, ठगी की रकम में यूएसडीटी में बदलकर विदेशी हैंडलर्स को दे देते। टीजी गढ़वाल में बड़ा हादसा, ब्रेक फेल होने की वजह से यात्री बस पलट गई, स्कूटी सवार 2 लोगों की मौत, 11 यात्री घायल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बिश्नोई गैंग के हेड श्यामलाल पुनिया समेत 2 गिरफ्तार, पुलिस को देखकर जिला कोर्ट परिसर से भागने की कर रहे थे कोशिश। बिलासपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान अलायंस एयर फ्लाइट का टायर फट गया, 34 यात्री सुरक्षित हैं और विमान से आगे की उड़ान प्रयागराज की रद्द भी कर दी गई। बिहार के मुंगेर में बीएसएनएल के अंडरग्राउंड तार चोरी की साजिश का खुलासा हुआ, ठेकेदार बन 26 मजदूरों से खुदवाई सड़क, मामले में 6 गिरफ्तार। झारखंड के लोहरदगा में बाईपास निर्माण साइट पर अपराधियों का आतंक, बदमाशों ने तोड़फोड़ की, फायरिंग भी की, गार्ड को लगी गोली, वाहन में लगी आग। छत्तीसगढ़ के जशपुर में 520 किलो गांजा जब्त, 3 वाहन समेत लगभग 3 करोड़ की संपत्ति बरामद, महिला समेत 4 तस्कर गिरफ्तार। दुर्गापुर में 21 साल के मेडिकल छात्र का हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटकता हुआ शव मिला, पुलिस कर रही जांच। दतिया में युवक के निकलते ही भरभरा कर गिरी जर्जर दीवार, बाल बाल बची उसकी जान। पुणे के सतारा हाईवे पर युवक की चाकू गोद कर हत्या, घटना सीसीटीवी में कैद, आरोपी गिरफ्तार। धनबाद में आवारा कुत्तों का आतंक, 5 साल के मासूम पर झुंड ने किया हमला, नोच कर किया घायल। जीवा विज्ञापन विवाद पर उर्वशी रौतेला का बयान, बोले क्रिएटिविटी सांस्कृतिक संवेदनशीलता की कीमत पर नहीं होनी चाहिए, रक्षाबंधन की सांस्कृतिक अहमियत का जिक्र, बोले कि परंपराओं के प्रति जागरूक तो रहना जरूरी है। एक्टर इमरान हाशमी स्वाइन फ्लू से संक्रमित है, रिपोर्ट आई पॉजिटिव, शूटिंग से लौटने के बाद तबियत बिगड़ी, डॉक्टर्स ने आराम सावधानी बरतने की सलाह दी। फिल्म प्रेम कीटाणु का दूसरा गाना रिलीज, फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आएगी। 31 अगस्त को फिल्म दायरा का ट्रेलर होगा रिलीज, फिल्म में करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन अहम रोल में। मिर्जापुर द मूवी की एडवांस बुकिंग 31 अगस्त से होगी शुरू, 4 सितंबर को रिलीज हो रही है फिल्म। फिल्म रेस 4 में सिद्धार्थ मल्होत्रा और टाइगर श्रॉफ की एंट्री, फिल्म में आमिर खान अहम रोल में आएंगे नजर। सलार 2 में हुई धराश शौरंग की एंट्री, फिल्म में प्रभास के पिता के रोल में आएंगे नजर।

0: हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली हुई थी और उस रैली के बाद में कथित शुद्धिकरण को लेकर अब राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को घेरा है, उन पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि किसी नेता की रैली की जगह पर उसका शुद्धिकरण करना, रैली की जगह का शुद्धिकरण करना गलत है। उन्होंने कहा कि संविधान के हर तरह के भेदभाव को गलत मानता है। राहुल गांधी ने इस मामले में SC ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करवाने की मांग की और उन्होंने कहा कि घटना को 20 दिन हो चुके हैं लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाया और कहा कि जब उनके पार्टी के नेता शुद्धिकरण को सही बता रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, कांग्रेस खड़गे को न्याय दिलाएगी।
1: अरे CLP राजस्थान के मंदिर जाते हैं, बीजेपी के नेता शुद्धिकरण करते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी है, मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट हैं, वो रामलीला ग्राउंड में हल्द्वानी में जाते हैं भाषण देने और वहां पर शुद्धिकरण होता है। और उनकी पार्टी का उदाहरण बिहार के चीफ मिनिस्टर मांझी जी, वो मंदिर में जाते हैं और वहां शुद्धिकरण होता है। ये करता कौन है? ये बीजेपी और RSS के लोग करते हैं। सिर्फ बीजेपी और RSS के लोग ये करते हैं और ये क्राइम है।
0: शुद्धिकरण विवाद पर राहुल गांधी के हमले के बीच में आज तक संवाददाता राहुल गौतम ने भी सवाल किया कि कांग्रेस नेताओं के ही एक गुट ने इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ न कहने को कहा था, जिस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया।
2: A blot on a democracy, but would you not agree that your own party colleagues didn't speak much on this issue as they should have spoken about it? There were reports that Mr. Mallikarjun Kharge himself expressed displeasure over this fact that he didn't get the kind of support.
3: That is not actually what happened. What happened is that he said certain people did not support him. He did not in any way say that the vast majority of Congress people didn't support him. I supported him. Whole number of other people supported him. He was pointing to a set of people who he felt didn't support him.
2: Thank you.
3: But देखिए, ये frankly मैं आपको बोलूं और मेरी इसके बारे में खड़गे जी से बात हुई, ये खड़गे जी के इशू नहीं है।
0: उत्तराखंड सरकार में मंत्री खजान दास ने राहुल गांधी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद रामलीला मैदान में कथित शुद्धिकरण अनुष्ठान पर बीजेपी पर हमला किया है। खजान दास ने कहा कि बीजेपी शुद्धिकरण अनुष्ठान का विरोध करती है। साथ ही खजान दास ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया।
4: कांग्रेस जिस तरह से अफवाह फैलाने का काम कर रही है, दलित समाज को भ्रमित करने का काम कर रही है कि वहां पर हल्द्वानी में रामला ग्राउंड में शुद्धिकरण किया गया है और जब खड़गे जी दलित समाज से आते हैं उनका अपमान हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की कोई भी मंशा नहीं रही है और भारतीय जनता पार्टी इसको अपने आप से अलग करती है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी संस्था के माध्यम से वहां हवन किया गया, शुद्धिकरण किया गया तो उनका काम है, किंतु इस तरह का भ्रम फैलाना ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी क्योंकि दलित के हितैषी की अगर हम बात करते हैं तो कभी भी दलितों के हितैषी नहीं रही है।
0: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। देवरिया पहुंचे सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग मानते हैं कि पहले लोगों के बीच एक कहावत चलती थी, देख सपाई बेटियां घबराए। सीएम योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार में अपराध और अराजकता पर लगाम लगी है और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है।
5: इस सपा का मतलब ही है लूट खसोट, इस समाजवादी पार्टी का मतलब ही है कि डकैतों का एक गिरोह। ये लोग नहीं है। 17 के पहले मां क्या कहावत थी, देख सपाई बिटिया घबराई, यानी हर बेटी चिंतित रहती थी, हर अभिभावक चिंतित रहता था क्या होगा। किसी भी मां बाप के लिए सबसे संवेदनशील मुद्दा होता है बेटी की सुरक्षा। हर मां बाप के लिए चिंता होती है, हर भाई की चिंता होती है लेकिन इन सपाइयों ने बेटी के साथ जो व्यवहार किया था, कल मैं देख रहा था, जब हम फ्री में बस यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे थे 26 को, तो समाजवादी पार्टी के बबुआ की नींद भी टूटी और वो भी एक प्रेस वार्ता जल्दी जल्दी में बुलाने लग गए।
0: संघ प्रमुख मोहन भागवत अमेरिका के दौरे पर, आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर पर मोहन भागवत एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। वैश्विक सौहार्द और सार्वभौमिक एकता का उत्सव थीम पर ही यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और 5,000 से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे, ऐसी उम्मीद है। और अब न्यूयॉर्क से हमारी सहयोगी पवनी मित्तल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। पवनी, आज न्यूयॉर्क में संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक कार्यक्रम होना है, अब इसे लेकर अमेरिका में क्या हलचल है, खासकर भारतीय समुदाय के बीच में, और साथ ही अमेरिका की राजनीति, वहां की पॉलिटिक्स और मीडिया में इस कार्यक्रम को लेकर क्या चर्चाएं हैं?
6: मुख्य मोहन भागवत के जो कार्यक्रम है उसको लेकर यहाँ पे काफी चर्चा है। मैं न्यूयॉर्क में हूँ और यही थोड़ी दूर में एक स्टेडियम है, मैडिसन स्क्वायर गार्डन, वहाँ 5,000 लोग कल आने वाले हैं ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक, जो मोहन भागवत का जो कार्यक्रम है उसको अटेंड करने वाले हैं। उनकी स्पीच तो होगी पर उसके साथ काफी नाच गाना और इंडियन कल्चर का काफी सेलिब्रेशन भी होने वाला है। सो जो लोग अटेंड करने आ रहे हैं उनको काफी एक्साइटमेंट है, वो कहते हैं वो कार्यक्रम एंजॉय करेंगे, स्पीच सुनेंगे और एक एकता का जो विषय है जो इस कार्यक्रम का है उसको वो सेलिब्रेट करने आ रहे हैं। पर ये भी है कि काफी लोग इस कार्यक्रम का विरोध कर चुके हैं, काफी ग्रुप्स हैं जिन्होंने, काफी संस्थाएं हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है, जिन्होंने धरना किया है। तो दोनों बात लेकर जो लोग अटेंड करने वाले हैं और जो लोग विरोध करने कर रहे हैं, दोनों को मिला के काफी काफी चर्चा है। उसके अलावा जो इंडियन अमेरिकन्स हैं यूएस में, वेरी पावरफुल माइनॉरिटी कहा जाता है, वन ऑफ छोटी माइनॉरिटी है पर कंपैरेटिवली अमीर है, एडुकेटेड है, और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि काफी इंडियन अमेरिकन्स हैं जो अमेरिकन राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं। न्यूयॉर्क के मेयर है ज़ोरान ममदानी, कुछ साल पहले कमला हैरिस नॉमिनी थी प्रेसिडेंट की, वो वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। तो पूरा मिला के ये काफी इंटरेस्टिंग टाइम है इंडियन अमेरिकन्स के लिए और इस कार्यक्रम के लिए यहाँ न्यूयॉर्क में।
0: ये बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
10: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
9: छक्का
10: सब कैशलेस हो गया
9: है। ओ ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ तू,
11: अभी तो चार्ज हुआ यार।
12: बैट किसका है?
13: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।

0: देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है।
1: हालांकि मुख्य सड़क आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है, लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है, दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में है। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास अमित वधवार के साथ में आशुतोष मिश्रा आज तक।
2: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती?
3: ये तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। हर तरीके की एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।

0: आपने बहुमंजिली इमारत को तिनके की तरफ बहते देखा। आपने कंक्रीट के पुल को पल भर में धराशायी होते देखा। आपने सैलाब को अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाते देखा। अब आप इन तस्वीरों को देखिए, ऐसी तस्वीर आपने पहले नहीं देखी होगी। देखिए, जब सैलाब आया तो ये विशाल पत्थर कैसे कागज के टुकड़े की तरफ बहता चला गया। सैलाब की ताकत के सामने इस पत्थर की जैसे कोई हैसियत ही नहीं रही। अब जरा अंदाजा लगाइए कि ऐसे सैलाब के सामने इंसानों की क्या स्थिति रही होगी। 26 अगस्त को तारुका इलाके में ऐसे हालात हो गए कि वजनदार पत्थर भी बेबस होकर रह गया। ये भयावह तस्वीरें नेपाल के नुआकोट जिले के त्रिशूली बाजार की हैं। काठमांडू से करीब 25 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित ये बाजार सबसे खौफनाक सैलाब की चपेट में आया। 26 अगस्त को भोटेकोशी नदी में अचानक बाढ़ आई तो बाजार में अफरा तफरी मच गई। लहरें बाजार को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रही थी। लोग जान बचाने के लिए तेजी से भाग रहे थे। जो जहां था, जिस स्थिति में था, वो बस भागे जा रहा था। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई बेबस था। मार्केट से बड़ी संख्या में गाड़ियों में सवार लोग सुरक्षित इलाके की ओर जाने की कोशिश में जुटे थे। साइकिल सवार भी भागे जा रहे थे, तो दूसरी ओर तबाही मचाता सैलाब सब कुछ बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ता जा रहा था। जब सैलाब आया तो उसके सामने किसी की कुछ नहीं चली। रास्ते में जो कुछ भी आया, सैलाब उसे रौंदता बहाता लेकर चला गया। पुल, इमारत, बड़े वाहन सब बहते चले गए। सैलाब जहां से भी गुजरा, तबाही की कहानी लिखता चला गया। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह बरेली शहर पहुंची तो वहां की तस्वीर दिल दहलाने वाली थी।
1: सबसे बड़ा प्रयास ये है कि नेपाल की जो ये लाइफलाइन इस सड़क को माना जाता है, यहाँ पर ये मलबा आ गया है और इस मलबे को जेसीबीज के साथ किसी तरीके से हटाने की कोशिश हो रही है कि कम से कम एक तरफ का रास्ता तो खुला रहे, एक तरफ का रास्ता तो चलता रहे, वरना ये इतनी फिसलन वाली पूरी जमीन है और इतनी धंसने वाली जमीन है, एक तरीके से दलदल उतर आया है यहाँ की सड़क पर कि गाड़ियां तो गाड़ियां, कोई पैदल भी यहाँ पर नहीं चल सकता है। किसी भी देश में जब कोई आपदा आती है, वहां की सेनाएं सबसे पहले जो जमीन पर है वो उतरती हैं। यहाँ पर भी नेपाल में हम देख रहे हैं कि नेपाल के जो सुरक्षा बल है, नेपाल के सैनिक है, वो सब यहाँ उतर रहे हैं और मदद कर रहे हैं आम लोगों की।
0: बरेली से श्वेता सिंह, चितवन से रोहित कुमार सिंह और काठमांडू से पंकज दास के साथ आशुतोष मिश्रा, त्रिशूली, नेपाल आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

ओवरफ्लो से नेपाल के भोटे कोशी नदी में लगातार बढ़ रहा है पानी। हाई अलर्ट पर नेपाल, मौत का आंकड़ा 626 तक पहुंचा, 24 साल से ज्यादा लापता। खड़गे के बहाने राहुल गांधी का दलित दांव, मंच का शुद्धिकरण पर घेरा, कहा संविधान और बीजेपी संघ की विचारधारा की लड़ाई है। उत्तराखंड के मंत्री बोले जांच में बीजेपी का कोई नहीं मिला। लखनऊ के जेपी इंटरनेशनल सेंटर पर हर बार सीएम योगी बोले सेफई सिंडिकेट ने 200 करोड़ का काम 800 करोड़ में भी नहीं किया पूरा, अखिलेश यादव ने लगाया था बेचने का आरोप। उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान दौरे पर रवाना प्रधानमंत्री मोदी, ताशकंद में राष्ट्रपति मिर्जियोयेव से बातचीत होगी और बिश्केक में एससीओ समिट, पुतिन शी जिनपिंग समेत कई नेताओं से मुलाकात संभव।

0: और मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में मोहन भागवत के यूनिवर्सल ऑननेस कार्यक्रम के लिए लगे बैनर पोस्टर। इस्कॉन मंदिर के संबोधन में आरएसएस प्रमुख ने कहा, दुनिया में अभी बहुत सारे टकराव और विरोधाभास है।
1: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। त्रिशूली नदी के किनारे किनारे नेपाल में दिख रहा है किस तरीके से रिहायशी इलाकों बाजारों में मौत का तांडव, बर्बादी का तांडव हर तरफ है। और त्रिशूली नदी के किनारे किनारे ही हम सब आगे बढ़ते हुए आपके लिए आज तक के जरिए वो रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं। हम अगले एक घंटे में आपको वो रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे और तमाम अपडेट्स भी बताएंगे, क्योंकि रोज मौत का आंकड़ा जो है वो कुछ और बढ़ जा रहा है। जो अस्पताल हैं उनके लिए लाशों को रख पाना बहुत मुश्किल इस समय प्रतीत हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही जो लोग अभी भी अपने घर वालों का इंतजार कर रहे हैं, उनकी आंखें पथराई हुई हैं। वो उस कैंप के बाहर लगातार इंतजार कर रहे हैं जहां रिलीफ के साथ उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू किए हुए कुछ लोगों के साथ लौटते हैं। लोग सोचते हैं कहीं कोई अपना लौट रहा हो। नेपाल में मरने वालों की संख्या 626 बताई जा रही है और जो लापता हैं उनका कुल आंकड़ा 2400 इस समय हो चुका है। जहां तक जो रेस्क्यू टीमें हैं पहुंच रही हैं, वहां तक आज तक की टीम पहुंचकर आपके लिए वो रिपोर्ट्स ला रही है। उसके आगे हेलीकॉप्टर्स भी लैंड नहीं कर पा रहे, लेकिन उन हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो नेपाली सेना है, जो इनके जवान हैं, वो सब जाकर देखने

0: हुए हैं, वहां पर भयंकर तबाही देखने को मिली है। ऐसी ही एक इलाके से देखिए मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा की ये रिपोर्ट।
1: तिब्बत नेपाल सीमा पर बसा नेपाल का जिला रसुआ वो जगह है जहां से नेपाल में आपदा का आगमन हुआ। ये दुर्गम इलाका अब पूरी तरह से मुख्य सड़कों से कट गया है। छब्बीस अगस्त को जब यहां तबाही आई तो उसके बाद से कोई भी शख्स सड़क मार्ग से वहां पहुंच नहीं सका, क्योंकि रसुआ को बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला त्रिशूली नेशनल हाईवे कई जगहों पर बह गया है, रास्ता बंद है। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा नुआकोट से रसुआ की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सफर आसान नहीं है। हाईवे पर कई फीट तक मलबा जमा है। भोटे कोशी की विकराल धारा कमजोर तो हुई है, लेकिन नदी ने जो विनाश मचाया वो वैसा ही है।
2: भटकोशी नदी अपने साथ जो तबाही लेकर के आई उसने भद्रावती गांव को पूरी तरह उजाड़ दिया। ये सड़क आगे में जाने की भी कोशिश करूं तो नहीं जा सकता, क्योंकि 50 मीटर के बाद सब कुछ एकदम ठप पड़ चुका है। आगे दलदल है और जो लोग हैं उस पार है वो पूरी तरह डिस्कनेक्टेड है। अब जो लोग इस पार गांव में बचे भी हुए हैं, जो ऊपर चले गए थे, उन तक मदद पहुंचाने का एकमात्र जरिया है कि हेलीकॉप्टर के जरिए उन तक रसद, खाना, दवाइयां पहुंचाई जाए, क्योंकि लैंडिंग भी नहीं कर सकते। अब आप सोचिए कि ये भटकोशी की जो सीमा पूरी आपको दिखाई दे रही है, इसके आगे जो ऊंचा इलाका है वो मैदानी इलाका, वहां पर खेत थे, दुकान, मकान, घर सब कुछ थे, लेकिन जब पानी अपने साथ ये सैलाब लेकर के आई तो यहां तक, अब आप पानी के स्तर को इससे अगर तुलना कर लें तो ये आपको लगेगा कि 40 से 50 फीट की ऊंचाई है। 50 फीट की ऊंचाई तक अगर मलबा आता है तो उसके बाद नदी अपने साथ कितना बड़ा कटाव करती है वो आपको इन तस्वीरों के जरिए पता चलेगा। देखिए इस कटाव को, इसने अपने साथ सब कुछ बहा दिया है, कुछ भी यहाँ नहीं बचा है। और यहाँ आकर के जो मलबा दिखता है ये बेहद डरावना मंजर है। आगे जो नदियां हैं, ये नदी अपने आप में कई धाराओं में बट गई है और यही भटकोशी आगे जाकर के त्रिशूली, जिसको त्रिशूली के नाम से भी जाना जाता है, ये इतनी धारा लेकर के आई कि आगे पहाड़, चट्टान, जो मकान वहां पर कुछ प्रोजेक्ट थे, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट थे, सब कुछ वो अपने साथ बहा ले गई। इतनी तबाही मचाई है कि जब हम ऊंचाई पर आ रहे हैं उन इलाकों के बेहद नजदीक, आज तक रसुआ के बेहद करीब भद्रावती इलाके तक पहुंचा है। एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे तबाही की शुरुआत जिन इलाकों से हुई, जैसे जैसे नदी के साथ मलबा आगे बढ़ा, उसके रास्ते में जो कुछ भी आया वो उस मलबे से ढक गया।
1: नुआकोट और रसुआ जिले की सीमा पर बेतरावती पड़ता है। बेतरावती में भी 26 अगस्त को प्रलय आ गई थी। जब भोटे कोशी नदी अपने प्रवाह से कई गुना अधिक वेग से बहने लगी तो ये गुलजार इलाका भी निर्जन हो गया। नदी के उस पार उन गांवों में कोई जिंदा बचा है या नहीं ये कहना मुश्किल है।
2: अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ भटकोशी का स्तर कितना ऊपर आया था। ये देखिए नदी का नीचे दिखाई दे रहा है आपको, ये लगभग 70 से 80 फीट नीचे है। अब मैं जहां तक हूँ यहाँ तक मलबा टच करके गया था। ये जो निशान है काली मिट्टी, इससे आप इसके साथ जो आए आप समझिए कि 80-90 फीट पानी यहाँ चढ़ा था। हम इस समय ऊंचाई पर हैं, आगे स्लोप है, तो पानी अपने साथ बोल्डर, पत्थर लेकर के जिस रफ्तार से, इसकी धारा देख लीजिए, ये जो धारा है ये लगभग 200-300 मीटर चौड़ी है। अब 300 मीटर चौड़ाई में पानी अपने प्रवाह के साथ अगर 80-90 फीट तक ऊंचाई पर बह रही है तो आप समझिए कि उसमें ताकत कितनी होगी। और इसीलिए वो नीचे गई तो का आगे पास जो एक डाइवर्जन, एक चट्टान है, दरअसल वो पानी को डिवाइड करती, उसकी रास्ता बदल देती थी, उसने पहाड़ को ही हटा दिया अपने रास्ते से तो रास्ता बदल गया। और इसी के साथ कटाव इस कदर किया है, उस कटाव के साथ जो मलबा था वो भी नीचे गया, उसके रास्ते में पेड़, जंगल, जो कुछ भी आया सब अपने साथ उस मलबे को बनाते हुए आगे गांव को, शहरों को, कस्बों को तबाह करती ये भटकोशी की धारा चली गई। ये भटकोशी आपदा का कारण बन गई।
1: भोटे कोशी नदी ही आगे चलकर त्रिशूली नदी बन जाती है। 26 अगस्त को भोटे कोशी के पानी ने बेतरावती को बहा ले जाने के बाद नुआकोट में तबाही मचा दी।
2: से आगे पहाड़ों के रास्ते अब मैं जहां आया हूं मेरे पीछे बेतरावती शुरू होता है। बेतरावती सीमा है जो कि रसुआ को जोड़ती है। हम रसुआ से अब सिर्फ 25 किलोमीटर पीछे हैं, लेकिन इस सैलाब के चलते हुआ क्या है कि आगे ये रास्ता खत्म हो चुका है। अब ना तो पहाड़ों से कोई रास्ता है, ना ही आप कोई और रास्ते से जा सकते हैं। और इस कदर दलदल है मलबा, जहां मेरे पीछे जो है ये वो भटकोशी नदी है, वो त्रिशूली नदी जो इस सैलाब का कारण बढ़ गई। इस भटकोशी के चलते जो है मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इन रास्तों पर चलना इतना मुश्किल है। देखिए आगे हम कोशिश भी करें कि वहां तक जाके मैं आपको तस्वीरें दिखा सकूं, लेकिन ये सब कुछ पूरी तरह से दलदल में तब्दील है। तो बहुत आगे आप

0: नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ जो इलाका है, ये देखिए मेरे पीछे भूमि का कटान है, भटकोशी जैसे आगे आई है, कटान ले गई है। इसके पीछे एम्बैंकमेंट इलाके हैं जहां पर वो पानी का बड़ा रिजर्वायर है। ये जो सड़क है आगे जो है भद्रावती को, और फिर यही रास्ता आगे रुसवा की ओर जाता है। आज तक रुसवा के सबसे करीब पहुंचा है भद्रावती गांव के पास। आप सबसे पहले वो तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे एक पूरा गांव जहां पर हाइड्रो प्रोजेक्ट के पुल थे, पाइपलाइन की सप्लाई थी, वो सब कुछ इस समय जमी दोज मलबे में तब्दील है। यहां अब आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ना लोग दिखाई पड़ते हैं, खेत मकान दुकान सब कुछ बह चुके हैं। और ठीक मेरे पीछे वो भटकोशी नदी जो है वो बह रही है। इस इलाके में आना अभी बेहद मुश्किल है, जानलेवा है, जोखिम है। हम आपको तस्वीरें दिखाने लाए कि कैसे पूरा का पूरा ये सड़क मार्ग बह चुका है। आप सोचिए कि इसे दोबारा से रिस्टोर करने के लिए, वापस रुसवा को जोड़ने के लिए जो मशक्कत है वो बहुत ज्यादा होगी।
1: नेपाल में जो तबाही हुई उससे उबरने में समय लगेगा। अभी नेपाल सरकार की प्राथमिकता यह है कि लोगों का रेस्क्यू किया जाए, फिर कनेक्टिविटी और बाकी कार्यों को भी ठीक किया जाएगा। रसुवा नुआकोटी बॉर्डर से आशुतोष मिश्रा, नेपाल आज तक।
2: आशुतोष ने एक इलाके की रिपोर्ट आपको दिखाई, लेकिन इसके ठीक बगल में जो दूसरा इलाका है वहां पर भी मंजर कुछ अलग नहीं है। वहां पर भी आप देखेंगे कि जितने भी बैंक हैं, रेस्टोरेंट हैं, घर हैं, वो सब मलबे के नीचे नजर आ रहे हैं। वहां के हालात देखिए मेरी इस रिपोर्ट में।
3: सबसे बुरी तरीके से प्रभावित जो जिला है नेपाल का, त्रासदी के बाद उस जिले में उसके एक रिहायशी इलाके में आए हैं। ये ऋषिका है। ऋषिका, पूरा नाम क्या हुआ आपका?
4: मेरा नाम पूरा नेम है ऋषिका कुमारी कलवार। मैं
3: किस क्लास में पढ़ती हूँ?
4: मैं अभी 12 में पढ़ती हूँ, काठमांडू।
3: अच्छा, तो यहाँ पर तुम्हारा घर था जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ है। ये क्या क्या है, पूरा एरिया हमको समझाओ कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये क्या था?
4: ये किसी विकास बैंक है जहाँ पे, मतलब यहाँ के नजदीक बैंक पे यही था,
3: ये बैंक था। और ये ट्रक तो कैसे गिर गया?
4: ये ट्रक यहाँ पे जस्ट लेके पार्किंग की तरह था ना यहाँ पे, तो ये पूरा धस गया। हम लोग का भी ट्रक धस गया है, उधर ही है, हम लोग का भी वैसे ही हो गया। यहाँ पे एक और ट्रक था, वो भी किसी का अंदर दबा हुआ है, उधर वहाँ पे भी ट्रक है।
3: अच्छा, ये पार्किंग था तो सबका, जिसका भी ट्रक था वो यहाँ पे धस गया है जी सबका। और ऐसे पानी यहाँ पर चलने लगा है
4: जी यहाँ पे। तो ये तो अभी बहुत ठीक है, दो दिन पहले तो ये जो खोला जो नदी है, रोड है, सब एक ही था। ये स्टडे तो यहाँ पे साइड साइड से, हम लोग तो कल गए थे लोग, ऊपर से ऊपर गए थे लोग, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। ये पूरा दलदल
3: ऊपर से होके गए थे
4: जी, हम लोग ऊपर से होके गए थे लोग।
3: अच्छा, पर आज से नीचे आ सकते,
4: आज से नीचे आ सकते बलडोजर से। कुछ
3: जो पूरा मलबा था उसको हटा दिया, नहीं तो उसमें तो पैर जा रहा था अंदर
4: जी, जी,
3: बिल्कुल
4: जी।
3: पर नदी आप देख के डर लग रहा है, इतना
4: डर तो लगेगा ही। अब डर क्यों, अब स्ट्रांग बन के रहना है, डरने से कुछ होने वाला तो अब है नहीं, तो अब क्या ही कर सकते हैं लोग।
3: यहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ था उस टाइम?
4: उस टाइम मतलब मेरे पास, मैं भी काठमांडू में थी, मैं तो जस्ट परसों शाम को आई, मुझे भी उतना खास आइडिया नहीं है। लेकिन जब फोन नहीं लगा और कॉल आया मेरे पास कि पूरा इधर बड़ा पानी आ गया, सुनामी की तरह हो गया है, तो उसके बाद फोन पे फोन लगा रही थी मेरे पेरेंट्स को, फोन रिसीव नहीं हो रहा था। बट मतलब किसी के साथ इन्फॉर्मेशन मिला कि सब कुछ ठीक है लोग। और मेरे पेरेंट्स को 10 देर पहले इन्फॉर्म नहीं हुआ कि पानी आया है, बस वो लोग बस गए, वही मेरे लिए बहुत काफी है।
3: ऐसे पॉइंट करके दिखाओ तो उसको समझ में आएगा, पॉइंट करके दिखाओ।
4: वो जंगला खुला हुआ है ना, जो हल्का इधर हुआ है, जो ग्रीन कलर का हल्का दिखाई दे रहा है।
3: अच्छा, जो पूरी तरीके से नीचे है, सिर्फ एक मंजिल दिख रहा है जिसका ऊपर।
4: जी जी, जो दस्ता है ना ऊपर का, उस साइड में है ना, वही मेरा घर है।
3: कितनी देर पहले मम्मी पापा निकल पाए थे?
4: मम्मी पापा बोल रहे थे अगर हम लोग ऐसे मुड़ के पीछे देखते लोग तो शायद पता नहीं क्या होता।
3: मतलब मुड़ के पीछे देखने का भी टाइम नहीं था,
4: नहीं था।
3: न किसी का काम बचा, ना घर बचा,
4: कुछ भी नहीं बचा, बस आदमी बच गए ना, वही हम लोग के लिए बहुत काफी। हम लोग मैं खुशी हूँ कि मेरे पेरेंट्स बच गए, बस वही काफी है। पैसा तो धन बाद में भी हो सकता है ना, पहले आदमी बच गए वही काफी है।
3: बहुत अच्छी बात बोली है तुमने, थैंक यू ऋषिका, अपना गांव हमें, अपना इलाका दिखाने के लिए। तो अब इसके आगे जो है ना, ये हौसले की कहानी हो जाती है, क्योंकि जब सब कुछ तहस नहस हो चुका होता है, जिसके आगे कुछ बचता नहीं है, फिर यही सोच यही हौसला काम आता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, नवाकोटा, आज तक।
2: मलबे को हटाते हुए, उसको काटते हुए, बुलडोजर्स का इस्तेमाल करके, जेसीबी के जरिए किसी तरीके से जो नेपाली सेना, नेपाल पुलिस के जो जवान हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। ढूंगे बाजार का जो एरिया है वहां पर आज सड़क का एक्सेस संभव हो पाया, क्या सामने आया इस रिपोर्ट में देखिए।
3: क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं 26 अगस्त के बाद से?
5: बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब यहाँ पे जो है इस सड़क का हाइट बढ़ गया है, खोला इधर थोड़ा सा उधर से इधर साइड में आ गया है पहले से।
3: मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि ये बैंक और ये जो
5: डेवलपमेंट विकास बैंक
3: है, ये सब नीचे है और सड़क ऊपर है, ऐसा था या नहीं?
5: लग रहा है नहीं, पहले नहीं था लेकिन अभी लग रहा है। थोड़ा सा नीचे तो था लेकिन कम था।
3: अच्छा, तो अब और नदी इसी तरीके से?
5: नदी तो बहुत परिवर्तन हुआ है पहले।
3: क्या परिवर्तन हुआ है?
5: इसका चौड़ाई बढ़ गया है पहले से।
3: हाँ।
5: ये पूरा खेत था इसके पछाड़ी, पूरे खेत में
3: ये खेत था,
5: खेत था इसके पछाड़ी।
3: अच्छा।
5: इस साइड में पूरे घर था यहाँ। हाँ। पे हर आदमी अपना बिजनेस व्यवसाय करता था लोग।
3: आपकी कौन मिसिंग है?
6: मेरी दीदी मिसिंग है और भांजी भी, तीन भांजी, एक हाँ। दीदी और एक नतनी मिसिंग है।
3: कहाँ रह रहे थे
6: वो लोग? रसुआ और नुआकोट के बॉर्डर पे रहते थे। क्या कहता हूँ मैं,
3: रसुआ नुआकोट के बॉर्डर पे। तो आप हर उस जगह आके ढूंढ रहे हैं कि
6: हर जगह जाने के वहाँ कोई साधन ही नहीं है।
3: हाँ।
6: और वहाँ तक मिसिंग ही है और जा नहीं पा रहे हैं।
3: फोटो एक बार दिखा दीजिए कैमरे पे।
6: ये भांजी हुई, ये भांजी की लड़की हुई।
3: कितने साल की है
6: ये बच्ची? 2 साल की है।
3: 2 साल की
6: जी। ये दीदी हुई।
3: हाँ।
6: ये भांजी है, ये भी भांजी है।
3: तो ये मिल नहीं पा रहे हैं?
6: नहीं मिल पा रहे हैं।
3: आप हर जगह जाके बस ढूंढ रहे हैं?
6: ढूंढ रहे हैं।
7: और उस टाइम में सब खबर आ गया, भागो भागो बोल के।
3: हाँ।
7: सब खाना खा खा के ये रास्ता हो गए।
3: आंखों के सामने आपने आते हुए देखा?
7: हाँ।
3: कैसा डरावना था?
7: बहुत एकदम डरावना था। बहुत
3: नुकसान कितना हो गया आपको?
7: नुकसान था उधर 15 रूम था गेस्ट रूम होटल का, अटैच बाथरूम रूम, एसी रूम, हॉल था, डाइनिंग, किचन। नुकसान तो कितना आप सरकार ने उसको
3: जान किसी की नहीं गई।
2: नेपाल की मदद करने के लिए तमाम देश खड़े हुए, भारत सबसे पहले खड़ा हुआ क्योंकि पड़ोसी देश हैं हम और सबसे पहला कर्तव्य देश का बन रहा था। तो पहले रिलीफ मटेरियल भेजे गए, भारत की तरफ से ये कहा गया कि आप अगर हमारी एक्सपर्टीज चाहते हैं तो वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। नेपाल की तरफ से कहा गया कि वो टनल रेस्क्यू के जो एक्सपर्ट्स हैं अगर उन्हें भेजा जा सके। तो बड़ी खबर यही आ रही है कि भारत की तरफ से जो टनल रेस्क्यू के एक्सपर्ट्स हैं उनको नेपाल के लिए रवाना कर दिया गया है। जैसे ही नेपाल की तरफ से कहा गया वैसे ही एयरफोर्स का विमान था वो रेडी था, उनको लेकर वो वहां आगे निकला है। टीम यहां पर पहुंची है, टीम टनल रेस्क्यू में एक्सपर्ट है। इसके अलावा जो बेली ब्रिजेस हैं, क्योंकि यहां पर ब्रिजेस का बहुत नुकसान हुआ है, पुलों का बहुत नुकसान हुआ है, चाहे वो मोटरेबल जो ब्रिजेस हैं वो हो या सस्पेंशन ब्रिजेस, पूरे के पूरे धुल गए हैं। तो बेली ब्रिजेस को बनाने में नेपाल ने मदद मांगी है जो भारत उसे देने वाला है।

0: काठमांडू के रनवे पर लैंड करता भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा मालवाहक विमान इस बात का प्रमाण है कि जब विपदा आती है तो भारत फर्स्ट रिस्पोंडेंट बनकर आगे आता है। पड़ोसी देश नेपाल सदी की सबसे बड़ी त्रासदी की चपेट में है, ऐसे में भारत नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। भारतीय वायुसेना के विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से उड़ते हैं और नेपाल के काठमांडू में जरूरी सामग्री पहुंचाकर वापस आ जाते हैं और फिर अगली खेप की तैयारी में जुट जाते हैं। नेपाल में तबाही इस कदर हुई है कि बाजार, गांव, शहर सब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। जरूरी सामान का संकट है, आपातकालीन दवाएं, मूलभूत सुविधाओं का अभाव हो गया है। ऐसे में भारत एक के बाद एक खेप भेज रहा है ताकि नेपाल के आपदा पीड़ितों की सहायता हो सके। तबाही की इन तस्वीरों के बीच इंसान पूरी तरह से लाचार नजर आ रहा है। बस कोशिश जारी है जिंदगियों को बचाने की। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दुनिया के कई देशों के नागरिक नेपाल में लापता हैं। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन पूरी ताकत से चल रहा है। भारत समेत कई देशों ने तलाशी अभियान में सहायता की बात कही, लेकिन नेपाल सरकार ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि साल 2015 के भूकंप में विदेशी मदद से रेस्क्यू करने का अनुभव ठीक नहीं था, इसलिए तलाशी अभियान में विदेशी मदद नहीं चाहिए। नेपाल सरकार ने साफ किया है कि तलाशी में मदद नहीं चाहिए, लेकिन बेली पुल बनाने और सुरंग में रेस्क्यू के लिए भारत से मदद मांगी गई है।
1: जो भी हमको रखता है वो हम कर रहे हैं। हमारे काम भी एक नागरिक को सुरक्षित करने की और वहाँ पर जो भी हो रखता है नेपाल पूरी अब जो सहायता प्रदान कर सकते हैं उसके अनुभव की बात है वो भी कर रहे हैं।
2: हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही, लेकिन नेपाल की इस त्रासदी से जुड़े हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते,
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।

पड़ोसी देश नेपाल इस सदी की सबसे बड़ी तबाही से गुजरा है। 26 अगस्त को आए प्रलय ने नेपाल के त्रासदी प्रभावित इलाकों का भूगोल बदल दिया है। जहां बाजार था वहां मलबा है, जहां आशियाना था वहां पत्थरों का ढेर है। नेपाल के फ्लैश फ्लड ने तिब्बत बॉर्डर से लेकर रसुआ, त्रिशूली, नुवाकुंड तक की जियोग्राफी बदल दी है। तबाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सैकड़ों शव बरामद किए जा चुके हैं, हजारों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, कई परिवार अपनों की तलाश में हैं, जबकि दुर्गम इलाकों तक पहुंचना राहत टीमों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। बाढ़ और मलबे के बीच फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। जिन इलाकों का सड़क संपर्क टूट गया है वहां हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। लेकिन नेपाल के सामने सबसे बड़ा सवाल अब भी खतरे का है। ग्लेशियर और मलबे से बनी झीलों में पानी बढ़ने की वजह से दोबारा बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। इस तबाही ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी पूरी तरह प्रभावित किया है। कई परियोजनाओं में मजदूरों के फंसे होने की आशंका है और सुरंगों में तलाश अभियान चलाया जा रहा है। यानी नेपाल में एक तरफ जिंदगी बचाने की जंग है तो दूसरी तरफ नई बाढ़ का खतरा चुनौती बढ़ा रहा है। नेपाल में तबाही का यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। रेस्क्यू टीमें मलबे में जिंदगी तलाश रही हैं। परिजनों को अपनों के लौटने का इंतजार है और प्रशासन की सबसे बड़ी कोशिश है कि किसी नई आपदा से पहले लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा सके। आज तक ब्यूरो,

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

नेपाल में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन ने ऐसा कहर बरपाया कि कई इलाके मलबे में तब्दील हो गए। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 2000 लोग अब भी लापता हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अलग अलग देशों के कई विदेशी नागरिकों को सुरक्षित खोज लिया गया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक 33 देशों के 632 विदेशी नागरिक इस आपदा से प्रभावित हुए। इनमें से 121 लोगों को खोज निकाला गया है, लेकिन 511 विदेशी नागरिक अब भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं नेपाल आपदा प्राधिकरण के मुताबिक कुल 1924 लोगों का अब भी कोई पता नहीं चल पाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच नेपाल के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। भोटे कोशी नदी के ऊपरी हिस्से में जलस्तर तेजी से बढ़ने की खबर है। चीनी अधिकारियों से मिली जानकारी के बाद रसुआ जिला प्रशासन अलर्ट पर है। नेपाल के बाढ़ पूर्वानुमान महाशाखा और आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है। त्रिशूली नदी के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की गई है। मुगलिंग तक नदी किनारे रहने वाले लोग, यात्री और राहत कर्मी खास तौर पर सतर्क रहें। यानी एक तरफ मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है, तो दूसरी तरफ पानी का बढ़ता स्तर नई आफत का संकेत दे रहा है। नेपाल की सेना, सशस्त्र पुलिस बल, नेपाल पुलिस, स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मी लगातार राहत और बचाव अभियान में जुटे हैं। घायलों को इलाज मुहैया कराया जा रहा है। प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना और फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना है। नेपाल सरकार का कहना है कि पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए जरूरत के मुताबिक विदेशों से मदद ली जाएगी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि आपदा का असर देश के सिर्फ कुछ हिस्सों में है, इसलिए नेपाल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और पर्यटकों के लिए खुला है। लापता और फंसे विदेशी नागरिकों की जानकारी जुटाने के लिए नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी बनाया है। इसके जरिए अलग अलग देशों के दूतावासों के साथ लगातार संपर्क और समन्वय किया जा रहा है। नेपाल में तबाही का मंजर अभी थमा नहीं है। मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है। हजारों परिवार अपनों की सलामती की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और अब भोटे कोशी और त्रिशूली में बढ़ता जल स्तर एक नई चुनौती बन गया है। यानी नेपाल में इस वक्त रेस्क्यू भी जारी है और खतरे की घंटी भी बज रही है। आज तक ब्यूरो

ओवरफ्लो से नेपाल की भोटे कोशी नदी में लगातार बढ़ रहा है पानी। हाई अलर्ट पर नेपाल। मौत का आंकड़ा 626 तक पहुंचा। 24 से ज्यादा लोग अब भी लापता। खड़गे के बहाने राहुल गांधी का दलित दांव। मंच के शुद्धिकरण पर घेरा। कहा संविधान और बीजेपी संघ की विचारधारा की लड़ाई। उत्तराखंड के मंत्री बोले जांच में बीजेपी का कोई नहीं मिला। लखनऊ के जेबी इंटरनेशनल सेंटर पर आर पार। सीएम योगी बोले सफाई सिंडिकेट ने 200 करोड़ रुपए का काम 800 करोड़ में भी नहीं किया पूरा। अखिलेश यादव ने लगाया था बेचने का आरोप। उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। ताशकंद में राष्ट्रपति मिर्जियोयेव से होगी वार्ता। बिश्केक में एससीओ समिट। पुतिन और शी जिनपिंग समेत कई नेताओं के साथ मुलाकात संभव। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मोहन भागवत के यूनिवर्सल ऑनेंस कार्यक्रम के लगे बैनर और पोस्टर। इस्कॉन मंदिर के संबोधन में आरएसएस प्रमुख ने कहा दुनिया में अब भी बहुत सारे टकराव और विरोधाभास।

नमस्कार, 4 बजे के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। नेपाल में कुदरत की मार से भीषण तबाही मची है। नेपाल में आपदा से अब तक करीबन 626 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2000 से ज्यादा लोग अब भी लापता है। इस बीच नेपाल में एक बार फिर से दहशत के साय में है। लैंडस्लाइड से चीन में बनी एक नई झील के टूटने के लगातार खतरा मंडराने लगा है, जिसे लेकर चीन ने नेपाल को चेतावनी भी दी है। झील में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर झील टूटी तो फिर भोटे कोशी और त्रिशूली नदी में जलस्तर में तेजी से इजाफा हो सकता है और एक बार फिर से कुदरत का विनाश देखा जा सकता है। इस बीच अपनों की तलाश में लगातार तबाही के बीच लोग अपनों को तलाश भी करें और ये मंजर अब भी जारी है। लेकिन आपको बता दें कि नेपाल सदी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जल प्रलय ने उसके कई शहरों गांव जैसे का वजूद तक मिटा दिया है। 600 से ज्यादा करीबन लोग अब भी लगातार लापता है और हजारों लोग अब भी लापता, उनकी तलाश जारी है। स्थानीय नागरिक, पुलिस प्रशासन, सेना सब रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। इधर भारत सरकार ने भी विमानों के जरिए राहत सामग्री पहुंचाना जारी रखा हुआ है। यहां तक कि तकनीकी टीमों को भी सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए भेजा गया है। बीच बीच में मौसम भी खराब हो रहा है और इसी बीच लगातार राहत काम भी रुक रुक कर सही लेकिन लगातार जारी है और ऑपरेशंस को लगातार कई बार रोकना पड़ा, लेकिन फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशंस इन विपरीत परिस्थितियों में जारी किया जा रहा है और लोगों को की तलाश जारी है। और तमाम इन चुनौतियों के बीच नेपाल अब भी खड़ा हुआ, लगातार लड़ रहा है। अपने नागरिकों और विदेश में आए सैलानियों को बचाने की कोशिशें लगातार रेस्क्यू टीम कर रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस मुश्किल घड़ी में नेपाल के लिए मुसीबत अब भी वो झील ही है जहां से लगातार अब भी लोग फंसे हुए। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।

0: 625 से ज्यादा लोगों की मौत। दो हजार 500 से ज्यादा लोग लापता, 300 से ज्यादा भारतीयों की तलाश जारी, 5000 लोगों का रेस्क्यू। जहां तक नजर दौड़ाओ वहीं तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। जिंदगी मानो थम सी गई है। एक तरफ खराब मौसम और टूटे रास्तों की वजह से रेस्क्यू अभियान में दिक्कतों का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ जल प्रलय का खतरा अभी भी नेपाल से टला नहीं है। जहां जहां जल प्रलय ने तबाही का तांडव मचाया था वहां न सिर्फ कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी बल्कि ये इलाके अब कई साल पीछे चले गए हैं। मकान, दुकान, दफ्तर बह गए हैं और तेज रफ्तार से आया पानी अब पीछे छोड़ गया है मलबा और बर्बादी के निशान। ऐसा ही एक इलाका है नुवाकोट का ढूंगे बाजार, जहां के हालात का जायजा लिया आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने।
1: इसके आगे जाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, ये लोगों के घर थे, मकान थे, सब कुछ कैसे पूरी तरह बर्बाद हो गया है। एक ऐसी आपदा और मानो जैसे कयामत बरसी हो शहर पर, सब कुछ तबाह कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5 मंजिल, नीचे की जो 2 मंजिल है वो पूरी तरह मलबे में जा चुकी है और यहीं से ऊंचाई से सोचिए पूरा मलबा आया हुआ होगा। लोग जो घर में होंगे, अगर उन्होंने भागने की भी कोशिश की होगी, वो कैसे भागे होंगे? ऊपरी मंजिल के लोग नीचे कैसे आए होंगे? और क्या इस मलबे में अभी, क्योंकि यहां से लगभग 30 से ज्यादा लोगों को यहां से बरामद किए गए थे शव, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया था, यहां से एयरलिफ्ट किया गया था, लेकिन न जाने कितने लोग, क्योंकि 10,000 की आबादी वाला शहर, न जाने कितने लोग इस शहर के मलबे में अभी भी।
0: अब इस जगह को देखिए, कैसे एक पूरे के पूरे बैंक का नामो निशान मिट गया और ट्रक मलबे में दब गया।
2: सबसे बुरी तरीके से प्रभावित जो जिला है नेपाल का, त्रासदी के बाद उस जिले में उसके एक रिहायशी इलाके में आए हैं। ये ऋषिका हैं। ऋषिका, पूरा नाम क्या हुआ आपका?
3: मेरा नाम पूरा नेम है ऋषिका कुमारी कलवार। मैं
2: किस क्लास में पढ़ती हूँ?
3: मैं अभी 12 में पढ़ती हूँ, काठमांडू।
2: अच्छा, तो यहाँ पर तुम्हारा घर था जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ है। ये क्या क्या है, पूरा एरिया हमको समझाओ कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये क्या था?
3: ये कृषि विकास बैंक है यहाँ पे, मतलब यहाँ के नजदीक बैंक पे यही था,
2: ये बैंक था। हाँ। और ये ट्रक तो कैसे गिर गया?
3: ये ट्रक यहाँ पे जस्ट लेके पार्किंग की तरह था ना यहाँ पे, तो ये पूरा धस गया। हम लोग का भी ट्रक धस गया है, उधर भी है, वैसे ही हो गया। यहाँ पे एक और ट्रक था, वो भी किसी के अंदर दबा हुआ है, एक उधर।
0: इन सब के बीच कई लोगों को अभी भी अपनों का इंतजार है। लोग रेस्क्यू सेंटरों से लेकर अस्पतालों तक अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। कहीं से कोई हेलीकॉप्टर आता है तो लोग दौड़ पड़ते हैं इस आस के साथ कि शायद उनके किसी अपने की एक झलक दिख जाए। किसी को मायूसी हाथ लगती है तो कोई किस्मत का धनी निकलता है।
4: आज बजे बात हुई थी उससे, और उसके बाद कुछ भी पता नहीं है। किसी से हम लोग को कहीं किसी से कोई
5: पता नहीं है, किधर है मालूम नहीं है, हम बहुत दुखी है।
6: कॉल किया, कॉल नहीं लगा, इधर गांव में भी ढूंढ रहा है, नहीं मिला। अभी हम लोग भी हॉस्पिटल इधर ढूंढ रहे, नहीं मिला।
0: इस बीच भारत युद्ध स्तर पर नेपाल की मदद करने में जुटा हुआ है। सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए भारत ने एक्सपर्ट टीम भेजी है जो नेपाल पहुंच चुकी है। एक के बाद एक भारतीय वायुसेना के विमान उड़ान भर रहे हैं और काठमांडू में सहायता सामग्री पहुंचाकर लौट रहे हैं। नेपाल की सबसे बड़ी दिक्कत रास्तों के तबाह होने और पुलों के बर्बाद होने से और बढ़ गई है। इसका असर न सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन पर हो रहा है, कई शहरों और गांवों को अपने पैरों पर फिर खड़ा करने में भी लंबे वक्त तक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी को देखते हुए नेपाल ने पुल बनाने और सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत से मदद मांगी है।
7: रखता है वो हम कर रहे हैं, मेरे काम भी एक नागरिक को सुरक्षित करने की, और वहाँ पर जो भी हो सकता है नेपाल पूरी जो सहायता प्रदान कर सकते हैं उनके अनुरोध की बात है वो भी कर रहे हैं।
0: इस त्रासदी से उबरने के लिए हर कोई अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन कुदरत के अपने ही नियम हैं, कायदे हैं और उसके आगे सब विवश हैं। कई इलाकों में कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे बचाव अभियान रोकना पड़ रहा है। नेपाल में ग्राउंड जीरो से श्वेता सिंह और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
8: तो आपने अभी हमारी ये विस्तृत रिपोर्ट देखी, लेकिन अब आपको सीधे लिए चलते हैं नेपाल, जहां पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ रोहित सिंह भी नेपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आशुतोष मिश्रा का रुख करता हूं। आशुतोष, आप पहले दिन से लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, आप लगातार तस्वीरें भेज रहे हैं जहां पर लोगों को बचाया जा रहा है या फिर जो उनके रिलीफ कैंप्स बनाए गए, अभी ताजा हालात कैसे हैं? क्योंकि अभी आंकड़ा बताता है कि 2400 से ज्यादा लोग लापता है। रेस्क्यू टीम्स कौन कौन से इलाकों में सबसे ज्यादा इस समय इनको खोजने की कोशिश कर रही है?
1: मरने वालों का आंकड़ा भी सुबह 600 से ज्यादा हो चुका है और संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती दरअसल बाधा ये है कि आपको यहां पर सर्च रेस्क्यू इवैक ऑपरेशन के लिए अपने फुट सोल्जर्स को, आर्मी को, पुलिस को मैदान में उतारना है और फिर वहां से लिफ्ट करना है। मैं आपके पीछे, मुझे जो गड़गड़ाहट आपको सुनाई दे रही है ये हेलीपैड है, लेकिन ठीक इस हेलीपैड का आप सोचिए कि यहां हेलीपैड है और उसके ठीक बगल में इस इलाकों में अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये पहाड़ी इलाका है जिसके ठीक पीछे सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर आपको जो है तिब्बत नजर आएगा। लेकिन जो नदी सबसे ज्यादा तबाही लेकर के, देखिए ये है वो भटकोशी, यही नदी है जो तबाही की वजह बनी है और अभी भी देखिए ज्यादातर पानी का स्तर कम हुआ है, लेकिन आप सोचिए कि नदी की धारा यहाँ है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का स्तर कितना ऊपर आया था। और ये आप बटार की तस्वीरें देख रहे हैं, बटार के साथ मैं आप अगर ले चलूं तो यहाँ पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट था, पावर प्रोजेक्ट था सोलर का, ये देखिए पूरी तरह धराशायी हो गई। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं उस सोलर प्रोजेक्ट की, बटार की, जो पूरी तरह इस तबाही का शिकार हो गया। और इसी के ठीक पीछे, इन पहाड़ों के पीछे दरअसल ये देखिए, और साथ में आपको अब मैं तस्वीरें दिखाता हूं उस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। देखिए ये आर्मी का विशेष विमान है जो लगातार सॉटी भर रहा है। अब एक दो तरह के ऑपरेशन, एक तो रेस्क्यू और सर्च है, उसी के साथ साथ जिन इलाकों तक खाना नहीं पहुंच पाया जहां लोग अभी फंसे और सुरक्षित हो सकते हैं वहां ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह रसद पहुंचाई जाए, क्योंकि रसद पहुंचाना भी चुनौती होगी। शहर के शहर खाली हो चुके हैं, लेकिन ये जो तबाही आई है इस नदी के चलते, अब यहां से ऊपरी इलाकों में वहां पर लोगों को उतारा जा रहा है रेस्क्यू, लेकिन ऐसे में क्या है कि मौसम बहुत बड़ी बाधा बन जा रहा है और बार बार जब मौसम खराब हुआ तो सुबह ये जो वैली आप देख रहे हैं पूरी पैक हो जाती है और इसी के चलते जो है सिर्फ सॉर्टीज के जरिए इवैक्यूएशन ऑपरेशन में थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं, इसीलिए विशेषज्ञों को बुलाया गया। दूसरा जो मोटर ओपनिंग पार्टी है वो भी, रोड ओपनिंग पार्टी वो भी आगे जा रही है, मलबे को साफ कर, इसी के आगे जो है ढोंगे बाजार है वहां से लेकर के रास्ता। लेकिन दरअसल क्या है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह डिस्कनेक्टेड है। देखिए एक चॉपर उड़ान भरता है, दूसरा नीचे उतर रहा है, दिन भर ये बड़ा है, कहते हैं ना पहाड़ पर एक माउंटेन टास्क इस समय मेरे पीछे यहां पर चल रहा है सुमित।
8: बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपको आशुतोष बता रहे थे कि दो बड़ी चुनौतियां हैं, पहला आपके लिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन चलाना और दूसरा कनेक्टिविटी बनाना उन पहाड़ी दुर्गम इलाकों में जहां पर लोग अब भी फंसे हुए, और इसी वजह से आशुतोष बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर की मदद से लगातार रिलीफ, आप कह सकते हैं कि फोर्सेस को भेजा जा रहा है, टीम्स को भेजा जा रहा है और जब मौसम खराब होता है तो उनको वहां से इवैक्यूएट करना भी एक बड़ी चुनौती है ऐसी त्रासदी ऐसी आपदा के अंदर। हमारे साथ रोहित सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित सिंह, आपने कल भी बताया था कि जब पानी का बहाव आया तो निचले इलाकों के अंदर वो बॉडीज और मलबा लेकर आया, यही वजह है कि वो जो कंक्रीट है यानी जो मलबा है वो अपने आप इतना रॉक सॉलिड हो गया है कि उससे उन बॉडीज को, उन शवों को निकाल पाना भी बहुत चुनौती का काम है। अभी किस तरीके के वहां पे हालात हैं?
9: नहीं बिल्कुल, देखिए जो तकरीबन 650 शव बरामद हुए हैं वो सब जो है लगभग लगभग नदी से ही सबको जो है वो बरामद किया गया है, और सबसे ज़्यादा जहां से शव निकाले गए हैं सुमित वो है चितवन ज़िला। चितवन से जो नारायणी और त्रिशूली नदी गुजरती है, सबसे ज़्यादा 233 शव वहां से निकाले गए हैं। लेकिन आज हम लोगों को चितवन जिला प्रशासन की तरफ से ये जानकारी मिली है कि इन 233 शवों में से केवल 4 शवों की अब तक शिनाख्त हो पाई है और 229 शवों का कोई अता पता नहीं है कि कौन, पूछने वाला नहीं आया है, यानी कि अनआइडेंटिफाइड है। और अब जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि ये सभी 229 शवों को जो है सामूहिक रूप से आज या कल तक में दफना दिया जाएगा, और क्योंकि इतने सारे शव जो है उसके जो पड़े हुए हैं उसकी वजह से संक्रमण का खतरा, महामारी का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए ये फैसला लिया गया है कि हर एक बॉडी का सैंपल, डीएनए सैंपल लेकर और सबको एक यूनिक कोड देकर सभी शवों को जो है सामूहिक रूप से दफनाया जाएगा ताकि कोई महामारी की स्थिति न पैदा हो, और आगे किसी को अगर कोई आता है क्लेम करने के लिए बॉडी तो डीएनए सैंपल के जरिए कुछ आगे जो है जानकारी दी जा सके। लेकिन सबसे ज्यादा जो बॉडीज मिले हैं वो चितवन जिले से ही मिले हैं, 233 बॉडी, और उसमें से केवल 4 की अब तक शिनाख्त हो पाई है। सुमित,
8: बिल्कुल देखिए हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन आप मानिए कितनी ज्यादा त्रासदी के बाद भी मुश्किल है, महामारी का खतरा लगातार वहां पर, किन मुश्किल हालातों से आज तक की टीम लगातार आप तक ये रिपोर्ट पहुंचा रही है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए और अपना ख्याल भी रखिए, क्योंकि वहां पर परेशानी अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इस समय जिस तरीके से रोहित भी बता रहे थे कि आखिरकार किन इलाकों में सबसे ज्यादा बॉडीज रिकवर की जा रही है, आपको बड़ी स्क्रीन पर ले चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कहां कहां पर ये मौत का आंकड़ा कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में नेपाल की इस समय सबसे ज्यादा चिंता का विषय, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के साथ साथ मलबे से बॉडीज को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले अगर आप देखिए चितवन, जहां पर अभी रोहित सिंह हमारे सहयोगी मौजूद थे, 233 से ज्यादा बॉडीज मृतकों की शनाख्त, वहां पर उनकी बॉडीज को रिकवर किया गया। इसके बाद अगर आप देखें कि नव लपसारी के अंदर ईस्ट के इलाके में 158 ये आंकड़ा है, और ये पश्चिमी का इलाका नवल परासी के इलाके में 47 है, और नुवा कोट के अंदर 51। इसके अलावा अगर आप नीचे जाएं बोरखा 48 और तनाहून के अंदर 31 और रसुआ के अंदर 13 से ज्यादा, यानी अगर आप इन सभी आंकड़ों को देखें तो करीबन आंकड़ा 600 के करीब पहुंचता है। लेकिन अब भी ये ऑपरेशन जारी है, 2400 से ज्यादा लोग अब भी लापता है, और हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समझ सके कि आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी महज कुछ ही घंटे कुछ ही टाइम हुआ, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन कई दिनों तक चलेगा, और इन कई दिनों के रेस्क्यू ऑपरेशन में बॉडीज को रिकवर करना, उनको आइडेंटिफाई करना, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। नेपाल में इस आपदा के अंदर अभी ये आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि चिंता का सबक ये भी है कि अभी भी जो ये मलबा नीचे आया है ये सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है, तो ऐसे में उससे खोद कर निकाल पाना उन बॉडी को, उन शवों को, एक बहुत बड़ी मुश्किल सबक होता है रेस्क्यू ऑपरेशंस के अंदर। लेकिन सिर्फ अगर आप देखें कि नेपाल को और कैसे नुकसान पहुंचा, नेपाल में सैकड़ों जिंदगियां इस भीषण आपदा का शिकार हो गई थी, लेकिन साथ ही वहां कई बड़ी बिजली परियोजनाओं को भी भारी नुकसान पहुंचा। आपको एक बार फिर से बड़ी स्क्रीन पर ले चलता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार कौन कौन से उनके हाइड्रो प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट बर्बाद हुए। दरअसल अगर आप नेपाल की बात करें 170 से 175 के करीब करीब वहां पर पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और 250 के करीब कंस्ट्रक्शन में थे, यानी अभी वहां पर लगातार उनका कार्य चल रहा था। लेकिन अगर आप इस आपदा का इलाका देखें तो त्रिशूली नदी, और अगर आप देखें कि दूसरी तरफ त्रिशूली के साथ साथ ये पूरा का पूरा इलाका आपको नजर आएगा, ये है भोटे कोशी का इलाका, यानी जो भोटे कोशी इलाका है ये नारायण नदी और त्रिशूली के, इन दोनों की तरफ करीबन 11 से 12 प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है और बहा के ले गया है, और शायद इसी वजह से ये नुकसान नेपाल के लिए आर्थिक तौर पर भी उभरने में बहुत ज्यादा लंबा होगा। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा था ताकि आप ये समझ सके कि देखिए एक एक मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूं कि रसुवा गाड़ी के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं अपर त्रिशूली के अंदर, फिर देवी घाट के अंदर, त्रिशूली के अंदर, और अपर मेलून खोला और संजेन खोला, यानी ये तमाम इलाके अगर आप देखें, मैं आपको बता रहा था 170 से ज्यादा 175 के करीब हाइड्रो प्रोजेक्ट और पावर प्रोजेक्ट नेपाल में एक्टिव है और करीबन 250 अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन जैसे ही ये पानी का बहाव आया सीधे तौर पर करीबन 9 से 12 के करीब उनके जो बड़े पावर प्रोजेक्ट थे वो बह गए, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, और शायद अभी नेपाल को इन चीजों से उभरने में, अपनी चीजों को ठीक करने में लंबा वक्त लगेगा। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ प्रोफेसर CS दुबे हमारे साथ हैं, ये भूग शास्त्री हैं, और इसके अलावा नवीन भटनागर है, फॉर्मर DIG है NDRF के। सबसे पहले अगर आपसे बात करूं प्रोफेसर दुबे, अभी खास तौर पर किस तरीके की चिंता का विषय इस समय नेपाल में बना हुआ है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एक और झील है जिसमें पानी लगातार बढ़ रहा है, वो रिसाव हो रहा है, तो ऐसे में क्या चिंता अब भी है नेपाल में, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो वहां पर मौजूद है इन ऊपरी इलाकों में?
10: जी, जैसे कि ये बताया गया है कि एवलांच से और स्नो और आइस के नीचे जाने से, डेब्रिस के साथ फ्लो होने से हुआ है ये वाला, लेकिन पास में कई लेक्स हैं जो कि वल्नरेबल लेक्स हैं और जिनके अंदर काफी पानी है अभी, और पानी जो है क्योंकि बहुत हैवी रेनफॉल हुआ है तो वो पानी सब भर गया है उसके अंदर और वो डेंजर लेवल तक आया हुआ है। अब सवाल ये है कि इसको किस तरह से क्या देखा जाए। सबसे पहले जान माल की जो हानि होती है उसको खत्म करने के लिए, आस पड़ोस में अगर इन्होंने पहले कभी वहां पे फ्लड हजार्ड जोनेशन किया होगा तो उसको देखते हुए सबसे पहले ये देखें कि कौन से एरियाज वल्नरेबल एरियाज है, वहां से सब लोगों को हटाना पड़ेगा इमीडिएटली, और कुछ और कुछ वार्निंग सिस्टम्स जो है बनाने पड़ेंगे ताकि लोगों को जब भी ऐसी कोई लगे तो फर्स्ट स्टेप से ऊपर से नीचे तक आने में देर ना लगे, क्योंकि नीचे ज्यादा लोग रहते हैं ऊपर कम लोग रहते हैं, तो नीचे आने में देर ना लगे और तब तक कुछ ना कुछ ये लोग कर सके और उसको किसी तरह से पोजीशन को लोगों के जो जितने लोग इसमें हादसे में हुए हैं उससे उस तरह का जो है अब जो है ऐसा कोई वो ना हो, प्रॉब्लम ना।
8: बिल्कुल, हमारे साथ नवीन भटनागर साहब भी हैं। नवीन भटनागर साहब, आपने तो ऐसी कई सिचुएशंस को मॉनिटर किया होगा, देखा होगा, जाना होगा कि आखिरकार क्या परिस्थितियां होती है। अभी खतरा दूसरी आपदा को लेकर, या फिर कह सकते हैं उस झील में जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है, चीजें बढ़ रही है, वो भी, और वो टीम जो वहां पर काम कर रही है, खतरा तो उनके लिए भी बरकरार है।
11: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये तो है ही ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है, मौसम थोड़ा गड़बड़ हो गया है, और दूसरी झील अगर बाय द वे बस्ट हो गई तो फिर उसके लिए जो सभी के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। लेकिन अभी ये है कि हमारे पास टाइम है, हमने लोगों को वहां से हटा दिया है जहां पर इस टाइप का बाढ़ या ऐसा कोई फ्लो आ सकता है, तो अभी हमने काफी तैयारी की है और हमारे आदमी भी अलर्ट हैं, अपना बचाव भी कर रहे हैं, साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। जैसा कि आपने अभी कहा, मैं आपको बताऊं यहाँ पर बहुत सी कमियां भी हैं, क्योंकि ये नेपाल हमारा सार कंट्री का मेंबर है, पर मुसीबत ये है कि इंडिया अलग है, नेपाल अलग है, चाइना अलग है, तीनों कंट्रीज को एक उसमें चलाना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। अब आप ये बताइए, यहाँ पर जो ड्रोन है, रेस्क्यू ड्रोन, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? उसके अंदर हाई रेजोल्यूशन कैमरे होते हैं, वो आपका पूरा एरिया को छान देते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि कहाँ पर लोग इकट्ठे हैं, जहां लोग जिंदा हैं अभी, पर अदरवाइज क्या होगा, भूखे प्यासे बैठे रहेंगे, हाइपोथर्मिया हो जाएगा, वैसे ही वो लोग जो है डेथ में आ जाएंगे। तो क्यों नहीं वो ड्रोन कैमरे लगाए गए, क्यों नहीं इन्होंने अभी तक जो है वहां पर जो है, ये हेलीकॉप्टर से तो कर रहे हैं, कितना करेंगे हेलीकॉप्टर से, उसके लिए ड्रोन फूड सप्लाई का काम भी ड्रोन करता है। इसके अलावा काफी कुछ खराब मौसम में भी, जो मैंने प्रैक्टिकल दिखा है, खराब मौसम में भी जो है ड्रोन काम करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर में थोड़ा ड्रॉबैक होता है। एनी हाउ जो है अपना नेपाल गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट, ये दोनों मिलके जो है बहुत शानदार काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत खतरनाक थी। अभी जो हमारे पास आ रहा है आंकड़ा कि जो इतना कैजुअलिटीज हो गई हैं, तो ये तो वो है जो हमें पता लग गई है।
8: बिल्कुल,
11: लेकिन अभी
8: और देखिए ये चीजें तो आपने बिल्कुल ठीक कहा भटनागर साहब कि देखिए ये चीजें तो लगातार हम मदद कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर दुबे एक बात बताइए, आज तकनीक के मामले में हर देश लगातार अपने आप को बढ़ा रहा है, चाहे वो भारत भी हो, चीन भी हो, लगातार हर देश। तो जैसा भटनागर साहब बता रहे थे कि क्या इसका पता पहले से नहीं लगाया जा सकता था, और खास तौर पर चीन को लेकर भी कई संशय है कि देखिए ये जानकारी अगर पहले मिल गई होती, रिसोर्सेज का इस्तेमाल और अच्छे तरीके से कर लिया गया होता, तो शायद इन चीजों का जो इम्पैक्ट था वो इतना ज्यादा नहीं होता। क्या इन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सवाल ये भी है सर कि हिमालयन रेंजेस के अंदर बदलाव, बहुत फंडामेंटल बदलाव बहुत तेजी से हो रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्त में भी एक बड़ा चुनौती, एक बड़ा चैलेंज होगा?
10: देखिए कई देशों में इस तरह के काम चल रहे हैं, और हमारे यहाँ क्योंकि जब पोस्ट जब डिजास्टर होता है तब ये चीज सोची जाती है, प्री डिजास्टर के टाइम में, प्री डिजास्टर मिटिगेशन प्लानिंग कोई नहीं होती है। जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि अगर मुझे लगता कि ये, जैसे हमारे पास एक लिस्ट है कि ये लेक्स जो है वल्नरेबल लेक्स है, इसमें पानी बढ़ रहा है, तो मैं वहां पे जाके कोशिश करता किसी तरह से कि वहां पे कोई साइफनिंग करके, वाटर साइफनिंग करके, या उसके कैनाल चैनलाइजेशन करके उस पानी को डाइवर्ट करता स्लोली स्लोली, और उसका लेवल किसी तरह से कम करता। वो कहीं नहीं हो रहा है, इसका कोई प्लानिंग ही नहीं उस तरह की। दूसरा जो है, अगर आप देखें कि वहां पे इतने सारे डैम्स बने हैं, तो डैम्स के साथ जो चीजें लगी हुई है उनके साथ भी एक फ्लड हजार्ड जोनेशन मैप्स बनते हैं, उन मैप्स के बेसिस पे आप आइडिया लगा सकते थे कि ऊपर से क्या आएगा आपके पास, वो भी कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा अगर आप तीसरी चीज देखें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि वहां की रॉक्स बहुत फ्रेजाइल है, जरा सा पानी बरसेगा, जरा सा बारिश होगी, वहां पे लैंडस्लाइडिंग और एवलांच तो होंगे ही होंगे। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे, जिस तरह की मेल्टिंग हो रही है, हीटिंग और थॉइंग हो रही है, और मेल्टिंग हो रही है, उस मेल्टिंग से सारे ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, और अभी तो नेपाल में बड़ी स्पीड से ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, और अगर वो जिस तरह से मेल्ट कर रहे हैं उस तरह से ये अवलांचेस और ये क्रिवेसेस जो है बड़े होके एनलार्ज करके जो अवलांचेस
8: बिल्कुल
10: आएंगे
8: देखिए प्रोफेसर दुबे, बात तो सबसे बड़ी यही है कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये खतरा अब भी बरकरार है और ये खतरा कभी भी हिमालयन रेंजेस में कभी भी आ सकता है और ये बड़ी आपदा में तब्दील भी हो सकता है। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हमारी ये कवरेज वहां कवरेज जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: मुल्तानी को का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी को का कॉफ सिरप।
1: इन एसोसिएशन विद
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
3: आज तक ना होता तो हमारी बात देश दुनिया तक नहीं पहुंचती।
4: हम लोग को बड़े चैनल का सहयोग नहीं मिला था, हम लोग गरीब छात्र लोग हैं, तो आज आप लोग का सहयोग मिला है तो पूरा भारत और पूरा दुनिया में यहाँ की आवाज गूंज रही है।
3: खबरों के साथ पक्षपात नहीं।
5: 19 साल के छात्र साहिल रजाब ने दावा किया उन पर सुरक्षा बलों ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी एक आंख की रोशनी जाने की नौबत आ गई।
3: हर बात देश के सामने।
4: अंजना मैम, सबसे पहले तो हम लोग आवाज को बुलंद किए, इसके लिए आपके पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं।
3: मुद्दा कोई भी हो, सोए हुए सिस्टम को जगाता है आज तक।
6: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती।
7: ये तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। हर तरीके एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।

0: नेपाल आपदा ने सैकड़ों परिवारों को जीवन भर का दर्द दे दिया। इस आपदा में अभी भी लापता लोगों की खोजबीन जारी है। त्रासदी की चपेट में कई भारतीय परिवार भी आए। इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो नेपाल में रोजी रोटी के लिए गए थे, कई ऐसे भी हैं जो अमेरिका से आए और नेपाल घूमने चले गए थे। नेपाल के जल प्रलय में गुजरात के विमल पटेल भी लापता हैं। तिब्बत नेपाल सीमा पर चीन के इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर जब आपदा आई तो विमल पटेल भी अपनी पत्नी के साथ वहां मौजूद थे, लेकिन उस तबाही के बाद विमल और उनकी पत्नी का कुछ पता नहीं चला।
1: जो लापता हुए वो मेरा छोटा भाई और उसकी वाइफ है, उसका नाम है विमल पटेल और उसकी उसकी वाइफ का नाम है जयमीना बेन पटेल। वो नेपाल गए हुए थे, वहाँ से वो चाइना के लिए वो इमिग्रेशन करना पड़ता है ना, तो उसके लिए वो इमिग्रेशन के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद कोई अता पता नहीं है उसका। मानसरोवर जाने के लिए इमिग्रेशन के लिए खड़े हुए थे,
2: लेकिन
1: वो कल सुबह गए थे मानसरोवर के लिए, लेकिन इमिग्रेशन में जब गए उसके बाद उसका कोई कांटेक्ट एजेंट से भी नहीं हुआ और हमारे से भी नहीं हुआ।
0: अब परिवार में मातम है, परिजन परेशान है, खोजबीन के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं लेकिन कोई खबर नहीं मिल रही। मासूम बच्चों को पता भी नहीं है कि उसके माता पिता के साथ नेपाल में क्या हुआ।
1: मालूम है वहाँ पे जो नेपाल के टूरिज्म है उसके नमस्ते नेपाल, उसके थ्रू वो नेपाल में घूमने गए थे, उसके बाद वहाँ से वो मानसरोवर के लिए जाने वाले थे। वो लीप हॉलीडे है उसमें मानसरोवर जाने के लिए जाने वाले थे। उसका लड़का है वो हमारे पास है, लेकिन अभी तक हमने उसको कुछ बताया नहीं है कि उसके माँ बाप ऐसे है ऐसे, कुछ अभी तक उसको कुछ मालूम ही नहीं है।
0: पटेल परिवार के अलावा गुजरात के तीन और लोग भी नेपाल में लापता हैं। ये लोग नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले थे लेकिन अब संपर्क नहीं हो पा रहा। सूरत के आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम में अफसर ने बताया कि उनमें से कुछ लोग अमेरिका से आए थे।
3: स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर द्वारा हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार तीन यात्री मिसिंग है जो सूरत के बताए जाते, और जो हमें प्राप्त माहिती के अनुसार उसमें से दो USA के निवासी है, एक मुंबई के निवासी है। उनके किसी पहचान वाले गीता बेन ने ये सूचना दी है, उसके अनुसार ये स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से हमें ये सूचना मिली है। जो सूचना है उसके अनुसार ये तीनों यात्री पिछले 24 घंटे से मिसिंग है।
0: सूरत के इस आपदा कंट्रोल रूम में लगातार लोग फोन कर रहे हैं, अपने के बारे में जानकारियां मांग रहे हैं, लेकिन आपदा कंट्रोल रूम भी वही जानकारी दे पाता है जो उनके पास मौजूद रहती है। नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर जाने के लिए चीन के इमिग्रेशन चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है, लेकिन चीन का वो चेक पोस्ट भी पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। वहाँ जो लोग चेकिंग के लिए आए थे उनकी कोई खोज खबर नहीं है आज तक। ब्यूरो।

0: ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। नेपाल अभी 26 अगस्त की प्रलय से उभरा भी नहीं है कि एक और बड़ा खतरा उसके ऊपर मंडराने लगा। तिब्बत में ग्लेशियर गिरने के बाद इकट्ठा हुए मलबे से एक बांध बन गया है जिसमें इतना पानी जमा है जो बड़ी तबाही मचा सकता है। यह बांध मानव निर्मित नहीं है, इसलिए बेहद कमजोर है और इंसान के नियंत्रण से भी बाहर है। फिलहाल इसकी निगरानी की लगातार कोशिशें की जा रही है और नेपाल को भी चीन ने जानकारी दी है।
1: अभी टला नहीं है नेपाल से खतरा। तिब्बत में झील का पानी लगातार हो रहा गहरा। चीन की झील टूटी तो मचेगा कोहराम। नेपाल की नदियों में फिर आएगा उफान। नेपाल पर खौफ का साया एक बार फिर मंडरा रहा है। एक बार फिर जल प्रलय का खतरा बना हुआ है। चीन ने नेपाल को चेतावनी दी है कि लेंडे नदी के ऊपरी हिस्से में बनी झील किसी भी वक्त टूट सकती है। चीन की इस चेतावनी के पीछे झील के पानी का रंग है जो लगातार गहरा हो रहा है। माना जा रहा है कि ये आने वाले खतरे का संकेत हो सकता है। चीन ने ये जानकारी नेपाल के विदेश मंत्रालय के साथ साझा भी की है। साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि नदी में पानी का बहाव अधिकतम 500 घन मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकता है।
2: खतरा क्या नेपाल पर टल चुका है? वो इसलिए क्योंकि जिन इलाकों से ये सैलाब की शुरुआत हुई उन इलाकों में कई सारे जलाशय बने हुए हैं। बीती रात से भटकोशी और त्रिशूली नदी का जलस्तर बढ़ता रहा। सरकार चेतावनी देती रही, वो कहती रही कि नदियों के किनारे से लोग चले जाएं। जिस शहर में मैं हूँ यहाँ से लोगों को हमने जाते हुए देखा, हम सबको ये शहर छोड़ना पड़ा था। आज कुछ लोग वापस आए हैं क्योंकि पानी का स्तर घटा, लेकिन खतरा टला नहीं है। खासकर अगले दो दिन जब तक जलाशय में ये माना जा रहा है कि कुल 50 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा हो सकता है और उसने अगर अपनी सीमा तोड़ी तो न जाने सैलाब का क्या मंजर नेपाल फिर से देखेगा।
1: ये झील इसी हफ्ते नेपाल और तिब्बत में आए जल प्रलय के बाद बनी है। दरअसल ग्लेशियर टूटने से भारी मलबा नीचे आ गया था। इसी मलबे से नदी का रास्ता रुक गया और वहाँ एक प्राकृतिक बांध बन गया। इसके पीछे तेजी से पानी जमा होता चला गया जिसने एक झील का रूप ले लिया है। दिक्कत ये है कि ये बांध बेहद कमजोर है और पानी का दबाव किसी भी वक्त इसे धराशायी कर सकता है। ये झील चीन की तरफ चोचेन नदी और नेपाल की तरफ पुरेपू नदी के मिलने से बनी है। इस पर लगातार निगरानी कर रहे चीन के जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक झील में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार तक इसमें करीब 25 लाख घन मीटर पानी जमा हो चुका था। खतरे की आशंका को देखते हुए चीन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधान कर दिया है। अगर झील टूटी तो भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के जलस्तर में तेजी से इजाफा हो सकता है और एक बार फिर यहां तबाही का मंजर दिख सकता है।
3: जो अभी फिलहाल चाइना के तरफ से भी जो एक नया अलर्ट जारी किया गया है कि वहां भी प्राकृतिक झील जो है वो फूट गया है, उसके फटने से एक बार फिर से नेपाल में वैसी ही कह सकते हैं त्रासदी देखने को मिल सकती है।

0: इस वक्त नेपाल के लिए। फिलहाल तिनुआ खोला नदी, इस नदी में भी आप देखिए जलस्तर इतना बढ़ा हुआ है, पानी की धार, इसका करंट देखिए बेहद डराने वाला है, लेकिन ज़रूरत है कि लोग सुरक्षित रहें।
1: फिलहाल ड्रोन और सैटेलाइट से इस पर नजर रखी जा रही है ताकि रियल टाइम पर नेपाल तक सूचना पहुंच सके और भारी तबाही से बचा जा सके। आज तक ब्यूरो।
2: तो आपने ये रिपोर्ट देखी और समझा कि नेपाल में खतरा अब भी टला नहीं है। अब आपको बड़ी स्क्रीन पे एक बार फिर से लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे हिमालय के पूरे इलाके में ग्लेशियर झीलों में विस्फोट का खतरा मंडरा रहा है। खासकर भारत के लिहाज से इसे भी समझना बेहद जरूरी। आइए आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखाते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि हिमालय का अभी स्टेटस क्या है। दरअसल हिमालय में खतरा अब भी बरकरार है। हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर झील करीबन 7,500 के करीब है। पूरे हिमालयन रेंजेस के अंदर 7,500 के करीब ये रेंजेस हैं या फिर ये झीले हैं। अब लद्दाख क्षेत्र की अगर बात करें, ग्लेशियर झील करीबन 3,219 के करीब है, यानी सिर्फ लद्दाख क्षेत्र के अंदर। इसके बाद भारत में रेड जोन वाली ग्लेशियर झील कितनी है, यह है 189 के करीब, 189। यानी कभी भी ये झीले एक बड़े रेड जोन में, बड़े आप कह सकते हैं बड़े विस्फोट के अंदर, ये बड़े खतरे के तौर पर साबित हो सकती है। लेकिन आप देखिए कि आखिरकार किस तरीके से ये बहुत बड़ा कंसर्न है। अब आपको आज तक संवाददाता श्वेता सिंह की नुवाकोटी में हालातों का जायजा लेते हुए और वहां ऐसे भी लोग मिल रहे हैं जो किस्मत वाले थे, उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आखिरकार आपको बताते हैं कि आखिरकार वहां पर कैसा था वो 26 अगस्त का मंजर, जहां पर नुवाकोटी को पूरे इलाके को ही बदल कर रख दिया। रिपोर्ट आप देखिए।
3: क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं 26 अगस्त के बाद से?
4: बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब यहाँ पे जो है सड़क का हाइट बढ़ गया है, खोला इधर थोड़ा सा उधर से इधर साइड में आ गया है पहले से।
3: मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि ये बैंक और ये जो
4: डेवलपमेंट विकास बैंक,
3: हाँ, ये सब नीचे है और सड़क ऊपर है, ऐसा था या नहीं
4: लग रहा है? नहीं, पहले नहीं था लेकिन अभी लग रहा है। थोड़ा सा नीचे तो था लेकिन कम था।
3: अच्छा, तो अब और नदी इसी तरीके से?
4: नदी तो बहुत परिवर्तन हुआ है पहले।
3: क्या परिवर्तन हुआ है?
4: इसका चौड़ाई बढ़ गया है पहले से।
3: हाँ।
4: ये पूरा खेत था इसके पछाड़ी, पूरे खेत में
3: ये खेत था
4: इसके पछाड़ी।
3: अच्छा।
4: इस साइड में पूरे घर था, यहाँ पे हर आदमी अपना बिजनेस व्यवसाय करता था लोग।
3: आपकी कौन मिसिंग है?
5: मेरी दीदी मिसिंग है और भांजी भी, तीन भांजी, एक दीदी और एक नतनी मिसिंग है।
3: कहाँ रह रहे थे
5: वो लोग? रसुआ और नुवाकोट के बॉर्डर पे रहते थे। क्या कहता हूँ,
3: रसुआ नुवाकोट के बॉर्डर पे। तो आप हर उस जगह आके ढूंढ रहे हैं कि
5: हर जगह जाने के वहाँ कोई साधन ही नहीं है।
3: हाँ।
5: और वहाँ तक मिसिंग ही है और जा नहीं पा रहे हैं।
3: फोटो एक बार दिखा दीजिए कैमरे पे।
5: ये भांजी हुई, ये भांजी की लड़की हुई।
3: कितने साल की है
5: ये बच्ची? 2 साल की है।
3: 2 साल की
5: जी। ये दीदी हुई।
3: हाँ।
5: ये भांजी है, ये भी भांजी है।
3: तो ये मिल नहीं पा रहे हैं?
5: नहीं मिल पा रहे हैं।
3: आप हर जगह जाके बस ढूंढ
5: रहे हैं?
6: और उस टाइम में सब खबर आ गया, भागो भागो बोल के।
3: हाँ।
6: सब खाना खा के ये रास्ता हो गया।
3: आंखों के सामने आपने आते हुए देखा?
6: हाँ।
3: कैसा डरावना था?
6: बहुत एकदम डरावना था। बहुत
3: नुकसान कितना हो गया आपको?
6: नुकसान था उधर 15 रूम था गेस्ट रूम होटल का, अटैच बाथरूम रूम, एसी रूम, हॉल था, डाइनिंग, किचन। नुकसान तो कितना आप सरकार ने उसको
3: जान किसी की नहीं गई।
2: और हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। दुबे सर, एक बात बताइए, अभी हम लगातार अपने एक बड़ी स्क्रीन पर हमने दिखाया कि 7,500 से ज्यादा ऐसी झीलें हैं, लगातार 189 के करीब ऐसी झीलें हैं जो रेड जोन में आती हैं। तो ये तो एक ऐसे बॉम्ब है या फिर एक ऐसे बड़े आप कह सकते हैं कि त्रासदी है जो कभी भी फट सकती है, तो ऐसे में इसे कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि ये तो एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि अगर ये फटे, अगर ये कल को झीलें निकली तो ये पूरे के पूरे इलाकों को, पूरे के पूरे शहरों को बर्बाद कर देंगे।
7: इसको देखिए, पहले समझना होगा, सबसे पहले जो है आपके जो रेनफॉल है वो अगर देखा जाए तो पिछले 40 साल का अगर रेनफॉल का डाटा उठा के देखो तो करीब 18 एरियाज ऐसे हैं जहां पे रेनफॉल की पॉकेट्स बनती है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन के लिए, ओरोग्राफिक

0: प्रेसिपिटेशन उसे बोलते हैं कि जहाँ पे लैंडस्केप जो है इस तरह से क्रिएट होता है कि जो रेन रेन है, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से जो रेन है वो ऊपर चढ़ती है और सडनली वहां पे फॉल करती है, और वहां पे जब फॉल करती है तो बहुत ज्यादा फॉल करती है, बहुत
1: जी
0: ज्यादा हैवी रेनफॉल। तो ऐसे मैक्सिमम रेनफॉल जहाँ पे 4,000 4,500 मिलीमीटर से ऊपर वाले जो एरियाज हैं, कम से कम 18 स्पॉट्स हैं, जिनमें ये स्पॉट्स भी हैं जिसमें आज ये हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत हैवी रेनफॉल हुई है। पहली चीज है रेनफॉल, और रेनफॉल को समझना कि रेनफॉल कहाँ पे कितनी ज्यादा। दूसरा है रॉक्स को समझना कि रॉक्स कितने फ्रेजाइल है वहां पे, जैसे इस एरिया में हायर हिमालय के रॉक्स जो है उसमें साउथ तिब्बत में फिलाइट्स है, स्लेट्स है, और उसके ऊपर जो है हायर हिमालयन क्रिस्टलाइन है। दोनों तरह के रॉक्स है, सॉफ्ट रॉक्स भी है, हार्ड रॉक्स भी है। तो दोनों जो है जब फ्रीजिंग और थॉइंग होती है क्लाइमेट चेंज में, तो उससे जो है ये जो क्रेविसेस है वो बढ़ जाते हैं, फ्रैक्चर्स बढ़ जाते हैं, जॉइंट प्लेन्स जो है वो एक्सपैंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और
1: जी
0: उससे जो डिस्टेबलाइजेशन होता है। अब
1: बिल्कुल
0: बात करते हैं हम कि जो आप कह रहे हैं कि किस तरह से इसको संभाला जाए। तो सबसे पहले जो है वो लैंड यूज जोनिंग होनी बहुत जरूरी होती है। लैंड जोनिंग को मैं कह रहा हूं जब जहां पे इस तरह के एक्सट्रीम इवेंट्स होने का जो मैंने आपको बताया जगह है, वहां पे जहाँ एक्सट्रीम, चाहे वहां ग्लेशियर्स हो, चाहे वो रेनफॉल ज्यादा हो, चाहे वो क्लाउड बर्स्ट हो, चाहे वो लैंडस्लाइड्स हो, इन एरियाज के अंदर जो है आपको स्पेशली जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है, टूरिस्ट हब्स है, मल्टी मिलियन डॉलर्स के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, उनको आपको देखना चाहिए कि किस तरह से उनको बनाना है, और उसकी कंप्रेहेंसिव पॉलिसी मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस कैसे
1: बिल्कुल
0: हो।
1: सर, वो बिल्कुल हमारे साथ, क्योंकि भटनागर साहब भी, भटनागर साहब अगर मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन हमारे सहयोगी नेपाल से जुड़े हुए रोहित सिंह, पहले मैं उनका रुख कर लेता हूं क्योंकि वो वहां से लगातार रिपोर्ट कर। रोहित, ये बात हमेशा खतरा मंडरा रहा है कि देखिए जब अगर पानी आया, दोबारा से कोई झील आई या झील फटी और उसका पानी आया, तो फिर भारत के कई इलाकों में उसका प्रभाव होगा। तो ऐसे इलाकों में, खासतौर पर बिहार की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर, वहां पर किस तरीके से प्रशासन ने तैयारियां की हुई है?
2: नहीं देखिए, बिल्कुल एक बार जो कह सकते हैं जो त्रासदी नेपाल ने झेल ली है, उसके बाद माना जा रहा था कि बिहार में भी वो पूरा पानी जो है वो आएगा, यूपी में आएगा, लेकिन वो अन्य नदियों में जो है वो पहाड़ों में ही डाइवर्ट हो गया, जिसकी वजह से बिहार में या उत्तर प्रदेश में उस तरीके की त्रासदी बिल्कुल नहीं आई या उतना पानी भी नहीं आया। लेकिन अब जो ये सेकेंड वेव जिसे कहा जा रहा है, यानी कि दूसरी बार जब चाइना ने फिर एक बार अलर्ट जारी किया है, तो इसके लिए देखिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और जो गंडक बराज है वाल्मीकि नगर और इंडो नेपाल बॉर्डर पर, उसके 3,636 गेट अभी भी खोल कर रखे गए हैं। पिछले 4 दिनों से 3,600 गेट को खोल कर रखा गया है, ताकि अगर कोई ऐसी आपदा की स्थिति बनती है कि अचानक से फ्लैश फ्लड होता है और अचानक से पानी ज़्यादा अगर मात्रा में आ जाता है, तो फिर वो पानी निकाला जा सके, निकल सके, उसके लिए तैयारी पूरी तरीके से की गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अभी भी जो है बिहार के 6 जिलों में अभी भी डेप्यूट है, जहाँ जहाँ पे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, छपरा, ये तमाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ गंडक में पानी अगर बढ़ेगा तो ये सब ज़िलों में जो है बाढ़ की स्थिति पैदा होगी। तो यहाँ पर भी सरकार ने कहा है कि खतरा टला नहीं है। हाँ, हालात सामान्य ज़रूर हैं, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है।
1: बिल्कुल बिल्कुल रोहित, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ भटनागर साहब भी, भटनागर साहब जिस तरीके से प्रोफेसर दुबे भी बता रहे थे कि पॉलिसी मेकिंग हो, हमको चीजों को मुस्तैद रखना, आपने तो वो ट्रांसफॉर्मेशन देखा है कि जब एनडीआरएफ लगातार इन बड़े बड़े त्रासदी के दौरान ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के तमाम देशों में जाकर मदद पहुंचाती है। अभी अगर हम देखें कि इस तरीके की जो व्यवस्था बन रही है, चीजें बन रही है, ऐसे में एनडीआरएफ के पास क्या सुविधाएं होती हैं, किस तरीके से इन बड़ी त्रासदियों का हैंडल किया जा सकता है?
3: देखिए ऐसा है, सबसे पहले हमारे कंट्रोल रूम स्थापित होते हैं जो हमारे पीएमओ से कनेक्टेड होते हैं, जहाँ ताकि हम डायरेक्ट क्या सिचुएशन है वहाँ बताते रहते हैं। नंबर दो जो है, हमारे पास जो टीमें हैं वो एक्सपर्ट्स की टीमें होती हैं, और हमारे पास जो रेस्क्यू की लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है, जैसे लाइफ लोकेटर है, इसके अलावा जो हमारे पास सोनार सिस्टम है, इसके अलावा हमारे पास जो है स्निफर डॉग्स हैं, इसके अलावा हमारे पास कंटिन्यूअस लाइट्स है, आस्का लाइट्स हैं जो रात दिन जो है वो हमें हेल्प करती हैं, इसके अलावा जनरेटर सेट होते हैं, कटर्स होते हैं, मतलब जो लेटेस्ट इक्विपमेंट आज मार्केट में अवेलेबल है वो हमारे पास होते हैं।
1: बिल्कुल
3: उससे ये होता है कि हम लोग जल्दी से जल्दी, जो 42 आवर्स हमारे लिए होता है गोल्डन पीरियड, हम उसके अंदर मैक्सिमम लोगों को बचा के निकाल लेते हैं, ये हमारी प्रायोरिटी है। अब देखिए ये नेपाल का एरिया है, ये बर्फीला एरिया है, तो
1: जी
3: यहाँ पर अपन जितना डिले करेंगे लोगों का हाइपरथर्मिया हो जाएगा, और
1: जी
3: उसके अंदर फिर बचाना, मान लीजिए बचा भी दिया तो बड़ा मुश्किल होता है बचाना।
1: बिल्कुल
3: और दूसरा, कहीं अगर एयर पॉकेट मिल गई और हमारा विक्टिम है किसी डेबरीज में फंस गया तो उसको अगर हमने नहीं निकाला, नहीं उसको ट्रैप किया या उसको नहीं ट्रेस किया, तो आप ये देखिए कि उसकी डेथ के चांसेस ज्यादा
1: बिल्कुल।
3: हो
1: और शायद
3: जाते हैं।
1: भटनागर साहब यही बड़ी बात होती है कि रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के साथ साथ आपको कनेक्टिविटी कैसे मेंटेन रखनी है, क्योंकि दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में जो लोग फंसे हुए हैं या फिर जो लोग नीचे उतरना चाहते हैं, ये जो पर्यटक भी है उनको आप वापस कैसे ले आएंगे, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। शायद इसी वजह से ये काम बड़े युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि नेपाल के भूटे कोशी और त्रिशूली नदी पर फिलहाल पानी का बहाव सामान्य हो गया, लेकिन अब भी यहां खतरा बरकरार है। नेपाल के और भुटोल से आज तक संवाददाता रोहित सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी है और आपको दिखाते हैं कि आखिरकार उस रिपोर्ट में वो कैसे बता रहे हैं कि अभी खतरा टला नहीं और कैसे तैयारियां की जा रही।
2: आज तक इस वक्त पहुंचा है नेपाल के रूपनदेही जिले के भुटवल इलाके में और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये बेहद खतरनाक नदी टीनुआ खोला नदी है और आप फिलहाल इस नदी की धार देखिए कितनी तेज रफ्तार से इसमें पानी बह रहा है और अभी फिलहाल ये रफ्तार है पानी का और लेवल भी है पानी का देखिए, लेकिन अगर अचानक से फ्लैश फ्लड आए इस तरह की नदी में तो फिर क्या हालात होगा। और ऊपर हम आपको पहाड़ों की तस्वीर पहले आपको दिखाते हैं, चारों तरफ आप देखिए ये पूरा इलाका जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, हरे भरे पेड़ आपको नज़र आ रहे होंगे और लैंडस्लाइड का खतरा भी लगातार बना रहता है ऐसे इलाकों में और साथ ही साथ फ्लैश फ्लड का खतरा भी लगातार बना रहता है। तो 26 अगस्त को जब नेपाल में वो भयंकर आपदा, वो भयंकर त्रासदी आई, तो शायद इसी तरीके का कुछ माहौल रहा होगा जब सब कुछ लग रहा होगा कि सामान्य सा है, एक नदी है उसमें पानी बह रहा है, लेकिन अचानक से जब फ्लैश फ्लड आता है तो यही नदी, ऐसी ही नदी जो है वो विकराल रूप ले लेती है, फिर पहाड़ में ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे कई मीटर ऊपर तक जो है वो नदी जो है वो पहुंच जाती है, वो उसकी धार जो है आपको वहां तक चली जाती है। इस तरह भी आप देखिए ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े पहाड़ हैं कई मीटर ऊंची लहरें जो है वैसी ऐसी नदियों में जो है वो देखने को मिलता है फ्लैश फ्लड की स्थिति में। और ऐसा ही कुछ हुआ था 26 जुलाई को उस त्रासदी में जब तिब्बत में वो फ्लैश फ्लड आया, उसके बाद नेपाल में कई पहाड़ी नदियों में जो है ज़बरदस्त कहें तो त्रासदी आया और भयंकर रूप से जो है वहाँ पर पानी और सैलाब देखने को मिला था। त्रिशूली नदी हो, नारायणी नदी हो, भयंकर त्रासदी आई, नुकसान हुआ, कई जाने गई हैं, 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, हज़ारों बताया जा रहा है कि अभी भी लापता हैं। तो ऐसे में आज तक आपको ग्राउंड जीरो से पल पल की तस्वीर दिखा रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है कि आखिर 26 अगस्त को उस दिन क्या हुआ होगा जिसके बाद इतनी भयंकर त्रासदी का सामना नेपाल कर रहा है। सहयोगी अभिषेक पांडे के साथ रोहित सिंह, जिला रूपनदेही, नेपाल, आज तक।
1: और रोहित सिंह की आपने ये रिपोर्ट देखी, हमारे दोनों खास मेहमानों और हमारे दोनों खास सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम इस महा कवरेज पर आज तक आप लगातार बना रहे, आपको इस बड़ी त्रासदी के बारे में पल पल की जानकारी हम देते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: इस अभियान से उनका मनोबल गिरना और फोर्सेस का मनोबल बढ़ने का एक बहुत क्लियर बेंचमार्क ये है कि 4-5 घंटे की फायरिंग के बाद वो कैंप लगा।
7: हमने उन एरियाज को डोमिनेट किया जहां पे पहले कभी उनका डोमिनेंस माना जाता था।
8: आज कोबरा कमांडोज के साथ हम वही तस्वीर, वही हकीकत आपको दिखाने वाले हैं।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: हमारे CLP राजस्थान के मंदिर जाते हैं, बीजेपी के नेता शुद्धिकरण करते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी है, मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट हैं, वो रामलीला ग्राउंड में हल्द्वानी में जाते हैं भाषण देने, और वहां पर शुद्धिकरण होता है। और उनकी पार्टी का उदाहरण बिहार के चीफ मिनिस्टर मांझी जी, वो मंदिर में जाते हैं और वहां शुद्धिकरण होता है। ये करता कौन है? ये बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं। सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग ये करते हैं, और ये क्राइम है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय विक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब विक्टर्स।
1: पड़ोसी देश नेपाल इस सदी की सबसे बड़ी तबाही से गुजरा है। 26 अगस्त को आई प्रलय ने नेपाल के त्रासदी प्रभावित इलाकों का भूगोल बदल दिया है। जहां बाजार था वहां मलबा है, जहां आशियाने थे वहां पत्थरों का ढेर है। नेपाल के फ्लैश फ्लड ने तिब्बत बॉर्डर से लेकर रसुआ, त्रिशुली, नुवाकुंड तक की ज्योग्राफी बदल दी है। सबसे पहले तिब्बत नेपाल सीमा पर बने इस चीनी इमिग्रेशन चेक पोस्ट को देखिए। जब यहाँ पानी आया तो इस चेक पॉइंट पर मौजूद लोग भागने लगे, लेकिन भाग कर गए कहाँ? अब अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ जो लोग मौजूद रहे होंगे उनका क्या हुआ होगा। आज की स्थिति ये है कि इस चीनी इमिग्रेशन चेक पोस्ट की इमारत का कोई अस्तित्व नहीं है। सैटेलाइट और हेलीकॉप्टर तस्वीरों में कहीं भी इस इमारत का नामो निशान तक नहीं है। रसुआ, थाडिंग, नुवाकोट की बस्तियों की हालत देखिए। पहले नदी की पतली सी धारा दिख रही थी, लेकिन फ्लैश फ्लड के बाद त्रिशूली नदी का पाठ दोगुने से अधिक दिख रहा है।
2: यहाँ से पता चलता है कि शहर में बचा कुछ भी नहीं है। ज्यादातर जो घर हैं, तो आप देखिए सड़क का एक हिस्सा है ना, यहाँ पर सारी दुकानें, ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस है, और इस तरफ सारी रिहायश इलाके थी, तो जो दुकान मकान वो तो डूबे ही हैं। मकान जो है इस तरफ उनको भी नुकसान हुआ है। अब देखिए कैसे वो दंपत्ति गया हुआ है जेसीबी के सहारे के किस तरह अपने घर तक पहुंच जाए, बचा कुचा सामान लेकर के अगर वो आ जाए तो कम से कम जीविका तो चलती रहे, जिंदगी चलती रहे। लेकिन यहाँ जिंदगी पर ब्रेक नहीं बल्कि पूरे शहर की रफ्तार पर ही ब्रेक इस सैलाब ने लगाया है। सारे मकान जो है यहाँ पर ध्वस्त हो चुके हैं, जो पहली दूसरी मंजिल है वो लगभग मलबे में तब्दील हो चुकी है।
1: त्रिशूली नदी किनारे बसे इन शहरों में किस तरह की तबाही हुई है उसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि कंक्रीट के बड़े पुल भी बह गए, हाईवे बह गया, बाजारों घरों तक मलबा आ गया।
3: पैंतीस मोटरेबल ब्रिज, 45 सस्पेंशन ब्रिज और लगभग 40 किलोमीटर सड़क बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस सैलाब से, इस मलबे से। यहां पर ऐसी ही एक ब्रिज का हिस्सा आप देख सकते हैं जिस पर पेड़ पूरी तरीके से टूटकर गिर गए हैं, उनका कुछ हिस्सा काटकर हटाया गया है, लेकिन मलबा पूरी तरीके से कैसे इस ब्रिज को लेते हुए धस गया है। ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया। आवेग भी कैसा, ऐसा जिसके सामने कंक्रीट का एक ब्रिज नहीं टिक पाया। सोचिए इंसानों की क्या ही बिसात। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, नेपाल आज तक।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: में बने अस्थायी झील के अभी भी फटने की आशंका बरकरार, निचले इलाकों में हाई अलर्ट। खड़गे को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर बोला धामा, कहा दलित होने की वजह से हल्द्वानी में किया गया शुद्धिकरण, मंत्री चिराग पासवान का पलटवार, अपने राज्य में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। लखनऊ के जेपी इंटरनेशनल सेंटर पर आर पार सीएम योगी बोले सैफई सिंडिकेट ने 200 करोड़ का काम 800 करोड़ में भी नहीं किया पूरा, अखिलेश यादव ने लगाया था बेचने का आरोप। उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान दौरे पर रवाना प्रधानमंत्री मोदी, ताशकंद में राष्ट्रपति के साथ करेंगे बातचीत, बिश्केक में एससीओ समिट, पुतिन शी जिनपिंग समेत कई नेताओं से मुलाकात संभव। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मोहन भागवत के यूनिवर्सल वननेस कार्यक्रम के लिए बैनर पोस्टर लगे, इस्कॉन मंदिर के संबोधन में आरएसएस प्रमुख ने कहा दुनिया में अभी भी बहुत सारे टकराव और विरोधाभास।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। आप देख रहे हैं दंगल। दलित सम्मान को लेकर देश में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी पर दलित विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने हल्द्वानी में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे के बाद कथित शुद्धिकरण का मुद्दा उठाया। राहुल ने राजस्थान में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली और एनडीए नेता जीतन राम मांझी से जुड़े हुए शुद्धिकरण के मामलों का भी जिक्र किया और एफआईआर दर्ज करने की मांग की SC ST एक्ट के तहत। जवाब में बीजेपी और एनडीए के नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ पलटवार करना शुरू कर दिया। उनके शासनकाल में दलितों के लिए किए गए कामों पर सवाल उठाए और राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दा उठाने का आरोप लगाया। हल्द्वानी का मामला राज्यसभा तक पहुंच चुका है, जहां पर इसे लेकर सरकार और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली थी। और अब शुद्धिकरण का मुद्दा एक बार फिर से सियासी बहस के केंद्र में है। दंगल में आज इसी पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: भले ही हल्द्वानी में खड़गे के दौरे के बाद हुए शुद्धिकरण की ये तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हो, लेकिन आज जब राहुल गांधी ने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा तो कांग्रेस अध्यक्ष के अपमान का मुद्दा भी उठाया।
2: कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी है, मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट है, वो रामलीला ग्राउंड में हल्द्वानी में जाते हैं भाषण देने और वहां पर शुद्धिकरण होता है। और उनकी पार्टी का उदाहरण बिहार के चीफ मिनिस्टर मांझी जी, वो मंदिर में जाते हैं और वहां शुद्धिकरण होता है। ये करता कौन है? ये बीजेपी और RSS के लोग करते हैं। सिर्फ बीजेपी और RSS के लोग ये करते हैं और ये क्राइम है। राजस्थान के मंदिर जाते हैं।
1: राहुल गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण की याद दिलाई। एनडीए के नेता जीतन राम मांझी के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण का भी जिक्र किया और मामले में FIR दर्ज करने की मांग की।
2: शुद्धिकरण होता है, जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में, उन पर FIR लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, RSS के लोगों ने शुद्धिकरण किया है। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ FIR SC ST एक्ट में FIR दर्ज किया।
1: जवाब में एनडीए के नेता कांग्रेस राज की याद दिला रहे हैं। दलितों के विकास के लिए कांग्रेस ने क्या किया वो बता रहे हैं।
3: अगर कोई कई जगह, वेदर इट इज दिस स्टेट और दैट स्टेट, अगर हो रहा है तो उसको ठीक करना हमारा सबका जिम्मेदारी है, लेकिन इसको बहाना बना के ड्रामा करने के लिए उधर जाते हैं तो लोग सबक सिखा है, आगे भी सिखा देंगे।
4: जो लोग आज इस बात की चिंता कर रहे हैं, देश ने आजादी के बाद लंबे समय तक मौका तो उन्हीं को ही दिया था ना। आज किस मुंह से वो कह रहे हैं कि आज भी समाज में भेदभाव मिटा नहीं है, कई उदाहरण उन्होंने गिनाए। अगर ये उदाहरण आज वो गिना रहे हैं तो आप बताइए, एक लंबे समय तक आजादी के बाद और लगभग 4.5-5 दशक तक तो निरंतरता में कांग्रेस की सरकारें रही, उसके बाद भी कांग्रेस के सहयोग की सरकारें रही, उसके बाद भी समाज में अगर भेदभाव अगर होता रहा तो कहीं ना कहीं नींव को मजबूत करने में सफल तो ये लोग भी नहीं रहे।
1: उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुद्धिकरण का मुद्दा राज्यसभा में गूंज चुका है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी।
5: लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किया।
6: माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज।
1: उधर शुद्धिकरण के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर सियासत का आरोप लगा रही है।
7: कांग्रेस जिस तरह से अफवाह फैलाने का काम कर रही है, दलित समाज को भ्रमित करने का काम कर रही है कि वहां पर हल्द्वानी में रामला ग्राउंड में शुद्धिकरण किया गया है और जब खड़गे जी दलित समाज से आते हैं उनका अपमान हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की कोई भी मनसा नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी इसको अपने आप से अलग करती है, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी संस्था के माध्यम से वहां हवन किया गया, शुद्धिकरण किया गया तो उनका काम है, किंतु इस तरह का भ्रम फैलाना ठीक नहीं है।
1: युवा, महिला और हिंदुत्व के बाद अब राहुल गांधी ने इस बार दलित कार्ड खेला है, जिस पर घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: और दंगल की शुरुआत करने से पहले उन सवालों पर डालते नजर जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी बहस रहेगी। केंद्रित सवाल नंबर है, क्या राहुल गांधी ने शुद्धिकरण के मुद्दे को दलित अपमान और भेदभाव से जोड़कर एक सियासी संदेश दिया है? सवाल नंबर दो, क्या दलित वोट बैंक, जिसका ठीक ठाक परसेंटेज है अलग अलग प्रदेशों में, क्या दलित वोट बैंक को लेकर कांग्रेस के दांव बीजेपी के लिए एक नई चुनौती बनेगा? और सवाल नंबर तीन, क्या राहुल गांधी ने इस मामले को उठाने में देरी तो नहीं की? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे साथ खास मेहमान भी चर्चा के लिए जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता गुरुप्रकाश पासवान हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर रतन लाल हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं, आरएलडी प्रवक्ता मलूक नागर जी हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर विशाल मिश्रा हमारे साथ हैं। प्रोफेसर रतन लाल, आज आप बताएं, सबसे पहला सवाल तो यही है कि 20 दिन लग गए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, सवाल उठाने में, आखिर इतनी देरी क्यों? क्या बहुत देरी के बाद समझ में आया राहुल गांधी को कि मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान हो गया? और क्यों नहीं फिर आप पर आरोप लगेगा कि आप दलित कार्ड खेल रहे हैं? आप
8: कोई कार्ड, दलित कार्ड नहीं खेल रहे हैं और संसद में भी मसला उठाता और पहले भी कांग्रेस के नेता बोलते रहे हैं, लेकिन 20 दिन तो इनको मौका दिया गया था। मोदी जी माथा टेकते हैं संविधान पर और सारा काम उल्टा करते हैं संविधान के उल्टा, क्योंकि उनके हृदय में जो है ना मनुस्मृति बसता है और मुंह पे जवान वोट लेने के लिए खाली संविधान संविधान करते हैं। बीजेपी और एनडीए के प्रवक्ता हैं, जरा छुआछूत मुर्दाबाद एक बार नारा तो लगा दें कि छुआछूत मुर्दाबाद, संविधान जिंदाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद। भाई आरएसएस संघ परिवार कभी संविधान को मानता ही नहीं था। मेरे हाथ में ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिए, ऑर्गेनाइजर का एडिटोरियल, और ये छपा था 30 नवंबर 1949 को। इसमें लिखा गया है कि इसमें भारतीय नाम के कुछ नहीं है, हमारे यहाँ महान ग्रंथ मनुस्मृति था, उसकी चर्चा नहीं है। और यही नहीं, कल्याण पत्रिका गीता प्रेस ने लगातार बाबा साहब के खिलाफ कितनी गालियां लिखी हैं, कितनी भर्त्सना की है संविधान बनाने
0: पर। तो आज हमारी चर्चा है ही नहीं ना, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान हुआ था तो कांग्रेस पार्टी क्या 20 दिनों से सो रही थी? कहां थी कांग्रेस पार्टी? क्यों नहीं राहुल गांधी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की? उस समय संसद चल रही थी, संसद में क्यों नहीं आपने इस विषय को उठाया? वहां भी कितने पोस्टर्स लेकर प्रोटेस्ट कर लेते,
8: आप ही ने दिखाया, संसद में उठाया 20 दिन इनको मौका दिया।
0: एकमात्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया तो जवाब में जेपी नड्डा भी तो आए।
8: सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो कि 20 दिन संविधान संविधान कहते ना, बाबा साहब का खाली नाम लेते हैं, गले में माला, विचारों पर ताला, तो इनको तो 20 दिन में एक्शन क्यों नहीं लिया? बीजेपी का अध्यक्ष उत्तराखंड का जस्टिफाई कर रहा है शुद्धिकरण को, तो ये अनटचेबिलिटी है कि नहीं है?
0: नहीं, प्रोफेसर रतनलाल, आप थोड़ा सा बताएं ना कि वहां पर डिस्क्रिमिनेशन कैसे हुआ। आप बताएं, वो शुद्धिकरण वो कर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि जो शुद्धिकरण था वो जो वहां पर आपत्तिजनक कुछ नारेबाजी हुई उसको लेकर हुआ, कोई जातिगत नहीं था, वो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, तो आपको क्यों लग रहा है कि जाति की वजह से शुद्धिकरण हुआ, जातिगत भेदभाव की वजह से आपको क्यों संदेह हुआ?
8: शुद्धिकरण की इसका मतलब वो जगह अशुद्ध हो गया था ना, और अशुद्ध इसलिए हुआ था ना कि खड़गे साहब गए थे और खड़गे साहब दलित हैं, इसलिए अशुद्ध हुआ था ना।
0: तो प्रोफेसर,
8: कभी मनुस्मृति को
0: मल्लिकार्जुन खड़गे तो देश भर में अलग अलग जगह कार्यक्रम करते हैं, अगर ऐसा ही होता तो हर जगह ऐसा शुद्धिकरण होता, ऐसा तो नहीं हुआ
8: ना। अब बीच में टोक देते हैं, पूरी बात नहीं सुनते हैं। सबसे ज्यादा अमानवीय ग्रंथ है मनुस्मृति, जो कि हिंदुओं के बारे में लिखा गया है, वो मुसलमानों के बारे में, ईसाइयों के बारे में, सिखों के बारे में नहीं है।
0: मनुस्मृति पर आ गया, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम करते हैं, बीजेपी को करना ही होता तो वो हर जगह कर देते कार्यक्रम शुद्धिकरण, वो तो नहीं करते, तो आप क्यों, आपको वही उसी जगह पर क्यों दिख रहा है कि वहां शुद्धिकरण?
8: कोविंद साहब को मंदिर में घुसने दिया, जीतन राम जी को घुसने दिया, द्रौपदी जो सिटिंग प्रेसिडेंट है उनको जाने दिया, आंख के सामने है, उसकी भर्त्सना बीजेपी के लोगों ने की, कभी नहीं की।
0: ठीक है, मैं जवाब आप ठीक है, आप शायद यह तैयारी कम आए करके आए हैं या फिर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आपके पास रहने दीजिए, आपके पास अगर सवालों के जवाब नहीं तो आपको बस एंकर ही दोषी लगता है उसमें। मैं सीधा सवाल पूछा था आपसे, मल्लिकार्जुन खड़गे देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम करते हैं, वहां भी अगर शुद्धिकरण करना होता बीजेपी को तो करती, क्या आप दलित कार्ड नहीं खेल रहे?
8: देवभूमि है ना, तो देवभूमि का हाल देखिए, उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं ना, तो देवभूमि में अस्पृश्यों की क्या हालत है?
0: मैं वहीं से आता
8: हूं, वो तो आप देख लीजिए ना।
0: मैं उत्तराखंड से ही आता हूं, मुझे रियलिटी मालूम है, मैं उत्तराखंड से आता हूं।
8: मुझे भी पता है भाई साहब।
0: ठीक है,
8: मुझे भी पता।
0: गुरु प्रकाश जी ये बताइए कि ये नारेबाजी अगर हुई तो ये नारों का कौन सा शुद्धिकरण होता है? ये कौन सा शुद्धिकरण होता है कि अगर नारेबाजी हुई गंदगी तो शुद्धिकरण? क्या आपको अंदाजा नहीं था कि इससे जातिगत भेदभाव का मैसेज जाएगा? इस कार्यक्रम किस शुद्धिकरण की अनुमति किसने दी? अगर आपने अनुमति दी तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी।
9: राजीव जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को हमारा नमस्कार। देखिए, बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है और इस संवेदनशील मुद्दे पे मुझे लगता है कि निष्पक्ष बहस होनी चाहिए, और मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, मैं रूलिंग पार्टी का प्रवक्ता हूं और रूलिंग पार्टी का प्रवक्ता होने के साथ साथ मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि हमारे समाज का दुखद पक्ष है कि आज भी समाज में जातिगत आधार पर भेदभाव है, पहली बात। दूसरी बात, ये खड़गे जी कर रहे हैं, ये देखिए एक फोटो है, इंडिया टुडे के द्वारा यह खबर की गई थी, खड़गे जी को नॉमिनेशन वाले कमरे में घुसने तक नहीं किया, और ये खड़गे जी के सम्मान की बात कर रहे हैं। वी नारायण स्वामी दलित समाज के, पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री राहुल गांधी जी का जूता उठा रहे हैं, ये दलित सम्मान की बात कर रहे हैं।
0: तेलंगाना इन सब पर आप आएंगे, लेकिन मेरे मूल सवाल से भी आप भटके नहीं, बैठे हुए हैं। पहले मेरे मूल सवाल का जवाब दीजिए कि शुद्धिकरण की इजाजत किसने दी, अगर आपकी सरकार ने दी तो कैसे दी? हाँ नहीं, पहले सवाल का भी जवाब दीजिएगा। हाँ
9: देखिए, आप यदि आपने तय कर लिया आपने मुझे नहीं बोलने देंगे तो आपका विषय।
0: देखिए, मैंने अगर प्रोफेसर रतनलाल से सवाल पूछे, ये मेरा अधिकार है आपसे क्रॉस क्वेश्चन करने का, क्योंकि आप जवाब कुछ और देंगे तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा ना। जनता आज इस विषय पर सुनना चाहती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे तो शुद्धिकरण क्यों करवाया गया?
9: राजीव जी आपको यदि समय व्यर्थ कर देना है इसमें ही, तो आप कह दीजिए तो समय व्यर्थ कर लेते हैं, आपका भी समय व्यर्थ हो रहा है, हमारा भी।
0: मेरा सीधा सवाल है, उसी पर आप जवाब
9: दीजिए। मैंने कह दिया आपके सवाल के जवाब में कि उस नारे, आप फिर आप लगातार बोले नहीं दे रहे हैं। राजीव जी ऐसे नहीं होता, मतलब पता नहीं किस बात की बात है, आप बोले नहीं दे रहे। आपका सीधा सवाल है, मैं सीधा, आप फिर आप बोल रहे हैं हस्तक्षेप कर नहीं है क्या आपको? पूरा समय आप हस्तक्षेप में बर्बाद कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। मैं पुनः बोल रहा हूँ आपको,
0: आप पूरे पास भी लग रहा है जवाब नहीं है, इसलिए आप भी मुझे ही टारगेट कर रहे हैं, कांग्रेस भी और आप भी।
9: कारण से अब आप मुझे बोलने दीजिए ना। आप सर, आप बोलने नहीं दे रहे राजीव जी, मतलब
0: बताइए आयोजन की इजाजत किसने दी, ये बताइए।
9: जिम्मेदारी के साथ कहना, मैं पूरी, अरे भाई साहब आप बोलने तो दीजिए राजीव जी, अलग विचित्र सी बात है।
0: मैं तो चुप ही हूं, आप बोलेंगे तब तो मैं सुनूंगा।
9: पार्टी का उस शुद्धिकरण के, राजीव जी ऐसा है कि मैं शांत,
0: मुझे लग रहा है आपके पास डिले जा रही है आवाज, इसलिए क्योंकि जब आप बोल रहे हैं मैं तब बोल देता हूं, इसलिए आपको लगता है कि मैं टोक रहा हूं आपको। गुरु प्रकाश जी अपनी बात रखिए। हाँ
9: धन्यवाद। हाँ आप थोड़ा मुझे समय दीजिएगा, मैं पुनः बोलना चाहता हूं कि उस शुद्धिकरण के कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं था, तो उसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ करके देखना ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए इस बात का, दलित समाज के पूर्व मुख्यमंत्री पुदुचेरी के राहुल गांधी जी का चप्पल उठा रहे हैं, तब इनका दलित प्रेम कहां गया था? तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री वेरमार्ग जमीन पर बैठे हुए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ऊपर बैठे हुए, इस बात का जवाब कौन देगा? मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर से देख रहे हैं, नॉमिनेशन कमरे में घुसने तक नहीं दिया गया था, इसका जवाब कौन देगा? यहां पे हरियाणा की कुमारी शैलजा खड़ी है और राहुल गांधी जी रोल खा रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? ये दलित सम्मान की बात करने का अधिकार कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ये देखिए जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी है 27 जून 1961 की, उसमें उन्होंने कहा है कि आरक्षण के माध्यम से सेकंड क्लास ऑफिसर्स पैदा होते हैं, इसका जवाब कौन देगा? मैं बताना चाहता हूं आपको, बाबा साहेब अंबेडकर से लेकर के बाबू जगजीवन राम, सीताराम केसरी, और आज की तारीख में पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी हो, हरियाणा में कुमारी शैलजा हो, तेलंगाना में वीरमार्क हो, और कर्नाटक में जी परमेश्वर हो, कांग्रेस पार्टी ने अपने अंदर के दलित समाज के नेताओं को सम्मान दिया तक नहीं है। खड़गे जी को
0: मैं मतलब धैर्यपूर्वक सुन रहा था, गुरु प्रकाश जी आपने अपनी बात रख दी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब ही नहीं आया, फिर आप बोलेंगे कि बीच में टोक देता है। आयोजन की इजाजत किसने दी और आपको क्या अंदाजा नहीं था कि उससे जातिगत भेदभाव का संदेश जाएगा? इजाजत ही क्यों दी गई?
9: जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है उससे, भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है उस पूरे कार्यक्रम से। मैं आपको पुनः बोलना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी झूठ लाइज प्रोपोगेंडा के मैन्युफैक्चरर इन चीफ हैं, वो प्रोपोगेंडा मास्टर हैं, वो गोबल्स
10: हैं। गुरु प्रकाश आप कह रहे हैं बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, आपकी ये बात आ गई, लेकिन इस पर एक क्रॉस क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उत्तराखंड में खड़गे की कोई जाति जानता ही नहीं है, वहां पर नारेबाजी हुई थी, इस तरह की बातें कहकर फिर उसको डिफेंड क्यों कर रहे हैं?
9: नहीं नहीं, अरे देखिए भाई, मैं बताना चाहता हूं आपको कि उत्तराखंड में और या कहीं पे भी आप भारतीय जनता पार्टी से इसको क्यों जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी कहा है, मैं बोलना चाहता हूं ये देश 21वीं सदी में है, ये देश अनु की बात कर रहा है और वो अभी मनु पे ही लटके हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं आप अनु की बात कर रहे हैं, यहां देश का जो युवा है वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात कर रहा है, ड्रोन दीदी की बात कर रहा है, $700 बिलियन का फॉरेन रिजर्व हो गया उसकी बात कर रहा है, लेकिन आज भी राहुल गांधी जी की जो रेग्रेसिव माइंडसेट है वो आज भी देश को मनु के दौर में लेके जाना चाहते हैं, वो अपने दलित नेताओं से जूते उठवाना चाहते हैं, वो अपने दलित नेताओं को स्थान नहीं देना चाहते हैं। कुमारी सैलजा से लेकर के चरणजीत सिंह चन्नी तक, तेलंगाना में विरमार तक, ये कांग्रेस पार्टी के चाल चेहरे और चरित्र को बताती है।
10: ठीक है, आपकी बात आगे दूसरे मेहमानों के पास भी चलते हैं। प्रोफेसर रतन, आप इस पर जवाब भी दीजिएगा बाद में, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, आखिर विपक्ष हर जगह जाति जाति क्यों करता है, हर जगह आप बीजेपी आरएसएस को क्यों घटसीट लेते हैं? यहां पर बीजेपी कह रहे कि हमारे से कोई लेना देना नहीं, हमारे उसमें कोई नेता नहीं है, ना हमने किसी तरह के आयोजन किया, बस बीजेपी आरएसएस को हर जगह आपको बदनाम करना है।
11: हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको तो कोई लेना देना नहीं है। अगर खाली मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं 2017 से 2024 तक, तो 28% दलितों पर अत्याचार बढ़ा है, और 2023 में तो दलितों के अत्याचार पे उत्तर प्रदेश नंबर वन हो गया था। 2021 में 13,146 केसेस थे, तो 2023 में 15,133 केसेस हो गए। कमाल की बात है, लेना देना कोई है ही नहीं, अत्याचार दलितों पे बढ़ता चला जा रहा है, लेना देना कोई नहीं। ठीक ही कहते हैं, कोई लेना देना है ही नहीं इनको, क्योंकि दलितों से तो कोई सम्मान ही नहीं करना है ना। मैंने आपसे बोला ना, हर साल बीजेपी की सरकार में औसतन 13,275 मामले अत्याचार के दलितों पे दर्ज होते हैं, जो समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो औसतन 8,000 था, ऑलमोस्ट कितना हो गया सोचिए, अब कितना डबल के करीब पहुंच रहा है। तो सवाल है, लेना देना तो है ही नहीं। आप क्यों नहीं, जैसे हमने पीडीए की बात करते हैं, तो ये पीडीए की बात जब हम करते हैं तो इनको बड़ा बुरा लगता है कि कैसे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो पीछे छूट गए लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनको आगे लाने की बात समाजवादी क्यों कर रही है? समाजवादी पीडीए की बात करके क्यों सामाजिक न्याय की बात कर रही है? क्यों सामाजिक न्याय के माध्यम से समाज में जो पीछे छूट गए हैं, जो कमजोर वर्ग, उसको मुख्यधारा में शामिल कैसे हो जाए, कैसे उन पर न्याय की बात हो जाए? तो इससे ये पीड़ित हो जाते हैं और पीड़ित होकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। सवाल तो उठता है कि दलितों पर अत्याचार बढ़ा है तो आवाज तो उठेगी ना भाई, दलित क्या इस देश का नागरिक नहीं है क्या? दलित को ये अपना नहीं मानते क्या? मैं पूछना चाहता हूं, क्या उसको सम्मान मिलने का अधिकार नहीं है क्या? मैं लेकिन उस पर जवाब पूछो तो जवाब नहीं देंगे।
10: मैं लूंगा इस सवाल का जवाब, एक छोटा सा जवाब ये भी दीजिए, एक अनुराग भदौरिया जी ये बताइए कि जो हल्द्वानी में हुआ, क्या आपको लग रहा है कि जातिगत भेदभाव था इसलिए किया गया शुद्धिकरण?
11: देखिए ये इनकी आदत है, जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था तो उसका भी शुद्धिकरण किया गया था, उसको भी गंगा जल से धोया गया था, और एक मंदिर में भी ऐसा ही हुआ था। सवाल उठता है कि लगातार ये जो मानसिकता है, और उधर बात क्या करते हैं, नहीं नहीं एक मिनट सुनिए मेरी बात पूरी जाने दे, उधर दूसरी बात क्या करेंगे, देखिए यहां पे रहते हैं तो यहां पे बात करेंगे जात धर्म के नाम पे राजनीति करने की, धर्म के नाम पे नफरत की राजनीति करेंगे, बाहर जाएंगे तो क्या बोलते हैं पता है आरएसएस वाले, वसुदेव कुटुंबकम की बात करने लग जाते हैं। माने कितने चेहरे हैं, या वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हो तो फिर नफरत की राजनीति क्यों करते हो भाई? अपने ही देश में अपने ही लोग जो यहां पे माइनॉरिटी में, उनको तंग क्यों करते हो, परेशान क्यों करते हो, उनके खिलाफ इतना
10: रिएक्शन ले लेता हूं। कह रहे हैं कि दलितों के साथ उत्तर प्रदेश में बहुत अत्याचार हो गया है, और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जातिगत आधार पर भेदभाव हुआ है, और राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं।
12: देखिए राजीव जी, हल्द्वानी में जो घटना घटी है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता साफ कर चुके हैं कि उनका उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। राज्यसभा में भी जो है बिल्कुल एकदम नड्डा साहब साफ कर चुके हैं, फिर भी हम ये कह रहे हैं जिसने भी करा इस तरीके का वो करना नहीं चाहिए, हम उसके पक्षधर नहीं है। पर साथ में हम एक चीज और भी पूछना चाह रहे हैं आपके टेलीविजन पे जो साथी बैठे हैं हमारे, उनसे कि किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पे और किसी भी सूरत में ये जो लोग इस बात को बहुत तूल पकड़ रहे हैं, क्या ये खुद अपने गिरेबान में झांकेंगे कि क्या जो बाबा साहब अंबेडकर साहब को जो चुनाव हरवाया था तो क्या उस समय दलित नहीं थे बाबा साहब अंबेडकर साहब? आय से अधिक संपत्ति के केस में कुमारी बहन मायावती जी को जेल में डालने की कोशिश करी 2004 से 2014 के बीच में, बगैर शर्त के मायावती जी समर्थन दे रही थी। क्या मायावती जी कद्दावर नेता नहीं है इस देश की? क्या खड़गे साहब से मायावती जी कम है? दूसरा, ये जो अपना जब चुनाव हो रहा था महामहिम राष्ट्रपति का, तो आदिवासी दलित कह सकते हैं उसको, जो आदिवासी लोग हैं एससी एसटी में, जब उसको चुनाव हरवा रहे थे ये, तो क्या वो दलित नहीं है? क्या इन्होंने मुलायम सिंह जी को आय से अधिक संपत्ति के केस में जेल में डालने की कोशिश नहीं करी 2004 से 2014 में, वो जब समर्थन कर रहे थे सरकार का? तो ऐसी स्थिति में ये अच्छा, एक आजकल पिछले दिनों एक वो चीज और देखी थी कि वो बहुत बात को उठा रहे थे राहुल गांधी जी कि पूरे देश के किसी भी मंत्रालय में कोई भी आईएएस अधिकारी नहीं है जो सेक्रेटरी लेवल पे हो, तो जिनकी भर्ती हुई थी वो सब कांग्रेस के कार्यकाल में थे। तो क्या राहुल गांधी जी ये एडमिट करेंगे कि कांग्रेस के कार्यकाल में जितने भी आईएएस अधिकारी भर्ती हुए जो अब सेक्रेटरी तक पहुंचे हैं 30 साल के बाद 35 साल के बाद प्रमोशन होते होते, तो उस समय दलितों को साइड करके रखा जा रहा था? तो क्या इन सारी बातों को खुद के गिरेबान में झांकेंगे कि खुद दलित विरोधी हैं और अब छपने के लिए और सुर्खी में रहने के लिए और बगैर मतलब बात करने के लिए कुछ भी करेंगे? राजीव जी बस 10 सेकंड, क्या राहुल गांधी जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी पूछेंगे कि जो दलित आदिवासी गुजर मुसलमान है 600 किलोमीटर बाउंड्री पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, वे जो 370 हटने से पहले उन्हें कुछ नहीं मिला, उनकी बिल्कुल एकदम पशुओं जैसी जिंदगी थी, उन्हें कोई सुविधा नहीं थी, आरक्षण नहीं था, कोई खाने पीने का नहीं था, सड़क नहीं था, तो क्या वो दलित नहीं है? तो क्या जो देश के लिए लड़ते हैं बगैर तनखा लेते हो गुजर मुसलमान, क्या उनकी तरफ राहुल गांधी जी जवाब देंगे?
10: ठीक है, मैं जवाब लूंगा इसका रतन लाल जी से, लेकिन मैं प्रोफेसर विशाल आपके पास आते हुए कि क्या आपको लगता है कि ये गलती एक चूक हुई है कि शुद्धिकरण जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रम की अनुमति नहीं होनी चाहिए थी जिससे किसी भी तरह का गलत मैसेज जाए, लेकिन इस तरह का आयोजन आपको लगता है कि इंटेंशनली जानबूझ कर दिया गया या फिर एक हो गया संयोग भर था?
13: देखिए, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से इस प्रकार की यदि कोई घटना होती है वो नहीं होनी चाहिए, निंदनीय है, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। नंबर एक। नंबर दो, कि यहां पर मैं सुन रहा था कि अभी बैठकर जो है बड़ा प्रवचन दिया जा रहा था, मेरा सिर्फ आपसे तथ्यों पर सवाल है। अभी संविधान की बात की तो हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जब चुनाव था बंबई में, तो उनके विरोध में प्रचार पूछिए किसने किया था? कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछिएगा। और उनके हारने के बाद खुशियां मनाते हुए 16 जनवरी 1952 को एडविना माउंट बेटन को चिट्ठी किसने लिखी थी? शायद नेहरू जी ने लिखी थी। और ये बात मैं कोट कर रहा हूं उनके सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17। क्या लिखते हैं वो? अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड आउट। सी, ये बहुत दलित प्रेम की बात कर रहे हैं आज। नंबर दो, आगे बढ़िए। उनको जिन लोग बाबा साहब अंबेडकर जी को जिन लोगों ने हराया उनको पद्म भूषण पूछे किसने दिया था, किसकी सरकार ने दिया था? शायद कांग्रेस की सरकार थी। तीसरा सवाल, बाबा साहब अंबेडकर से संबंधित जो 5 स्थल हैं, चाहे वो मुहू में उनके जन्म का स्थल हो, चाहे पढ़ाई का उनका लंदन में हो, चाहे उनका दीक्षा स्थल नागपुर हो, चाहे महापरिनिर्वाण स्थल दिल्ली हो, या उनका उनकी चैत्य भूमि हो, इन 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में किसने विकसित किया, जिस पर आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में? आगे बढ़िए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न किसकी सरकार में मिला? तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार थी, पूछिए। ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था, बाकी लोगों को मिल जाना चाहिए था। आगे बढ़िए, अभी मैं सुन रहा था बड़ा समाजवादी पार्टी, इनसे पूछिए कि मायावती जी द्वारा जो जिलों के नाम रखे गए थे उन नामों को क्यों बदला था? अनुराग भदौरिया जी बताइए, अमेठी का नाम बदल कर आपने जो छत्रपति साहू जी महाराज जी के सुनना, अरे सुनिएगा
11: इस बात को,
13: अरे सुनेंगे बाप,
11: आप भूल गए इस बात को, सुनिए
13: राजू जी मैं बीच में नहीं बोला,
10: एक एक करके दोनों को समय दूंगा, राजू 30 सेकंड में आप भी कंप्लीट कर दें,
13: मैं बोलूंगा ही नहीं,
10: अनुराग जी बीच में नहीं बोला, अनुराग जी
13: मैं आपको बीच में नहीं बोला,
10: अनुराग जी उनको सुन लीजिए,
13: तथ्यों के आने पर पेट में दर्द होने लगता है क्या,
11: सुनने की आदत डाल दिया, आप झूठ बोलते हैं, बात को
13: झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं, रमाबाई नगर जिले का नाम कौन बदला, महामाया नगर जिले का नाम कौन बदला, भीम नगर जिले का नाम कौन बदला, प्रबुद्ध नगर जिले का नाम कौन बदला,
11: संत अम्बेडकर साहब के विचारों को आगे बढ़ा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने से रोक रही थी,
13: और तो 2012 के चुनाव में सपा के जीत के बाद जब विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ और सीतापुर के भविया गांव में दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ, बलिया के घुज गांव में दलितों पर अत्याचार हुआ, जो पदोन्नति के आरक्षण,
10: अनुराग जी अगर आप ऐसे बीच में बोलेंगे तो फिर मैं आप फिर तो आपको अतिरिक्त समय की आवश्यकता ही नहीं होगी क्योंकि आप तो अभी बोल चुके हैं, अनुराग जी अपने समय का जी अपने समय का इंतजार करिए, मैं समझता हूँ कि आपके अंदर बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत कुछ आपने रखा है, आप आराम से जब मैं आपको समय दूंगा तब आप ही स्क्रीन पर रहेंगे, आप सब बोलिए क्या क्या झूठ है, आप एक्सपोज कीजिए, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर रतनलाल मैं चाहता हूँ कि आप जो है प्रोफेसर जो विशाल जी ने बात सवाल आपकी तरफ दागे उनका जवाब दें आप।
8: चलिए ये बताइए कि बाबा साहब राइटिंग एंड स्पीचेस किसने छापा, कब छपा, क्या भाजपा सरकार बाबा साहब की किताबें छापती है, प्रतीकों में खेलती है, सिर्फ वोट चाहिए। नंबर दो, जितने यहाँ विशेषज्ञ बैठे हुए हैं एनडीए के और राजनीतिक विश्लेषक, एक बार नारा लगवा दीजिए संविधान जिंदाबाद, बोलेंगे संविधान जिंदाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद, बोलेंगे मनुस्मृति सबसे बड़ा अमानवीय ग्रंथ है, नंबर एक। नंबर दो, कांग्रेस ने आजीवन बाबा साहब को राज्यसभा में रखा, मिनिस्टर भी बने वो, और बाबा साहब का 24 अप्रैल 1948 का भाषण लखनऊ का जाके पढ़ लीजिए कि क्या कह रहे थे, मैंने कांग्रेस सरकार क्यों ज्वाइन की। भाई दलित मिडिल क्लास का जो फॉर्मेशन हुआ है, गुरु प्रकाश जी बैठे हुए, इनके पिताजी भी बीजेपी में वरिष्ठ नेता है, हमारे दोस्त भी हैं, बताइए कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में फ्रीशिप सब मिला कि नहीं, नौकरियां मिली कि नहीं, पेंशन मिला कि नहीं मिला, दलितों के लिए कभी स्वर्णिम काल नहीं था, सोने घी की नदी नहीं बह रही थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने अफर्मेटिव एक्शन लेकर पब्लिक सेक्टर में रिजर्वेशन, बैंक का नेशनलाइजेशन, पब्लिक सेक्टर में सब जगह रिजर्वेशन लगाना, गैस एजेंसी पेट्रोल पंप में रिजर्वेशन लगाना, ये तो अडानी इंडियन ऑयल बना रहे हैं, कितने पब्लिक सेक्टर यूनिट आरएसएस था बीजेपी ने खोला इस सरकार ने, कितने यूनिवर्सिटी कितने कॉलेज खोले,
13: दर्द समझ में आता है,
8: सुनिए ना सुनिए मिश्रा जी, मनुस्मृति मुर्दाबाद बोलिए,
13: आरएसएस से आपका दर्द समझ में आता है, बाबा साहब अंबेडकर
8: आपको समझ में आ रहा है,
13: हरवाया था बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव क्यों हरवाया था,
8: मिश्रा जी बोलिए ना,
13: बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव क्यों हरवाया था,
8: बोलिए
13: पंडित नेहरू की चिट्ठी में लिख रहे थे अंबेडकर हैज बीन लॉक्ड आउट,
8: दिल में मनुष्य को बनने चले राजनीतिक विश्लेषक,
13: बताइए
8: अरे आरएसएस बताइए कहिए ना,
13: अरे बताइए
8: रजिस्ट्रेशन कराया
13: क्यों नहीं किया, चुनाव क्यों करवाया,
8: मिश्रा जी आपके माथे में क्या
13: क्यों नहीं विकसित किया,
8: इनमें क्या है, मैं जानता हूँ
13: होता है,
8: मुर्दाबाद बोलिए, मुर्दाबाद बोलिए,
10: ठीक है प्रोफेसर रतनलाल आपकी बात भी आ गई, हम फिर से डिबेट से डिरेल फिर से हो रहे हैं, लेकिन गुरु प्रकाश जी मैं फिर से टॉपिक पर वापस लेकर आ रहा हूं, मेरा सवाल है कि राहुल गांधी जो मांग कर रहे हैं कि भाई एससी एसटी एक्ट के तहत इसमें मुकदमा होना चाहिए, क्या आपकी सरकार गंभीरता से इस पर विचार करेगी, प्रोफेसर साहब हो गए आपकी बात आ गई, गुरु प्रकाश जी का समय,
9: नहीं नहीं देखिए राजीव जी ऐसा है कि मैंने पहले बोला दूसरी बार बोला और तीसरी बार बोल रहा हूं कि इस केस से भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है, और राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, झूठ के आधार पर क्या सुनवाई होनी चाहिए, मैं सुन रहा था अभी कांग्रेस के लोगों की बातों को, मतलब विचित्र लगता है, ये आरक्षण की बात करते हैं, अनुच्छेद 370 कश्मीर में था, सफाई कर्मचारी का बेटा सफाई कर्मचारी बनेगा, भले उसके पास पीएचडी हो लेकिन वो टीचर नहीं बन सकता है, वो प्रोफेसर नहीं बन सकता, ये है नवसामंती मानसिकता। राजीव जी कांग्रेस पार्टी की सरकार इतने प्रदेशों में, पूछे कितने दलित मुख्यमंत्री है, पूछे कितने आदिवासी मुख्यमंत्री है, जवाब पता आपको, शून्य। ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले, आरक्षण का विरोध करने वाले बाबा साहेब अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम, सीताराम केसरी, टीएनजी अय्या, वी नारायण स्वामी, विक्रम मार्ग, जी परमेश्वर, कुमारी शैलजा, चरणजीत सिंह चन्नी, राजेश गौतम, ये सब के सब दलित समाज के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे और कांग्रेस पार्टी ने इनको इनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया, इनको अपमान पहुंचाया। राजीव गांधी ने सदन के पटल पे कहा था कि मैं मंडल कमीशन की सिफारिशों का विरोध करता हूं। जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लेकर के 1961 में कहा था कि आरक्षण से सेकंड क्लास सिटीजन पैदा होते हैं। तो ये जवाहरलाल नेहरू सही कि कांग्रेस पार्टी सही, राजीव गांधी सही कि राहुल गांधी सही? आप बता दीजिए, आज की तारीख में बाबा साहब अंबेडकर ने किताब लिखा था व्हाट कांग्रेस डिड टू द अनटचेबल्स, बाबा साहब अंबेडकर सही कि कांग्रेस पार्टी सही? बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हरवाने वाली कांग्रेस पार्टी, बाबू जगजीवन राम को यह कहना पड़ा कि कांग्रेस पार्टी के कारण इस देश में कभी कोई प्रधानमंत्री दलित समाज का बन नहीं सकता है, बाबू जगजीवन राम सही कि कांग्रेस पार्टी सही? मतलब मुझे विचित्र लगता है कि आज की तारीख में राहुल गांधी जी ये नैतिक अधिकार कहां से लाते हैं, ये मॉरल अथॉरिटी कहां से लाते हैं? कुमारी शैलजा खड़ी रहेंगी, वी नारायण स्वामी उनका चप्पल पकड़ेंगे और ये राहुल गांधी कहते हैं दलित चप्पल पकड़ने के लिए होता है क्या? यहां राहुल गांधी जी रोल खा रहे हैं, कुमारी शैलजा उनसे बहुत वरिष्ठ हैं, वो खड़ी हैं यहां पे दलितों से चप्पल पकड़वाने वाले ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे देखिए बेचारे दरवाजे के बाहर से झांक के देख रहे हैं। इंडिया टुडे का रिपोर्ट है, ये खड़गे जी को मात्र पॉलिटिकल फॉर्डर के रूप में उपयोग कर रहे हैं, ये मात्र राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं।
10: प्रोफेसर रतन लाल, आप थोड़ा सा जवाब दीजिए, और ये इस तरह की बातें भी है कि भाई सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना दर्द बयां किया था, लेकिन उनको इंटरनली सपोर्ट नहीं मिला और शायद 20 दिन लग गए तमाम लोगों को समझने में कि इस मुद्दे को हम उठा सकते हैं।
8: सुनिए, बीजेपी के जो प्रवक्ता है ना, वो भी दलित समाज के, उनको बोलिए एक बार, बोले मनुस्मृति मुर्दाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद बोले। बाबा साहब ने जब मैनिफेस्टो लिखा था अपना 1951 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैनिफेस्टो, उसमें साफ साफ लिखा था कि आरएसएस जनसंघ ऐसे पार्टी, प्रतिक्रियावादी पार्टी, देश पर अभिशाप है, उनके साथ कोई समझौता नहीं होगा।
10: लेकिन प्रोफेसर
8: बाबा साहब के नाम लेकर उसी संघ में जाकर
10: धर्म ग्रंथों से इतनी दिक्कत क्यों है?
8: आरएसएस को
10: हिंदू धर्म ग्रंथों से इतनी क्यों दिक्कत है? एक आरोप आप पर भी लगता है ना, आरोप आप पर यह लगता है कि आप एक ही धर्म को उठाते हैं, अगर उसमें कुछ खामियां हैं उसका इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं ना कि भाई आपको धर्म गुरुओं के पास जाना चाहिए, धर्म गुरुओं से समझना चाहिए कि उसका उसका उसका असली मतलब क्या है। प्रोफेसर साहब
8: अभी तो ऐसे मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मनुस्मृति क्या मुसलमान के बारे में, ईसाई के बारे में, सिख के बारे में, किसके बारे में? हिंदुओं को अपमानित करने,
10: आप एक ही धर्म का क्यों विषय उठाते हैं? और भी तो धर्मों में कमियां होंगी ना, कुछ ना कुछ उनको क्यों उठाते हैं?
8: मनुस्मृति मुर्दाबाद, हिम्मत नहीं है इनकी बोलने की। मैं जानता हूँ हिम्मत, टिकट कट जाएगा, पोस्ट हटा दिया जाएगा।
10: ठीक है, आप अनुराग भदौरिया जी कुछ ऐड करेंगे फिर मैं आऊंगा आपके पास, मलुक जी आऊंगा।
8: बाबा साहब को समझिए पहले,
10: अनुराग जी ऐड करिए क्या कहना चाहते
8: हैं, इसके लिए बाबा साहब ने मना किया था।
11: सवाल ये है कि मैं तो इतना ही पूछना चाहूंगा, मैं देख रहा था आरएसएस के अब तक 6 सरसंचालक हुए हैं, डॉक्टर के बी हेडगेवर हुए, गोलवलकर जी हुए, दत्तात्रेय हुए, रज्जू भैया हुए, सुदर्शन जी हुए, मोहन भागवत जी हुए। मैं खोज रहा था इसमें कोई दलित से है क्या, दलित समाज से कोई है क्या? एक भी नहीं बना पाए आप, लंबी लंबी बातें मत कीजिए, एक भी सरसंचालक आपका दलित समाज से नहीं है, तो इसलिए लंबी लंबी बातें तो मत कीजिए। दूसरी बात, अभी ये हमारे एक साथी मिश्रा जी लंबी बातें छोड़ रहे थे, मैंने उनसे बोला 1991 में इटावा से जो अंबेडकर जी के विचारों को आगे बढ़ा रहे थे श्री काशीराम जी को, वहां से लोकसभा ले जाके लड़ा के सदन में पहुंचाया था, जिससे कि दलित की आवाज मजबूत हो, मजबूती से संसद में दलितों की आवाज उठाएं, क्योंकि हम हमेशा से पीडीए की बात करते आए हैं, हमेशा से हमारा ये
10: पी को फिर से थोड़ा सा बता दीजिए, पी आपका कभी पंडित हो जाता है, कभी पिछड़ा हो जाता है, मतलब जो ब्राह्मण है वो भी कंफ्यूज रहते हैं कि आपका पी एग्जैक्टली है क्या, किसके साथ है?
11: एक्चुअल क्या, नहीं एक्चुअल ये समझ नहीं पाते, क्योंकि हम कुछ सबको जोड़ के चलते ना, समाज को, हिंदुस्तान का समाज है ना, सबको जोड़ के चलते हैं, पीछे पंडित भी है, पीछे पिछड़ा भी है, पीछे प्यार भी है, पीछे हमने कहा ना पंडित
10: आए। तो आप एक काम करिए, प्रोफेसर रतन लाल कह रहे हैं आप मनुस्मृति मुर्दाबाद, क्या आप कहेंगे इस बात को?
11: बात पूरी हो
10: जाए, क्या आप कांग्रेस की इस बात को कहेंगे, क्या आप कहेंगे मनुस्मृति मुर्दाबाद?
11: अरे पूरी बात हो जाए, अरे मेरी बात पूरी होने दीजिए प्रभु, बात पूरी होने दीजिए, बीच में टोक देंगे तो पीटीए की बात नहीं हो पा रही। पी की बात की, मैं पी की भी बता रहा था, हम सबको सामूहिक लेकर चलते, पी से पंडित भी है, पी से पीड़ित भी है, पी से पिछड़ा भी है, और पी से प्रेम भी है, तो हम सबको लेके चलते हैं, डी से दया भी है, डी से दलित भी है, और हम ऐसे अपनापन भी है, अल्पसंख्यक भी है, आदि आबादी भी है, अगले पिछड़े भी हैं, तो हम सबको समाहित करते ना पूरे समाज को। समाज को जब तक आप जोड़ के नहीं चलोगे तब तक हिंदुस्तान को नहीं समझ पाओगे। हिंदुस्तान को समझना है तो सभी वर्गों को जोड़ना पड़ेगा, सबका दर्द समझना पड़ेगा, सबको अपनाना पड़ेगा। जब अपनाओगे तभी तो उनको एक कर पाओगे ना, तभी तो हिंदुस्तान को आगे बढ़ा पाओगे। हिंदुस्तान को यहाँ पे नफरत की राजनीति आगे नहीं बढ़ा पाओगे।
10: क्या कांग्रेस जो कर रही है मनुस्मृति को उठाकर टारगेट कर रही है, वो सही कर रही है या गलत कर रही है?
11: देखिए हमारे, हम आपको बहुत सीधी सी बात करते हैं, हमारा हमेशा से नारा पीडीए का रहा है। ये आज से नहीं, शुरुआती दिनों से जब से समाजवादी पार्टी बनी, आदरणीय नेताजी भी पीडीए की बात करते थे। वो भी कहते थे समाज के अंदर में जो महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए, महिलाओं को हमारे समाज में देखो आधी आबादी है। अगर मान लो स्कूटर के दो पहिए हैं, एक पहिया से आप स्कूटर चला लोगे क्या? या साइकिल हमारी है, साइकिल में दो पहिए है ना, एक साइकिल एक पहिए से साइकिल नहीं चलेगी ना, दोनों पहिए चाहिए ना साइकिल में चलने के लिए। हाँ। जब दो पहिए साइकिल में लगेंगे, दो पहिए लगेंगे तो कितनी मजबूती से चलेगी साइकिल, सोचो आप।
10: कांग्रेस
11: कितनी
10: मजबूती शानदार
11: तरीके से चलेगी जिसमें आधी आबादी भी शामिल हो।
10: ठीक है मल्लुक नागर जी, मैं विशाल जी आपके पास
11: समझ पा रहे हैं, इसलिए मल्लुक नागर जी को आगे लाना है।
10: मल्लुक नागर जी, विपक्ष को बस ये दिखाई दे रहा है इस समय कि आप कंप्लीटली दलित विरोधी हो गए।
11: उनको भी अपने पैरों पे खड़े होने का पूरा मौका मिलना चाहिए।

0: रोध ही रहे हैं।
1: अरे
0: तो रोको ना भाई साहब प्लीज, देखिए
1: क्या
0: आपने जो पूछा है,
1: जो किसानों का सम्मान नहीं करते,
0: आपने जो पूछा है, आपने जो पूछा है, ये इसको डीजल के इंजन को जरा बजना बंद करो ना प्लीज।
1: लाठी चला रहे
0: डीजल के इंजन को बजना,
1: किसानों को जो
2: यहाँ पे अनुराग जी प्लीज मुझे मजना फिर फेटर डाउन करो, अच्छा नहीं लगा
1: यार।
2: आपको सब सुन रहे हैं तो आपको भी सुनना चाहिए ना,
0: ये डॉक्टर को चेक कराना पड़ेगा इसका। देखो इसके बीच में बिल्कुल नहीं बोला मैं, इसे ये पता नहीं, बचाऊंगा इसके बीच में कूद रहे हैं,
1: तो रोक आज ही लागू हो जाए
0: इनको, इनको रोको प्लीज यार। देखो राजीव जी ये ठीक है,
2: मैं तो सर मैं यही कह सकता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि प्लीज आप वेट करिए।
0: अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत जोर दिया मनुस्मृति के बारे में, जिंदाबाद या मुर्दाबाद कहलवाने के लिए। मैं कह रहा हूँ वो जिंदाबाद या मुर्दाबाद सब्जेक्टिव और डिबेटेबल हो सकता है, पर राहुल गांधी जी ने अभी 3 दिन पहले मनुस्मृति के अनुच्छेद 9.2, 9.3, 9.6 के अनुसार लेडीज को हक मिले ये बात उठाई। तो क्या राहुल गांधी जी ठीक थे या उनके प्रवक्ता ठीक हैं, या राहुल गांधी जी गलत थे उनके प्रवक्ता ठीक हैं? हालांकि लेडीज में 147 करोड़ लोग हमारे इस देश में हैं, जिसका 50% आधी महिलाएं 73.5 करोड़ बैठती हैं, और 73.5 करोड़ का 33% 255 महिलाएं संसद में जाना बैठती हैं। हालांकि उन्होंने विरोध करा और उनके घर में केवल दो ही महिला हैं, सोनिया गांधी जी माननीय और माननीय प्रियंका गांधी जी, और दोनों सांसद हैं, वो बात अलग है। अच्छा मैं एक बात कह रहा हूं सीधा, क्या जगजीवन राम जी दलित थे या नहीं थे? जो उप प्रधानमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनने का नंबर आया तो उनके खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र करके कांग्रेस ने और ऐसे जगह ले जा करके खड़ा करा, वो किसी भी सूरत में प्रधानमंत्री ना बन
2: ठीक है। मलूक जी मैं आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर इस समय आ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दे दिया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर हमला बोला है और धामी ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। धामी हमलावर है, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति जाति पाति भेदभाव की नहीं है। तो इस विषय पर उनका बयान भी आ गया, आपको सुनाते हैं क्या कहा है पुष्कर सिंह धामी।
3: उत्तराखंड में मुझे लगता है कि हालांकि उन लोगों का भारतीय जनता पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, इन्होंने भी ये शुद्धिकरण वहां पर हवन किया था, लेकिन उत्तराखंड में कोई नहीं जानता कि खड़गे जी की जाति क्या है। वो तो वहां पर जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए और वहां पर गंदगी की गई, वो एक शुद्ध स्थान था, धार्मिक स्थान था, जहां पर रामलीला का मंचन होता है, बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, ऐसे आयोजनों पर जो गंदगी हुई थी, जो धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए थे और एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाए थे, उसके विरोध में लोगों ने जो धार्मिक संगठन थे उन्होंने उस वहाँ पर शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम किया था वो कार्यक्रम था। और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है, इसलिए बेवजह के मुद्दों को जो है वो आगे करके, आप लोग स्वयं हल्द्वानी के लोग हैं, आप लोग यहाँ के साक्षी हैं, उत्तराखंड में कौन इस बात को आज स्वीकार करेगा कि यहाँ पर जाति पाति का भेदभाव होता है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ पूरे देश के अंदर काम किया जा रहा है।
2: तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, लेकिन प्रोफेसर विशाल मिश्रा धार्मिक उन्माद वाले बयान थे तो उसके लिए क्या शुद्धिकरण होता है? अगर गंदगी थी तो गंदगी को तो सफाई करके साफ किया जाता है ना, शुद्धिकरण से साफ होती है गंदगी?
4: नहीं देखिए राजू जी, अब वहां पर क्या हुआ, किस प्रकार के नारे लगे, क्या बातें हुई, जब धार्मिक स्थल है तो वो तो एक अलग विषय है, वो तो जांच की बात है। लेकिन अभी यहाँ पे जो मैं सुन रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर बोल रहे थे और संघ को लेकर बोल रहे थे, तो उनको भी जरा जानकारी के लिए बता दीजिए कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संघ क्या कि शिविर में गए थे जब जो ऐसा तो क्या कहा था 1939 में, कि मैं इसको देख के बहुत सरप्राइज हूँ। तो देखिए ऐसा है कि जो तथ्य है उन तथ्यों पर आप किनारा नहीं कर सकते। और समाजवादी पार्टी के मैंने आपको नाम गिनाए ना, 7-8 जनपदों के नाम बदल दिए। पूछिए नाम क्यों बदलने, नाम बदलने का क्या शौक था भाई? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए ना कि भाई जब आप नाम बदल रहे होते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई आपकी सोच होती है। तो खैर तब नहीं बताए थे पब्लिक को, तो आज आपके माध्यम से पब्लिक को बता दें कि काशीराम नगर का नाम चेंज करके कासगंज क्यों किया, महामाया का नाम चेंज करके हाथरस क्यों किया, रमाबाई नगर का नाम चेंज करके कानपुर देहात क्यों किया, भीम नगर का नाम चेंज करके संभल क्यों किया, संत रविदास नगर का नाम चेंज करके जो है भदोही क्यों किया, इन सब पूछिए ना। तब नहीं बताए थे तो अब बता दें।
2: अनुराग जी बस इसी पर्टिकुलर सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ
4: बस दे दीजिए
2: इसी पर्टिकुलर सवाल का जवाब दे दीजिए
4: बताइए।

0: क्यों देसी लोग के नाम?
1: मैंने इनको एक ही शब्दों में सुनो सुनिए रुक जाइए अब रुक जाइए बोलने तो दीजिए। मैंने एक ही शब्द में जवाब दे दिया। हम बोलोगे जो पीडीए की बात करते हैं, हम बोलोगे जो आदरणीय काशीराम जी को लोकसभा में पहुंचाया था इटावा से आदरणीय नेताजी ने कि वो मजबूती से आवाज उठाए दलितों की। आप की तरह हम नाम बदलने की राजनीति नहीं करते, हम काम पे विश्वास करते हैं, हम काम करते हैं, काम करके प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं।
0: उनको विशाल जी आप कंप्लीट करने दीजिए, मुझे इसी का सवाल का जवाब चाहिए था, आपने नहीं दिया। देखिए अभी अनुराग जी ठीक है, विशाल जी कंप्लीट कर दीजिए 20 सेकंड में, चूंकि समय कम है तो मैं सबके पास जाना चाहता हूँ। विशाल जी कंप्लीट करें 20 सेकंड्स में।
2: देखिए राजू जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम आपके सामने स्पष्ट हो गया।
1: हम तो अपने काम गिनाते हैं, हमारे काम का हमने बोला ना, अरे मैंने तो बोला हम काम गिनाने वाले लोग हैं, नाम बदलने वाले लोग नहीं है। नाम बदलने की आदत आपकी है। हमने मेट्रो बनाई, हम काम गिनाते हैं। हमने एक्सप्रेस वे बनाया, हम काम गिनाते हैं। हमने इकाना बनाया, नाम आप हदे बदल दिए, हम काम करते हैं। 100 डायल हमने बनाया, आपने 112 कर दिया, कोई बात नहीं, कर दीजिए, हमें क्या पड़ता है। हमने तो पुलिस सिस्टम
0: पर यूपी की जनता ने आपके इस काम को नहीं समझा ना, ये भी तो रियलिटी है। मैं अभी
2: इसमें नौकरी दी है, कितना नौकरी दी हो रहा भैया,
1: आपका काम हमारा नहीं है। हम स्कूल कॉलेज बनाने वाले हो रहा है, मेडिकल कॉलेज बनाने वाले लोग हैं, यूनिवर्सिटी बनाने वाले लोग
2: हैं,
1: हम पार्क बनाने वाले लोग हैं, हम वो लोग हैं जो आपको मेडिकल फैसिलिटी मिले, हम वो लोग हैं जो हेडक्वार्टर को चार लाइन से जोड़ते हैं, हम वो लोग हैं जो गांव का विकास।
0: फिर से डिबेट डिरेल हो रही है, हम टॉपिक से इधर उधर भटक रहे हैं, वो मैं नहीं चाहता। प्रोफेसर रतन लाल आप ये बताएं कि बीजेपी कर रहे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं कि कांग्रेस के पास उत्तराखंड में तो खासतौर पर कोई मुद्दा ही नहीं बचा, आप मुद्दा विहीन हो गए हैं, तो आपको एक मुद्दा क्रिएट करना पड़ रहा है, मुद्दे ही नहीं है।
3: तरुण विजय पांचजन्य के संपादक थे, सुन लीजिए, दलित को मंदिर प्रवेश कराने गए थे उत्तराखंड में, दौड़ा दौड़ा के उनको कूटा था। एक सेमिनार में मैं उनके साथ था, वीडियो मैंने दिखाई थी, नंबर एक दौड़ा दौड़ा के कूटा था, कपड़े फाड़ दिए थे, मुसलमान ने उनको बचाया था, खुद उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, नंबर एक। नंबर दो, बाबू जगजीवन नाम पे बात हुई है, बोले फैक्ट चेक कर लीजिए, जनता पार्टी में जब वो गए थे तो आरएसएस जगजीवन बाबू के नाम पे चुनाव लड़ा गया था, क्योंकि सारे लोग जेल में थे, आरएसएस ने बाबू जगजीवन नाम को नहीं बनने दिया प्रधानमंत्री, धोखा आरएसएस ने दिया है, ये इनको फैक्ट नहीं पता है। प्रधानमंत्री बनना था जगजीवन, कांग्रेस की ओर से कभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं थे बाबू जी, जब वो थे तो उन्होंने इंदिरा गांधी के समर्थन में मुरारजी देसाई को हराने के लिए वापस ले लिया था अपना नॉमिनेशन, आरएसएस उनके नाम पे लड़ी थी चुनाव, जनता पार्टी की सरकार, जब प्रधानमंत्री बनने के लिए आया जब, तो किसी ने कहा कि चमार हमारा प्रधानमंत्री होगा, फैक्ट चेक करिए, लिखे था ये, मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ।
0: इतिहास की बात हो गई, इतिहास की बात प्रोफेसर साहब हो गई है, अभी मूल सवाल पर भी तो आ जाइए कि
3: गांधी ने ऑफर किया था प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, सुन लीजिए बात,
0: मुद्दे नहीं है आपके पास उत्तराखंड में, कह रहे हैं
3: मुद्दा है ना, बाबू जगजीवन नाम कांग्रेस में रहे, दलितों को अधिकार मिले, मिडिल क्लास बना, कोई घी की नदी नहीं बह रही थी, ये जो शर्ट पैंट पहन के घूम रहे हैं और हमारे और इनके पिताजी जो नौकरी कर रहे हैं, पेंशन पा रहे हैं, बीजेपी उसको छीन रहे नहीं दिख रहा है क्या? पब्लिक सेक्टर का
0: मल्लुक जी बोलिए,
3: नागर साहब हाथ उठा रहे हैं,
0: प्रकाश आपके पास भी आ रहा हूँ, मल्लुक जी
3: जीवन आपके बारे में क्या बोला गया, मैं बोलूं ना,
1: ये जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि ये जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि आरएसएस के लोगों ने विरोध करा था, अरे भाई दूसरी पार्टी के दूसरी सोच के लोग विरोध भी करें तो क्या कांग्रेस के हाथ पैर बांध दिए थे उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए? और जहां तक बात है वीपी मौर्या दलित नेता थे, उनकी क्या हालत करी कांग्रेस ने? चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के देवता, किसानों के मसीहा और पिछड़े समाज से आते हैं, उनको 3 महीने राजेश पायलट इतना बड़ा कद्दावर नेता कभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, सचिन पायलट राजस्थान को धोखा दिया, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा और गहलोत को चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो कांग्रेस की तो फितरत है पिछड़ों को और दलितों को धोखा देना। देखिए राजीव जी, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएंगे 1913 से जो 1947 तक था, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बाबा साहब हमेशा बहस करते थे, बाबा साहब की हमेशा खिलाफत करते थे, बड़ी टेंशन रहती थी। 1947 से 1952 तक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जब भी डिस्कशन होता था तो बाबा साहब की तलखी दिखती थी, इसीलिए बाबा साहब के खिलाफ उन्होंने उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को हरवाने का काम करा इन्होंने, इनकी मानसिकता ही दलित विरोधी है, इनकी मानसिकता पिछड़ों के विरोधी है, इसीलिए इनकी हालत।
0: ठीक है, गुरुप्रकाश एक पॉलिटिक्स समय एक और देखने को मिल रही है आरएसएस को लेकर, मोहन भागवत के न्यूयॉर्क दौरे को लेकर, उनके संबोधन की स्पीच को लेकर, जहां पर मतलब जो वहां की मीडिया है वो भी और बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी आपने सुना होगा, वो बिल्कुल उसको अलग तरीके से देखा, हमने तो प्रोटेस्ट भी देखे हैं, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं?
4: नहीं देखिए, ऐसा है राजीव जी कि अभी बहुत सारे बातें हुई, बहुत सारे आरोप लगे कि भाई संघ के सरसंचालक कौन है, किस जाति से आते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, संघ भाजपा जब यहां पे आई भाजपा सत्ता में, तब देश का सरसंचालक दलित हुआ भाई। देश की सरसंचालक पहली बार देश के इतिहास में आदिवासी की बेटी हुई है, और आप अभी बात कर रहे हैं। आपको पता है राजीव जी, मैं आपको एक तथ्य देना चाहता हूं, देश के इतिहास में सिर्फ एक बार आरक्षण का विधिवत विरोध सदन में हुआ है। पता किसने किया था? समाजवादी पार्टी के बैठे हुए हैं ना, उनसे पूछिएगा एक बार, आरक्षण दलितों को प्रमोशन में ना मिले ये सुनिश्चित किया समाजवादी पार्टी ने। और देखिए आज, मतलब इनका हिम्मत की मैं दाद देता हूं, आजम खान से पूछ के आइएगा। बाबा साहब अंबेडकर पे डिबेट हो रहा था, आजम खान वही व्यक्ति है जिसने पब्लिक रैली में कहा था बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए, ये देश का सबसे बड़ा भूमाफिया है। ये लोग बताएंगे क्या? ये पीडीए की बात करेंगे क्या? मतलब मुझे विचित्र लगता है, पहली बार देश में उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत में महिला मुख्यमंत्री बनी दलित समाज की, उनकी हत्या तक का षड्यंत्र करने वाले ये पीडीए के नाम पे आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि किस प्रकार समाजवादी पार्टी कांग्रेस, मतलब तथ्यों का इतना अभाव हो गया है। बाबू जगजीवन राम लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, उप प्रधानमंत्री बने नहीं बने, उप प्रधानमंत्री कब बने? जब भारत में जनसंघ के समर्थन के द्वारा सरकार बना तब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। मतलब इतना तो आपको इतिहास का इल्म होना चाहिए, इतनी तो आपकी इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, जाकर के पढ़ के आइए बाबा साहब अंबेडकर की किताब व्हाट कांग्रेस डिड टू द अनटचेबल्स, उसके बाद आप बात करिएगा। कांग्रेस कहानी है, हमारा चप्पल उठाए, हमारा चप्पल उठाए, दलित चप्पल उठाएगा क्या? दलित चप्पल उठाएगा कांग्रेस में? दलित चप्पल उठाने वाला आपका बनेगा क्या? वी नारायण स्वामी मुख्यमंत्री हैं, चप्पल उठवा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी जी, और कांग्रेस पार्टी को शर्म नहीं आती है। मतलब मुझे बड़ा विचित्र लगता है कि खड़गे जी की बात कर रहे हैं, नारायण स्वामी की बात कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर की बात कर रहे हैं,
0: प्रोफेसर रतन साहब जल्दी से समय कम,
4: नैतिक अधिकार नहीं है। क्षमा चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी हैज नो मॉरल अथॉरिटी टू स्पीक ऑन दलित इश्यूज, कोई नैतिक अधिकार नहीं है कांग्रेस पार्टी को दलितों के प्रति
5: बोलने का।
4: संविधान जिंदाबाद कहिए आप,
5: ये देखिए ना, देखिए
4: चप्पल
5: और सुनिए, दिखा रहे हैं बीजेपी ने बनाया था,
4: चप्पल दिखा रहे हैं आप, चप्पल उठाने के लिए है कांग्रेस पार्टी, चप्पल उठाने के लिए है यहाँ पे दलित, चप्पल उठाने के लिए है क्या? यही देखिए आप, चप्पल उठाएंगे दलित समाज के नेता, चप्पल उठाने के लिए, यही यही दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का।
0: ठीक है,
4: ये देखिए
0: अनुराग भट्ट जी, लास्ट 30 सेकंड्स
5: की बात कर रहे हैं, संसद मार्ग पे जाके संविधान चला दिया,
1: देखिए देखिए, इस देश के अंदर में कोई अगर पिछड़ों का दलितों का सम्मान कर रहा है तो समाजवादी पार्टी कर रही है। लगातार समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, पीडीए के नाम पे समाजवादी पार्टी समाज को जोड़ने की बात कर रही है।
0: मुझे समय इतनी इजाजत दे रहे, माफी के साथ आप सबको रुकना पड़ रहा है, थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दंगल में रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच In association with
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: इस अभियान से उनका मनोबल गिरना और फोर्सेस का मनोबल बढ़ने का एक बहुत क्लियर बेंचमार्क ये है कि 4-5 घंटे की फायरिंग के बाद वो कैंप लगा।
9: हमने उन एरियाज को डोमिनेट किया जहां पे पहले कभी उनका डोमिनेंस माना जाता था।
10: आज कोबरा कमांडोज के साथ हम वही तस्वीर, वही हकीकत आपको दिखाने वाले हैं।

0: लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
1: छक्का
0: सब कैशलेस हो गया
1: है। हाँ ला, ला भाई मेरा बैट,
2: वो अभी तो ठीक हुआ तो
3: चार्ज हुआ यार।
4: बैट किसका है?
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: इतिहास, धर्म और संस्कृति की त्रिवेणी पर सजेगी यूपी के विकास की महफिल। कुंभनगरी प्रयागराज में होगी बड़े मुद्दों पर बात। विकसित यूपी बैठक प्रयागराज जल्द आ रहा है सिर्फ यूपी तक पर।
3: देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है।
4: हालांकि मुख्य सड़क, आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है, लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है, दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास अमित वधवार के साथ में आशुतोष मिश्रा आज तक।
5: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती?
6: ये तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। हर तरीके की एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स।
1: सो सॉरी।

0: केयरफुल रहना चाहिए, वेरी गुड।
1: भले ही हल्द्वानी में खरगे के दौरे के बाद हुए शुद्धिकरण की ये तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हो, लेकिन आज जब राहुल गांधी ने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा तो कांग्रेस अध्यक्ष के अपमान का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण की याद दिलाई। एनडीए के नेता जीतन राम मांझी के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण का भी जिक्र किया और मामले में FIR दर्ज करने की मांग की।
0: जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में, उन पर FIR लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, RSS के लोगों ने शुद्धिकरण किया है, तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ FIR SC/ST एक्ट में FIR दर्ज किया।
1: जवाब में एनडीए के नेता कांग्रेस राज की याद दिला रहे हैं। दलितों के विकास के लिए कांग्रेस ने क्या किया वो बता रहे हैं।
2: अगर कोई कई जगह वेदर इट इज दिस स्टेट और दैट स्टेट अगर हो रहा है तो उसको ठीक करना हमारा सबका जिम्मेदारी है, लेकिन इसको बहाना बना के ड्रामा करने के लिए उधर जाते हैं तो लोग सबक सिखा है, आगे भी सिखा देंगे।
3: जो लोग आज इस बात की चिंता कर रहे हैं, देश ने आजादी के बाद लंबे समय तक मौका तो उन्हीं को ही दिया था ना, आज किस मुंह से वो कह रहे हैं कि आज भी समाज में भेदभाव मिटा नहीं है। कई उदाहरण उन्होंने गिनाए, अगर ये उदाहरण आज वो गिना रहे हैं तो आप बताइए एक लंबे समय तक आजादी के बाद और लगभग 4.5-5 दशक तक तो निरंतरता में कांग्रेस की सरकारें रहीं, उसके बाद भी कांग्रेस के सहयोग की सरकारें रहीं, उसके बाद भी समाज में अगर भेदभाव अगर होता रहा तो कहीं ना कहीं नींव को मजबूत करने में सफल तो ये लोग भी नहीं रहे।
1: उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुद्धिकरण का मुद्दा राज्यसभा में गूंज चुका है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी। उधर शुद्धिकरण के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर सियासत का आरोप लगा रही है।
4: कांग्रेस जिस तरह से अफवाह फैलाने का काम कर रही है और दलित समाज को भ्रमित करने का काम कर रही है कि वहां पर हल्द्वानी में रामला ग्राउंड में शुद्धिकरण किया गया है और जब खड़गे जी दलित समाज से आते हैं उनका अपमान हुआ है, मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की कोई भी मनसा नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी इसको अपने आप से अलग करती है, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी संस्था के माध्यम से वहां हवन किया गया, शुद्धिकरण किया गया तो उनका काम है, किंतु इस तरह का भ्रम फैलाना ठीक नहीं है।
1: युवा महिला और हिंदुत्व के बाद अब राहुल गांधी ने इस बार दलित कार्ड खेला है, जिस पर घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो।

0: अब बरामद लगभग 2500 लोग लापता। चीन में बने अस्थायी झील के अभी भी फटने की आशंका बरकरार। निचले इलाकों में हाई अलर्ट। खड़गे को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर बोला धावा। कहा दलित होने की वजह से हल्द्वानी में किया गया शुद्धिकरण। सीएम धामी ने नेता विपक्ष पर लगाए तुष्टिकरण के आरोप। लखनऊ में जेपी इंटरनेशनल सेंटर पर अर्पण। सीएम योगी बोले सैफई सिंडिकेट ने 200 करोड़ का काम 800 करोड़ में भी नहीं किया पूरा। अखिलेश यादव ने लगाया था बेचने का आरोप। ममता बैनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप। टीएमसी छात्र परिषद के स्थापना दिवस रैली में रास्ता रोकने का आरोप। फिर विवाद में फंसे स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना। बिहारी और कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाने का आरोप। बिहार के मंत्री मिथिलेश तिवारी बोले ऐसी अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भले अभी कुछ महीने बाकी हों, लेकिन वहां भी से ही महिलाएं सियासत के फोकस में तो आ ही गई है। चुनाव आता है और सबको महिलाओं की याद आती है, क्योंकि जहां एक ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का तोहफा दे चुके हैं, साथ ही 50,000 ग्रेजुएट लड़कियों को अक्टूबर नवंबर में स्कूटी देने की योजना है, उधर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को 40,000 सालाना कैश का बड़ा ऐलान कर दिया है, इधर बंगाल, बिहार, दिल्ली, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश कई राज्य हैं जिनमें चुनाव में महिला सेंट्रिक योजनाओं का बड़ा असर पड़ा है। अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वो 30,000 रुपए देंगे, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं 40,000। अब सवाल यही है कि चुनाव में अब रेवड़ियों की रेस लगती है। कोई भी राजनीतिक दल महिलाओं को कैश देने जैसी स्कीम्स लागू करती है, लेकिन क्या यही सशक्तिकरण है? सवाल है कि क्या महिला वोटर्स को लुभाने के लिए अब सरकारी खजाना लुटाने की होड़ मची है? क्या चुनाव आते ही महिलाओं के लिए ऐसी स्कीम से ही उनका सम्मान सशक्तिकरण होता है, या फिर महिला के लिए समान अवसर, महिलाओं पर होने वाले अपराध पर पूरी तरह लगाम लगाने से उनका जीवन स्तर सुधरेगा? यूपी चुनाव से पहले महिला वोटर्स पर होड़, मुफ्त की दौड़, यही आज हल्ला बोल का विषय। से पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट।
1: साठ वर्ष की कोई भी महिला जो उत्तर प्रदेश की वासी हो, अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा करके या आधार कार्ड दिखा करके इस यात्रा का लाभ ले सकती हैं। उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। हमने ये नहीं बोला कि हम किसी अल्पसंख्यक को दे रहे हैं या बहुसंख्यक को दे रहे हैं। हमने तो कहा हर माता को देंगे, हर माता को बिना भेदभाव के। जब हम फ्री में बस यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे थे 26 को, तो समाजवादी पार्टी के बबुआ की नींद भी टूटी। वो भूल ही गए कि उनको बोलना क्या है। वो कहने लग गए कि हम 4,00,000 रुपया लेंगे इन लोगों से या 40,000 रुपया ले लेंगे इन लोगों से। हमने कहा लेना नहीं है भैया, ये देने के लिए हमने ये कार्यक्रम बुलवाया है।
2: धर्म द्रोही अधर्मी गिरोह को जिन्होंने सरयाम माँ को कुछ कुछ सुनाया था, ना भगवान माफ करेगा ना इंसान।
3: तुष्टिकरण आधारित पार्टियां इसी प्रकार की कार्यविधि में फंसी रहती हैं और जनता का भरोसा खो देती हैं। जनता का भरोसा समाजवादी पार्टी खो चुकी है।
4: भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहती है। हो सकता कोई लॉलीपॉप दिखा रहा हो जी। सरकार की तरफ से लॉलीपॉप आ रहा हो, लेकिन ये तो चला चली की बेला है। अगर आपने वास्तव में महिलाओं के जन कल्याण के लिए कोई काम किया होता तो एनसीआरबी के आंकड़ों में आज सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1।
1: न कोई भेदभाव, न वर्गवाद, कोई बात नहीं, केवल एक बात, माता को सम्मान मिलना चाहिए।
5: सारी की सारी यहाँ प्रपंच नहीं चलने वाली, उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने बिहार की जीविका दीदियों की स्थिति देखी। महिलाओं के बच्चों को बेरोजगार बनाने वालों को और महिलाओं को लोन देकर के उनके कर्ज के जाल में ट्रैप कराने वालों के चक्कर में अब उत्तर प्रदेश की महिलाएं नहीं फंसेंगी।
6: हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह का करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है।
7: आप हम वेलकम करते हैं?
6: हम वेलकम नहीं करते, पर हम इस बात के लिए तैयार है। हम बिल्कुल वेलकम नहीं करते हैं। चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके मतलब कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। पूरा आपने 10 साल तो भ्रष्टाचार कर दिया।
1: इस सपा का मतलब ही है लूट खसोट, इस समाजवादी पार्टी का मतलब ही है कि डकैतों का एक गिरोह। ये लोग नहीं है। 17 के पहले माँ क्या क्या कहावत थी, देख सफाई बिटिया घबराई।
0: चारू प्रज्ञा जी प्रवक्ता बीजेपी की जुड़ गई हैं, अब अखिलेश प्रताप सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, सुनील सिंह साजन जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, निशा चौधरी जी प्रवक्ता महासचिव भी हैं आरएलडी की, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। चारू प्रज्ञा जी आपके साथ शुरुआत करते हैं। चुनाव आया, फिर वही रेवड़ियों का बाजार सज रहा है, दौड़ ही एक तरह से लग रही है ना, 30,000 नहीं हम 40,000। कुल मिलाकर क्या अब, क्योंकि अब इतने दिन से तो किया नहीं, चुनावों के पहले करिएगा तो सवाल तो पूछा जाएगा चारू जी कि आखिर नियत क्या है?
7: अंजना जी नमस्ते। देखिए, वेलफेयर स्कीम्स में और रेवड़ियां बांटने में एक फर्क होता है। जो जिसको आप रेवड़ियां बोल रही हैं, वो चुनाव के पहले अनाउंस करी जाती हैं, लेकिन वेलफेयर स्कीम्स वो हैं जो केवल किसी के बैंक के अकाउंट के लिए एक चेक थामना नहीं होती। हम उस महिला के लिए काम करते हैं उत्तर प्रदेश में, इस देश में, जिसको हम बैंक का करिस्पॉन्डेंट बनाते हैं, जिसको हम एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, हम जिसकी सुरक्षा का ख्याल रखते हैं, जिसको हम प्रॉपर्टी का ओनर बनाते हैं, जिसकी डिग्निटी के लिए हम टॉयलेट्स बनवाते हैं, और जो आने वाले हर एक चुनाव में डिसीजन मेकर बनकर निकली है। और भाजपा के लिए, एनडीए सरकार के लिए ये कोई नई बात नहीं है अंजना जी। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हर एक पॉलिसी के केंद्र पे केवल और केवल महिलाएं रही हैं, क्योंकि ये तो नया नया काम समाजवादी पार्टी ने शुरू करा है। उनके लिए आज ये स्थिति आ गई है कि उनको समझ आ गया है कि महिला अब कोई साइलेंट वोटर नहीं रही है, उनको तो अपनी पीडीए की डेफिनेशन भी चेंज करनी पड़ी है, और पीडीए में अब वो आधी आबादी की बात करनी शुरू कर चुके हैं। सच्चाई ये है कि एक तरफ एक ऐसी पार्टी है, जब वो सत्ता में थी उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन इतना हाई था कि पिछले दो चुनावों में हमने ये देखा कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए एक बहुत बड़ा प्लैंक, एक बहुत बड़ा मुद्दा सुरक्षा ही का ही था, सुरक्षा का मुद्दा था। तो आज कम से कम उत्तर प्रदेश उन खोखली बातों से आगे बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश की बेटियां, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी और मोदी जी के साथ खड़े हैं। एंड लाइक आई सेड, ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है अंजना जी, मेरे पास बहुत सारा डेटा है। आप
0: चारू
7: मुझे
0: जी, कितने महीने बचे हैं चुनाव में? चुनाव में कितने महीने बचे हैं?
7: अगले साल है चुनाव,
0: है ना, फरवरी के आसपास। तो आप समझ लीजिए कि उंगलियों पर महीने गिने जा सकते
7: जी,
0: हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और फिर जनवरी, फिर तो आचार संहिता लगेगा
7: जी।
0: ये 3-4 महीने पहले ही आपको वेलफेयर स्कीम याद आया है महिलाओं के लिए?
7: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आपको डिलीवर का
0: इतना भोला भी मत समझिए।
7: ना ना ना ना अंजना जी,
0: और
7: अच्छा,
0: आप करें तो वेलफेयर स्कीम, अगर अखिलेश जी लाकर करें तो वो रेवड़ी।
7: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, 10 सेकंड मुझे केवल 10 सेकंड दीजिए, ठीक है। जैसा मैंने बोला कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों का रजिस्ट्रेशन महिलाओं के नाम पर हुआ है, ये क्या आज होना शुरू हुआ है? अगर आज उत्तर प्रदेश में महिला जो वर्कफोर्स का हिस्सा है, 2017 में केवल 13% थी, आज 36% बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है, 18 लाख महिला लखपति दीदी बन चुकी हैं। आज की तारीख में 50,000 से ज्यादा महिलाएं ऑलरेडी बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखी के तौर पर ट्रेन हो चुकी हैं। मिशन शक्ति के साथ करोड़ों महिलाएं जुड़ी है, कन्या सुमंगला स्कीम के साथ करोड़ों महिलाएं जुड़ी हुई
0: है। सवाल का जवाब ही नहीं है।
7: मैं चाहती हूं कि नहीं नहीं
0: ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है चारू जी, आप सवाल नहीं समझे।
7: अनाउंसमेंट ये कोई आज का,
0: मैं पहले से जो वेलफेयर स्कीम्स भारत सरकार की चल रही है या यूपी सरकार की चल रही है उसके कितने लाभार्थी है मैंने पूछा। मैंने पूछा कि ये वेलफेयर स्कीम आपको चुनाव के 3 महीने पहले ही क्यों याद आया, ये पूछा है मैंने।
7: ना ना ना, मैं यही आपको बोल रही हूँ, फेज वाइज हर वेलफेयर स्कीम को अप्लाई करा जाता है अंजना जी, और फेज वाइज ही उत्तर प्रदेश में। आप ये देखिए ना कि बेसिक बात हुई, उत्तर प्रदेश का वो वाला समय याद करिए जब हेडलाइंस उत्तर प्रदेश से क्या आया करती थी, माफिया, दंगा, कर्फ्यू लग गया, पलायन हो गया, जातियों की बात हो रही है। आज उत्तर प्रदेश की हेडलाइंस हो चुकी है एक्सप्रेसवे, कनेक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट, महिला सुरक्षा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो ये फेज वाइज इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश हमारे देश की top 3 प्रदेशों की इकोनॉमीज में आ चुकी है। तो
0: अखिलेश जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए,
7: काम करेंगे।
0: जो स्थिति है इस वक्त उसी हिसाब से हम लोग उसी क्रम में चल रहे हैं। तो सुनील सिंह साजन जी से पहले एक जवाब ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही 40,000 का ऐलान किया है। सुनील जी, ये तो आपके नेता भी जानते हैं कि वो 40,000 का ऐलान क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये तरीका अपनाकर हम भाई महिलाओं के वोट के लिए तो कर रहे हैं ना, वरना तो सरकार में तो कई बार रहे हैं।
8: देखिए अंजना जी, ये सच है कि समाजवादी पार्टी ने इससे पहले भी बहन बेटियों के लिए योजना शुरू की थी, नेताजी की सरकार रही हो तब भी देख लीजिए, और हम आ रहे हैं ना। और जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो साइकिल भी दी और लैपटॉप भी दिया, बेरोजगारी भत्ता भी दिया। और महिलाओं की बात करें तो समाजवादी पेंशन समाजवादी सरकार में ही शुरू हुई थी, ₹500। तो हमारे नेता ने कोई झूठ नहीं बोला है। और दोनों घोषणाओं में अंजना जी एक अंतर है, बीजेपी विदाई के समय घोषणा कर रही है और हम सरकार में आने से पहले की कर रहे हैं कि भाई हम सरकार में 27 में आ रहे हैं और हम ये स्कीम लेकर के आ रहे हैं। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है कि अगर आप बेटियों को, बहनों को, महिलाओं को सच में बराबर का हक सम्मान दिलाना चाहते हैं, उनके सामाजिक स्तर ठीक करना चाहते हैं, तो आपको शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनकी सुरक्षा पर काम करना पड़ेगा। आप केवल कुछ एक बार दे दें उससे किसी का कुछ नहीं होने जा रहा है। आप लगभग 10 साल की सरकार, 4 महीने छोड़ दीजिए, 10 साल की सरकार हो जाएगी, 4 महीने का कार्यकाल बचा है योगी जी का, 4 महीने में जितना चाहें झूठ बोल लें, जो गुमराह करना चाहें, जो लालच देना चाहें, लेकिन उत्तर प्रदेश बदलाव की तरफ है, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है।
0: देखिए आप भी वही सब कर रहे हैं जो कुछ देर पहले चालू जी ने किया,
8: बीजेपी की विदाई होने जा रही
0: है। एक सेकंड सर, आप भी वही कर रहे हैं जो उन्होंने
8: बिल्कुल उस तरीके से,
0: आपने सब गिना दिया, ये दिया, वो दिया, ये दिया, 40,000 रुपया देना और ये भी चुनाव के पहले ऐलान करना, समझ में नहीं आ रहा है? जनता इतनी भोली है और अगर ये सरकारी खजाना इन सब चीजों पर होगा, जो कि बीजेपी भी करेगी, आप भी करेंगे, तमाम राज्यों में हो रहा है, सरकारी खजाना इस पर खर्च होगा, तो फिर स्कूल, रोड, ये सब के लिए, मतलब सरकारी खजाने से बस अपने वोट जुटाने के लिए सीधा इस्तेमाल हो रहा है। मैं तो डायरेक्ट सवाल पूछ रही हूं कि अपने वोट के लिए सरकारी खजाने में अपने हिसाब से खर्च करने के बराबर नहीं है ये? कितनी महिलाओं को 40,000 दीजिए?
8: अभी हमारे पास तो कुछ है नहीं। ये आरोप तो बीजेपी पे लग सकता है कि सरकारी खजाने से लुटा रहे हैं। क्या जो 19 लाख लैपटॉप माननीय अखिलेश यादव जी ने 12 से 17 के बीच बांटे थे, वो क्या वोट पाने के लिए बांटे थे? मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी भी देश में सरकारी योजना में इतने बड़े पैमाने पर लैपटॉप दिए गए हों। लेकिन अगर बीजेपी से लैपटॉप की उम्मीद करें आप, बीजेपी से शिक्षा की उम्मीद करें, बीजेपी से स्वास्थ्य की उम्मीद करें, बीजेपी से सुरक्षा की उम्मीद करें, तो अपने आप में बेईमानी है। इनसे अगर आप कोई उम्मीद कर सकते हैं तो हिंदू मुसलमान की कर सकते हैं, बलात्कारियों को बचाने की कर सकते हैं, बुलडोजर चलाने की कर सकते हैं, छुआछूत के आधार पर भेदभाव करने की कर सकते हैं, पिछड़े दलित समाज के बड़े बड़े नेताओं को गंगा जल से धुलाने का काम कर सकते हैं।
7: इसके अलावा बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। अपना हर एक क्लेम आप सब्सटेंशिएट करिए डेटा के साथ, क्योंकि मैं खोखली बात नहीं बोल रही हूँ। मैं एक एक बात जो बोल रही हूँ ना, मैं आपको नंबर दूंगी और सोर्स दूंगी। तो ऐसा है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी, यहाँ पर बैठकर घुमा घुमा के रिटोरिक्स पे मत रहिए। आप जो भी बयान दे रहे हैं या तो आप उसको
8: जी, आप सवाल कर रही कि और किसी की जिम्मेदारी दे दी?
7: नहीं, क्योंकि झूठ आपको मैं बोलने नहीं दूंगी ना।
0: चारू जी वो पूछ रही है कि भाई कहाँ पर हुआ है, किस इंसिडेंट को आप कोट कर रहे हैं?
8: अंजना जी इनसे पूछिए, हाथरस की घटना का जिक्र करें, लखीमपुर की घटना का जिक्र करें, कानपुर की घटना का जिक्र करें, ललितपुर की घटना का जिक्र करें, या बनारस की करें, या गोरखपुर की घटना का जिक्र करें, जहां का बता दीजिए वहां का बता दें। पूरा उत्तर प्रदेश आपने लूट लिया। ये कह रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। बीजेपी सरकार ने पिछले 10 साल में योगी जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन लुटेरे पर काम किया है। इनके लोग हर विभाग लूट रहे हैं, सब भ्रष्टाचार है, देख लीजिए ना। अच्छा हम एक बात पूछ रहे हैं आज। हम कह रहे हैं चलिए लगभग 10 साल की सरकार हो गई उत्तर प्रदेश में, अंजना जी क्या योगी जी एक कोई इंफ्रा बिल्डिंग बता सकते हैं जो उनकी सरकार में बनी हो? प्लासियो माल आपने बेच दिया, माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था, JPNIC आपने बेच दिया, कई सौ करोड़ रुपए कमीशन लिया सरकार ने अधिकारियों के माध्यम से, माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था, तो आपका अपना कुछ है नहीं। कभी आप माननीय अखिलेश जी की स्कीम चुरा ले रहे हैं, कभी उनके बनाए बिल्डिंग को बेच करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं।
0: ठीक है अखिलेश जी, अब आप आइए, आप लोग भी 40,000 वाली तरफ है, क्योंकि खड़गे साहब ने ही कर्नाटका में कहा था कि इस तरह से अगर हम फ्रीबीज पर खर्च करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब सड़कें बनाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं बचेगा।
9: देखिए अंजना जी, जिस हुकूमत में ये देश है आज के तारीख में, योगी जी, मोदी जी, मोहन भागवत जी, उनका क्या मकसद, क्या लक्ष्य है? इसरो से लेकर के स्कूल तक बेच दो, सिर्फ सरकार सरकारी ठेका दारू की दुकान चलाएगी। सिर्फ एक ही जगह लिखा दिखता है आजकल, सरकारी ठेका, और गांव-गांव गली-गली खोला जा रहा है, कंपोजिट क्या क्या नए आइटम निकाले जा रहे हैं, जहां पर इसरो बेचा जा रहा हो स्कूल कॉलेज आपने भी कुछ सीरियल चलाए थे, महिलाओं की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, महिलाओं को, गृहस्थ महिलाओं को सिर्फ दो चीजों में इंटरेस्ट होता है, उसके परिवार का सुख, आमदनी अच्छी हो और उनके बच्चों का फ्यूचर अच्छा दिखे, पढ़ाई लिखाई और इम्तहान परीक्षा। ये आज क्या हाल है उत्तर प्रदेश या देश का, बच्चों के भविष्य के लिए तो जीरो है, पढ़ाई और परीक्षा पे सब आरएसएस का कब्जा है और भ्रष्टाचार चरम पे है, वहां बताने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई परीक्षा ऐसी नहीं है कि जो लीक ना हो, यो पिछले 10 वर्षों से, और परिवार के सबकी इनकम घटी है, सबके रोजगार हुए, सब बेरोजगार हुए हैं, ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में जो ये सरकार है, ये क्या कर रही है, ये सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त होती जा रही है, भगवान राम को भी नहीं छोड़ी है, उनको भी किस तरह से लूटा है। ये जरूर एक काम बीजेपी ने किया है कि लूट में आत्मनिर्भर हो गए हैं, सब कुछ बेच के पैसा बनाने में। और जहां तक रही कानून व्यवस्था की, उत्तर प्रदेश हर तरह के क्राइम में 2023 का जो एनसीआरबी का डाटा है उसमें नंबर वन आ गया है।
7: एक सेकंड, नहीं नहीं,
9: नंबर वन आ गया योगी जी के राज में।
0: एक मिनट, आपको पूरा करने दीजिए, मैं जवाब लूंगी चारू जी, चारू जी मैं जवाब लूंगी पूरा।
9: आप सब, अरे जो बोल रहा है झूठ है, एनसीआरबी का ये आंकड़े है मेरे पास,
7: एनसीआरबी पूरा पढ़िए।
9: बड़ी झूठी बड़ी झूठी पार्टी,
7: सुनो
9: बीच में नहीं
7: क्राइम पर लाख
9: बीच, प्लीज मुझे किसी को ना बोलने दें।
7: देखिए
0: चारू जी, उनको लेते हैं कंप्लीट, ना ना ना बीच में नहीं, उनको पूरा करने दीजिए।
7: देखिए विस्कोटिंग,
9: देखिए हत्या 2023 में, हत्या 302 में नंबर वन, 3307 हत्या यूपी में हुई, सभी प्रकार के अपराध में नंबर एक है, गंभीर अपराध में नंबर है। आबादी के हिसाब से पहले कहां निकलता था, जिस हिसाब से बात होती थी उस हिसाब से बात कर रहा हूं। पहले नंबर वन महिला उत्पीड़न में नहीं था, पहले नंबर वन दलित उत्पीड़न में यूपी नहीं था, बीजेपी के आने के बाद हुआ है।
7: तो कम से कम दलित दुराचार हो चाहे दलितों पे हो, और सुनिए इनको म्यूट करिए, इनको म्यूट करिए, ये गुमराह करने वाले लोगों को
0: अगर इस तरह से चारू जी, अब आपको इंतजार करना होगा अपनी बारी का, हाथ उठाइए, समझ में आ जाएगा कि आप उनकी किसी बात के अगेंस्ट है, आप उस पर ये करना चाहते हैं, बट लेट हिम कंप्लीट प्लीज। अब अखिलेश जी पूरा कीजिए,
9: अंजना जी अब ये क्या कह रही हैं कि पॉपुलेशन पे आइए,
7: बिल्कुल
9: पहले ये किस पे बात करते थे, पहले ये इसी पे क्राइम रेट पे बात करते थे, हम क्राइम रेट की शुरू से बात कर रहे हैं, उसी पे बात होती थी, आज भी उसी पे, पहले नंबर वन नहीं था बीजेपी उत्तर प्रदेश दलितों में, महिलाओं पे अपराध पे, कर्जा में नंबर वन है हिंदुस्तान का, जितने का बजट है जना जी उत्तर प्रदेश सरकार का,
7: जितना डेवलपमेंट होता है उतना कर्जा जाता है,
9: कर्जा है उससे ज्यादा कर्जा है,
7: बेसिक समझ कर आइए, डेवलपमेंट के मतलब में क्या आता है।
9: ये अंजना जी ये देखिए, अगर ये सत्ता में है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आपकी डिबेट भी डिस्टर्ब करें,
7: लेकिन आप मिसकोट कर रहे हैं भाई साहब, मिसकोट थोड़ी कर रहे हैं,
0: सही कोट करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा चारू जी, दोनों के साथ चिल्लाएंगे तो बहुत मुश्किल होगी, लेकिन अब बात देखिए इसी में उलझ रही हूँ ना मैं, उनको खत्म करने दीजिए, आप रिबटल दीजिए, फिर मुझे जाना है निशा जी के पास जी प्लीज।
9: अंजना जी, अंजना जी जल्दी कंप्लीट कीजिए, डूबता व्यक्ति सहारा ढूंढता ना, डूबता व्यक्ति सहारा ढूंढता है, उसी तरह बीजेपी बड़ी झूठी पार्टी वो झूठ का सहारा ढूंढ रही है उत्तर प्रदेश में। आज मैं कई दिन से कह रहा हूं, फिर आपके चैनल पर कह रहा हूं, लिख कर रख लें, इनका पूरा अलायंस यूपी में 80-90 सीट ज्यादा नहीं पाएगा,
0: ठीक है,
9: जनता में
0: आप लोग जमीन ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे अखिलेश जी,
9: ये नौजवान
0: अखिलेश जी आप लोग जमीन ढूंढ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है लोकसभा में, तो उन्होंने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया,
9: सुन लीजिए
0: कांग्रेस पार्टी का क्या इस वक्त दिख रही है स्थिति,
9: अब आपको आपको हम ही दिख रहे हैं, समाजवादी पार्टी विपक्षी दिख रही है, मोदी जी तो छुपने पड़ रहा है, गृह मंत्री को छुपना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री को भागना पड़ रहा है, विपक्षी दिख रहा है, हमारा इंडिया गठबंधन ही दिख रहा है, हम ही लड़ाई लड़ रहे हैं सड़क से लेकर सदन तक, हमारे कारण हम जो चाह रहे हैं सरकार को मजबूरन वो निर्णय लेना पड़ रहा है, चाहे मंत्री की बर्खास्तगी हो, चाहे एफआईआर करना हो, चाहे ना छात्रों नौजवानों की और कोई बात रही हो, अब गली गली मंत्री भेजे जा रहे हैं, क्यों भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो भाई? लड़कों का बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे और चाहेंगे बच्चे आपको वोट देंगे। संसद
0: जी, यूपी में तो कहा गया है सबको कॉलेज वॉलेज में जाकर जेंजी से संवाद भी करने के लिए, तो क्या इस पर मजबूर हुई है सरकार? जो उनकी तमाम बातें थे, अब जवाब दीजिए
7: प्लीज।
9: इसके बाद हमें भी जवाब देने दीजिएगा
7: जी। अंजना जी, अब मैं जवाब दे तो प्लीज।
0: हाँ जल्दी जल्दी
7: जी। बहुत बहुत सेलेक्टिवली अखिलेश जी बोल रहे हैं, याद दिला दूं इनको, ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसका 22 के चुनाव में 2.3% वोट शेयर था उत्तर प्रदेश में, तो इतनी इनकी इनके लिए चाहत है उत्तर प्रदेश में। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये कहते हैं कि क्राइम को क्राइम पर लाख मत देखिए, सिर्फ क्राइम का आप डेटा देखिए। उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, तो आपको पर लाख तो क्राइम देखना पड़ेगा। आपको मैं 10 साल पहले की याद दिला देना चाहती हूँ, जहां पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता था जाकर पुलिस स्टेशन में, कोई कंप्लेंट नहीं लिखता था, एफआईआर में वो कन्वर्ट नहीं होती थी। आज की तारीख में अगर महिलाओं का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ा है, इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज हमने सबसे पहले सुरक्षा पे काम किया है। आज आप 2016 से कंपेयर करें, रेप के केसेस 67% डाउन है, मर्डर ऑफ वुमेन 48% डाउन है, मॉलेस्टेशन 34% डाउन है, डाउरी डेथ 19% डाउन है। और एक बात आपको और बताती हूँ, आप अगर इसको पर लाख नहीं देखेंगे ना, तो आप ना फिर जनता का बेवकूफ नहीं, अपना खुद का बेवकूफ बनाते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, जिस प्रदेश की आबादी 2 करोड़ है और जिस प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, आप उनकी तुलना पर लाख ही कर सकते हो, पर लाख ही कर सकते हो। और उस तुलना के हिसाब से जिस प्रकार से आज वहां पर सुरक्षा की स्थिति ठीक करी गई है उत्तर प्रदेश का, मुझे वो भी दिन याद है। आप रात तो छोड़ दीजिए, दिन के 3 बजे महिलाएं सड़क पर नहीं निकल सकती थी, कितनी लूट कितनी डकैती हुआ करती थी, एक चेन गले में अगर सोने की पहन ली है ना, लोग छीन के भाग जाया करते थे। ये सारे बदलाव के बाद ही आज उत्तर प्रदेश तेजी से प्रोग्रेस के रास्ते पर चलने लग गया है। आज उत्तर प्रदेश का जीडीपी योगी जी के शासन में 14.5 लाख करोड़ से बढ़कर 30 लाख करोड़ के ऊपर चला गया है। एंड लाइक आई सेड, इट बिगिंस विद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आप डेटा पे रही हो, एनसीआरबी पूरा पढ़
0: के जी को दिखाई। निशा जी, निशा जी से कमेंट ले लीजिए, उसके बाद से सुनील जी आपके पास जाएंगे। निशा जी, निशा जी, आज देखिए महिलाओं को जो ये वोटर्स में होड़ लगी हुई है तमाम पार्टियों में, क्योंकि अब सबने दिखा दिया है कि मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, महिलाओं का जिस तरह पलड़ा भारी होता है, वो पार्टी जीत रही है, वो सत्ता में आ रही है। लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी है कि मतलब एक फ्रीबीज की, रेवड़ियों की भी रेस लग जाए। निशा जी,
10: अंजना जी, ऐसा है, राष्ट्रीय लोकदल सिर्फ एक फ्री और उसके ऊपर नहीं जाता। राष्ट्रीय लोकदल वोट बैंक की राजनीति नहीं करता, आपको भी पता है इस चीज का। हम चाहते हैं कि जो चीज सत्य है, हमने कहा, एनडीए सरकार ने कहा कि जो बिल लेकर के आए थे कि जब तक महिलाएं नेतृत्व में नहीं आएंगी, निर्णय लेने वाली हिस्सेदारी में नहीं आएंगी, तो उनको कुछ भी देना उनके सम्मान के लिए।
0: निशा जी, निशा जी, निशा जी, अच्छा हुआ आप ये टॉपिक लेकर आई, आपको एक बार टोक रही हूँ, आपको टोक रही हूँ। कांग्रेस पार्टी समाजवादी वाले कह रहे हैं कि भाई 543 में ही दे लो, क्योंकि अब तो परिसीमन टलता हुआ दिख रहा है, तो परिसीमन से इस पर हमने एमओटी एंड मैडम एक सेकंड, आप ही को पूरे बोलने दूंगी, आप चिंता ना करें। मूड ऑफ द नेशन बाई एनुअली इंडिया टुडे ग्रुप सी वोटर के साथ सर्वे करता है। उस सर्वे में हमने एक सवाल पूछा था जनता से, और ये सबको देखना चाहिए, परिसीमन से जोड़े बिना क्या महिला आरक्षण लागू हो? सिंपल सवाल था कि क्या परिसीमन से जोड़े बिना ही फटाफट महिला आरक्षण लागू हो? आपको पता है 45% लोगों ने इस सर्वे में कहा कि हाँ, मौजूदा जो संख्या है उसी में आप 47% लोगों ने कहा कि हाँ, मौजूदा में ही आप महिला आरक्षण लागू कीजिए। 22% ने सिर्फ नहीं कहा।
10: ठीक है अंजना जी, आप बताइए, किसी एक लोकसभा में कोई भी रिप्रेजेंटेशन होती है तो 25 लाख लोग वोट करके किसी को चुनते हैं, किसी एक लोकसभा में 12 लाख लोग चुनते हैं, जबकि उस लोकसभा में अगर शेयर देखा जाए फाइनेंशियली,
0: अग्रीड परिसीमन होना चाहिए। एक सेकंड मैडम, परिसीमन होना चाहिए, अग्रीड, मुझे लगता है चारू जी को भी इस सवाल का जवाब देना चाहिए, परिसीमन होना चाहिए, लेकिन उससे आपने महिला आरक्षण को क्यों लिंक कर दिया?
10: नहीं,
0: कभी करेंगे को, अगर केक इतना बड़ा है तो उससे काट के नहीं देंगे, केक को पहले इतना बड़ा करेंगे तब तुमको हकदार मानेंगे।
10: चारू जी देखिए, अगर संवैधानिक रूप से हम देखें तो स्थायी रूप से अगर हम देना चाहते हैं, अंजना जी सॉरी,
0: चारू जी तो बीजेपी में है,
10: अंजना जी सॉरी, अगर हम स्थायी रूप से उसको देना चाहते हैं, आप मुझे बताइए अंजना जी, अगर आज मान लीजिए 543 में दे दिया, फिर परिसीमन किया, फिर सीट्स बढ़ाई, आज की जनसंख्या के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को क्या तकलीफ है अगर वो उस तरीके से लागू हो जाए, क्या स्थायी रूप से मिल जाए, जो जो सीट्स उनको एलोकेट हो जाएंगी वही हो जाएंगी, इसमें क्या तकलीफ है? अगर देने की नियत हमारी सही है तो मुझे लगता है महिलाओं को सबसे बड़ा सम्मान अगर हम कुछ देना चाहते हैं तो उनको अधिकार दीजिए ताकि वो भी विधानसभा लोकसभा में बैठे और जाकर
0: जवाब दे रहे। सुनील जी जवाब दे रहे हैं, सुनील जी वो कह रहे हैं कि भाई बाद में परिसीमन होना ही है तो फिर से नए सिरे से एलोकेट करना पड़ेगा सीटों को।
7: और एक और वजह
8: देखिए अंजना जी मैं दोनों सवालों का जवाब दे रहा हूं। एक तो बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा कि योगी जी ने बहुत अच्छी सुविधा कर दी, हम क्यों लिए जानना चाहते हैं 17 से लेकर अब तक महिलाओं को लेकर के या थाने या पुलिस को लेकर के कौन सी आपने सुविधा दी है। थानों को कंप्यूटराइज और कैमरे दोनों माननीय अखिलेश यादव जी ने लगवाए थे, महिलाओं के अपराध को लेकर के 1090 माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू किया था, अभी जापान का एक डेलीगेशन आया था अंजना जी, योगी जी की सरकार ने उसी 1090 में ले जाकर के दिखाया कि इससे हम कंट्रोल कर रहे हैं महिला उत्पीड़न। अपना क्या दिखाया आपने? आपके पास अपना तो कुछ है नहीं। दूसरी बात, महिला आरक्षण की आपने बहुत अच्छी बात कही, समाजवादी पार्टी ये मानती है कि आप चाहें तो 27 में ही लागू कर दें, उत्तर प्रदेश में 29 में लागू कर दें, आपकी मनसा साफ होनी चाहिए। उसके बाद जब आगे वो हो जाएगा, परिसीमन हो जाएगा, जितनी सीटें बढ़ेंगी उसमें भी आप 33% दे दीजिए, इसमें तो दीजिए 33%, इसमें क्यों भाग रहे हैं आप? क्योंकि हमारे नेता ने कहा बीजेपी ने नारी को नारा बना दिया है, ये केवल नारा दे रहे हैं, ये हक अधिकार सम्मान बराबरी ये नहीं देना चाहते हैं,
7: बराबर पे नहीं दिखाना चाहते कांग्रेस का है,
8: इनके दृष्टिकोण में ही महिला बराबर पे नहीं है, ये नहीं बराबर पे बिठाएंगे, ये आरएसएस की विचारधारा से निकले लोग हैं ना, ये कभी महिलाओं को नहीं स्वीकार करेंगे। ये दोनों हमारी बहनें आपके कार्यक्रम में झूठ बोल रही हैं महिला उत्पीड़न को लेकर, महिला के मान सम्मान और तरक्की और खुशहाली,
7: महिला के लिए झूठ बोल रही है और सच्चाई का
0: झूठ करने से जवाब दीजिए सुनील जी के सवाल है। लेकिन एक सवाल मैं भी पूछती हूँ, आप चार प्रवक्ता है चार बड़ी पार्टियों के, क्या आप में से कोई भी हाथ उठाकर इस बात की गारंटी दे सकता है? सबको म्यूट कर दीजिए, रुके निशा जी सबको म्यूट कर दीजिए, क्या कोई भी हाथ उठा के अपनी पार्टी की तरफ से ये गारंटी, और मैं रिकॉर्ड करके रखूंगी इसको, गारंटी दे सकता है कि यूपी के चुनाव में वो 33% सीट टिकटें जो है वो औरतों को देगा? कोई भी?
7: बिल्कुल देंगे।
0: अरे चारू जी रिकॉर्ड हो गया है, वायरल हो गया,
7: बिल्कुल रिकॉर्ड करिए,
0: 33% टिकट देगी आपकी पार्टी जो आज तक कहीं नहीं दिया।
7: बिल्कुल, और मैं आपको बहुत गंभीरता के साथ एक बात बोलना चाहती हूँ, केवल मेरी पार्टी नहीं जी, केवल मेरी पार्टी नहीं, इस देश में हर एक पार्टी, और मैं हर एक पार्टी बोल रही हूँ, अगर हर एक पार्टी बिना आरक्षण के महिला नेताओं को आगे बढ़ाती है तो देश की हर एक पार्टी को हेल करती है, बहुत अच्छी बात है। आपके पुराने वाले सवाल पर मैं वापस आती हूँ, आपने ये बोला कि हम लोग परिसीमन का इंतजार क्यों कर रहे हैं, देखिए इसके लिए एक अलग फॉर्मूला 2026 के सेशन में हमारी सरकार ने दिया था, हमने बोला था कि एक तिहाई सीटें बढ़ा दीजिए देश भर में, महिलाएं अभी से आ जाएंगी। क्योंकि एक आपसे मैं सिंपल बात पूछती हूँ, कांग्रेस की फेवरेट सीट है ना रायबरेली है, कांग्रेस की फेवरेट सीट वहां से अब अमेठी है जो इनकी फैमिली सीट्स मानी जाती है, मैं कन्नौज और मैनपुरी की भी यार बात करती हूँ, अगर इनमें से कोई महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाती तो ये पार्टी वाले क्या करते? इसी बातों के चक्कर में
0: जो भी करना करें,
7: ऐसा नहीं होता,
0: अखिलेश जी की चिंता में नहीं कर रहे हैं या अखिलेश जी की चिंता नहीं कर रहे,
7: महिलाओं की चिंता है, महिलाओं की चिंता है। आपको लॉजिक दे रही हूँ, मैं लॉजिक दे रही हूँ, आप मेरी बात समझिए, बैठने वाले
0: जिसको परेशान होना है पार्लियामेंट पे बैठने वाले, रिकॉर्ड है इन्होंने जो कहा है
7: 86%।
11: अब मुझे
7: नहीं, इन्होंने सिर्फ कहा है क्योंकि देखिए जब इन्होंने 2023 में बिल को पारित करवाया था उसमें तो बिल्कुल साफ लिखा था ना, पहले परिसीमन होगा फिर महिला आरक्षण होगा, इनको इतनी आपत्ति होती तो तभी नेगेटिव वोट कर देते, तभी नेगेटिव वोट कर देते।
0: अखिलेश जी इस पर स्पेसिफिक जवाब दीजिए, उस समय आप ये करते? पूछ रहे हैं
11: अंजना जी, आप कह रही हैं करते, हमने 22 में 40% टिकट यूपी विधानसभा में महिलाओं को दिया था,
7: 22
10: की बात है, आप मुझे जवाब देने दीजिए, उनको रोक दीजिए, रोक दीजिए, रोक दीजिए, रोक दीजिए, मैं बताती हूँ क्यों, मैं बताती हूँ क्यों, अंजना जी इनको रोक दीजिए,
0: जवाब लूंगी अखिलेश।
11: अंजना जी क्या आपको नहीं पता कि यूपी कांग्रेस ने 2022 के असेंबली चुनाव में 40% टिकटें महिलाओं को दी थी, ये तो सत्य है ना, तो कोई दुविधा नहीं है,
10: केवल यूपी में ना
11: 3 महिलाएं लड़ी थी। अरे भाई तुम भी देख के दिखा दो ना। देखिए अंजना जी मुद्दे पे आते हैं, स्कूल में अगर आप खस्ताहाल स्कूल में महिलाओं के बच्चियों के स्कूल में लड़कों के स्कूल में अगर आप कोई वीडियो बनाएंगे कि तबेले में सरकारी स्कूल चल रहा है, वहाँ लैट्रिन बाथरूम पानी नहीं है, खाना पानी में बन रहा है, मिड डे मील का पुस्ता हाल आपने भी कुछ दिखाया था, और उसको आप दिखा देंगे तो मुकदमा हो जाएगा, आदेश जारी किया प्रदेश सरकार ने, प्रदेश सरकार कई लोगों पर मुकदमा हो गया, ये आदेश की कॉपी है, ये थानों में यही हाल है। आप बीजेपी के खिलाफ अगर कहीं कुछ लिख देंगे, बता देंगे, बोल देंगे तो आपके घर बुलडोजर पहुंच जाएगा। कैसे लीक हुआ, पूरी बीजेपी इसी में परेशान है कि कैसे चंदा चोरी की खबर लीक कैसे हो गई, इस पे पूरी बीजेपी चंदा चोरों को क्लीन चिट। अरे ये ना राम के हैं ना किसी काम के हैं, ये सिर्फ नाथू राम के हैं, ये सिर्फ सत्ता के हैं, भगवान के आई नहीं है।
10: अरे बड़े बड़े डायलॉग मारने से
11: पावर और पैसा चाहिए इनको, बच्चा इनको देखिए अंजना जी
10: रुकिए ना, इनको डेटा देने
11: मुझे तो पूछ के आना पड़ेगा कि कौन बीजेपी से आया है प्रवक्ता, अगर इसी तरह आप लोग डिस्टर्ब करने देंगे तो मुझे बात करनी पड़ेगी कि भैया
10: कर लीजिए आप बात कर लीजिए,
11: अंजना जी से बात करिए,
10: अंजना जी
11: मुझे से बात करूंगा, अगर इनको इसी तरह
10: इनके झूठ का पर्दाफाश करना
11: टोकने का तो बात क्या करेंगे।
10: मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ महिलाओं की ओर से, जवाब दे दें अखिलेश जी।
11: बोलता भैया
0: चारू जी पूछे जवाब, चारू जी को पूछने दीजिए
10: जी,
0: चारू जी का जवाब दीजिए अखिलेश
11: जी, गलत
0: बोले
10: मेरा बहुत
11: डिस्टर्ब करवा रही है, बोलने दे ही नहीं रही है।
0: अरे बोले बहुत बात बोले, आपका पूरा ऑडियो गया है,
11: अरे जाए या ना जाए बात बोले, डिस्टर्ब करना क्यों काम है, मैं किसी को डिस्टर्ब करता हूँ?
0: नहीं बिल्कुल नहीं,
11: मैं किसी को डिस्टर्ब कर रहा हूँ?
0: और सुनील जी तो बिल्कुल नहीं करते, सुनील जी
11: आज मेरे को डिस्टर्ब ना करें
10: जी, अच्छा इसके बाद मैं बोलूंगी पूरे डिबेट में, नहीं बोलूंगी माय प्रॉमिस। वेरी क्विकली अखिलेश जी आपसे आदर के साथ सवाल है, उत्तर प्रदेश में जहां पर 2.3% आपका वोट शेयर था, 40% आपने टिकट दे दिए महिलाओं को कूद कूद कर, लेकिन उसी समय पंजाब में चुनाव था जहां पर 23% आपका वोट शेयर था, आपको पता है आपने कितने टिकट दिए महिलाओं को? 8% भी टच नहीं करे, 8। उसके बाद 2024 में जहां पर आपको लग रहा था आप बड़े झंडे गाड़ कर आएंगे, 9% टिकट दिए आपने महिलाओं को। अगर आप इतना ही लड़की हूं लड़ सकती हूं वाले थे तो एक चुनाव में जहां पर मुश्किल से 2% लोग आपके साथ थे वहां कूद कूद के 40 बोल रहे थे, पंजाब में क्यों नहीं दिए? क्या गोवा की लड़कियां लड़ नहीं सकती? या 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़कियां लड़ने के काबिल नहीं बची थी कि आपको केवल 9% टिकट देने पड़े? तो आई एम सॉरी, नारी को नारा बनाने का काम अगर किसी ने इस देश में करा है वो केवल कांग्रेस पार्टी है। और अगर आप में हिम्मत है मुझको ये बता दीजिए, अगर एक साथ 3 विधानसभाओं में चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश पंजाब और गोवा, तो आपने ये नारा केवल यूपी के लिए क्यों दिया? पंजाब और गोवा में आप कहां गायब हो गए थे? क्या आपको मालूम था यूपी के लोग आपको ऐसी दरवाजा दिखाकर बाहर करेंगे? तो इसलिए महिलाओं को टिकट देने का ड्रामा और तमाशा कर लीजिए, आपके लिए महिला केवल टोकनिज्म बनकर रह गई है। और अगर आप इस बात का लॉजिकल जवाब नहीं दे सकते अखिलेश जी, तो आदर के साथ और महिलाओं का आदर करके चुप रहिएगा।
0: अब दे दीजिए इसका
11: अंजना जी, अंजना जी अच्छा किया इन्होंने कांग्रेस का गिनाया, इनके पास लेस मात्र भी किसी भाजपा या किसी संघी में यह साहस नहीं है कि अपना गिना सके कि मैंने कहा महिलाओं को कितना टिकट दिया, कितना इज्जत दिया, महिलाओं का अपमान करने में।

0: दुराचारियों का साथ देने में दुनिया में अगर किसी का रिकॉर्ड है तो भाजपाइयों संघियों का है।
1: मेरे सवाल का जवाब,
0: शीर्ष से लेकर नख तक के भाजपाइयों का दुराचारियों के साथ संरक्षण देने का इतिहास है और महिलाओं के प्रति अपशब्द बकने का बोलने का इतिहास है। हाँ। ये महिला देखिए, जाने दीजिए,
1: इनको मेरे सवाल का अखिलेश जी हाथ जोड़कर
0: जवाब दे दिया, जिसको समझ में ना आए।
1: पंजाब और गोवा में क्या हो गया था? आपको नारे तो आप दे रहे थे ना भाई, हमने तो नारा नहीं दिया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आपने दिया था ना। क्या हो गया, पंजाब की लड़कियां लड़ नहीं सकती क्या? गोवा में नहीं लड़ पाती बेचारी लड़कियां?
0: समझ में ना आया तो मैं क्या करूं मेरे भाई, अगर किसी की अकल
1: नहीं लड़ पाई
0: नहीं
1: बेचारी
0: है मेरे
1: लड़कियां।
0: जवाब को समझ पाने में,
1: चलिए इतना तो मान लीजिए, अब आप एक्सपोज्ड हैं, आपकी पार्टी की सच्चाई भी सबके सामने आ गई
0: है।
2: बगल में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आज दोनों अगल बगल ही बैठे हैं भाई, एक टू शॉट दिखा दीजिए दोनों का।
0: टीवी पे भी नहीं दिख रहा ना, हमको दिख भी नहीं रहा है,
2: टीवी नहीं दिख रहा तो क्या देखना है आपको?
0: ये सुनील जी, नहीं मतलब ये कौन है जिसको नहीं,
2: कौन है क्या? चारू प्रज्ञा है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, और क्या जानना है?
1: भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता है
0: जी, होंगी होंगी
3: अंजना जी,
0: किसी का कद नहीं बढ़
3: रहा, अंजना जी
0: होंगी होंगी, मैं वही कह रहा हूँ।
2: जवाब नहीं होता है तो ये कौन है, ये कौन आ गई है, ठीक बात नहीं है अखिलेश जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता
1: अंजना जी,
0: मैंने जवाब दिया
2: सुनील जी,
0: मैंने
2: आपके पास आ रही
3: हूँ अंजना,
2: बात सच है ना? बड़े मसल फ्लेक्स करके अखिलेश जी ने कहा कि हमने 40% टिकट दिया था, लेकिन वही पंजाब में नहीं दिया, गोवा में नहीं दिया, समाजवादी पार्टी नहीं देती है, बल्कि पिछले बार के चुनाव में जब हमने पूरा एनालिसिस किया तो सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट देने वाली पार्टी टीएमसी थी, ममता बनर्जी की पार्टी निकली
4: जी।
2: तो ये तो सबको करना पड़ेगा ना भाई, कि अगर आप सशक्तिकरण की बात करते हैं, अगर आप कहते हैं कि इतना रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे हो, अभी दो टिकट से शुरू कीजिए।
4: ठीक बात है अंजना जी, मैं आपका तो धन्यवाद दूंगा क्योंकि आपने एक सवाल सारे प्रवक्ताओं से किया कि भाई कौन है जो टिकट बंटवारे में सबसे ज्यादा महिलाओं को दे सकता है। किसी बहन ने कहा कि भाजपा की प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा 33% देने जा रही, मैं आज तक पे बोल रहा हूं, हमारे नेता ने कहा है कि जितने भाजपा वोट टिकट देगी उससे ज्यादा समाजवादी पार्टी देगी। अगर ये 27 के चुनाव में 33% दे रहे हैं तो अंजना जी समाजवादी पार्टी 34-35% देगी, इनसे 1-2% ज्यादा ही महिलाओं को टिकट आरक्षण लागू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी देगी। लेकिन इनसे इनका
2: अच्छा
4: याद रखिएगा,
2: ये दोनों का रिकॉर्ड करके रखिएगा, चारू प्रज्ञा जी का भी और सुनील सिंह
4: हमारा बिल्कुल रखिएगा,
2: उसके बाद मुकरिएगा
4: बिल्कुल
2: दोनों
4: बिल्कुल, काहे मुकरेंगे तो आपसे भाग के कहां जाएंगे, जवाब तो आपके माध्यम से देना होगा।
2: बोलिए,
4: तो सवाल यह है कि हम चुनाव से पहले कितनी बात कर लें। फिर मैं एक बात कह रहा हूं अंजना जी, अगर महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को सच में समाज में बराबरी की बात लानी है तो सबको मिलके जिसका वो मौका मिले उसको शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और सुरक्षा पे जब तक काम नहीं करेंगे, जब आप इन तीनों पे काम कर लेंगे तो आप नहीं देंगे तो भी हक लड़कर के ले लेंगी, जब बेटियां पढ़ जाएंगी और सुरक्षित रहेंगी और स्वस्थ रहेंगी। अभी जंतर मंतर पे क्या हुआ, लड़के लिया ना देश के छात्र छात्राओं ने, एक अहंकारी सरकार को घुटने पे ला दिया, तो उनमें ताकत है, उनको केवल पढ़ा लेना है, उनको स्वस्थ रखना है, उनको सुरक्षित रखना है, उसके बाद वो सब हक ले लेंगे। लेकिन हम समाजवादी लोग महिलाओं के बराबरी के पक्ष में हैं, उनके आरक्षण जो कानून बन गया है, हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं कि आप 27 में लागू कर दीजिए उत्तर प्रदेश में, 29 में लागू कर दीजिए पूरे देश में, जब परिसीमन हो उसके बाद आप पूरे देश में उस हिसाब से लागू कर दीजिएगा, लेकिन भागिए नहीं, नारी को नारा मत बनाइए, जो समाजवादी पार्टी का मानना है।
2: ठीक है निशा जी, आप बहुत देर से राजनीति, जल्दी से आपका पॉइंट, जल्दी से आपका पॉइंट।
3: अंजना जी एक बात बताइए, अभी कल क्या होगा ये कहते हैं कि लागू कर दीजिए, इस वंदन अधिनियम, नारी वंदन अधिनियम लाया कौन था जो इन्होंने पास किया? लागू करने की हम जिद कर रहे हैं, एनडीए जिद कर रहा है, लाया कौन था? तो 70 सालों में लेकर के क्यों नहीं आए? अब ये कह रहे हैं कि लागू कर दीजिए, इन्हें में से हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कल जाकर के स्टे लेके बैठ जाएंगे जब इसके ऊपर लागू करने के बाद सेम एज इट इज में आएगी। दूसरी बात, आज अगर देश के सर्वोच्च पद पर कोई बैठी है तो आदिवासी महिला, ये इसी एनडीए सरकार में बैठी है। अगर आज देखें तो इससे पहले कभी नहीं हुआ, खासकर

0: आर्थिक सबसे बड़ी पावर होती है देश की अर्थव्यवस्था। आज अगर कोई वित्त मंत्री बनाई गई है, स्वतंत्र प्रभार अगर दिया गया है लगातार, तो माननीय निर्मला सीतारमण जी को इसी सरकार ने दिया है, जो पहले नहीं हुआ। भारत की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री अगर कोई है तो महिला है। पहले ये देखे कि उस कानून को लाने वाले कौन, पास कराने वाले कौन। तो हम तो लागू करने के नियत में भी इतना ही आगे हैं जितना उस कानून को लाने के नियत में थे, लेकिन लागू आधा अधूरा ना हो, उसमें कहीं ना कहीं कानूनी दावपेच ना फंसे, ताकि वो सही तरीके से।
1: जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क, जल्दी से आ रही हूं, जल्दी से अखिलेश जी।
2: अंजना जी, अंजना जी, मेरी बहन अभी जो बता रही है उन्हें संभवतः यह ज्ञान नहीं होगा कि महिला आरक्षण का विधेयक सबसे पहले कांग्रेस पार्टी लाई थी और राज्यसभा में पारित की थी, तब बीजेपी विरोध कर रही थी, तभी पास हो गया होता, आज महिला आरक्षण लागू भी हो गया होता। आप अभी लागू कर दो ना जितने सीटें हैं, क्यों आप उसका सहारा लेकर के अपना दूसरे चाल में फंसे पड़े हो? अभी आप दो ही साल तीन साल पहले तो उसको पास किया सबने सर्वसम्मति से, आप उसको फिर बदलने आ गए क्यों?
1: ठीक है चारू जी, जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स, दो लाइन का, सिर्फ दो लाइन का, टाइम खत्म। चारू जी,
3: क्योंकि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, मैं जल्दी से अखिलेश जी को वापस ये याद दिलाना चाहती हूँ। अभी अभी रिशफल करा है कर्नाटक कैबिनेट में, जीरो जीरो महिलाओं को मंत्री बनाया है इन्होंने। हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार है, शून्य महिलाएं इनकी मंत्री हैं। तो जहां जहां इनको मौका मिलता है सरकार बनाने का, ये दिखा देते हैं कि महिलाओं के लिए इनकी कितनी इज्जत है। अखिलेश जी, आप मेरे
1: साथ टाइम की इजाजत देता है, टाइम इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बातें खबरों के लिए आप देखते रहिए।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
1: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
1: हाँ, ला भाई मेरा बैट।
2: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
1: डिस्चार्ज हुआ यार।
3: बैट किसका है?
4: टाटा AIG है तो भरोसा है।
5: Hey Maya, let's go. The new BE6 Sportage.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: बहुत टाइड हो गई।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाए और खांसी को कहे गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
1: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
0: असली शहद, असली स्वाद।
2: In association with
3: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera.
4: Tak, digital first channels, 11 billion views, 85 million unique viewers, one stop solution for your brand, regional or hyper local reach. Har sheher, har kasbe tak advertise karne ke liye email karein.

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: नेपाल सदी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जल प्रलय ने उसके कई शहरों गांव का जैसे वजूद ही मिटा दिया है। 650 से ज्यादा लोगों की जान चले गए हैं, हजारों लोग अब भी लापता हैं। स्थानीय नागरिक, पुलिस प्रशासन, सेनाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं। उधर भारत सरकार ने भी विमानों के जरिए राहत सामग्री भेजी है। तकनीकी टीमों को सुरंग में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए भेजा गया है। और इस बीच में मौसम खराब हो रहा है और इस खराब मौसम के बावजूद टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। बीच बीच में उन्हें रोकना भी पड़ रहा है। तमाम चुनौतियों से जूझते वे नेपाल लड़ रहा है, अपने नागरिकों और विदेश से आए सैलानियों को बचाने की कोशिश कर रहा है।

0: 625 से ज्यादा लोगों की मौत। दो हजार 500 से ज्यादा लोग लापता, 300 से ज्यादा भारतीयों की तलाश जारी, 5000 लोगों का रेस्क्यू। जहां तक नजर दौड़ाओ वहीं तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। जिंदगी मानो थम सी गई है। एक तरफ खराब मौसम और टूटे रास्तों की वजह से रेस्क्यू अभियान में दिक्कतों का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ जल प्रलय का खतरा अभी भी नेपाल से टला नहीं है। जहां जहां जल प्रलय ने तबाही का तांडव मचाया था वहां न सिर्फ कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी बल्कि ये इलाके अब कई साल पीछे चले गए हैं। मकान, दुकान, दफ्तर बह गए हैं और तेज रफ्तार से आया पानी अब पीछे छोड़ गया है मलबा और बर्बादी के निशान। ऐसा ही एक इलाका है नुवाकोट का ढूंगे बाजार, जहां के हालात का जायजा लिया आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने।
1: इसके आगे जाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, ये लोगों के घर थे, मकान थे, सब कुछ कैसे पूरी तरह बर्बाद हो गया है। एक ऐसी आपदा और मानो जैसे कयामत बरसी हो शहर पर, सब कुछ तबाह कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5 मंजिल, नीचे की जो 2 मंजिल है वो पूरी तरह मलबे में जा चुकी है और यहीं से ऊंचाई से सोचिए पूरा मलबा आया हुआ होगा। लोग जो घर में होंगे, अगर उन्होंने भागने की भी कोशिश की होगी, वो कैसे भागे होंगे? ऊपरी मंजिल के लोग नीचे कैसे आए होंगे? और क्या इस मलबे में अभी, क्योंकि यहां से लगभग 30 से ज्यादा लोगों को यहां से बरामद किए गए थे शव, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया था, यहां से एयरलिफ्ट किया गया था, लेकिन न जाने कितने लोग, क्योंकि 10,000 की आबादी वाला शहर, न जाने कितने लोग इस शहर के मलबे में अभी भी।
0: अब इस जगह को देखिए, कैसे एक पूरे के पूरे बैंक का नामो निशान मिट गया और ट्रक मलबे में दब गया।
2: सबसे बुरी तरीके से प्रभावित जो जिला है नेपाल का, त्रासदी के बाद उस जिले में उसके एक रिहायशी इलाके में आए हैं। ये ऋषिका है। ऋषिका, पूरा नाम क्या हुआ आपका?
3: मेरा नाम पूरा नेम है ऋषिका कुमारी कलवार। मैं
2: किस क्लास में पढ़ती हूँ?
3: मैं अभी 12 में पढ़ती हूँ, काठमांडू।
2: अच्छा, तो यहाँ पर तुम्हारा घर था जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ है। ये क्या क्या है, पूरा एरिया हमको समझाओ कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये क्या था?
3: ये कृषि विकास बैंक है यहाँ पे, मतलब यहाँ के नजदीक बैंक पे यही था,
2: ये बैंक था। हाँ। और ये ट्रक तो कैसे गिर गया?
3: ये ट्रक यहाँ पे जस्ट लेके पार्किंग की तरह था ना यहाँ पे, तो ये पूरा धस गया। हम लोग का भी ट्रक धस गया है, उधर भी है, वैसे ही हो गया। यहाँ पे एक और ट्रक था, वो भी किसी के अंदर दबा हुआ है, उधर।
0: इन सब के बीच कई लोगों को अभी भी अपनों का इंतजार है। लोग रेस्क्यू सेंटरों से लेकर अस्पतालों तक अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। कहीं से कोई हेलीकॉप्टर आता है तो लोग दौड़ पड़ते हैं इस आस के साथ कि शायद उनके किसी अपने की एक झलक दिख जाए। किसी को मायूसी हाथ लगती है तो कोई किस्मत का धनी निकलता है।
4: आज बजे बात हुई थी उससे, और उसके बाद कुछ भी पता नहीं है किसी से। हम लोग को कहीं किसी से कोई
5: पता नहीं है, किधर है मालूम नहीं है, हम बहुत दुखी है।
6: कॉल किया, कॉल नहीं लगा, इधर गांव में भी ढूंढ रहा है, नहीं मिला। अभी हम लोग भी हॉस्पिटल इधर ढूंढ रहे, नहीं मिला।
0: इस बीच भारत युद्ध स्तर पर नेपाल की मदद करने में जुटा हुआ है। सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए भारत ने एक्सपर्ट टीम भेजी है जो नेपाल पहुंच चुकी है। एक के बाद एक भारतीय वायुसेना के विमान उड़ान भर रहे हैं और काठमांडू में सहायता सामग्री पहुंचाकर लौट रहे हैं। नेपाल की सबसे बड़ी दिक्कत रास्तों के तबाह होने और पुलों के बर्बाद होने से और बढ़ गई है। इसका असर न सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन पर हो रहा है, कई शहरों और गांवों को अपने पैरों पर फिर खड़ा करने में भी लंबे वक्त तक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी को देखते हुए नेपाल ने पुल बनाने और सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत से मदद मांगी है।
7: लोग चोरी हमको रखता है, वो हम कर रहे हैं, मेरे काम भी एक नागरिक को सुरक्षित करने की, और वहाँ पर चोरी हो रखता है नेपाल पूरी जो सहायता प्रदान कर सकते हैं उसके अनुरोध की बात है वो भी कर रहे हैं।
0: इस त्रासदी से उबरने के लिए हर कोई अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन कुदरत के अपने ही नियम हैं, कायदे हैं और उसके आगे सब विवश हैं। कई इलाकों में कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे बचाव अभियान रोकना पड़ रहा है। नेपाल में ग्राउंड जीरो से श्वेता सिंह और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
8: अब रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: इस अभियान से उनका मनोबल गिरना और फोर्सेस का मनोबल बढ़ने का एक बहुत क्लियर बेंचमार्क ये है कि 4-5 घंटे की फायरिंग के बाद वो कैंप लगा।
12: हमने उन एरियाज को डोमिनेट किया जहां पे पहले कभी उनका डोमिनेंस माना जाता था।
13: आज कोबरा कमांडोज के साथ हम वही तस्वीर वही हकीकत आपको दिखाने वाले हैं।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आज तक ना होता तो हमारी बात देश दुनिया तक नहीं पहुंचती।
3: हम लोग को बड़े चैनल का सहयोग नहीं मिला था, हम लोग गरीब छात्र लोग हैं, तो आज आप लोग का सहयोग मिला है तो पूरा भारत और पूरा दुनिया में यहाँ की आवाज गूंज रही है।
2: खबरों के साथ पक्षपात नहीं।
4: 19 साल के छात्र साहिल रजा पे दावा किया, उन पर सुरक्षा बलों ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया जिससे उनकी एक आंख की रोशनी जाने की नौबत आ गई।
2: हर बात देश के सामने।
5: अंजना मैम, सबसे पहले तो हम लोग आवाज को बुलंद किए इसके लिए आपके पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं।
2: मुद्दा कोई भी हो, सोए हुए सिस्टम को जगाता है आज तक।
6: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती?
7: ये तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। हर तरीके एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।

पड़ोसी देश नेपाल इस सदी की सबसे बड़ी तबाही से गुजरा है। 26 अगस्त को आए प्रलय ने नेपाल के त्रासदी प्रभावित इलाकों का भूगोल बदल दिया है। जहां बाजार था वहां मलबा है, जहां आशियाना था वहां पत्थरों का ढेर है। नेपाल के फ्लैश फ्लड ने तिब्बत बॉर्डर से लेकर रसुआ, त्रिशूली, नुवाकुंड तक की जियोग्राफी बदल दी है। तबाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सैकड़ों शव बरामद की जा चुके हैं, हजारों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, कई परिवार अपनों की तलाश में हैं, जबकि दुर्गम इलाकों तक पहुंचना राहत टीमों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। बाढ़ और मलबे के बीच फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। जिन इलाकों का सड़क संपर्क टूट गया है वहां हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। लेकिन नेपाल के सामने सबसे बड़ा सवाल अब भी खतरे का है। ग्लेशियर और मलबे से बनी झीलों में पानी बढ़ने की वजह से दोबारा बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। इस तबाही ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी पूरी तरह प्रभावित किया है। कई परियोजनाओं में मजदूरों के फंसे होने की आशंका है और सुरंगों में तलाश अभियान चलाया जा रहा है। यानी नेपाल में एक तरफ जिंदगी बचाने की जंग है तो दूसरी तरफ नई बाढ़ का खतरा चुनौती बढ़ा रहा है। नेपाल में तबाही का यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। रेस्क्यू टीमें मलबे में जिंदगी तलाश रही हैं। परिजनों को अपनों के लौटने का इंतजार है और प्रशासन की सबसे बड़ी कोशिश है कि किसी नई आपदा से पहले लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा सके। आज तक ब्यूरो,

0: नमस्कार, शाम के बजने वाले हैं साथ में हूं राजीव ढोंडियाल। अगले आधे घंटे में आपको दिखाएंगे देश दुनिया की सभी बड़ी और जरूरी खबरें। हम खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। उज़्बेकिस्तान के दौरे पर ताशकंद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति से गले लगाकर स्वागत। दो दिन के बाद बिश्केक के एससीओ समिट में होंगे शामिल। खड़गे को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर बोला धावा, कहा दलित होने की वजह से हल्द्वानी में किया गया शुद्धिकरण। सीएम दामे का पलटवार, तुष्टीकरण कर रहे नेता विपक्ष। नेपाल आपदा में बढ़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 669 शव बरामद, लगभग 2500 से ज्यादा लोग लापता। चीन में बने अस्थायी झील के फटने की आशंका भी बरकरार। फिर विवाद में फंसे स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना, शो में बिहारी और कश्मीरी पंडितों का मजाक का आरोप। बिहार के मंत्री मिथिलेश तिवारी बोले ऐसी अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। ग्रेटर नोएडा में 6 साल की मासूम की हत्या के मामले में आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर, महिला फुसलाकर कमरे में जाने और शव ले जाने का सामने आया था वीडियो। शो की शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के दलित कार्ड के साथ, जहां पर आज उन्होंने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस को घेरा है, हमला बोला है। इतना ही, राहुल गांधी ने हल्द्वानी में हुए शुद्धिकरण को लेकर भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान का आरोप जोड़ा और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
1: भले ही हल्द्वानी में खड़गे के दौरे के बाद हुए शुद्धिकरण की ये तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हो, लेकिन आज जब राहुल गांधी ने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा तो कांग्रेस अध्यक्ष के अपमान का मुद्दा भी उठाया।
2: कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी है, मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट है, वो रामलीला ग्राउंड में हल्द्वानी में जाते हैं भाषण देने और वहां पर शुद्धिकरण होता है। और उनकी पार्टी का उदाहरण बिहार के चीफ मिनिस्टर मांझी जी, वो मंदिर में जाते हैं और वहां शुद्धिकरण होता है। ये करता कौन है? ये बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं, सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग ये करते हैं और ये क्राइम है। राजस्थान के मंदिर जाते हैं।
1: राहुल गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण की याद दिलाई। एनडीए के नेता जीतन राम मांझी के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण का भी जिक्र किया और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
2: शुद्धिकरण होता है, जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में, उन पर एफआईआर लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, आरएसएस के लोगों ने शुद्धिकरण किया है, तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर एससीएससी एक्ट में एफआईआर दर्ज किया।
1: जवाब में एनडीए के नेता कांग्रेस राज की याद दिला रहे हैं। दलितों के विकास के लिए कांग्रेस ने क्या किया वो बता रहे हैं।
3: अगर कोई कई जगह, वेदर इट इज दिस स्टेट और दैट स्टेट, अगर हो रहा है तो उसको ठीक करना हमारा सबका जिम्मेदारी है, लेकिन इसको बहाना बना के ड्रामा करने के लिए उधर जाते हैं तो लोग सबक सिखा है, आगे भी सिखा देंगे।
4: जो लोग आज इस बात की चिंता कर रहे हैं, देश ने आजादी के बाद लंबे समय तक मौका तो उन्हीं को ही दिया था ना, आज किस मुंह से वो कह रहे हैं कि आज भी समाज में भेदभाव मिटा नहीं है। कई उदाहरण उन्होंने गिनाए, अगर ये उदाहरण आज वो गिना रहे हैं तो आप बताइए एक लंबे समय तक आजादी के बाद और लगभग 4.5-5 दशक तक तो निरंतरता में कांग्रेस की सरकारें रहीं, उसके बाद भी कांग्रेस के सहयोग की सरकारें रहीं, उसके बाद भी समाज में अगर भेदभाव अगर होता रहा तो कहीं ना कहीं नींव को मजबूत करने में सफल तो ये लोग भी नहीं रहे।
1: उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुद्धिकरण का मुद्दा राज्यसभा में गूंज चुका है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी।
5: लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए।
6: माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है, और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज।
1: उधर शुद्धिकरण के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर सियासत का आरोप लगा रही
7: है। लेकिन उत्तराखंड में कोई नहीं जानता कि खड़गे जी की जाति क्या है, वो तो वहां पर जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए और वहां पर गंदगी की गई, वो एक शुद्ध स्थान था, धार्मिक स्थान था, जहां पर रामलीला का मंचन होता है, बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, ऐसे आयोजनों पर जो गंदगी हुई थी, जो धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए थे और एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाए थे, उसके विरोध में लोगों ने जो धार्मिक संगठन थे उन्होंने उस वहाँ पर शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम किया था वो कार्यक्रम था, और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है।
1: युवा, महिला और हिंदुत्व के बाद अब राहुल गांधी ने इस बार दलित कार्ड खेला है, जिस पर घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: अब आज यूपी की सियासत के, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में जुबानी जंग जारी है। लखनऊ में जेपीएनआईसी बिल्डिंग को लेकर अब दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं।
8: लखनऊ में जेपीएनआईसी की यह बिल्डिंग यूपी की सियासत में जंग का खड़ा बनी हुई है। योगी आदित्यनाथ इसे समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार का प्रतीक बता रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव को इसमें समाजवादी पार्टी के विकास की तस्वीर दिख रही है।
9: 200 करोड़, ये 200 करोड़ सिपाही सिंडिकेट का पैसा नहीं है, ये प्रदेश की जनता जनार्दन का पैसा है, और प्रदेश का पैसा कैसे पानी के भाव बहाते थे बहनों और भाइयों, ये पैसा उस रूप में इन लोगों ने किस रूप में उस पैसे को ये बहाते थे कि 200 करोड़ रुपए के कार्य में 864 करोड़ खर्च कर दिए और तब भी अधूरा।
10: और इस जेपीएनआईसी का शिलान्यास नेताजी ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने साहब ने और बहुत सारे वरिष्ठ पुराने समाजवादियों ने इसका शिलान्यास किया था, जिसका हमें बनाने का मौका मिला। ये न केवल लखनऊ की बल्कि उत्तर प्रदेश की अपने आप में अलग बिल्डिंग की स्थान था। हमारे मुख्यमंत्री जी जानते ही नहीं, न समझते इंजीनियरिंग का, तो कुछ ए ही नहीं जानते वो।
8: योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि सरकारी बिल्डिंग के नाम पर अखिलेश परिवार अपने जेब भरने की तैयारी में था, तो वहीं जवाब में अखिलेश यादव यूपी में मिल रहे ठेकों को लेकर सवाल कर रहे हैं।
9: इन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई और कहा कि सरकार के पैसे से बने हुए इस जेपीएनआईसी को वह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाएगी, उसमें होटल भी रहेगा, जिम भी रहेगा, क्लब भी रहेगा, यानी सब कुछ इनके लिए बनेगा, कमाई इनके घर में जाएगी, जिसमें कौन है, उसमें अखिलेश यादव हैं, डिंपल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं और भी तमाम इनके सागिर्द हैं, उनको रख करके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके प्रदेश के खजाने पर डकैती डालने का काम कर रहे थे।
10: किसान बाजार बेच दिया अपने स्वजाति लोगों को, किसान बाजार बेच दिया अपने स्वजाति लोगों को, बड़े बड़े ठेके दिए अपने स्वजाति लोगों को, स्वजाति।
8: योगी आदित्यनाथ अखिलेश को यूपी की जनता से माफी मांगने की नसीहत दे रहे हैं, तो अखिलेश यूपी के सड़कों पर गड्ढों को लेकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का भी हिसाब मांग रहे हैं।
9: समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, उन्हें प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि प्रदेश की जनता के पैसे से जिससे युवाओं को रोजगार और नौकरी मिलती, गांव को कनेक्टिविटी के लिए हाईवे और फ्लाईओवर बनते, कहीं पर कोई अच्छे विश्वविद्यालय बनते, कोई कई इनोवेशन के एक सेंटर बनते, उसको पैसा न खर्च करते अपने स्वयं की अय्याशी के लिए इन्होंने प्रदेश के खजाने में डकैती डालने का जो पाप किया था, अपने उस पाप के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
10: इन अधर्मी लोगों को, धर्मद्रोही अधर्मी गिरोह को, जिन्होंने सरेआम मां को कुछ कुछ सुनाया था, ना भगवान माफ करेगा ना इंसान। मंदिर में और मंदिर के बाहर बैठने वाले भिखारी भी कभी चोरी नहीं करते।
8: यूपी में चुनाव है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच अलग अलग मुद्दों पर जुबानी जंग तेज है, जिसमें अब JPNIC की एंट्री हो गई है। आज तक ब्यूरो।
0: अब आज राहुल गांधी के कार्यक्रम गूंज की, छात्रों की गूंज की, जिसके खिलाफ एक वेबसाइट झूठ की गूंज चर्चा में है, जिसमें राहुल गांधी के दावों पर फैक्ट चेक किया जा रहा है, जिसे लेकर सियासत भी तेज है।
1: राहुल गांधी के गूंज कार्यक्रम के जवाब में आई ये झूठ की गूंज वेबसाइट बीजेपी नेताओं को जमकर पसंद आ रही है। बीजेपी के नेता इस वेबसाइट को जमकर शेयर कर रहे हैं।
3: वो क्या है, छात्र का गूंज कुछ कहे, छात्रों की गूंज, उसमें क्या हुआ अब सब देखा है। जो यंग इन्फ्लुएंसर है, एक यंग लड़की इन्फ्लुएंसर है इंस्टा में, उनको बोला के हम 25,000 आपको देंगे, आप मोदी जी के खिलाफ बोलो। और ये सब ऐसे बहुत केसेस है रिकॉर्ड हुआ है। ये भी अगर कोई कई जगह, वेदर इट इज दिस स्टेट और द स्टेट, अगर हो रहा है तो उसको ठीक करना हमारा सबका जिम्मेदारी है। लेकिन इसको बहाना बना के ड्रामा करने के लिए उधर जाते हैं, तो लोग सबक सीखा है, आगे भी सिखा देंगे।
1: दरअसल ये वेबसाइट AMU की एक पूर्व छात्रा सामंथा ने शुरू की है, जिनका दावा है कि वो गूंज कार्यक्रम में राहुल के दावों का फैक्ट चेक करती है, जिसे लेकर उन्होंने गूंज कार्यक्रम के कई दावों को गलत साबित किया, जिसे सोशल मीडिया में जमकर शेयर किया गया।
11: And then I checked, then I clicked on the website and I was going through with the website. Then I got to know there are so many, facts which we were, we were following Chhatron Ki Goonj because I am a Gen Z and I was always supporter of, students and youth. I was following CJP as well. Then I got to know that there are so many misleading facts on which, Congress in terms of, entire political party, they were trying to mislead you.
1: सामंथा इस वेबसाइट के पीछे किसी भी पार्टी का हाथ होने के आरोपों से इनकार कर रही हैं, तो वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी का नया हथकंडा बता रही है।
12: राहुल जी यही तो कह रहे थे कि मैं इस देश में पॉलिटिक्स की पिच बदल दूंगा, और राहुल गांधी जी ने बदल दिया। ये सुबह शाम दिन भर हिंदू मुसलमान नफरत ये वो कर रहे थे, फाइनली अब इनको इस पे आके बात करनी पड़ रही कि राहुल गांधी जी ने जो छात्रों के विषय में कहा है वो झूठ है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी पूरी बुनियाद झूठ पर टिकी है, जो झूठे नारे दे करके, झूठे वादे करके सत्ता में आई, 15 लाख से शुरू करके और बहुत हुई महंगाई की मार से लेकर के जितने नारे हैं इनके सारे के सारे झूठे हैं। वो अब राहुल गांधी को बताएंगे कि राहुल गांधी ने कोटा में जो बोला वो झूठ था, देहरादून में जो बोला, पुणे में जो बोला।
13: झूठ बोलने से, झूठ परोसने से सच नहीं हो जाएगा। सच्चाई कभी छुपती नहीं है। इनके कहने से नहीं होगा कि 36 लोगों को 100 में से नौकरी मिल गई।
1: CGI की एक टिप्पणी के बाद कांग्रेस जनता पार्टी के ऐलान ने सोशल मीडिया क्रांति को नई दिशा दे दी है। ऐसे में अब झूठ की गूंज की एंट्री ने सियासी हलचल तेज कर दी है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात ममता बैनर्जी की। कैथेड्रल रोड पर टीएमसी की एक बैठक चल रही थी और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के खिलाफ वहां पर है स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज हो गई। आरोप है कि हाईकोर्ट की ओर से जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए टीएमसीपी की ओर से आयोजित ये बैठक थी और कोर्ट की तरफ से कोर्ट ने सड़क के सिर्फ एक हिस्से पर ही रैली की इजाजत दी थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने दोनों ही हिस्से घेर लिए और तय समय के बाद भी कार्यक्रम चलता रहा। शिकायत में कहा गया है कि ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल टीएमसी छात्र परिषद के आयोजकों ने मिलकर साजिश रची और कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई। आरोप है कि 28 अगस्त को दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक चले इस कार्यक्रम के दौरान समर्थकों को उकसाया गया, जिसके बाद भीड़ ने बैरिकेड हटा दी और वहां पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की की गई। इससे वहां पर अफरा तफरी मची। कैथेड्रल रोड के एक हिस्से पर ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया।
14: देखिए, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एफआईआर है, तो हम लोग पूरा हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसका सम्मान करते हैं, अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन जनता का अदालत को भी सम्मान तो करना चाहिए। हम लोग कोशिश किया पूरा हाईकोर्ट का ऑर्डर को मानने के लिए, लेकिन अगर कोई ज्यादा कोई चला आएगा वो तो पुलिस का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखने का। वो ममता बनर्जी का खिलाफ एफआईआर का कोई वो पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है।
15: देखिए, ममता बनर्जी को लग रहा है कि वो अभी भी मुख्यमंत्री है, वो न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर है, उनके ऊपर कोर्ट के किसी आदेश का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ममता जी, कानून का शासन चल रहा है बंगाल में, भारत के संविधान का शासन चल रहा है बंगाल में, बंगाल में डबल इंजन की ग्रोथ का शासन चल रहा है, परफॉर्मेंस की गारंटी का शासन चल रहा है। वो आपके भतीजे को बढ़ाने वाला कट मनी रंगदारी वाला शासन खत्म हो चुका है।
0: आज राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा था और इस समय बीजेपी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है।
16: तेलंगाना में उप मुख्यमंत्री बनाया बिस्मार्क जी को, कहां बैठे हैं? जमीन पे बैठे हैं। तो हम कांग्रेस पार्टी के नेता युवराज श्रीमान राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं, ये दलित समाज दलित सम्मान की बात आपको सिर्फ राजनीति के लिए याद आती है, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए याद आती है? इतिहास गवाह है कि किस प्रकार से बाबा साहेब अंबेडकर हो, बाबू जगजीवन राम हो, बाबू जगजीवन राम को अंततोगत्वा कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी थी और वो पहली बार इस देश ने दलित समाज का उप प्रधानमंत्री देखा, वो उस सरकार में उप प्रधानमंत्री बनते हैं जो भारतीय जनसंघ के द्वारा बनाया गया था। 1971 की लड़ाई, रक्षा मंत्री के रूप में देश का नेतृत्व कौन कर रहा था? यदि मैं आपसे पूछूं तो आप नहीं बता पाएंगे। इतना बड़ा युद्ध श्रेय से दलित समाज के बाबू जगजीवन राम को गायब कर दिया गया। बाबू जगजीवन राम के संदर्भ में एक पुस्तक है नीरजा चौधरी जी की, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, उसमें उन्होंने कथित रूप से कहा है कि ओनली बिकॉज ऑफ कांग्रेस पार्टी अ दलित कैन नेवर बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और समाज तोड़ने वाली शक्तियों के साथ खड़े रहते हैं, पहली बार देश के इतिहास में साथियों हमने देखा एक आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पर पहुंची। क्या कहा गया था उदित राज जी के द्वारा? चलिए छोड़िए, क्या कहा गया था कांग्रेस पार्टी के विधिवत नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी के द्वारा, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। देखिए, ये सूची इसका कोई अंत नहीं है। आज कल हमेशा से कांग्रेस पार्टी का जो चाल चेहरा और चरित्र है वो दलित विरोधी रहा है, इसके लिए हमें कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। मेरे ध्यान में आता है कि किस प्रकार से कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर, जब वो कांग्रेस में थे, उन्होंने ये सार्वजनिक रूप से कहा कि दलित होने के कारण उनको कर्नाटक का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। खड़गे जी कांग्रेस में अध्यक्ष तो बन जाते हैं, लेकिन खड़गे जी को कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जाता है? राहुल गांधी जी जहां जाते हैं पूरे देश में, कहां है एससी एसटी ओबीसी, कहां है एससी एसटी ओबीसी, हम पूछना चाहते हैं। आज आपकी सरकार इतने प्रांतों में है, कितने एससी एसटी ओबीसी मुख्यमंत्री है? भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है, उड़ीसा में पहली बार हमारी सरकार बनती है, एक आदिवासी समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आती है, मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार दलित समाज का व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बनता है। राजस्थान में दलित समाज का व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बनता है। बाबा साहेब अंबेडकर के बाद देश के इतिहास में पहली बार कोई दलित समाज का व्यक्ति केंद्र में कानून मंत्री बनता है, तो अर्जुन राम मेघवाल बनते हैं। ये कैसी बात करते हैं आप? मान सम्मान देंगे नहीं, कमरे के बाहर रखेंगे आप, दलितों से चप्पल उठवाने का काम करेंगे, शासन में प्रशासन में संस्थानों में किसी प्रकार की कोई भागीदारी देंगे नहीं आप। वर्तमान में भी यही स्थिति हो रही है। मैं बिहार का रहने वाला हूं, बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा था, बिहार कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष राजेश कुमार राम जी पटना हवाई अड्डे के बाहर जो वीडियो आया था, दिल दहलाने वाला, हिंसा का सामना करना पड़ा था उनको, ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है। और मैं पुनः बोलता हूं, चाहे वो पंजाब के चन्नी हो, हरियाणा की शैलजा हो, बिहार के राजेश राम हो, कर्नाटक के परमेश्वर हो, तेलंगाना के विरमार्क हो, केंद्र में खड़गे हो, ये सब उदाहरण दर्शाता है कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने मात्र दलित समाज को राजनीतिक रोटी सेकने का माध्यम बनाया है। बाबा साहेब अंबेडकर का इतिहास हमको मालूम है। बाबा साहेब अंबेडकर चुनाव न जीते ये किसने सुनिश्चित किया था? बाबू जगजीवन राम से लेकर के बाबा साहेब अंबेडकर, कांशीराम, सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, उनको लेकर के उनके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ था, हम पूछना चाहते हैं। और वो हमसे पूछते हैं, हमारी प्रतिबद्धता, हमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से किसी प्रकार को कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन काल में, जन्म से लेकर के उनके देहांत तक, जहां जहां जिन जिन स्थानों पे उनका स्पर्श हुआ, उस स्थान को तीर्थ का दर्जा किसने दिया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। दिल्ली के केंद्र में, यहां पे डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर हम जाते हैं तो हमारा मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ के हमें बड़ा ही गर्व होता है। वो स्थान किसने बनाया, हम पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी से। कांग्रेस ने स्वयं के दो दो प्रधानमंत्रियों को पद पे रहते हुए भारत रत्न दिया, भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? जब भाजपा समर्थित सरकार केंद्र में आती है। सदन में तेलचित्र नहीं है बाबा साहेब अंबेडकर का, इतने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं आने दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद ही वहां पे तेलचित्र की भी सुविधा होती है। साथियों, मैं खुली चेतावनी देता हूं, राहुल गांधी जी को सामाजिक न्याय, सामाजिक सशक्तिकरण, दलित समाज का मान सम्मान स्वाभिमान और प्रतिनिधित्व पे स्कॉलरशिप हो, प्रतिनिधित्व हो, संस्थान हो, हर स्थान पे यदि वाकई में सामाजिक न्याय बढ़ा है तो पिछले 12 वर्षों में बढ़ा है। आप दलित विरोधी कानून देखिए, जो एससी कम्युनिटी को मिलने वाली सहायता राशि थी 85,000 से बढ़कर के 8,25,000 हो जाती है। सब प्लान में भी केंद्र सरकार 100% तक का योगदान देती है। तो किस प्रकार से समाज के सभी वर्गों का मान सम्मान बढ़े, संतुलन रहे, लेकिन राहुल गांधी जी और उनकी मानसिकता लगातार, देखिए एक स्क्रिप्ट है और वो स्क्रिप्ट के तहत ऐसा करते हैं, उनको दलित समाज के लोग दिखते नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले वो पेट्रियार्की पे आ गए थे तो पेट्रियार्की में भी उनको लोग दिखे नहीं, वो दलित समाज की बेटी नहीं दिखी उनको, आदिवासी की बेटी नहीं दिखती है उनको। तो कांग्रेस पार्टी का चेहरा नव सामंतवाद, घोर जातिवाद और दलित विरोधी का उनके इतिहास है। यह बात हमें जानकारी में रखने की आवश्यकता है। मैं आग्रह करूंगा आगे के प्रोसीडिंग के लिए आदरणीय सुधांशु जी से।
17: धन्यवाद गुरु प्रकाश जी। और अगले क्रम में मैं राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी से आग्रह करता हूं, कृपया संबोधित करें।
18: मित्रों, जैसा भी भाई गुरु प्रकाश जी ने बताया, आज स्थिति यह है कि अनेक प्रकार के स्वांग और प्रपंच रचकर भी मुझे लगता है कि राहुल गांधी के जो स्पीच रचनाकार हैं वो अपनी सृजनात्मकता खोते चले जा रहे हैं। 2014 में बाबा ब्रिगेड नाम से एक युवा का चेहरा, तो 2019 में भारत के इतिहास में पहली बार कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के अपना गोत्र बताने वाले, और वहां से 2024 में पक्की दाढ़ी बढ़ाकर दिमागी नक्सल के रूप में एक कॉमरेड के रूप में सामने आने वाले, ये नाना प्रकार के स्वरूप भी उस सच को नहीं छुपा सकते जिसका अभी उल्लेख यहां पर किया गया है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है इन दो वीडियोस से कि इसमें जाति का कोई एंगल नहीं था, परंतु मैंने कहा ना वो सृजनात्मकता खो चुके हैं, तो हर बार वो अपनी घिसी पिटी लाइन के ऊपर ही भारत में टकराव उत्पन्न करने के नए नए तरीके खोजने में व्यस्त रहते हैं। और मैं कांग्रेस पार्टी से यह पूछना चाहता हूं कि आपको यदि वास्तविकता में दलित समाज के प्रति इतनी पीड़ा है, तो 18 जुलाई 2019 को भिवाड़ी में हरीश जाटव की के ऊपर कातिराना हमला हुआ और 15 अगस्त को आत्महत्या कर ली थी, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। 15 सितंबर 2021 को अलवर में योगेश जाटव पर भीड़ ने हमला किया और 18 सितंबर को अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। 1 जुलाई 2021 को झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि की सड़क पर पिटाई हुई और 6 जुलाई को अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। क्यों? आपकी सरकार थी। मगर वो भीड़ जिसने हमला किया था वो एक पक्का वाला वोट बैंक था। तो एक तराजू पे तौला जाता है कि दलित की जान की कीमत और वो पक्के वाले हमारे वोट बैंक की कीमत। और जब वो पक्का वोट बैंक दिखता है तो दलित का मान सम्मान और जान तीनों बहुत हल्का लगने लगता है। मैं राहुल गांधी से भी पूछना चाहता हूं, 24 मार्च 2024 को हैदराबाद में मझेला मलक्की डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में जो कुछ हुआ था, फिर मैं बता रहा हूं, इन सारे उदाहरणों में भीड़ वही है।
0: और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
20: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का
6: सब कैशलेस हो गया
5: है। ला भाई मेरा बैट।
6: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
7: चार्ज हुआ यार।
8: बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।
10: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: मुल्तानी को का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी को का कॉफ सिरप।

0: अपनी स्वस्थ्य रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
1: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है।
3: हालांकि मुख्य सड़क आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है, लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है, दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास अमित वधवार के साथ में आशुतोष मिश्रा आज तक।
4: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती।
5: ये तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। तरीके एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: 11 साल बाद नेपाल में फिर एक त्रासदी। 600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 2500 लोग लापता हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा, विशेष में आपका स्वागत है। आगे हम आपको दिखाएंगे नेपाल की वो बड़ी कवरेज जो आज तक लगातार आपको इन प्रभावित इलाकों से दिखा रहे हैं। आज तक की टीम लगातार उन इलाकों में जा रही है जो तबाही है उसका दंश झेल रही है। इसके पहले हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाएं। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह नुआकोट के उस गांव में पहुंची हैं जो इस तबाही के मंजर से बर्बाद हो गया है। बीते 3 दिनों में मैं उन इलाकों में गया हूं जहां मैंने तबाही की वो तस्वीरें देखी हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं, जो डराती हैं। यहां लोगों के आंखों में गम है, दुख है, अपनों को खोने का दुख है। तो आखिर इस दलदले के बाद उनका भविष्य क्या होगा? नेपाल को इस दंश से उभरने में कितने साल लगेंगे? ऐसे कई सारे सवाल खड़े हैं। राहत बचाव कार्य अभियान भी चल रहा है, मौसम बाधा बन जाती है, अंतर्राष्ट्रीय टीमें यहां पर पहुंच रही हैं, और इन सब के बीच चुनौती लगातार बनी हुई है क्योंकि पहाड़ के सबसे ऊंचे हिस्से में इस ऊंचाई पर लोगों को बचाना, उन्हें सुरक्षित पहुंचाना और ये कोशिश करना कि हर मुमकिन संभव वो प्रभु इंसान जो कहीं भी जीवित है, सांसें ले रहा है, उसे बचा करके वापस ले आए, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। देखिए हमारे सहयोगी श्वेता सिंह जब नुआकोट के गांव में पहुंची जो इस तबाही का दंश झेल रहा है।
1: तबाही अपने पीछे ऐसा दर्द छोड़ गई जिसके जख्मों को भरने में कई साल लग जाएंगे। तस्वीरें नेपाल के नुआकोट की हैं। पूरे इलाके का मानो नक्शा ही बदल गया है। सड़क, दुकान, मकान सब बराबर हो गए हैं। जिन घरों में कभी खुशियां चहकती थी, आज उन्हीं घरों के बाहर बेबस और लाचार लोगों का दर्द नजर आ रहा है।
2: ये वो जिला है जो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ नेपाल में आई उस त्रासदी से। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मलबा हट रहा है तो त्रासदी का पैमाना दिख रहा है। इस ऊंचाई से आप वो पूरी तस्वीर देखिए, त्रिशूली नदी अपने तटों को तोड़कर दोनों तरफ ज्यादा चौड़ाई में बह रही है। वो तस्वीरें जहां पर आपको लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, वहां तक सड़क जाती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे शायद एक पगडंडी रही हो और बाकी केवल मलबा। पर ऐसा नहीं है, यहां पर एक बड़ी सी पार्किंग हुआ करती थी। ये बैंक, एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स और आगे आप होटल्स देख सकते हैं क्योंकि यहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में आया करते थे। अब जो इकलौता पर्यटन यहां पर है वो उन लोगों का है जो आकर देखना चाहते हैं कि कैसी विनाश लीला रही होगी। जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे। जब आगे वो त्रासदी आई, तबाही आई, बाढ़ मलबे के साथ पानी आया, तो ईश्वर को इस बात का शुक्र तो अदा किया कि अपनी जान बची, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को तिनका तिनका होते भी देखा।
1: स्थानीय लोगों ने ऐसा मंजर देखा जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएंगे।
3: मैंने देखा कि वहाँ से वो पुल से बाढ़ आ गया। तो मैं पहले तो मेरे मम्मी पापा थे दुकान पे ना, तो मैं गई अपनी मम्मी पापा को देखने के लिए कि वो अभी तक वहीं पे या नहीं। अब स्कूटी तो छोड़ दो क्योंकि हमारा अभी यंग है तो हम कमा लेंगे, पर अपने मम्मी पापा को तो बचा लेना पड़ेगा ना। तो हम चले गए वहाँ पे, तो देखा मम्मी पापा दुकान बंद करके चले गए, भाग गए, तो मैं भी भाग गई उधर से। अगर मैं इधर से आई होगी तो मुझे भी लेके जाएगा था पढ़ने, पर वे उधर चले गए।
2: ऊंचा दिख रहा था, ऐसे कैसा होता वो दिख रहा था?
3: नहीं, ऐसे जैसे जो होते ना, जो इसने क्या आते ना, ऐसे ऐसे करके। अच्छा। थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर करके हाई हाई हाई करके।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो ऐसा चल के आ गया ना, तो कुछ सोचने समझने के टाइम भी नहीं हुआ उस टाइम कि क्या करना चाहिए। अब देख, क्योंकि कोई रो रहा है उस टाइम देख के, कोई क्या कर रहा है ना, तो ऐसे लगा कि
2: सबसे जरूरी था भागना, तेज,
3: वही अपना जान बचाओ सबका। तो कितने लोग रो रहे थे और कितने लोग को तो हमने देखा कि उसको बाढ़ ने भगा के लेके गए। एक को तो हमने
2: देखा सामने,
3: हाँ नहीं ऐसे करके, वो जैसे हम यहाँ पे थे तो उसको हमने हाथ पकड़ के ऊपर
2: आपने बचा लिया। हाँ,
1: ऋषिका बताती है जिस मोहल्ले में वो खेलती थी आज वो मोहल्ला पूरी तरह से बदल चुका है। अब दूर खड़े होकर वो अपने घर को देख रही है। खुशी इस बात की है कि परिवार के लोग बच गए। उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन इस छोटी उम्र में तबाही ऐसा तजुर्बा दे गई कि जिंदगी को

0: कितनी देर पहले मम्मी पापा निकल पाए थे?
1: मम्मी पापा बोल रहे थे अगर हम लोग ऐसे मुड़ के पीछे देखते लोग तो शायद पता नहीं क्या होता।
0: मतलब मुड़ के पीछे देखने का भी टाइम नहीं था?
1: नहीं था।
0: ये सब घर यहाँ पे तो दोस्त वोस्त रहते होंगे तुम्हारे सब?
1: हाँ जी, मेरा फ्रेंड का भी घर जो है ना, जो मंदिर की तरह दिखाई दे रहा है, मेरे फ्रेंड का ही घर है। और वहाँ पे कुछ भी नहीं रहा, यहाँ पे एक सिस्टर आंटी का की थी, उनका होटल था, बहुत अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था।
0: हाँ।
1: बहुत अच्छा भी था, वो भी कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पे ब्लू कलर का जो है घर देख सकते हैं,
0: किसी का काम बचा ना घर बचा,
1: ना किसी का काम बचा ना घर बचा, कुछ भी नहीं बचा। बस आदमी बच गए ना, वही हम लोग के लिए बहुत काफी। हम लोग मैं खुशी हूँ कि मेरे पेरेंट्स बच गए, बस वही काफी है। पैसा तो धन बाद में भी हो सकता है ना, पहले आदमी बच गए वही काफी है।
2: रसिका की किस्मत अच्छी थी कि परिवार वाले बच गए, लेकिन यहाँ ऐसे भी कई परिवार हैं जो अपने ही मोहल्ले में अपनों की तलाश कर रहे हैं।
3: मेरी दीदी मिसिंग है और भांजी भी, तीन भांजी, एक हाँ। दीदी और एक नतनी मिसिंग है।
0: कहाँ रह रहे थे?
3: वो लोग रसुआ और नुआकोट के बॉर्डर पे रहते थे।
0: अच्छा।
3: क्या कहता हूँ मैं,
0: रसुआ नुआकोट के बॉर्डर पे, तो आप हर उस जगह आके ढूंढ रहे हैं कि
3: हर जगह जाने के वहाँ कोई साधन ही नहीं है।
0: हाँ।
3: और वहाँ तक मिसिंग ही है और जा नहीं पा रहे हैं।
0: फोटो एक बार दिखा दीजिए कैमरे पे।
3: ये भांजी हुई, ये भांजी की लड़की हुई।
0: कितने साल की है
3: ये बच्ची? 2 साल की है।
0: 2 साल की
3: जी। ये दीदी हुई।
0: हाँ।
3: ये भांजी है, ये भी भांजी है।
0: तो ये मिल नहीं पा रहे हैं?
3: नहीं मिल पा रहे हैं।
0: आप हर जगह जाके बस
3: ढूंढ रहे हैं।
2: रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक बुरी खबर पूरे परिवार को तोड़कर रख देती है।
0: ये रसुआ की तरफ जाने वाली सड़क है, जैसे जैसे जो राहत कर्मी है वो थोड़ी सी सफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं, किसी न किसी को कोई न कोई बुरी खबर मिलती है।
2: इस इलाके में कई होटल भी थे जिसमें टूरिस्ट रुके हुए थे, जिनकी जान बचाने की अपनी कहानी है।
4: उस टाइम खाना खाने टाइम हुआ था, ऑर्डर था गेस्ट का, 15-20-25 जना गेस्ट का ऑर्डर था। उस टाइम में सब खबर आ गया, भागो भागो बोल के सब खाना खा के ये रास्ता हो गए।
0: आंखों के सामने आपने आते हुए देखा?
4: हाँ।
0: कैसा डरावना था?
4: बहुत एकदम डरावना था।
0: नुकसान कितना हो गया आपको?
4: नुकसान था उधर 15 रूम था गेस्ट रूम होटल का, अटैच बाथरूम रूम, एसी रूम, हॉल था, डाइनिंग, किचन। नुकसान तो कितना आप सरकार ने उसको जान किसी की नहीं गई। 4-5 मिनट के अंदर में भागने सफल हो गया। मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल था उसमें, मोटरसाइकिल लेने के भी मौका न मिला और शॉटर लगाने की भी मौका नहीं मिला।
0: यही रास्ता था?
4: ये रास्ता से काम करने वाला स्टाफ 5 जना थे, 5 आदमी थे, और मेरा बेटा उधर काम करता था, वो भी ये रास्ते से ऊपर भागने सफल हो गया।
2: यहाँ रहने वाले अमरीश बताते हैं कि इलाके का मानो भूगोल ही बदल गया है।
0: यहीं पर रहते हैं आप?
5: जी यहीं पर रहते हैं।
0: यहाँ क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं 26 अगस्त के बाद से?
5: बहुत बड़ा परिवर्तन है। हाँ। अब यहाँ पे जो है सड़क का हाइट बढ़ गया है।
0: हाँ।
5: खोला इधर थोड़ा सा उधर से इधर साइड में आ गया है पहले से।
0: मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि ये बैंक और ये जो
5: डेवलपमेंट विकास बैंक,
0: हाँ, ये सब नीचे है और सड़क ऊपर है, ऐसा था या नहीं
5: लग रहा है? नहीं, पहले नहीं था लेकिन अभी लग रहा है। थोड़ा सा नीचे तो था लेकिन कम था।
0: अच्छा, तो अब और नदी इसी तरीके से?
5: नदी तो बहुत परिवर्तन हुआ है पहले।
0: क्या परिवर्तन हुआ है?
5: इसका चौड़ाई बढ़ गया है पहले से।
0: हाँ।
5: ये पूरा खेत था इसके पछाड़ी, पूरे खेत में
0: ये खेत था,
5: खेत था इसके पछाड़ी।
0: अच्छा।
5: इस साइड में पूरे घर था यहाँ। हाँ। पे हर आदमी अपना बिजनेस व्यवसाय करता था लोग। यहाँ तक रोड था पहले,
0: यहाँ तक रोड था। अच्छा, इसीलिए ये हम रोड का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला वो चीजें आप देख रहे हैं।
5: हाँ, इसी
0: और इसीलिए यहाँ पर खड़ा होना भी थोड़ी देर के लिए संभव हो पा रहा है।
5: यहाँ बाउंड्री था, यहाँ तक रोड था पहले।
2: इंसान तो इंसान, जानवर भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं।
6: ऊपर
0: छत में फंसा हुआ है कुत्ता,
6: ये 40-50

0: से
1: 40-50 ऊपर फंसा हुआ है,
0: दो आया और उधर है।
1: अच्छा तो अभी उस सबको निकाल रहे हैं। ये कुत्ता भी ऊपर से है,
0: ऊपर से निकाला अभी,
1: दो
0: था एक किधर गया मालूम नहीं, एक
1: एकदम ऊपर बेचारे को खाना भी नहीं मिला होगा।
0: खाना नहीं मिला,
1: यही कुछ जो छत पे ऊपर एकदम फंस गए थे उन सबको अभी निकाला जा रहा है। ये आपका था, आपका क्या नाम है इसका?
0: स्वीटी।
1: स्वीटी नाम है। स्वीटी आ गई तुम वापस?
2: उसका काम नहीं सुनता है,
0: खराब हुआ।
3: सबका अपना दर्द है, किसी को अपनों की तलाश है तो कोई फिर से जिंदगी शुरू करने की खुद को हिम्मत दे रहा है। श्वेता सिंह, नुआकोट, नेपाल, आज तक।
4: काठमांडू से लेकर के रुसवा तक की पूरी यात्रा 150 किलोमीटर की है। ये पूरा हरा भरा खूबसूरत दिखने वाला ये इलाका जो कभी बहुत खूबसूरत दिखता था, लोगों के आकर्षण का केंद्र था, अब वहां के गांव, कस्बे, शहर सिर्फ कागज पर बचे रह गए हैं। जिन इलाकों से हम गुजरते हैं वहां सिर्फ तबाही के निशान देखते हैं। ये बर्बादी अपने साथ वो निशान अब छोड़ गई है, पानी भले ही उतरने लगा हो लेकिन ये निशान जल्दी नहीं मिटेंगे। वो गांव वीरान हो चुके हैं, जहां लोग रहते हैं अब वहां सिर्फ मलबा है। स्कूल, अस्पताल, घर, मकान, दुकान सब कुछ तबाह हो चुके हैं।
5: नेपाल की जल त्रासदी किस तीव्रता की थी, इसका अनुमान जब तक लगाया जा रहा होता है तब तक उससे भी विनाशकारी तस्वीरें आ जाती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि कितना विनाश हुआ है, किस स्तर का हुआ है, उसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह, आशुतोष मिश्रा, पंकज दास इस समय नेपाल में मौजूद हैं। संवाददाता आशुतोष मिश्रा जब नुआकोटी के ढुंगे बाजार पहुंचे तो वहां के हालात देखकर हैरान रह गए कि तबाही इस स्तर की भी हो सकती है।
4: इसके आगे जाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, ये लोगों के घर थे, मकान थे, सब कुछ कैसे पूरी तरह बर्बाद हो गया है। एक ऐसी आपदा और मानो जैसे कयामत बरसी हुई शहर पर, सब कुछ तबाह कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5 मंजिल, नीचे की जो 2 मंजिल है वो पूरी तरह मलबे में जा चुकी है और यहीं से ऊंचाई से सोचिए पूरा मलबा आया हुआ होगा। लोग जो घर में होंगे, अगर उन्होंने भागने की भी कोशिश की होगी, वो कैसे भागे होंगे? ऊपरी मंजिल के लोग नीचे कैसे आए होंगे? और क्या इस मलबे में अभी, क्योंकि यहां से लगभग 30 से ज्यादा लोगों को यहां से बरामद किए गए थे शव, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया था, यहां से एयरलिफ्ट किया गया था, लेकिन न जाने कितने लोग, क्योंकि 10,000 की आबादी वाला शहर, न जाने कितने लोग इस शहर के मलबे में अभी भी होंगे।
5: नुआकोट का प्रमुख बाजार था, लेकिन अब इन तस्वीरों को देखिए, बाजार का कहीं नामो निशान नहीं है। ढुंगे के इस बाजार में कई होटल रेस्टोरेंट थे जो अब मलबे में सिमट चुके हैं। सामने एक पेट्रोल पंप भी था लेकिन अब कुछ दिखाई नहीं देता।
4: ढुंगे बाजार के जिन इलाकों में अब मैं आया हूँ, थोड़े थोड़े करके दिखाई दे रहे हैं। ये जो इमारत है दरअसल निर्माणाधीन थी। अब सोचिए कोई अपना आशियाना बना रहा था, परिवार के लिए घर बना रहा था, उसके पहले ही वो घर तबाह हो गया, लोग कहाँ गए कोई नहीं जानता। यहाँ पर कई मंजिला थे, इसमें कुछ कमर्शियल होटल चलते थे। मैं कोशिश करता हूँ क्या इस इलाके तक जाया जा सकता है, लेकिन नहीं जाया जा सकते। देखिए, जूते डालते ही ना जूते यहाँ पर धंस रहे हैं, और इसी के साथ साथ ये जो मलबा है ये थोड़ा ज्यादा रिस्की है, ये लूज मलबा है। हाँ, ये देखिए पूरा दलदल है, इसके ऊपर जाया नहीं जा सकता। दिखने में लग रहा होगा कि मिट्टी का जमावड़ा है, लेकिन जैसे जैसे पानी नमी इसमें जा रही है ये और पूरा दलदल बनता जा रहा है। आप सोचिए कि अगर इन जगहों से किसी को जाना भी हो, संभावना भी हो, अब आप समझिए कि जहां पर रेस्क्यू बचाव कार्य चल रहे हैं वहां इस दलदल से लोगों को निकालना कितना मुश्किल होगा, खासकर अगर कोई इमारतों से SOS कॉल भी देता। और इसीलिए हेलीकॉप्टर के जरिए वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, वहां से विंचिंग किए जाते हैं, उन्हें नीचे से जो है लिफ्ट कर लिया जाता है। एयरलिफ्ट एकमात्र ऑप्शन बचा है, क्योंकि इस दलदल में आप चॉपर जो है लैंड नहीं कर सकते। इन इलाकों में देखिए, यहाँ से निकलना जो है ना ये पूरा कीचड़ है, तो बहुत, अब आप समझिए कि राहत बचाव कार्य यहाँ पर कितना मुश्किल हो रहा होगा।
5: नुआकोटी के ढूंगे बाजार में अब कोई नहीं बचा है। यहाँ का बाजार, यहाँ का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सब खंडहर बन चुके हैं, एक ऐसा खंडहर जो मलबे से भरा हुआ है।
4: तो ढूंगे बाजार की सीमा यहाँ से मेरे लिए खत्म हो रही है, क्योंकि बाजार तो आगे तक है लेकिन इसके आगे मलबे ने रास्ता रोक रखा है और वो इतना खतरनाक है कि जोखिम भरा है। लेकिन यहाँ आकर के त्रासदी की जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ वो बता रहे हैं कि आखिर यहाँ जो लोग होंगे वो कितने डरे होंगे, कितने सहमे होंगे। समय था ही नहीं भागने के लिए और जब तक वो भाग के ऊपर पहुंचते तब तक न जाने कितनी इसकी चपेट में आ गए थे। कहीं पेट्रोल पंप दब चुका है, कहीं कई मंजिला जो इमारत है वो खंडहर बन चुकी है। न जाने कितने लोग थे जो भाग पाए होंगे, न जाने कितने लोग थे जो मलबे में दफन होंगे। कई सारे लोग निर्दोष लोग जिन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला होगा। नेपाल की इस तबाही ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है।
5: नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर आसमान पर बनराते रहते हैं ये देखने के लिए कि कहीं कोई फंसा तो नहीं। त्रिशूली नदी ढोंगे बाजार के बिल्कुल बगल से बहती है। यहीं पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी था। 26 अगस्त की आपदा में वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गया।
4: ये वो त्रिशूली के पास का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। दरअसल पाइपलाइन आपको दिखाई दे रही है, ये भी मलबे में पूरी तरह बह गया। क्योंकि आगे जो त्रिशूली की धारा आप देख रहे हैं ये इतनी खतरनाक थी कि इसके साथ ये पानी का स्तर जो है ये इतना ऊपर गया 20 से 25 फीट और उसके बाद इसने पूरे हाइड्रो प्रोजेक्ट को अपने साथ बहा ले गए। दरअसल पुल की कनेक्टिविटी इस इमारत के साथ लगती थी लेकिन ये सब कुछ बह गया। और अब बड़ा खतरा इस बात का है कि जिस तरह से चीन ने चेतावनी दी है उस चेतावनी के बाद दरअसल इसी त्रिशूली में, नारायणी में, भटकोशी में जिसका स्तर बढ़ा था वो पानी फिर बढ़ सकता है। और ऐसे में हालांकि इन इलाके की तबाही अब इतनी हो चुकी है कि और नुकसान क्या ही होगा। लोग बचे नहीं है, जो बचे हैं वो पहाड़ी इलाकों पर चले गए हैं। बाकी की चेतावनी जारी की गई है लेकिन ये तस्वीरें देख करके आपको अंदाजा लग सकता है कि जो नदी आज इतने नीचे से बह रही है जिसका बहाव लगभग इतना ही है वो भी तब जब बरसात हो रही है वो जब जमीन से 60 से 70 फीट की ऊंचाई पर ले गई होगी तो अपने साथ कितनी तीव्रता और ताकत लेकर के आई कि उन्हें इन बड़ी बड़ी इमारतों को, पुलों को, हाइड्रो प्रोजेक्ट को सब कुछ नष्ट कर दिया।
5: ढुंगे बाजार से नेपाली सेना ने कई लोगों के शव बरामद किए हैं। जो लोग किसी तरह से यहाँ से बच निकले थे अब वो अपने घरों को देखने के लिए लौटे हैं। लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि नेपाली पुलिस लोगों को आगे जाने से रोक रही है।
4: आपका घर कहाँ पर है? अच्छा, ऊपर की तरफ।
6: थैंक यू
4: वाला। आप अच्छा, आप थे उस समय घर पे जब ये सब हो रहा था?
6: पूरा डूब जाए।
4: आप थे यहाँ पे जब देखा था आपने सब कुछ?
6: हाँ देखा था। ऐसे से आया कि ऐसा उपहार के, ऐसा मार के, सब मार के चल गया। उसके लिए हम बाद में इधर भी आ सकता है समाज गया। उसके बाद हम ऊपर गए।
4: ढूंगे बाजार जैसे ही खत्म होता है उसके आगे त्रिशूली बाजार शुरू होता है। और अब ये जो पुलिस वाले हैं वो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि लोग आगे ना जाएं। अभी देखिए महिलाएं बच्चे हैं जिनका अपना जरूरत का सामान है ये लोग। आप कहाँ जा रही हैं? आपका घर है आगे? आप आगे जा रहे हैं? देखिए कई सारे लोग हैं जो अपने घरों की ओर या उन इलाकों की ओर जाना चाहते हैं देखने। लेकिन ये कितना जोखिम भरा है, देखिए देख रहे हैं पूरा रास्ता जो है कीचड़ में दबा हुआ है। इसके आगे जाने के पुलिस भी अनुमति नहीं दे रही, इसलिए जो स्थानीय प्रहरी हैं वो भी पहुंचे हैं। लोग अब आए हैं देखने के लिए कि वो इन इलाकों में आगे न जाए।
5: आशुतोष मिश्रा, नुआकोटी, नेपाल, आज तक।
4: नेपाल के इस आपदा के केंद्र से आज तक रिपोर्टिंग का मकसद सिर्फ आप तक खबरें पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद ये भी है कि जो रिपोर्ट प्रशासन तक, शासन तक, सरकार तक पहुंचे, उन लोगों के बारे में जानकारियां पहुंचे ताकि उम्मीद बंधी रहे, सरकार सही फैसले ले सके और ये भी कोशिश की जा सके कि नेपाल को जिस मदद की दरकार है वो मदद दुनिया भर से उस तक पहुंचे। विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: इस अभियान से उनका मनोबल गिरना और फोर्सेस का मनोबल बढ़ने का एक बहुत क्लियर बेंचमार्क ये है कि 4-5 घंटे की फायरिंग के बाद वो कैंप लगा।
1: हमने उन एरियाज को डोमिनेट किया जहां पे पहले कभी उनका डोमिनेंस माना जाता था।
2: आज कोबरा कमांडोज के साथ हम वही तस्वीर, वही हकीकत आपको दिखाने वाले।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय विक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब विक्टर्स।
1: भले ही हल्द्वानी में खरगे के दौरे के बाद हुए शुद्धिकरण की ये तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हो, लेकिन आज जब राहुल गांधी ने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा तो कांग्रेस अध्यक्ष के अपमान का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण की याद दिलाई। एनडीए के नेता जीतन राम मांझी के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण का भी जिक्र किया और मामले में FIR दर्ज करने की मांग की।
2: जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में, उन पर FIR लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, RSS के लोगों ने शुद्धिकरण किया है। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ FIR SC एक्ट में FIR दर्ज किया।
1: जवाब में एनडीए के नेता कांग्रेस राज की याद दिला रहे हैं। दलितों के विकास के लिए कांग्रेस ने क्या किया वो बता रहे हैं।
3: अगर कोई कई जगह वेदर इट इज दिस स्टेट और दैट स्टेट अगर हो रहा है तो उसको ठीक करना हमारा सबका जिम्मेदारी है, लेकिन इसको बहाना बना के ड्रामा करने के लिए उधर जाते हैं तो लोग सबक सिखा है, आगे भी सिखा देंगे।
4: जो लोग आज इस बात की चिंता कर रहे हैं, देश ने आजादी के बाद लंबे समय तक मौका तो उन्हीं को ही दिया था ना, आज किस मुंह से वो कह रहे हैं कि आज भी समाज में भेदभाव मिटा नहीं है। कई उदाहरण उन्होंने गिना, अगर ये उदाहरण आज वो गिना रहे हैं तो आप बताइए एक लंबे समय तक आजादी के बाद और लगभग 4.5-5 दशक तक तो निरंतरता में कांग्रेस की सरकारें रहीं, उसके बाद भी कांग्रेस के सहयोग की सरकारें रहीं, उसके बाद भी समाज में अगर भेदभाव अगर होता रहा तो कहीं ना कहीं नींव को मजबूत करने में सफल तो ये लोग भी नहीं रहे।
1: उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुद्धिकरण का मुद्दा राज्यसभा में गूंज चुका है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी। उधर शुद्धिकरण के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर सियासत का आरोप लगा रही है।
5: कांग्रेस जिस तरह से अफवाह फैलाने का काम कर रही है और दलित समाज को भ्रमित करने का काम कर रही है कि वहां पर हल्द्वानी में रामला ग्राउंड में शुद्धिकरण किया गया है और जब खड़गे जी दलित समाज से आते हैं उनका अपमान हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की कोई भी मनसा नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी इसको अपने आप से अलग करती है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी संस्था के माध्यम से वहां हवन किया गया, शुद्धिकरण किया गया तो उनका काम है, किंतु इस तरह का भ्रम फैलाना ठीक नहीं है।
1: युवा, महिला और हिंदुत्व के बाद अब राहुल गांधी ने इस बार दलित कार्ड खेला है, जिस पर घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: खड़गे को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने उतारी अपनी फौज का हमेशा कांग्रेस ने किया दलितों का अपमान। नेता विपक्ष ने हल्द्वानी में शुद्धिकरण का उठाया था मामला। उज्बेकिस्तान के दौरे पर ताशकंद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने गले लगाकर किया स्वागत। दो दिनों के बाद बिश्केक में एससीओ समिट में होंगे शामिल। नेपाल आपदा में बढ़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 675 शव बरामद। लगभग 2500 लोग लापता। चीन में बने अस्थायी झील के फटने की आशंका बरकरार। नए विवाद में फंसे स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना। शो में बिहारी और कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाने का आरोप। बिहार के मंत्री मिथिलेश तिवारी बोले, अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। ग्रेटर नोएडा में 6 साल की मासूम की हत्या के मामले में आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर। बेला फुसलाकर कमरे में जाने और शव ले जाने का वीडियो आया था सामने।
1: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय। हमेशा अद्भुत में हम आपके लिए कोई ऐसी कहानी लेकर आते हैं जो आपके दिल को छू जाती है। आज भी हम आपके दिल को छूना चाहते हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से। इंसान खुद को इस पृथ्वी पर सर्वशक्तिशाली मानता है, सोचता है उसके आगे किसी की कोई बिसात नहीं है। ऊंची ऊंची इमारतें जिसके सामने किसी का कोई वजूद नहीं है, बड़ी बड़ी ऐसी गाड़ियां, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके सामने कोई टिक कर खड़ा ना रह सके। लेकिन आज वो सब कुछ कई टन मलबे के नीचे दबा पड़ा है। हमारी पृथ्वी अद्भुत है, लेकिन प्रकृति का रोष अविश्वसनीय और बर्बादी अकल्पनीय हो जाते हैं।
2: ग्लेशियर के टूटकर गिरने और पूरी घाटी के बर्बाद होने में सिर्फ चंद मिनट ही लगे और इसी के साथ नेपाल के इतिहास का भूगोल बदल गया। जिस तरह तबाही मची, जिस तरह लोगों की मौतें हुई, जिस तरह लोगों की जानें बची और जिस तरह से अब भी सैकड़ों लोग लापता हैं, वो एक ऐसी त्रासदी है जिसके निशान सदियों तक सालते रहेंगे। जो हुआ और जैसे हुआ वो अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है।
3: ये NH4 है जो सीधा उसी एरिया को जाता है जहां पर ये हादसा हुआ है। हम बस कल्पना कर सकते हैं कि ये शहर पहले कैसा रहा होगा और अभी कैसा दिख रहा है। यहाँ पर घर में कोई रह नहीं सकता है, वो सब निकल कर वहां से बाहर आए हैं।
2: 35 मोटरेबल ब्रिज, 45 सस्पेंशन ब्रिज और लगभग 40 किलोमीटर सड़क बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस सैलाब से, इस मलबे से।
3: ये हब है, ये जहां पर पीड़ित है, जहां पर लोग विस्थापित हुए हैं, जहां से और जहां पर सबसे बड़ी तलाश चल रही है।
2: इस मलबे और मिट्टी के नीचे ये पूरा बाजार का हिस्सा जा चुका है। यहां पर बिना किसी स्टिक के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको पता नहीं कि पैर आपके कितने नीचे जाएंगे। मेरा पैर अभी भी नीचे की तरफ ही जा रहा है। हजार फीट का ग्लेशियर टूटकर ऐसे गिरा जैसे धरती से टकराया हो कोई उल्का पिंड। ग्लेशियर के गिरते ही धरती इतनी जोर से कांपी जैसे आ गया हो भयानक भूकंप। ग्लेशियर के नदी में गिरते ही ऐसी खतरनाक हलचल मची कि खड़ी हो गई पानी, मलबे और गाद की कई मीटर ऊंची विनाशकारी दीवार। ये जिस रोड पर हम खड़े हैं इस समय, ये एक पक्की सड़क है और एक अच्छी सड़क है, एक चौड़ी सड़क है, हाईवे का हिस्सा है इनके। लेकिन अभी इस पर देखिए रेत मलबा, ये घर के अंदर का हिस्सा अगर आप देखें तो वहां तक पानी पहुंच गया है। वहां तक पहुंचने के बीच में जो है वो दलदल है। ये बिजली के तारों में उलझे हुए जो पेड़ों के हिस्से हैं, उससे आप समझिए कि कहां तक ऊपर तक ये पहुंचा होगा मलबा। ट्रक देखिए, ट्रक का जब पानी उतरा भी है, मलबा नीचे गया भी है, तो उसका आधा चक्का अभी भी उसके नीचे है, लेकिन ऊपर तक अगर आप देखेंगे तो ये ट्रक धंस गया था इस मलबे में। रेत ही रेत, ये इलाका रेतीला नहीं है, लेकिन यहाँ जमीन को अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको रेत ही रेत हर तरफ नजर आएगी। रेत में जैसे ये पूरा इलाका ढक गया है।
4: न बादल फटा, न मानसूनी बारिश थी, न कोई सतर्क रहने की चेतावनी जारी थी, बस एक झटके में सब तबाह हो गया।
5: हम लोग हुआ थे, वो एक बैग पानी आया, हम लोग ऊपर भागे थे। अच्छा। हम लोग की जिंदगी हम लोग खत्म हो गया।
4: जो ग्लेशियर टूटकर गिरा उसका आकार इतना विराट था कि इसके गिरने की तुलना एक साथ करीब 1000 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स के ढहने से की जा सकती। ग्लेशियर का ढहा हुआ हिस्सा अविश्वसनीय रूप से कम 0.8 मील यानी करीब 2000 फीट चौड़ा था। इसने 10 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल को ढक लिया, जो लगभग 1400 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इसके मलबे ने नीचे घाटी में करीब 4000 फीट यानी 1200 मीटर तक की गहराई तक असर डाला।
6: पहला गोल्फ ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड, और दूसरा क्या है कि जैसे हम देख रहे हैं कि जो ग्लेशियर फ्रैक्चर होता है और फिर वो रिवर के फ्लो को ब्लॉक कर देता है, जो हमने सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन नेपाल में देखी। तो उसमें जो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के जो इम्पैक्ट हैं वो हमारे साउथ ईस्ट एशिया में मोर सीवियर है, चाहे वो सी लेवल राइज हो या इंक्रीज इन टेम्परेचर हो या उसका इम्पैक्ट ऑन अवर फर्जाइल इकोसिस्टम जैसे हिमालय है।
4: ग्लेशियर के गिरने का असर इतना अकल्पनीय था कि अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण ने शुरुआत में इसे 4.4 तीव्रता के भूकंप के रूप में दर्ज किया।
2: ये वो जिला है जो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ नेपाल में आई उस त्रासदी से। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मलबा हट रहा है, तो त्रासदी का पैमाना दिख रहा है। इस ऊंचाई से आप वो पूरी तस्वीर देखिए, त्रिशूली नदी अपने तटों को तोड़कर दोनों तरफ ज्यादा चौड़ाई में बह रही है। वो तस्वीरें जहां पर आपको लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, वहां तक सड़क जाती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे शायद एक पगडंडी रही हो और बाकी केवल मलबा पर। ऐसा नहीं है, यहां पर एक बड़ी सी पार्किंग हुआ करती थी, ये बैंक, एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स, और आगे आप होटल्स देख सकते हैं क्योंकि यहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में आया करते थे। अब जो इकलौता पर्यटन यहां पर है वो उन लोगों का है जो आकर देखना चाहते हैं कि कैसी विनाश लीला रही होगी। जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे।
4: मौत का सैलाब सुपरसोनिक स्पीड से बढ़ा और मकान, दुकान, इंसान, पुल, बिल्डिंग्स, सब कुछ तिनके की तरह बहा ले गया।
5: 4-500 दूर घर है,
2: 4-500
5: घर दूर है। इसमें यहाँ डेट हुआ 10 लोग पे, 10 वृद्धाश्रम के, यहाँ से 5 लोग घायल डेट होगा।
2: लापता है, नहीं मिल रहा
5: है। यहाँ तो घर तो सब खत्म हो जाएगा,
7: कोई रास्ता नहीं है। हेली से जैसे हेली से जाएगा और पैदल जाने के लिए वो रास्ता नहीं है।
8: गाड़ी
7: अब उतर ऊपर से जाएगा तो है, गाड़ी के लिए रास्ता नहीं है।
8: कनल जो था रसुआ का वो भी
7: सब कुछ गए, कुछ भी बाकी नहीं है इधर का।
4: मलबे की विशालकाय दीवार जब नीचे गिरी तो उसने घाटी की हवा को इतनी तेजी से धकेला कि पानी पहुंचने से पहले ही बुलेट ट्रेन जैसी रफ्तार वाली आंधी चली, जिसने पल भर में सैकड़ों पेड़ों को बीच से फाड़ दिया। यहां पर ऐसी ही एक ब्रिज का हिस्सा आप देख सकते हैं जिस पर
1: पेड़ पूरी तरीके से टूट कर गिर गए हैं, उनका कुछ हिस्सा काट कर हटाया गया है, लेकिन मलबा पूरी तरीके से कैसे इस ब्रिज को लेते हुए धस गया है। ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया। आवेग भी कैसा, ऐसा जिसके सामने कंक्रीट का एक ब्रिज नहीं टिक पाया। सोचिए इंसानों की क्या ही बिसात। बस ये तस्वीरें देखिए और सोचिए क्या मंजर रहा होगा और क्या से क्या हो गया, वो भी सिर्फ चंद मिनटों में। कुदरत की मार ने जो बदला वो अविश्वसनीय भी है और अकल्पनीय भी। जब न्यूक्लियर बम फटता है तो एक चेन रिएक्शन सा होता है, यानी एक घटना दूसरी घटना को जन्म देती जाती है जब तक संपूर्ण तबाही नहीं सामने रहती। अब नेपाल में जो हुआ वो कुदरत का चेन रिएक्शन था, जहां पर ग्लेशियर टूटा, ग्लेशियर का मलबा झील में इकट्ठा हुआ, पानी बढ़ता चला गया और फिर एक ऐसी अनियंत्रित अकल्पनीय तबाही जिसके बारे में कोई नहीं सोच सकता था। ये सिर्फ एक अविश्वसनीय तबाही नहीं थी, यह था तबाही का चेन रिएक्शन। यह सिर्फ एक अकल्पनीय महाविनाश नहीं था, यह था महाविनाश का चेन रिएक्शन। ये एक ऐसा प्राकृतिक डोमिनो इफेक्ट था जिसमें पहली घटना ने अगली कई घटनाओं को जन्म दे दिया, एक घटना ने दूसरे को जन्म दिया, फिर तीसरे, फिर चौथे, और इस तरह करके ये एक पूरा चेन रिएक्शन बन गया जिसने नेपाल को ऐसे जख्म दिए जो वो जिंदगी भर याद रखेगा।
7: ये रास्ता नहीं है, हेली से जैसे हेली से जाएगा और पैदल जाने के लिए वो रास्ता नहीं है। अब कुछ सब कुछ गए, कुछ भी बाकी नहीं है इधर का।
8: मेरे फैमिली रसुआ में था, किसी का भी फोन नहीं रहा, लग रहा है क्या गर्नी होला, क्या जानी, फोटो भी डाला है, कोई पता नहीं चल रहा है वहाँ पर, कुछ नहीं पता चल रहा है। हम लोग का कोई था पता नहीं था, बुधवार के दिन पुनः ना वहाँ पर देखे 50 फीट इतना दूर पानी आ रहा है, तब देखकर हम लोग भागे।
1: हम इसको चेन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं ये समझाते हैं। पहली घटना ग्लेशियर का टूटना, दूसरी घटना बर्फ और चट्टानों का एवलांच, तीसरी घटना नदी का ब्लॉक होना, चौथी घटना नदी के पीछे एक अस्थाई झील का बनना, पांचवी घटना जमा हुए पानी और मलबे का बांध टूटना, छठी घटना फ्लैश फ्लड। इस चेन रिएक्शन का हर पहलू अविश्वसनीय है, इसका हर मूवमेंट अकल्पनीय है। तबाही की स्क्रिप्ट का रॉ मटेरियल कैसे इकट्ठा हुआ, कैसे बना यह सबसे बड़ा चेन रिएक्शन, ऊंचे हिमालय में ग्लेशियर सिर्फ बर्फ का ठोस पहाड़ नहीं है, उसके आसपास और नीचे कमजोर चट्टाने, दरारें, बर्फ और परमाफ्रॉस्ट मौजूद होते हैं जो कभी भी टूट सकते हैं। जब तापमान बढ़ता है तो ग्लेशियर पीछे हटता है, बर्फ में दरारें बढ़ सकती हैं। परमाफ्रॉस्ट पिघलने से चट्टानों की पकड़ कमजोर हो सकती है, इसलिए कभी कभी बर्फ का एक हिस्सा टूटता है और अपने साथ चट्टान और मलबे का विशाल बोझ नीचे ले आता है। नेपाल की मौजूदा घटना में सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक लगभग 0.2 वर्ग किलोमीटर का ग्लेशियर करीब 1200 मीटर नीचे गिरा, यानी शुरुआत में ये बांध नहीं थी, ये ऊंचाई पर ग्लेशियर और पहाड़ का टोटल कोलैप्स या लैंडस्लाइड। वैज्ञानिकों के अनुसार इस आइस लैंडस्लाइड में 960 टीएनटी के बम जितनी ताकत रही हो। यहाँ ये कहानी और खतरनाक होती है क्योंकि ऊंचाई से बर्फ गिरती है तो वो अकेली नहीं रहती, उसमें बर्फ, बड़ी चट्टाने, छोटे पत्थर, मिट्टी जुड़ते जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पूरा वजन बहुत तेजी से नीचे आता है, ये बन जाता है आइस रॉक एवलांच।
4: 5,200 मीटर या 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ग्लेशियर का एक विशाल हिस्सा टूटकर लगभग 1,200 मीटर यानी 3,900 फीट नीचे घाटी में जा गिरा। इस घटना ने पहाड़ की ढलान पर करीब 3,000 फीट चौड़ा विशाल कटाव छोड़ दिया।
9: गर्मी की वजह से, वार्म ह्यूमिड वेदर की वजह से जो पानी मतलब बर्फ थोड़ा पिघलता है तो वो जो बर्फ के अंदर जो क्रैक्स रहते हैं उसके अंदर गया है और वो एक पहाड़ का जो पत्थर रहता है उसके ऊपर बर्फ है उस बीच में लुब्रिकेंट जैसा एक्ट किया है। तो वहां पे एक जेंटल स्लोप है, एक स्टीप स्लोप है। जहां पे स्टीप स्लोप शुरू होता है वहां का जो बर्फ है, जो मतलब बहुत थिक बर्फ है, वो टूट गया है। फिर वो वर्टिकली अराउंड 1.2 किलोमीटर नीचे वर्टिकल ड्रॉप हुआ है। तो वो ड्रॉप होने के बाद जो इम्पैक्ट हुआ है उसके कारण मतलब वो भूकंप जैसा मेजरमेंट हुआ है उसका, अप्रोक्सीमेटली 5.2 मैग्नीट्यूड।
4: इसने नीचे जाते हुए रास्ते में मौजूद जितना भी मलबा मिला उसे अपने साथ जोड़ लिया, यानी 1 करोड़ क्यूबिक मीटर का मास नीचे आते आते कहीं बड़ा विनाशकारी बहाव बन गया। 2021 में चमोली में यही हुआ था। अमेरिकी आधिकारिक वेबसाइट USGS के मुताबिक रोंती पीक से लगभग 2.7 करोड़ क्यूबिक मीटर पत्थर और बर्फ टूटकर नीचे आई थी। अब इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है जब हजारों लाखों टन बर्फ, चट्टान और मलबा नदी की संकरी घाटी में गिरा तो उसने नदी को आंशिक या पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। यानी एक तरफ पहाड़ से आया मलबा, दूसरी तरफ बहती नदी। मलबे ने नदी के रास्ते में दीवार बना दी और नदी के पीछे पानी जमा होने लगा, यानी प्राकृतिक रूप से एक अस्थायी बांध बन गया।
9: उसके बाद में ये मड डेब्रीज एज वेल एज दिस रॉक आइस ये वो रिवर में जाके फ्लो हुए हैं एंड दे क्रिएटेड एन आर्टिफिशियल डैम। तो वो आर्टिफिशियल डैम के वजह से रिवर का जो फ्लो रहता है उसमें धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ गया है एंड देन वो आर्टिफिशियल डैम जो बना था वो टूट गया और देन वो फ्लैश फ्लड जैसा आगे बढ़ा है। उसके कारण जितना जो हानि हुई है प्रॉपर्टी की और जन हानि हुई है वो सब उसके कारण हुआ है।
4: अब जो पानी सामान्य तौर पर नीचे बह रहा था वह अचानक रुक गया। पीछे पानी जमा होता जाता है, कुछ मिनटों में एक अस्थायी जलाशय बन जाता है और यही अगला खतरा है क्योंकि यह कोई मानव इंजीनियरिंग का नमूना नहीं है। यह बना है मिट्टी, चट्टान, बर्फ और मलबे से और इसकी मजबूती पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
9: जो वर्टिकल ड्रॉप होता है तो उसका जो काइनेटिक वेलोसिटी होता है उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी होता है वो डिसिपेट हुआ है। उसके बाद में जो डैमिंग की वजह से पोटेंशियल एनर्जी राइज होता है वो भी डैम मतलब आर्टिफिशियल डैम जो आइस से बना है, रॉक आइस से बना है, वो भी टूटने के बाद जो एनर्जी रहता है वो तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो अभी हम लोगों ने किया नहीं है मगर इट इज विथ वेरी वेरी हाई वेलोसिटी।
4: वजन बढ़ने के कारण पानी ने मलबे पर दबाव बढ़ाया और अचानक मलबे का बांध टूट गया। जो पानी जमा था वो एक साथ नीचे चला आया। इसे कहते हैं आउटबर्स्ट फ्लड और अगर इसमें ग्लेशियर लेक शामिल हो तो इसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है। अब तक कहानी में पानी मुख्य विलन की भूमिका में नहीं था लेकिन यहाँ पर कहानी में विनाशकारी ताकत बन जाता है पानी और ये सामान्य मानसून फ्लड जैसा नहीं होता। सामान्य बाढ़ में पानी के स्तर को बढ़ने में कई घंटे लगते हैं लेकिन नेपाल जैसी फ्लैश फ्लड में कम समय में अचानक पानी का डिस्चार्ज हुआ और वो भी बहुत तेज रफ्तार के साथ। नेपाल की मौजूदा घटना में रिपोर्टों के मुताबिक नदी का स्तर लगभग 9 मीटर तक तेजी से बढ़ गया। पानी जब 7 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बहता है तो उसकी तुलना एक चक्रवात से की जा सकती है। पानी के बहाव की रफ्तार अगर 25 मील हो जाए तो उसकी तुलना 800 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाले तूफान से की जा सकती है। अब सोचिए कि नेपाल में जो त्रासदी हुई उसमें पानी की रफ्तार थी 120 मील प्रति घंटा। कितने ताकत के साथ उस पानी का बहाव रहा होगा आप कल्पना करिए। पानी की ताकत का अंदाजा ना हो तो इस तस्वीर को देख लीजिए। हजारों किलोग्राम भारी ये पत्थर किसी गेंद की तरह लुढ़क रहा है। ये सिर्फ पानी की अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय शक्ति ही है जो इतने वजनी पत्थर को खिलौने की तरह बहा ले जा रही है। फ्लैश फ्लड यानी पानी, पत्थर, चट्टान और मलबे का वो मिश्रण जो रास्ते में पड़ने वाली हर चीज के पैर उखाड़ सकता है। एक रिसर्च कहती है कि सिर्फ 6 इंच का तेज बहता पानी किसी भी व्यक्ति को बहा सकता है, 12 इंच का तेज बहता पानी किसी भी कार को बहा सकता है। नेपाल की बाढ़ में तो ये पानी की ऊंचाई 9 मीटर थी। बहते पानी ने इतनी ऊंचाई कैसे हासिल कर ली कि 3 मंजिला इमारतें भी उसके आगे बौनी लगने लगी। सबसे बड़ा प्रयास ये है कि नेपाल की जो ये लाइफलाइन सड़क को माना जाता है, यहाँ पर ये मलबा आ गया है और इस मलबे को जेसीबी के साथ किसी तरीके से हटाने की कोशिश हो रही है कि कम से कम एक तरफ का रास्ता तो खुला रहे, एक तरफ का रास्ता तो चलता रहे, वरना ये इतनी फिसलन वाली पूरी जमीन है और इतनी धंसने वाली जमीन है, एक तरीके से दलदल उतर आया है यहाँ की सड़क पर कि गाड़ियां तो गाड़ियां, कोई पैदल भी यहाँ पर नहीं चल सकता है। ये पानी की अविश्वसनीय ताकत ही है जो बड़ी बड़ी इमारतों की बुनियाद हिला गई। ये पानी की अकल्पनीय शक्ति ही है जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां बच्चों के खिलौनों की तरह बह गई। कुदरत ने इंसान के साथ जरा सी जोर आजमाइश क्या की, इंसान और उसके गुरूर को उसकी हैसियत समझ में आ गई। ये तस्वीर देखिए, पानी की सांसें रोक देने वाली रफ्तार में कैसे एक परिवार सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। ऐसी होती है पानी की अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय शक्ति जो पुलों को तोड़ दे, इमारतों को गिरा दे, पेड़ों को उखाड़ दे, गाड़ियों को बहा दे। पानी में कितनी शक्ति होती है इसको समझने के लिए हम इसका असर गाड़ियों और घरों पर क्या होता है ये जानेंगे। सिर्फ 6 इंच पानी काफी होता है एक कार का कंट्रोल छीनने के लिए और एक आम गाड़ी का इंजन तक उसमें बंद हो सकता है। जब ये पानी 1 फीट तक पहुंच जाता है तो फिर गाड़ियां इस बहाव के साथ बह भी चलती हैं और पानी का जो बहाव होता है वो करीब 225 किलो का साइड फोर्स गाड़ी पर डाल सकता है, यानी कि वो गाड़ी पलट भी सकती है। ऐसे बहाव के सामने जो पिकअप ट्रक्स वगैरह होते हैं वो भी बेबस हो जाते हैं। पानी का स्तर बढ़ता है, वो एक गाड़ी को अपनी जगह से उठाता है और तेज बहाव में गाड़ियां बहती चली जाती हैं। लेकिन ये ताकत सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं, यही पानी जमीन पर जड़े जमाए घरों को भी चुनौती देता है। सिर्फ 4 मील प्रति घंटे यानी करीब 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और पानी का दबाव EF2 टोर्नेडो की हवाओं जितना ताकतवर हो जाता है, इतना कि करीब 5 फीट व्यास के पत्थर भी हिल जाए। अब इसे हॉर्स पावर में समझिए, फ्लैश फ्लड का पानी हर वर्ग मीटर पर करीब 1.34 हॉर्स पावर तक की ताकत पैदा कर सकता है। 30 फीट चौड़े घर के हिस्से पर करीब 18.7 हॉर्स पावर का दबाव, यानी पानी घर की दीवारों से ऐसे भिड़ रहा होता है जैसे कोई ताकतवर मशीन उसे धक्का दे रही हो, और अगर हालात और बिगड़ जाए तो यही ताकत 100 गुना तक बढ़ सकती है। यानी उसी 30 फीट हिस्से पर अब लग रहा है 1870 हॉर्स पावर। इतनी ताकत जैसे कई भारी भरकम स्पोर्ट्स कार्स पूरी स्पीड से घर को टक्कर मार रही। और अब सुनिए बाढ़ के पानी की सबसे डरावनी रफ्तार। कुछ फ्लैश फ्लड में पानी की रफ्तार 67 मील प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है, यानी करीब 108 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए 108 की रफ्तार से दौड़ता हुआ पानी क्या कुछ नहीं कर सकता। बाजार से पहले का जो ये हिस्सा है ये रेसिडेंशियल एरिया है और घरों के यहाँ का हाल देखकर आप समझ लीजिए। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि इस गांव में उस समय लोग सभी थे मौजूद इवैक्यूएशन के लिए। कुछ बातें कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि इवैक्यूएशन के लिए कहा गया था, लेकिन यहां पर गांव वाले थे, अपना सामान ले जाने की कोशिश कर रहे थे जल्दी से जल्दी, लेकिन देखकर ही पता चल रहा है कि शायद ये संभव नहीं हो सका होगा। सामने एंट्रेंस पे हमने मंदिर देखा जो पूरी तरीके से मलबे में है। शिवजी का ये मंदिर है, इसके साथ ही ये पूरा हिस्सा देखिए, वहां तक जो घर है मलबा उतरा है
2: लेकिन उसके बावजूद लगभग एक एक मंजिल इन घरों के, ये थोड़ी सी ऊंचाई पर था, इसके नीचे की ये मंजिल अभी दफन है।
10: अब बात कि कैसे नेपाल में 9 मीटर ऊंची पानी की दीवार बन गई, जो इमिग्रेशन सेंटर को खा गई। सबसे पहले पहाड़ के ऊपर ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटा, इसके साथ भारी मात्रा में बर्फ, चट्टान और मलबा नीचे आया, फिर ये मलबा नदी में जा गिरा। इससे नदी में अचानक बहुत बड़ा मलबे का फ्लो और पानी का बहाव पैदा हुआ। पानी अकेला नहीं था, उसमें बर्फ, चट्टान, मिट्टी और बड़े बड़े बोल्डर भी थे। ऊंचे पहाड़ों के बीच नदी का रास्ता संकरा है। जब अचानक बहुत ज्यादा पानी और मलबा एक साथ आया तो वह फैल नहीं पाया। नतीजा, बहाव की ऊंचाई और दबाव दोनों बहुत तेजी से बढ़े। आखिर में नदी में अस्थायी बांध बन गया होगा। नदी का स्तर 30 मिनट में करीब 9 मीटर ऊपर चला गया। ये 9 मीटर का आंकड़ा पानी की गहराई नहीं बल्कि नदी के स्तर में हुई अचानक बढ़ोतरी है, और यही इस घटना को इतना खतरनाक बनाता है। सिर्फ 30 मिनट में 9 मीटर की वृद्धि का मतलब है कि नीचे रहने वाले लोगों के पास प्रतिक्रिया देने के लिए बेहद कम समय था।
2: नेपाल की तबाही के जरिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या हिमालय के जो ग्लेशियर हैं वो किसी बड़े, किसी विनाशकारी खतरे की आहट के रूप में देखे जाने चाहिए। ये सवाल उठाने की वजह है, वजह ये कि पिछले 15 सालों में ऐसी प्रलयंकारी ये छठी त्रासदी है।

0: Generale, çıktı!
1: नेपाल की त्रासदी ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा किया है कि क्या हिमालय के ग्लेशियर बड़े और महाविनाशकारी खतरे का अलार्म बजा रहे हैं। ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले 15 वर्षों में नेपाल की तबाही ऐसी छठी घटना है। दो हजार 2013 में ग्लेशियर टूटने के कारण केदारनाथ में भारी तबाही हुई, हजारों लोग मारे गए। 2016 में भोटेकोशी तिब्बत नेपाल सीमा पर झील का प्राकृतिक बांध टूटने पर आए सैलाब में सैकड़ों लोग बह गए। 2021 में नेपाल के सिंधु पालचोक में बारिश और ग्लेशियर पिघलने के कारण मेलमची नदी में आई बाढ़ में सैकड़ों घर और कई इंसान बह गए। 2021 में ही उत्तराखंड के चमोली में बर्फ का बड़ा ग्लेशियर टूटकर झील में गिरा, जिससे नदियों में सैलाब आया और 200 से ज्यादा लोग मारे गए। 2023 में सिक्किम की दक्षिण लोनक ग्लेशियल झील का प्राकृतिक बांध टूट गया, तब सुनामी जैसी ऊंची लहरें देखी गईं और सैलाब ने जमकर तबाही मचाई। और 2026 में अब नेपाल की ये वर्तमान तबाही है। सवाल उठ रहा है कि क्या हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर टाइम बम बनते जा रहे हैं?
2: दिस इज अ वार्निंग कॉल फॉर इंडिया बिकॉज़ वी हैव एक्सपीरियंस्ड दिस सिमिलर थिंग्स इन उत्तराखंड एंड इन सिक्किम आल्सो इन रिसेंट पास्ट।
1: देहरादून स्थित बाड़िया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार हिमालय रीजन में 221 ग्लेशियल झीलों की पहचान की गई है, जिनके फटने पर अचानक बाढ़ यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का खतरा बन सकता है। रिसर्च में कोसी, यारलुंग जांगबो, मानस और ऊपरी सिंधु नदी घाटियों को सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में रखा गया है। भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और सिक्किम की कई नदी घाटियां संवेदनशील जोन में हैं। बाढ़ आई तो इसकी चपेट में 6 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 39 जिलों पर असर पड़ सकता है।
3: हिमालय की बात करें तो हिमालय में ऑलमोस्ट जो है सभी रीजन जो है वल्नरेबल है और खतरनाक है। ग्लेशियर रिट्रीट होने की वजह से जो है आगे जो वैकेट एरिया है उस वैकेट एरिया में लूज एंड कंसोलिडेटेड मटेरियल है जो हाईली या तो हाईली सैचुरेटेड है या फिर ड्राई है, उसके जो है हल्के से भी रेनफॉल होने से उस रीजन में एक बड़ा डिजास्टर का खतरा हो सकता है, जिसका एग्जाम्पल हमने जो है 2013 में केदारनाथ, थराली और तमोक में भी देखे।
1: उत्तराखंड भी संकट के इस दायरे से बाहर नहीं, वहां खतरा सिर्फ ग्लेशियर झीलों से नहीं बल्कि खड़ी ढलानों पर मौजूद हैंगिंग ग्लेशियर्स से भी है। अलकनंदा बेसिन में 221 हैंगिंग ग्लेशियर्स की पहचान हुई है, जो आने वाले समय में बद्रीनाथ माणा सहित चमोली के निचले क्षेत्रों में तबाही ला सकते हैं।
4: अर्ली वार्निंग सिस्टम करके सीबीआरए ने एक अवलांच अर्ली वार्निंग मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया है, जो उत्तराखंड में 2 जगह पे इंस्टॉल किए हैं, ढूंढी और एक वसुंधरा ताल में। तो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक वो आज टेस्ट कर रहे हैं, अगले 6 से 1 साल के बाद में वी आर प्लानिंग टू हैंड इट ओवर टू स्टेट गवर्नमेंट, जो एसडीएम उसको ऑपरेट कर सकता है। ये जो मतलब जो रेनफॉल होता है ना, रेनफॉल से मतलब जो ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, जो बर्फ का स्ट्रक्चर है, ये सब देर आर सो मेनी पैरामीटर्स, वो सब देखने के बाद उसका जो कॉम्बिनेशन होता है कौन से टाइम पे ट्रिगर हो रहा है उससे पता चलेगा।
1: रिसर्च के अनुसार हिमालय में अभी 8,357 से 9,280 ग्लेशियल झीलें हैं। इनमें 1990 के बाद 1,052 नई झीलें बनी हैं। ग्लेशियर्स पीछे हट रहे हैं, ऊंचाई वाले इलाकों में पानी जमा होने की नई जगहें बन रही हैं। पुरानी झीलों का आकार भी बढ़ रहा है। इनके क्षेत्रफल में 17%, 20% और 76% तक बढ़ोतरी हुई है। सबसे तेज बढ़ोतरी 2010 से 2020 के बीच देखी गई। 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में झीलों के क्षेत्रफल में वृद्धि सबसे ज्यादा रही। जम्मू कश्मीर में चिनाब और झेलम, हिमाचल प्रदेश में चिनाब और व्यास तथा सिक्किम में तीस्ता नदी घाटी को विशेष चिंता वाले क्षेत्र माना गया है। यहाँ खतरा सिर्फ झीलों के फटने से आने वाली बाढ़ तक सीमित नहीं है, संभावित बाढ़ के रास्ते में सड़कें, पुल, आबादी और जल विद्युत परियोजनाओं पर भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि अचानक आने वाला पानी सिर्फ नदी के बहाव को नहीं बढ़ाएगा बल्कि रास्ते में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा सकता है।
0: कि जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और इतने मेजर प्रोजेक्ट बॉर्डर एरिया पे हैं, इनके अपस्ट्रीम और इवन सोर्स एरिया की लगातार मॉनिटरिंग के उपरांत अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम एटलीस्ट अगर हमारे पास आधे घंटे का भी समय होता है तो कम से कम जान माल तो बचाया जा सकता है।
1: नेपाल की त्रासदी लगातार इस खतरे से अवगत करा रही है। जरूरत संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों की निगरानी की है। इसके आधार पर बचाव की तैयारियों को मजबूत करने की जरूरत है। सैटेलाइट तस्वीरों के साथ जमीन पर लगे रेडार कैमरास, बर्फ के अंदर होने वाली हलचल की निगरानी और डॉपलर रडार जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। खतरे के संकेत समय रहते मिले तो सड़क बंद करने और लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं, जिससे जान माल का नुकसान कम तो किया ही जा सकता है। एक ग्लेशियर टूटा तो केवल पहाड़ नहीं हिला, उस तबाही का सिग्नल धरती के अंदर तक दर्ज किया गया, रिकॉर्ड किया गया, यानी सीस्मोमीटर ने उस कंपन को रिकॉर्ड किया। अकल्पनीय है कि ये किस तरीके से संभव हुआ।
5: जो लोग ना अपना सामान बचाने के लिए लेने गए ना, तो वो लोग चले गए।
6: अगर हम लोग ऐसे मुड़ के पीछे देखते लोग तो शायद पता नहीं क्या होता।
7: तीन भांजी, एक दीदी और एक नतनी मिसिंग है।
8: पुल है ही नहीं है, दोनों तो
1: कुछ नहीं बचा उसका,
8: स्ट्रक्चर भी नहीं,
1: कंक्रीट का पुल था ना,
8: कंक्रीट का, एक तो कंक्रीट का था और एक
1: सस्पेंशन
8: भी।
1: अच्छा, कह रहे हैं कि दो पुल था पर पुल का नामो निशान नहीं है। सोचिए इतनी शक्ति से, उतने आवेग से पूरा मलबा आया होगा। नेपाल की महातबाही ने दुनिया को चौंकाया है। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स के लिए ये बर्बादी चिंता का कारण है, क्योंकि जैसा कि पहले कहा गया था कि 4.4 की तीव्रता के भूकंप के कारण ग्लेशियर टूटा था जिससे तबाही आई। बाद में पता चला कि विशालकाय ग्लेशियर के टूट कर गिरने के कारण भूकंप जैसी स्थिति बनी थी और इसमें 5.2 की तीव्रता थी। यानी भूकंप के कारण ग्लेशियर नहीं टूटा था बल्कि ग्लेशियर के टूट कर गिरने की वजह से भूकंप जैसा झटका लगा था। ये देवीघाट की प्रहरी चौकी हम आपको दिखा रहे हैं और आगे देवीघाट बाजार है। पूरा त्रिशूली बाजार का हाल आपने देखा। ये देवीघाट की तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। ये भी पूरी तरीके से इस मलबे और मिट्टी के नीचे ये पूरा बाजार का हिस्सा जा चुका है। चाहे आप छोटी सी एक चाय की दुकान को देख लें, यहां पर खड़े हुए ट्रैक्टर्स को देखकर शायद आपको वो पैमाना ज्यादा समझ में आएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर उत्तर में लांगडांग लिरुंग पर्वत पर जो हुआ उसने कुछ ही घंटों में नेपाल और तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्रों में कोहराम मचा दिया। लगभग 2000 फीट लंबा ग्लेशियर टूटकर करीब 4000 फीट नीचे घाटी में जा गिरा। ये गिरावट इतनी जबरदस्त थी कि इससे जो तरंगें निकली और कंपन हुआ उसे अमेरिकी भूगर्भ शास्त्रियों ने भूकंप मान लिया। ये सोचना भी अकल्पनीय हो जाता है कि करीब आधा किलोमीटर लंबा ग्लेशियर हजारों फीट गिरा तो कैसा मंजर बना होगा। अविश्वसनीय है कि ग्लेशियर के घाटी में गिरने से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वो एक्सपर्ट्स के दावों के अनुसार हिरोशिमा परमाणु विस्फोट की 6.3% रही होगी। जब बर्फ और चट्टानों का विशाल ढेर घाटी में गिरा तो उसने लेंडे खोला नदी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। ये नदी भोटकोशी नदी की सहायक नदी है। इससे एक प्राकृतिक बांध बन गया जिसके पीछे पानी तेजी से इकट्ठा होने लगा। ये बांध ज्यादा देर टिक नहीं सका। ग्लेशियर के गिरने से पैदा हुई गर्मी ने बर्फ के एक बड़े हिस्से को तुरंत पिघला दिया। नदी का पानी मिट्टी और चट्टान के टुकड़ों से मिलकर एक भयानक मंजर बन गया।
9: 305 जो दिख रहा है
10: वो,
9: हाँ, वो वाला, हाँ। उसी से पानी नीचे गिरता था। यहाँ पे हाइड्रो पावर यहाँ था,
8: और फिर यहाँ से नहर निकाल कर आपको देवीघाट हाइड्रो पावर
9: दे। नहीं तो कुछ दिख नहीं रहा है, उसका ढांचा सब बह गया,
8: पूरा नीचे है।
9: अच्छा नीचे है,
8: नीचे है, दह गया उसमें।
9: अच्छा
8: उसके उसके स्ट्रक्चर जितना था उसके ऊपर सब पूरा उभर दिया है। और यहाँ जो हाइड्रो,
9: मतलब आप कह रहे हैं कि जो तीन पाइप है उसके नीचे उसका पावर हाउस था।
8: हाँ वहाँ पे पावर हाउस था, और वहाँ से भी फिर नहर के जरिए पानी निकाल कर इस रास्ते से आपको देवीघाट प्रोजेक्ट में पानी गया हुआ था, जबकि नहर भी पूरा खत्म हो गया।
9: तो ये खाली टावर बचा है जो जिससे हाँ, समझ आ सकता है।
8: ये जो है वहाँ ढूंढे जो रसुआ गढ़ी का जो पावर हाउस है वो हाँ, जो दिख रहे हैं हाई टेंशन तार
9: हाँ,
8: वहाँ से लाकर इसी में ज्वाइंट हुआ था।
9: तो कैसे जाते थे इस साइड से उस साइड?
8: वहाँ पुल था ना, उसके बाद हाँ, में दो तो उस साइड में पुल है ना,
9: दिख नहीं रहा।
8: पुल नहीं है, पुल है ही नहीं है, दोनों तो
9: कुछ नहीं बचा उसका।
1: जब नदी का प्राकृतिक बांध टूटा तो पानी नहीं बल्कि कीचड़, बर्फ और मलबे का तूफान बह निकला। विशेषज्ञों ने इसे लिक्विड कंक्रीट कहा, जो इतनी तेजी से बहा कि उसे रोक पाना संभव नहीं था। 100 फीट ऊंची सुनामी जैसी लहरें आगे बढ़ी और रास्ते में जो आया उसे तबाह कर दिया।
10: ग्लेशियर जो हैं वो वीक

0: ये देखना पड़ेगा कि हम इनको कैसे मॉनिटर करें। अब उस मॉनिटरिंग में फ्रैक्चर जो ग्लेशियर है बेसिकली वो टूटे हुए हिस्से होते हैं, जैसे कि आप एक पूरा फिक्स है अपने मोरिन पे, लेकिन वो अगर हिल जाता है तो एक पर्टिकुलर जो पार्ट है वो फ्रैक्चर हो जाता है। ये जो मूव कर रहे होते हैं तो उसमें फ्रैक्चर हो जाते हैं, और फ्रैक्चर होने की वजह से उनके टूट के गिरने की या लेक पे या रिवराइन सिस्टम को ब्लॉक करने की संभावना बढ़ जाती है।
1: ग्लेशियर सिर्फ पानी का जरिया नहीं बल्कि ऐसी भौतिक शक्ति है जो कभी भी बर्फ और पत्थरों के एवलांच में बदल सकती है। ये रास्ते में आने वाली बड़ी बड़ी चट्टानों को घिस सकते हैं, घाटियां बना सकते हैं, भूकंप ला सकते हैं और एक झटके में पहाड़ों के हजारों वर्ष पुराने भूगोल को हजारों वर्षों के लिए बदल सकते हैं। इस समय समतल जमीन पे खड़ी हूँ लेकिन उस मकान के छत से ऊंची लग रही हूं। यहां पर कुछ ऐसा ही हुआ है। पूरे नेपाल में दो दो तीन तीन मंजिल के घर आज मलबे के नीचे हैं। पर अगर ये तबाही अविश्वसनीय है तो कई रेस्क्यू ऑपरेशंस भी ऐसे रहे जिन्हें हम अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कह सकते हैं। तबाही की अकल्पनीय तस्वीरें आपने देखी लेकिन जितनी अविश्वसनीय बर्बादी थी उतनी ही अद्भुत जिंदगी बचाने की कोशिशें। चारों तरफ सिर्फ पानी और मलबा था, जमीन तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी जिंदगी बचाने वाले देवदूत बनकर लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे।
2: जिस जगह पर हम हैं ये एक्चुअली यहाँ पर जो नेपाल आर्मी है उसका बेस है। आप यहाँ पर देखिए जो नेपाल आर्मी के हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी यहाँ पर हैं और उसके साथ ही जो सिविलियन चॉपर्स हैं वो भी इसमें मदद कर रहे हैं। तो उन सबको यहाँ पर दरअसल कहीं से भी अगर कोई रेस्क्यू हो पाता है जो एक दो की संख्या में ही है और बहुत घंटे बीत गए हैं एक भी नहीं हो पाया है, लेकिन जैसे ही एक भी हेलीकॉप्टर यहाँ पर आता है सभी लोग टकटकी लगाए यहाँ पर देखने लगते हैं कि क्या कोई आया तो नहीं, कोई पहुंचा तो नहीं, कोई नया नाम तो इस लिस्ट में नहीं जुड़ने वाला है। बहुत मुश्किल स्थिति है क्योंकि यहाँ पर ही जो नेपाल के सेना के जवान है उन सबको जवाब देना है, उन सबको संख्या बोल लिखनी है, जोड़ती करनी है। एक भी संख्या में इजाफा बहुत बड़ा होता है इसके लिए, और यहाँ पर जो रिलीफ ऑपरेशंस हैं उनके लिए भी बहुत सामग्री भी लाई जा रही है क्योंकि ये सबसे ये हब है, ये जहाँ पर पीड़ित हैं, जहाँ पर लोग विस्थापित हुए हैं जहाँ से, और जहाँ पर सबसे बड़ी तलाश चल रही है।
3: लिस्ट लगा किसका लिस्ट?
4: पता चलने वाला का लिस्ट, उधर करे वाला।
3: जिसका पता चल गया, जिसका भी नया पता चलता है, नया लिस्ट
4: नहीं आया अभी,
3: नहीं आया। तो यहाँ के ही जो लोग हैं जो इधर नवाकोटा,
4: भारत का भी है, जो बहुत है भारत का भी, भारत का है ना, ये सब भारत का है। देखो ये लोग भारत का है।
3: अच्छा,
4: वो भारत भारत बोल रहे हैं ना, वो भारत का है।
3: वो लोग मिल गए हैं?
4: हाँ, वो मिल गए हैं।
3: अच्छा,
4: और इधर इधर का है, नेपाल का है। हाँ।
5: हम लोग तो अभी यहाँ से नहीं, हमें काठमांडू से आए हैं, काठमांडू से आए अभी। तो इधर हम इस जगह में क्या क्या है, क्या क्या आवश्यकता है इधर का है, वो पूछने के लिए, देखने के लिए आया है अभी। तो हम फील्ड में फील्ड विजिट के लिए भी आया है।
1: जहां सड़क के रास्ते नहीं पहुंच सकते थे वहां हेलीकॉप्टर पहुंच रहे थे और एक एक जिंदगी को मौत के घेरे से बाहर निकाला जा रहा था।
2: सीधा ये रेस्क्यू होकर जो लोग आए हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर से उतरे हैं और सब आगे अब बढ़ रहे हैं। आप पहनावों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोग ये हो सकते हैं क्योंकि इनके पास वो बूट्स और वो औजार और वो यूनिफॉर्म नजर आ रहा है। उन्हें सीधा यहाँ पर लाकर यहाँ से आगे ले जाया जा रहा है। तो जो लोग यहाँ से आगे जाना चाहते हैं, जो लोग अपनों को तलाश रहे हैं, साथ ही जो लोग रेस्क्यू होकर लाए जा रहे हैं उन सबको यहाँ पर, और भी लोगों को आप देखिए आगे
6: वहां पर वो जितना सामान हाथ में, कुछ उसमें टूरिस्ट भी लग रहे हैं जो अपने बैग्स के साथ आ रहे हैं। मोहसिन आपको

0: दिखाएंगे वो क्लोजअप्स लेके उस एरिया के। अभी जो दो हेलीकॉप्टर्स आए हैं उसमें ही सवार कुछ जो मजदूर हैं और कुछ ये जो टूरिस्ट आपको दिख रहे हैं आगे बैग्स के साथ वो आगे जाते हुए, और जो बच गया है जो मिल गया है वो अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत इस समय समझ रहा है।
1: कुछ लोग जमीन के नीचे फंस गए थे, अपर त्रिशूली एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में बाढ़ और कीचड़ घुस गया था। अंधेरे से भरी इस सुरंग के भीतर रेस्क्यू टीम पहुंची और फिर शुरू हुआ एक एक जिंदगी को बाहर निकालने का मिशन। नेपाल में पहाड़ ने अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाया, पानी ने रास्ते मिटा दिए, मलबे ने बस्तियां ढक दी, लेकिन इंसान ने भी हार नहीं मानी। पानी के खिलाफ, मलबे के खिलाफ, पहाड़ के खिलाफ और वक्त के खिलाफ एक अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। पृथ्वी की अद्भुत सुंदरता को बचाने के लिए हमें अविश्वसनीय कदम उठाने होंगे, अकल्पनीय रफ्तार से काम करना होगा। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: इस अभियान से उनका मनोबल गिरना और फोर्सेस का मनोबल बढ़ने का एक बहुत क्लियर बेंचमार्क ये है कि 4-5 घंटे की फायरिंग के बाद वो कैंप लगा।
1: हमने उन एरियाज को डोमिनेट किया जहां पे पहले कभी उनका डोमिनेंस माना जाता था।
2: आज कोबरा कमांडोज के साथ हम वही तस्वीर, वही हकीकत आपको दिखाने वाले।
3: आगे आगे,
4: अरे उधर
3: उधर गिर,
4: करेक्ट करेक्ट,
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: श्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: मुल्तानी को का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं, और खांसी को कहें गुड बाय मुल्तानी को का कॉफ सिरप।
3: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
4: Take a date not bites.
5: No added sugar, preservative के बिना। डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सो गुड।
2: अब बात यूपी की सियासत की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में जुबानी जंग जारी है। लखनऊ में जेपीएनआईसी बिल्डिंग को लेकर अब दोनों विपक्ष एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं।
3: लखनऊ में जेपीएनआईसी की यह बिल्डिंग यूपी की सियासत में जंग का खड़ा बनी हुई है। योगी आदित्यनाथ इसे समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार का प्रतीक बता रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव को इसमें समाजवादी पार्टी के विकास की तस्वीर दिख रही है।
4: 200 करोड़ ये 200 करोड़ सिपाही सिंडिकेट का पैसा नहीं है, ये प्रदेश की जनता जनार्दन का पैसा है। और प्रदेश का पैसा कैसे पानी के भाव बहाते थे बहनों और भाइयों, ये पैसा उस रूप में इन लोगों ने किस रूप में उस पैसे को ये बहाते थे कि 200 करोड़ रुपए के कार्य में 864 करोड़ खर्च कर दिए और तब भी अधूरा।
5: और इस जेपीएनआईसी का शिलान्यास नेताजी ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने साहब ने और बहुत सारे वरिष्ठ पुराने समाजवादियों ने इसका शिलान्यास किया था, जिसका हमें बनाने का मौका मिला। ये न केवल लखनऊ की बल्कि उत्तर प्रदेश की अपने आप में अलग बिल्डिंग की स्थान था। हमारे मुख्यमंत्री जी जानते ही नहीं, न समझते इंजीनियरिंग का, तो कुछ ए ही नहीं जानते वो।
3: योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि सरकारी बिल्डिंग के नाम पर अखिलेश परिवार अपने जेब भरने की तैयारी में था, तो वहीं जवाब में अखिलेश यादव यूपी में मिल रहे ठेकों को लेकर सवाल कर रहे हैं।
4: इन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई और कहा कि सरकार के पैसे से बने हुए इस जेपीएनआईसी को वह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाएगी, उसमें होटल भी रहेगा, जिम भी रहेगा, क्लब भी रहेगा, यानी सब कुछ इनके लिए बनेगा, कमाई इनके घर में जाएगी, जिसमें कौन है उसमें अखिलेश यादव हैं, डिंपल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं और भी तमाम इनके सागिर्द हैं, उनको रख करके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके प्रदेश के खजाने पर डकैती डालने का काम कर रहे थे।
5: किसान बाजार बेच दिया अपने स्वजाति लोगों को, किसान बाजार बेच दिया अपने स्वजाति लोगों को, बड़े बड़े ठेके दिए अपने स्वजाति लोगों को, स्वजाति।
3: योगी आदित्यनाथ अखिलेश को यूपी की जनता से माफी मांगने की नसीहत दे रहे हैं, तो अखिलेश यूपी के सड़कों पर गड्ढों को लेकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का भी हिसाब मांग रहे हैं।
4: समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, उन्हें प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि प्रदेश की जनता के पैसे से जिससे युवाओं को रोजगार और नौकरी मिलती, गांव को कनेक्टिविटी के लिए हाईवे और फ्लाईओवर बनते, कहीं पर कोई अच्छे विश्वविद्यालय बनते, कोई कई इनोवेशन के एक सेंटर बनते, उसको पैसा न खर्च करते अपने स्वयं की अय्याशी के लिए इन्होंने प्रदेश के खजाने में डकैती डालने का जो पाप किया था, अपने उस पाप के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
5: इन अधर्मी लोगों को, धर्मद्रोही अधर्मी गिरोह को, जिन्होंने सरयाम मां को कुछ कुछ सुनाया था, ना भगवान माफ करेगा ना इंसान। मंदिर में और मंदिर के बाहर बैठने वाले भिखारी भी कभी चोरी नहीं करते।
3: यूपी में चुनाव है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच अलग अलग मुद्दों पर जुबानी जंग तेज है, जिसमें अब जेपीएनआईसी की एंट्री हो गई है। आज तक ब्यूरो।
2: और अब बड़ी खबर आपको देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों की यात्रा पर उज्बेकिस्तान पहुंच गए, जहां ताशकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया गया। इस दौरान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल के स्तर की बातचीत करेंगे। यहां पर इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में शामिल भी होंगे। तो उज्बेकिस्तान दौरे की बात करें तो यहां पर राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल की विशेष बातचीत, दोनों ही देशों के बीच में व्यापार, इन्वेस्टमेंट, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा सुरक्षा और शिक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। इसके साथ साथ भारत के विकसित भारत और उज्बेकिस्तान के यांगी उज्बेकिस्तान के साझा विजन को आगे बढ़ाने पर चिंतन मंथन होकर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताशकंद में स्थित ऐतिहासिक शास्त्री मेमोरियल, लाल बहादुर शास्त्री स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा भी करेंगे और दोनों ही देशों के सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करेंगे, वहां श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। फिर किर्गिस्तान का प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा भी है जहां पर वो एससीओ 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आगे आगे
1: अरे उधर
0: उधर किधर
1: करेक्ट करेक्ट
2: मिल गया।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
4: छक्का
5: सब कैशलेस हो गया है।
4: ला भाई मेरा बैट।
6: वो अभी तो ठीक हुआ।
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: आगे आगे।
4: अरे उधर
3: उधर घर।
4: करेक्ट करेक्ट।
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: Hey Maya, let's go. The new BE6 Sportage.

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओमकश्यप। आज बहस उस बहस पर होगी जो देश में छिड़ गई है। राहुल गांधी ने दरअसल मनुस्मृति को कोट करते हुए ये कहा कि महिलाओं को दबाने वाली बातें इसमें लिखी गई हैं और उस वजह से आज देश में काफी हद तक महिलाओं को दबाया जा रहा है। उन्होंने स्मैश द पेट्रियार्की एक कोट दिया है। अब ये क्या है, उनका ये आशय था इससे कि जो पितृसत्ता यानी पुरुष प्रधान समाज हमने गढ़ा है उसमें जो पुरुषों का वर्चस्व रहता है उसको दबाना, उसको स्मैश करना, उसको खत्म करना जरूरी है। लेकिन यहां से एक नई बहस की शुरुआत हुई क्योंकि मनुस्मृति को कोट किया था, तो ऐसे में चर्चा ये छिड़ गई कि क्या मनुस्मृति और धर्म किसी तरह से महिलाओं को दबा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी सामने आई और पुराना एक वीडियो राहुल गांधी का लेकर आई है जिसमें वो कह रहे थे कि हिजाब इट इज अ चॉइस फॉर वुमेन, मतलब वो किस तरह का कपड़ा पहनना चाहती है ये उनके लिए चॉइस है। तो अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि अलग अलग मापदंड हिंदू धर्म के खिलाफ राहुल गांधी बोलते हैं लेकिन जब बात इस्लाम की आती है तो वो चुप हो जाते हैं और वहां पर महिलाओं को अगर किसी तरह से प्रताड़ित किया जाता है, दबाया जाता है तो उस पर कांग्रेस पार्टी चुप रहती है। तो आज बड़ी बहस है महिलाओं को लेकर, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो राउंड टेबल में शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी से सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो पक्ष रखेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्र प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। इधर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर संगीत रागी है, और आलोक शर्मा जी का साथ दो मेहमान जो देने वाले हैं उसमें विवेक सिलस जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और प्रोफेसर राजकुमार राजन जी जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, सिलसिलेवार ढंग से किसने क्या कहा, क्यों आज ये बड़ी बहस छिड़ गई है, इस रिपोर्ट में देखिए।
1: एजुकेशन या काम को रिजेक्ट करती है सेफ्टी के कारण।
2: सियासत में एक नई महाभारत छिड़ गई है।
1: हिंसा से बचने के लिए 50% महिला।
2: हाल ही में महिलाओं के साथ कार्यक्रम में स्मैश द पेट्रियार्की के ऐलान के साथ राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर हमला बोला था
1: कि एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट।
2: स्मैश द पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता को कुचलना वो विचार है जो दावा करता है कि महिलाओं को समाज में दबाया गया, उन्हें अवसर नहीं मिले। इसके पीछे समाज की दकियानूसी सोच जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार बेटियों को बेटों के बराबर मौका और सम्मान देने की बात कह चुके हैं। लेकिन अब बीजेपी का आरोप है कि स्मैश द पेट्रियार्की कहकर राहुल हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी का पुराना वीडियो पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा था, मनुस्मृति और हिंदू महिलाओं के संदर्भ में राहुल गांधी पितृसत्ता को ध्वस्त करने की बात करते हैं लेकिन जब बात हिजाब और अबाया की आती है तो वही चुनाव की स्वतंत्रता बन जाता है।
3: सर, अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है, क्या अबाया और हिजाब उतार
4: देंगे? मेरा मेरी व्यू है, मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी मेरी तो ये राय है।
2: बीजेपी ने इंस्टाग्राम पोस्टर में भी राहुल गांधी पर हमला बोला था। राहुल के स्मैश द पेट्रियार्की के जवाब में पोस्टर में लिखा है, भारत माता की जय शुरू करते हैं। इसी पोस्ट के दूसरे पोस्टर्स में शाहबानो केस, 3 तलाक, 33% महिला आरक्षण और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में महिलाओं की भागीदारी नहीं होने को लेकर सीधा प्रहार है। इसी महीने राहुल के मंच पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर फूहड़ टिप्पणी पर भी बीजेपी ने उन्हें घेरा था।
5: 22 अगस्त को उन्होंने पुणे के मंच पर ये बयान दिया और 10 दिन पहले खुद राहुल गांधी जी संदीप दीक्षित के साथ एक बहुत ही ओछे मजाक में शिरकत करते हैं एक महिला प्रधानमंत्री के खिलाफ, और वो भी हमारे एक मित्र देश इटली की।
2: मनुस्मृति के विरोध के नाम पर सियासत का नया हंगामा ऐसे समय में शुरू हुआ है जब एक एक कर राज्यों के चुनावों में महिला वोटरों को लुभाने की स्कीम्स के बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, सुधांशु जी आप ही से करते हैं। मतलब राहुल गांधी स्मैश द पेट्रियार्की कह रहे थे, मतलब एक समाज में जो पुरुष प्रधान समाज हमने गढ़ लिया है, जिसमें हमको आज जाकर 2026 में ये सोचना पड़ रहा है कि हमें एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर आरक्षण महिलाओं को देना पड़े, क्योंकि उनकी तो उनका रिप्रेजेंटेशन ही देश की संसद में नहीं हुआ। अगर महिलाओं की ताकत के बारे में वो कह रहे हैं कि भाई पुरुष प्रधान समाज जो पितृसत्ता है उसको स्मैश द पेट्रियार्की, तो आप लोग मनुस्मृति को डिफेंड क्यों कर रहे हैं?
6: देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, मनुस्मृति तो बहाना है, उसके पीछे असली चेहरा है मैकाले, मार्क्स और मौलाना है। इन तीनों के द्वारा हैक्ड दिमाग से जो इस समय राहुल गांधी जी को अल्ट्रा लेफ्ट अल्ट्रा नक्सल, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था मुस्लिम लीग की माओवादी कांग्रेस हो गई है, उसके अनुसार इनको यह कार्य करने के लिए दिखाई पड़ रहा है। इस समय भारत में कहीं से भी लड़ाई लड़ानी, उत्तर दक्षिण में लड़ाना है, राज्यों में लड़ाना है, भाषा पे लड़ाना है, जात पे लड़ाना है, फिर वो भी ना हो तो जनरेशन में लड़ाना है, फिर हो तो स्त्री और पुरुष के बीच में लड़ाना है। अब मैं जो आपने कहा, ये फिर ये संस्कृत निष्ठ शब्द पितृसत्तात्मक क्यों प्रयोग किया जाता है, मर्दुम अजीम रवायत क्यों नहीं प्रयोग किया जाता है? राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, ये 4BB मर्दुम अजीम रवायत है कि नहीं? तलाक बिद्दत, यानी सिर्फ पुरुष दे सकता है ट्रिपल तलाक, ये मर्दुम अजीम रवायत है कि नहीं? जब महिला घर से बाहर निकलेगी तो मेहरम के ही संरक्षण में निकलेगी। अभी जमात इस्लामी ने कहा है बांग्लादेश में कि स्त्रियों को तो राजनीति में आना ही नहीं चाहिए, यदि आए तो एक मेहरम के संरक्षण में आना चाहिए। और भारत में कांग्रेस के शासनकाल में हज पे जाने के लिए मेहरम की व्यवस्था कानूनी मान्यता प्राप्त थी, यानी दो बेटियां, दो बहनें, मां बहन, मां बेटी जाना चाहे तो नहीं जा सकती थी, एक मेहरम चाहिए था, जिसे मोदी जी की सरकार ने समाप्त किया। अब मैं पूछना चाहता हूं, हलाला से महिला पवित्र हो जाती है, ये मर्दुम अजीम रवायत है कि नहीं? मगर दिखाना तो पितृसत्तात्मक है। और मैं बिल्कुल राजनीतिक जवाब देता हूं, फिर सैद्धांतिक भी जवाब दूंगा। और अगर राहुल गांधी जी को इतना लगता है स्मैश द पैट्रियार्की, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, अपनी आदरणीय माता जी से कहें कि सोनिया गांधी जी ने क्यों अपने पति का नाम, सरनेम तो महिलाएं लगाती हैं, फर्स्ट नेम भी काहे बदल लिया है भाई? कहते स्मैश द पैट्रियार्की, लीव सोनिया गांधी एंड से एंटोनियो माइनो। और राहुल गांधी जी को भी कहना चाहिए स्मैश द पैट्रियार्की, मैं अब अपने पिताजी का नाम नहीं माता जी का नाम लगाऊंगा, आई एम राहुल माइनो। ये है असली चेहरा, इसलिए मैंने कहा मनुस्मृति बहाना है, असली चेहरा मैकाले, मार्क्स और मौलाना है। अब मैं मनुस्मृति पे भी एक बात कहना चाहूंगा, जो राहुल गांधी जी कहते हैं पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ, मनुस्मृति कहां है ओरिजिनल? जो विलियम जोन्स की ट्रांसलेटेड है, जो कलकत्ता हाई कोर्ट का जज था 1784 में, वो ये कहता है कि 1783 में भारत आया, और आप कल्पना करिए दर्शकों, एक साल के अंदर उसने संस्कृत भी सीख ली, इतना गहरा अध्ययन कर दिया कि संस्कृत के 3-3 ग्रंथों का अनुवाद कर दिया, अभिज्ञान शाकुंतलम, विद्याधर का हितोपदेश और मनुस्मृति। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमारे सहयोगी बताएंगे, मनुस्मृति जो लिखी है विलियम जोन्स ने, उसका हेडिंग क्या है, नाम क्या है किताब का, पता है आपको? नाम पता हो बताइए, फिर मैं अपना वक्त पूरा करूं।
7: मैं यहाँ जनरल नॉलेज मनुस्मृति,
6: अच्छा जनरल नॉलेज, ठीक है, मतलब
7: आज का सवाल
6: नहीं,
7: देख मैं आपके बीच में नहीं बोला
6: सर, अब मैं पूरी बात करूं,
0: मैंने खत्म कीजिए दो लाइन में।
6: वो है ऑर्डिनेंस ऑफ मनु, हिंदू कोड लॉ, और उसमें संस्कृत का एक श्लोक नहीं है, दैट इज टोटल कमेंट्री, और उसको ये कहते हैं यथार्थ है। और पहली बार जहां संस्कृत के श्लोकों का रेफरेंस है 1813 में, एक लिखता है वो है, उसका नाम है जॉन जॉर्ज बुहलर, वो पहली बार लिखता है, अपना मनगढ़ंत सारी चीजें डालता है जिसका कोई प्राइमरी सोर्स अवेलेबल नहीं है, मगर उसके बावजूद उसी को सच मानते हैं। अब मैं दूसरा कोट करना चाहता हूं, फ्रेडरिक नीचे, जर्मनों ने तो कभी हम पे शासन नहीं किया, उसने जो लिखा है एक फ्रेंच जो अनुवाद था उसके आधार पर, उसमें सारी चीजें नहीं है। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, ये विलियम जोन्स स्क्रिप्ट को मनुस्मृति नाम देकर हिंदू समाज में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म का एजेंडा लेकर, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के इंटरनेशनल थॉट से प्रेरित होकर ये जो करना चाह रहे हैं, वो सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि किस ढंग से हिंदू समाज में बंटवारा हो सके,
0: वो
6: साफ दिखाई पड़ता, और कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर खड़गे जी से ये बोला था, तो कहा था ऑथेंटिकेट करिए ओरिजिनल
0: मनुस्मृति लेकर आए हो, क्या है
7: खड़गे जी से?
0: ठीक है, चलिए आप इसके बाद बताइएगा, आलोक जी
7: खड़गे जी से ही शुरू कर लेते हैं,
0: हाँ वो भी बताइएगा, लेकिन सवाल भी सुन लीजिए, क्या ये आरोप में दम नहीं है कि आप हिंदू धर्म के की समीक्षा तो करते हैं खुले में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब इस्लाम में महिलाओं का उत्पीड़न होता है, ईरान में जब बच्ची को मारा गया था उसके बाद पूरे विश्व में उस पर हुआ, लेकिन उस पर किसी की आवाज हमने नहीं सुनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से।
8: आज का विषय केवल सीधा सीधा यह है कि राहुल गांधी ने कहा कि पुरुष और महिला में भेद नहीं होना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए, उनको बराबरी का स्थान मिलना चाहिए। इन्होंने पूरी डिबेट हिंदू मुसलमान फलाने ने क्या कहा उसने क्या कहा उस पर ले गए। अंकिता भंडारी पे दो सवाल पूछ लूंगा तो जनरल नॉलेज अभी फेल हो जाएगी इनकी। दुर्भाग्य यह है कि आप जो मूल विषय था कि महिलाओं को आगे स्थान मिलना चाहिए, उसको आप पूरी तरह से हिंदू मुसलमान एंगल देना चाहते हैं। आपको अगर लगता है कि हिजाब में कोई दिक्कत है तो भाई जिसको मन करता है हिजाब पहन ले, जिसको मन करता है नहीं पहने। बहुत से ब्राह्मण तिलक नहीं लगाते, बहुत से ब्राह्मण नॉनवेज खाते हैं, कौन क्या खाता है क्या पहनता है कैसे रहता है उसमें बीजेपी और आरएसएस हमेशा इंटरफेयर क्यों करती है, विषय ये है। मुझे लगता है कि ये पर्सनल इशू जब लेकर आते हैं आप तो आप मूल मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। अगर आप मूल मुद्दे पे हैं, संसद में आप एनसीआरबी के आंकड़ों पर बात करते हैं ना सांसद महोदय, आप एनसीआरबी में बताते कि किस तरह से दलितों के ऊपर अत्याचार 50% बढ़ गया, जिसको मनुस्मृति में तमाम ऐसी जगहें जो दलितों के ऊपर गलत बात कहती हैं आज के हिसाब से, महिलाओं के ऊपर तमाम तरह की गलत बात कहती हैं, और आपका जो माइंडसेट है वो स्वयं मनुस्मृति से प्रेरित है, इसीलिए मनुस्मृति की बहुत सी छाप आपके यूसीसी में नजर आती है। मनुस्मृति जो कहती है कि 7 साल तक बच्चा ना हो तो फिर दूसरा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उस तरह की छाप आपके गोवा के यूसीसी में नजर आती है कि अगर एक महिला से पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति ना हो तो आपको दूसरी शादी। मैं फिर बता दूं यार, दोहे में नहीं है, वहां पर संस्कृत में है, मनुस्मृति में दोहे नहीं है।
6: नहीं, नहीं,
8: दूसरी चीज, अरे सुनिए ना भाई, जब भी यूसीसी बना है 2 साल 4 साल हुए, 2 साल 4 साल हुए हैं, कुछ नहीं है उसके अंदर, केवल ढकोसला है। एक पत्नी से अगर बच्चा पैदा ना हो तो दूसरी पत्नी कर लो, ये आपके यूसीसी में लिखा है। उत्तराखंड के यूसीसी में लिव इन के ऊपर लिखा हुआ है, लिव इन में है तो जाकर आपको बताना होगा थाने में, इसके अलावा कुछ हो तो बता दो मुझे भाई यूसीसी में। दुर्भाग्य यह है कि आपको आज की वर्तमान की समस्याओं से मुद्दों को भटकाना है। आप आने वाली जनरेशन को गटर जनरेशन कहते हैं, उस पर आपको चर्चा नहीं करनी है। आप जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं उनको पंचर लगाने वाला बोलना है, उस पर आपको चर्चा नहीं करनी है। आपको हर चीज को हिंदू मुसलमान पर ले जाना है। मैं तो पूछ रहा हूं महिलाओं के लिए, आपने अगर आप मुस्लिम महिलाओं की भी बात कर रहे हैं, आपने 3 तलाक का भी क्या बिल अपनी मर्जी से बनाया था? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक केस चल रहा था, आपने संसद में लाए, उसमें तमाम लोगों ने अपने अपने विचार रखे, और इस तरह के तमाम कानून पहले भी बनते रहे हैं। आप जातिवाद को क्यों बढ़ावा देना चाहते हैं? आप धर्मवाद को क्यों बढ़ावा देना चाहते हैं? आपके पूरे वक्तव्य से पूरा पता चला कि आप हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, आपका कोई मतलब नहीं। हम पूछ रहे हैं चाइना घुस के बैठ गया है बाउंड्री पे, आप मनुस्मृति पे अटके पड़े। हम पूछ रहे हैं अमेरिका के सामने सरेंडर क्यों किया, आप मनुस्मृति पे बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, हम पूछ रहे हैं नीति आयोग की रिपोर्ट आई है संसद में, उस पर भी चर्चा कर लेना। 22 दिन तक देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री बच्चों के सवालों पर भाग के खड़े हो गए। मनुस्मृति पे बात करनी है, उसमें ये पॉजिटिव है उसमें ये नेगेटिव है। हम पूछ रहे हैं पैलेट गन किसने चलाई, AK-47 किसने चलाई, 152 पेपर लीक कैसे हुए। हम पूछ रहे हैं राम मंदिर में डकैती क्यों हुई, मोदी जी रील बना रहे हैं, 6 साल का बच्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, 12 साल से देश के प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, 22 दिन तक संसद से भागे रहते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि सरकारी विभागों में खाली पद जो है वो डबल हो गए, आप कह रहे हैं मनुस्मृति की बात करेंगे। दुर्भाग्य यह है कि आपको जब आप सत्ता से बाहर होते हैं तो गाय गऊ गंगा गीता सब चीजें पवित्र लगती हैं, फिर आप आ जाते हैं तो गाय के काटने की परमिशन दे देते हैं आप सरकारी तौर पर। आप जिस तरह से गणेश जी को अपने रथ के सामने नचाते हैं उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, हनुमान जी की पतंग बना के उड़ा देते हैं आप, रामचंद्र जी का प्रभु का उंगली पकड़ के लाते हैं फिर उनके घर में ढाका डाल देते हैं। दुर्भाग्य यह है कि आपकी जो डबल स्टैंडर्ड है उसकी वजह से आज देश भुगत रहा है। पूरे देश को आप लोगों ने भ्रष्टाचार के ढेर पर बैठा दिया है। पुल बनने से पहले बह रहे हैं, जो हाईवेज आप आज तक मोदी जी ने बनाए सारे के सारे परेशान हो गए लोग उनके ऊपर चलकर, किस तरह से हवाई अड्डों के छत गिर रही है, ये सब मोदी जी की देन है।
0: चलिए जवाब दीजिए सुधांशु जी,
8: पर बात नहीं करना,
0: असल मुद्दों से हटाना चाहते हैं। मनुस्मृति को कोट किया राहुल गांधी ने, आपने लपक क्यों लिया
8: चाहते हैं
0: आप? अच्छा, मनुस्मृति कोट किसने किया बताइए?
8: मैं फिर कोट करना है उसमें अगर कोई चीज गलत है तो मेरे पास भी 10 चीजें
0: तो लेके कौन आया पॉलिटिकल डिस्कशन में?
8: मैं भी लेकर आया हूँ, लेकिन अगर
0: तो मनुस्मृति की वजह से आज औरतों को दबाया जा रहा है, आपको लगता है घर घर में मनुस्मृति पढ़ी जा रही है?
8: ऐसा नहीं,
0: तो क्या कनेक्शन है? पर्पस क्या था मनुस्मृति को कोट करने का?
8: कितना बड़ा कनेक्शन था, कितना बड़ा कनेक्शन बताया कि मनुस्मृति से जो प्रभावित लोग हैं वो अपने यूसीसी में उसके मनुस्मृति,
0: चलिए अब जवाब दीजिए डायरेक्ट,
8: इसलिए उन्होंने एग्जांपल दिया मैंने गोवा का,
0: इसलिए उन्होंने मनुस्मृति को।
6: आपके लाखों दर्शकों को बहुत बात समझ में आ गई होगी कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आलोक जी को, इन्होंने साबित कर दिया कि जो विषय राहुल गांधी लाए थे उसका डिफेंस करना कांग्रेस के लिए संभव नहीं है। एकदम भागते हुए डीके बोस भागते हुए उन्होंने ये कहा कि हमें दूसरे विषयों पर बात करनी थी, ये सारे विषय क्यों नहीं उठाए राहुल गांधी जी ने, विषय वही लाए और अब उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मैं बात बताता हूं, यह मैं पूछना चाहता हूं कि भारत में 4 करोड़ गरीब प्रधानमंत्री आवास बने जिसमें 3 करोड़ में रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पे है, कोई कल्पना कर सकता था 2014 से पहले कि गरीब वर्ग की महिलाओं का पहली बात तो मकान होगा और उसमें 3 करोड़ ऐसी होंगी जिनका रजिस्ट्री में नाम होगा, ये मोदी सरकार ने किया है। ये बताइए 16 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना, वो लकड़ी से फूंकती थी आंखों का पानी, वो किसने बचाया? मोदी जी ने बचाया। शौचालय घर घर दिया जिसको इज्जत घर कहा गया, किसने किया? मोदी जी ने किया। आज 55 करोड़ जनधन योजना, आज ही उसके 12 साल पूरे हुए हैं, 55 करोड़ अकाउंट हैं जिसमें 60% महिलाओं के हैं। IMF वर्ल्ड बैंक ने इस बात की तारीफ की है कि जो डिजिटल ट्रांजेक्शन हुआ इससे सबसे ज्यादा इंपावरमेंट महिलाओं को हुआ, क्योंकि गांव में बैठी हुई एक महिला 4 गांव दूर जाकर किसी बैंक की शाखा से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकती थी, आज डिजिटल ट्रांजेक्शन से हुआ। उसके बाद आप देखिए आज सबसे ज्यादा मंत्रिमंडल में महिलाएं हैं तो हमारे दौर में, परमानेंट कमीशन मिला आर्मी में तो हमारे दौर में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में परमानेंट आई हमारे दौर में। और अगर मैं आपसे यह कहना चाहूं कि हमारे टाइम में इतने प्रकार के कार्य हुए कि डिफेंस फोर्सेस से लेके महिला संरक्षण को लेकर जितने भी प्रकार के कार्य हुए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारे दौर में आया, इसलिए। और फिर मैं कहना चाहता हूं भाई साहब गलत तो सही है, अब मैं एक कोट कर दे रहा हूं और मैं अंजना जी कह रहा हूं, मैं जान के पढ़ रहा हूं क्योंकि इनकी तरफ के क्लिप कट हुआ, गैंग क्या करता है कि वो मेरा स्टेटमेंट बना के चेप कर देगा। अब मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, आई डू नॉट रिगार्ड मनुस्मृति एज एन इविल, इट कंटेन्स मच दैट इज एडमायरेबल, but in its present form undoubtedly certain man things are bad but those appears to be interpolation, yani jo burai hai wo hastakshep hai, kisne kaha? Mahatma Gandhi in his letter to P.T. Pillai on 4th of May 1928 aur alok ji aur congress ke log kaan khol ke aankh phad ke sune, the collected verse of Mahatma Gandhi volume 36 letter number 348। ab ek aur dialogue suniye, there is no doubt about it that the Manu and Yagyavalk were the great souls and we must read them what they have written with respect and they are our heroes, kisne kaha? Jawaharlal Nehru on the floor of the house on 4th of May 1955, source is selected verse of Jawaharlal Nehru volume 28 page number 60 to 70। ab aaiye Dr. Baba Sahib Ambedkar ne kaha ki Manu aur Yagyavalk ki smriti mein itni achhi baat thi ki behno ko rakshabandhan ka din 1/4 हिस्सा मिलना चाहिए, मगर हमारा वो ट्रेडिशन छूट गया। अफसोस है कि हमारी सरकार वो मानने को तैयार नहीं है जो मनु और याज्ञवल्क ने लिखा था, तो कम से कम 1/4 हिस्सा लड़कियों को देना चाहिए। ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा 24 फरवरी 1949। और मैं कहना चाहता हूं आपको पता है सबसे ऑथेंटिक ऑफिशियल पब्लिकेशन क्या है मनुस्मृति का? पब्लिश बाई भारतीय विद्या भवन, पब्लिश बाई भारतीय विद्या भवन,
0: ठीक है,
6: और वो 1972, और उसमें जानते हैं क्या लिखा है? पब्लिश विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 72 में किसकी सरकार थी? इंदिरा जी की। अब आइए अगेन इट इज पब्लिश्ड, नो टीका, वो ओरिजिनल मनुस्मृति नहीं है, 9 टीकाकारों की है, वरुच से लेके मेधातिथि से लेके कल्लूक भट्ट तक। अब 85 में फिर वो छपती है और क्या लिखा है? पब्लिश्ड विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 85 में किसकी सरकार थी? राजीव गांधी जी की। वो तो गजब का आदमी है, बाप गलत, दादी गलत, बाप के नाना गलत, गांधी गलत, अंबेडकर गलत, और मैं अवतरित हुआ हूं इस धराधाम पे धम धम धम धम करते हुए कांग्रेस को ले जाने के लिए। अब इसीलिए मैंने ये सारी बातें फैक्ट के साथ कोट की है और मुझे पूरा विश्वास है
8: शो बिगड़ जाएगा,
6: एक चीज का फैक्ट
8: शो बिगड़ जाएगा भाई। देखो आप एक तरफा मत चलो,
6: आप एक तरफ, अब आप बताइए गांधी नेहरू
0: बोले बोले सुनिए,
8: दर्शक सोच रहे होंगे कि अरे भाई कहना क्या चाहते हो आप, आपने जो भी कहा है उसका आज के वर्तमान से फल।
6: यही तो हमने कहा
8: आज क्या लेना देना, रुकिए ना, अब रुकिए जरा। आपने कहा कि बाबा साहब ने कहा कि 1/4 उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए, सोने गांधी ने तो 2009 में यूपीए 1 की सरकार में आधा कर दिया, 50%। अगर एक बच्चा, एक बेटा है एक बेटी है तो दोनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। हम तो कभी नहीं कह रहे, हम तो उसके ऊपर नहीं कि हमने जनधन अकाउंट खुलवा लिया। अरे सुनिए ना भाई, जरा आप जनधन अकाउंट 89% जो है वो डॉर्मेंट हो गए, क्या उनकी हालत है, वो बंद पड़े हैं, उनमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, क्या ऐसा चेक नहीं है,
6: आधार
8: कितने पेनल्टी उनके ऊपर आई है जिस समय पर आधार
6: कार्ड जनधन में जीरो बैलेंस का अकाउंट है, पेनल्टी का प्रावधान नहीं है, कुछ भी आगे बोले।
8: अरे भाई उसके बावजूद
6: जनधन में जीरो बैलेंस
8: है, मैं कह रहा हूं उसके बावजूद पेनल्टी है,
6: उसके बावजूद
8: आप थोड़ा पढ़ लिख के आया कीजिए, उसके बावजूद पेनल्टी है और ये सच्चाई है। आप कहेंगे तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा अकाउंट नंबर।
6: अरे मैसेज नहीं है, बताओ
8: ना भाई अकाउंट नंबर याद लेके आपकी तरह यहाँ
6: अकाउंट नंबर
8: जीके के सवाल पे थोड़ी है,
6: जीके का सवाल
8: सुनिए भाई जरा सुनिए। इन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन बिल, अरे भाई दो साल हो गए उसके ऊपर कुंडली मार के आप लोग क्यों बैठे हो? 2024 में जो बिल पास हुआ उसको आज तक लागू क्यों नहीं?
6: 23 में
8: 24 में चुनाव हुआ उसमें लागू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपकी नियत में खोट था। अभी मैं कह रहा हूं कि अभी नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है उसमें महिलाओं को जो रोजगार है ऑर्गेनाइज सेक्टर में मात्र 3% है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर पिछले 10 साल में महिलाओं की बढ़ी है। महिलाओं और पुरुषों का जो प्रॉपर्टी का अपना शेयर है रिसोर्सेज का, वो गैप लगातार बढ़ता चला जा रहा। भाषण दे रहे हैं महिला वंदना पे, 16 करोड़ ये बना दिया, उससे पहले तो शौचालय थे ही नहीं इस देश के अंदर। विद्या बालन का एडवर्टीजमेंट पिछले 20 साल से चल रहा था, 23 के 23 फ्लैगशिप प्रोग्रामों के नाम बदले आपने और आप आगे चले गए।
0: चलिए प्रोफेसर संगीत आ गया भाई, जल्दी जल्दी
8: मुझे केवल ये बता दीजिए कि इस देश के अंदर कितनी परसेंट महिलाएं अनैमिक हैं? 49% महिलाएं जो जिनके अंदर खून की कमी है उस पर बात कर लीजिए, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषित हैं उस पर बात नहीं करेंगे,
6: करिए बात।
8: उसने ये कर दिया, उस चिट्ठी में वहां था ये था। अरे सांसद आप हैं, आप बताइए ना।
6: अच्छा
8: आप बताइए कितनी महिलाएं एनीमिक है?
0: फिर आप दोनों की बहस हो जाएगी, बाकी लोग देखते रह जाएंगे।
8: आप बताइए, हमने तो 73 में 74 में संशोधन में महिलाओं को राजनीति में भी हिस्सा दिया, आपने लेकिन एक बिल पास होने के बावजूद उसके ऊपर कुंडली मार के बैठे हो क्योंकि आपकी नियत साफ नहीं
6: थी। सुनिए,
8: हम कह रहे हैं पुरुष प्रधान समाज की छोड़कर ये बराबरी का समाज आना चाहिए। आप हिजाब पर जाएंगे, आप किसी के कपड़ों पर
0: हिजाब
8: जाएंगे,
0: पर क्या दिक्कत है?
8: मुझे कोई दिक्कत नहीं,
0: तो
8: मैं कहता हूँ किसी का हिजाब का मन है तो हिजाब पहने, किसी का मन कुछ है तो वो पहने। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो लोग हमारी जनरेशन गटर जनरेशन कह रहे हैं उस पर बात कीजिए। 9 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश के अंदर
0: 19 से 29 साल
8: के जो न तो स्कूल जाते हैं न रोजगार में है। यूरोप की आधी आबादी है, आप मनुस्मृति के पीछे पड़े हुए हैं, उसमें ये लिखा है उसमें लिखा है। मैं 4 सेंटेंस
0: तो
8: पढ़ के सुना
0: तो राहुल जी ने किया।
8: मैं फिर कह रहा हूँ
0: मौका देते हैं,
8: एक मिनट सबसे गुणहीन पति भी देवता के समान पूज्य है क्या ये
6: मैं
8: कंपेयर कर ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ की चीज खराब मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं क्यों करूंगा भाई? मैं दो धर्मों को कंपेयर करने का काम तो आरएसएस का है।
6: अच्छा चलिए,
8: द्वेष फैलाने का काम आरएसएस का मेरा नहीं, मैं तो संविधान की बात करूंगा।
0: अब सुनिए, आप दोनों का लंबा लंबा जवाब हो गया, एक एक लाइन से, बाकी लोग चेहरा नहीं देखेंगे।
6: संविधान के अनुसार कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार महिला मंत्री 0, हिमाचल में सरकार महिला मंत्री 0,
8: क्या बात,
6: तेलंगाना में सरकार 2,
8: कर्नाटक में 2
6: एक थी वो पिछली बार खत्म हो गई, अब आइए केरल में 2, चार राज्यों में चार मंत्री
8: यार आप लोग
6: बताइए,
8: बताइए। मैं फिर कह रहा हूँ डीके शिवकुमार का आज आप अकाउंट खोल लो, 2 मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री को 2 मंत्रियों ने, महिला मंत्रियों ने,
6: चार सरकार में महिला है, बताओ कितनी मंत्री है महिला?
8: बेकार की बात,
6: अरे आप ये बेकार की बात,
8: आज तक आरएसएस की कितनी महिलाएं अध्यक्ष बनी है जरा बता दीजिए,
6: राष्ट्रीय सेविका समिति
8: कितनी बनी है जरा बता दीजिए मुझे,
6: स्वयं सेवक संघ की,
8: बीजेपी की बता दीजिए कितनी महिला अध्यक्ष बनी है,
6: बताता
8: हूँ, बताइए ना,
6: बताता हूँ,
8: बताइए,
6: हम तो ज्यादातर
8: विपक्ष में, बताइए ना बीजेपी की आज तक कितनी अध्यक्ष बनी है,
6: चिल्ला रहे हैं,
8: बताइए सर नाम,
0: अब एक एक लाइन से बोलने दूंगी मैं आप दोनों को, बाकी लोग
8: नाम बताइए ना,
6: भारत के इतिहास
8: आरएसएस के कितनी चीफ महिला बनी है,
6: अरे भाई,
8: और बीजेपी की अध्यक्ष आज तक कितनी बनी है, एक का नाम बताइए मुझे,
6: बोले बताएं,
8: बताइए,
6: अब सुनो पूरी, अब बोल सकता हूँ,
8: दोनों का जवाब दीजिए, आप कुछ मत बोलना,
6: मैं बताता हूँ,
8: बीजेपी
6: अध्यक्ष पहली नेता प्रतिपक्ष महिला सुषमा स्वराज हमने दी,
8: अरे
6: भारत की पहली विदेश मंत्री महिला हमने दी, भारत की पहली रक्षा मंत्री हमने दी,
8: कैबिनेट कमेटी की महिला बनी है
6: 2 महिला
8: बताइए
6: हमने दी,
8: बीजेपी की महिला अध्यक्ष कोई भी बताया हो उसका नाम बताइए,
0: आलोक जी बारी बारी,
6: अच्छा बताइए
8: बीजेपी की महिला अध्यक्ष बनी हो आज तक कोई उसका नाम बताइए,
6: बेटी बहू ब्रिगेड के अलावा महिला अध्यक्ष
8: बना यार, बाकी सब
6: बताइए,
8: मुझे केवल ये बताया बीजेपी
9: को। अरे मैं कह रहा हूँ, आपने नेता प्रतिपक्ष बनाया, आपने रक्षा मंत्री बनाया, आपने विदेश मंत्री बनाया, आपने वित्त मंत्री बनाया, लॉन्गेस्ट टर्मिंग विदेश मंत्री हमारे।
5: अच्छा ठीक है, आप संगीत राजी जी
8: अध्यक्ष महिला बनी है, उसका नाम
5: ठीक है।
9: अच्छा बेटी बहू बीजेपी महिला अध्यक्ष
8: बीजेपी
9: अरे बताओ पेट्रियार्की के अलावा कोई महिला अध्यक्ष
8: हमने तो एनिमेशन हमने तो
5: आप लोग इनको समझाइए, आप लोग इनको समझाइए।
8: एनी बेसेंट 1916 में,
5: अरे राउंड टेबल का मतलब ये नहीं है कि दो लोग जो चिल्ला सकते हैं वो चिल्लाते रहे।
8: मुझे केवल ये
5: बाकी चार लोगों को इंतजार करना है।
8: अंजना जी मुझे उत्तर नहीं मिला, आरएसएस का चीफ
5: सुनिए,
8: कोई महिला रही
5: आपको एक बात बताती हूँ, इस मामले में सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चलिए संगीत रागी जी,
8: बीजेपी के एक भी अध्यक्ष महिला बनी उसका नाम चाहिए।
5: संगीत रागी जी
9: पैट्रियार्की का
8: बताइए ना भाई, मुझे महिला का नाम, एक महिला जो मनुस्मृति का नाम बताइए
5: की मानसिकता रखने वाले लोग इस वक्त देश को चला रहे हैं और इसीलिए महिलाओं के खिलाफ काम किया जा रहा है, इस पर क्या काउंटर है आपका?
10: देखिए सबसे पहले तो जो मनुस्मृति पर बात करते हैं उनको शायद भारत का टाइमलाइन का सेंस भी नहीं है जिसके बारे में वो बात करते हैं। हम जिस मनुस्मृति की बात करते हैं ये मनु परंपरा होती है। इस पृथ्वी की आयु 4,32,00,00,000 है और 14 मनवांतर होते हैं और जिस मनवांतर में हम रह रहे हैं वो वैवस्वत मनवांतर होते हैं। ऐसे आंख मत मेरी तरफ गुस्साइए मत, जब हम लोग संकल्प मंत्र पढ़ते हैं तो संकल्प मंत्र पढ़ते हुए हम क्या कहते हैं, वैवस्वत मनवांतर। और वैवस्वत मनवांतर के अंदर 38 लाख वर्ष पूरे हो चुके हैं। यदि हम मान लेते हैं, मैं मान लेते हैं कि
6: कलयुग
10: प्रथम चरण है, तो एक मिनट
8: आगे भी चलें
9: सर, फिर गोत्र भी बता
10: पंडित जी,
9: यही तो हम कह रहे हैं कि गोत्रों पे भी विभाजन।
5: गुरु जी बोलने दीजिए,
9: अपना गोत्र बताया है राहुल गांधी,
5: गुरु जी
9: पार्टी राहुल गांधी ने कभी नहीं बोला, दत्तात्रेय
8: राहुल गांधी ने खुद अपने मुंह से।
5: भाई वो ऑर्डर वाला लाना पड़ेगा, पर बहुत मुश्किल है, नहीं तो फिर चीखते रहिए, लोग सुन ही नहीं पाएंगे।
8: ये लिखती है स्त्रियों की बुद्धि अस्थिर होती, ये मनुस्मृति में लिखा
9: है। कहाँ लिखा है, ओरिजिनल दिखाइए।
8: अरे भाई
9: ओरिजिनल टेक्स्ट दिखाइए,
8: 8.7
9: ओरिजिनल टेक्स्ट जो आपकी छपी है सरकार के द्वारा, उसमें
8: श्लोक के साथ बैठा हूं।
9: नहीं नहीं ये तो कोई भी,
8: मैं श्लोक का नंबर भी बताओ,
9: ओरिजिनल बताओ भाई।
8: आप उस पुस्तक का श्लोक करना चाहते हैं जो पुस्तक महिलाओं में विभेद करती है, शूद्रों को डाउन करते
5: नहीं
8: है, और उसी का नतीजा है।
5: आप लगातार
8: जी जिस मंच भाषण देकर आए क्योंकि वो दलित थे इसलिए उस मंच का शुद्धिकरण बीजेपी ने किया। पूरी तरह से मनुस्मृति से ये लोग
5: जवाब दे लेंगे।
10: मैं उसी का जवाब दे देता हूँ, पहले उसी का जवाब।
8: खड़गे जी वाले पे
10: सबसे पहले तो खड़गे जी को दलित होने के कारण सोनिया गांधी ने अपमानित किया, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि वहां पर कोई और खड़ा होता, खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उम्र में उनसे बड़े थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पद और ओहदे में अनुभव में सबसे ज्यादा बड़े थे, उसके बावजूद भी वो डांट खाते रह गए।
5: कहाँ डांट खाया?
10: अरे भाई सोनिया गांधी ने कहा स्टॉप
9: करते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं आप।
10: फिर हमको बोलने
9: लगे, आप मुझे केवल बताइए मंच का शुद्धिकरण क्यों हुआ? खड़गे जी के मंच का शुद्धिकरण आरएसएस के लोगों ने
10: इसलिए सोनिया गांधी,
9: इसका उत्तर चाहिए हमें।
10: वो अध्यक्ष
9: आज भी
5: बारी बारी से आलोक जी
9: विरोधी,
5: आपने बोल लिया, आप
9: सुनिए। वहां पर रामलीला मैदान में मजहबी नारे लगे इसलिए हुआ,
8: कोई मजहबी नारा नहीं लगा, मैं उस मंच पर था, मैं वहीं पर।
10: देखिए सबसे पहले तो मैंने इसीलिए कहा कि खड़गे जी को दलित होने के कारण श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अपमानित किया। यदि कोई वहां ब्राह्मण अध्यक्ष होता तो सोनिया गांधी जी की हैसियत नहीं थी कि इस प्रकार की भाषा प्रयोग करते, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। दूसरी बात, कोई नहीं कह सकता कि स्टॉप स्टॉप, हु आर यू टू डिसाइड, यू आर जस्ट ए पार्लियामेंट्री,
9: कोई भी जस्ट में बात करने में क्या दिक्कत है भाई?
10: कैसे वो बोल सकते थे?
9: क्या प्रॉब्लम है?
10: कैसे वो बोल सकते थे?
9: झूठ बोल रहे हैं क्या? वहां पर मजहबी नारे
10: नहीं बोल सकते थे?
9: जिसका मन में आता है झूठ बोल के चला जाता है।
10: संस्कार होता है, एक जगत प्रकाश प्रधानमंत्री तो होते
5: हैं,
10: प्रधानमंत्री होते हैं, जगत प्रसाद नड्डा
9: विषय पर नहीं आएंगे
10: तो प्रधानमंत्री होते हैं भाग रहे। दूसरी बात मैंने इसीलिए कहा कि राहुल गांधी जब मनुस्मृति को कोट करते हैं तो उनको जानकारी नहीं होती है कि मनुस्मृति कब हुआ, क्या आदि मनु के साथ हुआ था? आदि मनु का उम्र जो होता है आज से 2,00,00,000 से ज्यादा वर्ष होता है। दूसरी बात, यदि हम वैवस्वत मनु का ये बात करते हैं तब भी मानते हैं कि 38 लाख वर्ष पहले ये हुआ, इतने सालों में कितना इंटरपोलेशन होता है, जो हिस्टोग्राफी है स्क्रिप्चरल हिस्टोग्राफी और जो जो अभी साइंटिफिक हिस्टोग्राफी, दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। जो स्क्रिप्टल हिस्टोग्राफी है वो बहुत मिलीनियम में चला जाता है, जो अभी मॉडर्न हिस्टोग्राफी है आज से कम 700 पढ़ा लिखा चीज आपको थोड़े बुद्धि में आएगा। अरे सर पढ़ा लिखा चीज बुद्धि में नहीं आएगा,
9: नहीं बुद्धि में नहीं आएगा,
10: नहीं आएगा, पढ़ी लिखी चीजें नहीं बुद्धि में आएगी,
9: बुद्धि में आएगी
10: किताब तो कहते नहीं है, किताब पढ़ने से तो लेना देना होगा नहीं आपको।
0: विवेक सिलस जी को दिखा दीजिए,
10: तो पढ़ने लिखने से होता नहीं है।
9: विवेक सिलस जी को दिखाते हैं गोवा में,
0: पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, जल्दी कंक्लूड कीजिए, कंक्लूड कीजिए।
9: दर्शक सोच कहना क्या चाहते हो भाई,
10: मैं कह रहा हूं कि इतने वर्ष का लिखा हुआ टेक्स्ट उसमें बहुत इंटरपोलेशन हुआ है, कोई ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है, और मनुस्मृति का नाम लेकर आप
9: सिर्फ नारी शब्द गाली देने,
10: अरे बाइबल पे बोलो ना,
0: बाइबल
10: और कुरान पर बोल कर।
0: अच्छा रागी जी एक सवाल तो
10: सुनिए, हिम्मत है सुनिए,
0: फिर वहां पहुंच गए रागी जी, सुनिए ना रागी जी सुनिए, तो आप ये कह रहे हैं कि एक्स्ट्रापोलेशन है, और अगर ये एक्स्ट्रापोलेशन मनुस्मृति का है तो ये गलत है,
9: गांधी ने कहा है,
0: गलत है ना, गलत है ना, गलत है ना, गलत है ना,
10: बिल्कुल।
0: मैं तो बोलिए ना, कहीं डिफेंड कर रहे हैं मनुस्मृति को, बोलिए विवेक सिलस जी, विवेक सिलस रुक जाए, आलोक जी
9: की हत्या गांधी जी को आदर्श मान रहे हैं, गजब है,
10: क्या मनुस्मृति से गांधी आती है, इनको
9: चार बीवी भागने नहीं दूंगा, एक मिनट भागने नहीं दूंगा, चार बीवी बोलो, चार बीवी भी बोलो इस पैट्रियार्की,
8: आप कानून लाओ ना, चार की जगह
9: कानून बना के रखा था, क्या ट्राइबल पॉपुलेशन में ऐसा है कि नहीं है,
10: अरे भाई
9: अभी इसीलिए कुछ आएंगे, क्या ट्राइबल पॉपुलेशन में ऐसा है कि नहीं
10: है कि आप टैक्स
9: ट्राइबल्स में है तो चलेगा,
10: क्योंकि चूंकि
9: मुसलमानों में है तो क्या है, हिंदू मुसलमान पर
10: तौर पर मारा जाता है,
9: भंडारी पे बोलो ना, वो हिंदुओं की पे कीजिए,
0: अरे इनको बोलिए क्योंकि बोले आलोक जी,
9: अंकिता भंडारी पे बोलो, अंकिता दत्ता पे बोलो, तुम्हारी युवा भंडारी पे बोल रहे हैं, सीबीआई जांच कहां,
10: राधिका खेड़ा में बोलो,
9: बोलने का क्या दिक्कत है, बोलने का क्यों नहीं बोलेंगे, हमारे साथ क्यों नहीं बोलेंगे,
0: बोलिए विवेक से
9: राधिका खेड़ा,
0: आप उनको बताइए ना की तरफ है,
9: चाहिए थी उसको,
0: अरे आलोक जी आपने दोनों को चुप रखा है, मतलब 10 मिनट बचा है शो का, बोलना है कि नहीं इन दोनों को,
9: रंजन वालों से इनको कुछ नहीं,
0: जल्दी से बोलिए विवेक सेलेक्ट, जल्दी से
11: देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो ये बोलूंगा जो जहां तक आरएसएस की बात है, आज आरएसएस चर्चा में भी है, अंजना जी मोहन भागवत जी समय अमेरिका मेडिसिन स्क्वायर मैनहट्टन पे भाषण देने जा रहे हैं,
0: आपके नेता ने पोस्ट भी किया,
11: पोस्ट भी किया, इसीलिए कह रहा हूँ ना, आरएसएस तो पहला था अंजना जी जिन्होंने ये कहा कि संविधान से बेहतर तो मनुस्मृति है, संविधान को जलाने वाले आरएसएस के लोग, ठीक इंडिपेंडेंस के बाद विरोध करने वाले आरएसएस के लोग, तिरंगा का विरोध करने वाले आरएसएस का लोग, भारत के संविधान का विरोध करने वाले आरएसएस के लोग, अभी इन्होंने उदाहरण दिया, एक मिनट रुकिए,
10: संविधान जलाया
11: दिल्ली के अंदर, एक मिनट
10: राष्ट्रीय
0: उन्होंने बोला भी नहीं,
11: लेकिन मेरी बात आ जाने,
0: जल्दी पूछ,
11: देखिए खड़गे जी की बात की इन्होंने कि शुद्धिकरण हुआ हल्द्वानी में, अंजना जी आप याद करिए जब अखिलेश जी 2017 मुख्यमंत्री नहीं रहे तो सीएम हाउस का शुद्धिकरण किसने कराया, गंगा जल से किसने धुलवाया, ये मनुस्मृति है कि नहीं है, ये इनकी सोच है कि नहीं है, जब अखिलेश जी मंदिर में गए तो उसको उनके हटने के बाद वहां से निकलने के बाद पूरे मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया कि ओबीसी आए, भारतीय जनता पार्टी की सोच है,
9: और क्या सोच
11: है, इतना ही आपको वो है
9: भगवान कृष्ण
11: तो सही, सुधांशु जी आप बहुत बोल लिए, देखिए अंजना जी 20 सितंबर 2023 लोकसभा, 21 सितंबर 2023 राज्यसभा, पूर्ण बहुमत से महिला आरक्षण पास, आज तक लागू क्यों नहीं किया, सुधांशु जी से मेरी बात हो रही है, 2024 में आने चैनल पे इन्होंने कहा था 2029 से लागू करेंगे, क्या कर रहे हैं आप,
9: उसमें क्लॉज में है कि परसीमन के साथ लागू होगा,
11: कौन सा क्लॉज,
9: पढ़ो पढ़ो उसको, खड़गे
11: जी ने चिट्ठी भेजी है आपको पता है कि नहीं,
9: क्या
11: खड़गे जी ने चिट्ठी भेजी है कि 2029 से महिला आरक्षण 543 सांसद पे लागू होना चाहिए, आप कर रहे हैं हाँ या ना, इसका जवाब दीजिए
0: जी, 543
9: हाँ मैं कह रहा हूँ, उसमें लिखा है कि नहीं मेरा समर्थन साथ होना चाहिए,
11: मेरी
9: और सुनिए
0: परिसीमन लटकेगा तो नहीं होगा,
9: लिखा हुआ है कानून में,
0: कानून
9: बदलिए, छोड़ो वन थर्ड दोगे ना महिलाओं को, बोलो अपने टिकट देने में क्या समस्या, देखेंगे अभी देखेंगे, अभी दूध का दूध पानी का नहीं होगा, संविधान तो बदल दो, मैं अपना नहीं बदल,
11: 2020 में लेकर आइए ना,
9: अच्छा चलिए 2024 के चुनाव में, 24 चुनाव में कितनी महिला, 34 के चुनाव में कितनी महिला टिकट दिया था बताओ, 80 में दिया था
11: इसको हमारी महिला
9: नहीं नहीं नहीं सांसद नहीं 80 में कितना टिकट दिए थे 80 में कितना टिकट
5: जल्दी से जल्दी से
12: जी नमस्कार अंजना जी, मुझे सबसे पहले बस स्मैश द पेट्रियार्की पे ना ये बोलना है कि वहां देख लीजिए कितनी महिलाएं बैठी हैं और यहाँ देख लीजिए अगर महिला का कोई प्रतिनिधित्व हो रहा है तो यहाँ हो रहा है. दिस इज व्हाट द मेंटालिटी इज, व्हाट इज व्हाट द मेंटालिटी इज कि स्मैश द पेट्रियार्की ये लोग कहने के लिए करते और करते नहीं है. अब बात करते हैं कि अगर मनुस्मृति की ही बात करनी है तो बाकी हिंदू धर्म क्यों नहीं दिखता है. ये वही शिव है जो वही काली है जिन्होंने शिव को रोका था. ये हिंदू धर्म में है, ये वही यत्र नारस्तु पूजते ये वही है जो मनुस्मृति में है. लेकिन आपको अध्याय 3 नहीं देखना है. ये वही है जहां गार्गी मैत्री दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी पार्वती काली चंडी और ऋग्वेद में केवल एक पहली लोपा मुद्रा पहली इकलौती महिला सेंट है, महिला ऋषि जो है वो हिंदू धर्म में है. कौन से और धर्म में आप कहते हो और धर्मों की बात ना करें, क्यों और धर्मों की बात ना करें? अनुप जी आपकी आदत है, अनुप जी आपकी आदत है बीच में बोलने की,
5: शर्मा जी इनका मौका ही नहीं लगेगा, डिबेट खत्म हो रहा है. उनको दिखाइए
12: जी, आप कैसे डिनाय कर सकते हैं बाइबल को, आप कैसे डिनाय कर सकते हैं कुरान को? एंड आई कोट हियर, मैं कुरान से कोट कर रही हूँ 4.34
13: मुसलमान,
12: मैं कुरान से कोट कर रही हूँ. पत्नियाँ जो अज्ञात पालन करने वाली हो और जो पत्नियाँ ऐसी हो जो सरकाशी का तुम्हें भय हो उन्हें समझाओ और बिस्तर में उन्हें अकेला छोड़ दो और अति आवश्यक हो तो उन्हें मारो भी, ये कुरान कहती है. तो स्मैश द पैट्रियार्की क्यों नहीं आती? और मैं आपको बाइबल से कोट करती हूँ, तिमोथी 2.1 भी कोट कर देती हूँ, वो तो न्यू टेस्टमेंट है सर. मैं क्वीन मेरी स्कूल की पढ़ी हूँ, मैं क्वीन मेरी स्कूल की पढ़ी हूँ सर, बिल्कुल क्रिश्चियन स्कूल की पढ़ी हूँ. अ वुमन शुड कीप साइलेंट इन चर्चेस, वाइफ सबमिट टू योर हस्बैंड्स एज इज फिटिंग इन द लॉर्ड. ये सब है जो हम स्मैश द पैट्रियार्की की बात नहीं करते.
5: विवेक जी ऐसा प्रतीत हो रहा है, इधर एक सेंड हो गया, हो गया. इस्लाम को भी डिफेंड करने के लिए इस तरफ लोग हैं, क्रिश्चियनिटी को भी डिफेंड करने. अरे भाई हर धर्म में महिलाओं के साथ हो रहा है. आज भी अगर आप जाइएगा रोम में और चाहिएगा चर्च में जाना तो कहेंगे सिर को ढकिए. हर जगह तो डिफेंड काहे कर रहे थे?
9: डिफेंड नहीं कर रहा हूं, अभी तो डिफेंड कर रहे थे. उनका कोड गलत,
5: कौन सा वो धर्म है, कौन सी वो पार्टी है जिसमें सब कुछ एकदम सामान्य और बराबरी का अधिकार मिल गया? अरे गुरुजी हो गया,
12: उनको इस्लाम में क्यों नहीं दिखता, उनको क्रिश्चियनिटी में क्यों नहीं दिखता? स्मैश द पैट्रियार्की हिंदुत्व,
5: प्रोफेसर राजकुमार राजन बोलिए,
12: आधा आधा क्यों दिखता है?
13: अरे मैम संविधान की बात करो, संविधान पे आओ
12: सर,
13: नारी शक्ति बंधन बिल लागू करवाओ, आपको धोखा मिलेगा.
9: कॉम्प्लीमेंट करना है,
13: आपको टिकट मिलेगा, आप संसद बनेंगे, संसद बन जाएंगे, आप सांसद बनेंगी, बिल लागू करवाओ. आप अंकिता भंडारी पे बोलो, आप NCRB के आंकड़ों पे बोलो, आप 2000 साल पहले मत जाओ, आप भाजपा और RSS के चक्कर में मत पड़ो.
12: आप
5: अरे शर्मा जी
12: मनुस्मृति का जिक्र,
5: RJD समाजवादी को तो चुप ही करा दिया आज आपने.
12: इंडिया गठबंधन रिलेशनशिप में
5: बोले बोले किताब लेके आए, बोलिए ना
14: जना जी. मनुस्मृति पर बहस चल रही है, विमर्श चल रहा है, पूरा देश में एक नए विमर्श, इस पर विचार विमर्श हो रहा है. और जाहिर सी बात है कि मनुस्मृति पर जितनी भी बातें होती है अक्सर मैं देखता हूँ सत्ता पक्ष के लोग यह कह देते हैं कि यह टीका टिप्पणी जो है मिथ्या है. तो ओरिजिनल क्या है भाई, कौन यह साबित करेगा ओरिजिनल को? बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी कहा था कि सारे धर्म शास्त्रों को एक जगह कर देना चाहिए, एक पुस्तक लिखी जानी चाहिए. ऑथेंटिक ये है.
9: और
14: आज मैं मनुस्मृति पर बात हो रही है तो मैं पंडित रामेश्वर भट्ट की पुस्तक है मैं अपने साथ लेते आया हूँ.
9: किसकी है?
14: और इसमें जो उदित है, जो राहुल गांधी ने कहा
15: वो पद में पढ़ के सुनाना चाहता हूं।
9: और मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं?

0: स्मृति को क्यों जलाया था?
1: एक नहीं जलाया था,
0: क्यों जलाया था?
1: नहीं जलाया था,
0: नहीं जलाया,
1: नहीं जलाया। जलाने वाली कार्रवाई में जहां पर जलाया गया था वहां वो खड़े थे 1938 में, उसके बाद
0: ऐतिहासिक दूसरी बात सर, ऐतिहासिक तथ्य को आप मोड़ रहे हैं।
1: राजू जी एक चीज बता दे, सौ नंबर इस पे जाएंगे
0: वही तो मैं कह रहा हूँ। सरकार नहीं है,
1: मत को
0: पुस्तक के एक ही भजन बहुत सारे आ रहे हैं तो उस पर रोक लगना चाहिए।
1: अरे भाई
0: बाजार में है तो बहस होगी,
1: नहीं
0: विमर्श होगा।
1: अरे भाई
0: उसको मानना पड़ेगा आपको
1: भाई, ऐसा है
2: ये रोक लगाने वाली सरकार नहीं है सर,
1: तो ऐसा कर
2: ये रोक लगाने वाली सरकार नहीं है,
1: नहीं
2: आपकी मानसिकता है कि किताबों पे रोक लगाएगी, ये आपकी मानसिकता है कि किताबों पे रोक लगाएगी।
1: कांग्रेस पार्टी के द्वारा सरकार के अंदर होने पर संस्कृति मंत्रालय से
3: छोटी छोटी न्यूज पे जेल में डाल देती है।
4: एक मिनट
3: वालों को जेल में डाल देती
4: है। एक मिनट सरकार छह साल के बच्चे को
5: आखिरी के दो दो कमेंट्स लेते हैं, दो दो लाइन आलोक जी आप बोल लीजिए, आलोक जी आप जल्दी से बोल लीजिए, दो लाइन जल्दी से,
2: क्योंकि घर पे लोग कुछ कर रहे थे तो इमरजेंसी कौन लाया था, कौन सरकारों की क्या बात कर रहे हैं आलोक जी आप, इतनी पार्शियल एमनीजिया में आप मत जिए प्लीज।
6: दुर्भाग्य ये है कि 22 दिन तक संसद को फेस नहीं कर सकते, अंकिता भंडारी पे जवाब नहीं दे सकते, एनसीआरबी के आंकड़ों को पढ़ नहीं सकते, नीति आयोग के ऊपर एक शब्द नहीं बोल सकते, राम मंदिर की डकैती के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते, पेपर लीक होते रहे, होते हो आज, होते हो कल, होते हो। दुर्भाग्य यह है कि आज वर्तमान में इस सरकार को नहीं जीना है, उसको केवल और केवल पिछले इतिहास के पन्नों को उठा कर रखना।
5: छोटा सा बस इतना ही बड़ा
7: लगता है, सिर्फ इन्हीं की बात को राहुल गांधी को समझना चाहिए था कि वर्तमान की बात करनी है। आलोक शर्मा जी जाके राहुल गांधी जी को ज्ञान दीजिए, ज्ञानदेव पाणे बन के, कि वर्तमान की बात करो, उसकी बात मत करो। और अगर पीछे जाओगे तो मैं एक और फैक्ट बोल देना चाहता हूं, विशक्राफ्ट एक्ट का नाम सुना है? ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट था, कोई बुराई नहीं थी, चर्च के कहने के ऊपर बाकायदा पार्लियामेंट ने एक्ट पारित करके किसी भी महिला को चुड़ैल घोषित करके जिंदा जला
2: दिया।
3: वर्तमान में जी लो, वर्तमान में
4: एक मिनट,
3: वर्तमान में जी लो, हिंदू मुसलमान करना छोड़ दो। मैं सिर्फ एक लाइन कहता हूँ, दुनिया में एकमात्र हिंदू संस्कृति है जिसने ईश्वर में स्त्री को स्थान दिया है, दुनिया में हर संस्कृति धर्म सभ्यता में ईश्वर सिर्फ पुरुष है, कोई स्त्री तत्व तो नहीं, हमारे अर्धनारीश्वर की परिकल्पना है, हमारे यहाँ शिव शक्ति है, लक्ष्मी नारायण है, सीताराम है, राधे श्याम है, बताओ हैसियत हो तो कोई बताए, मैं चैलेंज करके पूछता हूँ।
5: चलिए यही पर इस बहस का अंत करते हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर चीखा चिल्लाहट अंत में होने लगी, पूजा अपनी जगह है, बराबरी का अधिकार महिलाओं को मिले इस पर फोकस होना चाहिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: इस अभियान से उनका मनोबल गिरना और फोर्सेस का मनोबल बढ़ने का एक बहुत क्लियर बेंचमार्क ये है कि 4-5 घंटे की फायरिंग के बाद वो कैंप लगा।
1: तो हमने उन एरियाज को डोमिनेट किया जहां पे पहले कभी उनका डोमिनेंस माना जाता था।
2: आज कोबरा कमांडोज के साथ हम वही तस्वीर, वही हकीकत आपको दिखाने वाले।
3: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है। कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
4: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।
5: एक को एक
6: ईश्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: अरे उधर
2: उधर किधर
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों के दौरे के जो पहला चरण है उसमें उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंच गए। एयरपोर्ट पर उनका बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। हम उस समय की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का उज्बेकिस्तान का ये चौथा दौरा है और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी करेंगे। ताशकंद के बाद प्रधानमंत्री मोदी बिश्केक के लिए रवाना होंगे जहां पर वो एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, सेंट्रल एशिया स्ट्रेटेजी, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, ट्रेड के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। उज्बेकिस्तान और उसके बाद किर्गिज गणराज्य उनका दौरा है। मुख्य एजेंडा व्यापार है, निवेश को बढ़ाना है, ऊर्जा सहयोग को बेहतर करना है, रक्षा सुरक्षा मुख्य एजेंडे में, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग भी है। अब बात करते हैं राहुल गांधी के दलित कार्ड के साथ, जहां पर उन्होंने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस पर हमला किया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने हल्द्वानी में हुए शुद्धिकरण को भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दलित समुदाय का अपमान बताया।
1: भले ही हल्द्वानी में खड़गे के दौरे के बाद हुए शुद्धिकरण की ये तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हो, लेकिन आज जब राहुल गांधी ने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा तो कांग्रेस अध्यक्ष के अपमान का मुद्दा भी उठाया।
2: कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी है, मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट है, वो रामलीला ग्राउंड में हल्द्वानी में जाते हैं भाषण देने और वहां पर शुद्धिकरण होता है। और उनकी पार्टी का उदाहरण बिहार के चीफ मिनिस्टर मांझी जी, वो मंदिर में जाते हैं और वहां शुद्धिकरण होता है। ये करता कौन है? ये बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं। सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग ये करते हैं और ये क्राइम है। राजस्थान के मंदिर जाते हैं।
1: राहुल गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण की याद दिलाई। एनडीए के नेता जीतन राम मांझी के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण का भी जिक्र किया और मामले में FIR दर्ज करने की मांग की।
2: शुद्धिकरण होता है, जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में, उन पर FIR लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, आरएसएस के लोगों ने शुद्धिकरण किया है। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ FIR SC एक्ट में FIR दर्ज किया।
1: जवाब में एनडीए के नेता कांग्रेस राज की याद दिला रहे हैं। दलितों के विकास के लिए कांग्रेस ने क्या किया वो बता रहे हैं।
3: खड़गे जी नामांकन केंद्र के कमरे के बाहर रहेंगे। वी नारायण स्वामी पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री ये इस प्रकार से चप्पल उठाएंगे तो कांग्रेस पार्टी कैसा मानसिकता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और हरियाणा में, हरियाणा की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा, उनका क्या मान सम्मान हो रहा है हम सब जानते हैं। बैनर पोस्टर्स उनको गायब कर दिया गया है। तो ये कांग्रेस पार्टी का असल चाल चेहरा चरित्र है। ये दलित समाज दलित सम्मान की बात आपको सिर्फ राजनीति के लिए याद आती है?
4: जो लोग आज इस बात की चिंता कर रहे हैं, देश ने आजादी के बाद लंबे समय तक मौका तो उन्हीं को ही दिया था ना। आज किस मुंह से वो कह रहे हैं कि आज भी समाज में भेदभाव मिटा नहीं है? कई उदाहरण उन्होंने गिनाए। अगर ये उदाहरण आज वो गिना रहे हैं तो आप बताइए, एक लंबे समय तक आजादी के बाद और लगभग 4.5-5 दशक तक तो निरंतरता में कांग्रेस की सरकारें रही, उसके बाद भी कांग्रेस के सहयोग की सरकारें रही, उसके बाद भी समाज में अगर भेदभाव अगर होता रहा तो कहीं ना कहीं नींव को मजबूत करने में सफल तो ये लोग भी नहीं रहे।
1: उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुद्धिकरण का मुद्दा राज्यसभा में गूंज चुका है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी।
5: लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए।
6: माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज।
1: उधर शुद्धिकरण के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर सियासत का आरोप लगा रही है।
7: लेकिन उत्तराखंड में कोई नहीं जानता कि खड़गे जी की जाति क्या है।

0: खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज।
1: उधर शुद्धिकरण के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर सियासत का आरोप लगा रही है।
2: लेकिन उत्तराखंड में कोई नहीं जानता कि खड़गे जी की जाति क्या है, वो तो वहां पर जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए और वहां पर गंदगी की गई, वो एक शुद्ध

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
4: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
5: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
3: मतलब
5: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
6: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
5: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।

0: आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा हमेशा कांग्रेस ने किया है दलितों का अपमान। नेता विपक्ष ने हल्द्वानी में शुद्धिकरण का उठाया था मामला। आरक्षण विवाद पर भिड़े मोदी के दो मंत्री, एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन में जीतन राम मांझी के उपकोटा की मांग को चिराग पासवान ने किया खारिज, दोनों ने एक दूसरे का मांगा इस्तीफा। उज्बेकिस्तान के दौरे पर ताशकंद पहुंचे पीएम मोदी का शानदार स्वागत, दो दिन के बाद बिश्केक के एससीओ समिट में होंगे शामिल। नेपाल आपदा में बढ़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 675 शव बरामद, लगभग 2500 लोग लापता, चीन में बनी अस्थायी झील के फटने की आशंका बरकरार। नए विवाद में फंसे स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना शो में बिहारी और कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाने का आरोप, बिहार के मंत्री मिथिलेश तिवारी बोले अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: 30 जनवरी 2024 को 201 कोबरा और पुलिस बलों को और सीआरपीएफ की 150 बटालियन को वहां पर एक कैंप स्थापित करने का आदेश दिया गया।
1: नक्सल का बहुत ही कोर एरिया था और हम लोग रात को 1 बजे निकला था तेतालगुड़ियम के लिए।
2: कोबरा को पहले टास्क ये दिया था कि पहले जाकर आप डेप्थ प्रोटेक्शन लगा देंगे, उसके बाद बाकी फोर्स आएंगे।
1: कॉर्डन लगा ही रहा था तभी भारी मात्रा में नक्सली मूवमेंट देखा गया था।
3: फायरिंग स्टार्ट हो गई है, आप फायरिंग का जवाब फायरिंग से देंगे।
2: तो जैसे हम लगाए तो उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया।
4: आप अपने सेक्शन को लेकर डोमिनेंट हाइट पे आइए, मैं इस एरिया को कवर कर रहा हूँ।
2: 60 आदमी के ऊपर उन्होंने 300 आदमी 300-400 नक्सली जो है हम लोग घेर के मारने की कोशिश किया।
3: बाकी लोग फायरिंग कंटिन्यू रखेंगे, कंटिन्यू।
0: ये लगभग 4-5 घंटे फायरिंग चली है, तो आप सोच सकते हैं किस लेवल का या किस स्तर का वो अटैक था।
1: चार घंटा फायरिंग चलने के बाद जाकर के वो लोग पीछे हटा।
0: उनका नुकसान हुआ और उनको ये समझ में आ गया कि ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस आई हैं उनसे वो सफल नहीं हो सकते हैं।
2: चाहे हमारा जान चला जाएगा, हम कुर्बान दे देंगे अपने देश के लिए, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे।
5: नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, मैं हूं श्वेता सिंह। बंदूकों के शोर से जिन जंगलों का सन्नाटा टूट जाया करता था, आज वहां पर एक नए भोर की रोशनी नजर आ रही है। जिस नक्सल मुक्त भारत की तरफ बढ़ने की बात हम कर रहे हैं, वो नक्सल मुक्त भारत संभव हो पाया है हमारे सैनिकों के रक्त से, उनके बलिदान से। किस तरीके से यह हासिल हुआ है, किस तरीके से ये कार्रवाई चली है, कैसे रहे हैं वो ऑपरेशंस जिन्होंने तय किया है कि नक्सलवाद की जड़ें हमारे देश से उखड़ जाएंगी, आज कोबरा कमांडोज के साथ हम वही तस्वीर, वही हकीकत आपको दिखाने वाले हैं। मिट्टी के लिए अपनी सांसें, जिनको फूंक बराबर लगती है, देश के लिए अपना लहू, जिनको पानी के समान लगता है, एक वचन के लिए जिनको अपने प्राण की भी परवाह नहीं होती, ये देश से किए उस वादे को पूरा करने की कहानी है। कहानी घने जंगलों के बीच जड़े जमाए नक्सलवाद को उखाड़ने की, कहानी देश की मिट्टी के कण कण पर अधिकार स्थापित करने की।
6: क्या आप सभी इस चुनौती के लिए तैयार हैं?
5: कहानी वचन की, वीरता की, वीरगति की, कहानी वंदे मातरम की। मिशन सामान्य था, स्पष्ट था, पर बिल्कुल भी आसान नहीं था। गहरे नक्सल प्रभाव वाले एक इलाके में ऑपरेटिंग बेस स्थापित करना। जिस इलाके को नक्सली अपना गढ़ कहते हैं, उस इलाके में जाकर अपनी जगह को स्थापित करना, FOB यानी फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उन इलाकों के बीच में अगर आप जाकर एक FOB एस्टैब्लिश करते हैं, तो इसका सीधा मतलब होता है कि आपने नक्सली के गढ़ में सेंध लगा दी। पर ये कितना कठिन ऑपरेशन होता है, ये किसी कमांडो से पूछिए।

0: घना जंगल, दुर्गम रास्ता, नहर नाले, जंगली जानवर, विषैले जीव और उनके बीच बस मिशन की ओर बढ़ते जाने का जुनून,
1: छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ का मौसम होता है। अभी आप देखेंगे ये अभी जो बरसात का मौसम है इसमें जितने वो नाले हैं वो बरसाती नाले हैं। कुछ नाले ऐसे भी होते हैं कि अगर आप अभियान में बारिश हो रही है आप उसको क्रॉस कर जाएं और कुछ घंटे लग जाएं तो वापस आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे। वाइल्ड बोर की इंजरी जो मैंने खुद देखा है, वाइल्ड बोर की इंजरीज हैं, तेंदुए जब गाँव वालों से हमने बात की तो उन्होंने केजी ऑपरेशन में बताया गया था कि सर वहाँ आपको तेंदुए भी मिल सकते हैं। वो एक अपना चैलेंज है बिकॉज जब आप ऐसे टेरेन में जा रहे हैं जहाँ पर आपका आप स्लिप हुए तो आप कई सौ फीट नीचे गिर सकते हैं और सामने से कोई जंगली जानवर दौड़ के आ जाए। सांप मेजर इशू रहता है, हालांकि मुझे लगता है कि कोबरा और सांपों का कुछ आपस में दोस्ती है।
2: हालात बद से बदतर हों तो कोबरा उतनी ही निखर के सामने आती है, तो ये जो भावना है ये अपने आप में कॉन्फिडेंस भी देती है और मुझे लगता है कि ये भावना, ये कॉन्फिडेंस ही कोबरा को कोबरा बनाती है।
0: किसी भी क्षेत्र से नक्सलवाद के खतरे को मिटाने की प्रक्रिया का निष्कर्ष होता है वहां सैन्य कैंप स्थापित करना और दुश्मन ऐसा होने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है।
1: वो जो एरिया है जिसमें अगर दुश्मन को ये छूट है कि वो खुलेआम घूम सकता है, खुलेआम गांव वालों से बात कर सकता है, खुलेआम सिविलियंस को ये बता सकता है कि वह लोकतांत्रिक तौर पर दुनिया सरकार से बेहतर है, ये ज़रूरी होता है कि उस एरिया पर हमारा वर्चस्व हो और हम वहाँ प्रेजेंट हों। इसलिए प्रेजेंट हों, एक तो मिलिट्री टर्म्स में कि हमारे लिए जो भी हमारे अभियान हैं उनकी जो दूरी है वो बहुत कम हो जाए। बहुत सोच समझ से कैंप लगाए गए थे, जैसे जैसे कैंप लगते गए हम दुश्मन का जो प्रभाव का इलाका था उसको छोटा करते गए।
2: उस सस्टेन्ड प्रेजेंस से हुआ ये कि हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम था नक्सलियों के विरुद्ध एक्ट करने में वो रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम हुआ और जो एक सस्टेन्ड लॉजिस्टिकल सपोर्ट था, जो एक इशू आता था पहले दूरी की वजह से, वो इशू भी सॉर्ट आउट हुआ और उससे हमारी जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस में जो कैपेबिलिटी थी वो बहुत बढ़ी।
0: जिस जगह पर कोबरा कमांडोज को FOB स्थापित करने का जिम्मा दिया गया था वो जगह बेहद अहम थी। ये दुर्दांत नक्सली हिडमा के गांव के ठीक पड़ोस का गांव था और नक्सली क्रूरता का गढ़, लेकिन उससे भी बढ़कर ये कमांडोज के लिए बलिदान की मिट्टी थी। एक ऐसी जगह जो उनके 22 साथियों के रक्त से रंजित थी।
1: अप्रैल 2021 में हमारे साथियों 22 साथियों ने वहां शहादत दी थी और टेकलगुडियम पुवर्ती ये इस ऐसा इलाका है जहां पर डेकेड से इनका वर्चस्व रहा है क्योंकि वो उनका वो कंट्रोल वाला इलाका माना जाता था।
3: हमारा प्रस्तावित कैंप है वो हमारी ओन पोजीशन से लगभग 7.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पड़ेगा। अब हमारा CGRL एवं 51 mm मोटार की पोजीशन हम 254 हाइट पर रखेंगे। क्या आप सभी इस चुनौती के लिए तैयार है?
0: गहरे नक्सल प्रभाव वाले एक इलाके में ऑपरेटिंग बेस स्थापित करना, FOB यानी फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस को सेटअप करने का मतलब है उस इलाके में सुरक्षा बलों की स्थायी मौजूदगी कायम करना जिसे नक्सली आजाद क्षेत्र घोषित करते थे।
4: उस दिन हम लोग इकट्ठा हुआ था अपना 201 बटालियन का तीनों कंपनी बेडरे कैंप में। बेडरे कैंप से हम लोग रात को 1 बजे निकला था टेकलगुडियम के लिए।
0: जनवरी की रात करीब 1 बजे कमांडोज कैंप से निकले। कोई पक्की सड़क नहीं, कोई तैयार रास्ता नहीं, घने जंगल के बीच कोबरा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे थे।
5: जंगल में ऑपरेट करना सर मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, काफी नाले, सड़क भी नहीं है, मतलब काफी मुश्किल है सर। जो टेरन है यहाँ का उबड़ खाबड़ है, जानते भी नहीं है। किसी भी नई जगह पर कोई भी डिप्लॉय होगा तो वहाँ का जो टेरन है वो भी नहीं जानते हैं सर। तो जंगल में चलना एक नक्सलियों के बीच में, मतलब दुश्मनों के बीच से जाना, ये काफ़ी मुश्किल है सर।
4: तो दूर भी काफ़ी दूर भी था जाते समय हमको बीच रास्ते में वेट भी करना पड़ता था क्योंकि मतलब दूसरा स्टेट फोर्स भी सपोर्ट में रहता है हमारा, तो उनके लिए हमको थोड़ा बहुत वेट करना भी पड़ा था।
6: कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन कोबरा, एक एलीट स्पेशल फोर्स, लेकिन अगर हम केवल कोबरा भी देखें ना तो बहुत सारी समानताएं आ जाती हैं, यानी इनका काटा पानी भी नहीं मांगता है। ये जिन जंगलों में ऑपरेट करते हैं वहां के राजा होते हैं, इनके सामने किसी की कोई बिसात नहीं होती है। यही होते हैं कोबरा कमांडोज, यहां तक कि इससे भी कहीं ज्यादा। ये वो कमांडो है जो जंगल में रास्ता नहीं ढूंढते बल्कि बनाते हैं। जहां नक्सलवाद की बंदूक गरजती है वहां कोबरा का जवाब पहुंचता है। जहां दुश्मन जंगल को अपनी ढाल समझता है लेकिन भूल जाता है ये जंगल ही कोबरा का घर है। कोबरा कमांडो सीआरपीएफ की वो ताकत है जो जंगल से उठने वाले खतरे के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये केवल जंगल में ऑपरेशन नहीं करते, ये जंगल को किताब की तरह पढ़ते हैं, कहानी की तरह समझते हैं और फिर जंगल में आवाजों की तरह घुल जाते हैं। ये वो हैं जिनके सामने शिकारी भी शिकार नजर आता है। कदमों की आहट से खतरे को भांपना, घने जंगल में दुश्मन की मौजूदगी पहचानना और सही वक्त पर सटीक कार्रवाई करना, यही है इनकी खासियत।
7: कोबरा सीआरपीएफ की एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है जिसका आप अगर ये पूछे तो कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन है। ये सीआरपीएफ की एक पार्ट है जिसको स्पेशलाइज्ड फोर्सेस के इसमें रखा गया है तर्ज में, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो अलग से इसलिए करवाई जाती है। जो भी कोर नक्सल एरियाज है, हमारा काम है उस एरिया में जाना, उस एरिया में एफओबी एस्टैब्लिश करना और जो भी ऑपरेशन हमें हमारे सीनियर्स के द्वारा बताए जाते हैं उसको एग्जीक्यूट करना।
8: हम हटेंगे नहीं पीछे, क्योंकि हमारा खून में नहीं है हम पीछे हटना, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग भी ऐसे ही है और हमारा टीम कमांडर्स भी, हमारा ऑफिसर भी है और हमारा सिखलाई वैसे है। जो सीआरपीएफ से हम यहाँ कमांडो में आए तो हमारा 3 महीने का सिखलाई यही है कि हम लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारा जान चला जाएगा हम कुर्बान दे देंगे अपने देश के लिए, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे।
6: दुनिया जिसे जंगल लाल आतंक का गढ़ समझती है वो कोबरा की बैटलफील्ड है और इसी रण क्षेत्र में एक खास मिशन लिए ये कोबरा कमांडोज पहुंचे थे तेकुल गुडेर। रात भर चलने के बाद उस इलाके में जहां नक्सलियों के कथित गढ़ के बीच सुरक्षा का कैंप स्थापित करना था, कमांडोज ने वहां पहुंचते ही इलाके को सुरक्षित करने के लिए कॉर्डन लगाना शुरू किया ताकि निर्माण का काम शुरू हो सके। गांव के कुछ लोग आकर पूछताछ करने लगे।
8: उसमें पहले हमने कुछ नक्सली पकड़ा भी था, हमारा कंपनी ने पकड़ा था। पकड़ने के बाद उन्होंने बताया कि कुछ नहीं है, हम जाएंगे, हम गांव वाले हैं। तो उसमें 2-3 आदमी चला गया था जब अटैक शुरू हुआ, उस टाइम उन्होंने देर से निकल भी गया था, भाग गया था।
6: अच्छा, ये अटैक से पहले आप बता रहे हैं कि उनको पकड़ा गया था?
8: जी, पकड़ा गया तो उन्होंने बोला गांव वाले हैं, तब हमने छोड़ा है। अब बाद में पता चला कि वो भी नक्सल थे।
6: सालों का परिश्रम और ट्रेनिंग कोबरा कमांडोज को इतना पारखी बना देता है कि वो आम ग्रामीण और नक्सलियों के बीच का फर्क समझ लेते हैं। पर उनके पास सतर्क होने के लिए बस कुछ ही पल थे, या शायद उतना भी नहीं।
9: अफवान रुद्रा, अफवान, फायरिंग स्टार्ट हो गई है, आप फायरिंग का जवाब फायरिंग से देंगे और आगे की तरफ मूव करते रहेंगे।
4: तो अर्ली मॉर्निंग होने के बाद हम लोग कॉर्डन लगाए, कॉर्डन लगा ही रहा था तभी पूर्वती साइड से बहुत भारी मात्रा में नक्सली का मतलब मूवमेंट देखा गया था। तो हम लोग को अलर्ट कर दिया गया था हम लोग का ऑफिसर द्वारा, उसके बाद हम लोग अलर्ट रहे, उसके बाद ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दिया था।
9: अल्फा वन कॉलिंग रुद्रा, अल्फा वन।
10: रोजर सर,
9: आप अपने सेक्शन को लेकर डोमिनेंट हाइट पे आइए, मैं इस एरिया को कवर कर रहा हूँ।
6: टीम में सबसे आगे चल रहे थे पवन।
0: पवन स्काउट की भूमिका में थे, जिसकी जिम्मेदारी एक ऑपरेशन में सबसे अहम होती है। रास्ते में सबसे पहले खतरा उसी को दिखाई देता है और सबसे पहले खतरे का सामना भी वही करता है।
1: स्काउट जो होते हैं वो सबसे आगे चलते हैं, वो सबसे अलर्ट लोग माने जाते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन सबसे अच्छा होता है। तो अगर मैं 30 लोगों की टीम में अगर किसी एक आदमी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानूंगा तो वो स्काउट होता है। तो पवन स्काउट था और कोई भी काम बताया जाए बहुत ही रोबस्ट, बहुत वेरी फिजिकली फिट मैम। दुश्मन ने आके सिविलियन के तौर पर ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया क्योंकि गांव आसपास ही है मैम वहाँ पर। तो और उसके बाद ये कुछ अंदेशा हमारी टीमों को भी हुआ कि ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है मैम, बट सिविलियन होते हैं तो सिविलियन के साथ में आपको बहुत ही सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना होता है। कुछ शायद हमारे जवानों ने सिविलियन से पूछा भी कि आप इधर मत आइए और दूर चले जाइए। तो उसके बाद जब फायर फाइट होना स्टार्ट हुआ तो फिर वो मैं भारी मात्रा में फायर आया क्योंकि बहुत नज़दीक शायद उनकी बड़ी टुकड़ी जो भी उनकी जो आप मिलिट्री जो फॉर्मेशन थे वो PLGA CRC सभी थे जैसा रिपोर्ट किया गया। और फिर वो भीषण फायर फाइट स्टार्ट हुआ और लगभग 1.25 घंटा के बाद में पवन को पहली गोली लगी और उसकी शहादत हुई।
0: एक स्काउट ये समझकर जानकर चलता है कि टीम पर आने वाले हर खतरे का सामना सबसे पहले वही करेगा।
9: पवन कॉलिंग रुद्र, पवन अपने स्कॉट पवन को गोली लगी है, आप दो कमांडो से लेके फटाफट यहाँ पे आगे आए, बाकी लोग फायरिंग कंटिन्यू रखेंगे, कंटिन्यू।
0: पवन भी ये जानते थे जब पहली गोली उन्हें लगी तो उनके साथी से रुका नहीं गया। घायल पवन खुले क्षेत्र में थे और सामने से भारी फायरिंग आ रही थी।
1: पवन को इंजरी हुई थी और पवन की इंजरी फेटल थी मैम, ये अधिकारी ने जज कर लिया था इनकी फेटल है। तो उनके जो बड़ी थे मलकीत ने बोला कि सर मैं जाता हूँ पवन को लेने के लिए, और अधिकारी ने बोला गया कि वो ओपन में है, तू जाएगा और हैवी फायर आ रहा है तो गोली लग जाएगी। और मुझे अच्छी तरह याद है मलकीत ने कंपनी कमांडर को बोला कि सर वो बड़ी है, जाना तो पड़ेगा, और वो गया और मलकीत को भी गोलियां लगी।
0: यही तो है भारतीय सैन्य परंपरा के संस्कार कि कोई भी साथी पीछे ना छूटे। नक्सलियों की ओर से भीषण गोलीबारी का जवाब कोबरा कमांडोज की ओर से बखूबी दिया जा रहा था, लेकिन नक्सलियों ने पूरी तैयारी कर रखी थी, एड ले रखी थी और कमांडोज के पास छुपाव की गुंजाइश नहीं थी।
4: कोभार कुछ नहीं होता है उसमें, हम तो पेड़ के सहारा से ही सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा। पेड़ को आड़ बना के खुद को बसप करनी है।
6: इन जंगलों को नक्सली अपने हथेलियों की तरह पहचानते हैं क्योंकि इन्हीं इलाकों में वो ऑपरेट करते हैं। जहां तक हमारे कमांडोज का सवाल है, वो किसी भी जगह पर अचानक एक ऑपरेशन लॉन्च करने में सक्षम होते हैं, लेकिन एक सीधा सा एडवांटेज अगर आप ऐसी परिस्थितियों में देखें तो एक नक्सली के पास हो जाता है जिसे मालूम है कि किस इलाके में क्या है, किस इलाके में क्या खतरा है, किस इलाके में क्या बचाव है, क्या एडवांटेज है, और वहां पर उन परिस्थितियों को अपने हक में मोड़ लेना इन कमांडोज की खासियत है।
0: दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी के बीच कंपनी कमांडर लखबीर सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गए। बैरल ग्रेनेड लॉन्चर के छर्रे सीधे उनके सर पर लगे, सर से खून बहने लगा।
9: लखबीर सिंह, स्टे विद मी।
1: उसके लगभग 4-5 मिनट बाद जो हमारे कंपनी कमांडर थे लखबीर, उनको सर में बीजेल की इंजरी हुई। हालांकि बीजेल की इंजरी हुई और उनको बोला गया कि आप ज्यादा चोट लगी है, आप पीछे आ जाइए।
9: डोंट यू क्लोज योर आईज मैन,
0: साथ ही बार बार कहते रहे कि वो इवैक्यूएट हो जाएं, लेकिन उन्होंने मोर्चा छोड़ने से साफ इनकार कर दिया।
10: Therapy, therapy, therapy.

0: खुले में होने के कारण कंपनी को एक के बाद एक नुकसान पहुंच रहा था। शुरुआती मुठभेड़ में पवन के बाद एक और कमांडो देव सिंह को भी गोली लग गई।
1: एम्बुलेंस सर, कमांडो गोली लगी है।

0: देवेंसी तमिलनाडु के रहने वाले हैं मैम. वो बटालियन में शायद उनका दूसरा टेन्योर था ऑफ सीनियर, तो बटालियन में लगभग 6-7 महीने पहले ही आए थे. पवन के लगभग 15-20 मिनट बाद देवेंसी को इंजरी हुई मैम, और फिर उनकी शादी हुई.
1: इस तरह के ऑपरेशन में कोबरा कमांडोज के लिए स्थिति और भी कठिन इसलिए होती है क्योंकि उन्हें नक्सलियों का नाश भी करना है और गांव वालों को बचाना भी है.
2: पहले प्रथम में उन्होंने क्या किया कि ह्यूमन शील्ड बना के लेके आए. अच्छा. ताकि हम गांव वालों के ऊपर फायर करेंगे तो वो कुछ उनका नुकसान हो जाएगा, था वो हम फायर नहीं कर पाएंगे, वो फायर करें हम फायर ना कर पाए वैसे करके. फिर जब उन्होंने फायर स्टार्ट किया तो गांव वाला भाग गया. अच्छा. तो गांव वाला भाग गया तो हमने भी फिर फायर किया तो हमने बचाव के लिए तो बचाव किया तो फिर हमने अच्छा सा लड़ा है, उसमें हमने पीछे नहीं हटा.
1: हर एक ऑपरेशन अपने साथ चुनौतियां लेकर आता है, लेकिन चुनौतियों से पार पाना ही हमारे जवानों की सबसे बड़ी खासियत होती है. लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए वंदे मातरम.
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.

0: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
1: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
2: लायन डेट नट बाइट्स।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
2: Ye pillar kabhi nahi tootega. Roongta Steel TMT se bana.
3: Roongta nahi, to ghar strong nahi. Roongta Steel TMT bar, ekdam solid.
4: Papa.
5: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया है।
5: हाँ, ओले ला भाई मेरा बैट। वो अभी तो ठीक हुआ तू।
6: बिल्कुल चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: आज तक ना होता तो हमारी बात देश दुनिया तक नहीं पहुंचती।
3: हम लोग को बड़े चैनल का सहयोग नहीं मिला था, हम लोग गरीब छात्र लोग हैं, तो आज आप लोग का सहयोग मिला है तो पूरा भारत और पूरा दुनिया में यहाँ की आवाज गूंज रही है।
2: खबरों के साथ पक्षपात नहीं।
4: 19 साल के छात्र साहिल रजाक ने दावा किया उन पर सुरक्षा बलों ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी एक आंख की रोशनी जाने की नौबत आ गई।
2: हर बात देश के सामने।
3: अंजना मैम, सबसे पहले तो हम लोग आवाज को बुलंद किए, इसके लिए आपके पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं।
2: मुद्दा कोई भी हो, सोए हुए सिस्टम को जगाता है आज तक।

खड़गे को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा हमेशा कांग्रेस ने किया है दलितों का अपमान, नेता विपक्ष ने हल्द्वानी में शुद्धिकरण का उठाया था मामला। आरक्षण विवाद पर आमने सामने मोदी के दो मंत्री, रिजर्वेशन में जीतन राम मांझी के वर्गीकरण की मांग को चिराग पासवान ने किया खारिज, दोनों ने एक दूसरे का मांगा इस्तीफा। उज्बेकिस्तान के दौरे पर ताशकंद पहुंचे पीएम मोदी का शानदार स्वागत, दो दिनों के बाद बिश्केक के एससीओ समिट में होंगे शामिल। न्यूयॉर्क के वन वर्ल्ड वन ह्यूमैनिटी कार्यक्रम में शामिल संघ प्रमुख मोहन भागवत, कहा धर्म भले ही अलग अलग लेकिन मानवता सिर्फ एक।

0: अस्थायी झील के फटने की भी आशंका बरकरार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: फायरिंग स्टार्ट हो गई है, आप फायरिंग का जवाब फायरिंग से देंगे।
1: तो जैसे हम लगाए तो उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया।
0: आप अपने सेक्शन को लेकर डोमिनेंट हाइट पे आइए, मैं इस एरिया को कवर कर रहा हूँ।
2: लगातार चलती गोलियों के बीच अब तक 20 जवान घायल हो चुके हैं, लेकिन कोबरा की टीमें अपनी पोजीशन पर डटी रही।
3: 3 से 4 घंटा लगातार फायरिंग चला था। उसके बीच अपना भी मतलब एक दो इंजोर भी हो रहा था, उसके बीच तो उनको भी हम लोग सेफ जगह के लिए निकल रहा था और लगा फायरिंग तो चल ही रहा था।
2: लगभग 5 घंटे तक ताबड़तोड़ गोलियां चलती रही। नक्सली सिर्फ संख्या में ज्यादा नहीं थे, उन्होंने हमला पूरी तैयारी के साथ किया था। जंगल खेत, छोटे छोटे मेड़ और बीच में नाले, पीछे पहाड़ था, सामने गांव और जंगल, और इसी नाले का फायदा उठाते हुए नक्सलियों ने नाले की दिशा से आगे बढ़कर BGL फायर यानी बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से हमला किया था।
3: बाद में तो पता चला कि 800 से ज्यादा ही था,
4: 800 से ज्यादा।
3: उस टाइम हमारे नजर में तो हम लोग लग रहा था कि 300 से 400 नक्सली होगा।
4: हाँ।
3: बाद में हम लोग को पता चल रहा था कि ड्रोन कैमरा वगैरह से इसे शूट देके 800 से 900 नक्सली था।
2: पहला प्लान था सुरक्षा बलों की छोटी छोटी टीमों को हमला करके आइसोलेट करना। नीति साफ थी, एक छोटी टीम को घेरो, उसे अलग थलग करो और फिर भारी संख्या में हमला करो।
1: हमारा कमांडो सेल लमसम 300 अप्रोक्सीमेटली 300 है, 3 कंपनी मिला के। तो 3 कंपनी डिप्लॉयड हुआ था दूर दूर, और उन्होंने जो अटैक किया हमारा जो 2 टीम है, 2 टीम के ऊपर किया था। 2 टीम का नफरी था 50-60 आदमी।
4: अच्छा,
1: 60 आदमी के ऊपर उन्होंने 300 आदमी 300-400 नक्सली जो है हम लोग घेर के मारने की कोशिश किया था।
2: लेकिन नक्सली बड़ी गलती कर बैठे थे। इस बार उनके सामने 201 कोबरा बटालियन थी।
1: खून में नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम हटेंगे नहीं पीछे, क्योंकि हमारा खून में नहीं है हम पीछे हटना, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग भी ऐसे ही है और हमारा टीम कमांडर्स भी, हमारा अफसर भी है और हमारा सिखलाई वैसे है।
2: आखिरकार नक्सलियों को पीछे हटना पड़ा। 3 जवानों की शहादत के बावजूद कोबरा कमांडोज का मिशन नहीं रुका। तेकुलगुडे में FOB स्थापित हुआ और करीब 15 दिनों के भीतर पूवर्ती में भी अगला कैंप खड़ा कर दिया गया।
5: इस अभियान के बारे में एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि इस अभियान से उनका मनोबल गिरना और फोर्सेस का मनोबल बढ़ने का एक बहुत क्लियर एक बेंचमार्क ये है कि 4-5 घंटे की फायरिंग के बाद अपने जवानों की शहादत हुई, हमारी 3 जवानों की, 201 कोबरा और 150 बटालियन CRPF के। उसके बावजूद वो कैंप लगा और उससे कुछ दिन बाद 15 दिन के अंदर हमने अगला कैंप जो पूर्ती कैंप है हमने वो कैंप भी लगा दिया।
2: तेकुलगुडे में सिर्फ गोलियां नहीं चली बल्कि नक्सलियों के गढ़ और सुरक्षा बलों के संकल्प का मुकाबला हुआ। कोबरा ने सिर्फ हमला नाकाम नहीं किया बल्कि उस इलाके में अपनी मजबूत मौजूदगी कायम की और बस्तर की जमीन के नीचे गाड़ दिया बस्तर के लाल आतंक को हमेशा हमेशा के लिए। जंगल, जहां छोटे से छोटा खतरा भी बेहद जहरीला हो सकता है, बेहद खतरनाक, और ऐसे ही खतरों का सामना इन जंगलों में करते हुए ये कमांडोज आगे बढ़ते हैं। चाहे इन घने जंगलों की आड़ से कोई खूंखार जंगली जानवर इन्हें देख रहा हो या फिर किसी और पेड़ की आड़ से वो नक्सली जिनके खात्मे के लिए प्रणबद्ध ये कमांडोज आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन जंगलों में भालू, तेंदुआ, बाघ, ये चीजें सामान्य होती हैं, और सोचिए कि जब आप एक दिन के लिए नहीं कई कई दिन के लिए जाते हैं तो छोटे से छोटा कीड़ा आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती होता है जिन जगहों पर आप कुछ देर के लिए सुस्ताने के लिए भी रुके।

0: ये वो इलाका है जहां जंगल सिर्फ जंगल नहीं होता।
1: तू एक अल्फा, उसे एक, हमारे कमांडर पे गोली लगी है। नीड एम्बुलेंस सर।
0: हर पहाड़ी, हर पगडंडी, हर रास्ता अपने अंदर एक खतरा छिपाए रहता था।
2: अल्फा वन कॉलिंग रुद्र, अल्फा वन।
0: और ऐसे इलाकों में सबसे बड़ा एडवांटेज उसी के पास होता है जो इस जंगल के अंदर रहते हो, और खतरा उसके लिए जो बाहर से जंगल के अंदर दाखिल हो रहा हो।
3: कोबरा इज ऑल अबाउट मोटिवेशन। कोबरा एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है, और ये बात कोबरा के हर जवान, हर कमांडो, हर अधिकारी के मन में ऐसी घर कर गई है, और शायद यही प्रेरणा देती है कि हालात कैसे भी हों, कुछ भी हों।
4: नहीं, हमारा एक लोकेशन नहीं है, हमारा कंस्टेंट विजिलेंस। जैसे ही हमको बारिश में भी जाना पड़ेगा, किचन में भी जाना पड़ेगा, नाला में भी जाना पड़ेगा। अभी जैसे केजीएच ऑपरेशन हुआ था, उसमें गर्मी भी झेलना पड़ा, तो हम किसी भी क्लाइमेट में, किसी भी वातावरण में और किसी भी जंगल में हम चले जाएंगे, जितना भी दूर हो उसमें हम ये पानी या खाना अपना आराम का परवाह नहीं करेंगे।
0: जंगल शहर के लिए जंगल हो सकता है, लेकिन एक नक्सली के लिए उसका घर और दफ्तर दोनों। उसके पास अपने इलाके की पूरी जानकारी रहती है, किस रास्ते पर कम खतरा, किस पर ज्यादा, किस जगह एम्बुश लगाना है और कहां से बच भागना। यही लोकल नॉलेज उसे सुरक्षा बलों के मुकाबले बढ़त देती थी। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां, गहरे नाले और अब्बू झमाड़ जैसे दुर्गम इलाके जहां पहुंचना ही अपने आप में चुनौती होती है। नक्सली इन्हीं इलाकों को अपनी ढाल बनाते थे। जंगल का भूगोल इनके लिए नक्शा कम और हथियार ज्यादा होते थे।
5: सबसे पहले जो हमारी चुनौती होती है वो वहाँ टेरेन का चुनौती होती है। जो चीज टेरेन में हम जानते नहीं है, उसको वहाँ हम गए नहीं हैं, उस टेरेन में हमें ऑपरेशन करना होता है, तो वो एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। दूसरा चुनौती होती है जो दुश्मनों के द्वारा लगाया गया आईडी हमारे ऑपरेशंस में सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हैं हमारे मूवमेंट को, तो वो सबसे बड़ी चुनौती होती है। दूसरा, तीसरा होता है जो हमारे बेसिक इम्यूनिटीज़। अगर हम 3 दिन के लिए ऑप्स पे निकल रहे हैं, अगर वहाँ 4 दिन या 5 दिन होता है, तो उस कंडीशन में हमारे बेसिक इम्यूनिटीज़ की पानी की समस्या होती है। तो जब पानी की समस्या हमें आती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हमें पानी को पीना नहीं, हमें पानी को बचाना है।
6: तो एक एवरेज ऑपरेशन के लिए निकलते हुए एक कोबरा कमांडो क्या क्या लेकर जाते हैं?
7: हम सबसे पहले हम जरूरी चीज पानी बॉटल।
6: पर पानी के बॉटल तो इतने सारे देख रही हूँ मैं यहाँ पे।
7: मैम, हमें अंदर जब भी हम ऑपरेशंस में जाते हैं तो हमें वाटर सोर्स का कंफर्मेशन नहीं होता कि हमें अंदर वाटर सोर्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे।
6: अच्छा,
7: तो इसलिए हम ऑलरेडी अपने साथ वाटर सफिशिएंट मात्रा में वाटर कैरी करते हैं।
6: ओके,
7: एटलीस्ट 10 लीटर 8 लीटर वाटर हम कैरी करते हैं।
6: अच्छा, इसीलिए 3 बॉटल्स दिख रहे हैं।
7: जी मैम, इसको हम कमांडो बॉटल करते हैं स्पेशली। हाँ, हाँ। और ये इनबिल्ट फिल्टर के साथ आती है। अच्छा। इसको DRDO द्वारा डेवलप किया गया है।
6: अच्छा, ये मतलब गंदा पानी फिल्टर हाँ। कर सकता है।
7: जैसे हम किसी रिवर से पानी लेते हैं हाँ। तो वो एटलीस्ट क्लीन नहीं होता है।
6: हाँ।
7: तो इसके थ्रू हम उसको भर के फिल्टर कर सकते हैं।
6: अच्छा,
7: ड्राई राशन रखते हैं जिसको हम कभी भी
6: जल्दी कुक करने वाले नूडल्स भी हैं
7: बिना कुक करे खा सके।
6: अच्छा
7: जी मैम,
6: ये चूड़ा गया,
7: ये चूड़ा, चना,
6: चना रोस्टेड चना है,
7: रोस्टेड चना है,
6: इससे ताकत भी आता है। ये मुड़ी हो गया, राइस पफ्स
7: और मैगी पैकेट्स।
6: ठीक है, नूडल्स हो गए जो गरम पानी में डाल के आप खा सकते हैं। ये क्या?
7: ये मैम हम चूल्हा बोलते हैं इसको।
6: हाँ।
7: ब्यूटेन है।
6: तो ये छोटा सा ये जल जाएगा उधर?
7: ये जल जाता है, बिकॉज ऐसे मौसम में बारिश में हम लकड़ी का यूज नहीं कर सकते। इसको मशीन बोलते हैं।
6: हाँ।
7: ये बर्तन की तरह काम आता है, इसमें हम कुक भी कर लेते हैं।
6: पर
7: ये हमारा राशन पानी हो गया
6: हफ्ते भर का।
7: जी मैम। देन मैम ये हमारे कमांडो रोप होती है। इसके मल्टीपर्पज बेनिफिट्स हैं, लाइक जब भी हम किसी ऑब्स्टिकल नाले वगैरह क्रॉस करते हैं इसकी हेल्प होती है।
6: ओके,
7: लाइक स्ट्रेचर वगैरह फॉर्मेट करना है।
6: हाँ।
7: तो इसका हम यूज कर सकते हैं।
6: अच्छा,
7: ये मैम रेन

0: ये होता है मैम जंगल फार्मूला,
1: ओके,
0: मॉस्किटो रेपेलेंट का काम करता है ये।
1: अच्छा
0: जी मैम।
1: ये आपका लाइटर?
0: लाइटर मैम, चूल्हा जलाने के लिए। ये है मैम जीपीएस।
1: अच्छा।
0: ये मैम हमारा बीपी जैकेट है।
1: हाँ।
0: बुलेट प्रिवेंटिव के लिए।
1: अब तो हल्का हो चुका है ना पहले के मुकाबले, जो आप लोग पहना करते थे, अब उसके मुकाबले,
0: पहले के मुकाबले
1: भारी अभी भी है पर उसके मुकाबले हल्का हो चुका है।
0: मैम हम कुछ एक्स्ट्रा मैम एमुनेशन वगैरह कैरी करते हैं।
1: तो ये टोटल वजन मिला के आपका वेपन, ये खाने पीने पानी
0: अराउंड 25 हो जाता है।
2: जंगल के बाद नक्सलियों के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज था लोकल कनेक्ट। आम लोगों के बीच घुल मिल जाना ये सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता था।
3: ठेकेलगुड़म वाले एरिया को देखेंगे तो वहाँ गांव हैं बहुत मैम। वो गांव अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बिकॉज दुश्मन की तरह हम लोग अंधाधुंध और बिना सोचे समझे फायर नहीं कर सकते हैं। हमारे पास फायर पावर होता है मैम, सरकार के द्वारा दिया गया इतना फायर पावर है कि किसी भी दुश्मन को पीछे करने या उनको नुकसान पहुंचाना बहुत आसान है। लेकिन जहां गांव वालों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वो गांव वाले नागरिक हैं देश के और उनकी सुरक्षा का हमें ध्यान रखना होता है।
2: लोकल सपोर्ट के बाद आती थी इनकी सबसे खतरनाक रणनीति, असिमेट्रिक वॉरफेयर। नक्सली हमेशा आमने सामने की लड़ाई से बचते रहे। इनका तरीका ही था घात लगाओ, हमला करो और भाग जाओ। इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो 1990 से 2010 के बीच ही इस संघर्ष में 6000 से ज्यादा लोगों की जान गई। और अगर साल 2000 से 2025 तक के आंकड़ों को देखें तो साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल यानी SATP के मुताबिक इस दौरान नक्सल हिंसा में कम से कम 12,102 लोगों की मौत हुई। लेकिन वक्त के साथ भारत सरकार ने भी इस एडवांटेज को तोड़ने की रणनीति बदली, सुरक्षा एजेंसियों को फुल सपोर्ट दिया। ऑपरेशन सिर्फ नक्सलियों को खोजने तक सीमित नहीं रहे बल्कि इंटेलिजेंस के आधार पर ट्रेस, टारगेट और न्यूट्रलाइज की रणनीति अपनाई गई और देश के लिए मिशन बन गया नक्सल मुक्त भारत।
1: एक ऑपरेशन का खत्म होना खतरे का खत्म हो जाना नहीं है, इसीलिए एक ऑपरेशन जब खत्म होता है तो हमारे कमांडोज अपने अगली चुनौती की तरफ, अगले मिशन की तरफ निकल जाते हैं। नक्सल मुक्त भी संपूर्ण रूप से हम तभी हो सकते हैं जब नक्सल दोबारा न पनपने पाए।
2: जंगल के खतरों और उसके आगे मिशन जीत का। सुरक्षा एजेंसियों ने रियल टाइम डेटा शेयरिंग और अपनी रणनीति पर काम करना शुरू किया। कोबरा को नए हथियार और गैजेट्स से लैस किया गया।
1: समय के साथ बहुत कुछ बदला है और बदला है एक कोबरा कमांडो का गियर। सर, इसकी फंक्शनैलिटी और एक ऑपरेशन में इसका जो इस्तेमाल होता है वो बताएं।
4: वैसे तो कोबरा बेसिकली गोरिल्ला वारफेयर के लिए एक रेज की हुई फोर्स है और उसमें कन्वेंशनल वॉर काफ़ी कम होता है, लेकिन जब भी आमने सामने की लड़ाई होती है तो उसके लिए सबसे इफेक्टिव हमारी चीज़ें ये बीआर हेलमेट और ये मेरी बीपी जैकेट। बीपी जैकेट स्टार्टिंग में बहुत हैवी होती थी क्योंकि मेटेलिक प्लेट्स होती थी, आजकल इसमें लाइट वेट प्लेट्स आने लगी हैं। और उसके बाद में मेरा VHF सेट मुझे अपने साथियों से कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है। इसकी रेंज ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर है और अगर उससे ज़्यादा कम्युनिकेट करना है, उससे ज़्यादा डिस्टेंस के लिए, तो उसके बाद उसके लिए हमारे पास मैन पैक्स होते हैं।
1: अच्छा।
4: उसके बाद हम टैक्टिकल ग्लव्स होते हैं हमारे हाथों को झाड़ियों से, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए।
1: रात में आप लोग जो नाइट विजन अब है उससे कितनी क्लैरिटी और एक ऑपरेशन में कितना फ़ायदा?
4: काफ़ी फ़ायदा होता है मैम, अगर थोड़ी सी भी मूनलाइट या स्टार लाइट है ना तो ये हमारे लिए दिन जैसा काम करता है। अच्छा। जैसे हम दिन में अपनी आंखों से देख पाते हैं ऑलमोस्ट वैसे ही काम करता है, बस थोड़ी सी लाइट चाहिए इसको।
2: CRPF, कोबरा, BSF, राज्य पुलिस, ग्रेहाउंड, DRG जैसी फोर्सेस ने नक्सलियों के गढ़ में अपनी मौजूदगी बढ़ाई। पुराने पुलिस स्टेशनों को मजबूत किया गया, नए सुरक्षा कैंप बनाए गए, 2 FOB पोस्ट के बीच की दूरी कम की गई और उन इलाकों में फोर्स की पहुंच बनाई गई जहां कभी नक्सलियों का एक तरफा दबदबा था।
5: ऑपरेशन बेस है, FOB बोलते हैं, तो ये टेकेलगुड़म शुरू किया था, उसके बाद नक्सली का बैकफुट हो गया, खास करके जो PLGA जो उनका जो बड़ा है संगठन है नक्सली का, तो उनका लास्ट अटैक यही है जो अमर ऊपर किया था।

0: के बाद वो उन्होंने कहीं अटैक नहीं कर पाए।
1: अच्छा,
0: तो उसमें जो उन्होंने बैकफुट हो गया उसके बाद उन्होंने कहीं अटैक नहीं कर पाए, उसके बाद हमारा कैंप लगातार लगना शुरू हो गया।
2: सिर्फ बंदूक से नहीं, सड़क और नेटवर्क से भी नक्सलियों के एडवांटेज को खत्म किया गया। दूर दराज के इलाकों में सड़कें बनी, मोबाइल टावर पहुंचे, बैंक और एटीएम खुले, यानी जिस भौगोलिक अलगाव को नक्सली अपनी ताकत बनाते थे वही अलगाव धीरे धीरे खत्म किया गया।
3: बहुत बड़ा फर्क आ गया है, और जैसा कि मैंने कहा कि जब से ये रणनीति अपनाई गई उससे अगर मैं बात करूँ रोड कनेक्टिविटी की, मैं बात करूँ मोबाइल कनेक्टिविटी की, पहले शायद जो गवर्नेंस और डेवलपमेंट जो था उसको, उसके मेजर्स को पहुंचने में इन ग्रामीणों तक, स्थानीय नागरिकों तक, उन कोर एरियाज़ में जैसे दिक्कतें होती थी, उस वजह से जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ थी वो भी शायद सुरक्षित वातावरण में काम नहीं कर पा रही थी, एक चुनौती थी। लेकिन जैसे जैसे फोर्सेस का सस्टेन्ड प्रेजेंस वहाँ पे इंश्योर हुआ वैसे वैसे ये गतिविधियाँ भी बढ़ी। रोड कनेक्टिविटी में तो सी चेंज आया है और आज उसकी वजह से हालात ऐसे हैं कि जो कोर एरियाज के जो ग्रामीण हैं उनका जो एक्सेस है मार्केट्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, जहां पहले वो कल्पना नहीं कर पाते थे, आज वो एक्सेस बहुत ही सीमलेस हो गया है।
2: हालांकि इस इलाके की एक एक सड़क और एक एक इमारत के पीछे हमारे जवानों के बलिदान की अनगिनत कहानियां हैं, और उसी की वजह से आज जंगल से होकर सड़क जा रही, मोबाइल नेटवर्क के लिए शहर नहीं जाना पड़ता है, जहां कभी टेकलगुड़म में नक्सल बंदूक के जरिए जनताना सरकार चलाते थे, आज वहीं सीआरपीएफ बच्चों के लिए स्कूल चला रही है। इलाके की तस्वीर बदल रही है। ये भी विडंबना है कि आजादी की बात करने वाले नक्सली क्षेत्र रहे बस्तर में 93 गांवों में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ एनकाउंटर की लड़ाई नहीं रही, ये उस पूरे सिस्टम को बदलने की लड़ाई बनी जिसमें जंगल, भूगोल, स्थानीय नेटवर्क और डर नक्सलियों की ताकत हुआ करते थे। इस डर को ही कोबरा कमांडो ने इस पूरे क्षेत्र से खत्म कर दिया। लोग अब असल मायने में आजाद। हमारे कोबरा कमांडो के लिए ये टास्क भले खत्म हो गया हो लेकिन नई जिम्मेदारी के साथ वो अब भी तैयारी में है। कभी जिस जमीन को नक्सली अपना सबसे बड़ा बैटलफील्ड और आजाद क्षेत्र मानते थे, आज उसी जमीन पर सुरक्षा बल अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि जंगल को जानना ताकत हो सकती है लेकिन जंगल में लगातार मौजूद रहना, उसे बदल देना और उसी जमीन पर अपना ऑपरेशनल एडवांटेज बना लेना, यही असली गेम चेंजर है, और कोबरा इस खेल के राजा है।
3: गहरी रातों के राही हम, सूने जंगल के रहबर, दुश्मन छिपके बच न सकेगा, मारेंगे बिल में घुसकर, कीट पतंगे छिप जाते हैं सुनकर के फुफकार हमारी, जीवन हंता गरल दंत में, आंखें हैं प्रलयंकारी, रग रग में है तड़ित तीव्रता, सांसों में तूफान भरा, सिर पर कफन बांध कर निकला, नाम है जिसका कोबरा।
1: देश के केवल एक पुकार पर ये अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। समूचे देश का सपना नक्सल मुक्त भारत, और उसके लिए हमारे ये कमांडोज तत्पर, तैयार और आज भी हर चुनौती को करते हैं स्वीकार। अभी के लिए इतना ही। अभिमन्यु शर्मा, कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

हमारे सीएलपी राजस्थान के मंदिर जाते हैं, बीजेपी के नेता शुद्धिकरण करते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी है, मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट हैं, वो रामलीला ग्राउंड में हल्द्वानी में जाते हैं भाषण देने, और वहां पर शुद्धिकरण होता है। और उनकी पार्टी का उदाहरण बिहार के चीफ मिनिस्टर मांझी जी, वो मंदिर में जाते हैं और वहां शुद्धिकरण होता है। ये करता कौन है? ये बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं, सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग ये करते हैं, और ये क्राइम है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: और अब बड़ी खबर आपको देते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत इस समय न्यूयॉर्क में मौजूद हैं और वहां पर वो वन वर्ल्ड वन ह्यूमैनिटी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अपने संबोधन में मोहन भागवत ने कहा कि भले ही धर्म अलग अलग हो लेकिन इंसानियत और मानवता एक ही है, सत्य एक है और इंसानियत उसी सत्य का परिणाम है। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुत्व ये नहीं है कि मुसलमानों को भारत से बाहर करो, और अगर कोई हिंदू ये सोचता है कि भारत में मुसलमान नहीं होना चाहिए तो हो सकता है कि वो हिंदू ही ना हो। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि भारत में अगर कोई हिंदू ये सोचता है कि मुसलमान यहां नहीं होने चाहिए तो फिर वो हो सकता है कि वो हिंदू ही ना हो।
2: In 2018 in Delhi, I had a lecture and Muslim brothers were also there and they asked me the question, you are a Hindu organization, you say Hindu Rashtra, what about us Muslims? Would you drive us out? I said, no, that is not Hindutva. If any Hindu thinks that there should be no Muslim in Bharat, he will not remain Hindu. If you want to call yourself Hindu, you must believe that all paths are leading to the same. And every human has a dignity. There is no difference between human beings.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो देशों के दौरे के पहले चरण में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले भारतीय समुदाय के लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। ये वो तस्वीरें जब भारतीय समुदाय के लोग वहां पर पहुंचे।

0: तरफ भारत और उज़्बेकिस्तान की संस्कृति एक साथ देखने को मिली, जहाँ पर जो वाद्य यंत्र हैं वो अलग अलग देशों के थे जो प्रस्तुत किए गए।
1: तो कैसे ना नजर किसमें।

0: और अब रुक में छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

काठमांडू के रनवे पर लैंड करता भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा मालवाहक विमान इस बात का प्रमाण है कि जब विपदा आती है तो भारत फर्स्ट रिस्पोंडेंट बनकर आगे आता है। पड़ोसी देश नेपाल सदी की सबसे बड़ी त्रासदी की चपेट में है, ऐसे में भारत नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। भारतीय वायुसेना के विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से उड़ते हैं और नेपाल के काठमांडू में जरूरी सामग्री पहुंचाकर वापस आ जाते हैं और फिर अगली खेप की तैयारी में जुट जाते हैं। नेपाल में तबाही इस कदर हुई है कि बाजार, गांव, शहर सब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। जरूरी सामान का संकट है, आपातकालीन दवाएं, मूलभूत सुविधाओं का अभाव हो गया है। ऐसे में भारत एक के बाद एक खेप भेज रहा है ताकि नेपाल के आपदा पीड़ितों की सहायता हो सके। तबाही की इन तस्वीरों के बीच इंसान पूरी तरह से लाचार नजर आ रहा है। बस कोशिश जारी है जिंदगियों को बचाने की। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दुनिया के कई देशों के नागरिक नेपाल में लापता हैं। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन पूरी ताकत से चल रहा है। भारत समेत कई देशों ने तलाशी अभियान में सहायता की बात कही, लेकिन नेपाल सरकार ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि साल 2015 के भूकंप में विदेशी मदद से रेस्क्यू करने का अनुभव ठीक नहीं था, इसलिए तलाशी अभियान में विदेशी मदद नहीं चाहिए। नेपाल सरकार ने साफ किया है कि तलाशी में मदद नहीं चाहिए, लेकिन बेली पुल बनाने और सुरंग में रेस्क्यू के लिए भारत से मदद मांगी गई है। नेपाल ने सहायता मांगी तो भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर हिंडन से फिर उड़ा और एक्सपर्ट टीम को काठमांडू पहुंचा दिया। इसमें वो टीम शामिल है जो सुरंग में रेस्क्यू करने में माहिर है। ये टीम अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। इसके अलावा 11 सदस्यीय मेडिकल टीम भी भारत ने नेपाल भेजी है। नेपाल के रसुआ नुआकोटी में हर तरफ तबाही का मंजर है। ऐसे मुश्किल वक्त में भारत लगातार राहत और बचाव के लिए मदद भेज रहा है। नेपाल की इस त्रासदी के बीच विदेशों में बसे नेपाली और भारतीय मूल के लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं ने नेपाल के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत राशि जुटाई। दक्षिण पूर्वी लंदन के प्लम स्टेट स्थित एक मंदिर में रक्षाबंधन कार्यक्रम को नेपाल के बाद पीड़ितों और बचाव अभियान के लिए फंड जुटाने से जोड़ा गया। यानी नेपाल की त्रासदी को लेकर मदद की मुहिम देश की सीमाओं से बाहर भी पहुंच चुकी है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

न्यूयॉर्क के एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा धर्म भले ही अलग लेकिन इंसानियत एक, बोले हिंदुत्व का मतलब मुस्लिमों को बाहर करना नहीं। उज़्बेकिस्तान दौरे पर ताशकंद पहुंचे पीएम मोदी का शानदार स्वागत, भारतीय समुदाय से मुलाकात, दो दिन के बाद बिश्केक के एससीओ समिट में होंगे शामिल। खड़गे को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा हमेशा कांग्रेस ने किया है दलितों का अपमान, नेता विपक्ष ने हल्द्वानी में शुद्धिकरण का उठाया था मामला। आरक्षण विवाद पर आमने सामने मोदी के दो मंत्री, रिजर्वेशन में जीतन राम मांझी के वर्गीकरण की मांग को चिराग पासवान ने किया खारिज, दोनों ने एक दूसरे का मांगा इस्तीफा। नेपाल आपदा में बढ़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 675 शव बरामद, लगभग 2500 लोग लापता, चीन में बनी अस्थायी झील के फटने की आशंका बरकरार।

0: नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। आज की कहानी किसी नेता, पार्टी या चुनाव की नहीं है, आरक्षण की है। आरक्षण जिसे कोई सामाजिक न्याय का जरिया मानता है तो कोई मेरिट से जोड़कर देखता है, लेकिन आखिर भारत में आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी, किन लोगों को आरक्षण मिला और इसके पीछे संविधान की सोच क्या थी, और आज जब आरक्षण को लेकर नई मांगे उठ रही हैं, तो क्या इसके मौजूदा स्वरूप पर फिर विचार की जरूरत है। आज की कहानी में हम आरक्षण को भावनाओं से नहीं, तथ्यों और संविधान के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। आज कहानी आरक्षण की।
1: हम लोग जो है साथी एकदम ठीक कहा है कि कलम चलाना छोड़ दिया है, बंदूक चलाना सीखेंगे।
2: गोली मार दो, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे।
3: जब तक हमारे समाज, हमारे देश में इनइक्वालिटी रहेगी, रिजर्वेशन भी एक जरिया रहता है कि जितना इक्वलाइज हो सकता है करने का।
0: आरक्षण को समझना आसान नहीं है, इसके पीछे संविधान है, सामाजिक असमानता की एक लंबी बहस है और कई ऐसे फैसले हैं जिन्होंने समय समय पर देश की आरक्षण व्यवस्था को बदला है। इसलिए इस पूरी कहानी को हम एक एक पड़ाव के साथ समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस वक्त देश में आरक्षण पर हो रही राजनीति क्या है, जिसने फिर से आरक्षण पर नई बहस छेड़ दी।

0: जो आगे बढ़ चुके हैं, जिनके पास पैसा है, उन्हें निकाल दीजिएगा। जहां पिछड़ापन है उनके लिए आरक्षण दिया जा सकता है।
1: आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा।
2: आरक्षण ना भाजपा हटाएगी, ना किसी को हटाने देगी।
3: आरक्षण को खत्म कर दिया है, उस आरक्षण पर डाका डाला है।
4: नौकरियां दी जाती हैं, उसमें न्यूनतम मार्क्स डिसाइड किए जाएं, ताकि ताकि योग्य लोग वहां बैठ सके। शिक्षा में आरक्षण नहीं, संरक्षण दिया जाए।
5: सुधार नहीं होगा, कोई यहां से नहीं हटेगा।
6: मैं नहीं मानता हूं कि 75 साल में बाय सिंपली गिविंग सम रिजर्वेशन आप उस इनइक्वालिटीज को दूर कर सके।
7: तक अधिकार नहीं मिलेगा, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारा आरक्षण हटाओ,
8: गोली मार दो, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे।
6: अगर आप जब तक इक्वालिटी नहीं ला सकेंगे, तब तक कैसे सोशल जस्टिस कर सकते हैं?
9: जिसे संविधान ने सामाजिक बराबरी और प्रतिनिधित्व का रास्ता बनाया, वही आरक्षण आज एक बार फिर देश की सियासत के केंद्र में है। आरक्षण के नाम पर कहीं अधिकारों की हुंकार है, तो कहीं व्यवस्था को बदलने की मांग, कहीं आरक्षण बचाने की आवाज बुलंद हो रही है। तो कहीं आरक्षण हटाने की मांग आज एक बार फिर देश की सियासत के केंद्र में है। आरक्षण के नाम पर कहीं अधिकारों की हुंकार है, तो कहीं व्यवस्था को बदलने की मांग, कहीं आरक्षण बचाने की आवाज बुलंद हो रही है। तो कहीं आरक्षण हटाने की मांग को लेकर सड़क, आरक्षण के नाम पर कहीं अधिकारों की हुंकार है, तो कहीं व्यवस्था को बदलने की मांग, तो कहीं व्यवस्था को बदलने की मांग, कहीं आरक्षण बचाने की आवाज बुलंद हो रही है। तो कहीं आरक्षण हटाने की मांग आज एक बार फिर देश की सियासत के केंद्र में है। आरक्षण के नाम पर कहीं अधिकारों की हुंकार है, तो कहीं व्यवस्था को बदलने की मांग, कहीं आरक्षण बचाने की आवाज बुलंद हो रही है। तो कहीं आरक्षण हटाने की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है। नागरिक अधिकारों को कमजोर करने के आरोप है, तो कहीं विपक्ष पर आरक्षण के नाम पर सियासी रोटियां। संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता।
10: छीन करके वोट बैंक की राजनीति के लिए औरों को देने का खेल किया कांग्रेस ने, इतने प्रयास, ये

0: जानते बूझते किए। जब हमें मौका मिला तो हमने पहला काम किया, उन्होंने जो एससी एसटी से छीन करके मुस्लिम कोटा निकाला।
1: मैं हूं एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण ना भाजपा हटाएगी ना किसी को हटाने देगी, ये मोदी का गारंटी।
2: यानी एक तरफ आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ओर से आरक्षण को जारी रखने का स्पष्ट राजनीतिक संदेश। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी आरक्षण के मुद्दे पर सीधे सामने नहीं आ रही, बल्कि अपने कथित प्रॉक्सी संगठनों के जरिए आरक्षण खत्म करने की जमीन तैयार कर रही है। बीजेपी का पलटवार भी उतना ही तीखा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आरक्षण पर सवाल उठाने से पहले समाजवादी पार्टी को अपने सियासी अतीत के पन्ने पलट कर देखने चाहिए।
3: आरक्षण ये कोई भीख नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे आरक्षण, चाहे बीसी का आरक्षण हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, या जो भी आरक्षण है, उस आरक्षण को खत्म कर दिया है।
4: आदरणीय मोदी जी के रहते हुए आरक्षण पर कोई भी संशोधन और आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता।
5: आरक्षण का फायदा होना चाहिए और आरक्षण हटाने का भी कोई अधिकार नहीं है। आरक्षण हटाने की मांग संविधान विरोधी है और हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आरक्षण को सपोर्ट करने वाली सरकार है।
2: आरक्षण की इसी सियासत में अब सरकारी नौकरियों के खाली पद भी बड़ा मुद्दा बन गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। खड़गे का आरोप है कि एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को खत्म करने की साजिश की जा रही है। लेकिन आरक्षण की ये लड़ाई सिर्फ सियासी बयानों और संसद की बहस तक सीमित नहीं है, सड़क पर भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। लखनऊ में आरक्षण हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। सवर्ण मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा और बदलाव की मांग उठाई।
6: हम लोग रिफॉर्म सत्याग्रह कर रहे हैं, रिजर्वेशन रिफॉर्म सत्याग्रह कर रहे हैं।
7: आरक्षण में संशोधन हो और पुलिस हमें जबरदस्ती उठा के ले जा रही है, हमें गोली मार दिया जाए लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे।
2: यानी एक तरफ आरक्षण के खिलाफ आक्रोश और असंतोष है तो दूसरी तरफ आरक्षण के समर्थन में भी सियासी और सामाजिक लामबंदी तेज हो रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरक्षण को खैरात नहीं संवैधानिक अधिकार बताया है।
8: ये आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है, आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी ना किसी कारणवश भेदभाव हुआ है।
2: तो तस्वीर के दोनों पहलू साफ है। एक तरफ आरक्षण को सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकार बताकर इसे बचाने की आवाज बुलंद हो रही है, तो दूसरी तरफ सवाल उठ रहा है कि करीब 8 दशक पुरानी आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा का वक्त आ गया है या नहीं।
9: हमारी लड़ाई योग्यता के लिए है, योग्यता ही चयन का आधार हो और संविधान के समक्ष जब हमने स्वीकार किया धर्म मूल वंश जात के आधार पर विभिन्नता नहीं करेंगे तो उनके समक्ष ब्राह्मण क्या क्षत्रिय क्या वैश्य क्या शूद्र का सभी समान है, हम समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं।
2: लेकिन ये बहस आज की नहीं है। मंडल आयोग से लेकर प्रमोशन में आरक्षण, क्रीमी लेयर से लेकर एससी एसटी सब कैटेगरी और आरक्षण की समीक्षा मांग तक आरक्षण हर दौर में सियासत की धुरी बना रहा है। कभी आरक्षण ने सरकारों की नींव हिलाई, कभी चुनावी समीकरण बदले और कभी समाज के अलग अलग वर्गों को आमने सामने ला खड़ा किया।
10: संविधान का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? इक्वालिटी। अगर आप जब तक इक्वालिटी नहीं ला सकेंगे तब तक कैसे सोशल जस्टिस कर सकते हैं? तो ये इक्वालिटी लाने में आपको बहुत ही लंबा समय लगेगा और मैं नहीं मानता हूं कि 75 साल में बाय सिंपली गिविंग सम रिजर्वेशन आप उस इनइक्वालिटीज को दूर कर सके।
2: और अब एक बार फिर वही सवाल सियासत के कटघरे में खड़ा है, क्या आरक्षण सामाजिक बराबरी हासिल करने का जरूरी हथियार है या फिर करीब 80 साल के अनुभव के बाद आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा का वक्त आ गया है।
11: समता और समानता, राइट टू इक्वालिटी, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है? बहुत सारे लोगों को वही अपॉर्चुनिटी नहीं है जो दूसरे लोगों को है, तो एक थोड़ा सा एक इक्वलाइजेशन के तरफ से रिजर्वेशन भी आया है।
2: आरक्षण अब सिर्फ नौकरी या दाखिले का सवाल नहीं रह गया है, ये सवाल है प्रतिनिधित्व का, सामाजिक न्याय का, संवैधानिक अधिकार का और सत्ता में हिस्सेदारी का। और शायद यही वजह है कि आरक्षण की लड़ाई सिर्फ सियासत की लड़ाई नहीं है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को तय करने वाली ऐसी बहस है जिसका असर आने वाले वक्त की राजनीति पर भी दिखाई देगा।
12: तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि भारत में किन लोगों को और किस वजह से आरक्षण दिया गया है। सबसे पहले बात अनुसूचित जाति यानी SC की। ये वो समुदाय है जिसके बारे में कहा जाता है कि सदियों तक छुआछूत और भेदभाव का सामना करना पड़ा। समाज में उन्हें सबसे नीचे रखा गया, कई जगहों पर मंदिर में जाने की इजाजत तक नहीं थी, पानी के कुएं अलग थे, बस्तियां अलग थीं और शिक्षा और रोजगार के मौके भी सीमित थे। ये कहा जाता है कि आजादी से पहले और आजादी के बाद भी इन समुदायों को लंबे समय तक सामाजिक और शैक्षणिक भेदभाव झेलना पड़ा, इसीलिए संविधान ने इन्हें अनुसूचित जाति यानी SC के तौर पर मान्यता दी और शिक्षा, सरकारी नौकरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण दिया ताकि इन्हें भी आगे बढ़ने का बराबर मौका मिल सके। दूसरी कैटेगरी है अनुसूचित जनजाति यानी ST की। इसमें आदिवासी जनजातीय समुदाय आते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से पहाड़ी, जंगल या देश के दूर दराज इलाकों में रहते आए हैं। अब सवाल यह है कि इन्हें आरक्षण क्यों दिया गया? इसकी एक बड़ी वजह रही सामाजिक और भौगोलिक दूरी। इन इलाकों तक लंबे समय तक अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़क, रोजगार और दूसरी जरूरी सुविधाएं आसानी से नहीं पहुंच पाई, इसीलिए इन समुदायों को भी मुख्य धारा के बराबर अवसर देने और विकास की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। तीसरी बड़ी कैटेगरी है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC। अब इसे समझना थोड़ा दिलचस्प है। OBC में ऐसे समुदाय आते हैं जो SC या ST में शामिल नहीं है लेकिन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े माने जाते हैं, यानी यहाँ सिर्फ आर्थिक स्थिति नहीं बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन भी महत्वपूर्ण आधार है। और अब बात EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की। ये आरक्षण SC, ST और OBC से अलग है। इनमें उन लोगों को शामिल किया गया है जो इन आरक्षित वर्गों में नहीं आते लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, यानी पहली बार आरक्षण का आधार सामाजिक या शैक्षणिक पिछड़ापन नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति बनी। सीधी भाषा में कहें तो EWS आरक्षण का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग के लोगों को भी शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर देना है। आरक्षण की आज की स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले उस फैसले तक जाना होगा जब संविधान निर्माताओं ने SC ST को आरक्षण देने का रास्ता तैयार किया। आखिर आजादी के बाद दलितों और आदिवासियों को आरक्षण की जरूरत क्यों महसूस हुई? संविधान में इसे कैसे जगह मिली और कब से ये लागू हुआ? सिर्फ नौकरी और शिक्षा ही नहीं बल्कि लोकसभा, विधानसभा में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए। संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में इसकी व्यवस्था की गई। तो समझिए SC ST आरक्षण की ये पूरी कहानी।

0: आजाद मुल्क में कोई बड़े सवाल हल नहीं हो सकते जब तक कि आम जनता का उसमें पूरा हल करने में सहयोग न हो और मदद न हो। क्योंकि पहला फर्ज आपका यह है, हमारा और आपका, हर एक का, कि हिंदुस्तान की खिदमत कुछ न कुछ करें।
1: एक देश, एक संविधान, एक लोकतंत्र। लेकिन आजादी के वक्त सवाल सिर्फ देश को आजाद कराने का नहीं था, सवाल ये भी था कि क्या आजाद भारत में हर नागरिक को बराबरी का हक मिलेगा, क्योंकि दावा किया जाता है कि सदियों से समाज का एक बड़ा तबका ऐसा था जिसे बराबरी का दर्जा नहीं मिला था। और इस मुद्दे पर तब संविधान सभा में जोरदार बहस होती थी। संविधान सभा के कुछ सदस्य कहते थे कि कई दशकों से समाज का एक वर्ग छुआछूत से परेशान है, सार्वजनिक जगहों पर भेदभाव से परेशान है, लाखों लोगों को सही शिक्षा नहीं मिल पा रही, रोजगार और सामाजिक अवसरों के दरवाजे बंद हैं, और दूसरी तरफ देश एक नए संविधान की तरफ बढ़ रहा था। यहीं से शुरू हुई उस व्यवस्था की नींव जिसे आज हम आरक्षण के नाम से जानते हैं।
2: उन्होंने जो 141 दिन खाली कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट को डिबेट किया, वो डिबेट में आपको लगता है कि उनको देश के लिए और देश के भविष्य के लिए कितनी चिंताएं थी, कितनी सोच थी उनकी लंबी। आर्टिकल 16(4) पर बहुत जबरदस्त डिबेट हुई ऑन 30th November 1948। लोकनाथ मिश्रा जी थे, वो मानते थे कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन करके हम उनको नुकसान कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग थे जो कि रिजर्वेशन की फेवर में थे, और कुंजरू साहब थे, पंडित कुंजरू, उन्होंने तो बोला कि रिजर्वेशन आप दो पर 10 साल या 20 साल तक लिमिट करो। इसकी जो एडवाइजरी कमेटी बनी थी, उस एडवाइजरी कमेटी में रिजर्वेशन इशू वाज डिफीटेड बाय 1 वोट। तो एडवाइजरी कमेटी डिड नॉट रेकमेंड इट, कुड नॉट रेकमेंड, बट जब ये इशू, मसला आया, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया और जब चर्चा हुई, तब सब मेंबर ने बोला कि नहीं, रिजर्वेशन तो होना चाहिए, और वो रिजर्वेशन का प्रोविजन आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 4 पास हो गया।
1: दरअसल आरक्षण की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस दौर में जाना होगा जब संविधान बनाया जा रहा था, क्योंकि SC यानी अनुसूचित जाति और ST यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण सिर्फ नौकरी में सीटों का बंटवारा नहीं था, इसके पीछे मकसद था ऐसे समुदायों को बराबरी का मौका देना जो लंबे समय से सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे थे। 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपना संविधान स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, यानी आजाद भारत ने अपने नागरिकों से एक संवैधानिक वादा किया, कानून की नजर में बराबरी का, अवसर की बराबरी का और सम्मान के साथ जीने का। लेकिन सवाल था, जिस समाज में असमानता सदियों पुरानी हो, क्या सिर्फ कानून में बराबरी लिख देने से बराबरी हासिल हो सकती है? इसी सवाल के जवाब में संविधान ने SC ST के लिए कई विशेष प्रावधान किए। अनुसूचित जातियों को उन समुदायों के तौर पर पहचाना गया जिन्होंने लंबे समय तक सामाजिक भेदभाव और छुआछूत जैसी व्यवस्था का सामना किया। वही अनुसूचित जनजातियों के सामने सामाजिक पिछड़ेपन के साथ साथ भौगोलिक अलगाव और विकास की सुविधाओं से दूरी जैसी बड़ी चुनौतियां थी।
2: रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फ्रेमर्स ने बहुत अच्छी तरह से डिबेट किया है, वो समझते थे क्या थे, उनके सामने ये भी चर्चा हुई कि हम कैसे डिफाइन करें बैकवर्ड्स को। अंबेडकर साहब ने बोला कि देखिए, डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं, हम कैसे आज बोल सकते हैं कि कौन बैकवर्ड है और कौन नहीं है, कल को कोई और बैकवर्ड हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसिस। सो ही सेड वी शुड लीव दैट टू द गवर्नमेंट इन फ्यूचर। तो उस हिसाब से उन्होंने बहुत एडवाइजेडली इन शब्दों का प्रयोग किया, उन्होंने एडवाइजेडली रिजर्वेशन दिया, क्योंकि वो जानते थे कि हजारों साल हमारे यहाँ अन्याय हुआ है, तो वो अन्याय को कैसे मिटाया जा सकता है जो इनइक्वालिटी क्रिएट की गई है। और अंबेडकर साहब ने बोला था अपनी लास्ट स्पीच में 25 नवंबर 1949 को कि अगर आप ये इस इनइक्वालिटी को दूर नहीं करेंगे तो ये पूरे देश के फैब्रिक को तोड़ देगा। सो सोशल इनइक्वालिटी दूर करने की उनकी बहुत ही सोच थी।
1: शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, कई इलाकों में इन बुनियादी सुविधाओं की पहुंच लंबे समय तक बेहद सीमित रही। ऐसे में संविधान निर्माताओं के सामने चुनौती थी कि इन समुदायों को सिर्फ कागज पर बराबरी ना दी जाए बल्कि व्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी भी सुनिश्चित की जाए, और यही सोच आगे चलकर आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था का आधार बनी। केंद्र सरकार की नौकरियों में SC के लिए 15% और ST के लिए 7.5% आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन SC ST आरक्षण की कहानी सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं है। संविधान ने राजनीति में भी इन समुदायों की आवाज सुनिश्चित करने का रास्ता बनाया। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में SC और ST के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया, और अनुच्छेद 332 के तहत राज्य विधानसभाओं में इनके लिए सीटें आरक्षित की गई। यानी संविधान ने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं है, लोकतंत्र में सत्ता के गलियारों तक प्रतिनिधित्व भी जरूरी है।
3: जैसे काशीराम जी ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो एक हिस्सेदारी का भी सवाल आता है। और जो आरक्षण है वो एक फैसला लिया गया था हमारे संविधान के आने से पहले भी। अगर आप सच तरीके से देखें तो हमारे संविधान आने से पहले भी आरक्षण हुआ करता था। तो परसेंटेजेस क्या फिक्स्ड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए या उसमें फेरबदल होना चाहिए, वो तो हर वक्त देखा जा सकता है। बहुत सारे लोगों को वही अपॉर्चुनिटी नहीं है जो दूसरे लोगों को है, तो एक थोड़ा सा एक इक्वलाइजेशन के तरफ से रिजर्वेशन भी आया है।
1: इसके अलावा शिक्षा और सरकारी सेवाओं में भी SC ST के लिए विशेष अवसरों की व्यवस्था विकसित हुई। संविधान का अनुच्छेद 16(4) राज्यों को ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति देता है जिन्हें राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। लेकिन ये आंकड़े सिर्फ प्रतिशत नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा संवैधानिक उद्देश्य था प्रतिनिधित्व। सरकारी नौकरियों के अलावा उच्च शिक्षा में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई।
3: हर वर्ग के लोग के लिए अपने अपने संख्या के को देखकर उनके लिए मेडिकल कॉलेज में रिजर्वेशन थे। जैसे मेरी कम्युनिटी के लिए सिर्फ एक ही सीट था, वहाँ चंपकम दोराय राजन एक ब्राह्मण महिला थी, उन्होंने चैलेंज किया कि भाई ये कम्युनल रिजर्वेशन होते हुए मेरे पास चाहे ज़्यादा मार्क्स हो या मेरिट हो, तो उसके चलते हुए मुझे सीट नहीं मिली। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था अभी कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के तहत ये कम्युनल रिजर्वेशन को स्ट्राइक डाउन कर दिया था। फिर उसी लिए 15(4) संशोधन से लाया गया, तो रिजर्वेशन में संशोधन हुआ, राइट टू फ्री स्पीच में संशोधन हुआ और राइट टू प्रॉपर्टी में संशोधन हुआ। तो सामाजिक न्याय के लिए जो रिजर्वेशंस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 15(4) लाया गया।
1: आज जब आरक्षण पर देश में बहस तेज है तो उसकी जड़ें किसी एक सरकार या किसी एक राजनीतिक दल के फैसले में नहीं है। इसकी शुरुआत उस संवैधानिक सोच से हुई थी जिसने माना कि कानूनी बराबरी के साथ साथ उन समुदायों को विशेष अवसर देना भी जरूरी है जो ऐतिहासिक रूप से बराबरी से वंचित रहे हैं। और इसलिए SC ST आरक्षण की कहानी सिर्फ 15% और 7.5% के आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये कहानी है प्रतिनिधित्व की, बराबरी की, सामाजिक न्याय की और उस संविधान की जिसने सदियों की असमानता के बीच बराबरी का रास्ता बनाने की कोशिश की।
4: वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे OBC और EWS के आरक्षण की कहानी।

न्यूयॉर्क के एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा धर्म भले ही अलग लेकिन इंसानियत एक, बोले हिंदुत्व का मतलब मुस्लिमों को बाहर करना नहीं। उज़्बेकिस्तान दौरे पर ताशकंद पहुंचे पीएम मोदी का शानदार स्वागत, भारतीय समुदाय से मुलाकात, दो दिन के बाद बिश्केक के एससीओ समिट में होंगे शामिल। खड़गे को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा हमेशा कांग्रेस ने किया है दलितों का अपमान, नेता विपक्ष ने हल्द्वानी में शुद्धिकरण का उठाया था मामला। आरक्षण विवाद पर आमने सामने मोदी के दो मंत्री, रिजर्वेशन में जीतन राम मांझी के वर्गीकरण की मांग को चिराग पासवान ने किया खारिज, दोनों ने एक दूसरे का मांगा इस्तीफा। नेपाल आपदा में बढ़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 675 शव बरामद, लगभग 2500 लोग लापता, चीन में बनी अस्थायी झील के फटने की आशंका बरकरार।

0: ब्रेक से पहले आपने एससी एसटी आरक्षण की पूरी कहानी को समझा, कब मिला, क्यों मिला और संविधान में इसकी व्यवस्था कैसे हुई। अब बारी है ओबीसी आरक्षण की कहानी की। आखिर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की जरूरत क्यों महसूस हुई, मंडल कमीशन का गठन क्यों हुआ, उसकी सिफारिश क्या थी और 27वीं आरक्षण का फैसला कब और कैसे लागू हुआ। 1990 में वीपी सिंह सरकार के ऐलान के बाद देश की सियासत और सड़क दोनों पर भूचाल आ गया। तो आप देखिए ओबीसी आरक्षण की पूरी कहानी।
1: सरकार हमारे साथ है, ना ही एमपी हमारे साथ है, ना ही एमएलए हमारे साथ है, तो हमारे पास मात्र महात्मा गांधी का एक चीज बचा है, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस।
2: हम लोग जो है साथी एकदम ठीक कहा है कि कलम चलाना छोड़ दिया है, बंदूक चलाना सीखेंगे।
3: साल 1990 दिल्ली की हवा में बरसात की उमस थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गर्मी थी सड़कों पर उतर चुके नौजवानों के गुस्से की। केंद्र की तत्कालीन वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का फैसला किया। इसके तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का रास्ता खोला गया था। 7 अगस्त 1990 को प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने संसद में इसका ऐलान किया और इसके साथ ही देश की सियासत और समाज में ऐसा उबाल आया जिसने भारतीय राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी।
4: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस न्याय वर्ष में एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। सत्ता के इस ढांचे में देश के चलाने और संवारने में उसके फैसला करने में हम हिस्सेदारी देने चाहते हैं और मजबूती से देना चाहते हैं।
3: लेकिन सवाल ये है कि आखिर ओबीसी आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी, और इससे भी बड़ा सवाल, मंडल आयोग आया कहां से, उसने ओबीसी की पहचान कैसे की, 27% आरक्षण का आंकड़ा कैसे तय हुआ और वीपी सिंह के एक फैसले ने देश की राजनीति को कैसे बदल दिया।
5: संविधान में एक बड़ी समस्या है, जब संविधान लिख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स तो अंबेडकर और उनके सहयोगियों ने एक शब्द ही इस्तेमाल किया, बैकवर्ड्स। उन्होंने डिफाइन नहीं किया था, बाद में उन्होंने शेड्यूल कास्ट डिफाइन किया, शेड्यूल ट्राइब डिफाइन किया, बट वो बैकवर्ड जो शब्द था उसको डिफाइन करने में हमें बहुत तरह की सोच लगानी पड़ी। मंडल कमीशन एक अप्रोच था टू आइडेंटिफाई मोर एंड मोर सच बैकवर्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। मेरे ख्याल से ये पीरियोडिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए हर एक राज्य में, क्योंकि हर एक राज्य की स्थिति अलग है। मंडल कमीशन वॉज वन सच अटेम्प्ट। तो ये सब चर्चाएं बहुत ही अच्छे माहौल में, बहुत शांत तरीके से चर्चाएं होनी चाहिए। रिजर्वेशन हटाने की चर्चा हमारी रास्ते पर नहीं होनी चाहिए, इससे देश का बंटवारा हो जाएगा।
3: इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। आजादी के बाद संविधान ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों का रास्ता बनाया, लेकिन पिछड़े वर्गों की पहचान कौन करेगा और उन्हें सरकारी व्यवस्था में प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा, ये सवाल बना रहा। इसी सवाल के जवाब की तलाश में 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना, यानी काका कालेलकर आयोग बनाया गया। आयोग ने पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए कई आधार सुझाए और 2,399 जातियों और समुदायों को पिछड़े वर्गों की सूची में रखा, लेकिन इसकी सिफारिशें व्यापक रूप से लागू नहीं हो सकी। और फिर आया 1970 का दशक, देश की राजनीति बदल रही थी, पिछड़े वर्गों के राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व की मांग तेज हो रही थी।
6: चला रहा।
3: 1 जनवरी 1979 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया। इसकी अध्यक्षता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल को सौंपी गई। यही आगे चलकर मंडल आयोग के नाम से जाना गया। मंडल आयोग ने देश भर में पिछड़ेपन का अध्ययन किया। आयोग ने सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक संकेतों के आधार पर पिछड़े वर्गों की पहचान करने की कोशिश की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को सरकार को सौंपी। और यहीं से सामने आया वो आंकड़ा जिसने आने वाले दशक में भारतीय राजनीति को हिला दिया। मंडल आयोग ने अनुमान लगाया कि देश की आबादी का करीब 52% हिस्सा ओबीसी है। यह आंकड़ा उस समय उपलब्ध 1931 की जाति जनगणना के आंकड़ों और आयोग की अपनी गणना पर आधारित था। आयोग ने 3,743 जातियों और समुदायों को ओबीसी के रूप में चिन्हित किया था। उस समय एससी और एसटी के लिए कुल 22.5% आरक्षण पहले से था। मंडल आयोग ने इसके ऊपर ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की, यानी कुल आरक्षण 49.5% तक पहुंचता। मंडल आयोग की रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी, लेकिन रिपोर्ट लागू नहीं हुई। सरकारें बदली, सियासी समीकरण बदले, लेकिन मंडल आयोग की सिफारिशें फाइलों में पड़ी रही। फिर आया 1989 का लोकसभा चुनाव। जनता दल ने अपने घोषणा पत्र में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का वादा किया। कांग्रेस से अलग होकर वीपी सिंह विपक्ष की राजनीति का बड़ा चेहरा बने और जनता दल सत्ता में आया। बीजेपी और लेफ्ट दलों के समर्थन से वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन सरकार के भीतर भी सियासी खींचतान शुरू हो चुकी थी। उप प्रधानमंत्री देवीलाल से वीपी सिंह के रिश्ते बिगड़ रहे थे। सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ रहा था और इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला हुआ। 7 अगस्त 1990, वीपी सिंह सरकार ने केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने का ऐलान कर दिया।
6: I'm not a villain in the scheduled caste. They have very good feelings for me. Where am I a villain for? Majority I'm not. And because upper caste thinks their world is the nation and their world is all. And therefore anybody who's good or bad is that's the end of the world.
3: लेकिन इस ऐलान के साथ ही देश की सड़कों पर ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जिसकी तस्वीरें आज भी भारतीय राजनीति के सबसे उथल पुथल भरे दौर की याद दिलाती हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर जेएनयू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लेकर बीएचयू तक

0: पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो पुलिस हम पर लाठी डंडे बरसाती है, जबकि प्रो रिजर्वेशनिस्ट रैली को पुलिस स्कॉर्ट करके ले जाती है। ना ही सरकार हमारे साथ है, ना ही एमपी हमारे साथ है, ना ही एमएलए हमारे साथ है, तो हमारे पास मात्र महात्मा गांधी का एक चीज बचा है, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस।
1: करेंगे हम लोग, जलाएंगे, बस जलाएंगे, अब क्या करेंगे, हमारे पास और कोई और चारा नहीं है, और क्या करेंगे, जीविका के लिए तो कुछ करना ही होगा, आखिर नहीं तो रहेंगे। हम लोग जो है साथी एकदम ठीक कहा है कि कलम चलाना छोड़ दिया है, बंदूक चलाना सीखेंगे, और हमारी प्रशासन जो है यही अब चाह रही है और यही करेंगे, यही हाथ से लिखेंगे भी और यही हाथ से खून भी बहाएंगे।
2: एक तरफ आरक्षण विरोधी छात्र इसे मेरिट और प्रतियोगिताओं से जोड़कर सवाल उठा रहे थे, तो दूसरी तरफ पिछड़े वर्गों के बीच इसे प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा था। यानी एक ही फैसले को लेकर देश दो अलग अलग नजरियों में बंटता दिख रहा था। लेकिन मंडल की इस आग के बीच राजनीति की दूसरी धारा भी तेज हो रही थी। एक तरफ मंडल, दूसरी तरफ कमंडल और भारतीय राजनीति के सामने एक नया सामाजिक सियासी समीकरण आकार ले रहा था।
3: Few journalists who were accompanying me right from there in the very first day, Pani ji, does it seem to you that you are making history of some kind? I said, I am perplexed, I am baffled, I am not able to understand this. It will take time. Pramod Mahajan, who was with me, he was also somewhat wonderstruck.
2: मंडल का विरोध सिर्फ सड़कों पर नहीं था, सरकार के भीतर भी राजनीतिक संकट गहराने लगा। वीपी सिंह सरकार को समर्थन दे रही बीजेपी और केंद्र सरकार के बीच अयोध्या के मुद्दे पर टकराव बढ़ा। आखिरकार राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला और नवंबर 1990 में वीपी सिंह सरकार गिर गई। लेकिन मंडल का फैसला वापस नहीं लिया गया, बल्कि इसने भारतीय राजनीति में एक ऐसा नया अध्याय खोल दिया जिसमें पिछड़ा वर्ग सिर्फ सामाजिक श्रेणी में नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक समूह बनकर सामने आया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। '92 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में 9 जजों की संविधान पीठ ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा। लेकिन अदालत ने इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं भी तय कर दी। क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर करने का सिद्धांत सामने आया और आरक्षण की कुल सीमा को सामान्य परिस्थितियों में 50% तक रखने की बात कही गई।
4: हाँ, हम ये भी मान सकते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स है, वैसे ही दारिद्रता दूसरे कास्ट में भी है जो पिछड़े हैं, पर जिन पर छू अछूत की जो भेदभाव है वो लागू नहीं होता है। तो उस वर्ग में क्रीमी लेयर को निकाले, जो यानी जो आगे बढ़ चुके हैं, जिनके पास पैसा है उन्हें निकाल दीजिएगा, पर जो जिस जहां बिछड़ापन है उनके लिए आरक्षण दिया जा सकता है, वो ब्रॉडली वही फैसला था मैं इंदिरा साहनी का। तो वो जो बैलेंसिंग जो 91-92 में जो हुआ था, वो अभी अब क्या 30-40 साल होते आए हैं, तो वो भी सामाजिक न्याय का एक हिस्सा बन चुका है।
2: यानी मंडल आयोग की सिफारिश सिर्फ राजनीतिक फैसला बनकर नहीं रही, वो न्यायपालिका की कसौटी से भी गुजरी और फिर आरक्षण की व्यवस्था का स्थायी हिस्सा बन गई। इसके बाद ओबीसी आरक्षण का दायरा सिर्फ सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं रहा, केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में भी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। और मंडल के बाद सिर्फ आरक्षण की व्यवस्था नहीं बदली, राजनीति का सामाजिक आधार भी बदल गया।
5: ओबीसी से आगे बढ़कर ईडब्ल्यूएस आरक्षण की, आखिर आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का रास्ता कब खुला और कैसे खुला? 2019 में 103वें संविधान संशोधन के जरिए ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, जो एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण के दायरे से बाहर रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए है। लेकिन सवाल सिर्फ 10% आरक्षण का नहीं है, सवाल यह है कि इसमें सुधार

0: मांग क्यों उठ रही
1: है। SC ST OBC UR high मतलब अनरिजर्व, तो EWS कहाँ घुसेगा, OBC का साथ आएगा,
2: माननीय सदस्य
1: का साथ, ये हम लोग का सवाल है।
3: सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े सभी धर्मों के लोगों को नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण दिया जाएगा।
4: OBC को 6 लाख और यहाँ 8 से 7 लाख, तो गरीबी रेखा का मापदंड क्या होगा।
5: नरेंद्र मोदी जी का था अच्छा लक्षण, इसलिए मिल रहा है सवर्णों को आरक्षण।
6: 2019 की ये तस्वीर है जब EWS पर संसद में मुहर लगी और भारतीय आरक्षण व्यवस्था में एक नया अध्याय जोड़ा।
7: अनुसूची विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, अनुसूची विधेयक का अंग बनी।
8: द कॉन्स्टिट्यूशन 124th अमेंडमेंट बिल 2019 इस सत्र के दौरान पारित किए गए।
6: EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का केंद्र सरकार ने संविधान में 103वां संशोधन किया और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया।
3: कई दशकों से देश के आम जनता के मुख्य मांग रही है कि जब SC ST OBC लोगों को आरक्षण मिला है तो जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य श्रेणी के लिए भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था हो। अब यह संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन से प्राप्त होने जा रहा है। अब सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े सभी धर्मों के लोगों को नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण दिया जाएगा, जिसमें 10% कोटा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए होगा, जिससे लंबे समय से आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण की मांग पूरी होगी।
6: यानी पहली बार संविधान में आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे लोगों के लिए आरक्षण का स्पष्ट रास्ता बना जो SC ST और OBC के आरक्षण के दायरे में नहीं आते थे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल था कि EWS में कौन आएगा, क्योंकि EWS आरक्षण का आधार जातिगत या सामाजिक पिछड़ापन नहीं था, इसका आधार था आर्थिक कमजोरी।
5: सवर्णों को 10% आरक्षण देने का निर्णय बहुत हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है। सवर्ण समाज में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लोग है वो हमारी तरफ देखते थे और सवर्ण समाज में सभी लोग अमीर नहीं है, उनको उनके उनमें गरीब लोग जो है उनको 10% आरक्षण देने का निर्णय हो चुका है।
9: देश के ऐसे सामान्य वर्ग के लोग जो गरीबी रेखा के आसपास का जीवन जीते हैं, उनके हित में भी ये ऐतिहासिक विधेयक प्रस्तुत करके उनके हकों को उन तक पहुंचाने का काम इसके माध्यम से हम करने वाले हैं।
6: EWS आरक्षण का फायदा उन लोगों को देने की व्यवस्था की गई जो SC ST और OBC की आरक्षित श्रेणियों में नहीं आते हैं। EWS पात्रता के लिए परिवार की सकल वार्षिक आय की सीमा 8 लाख रुपए से कम रखी गई है, कृषि भूमि 5 एकड़ से कम हो, आवासीय फ्लैट 1000 वर्ग फुट से कम हो। यानी सरकार ने आर्थिक कमजोरी को सिर्फ कम आमदनी से नहीं जोड़ा बल्कि आय और संपत्ति दोनों को आरक्षण का हिस्सा बनाया। अब सवाल ये था कि 10% आरक्षण आखिर मिलेगा कहाँ? पहला, सरकारी नौकरियों में केंद्र सरकार की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी सीधी भर्ती में EWS के लिए 10% आरक्षण है। DOPT के अनुसार ये केंद्र सरकार की सिविल पोस्ट और सेवाओं में लागू है। दूसरा, सरकारी और केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में EWS के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले में भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। लेकिन यहीं से एक नई बहस शुरू हुई, क्योंकि EWS आरक्षण लागू होने के बाद सवाल उठा कि क्या आर्थिक कमजोरी को आरक्षण का आधार बनाए जाना संविधान की मूल भावना के अनुरूप है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने नवंबर 2022 में 103वें संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इसके बाद EWS आरक्षण को देश की आरक्षण व्यवस्था में संवैधानिक मान्यता मिल गई। हालांकि EWS और SC ST OBC आरक्षण में एक बड़ा फर्क है जिस पर बार बार बहस होती है। EWS और एससी एसटी ओबीसी आरक्षण में एक बड़ा फर्क यही है कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण तो मिलता है, लेकिन केंद्र सरकार की भर्ती में एससी एसटी ओबीसी जैसी उम्र, फीस और प्रयासों की छूट नहीं मिलती। यानी करीब 7 दशक से ज्यादा लंबी आरक्षण की कहानी में एक बड़ा बदलाव तो हो गया, लेकिन एक बार फिर से सुधार की मांग है। अब आरक्षण का दायरा सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान तक नहीं रहा, आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग भी इसके दायरे में आ गया है। लेकिन अब असली सवाल ये है कि क्या जरूरतमंद तक लाभ पहुंच रहा है या फिर इसमें और सुधार की जरूरत है।
0: 92.0 में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो देशों के दौरे के पहले चरण में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले भारतीय समुदाय के लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। ये वो तस्वीरें जब भारतीय समुदाय के लोग वहां पर पहुंचे।

0: तरफ भारत और उज़्बेकिस्तान की संस्कृति एक साथ देखने को मिले, जहाँ पर जो वाद्य यंत्र हैं वो अलग अलग देशों के थे जो प्रस्तुत किए गए।
1: तो कैसे ना नजर इसमें, तो कैसे ना नजर।

0: अब बात करते हैं राहुल गांधी के दलित कार्ड के साथ, जहां पर उन्होंने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस पर हमला किया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने हल्द्वानी में हुए शुद्धिकरण को भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दलित समुदाय का अपमान बताया।
1: भले ही हल्द्वानी में खड़गे के दौरे के बाद हुए शुद्धिकरण की ये तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हो, लेकिन आज जब राहुल गांधी ने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा तो कांग्रेस अध्यक्ष के अपमान का मुद्दा भी उठाया।
2: कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी है, मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट है, वो रामलीला ग्राउंड में हल्द्वानी में जाते हैं भाषण देने और वहां पर शुद्धिकरण होता है। और उनकी पार्टी का उदाहरण बिहार के चीफ मिनिस्टर मांझी जी, वो मंदिर में जाते हैं और वहां शुद्धिकरण होता है। ये करता कौन है? ये बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं, सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग ये करते हैं और ये क्राइम है। राजस्थान के मंदिर जाते हैं।
1: राहुल गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण की याद दिलाई। एनडीए के नेता जीतन राम मांझी के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण का भी जिक्र किया और मामले में FIR दर्ज करने की मांग की।
2: शुद्धिकरण होता है, जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में, उन पर FIR लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, आरएसएस के लोगों ने शुद्धिकरण किया है, तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ FIR SC/ST एक्ट में FIR दर्ज किया।
1: जवाब में एनडीए के नेता कांग्रेस राज की याद दिला रहे हैं। दलितों के विकास के लिए कांग्रेस ने क्या किया वो बता रहे हैं।
3: खड़गे जी नामांकन केंद्र के कमरे के बाहर रहेंगे। वी नारायण स्वामी पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री ये इस प्रकार से चप्पल उठाएंगे तो कांग्रेस पार्टी कैसा मानसिकता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और हरियाणा में, हरियाणा की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा, उनका क्या मान सम्मान हो रहा है हम सब जानते हैं। बैनर पोस्टर्स उनको गायब कर दिया गया है। तो ये कांग्रेस पार्टी का असल चाल चेहरा चरित्र है। ये दलित समाज, दलित सम्मान की बात आपको सिर्फ राजनीति के लिए याद आती है?
4: जो लोग आज इस बात की चिंता कर रहे हैं, देश ने आजादी के बाद लंबे समय तक मौका तो उन्हीं को ही दिया था ना। आज किस मुंह से वो कह रहे हैं कि आज भी समाज में भेदभाव मिटा नहीं है? कई उदाहरण उन्होंने गिनाए। अगर ये उदाहरण आज वो गिना रहे हैं तो आप बताइए, एक लंबे समय तक आजादी के बाद और लगभग 4.5-5 दशक तक तो निरंतरता में कांग्रेस की सरकारें रहीं, उसके बाद भी कांग्रेस के सहयोग की सरकारें रहीं, उसके बाद भी समाज में अगर भेदभाव अगर होता रहा तो कहीं ना कहीं नींव को मजबूत करने में सफल तो ये लोग भी नहीं रहे।
1: उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुद्धिकरण का मुद्दा राज्यसभा में गूंज चुका है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी।
5: लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किया।
6: माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज।
1: उधर शुद्धिकरण के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर सियासत का आरोप लगा रही।
7: लेकिन उत्तराखंड में कोई नहीं जानता कि खड़गे जी की जाति क्या है, वो तो वहां पर जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए और वहां पर गंदगी की गई, वो एक शुद्ध स्थान था, धार्मिक स्थान था, जहां पर रामलीला का मंचन होता है, बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, ऐसे आयोजनों पर जो गंदगी हुई थी, जो धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए थे और एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाए थे, उसके विरोध में लोगों ने, जो धार्मिक संगठन थे, उन्होंने उस वहाँ पर शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम किया था वो कार्यक्रम था। और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है।
1: युवा, महिला और हिंदुत्व के बाद अब राहुल गांधी ने इस बार दलित कार्ड खेला है, जिस पर घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: खबरों का सिलसिला जारी है, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है।
1: हालांकि मुख्य सड़क, आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है, लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है, दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास अमित वधवार के साथ में आशुतोष मिश्रा आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

खबर का बड़ा बयान, कहा धर्म भले ही अलग अलग लेकिन इंसानियत एक। बोले हिंदुत्व का मतलब मुसलमानों को बाहर करना नहीं। उज़्बेकिस्तान दौरे पर ताशकंद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत। भारतीय समुदाय से की मुलाकात। दो दिन के बाद बिश्केक के एससीओ समिट में शामिल होंगे। खड़गे को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। कहा हमेशा कांग्रेस ने किया दलितों का अपमान। नेता विपक्ष ने हल्द्वानी में शुद्धिकरण का उठाया था मामला। आरक्षण विवाद पर आमने सामने मोदी के दो मंत्री। रिजर्वेशन में जीतन राम मांझी के वर्गीकरण की मांग को चिराग पासवान ने किया खारिज। दोनों ने एक दूसरे का मांगा इस्तीफा।

0: काठमांडू के लिए भेजी राहत की चौथी खेप। संघ प्रमुख मोहन भागवत न्यूयॉर्क में मौजूद है, जहां पर वो वन वर्ल्ड वन ह्यूमैनिटी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और अपने संबोधन में मोहन भागवत ने कहा कि भले ही धर्म अलग अलग हो, लेकिन इंसानियत और मानवता एक ही है, सत्य एक है और इंसानियत उसी सत्य का परिणाम है। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुत्व ये नहीं कि मुसलमानों को भारत से बाहर करो, और अगर कोई हिंदू ये सोचता है कि भारत में मुसलमान नहीं होने चाहिए तो हो सकता है कि वो हिंदू ही ना हो।
1: In 2018 in Delhi, I had a lecture there. And Muslim brothers were also there. And they asked me the question, you are a Hindu organization, you say Hindu Rashtra, what about us Muslims? Would you drive us out? I said, no, that is not Hindutva. If any Hindu thinks that there should be no Muslim in Bharat, he will not remain Hindu. If you want to call yourself Hindu, you must believe that all paths are leading to the same. And every human has a dignity. There is no difference between human beings.
0: संघ प्रमुख मोहन भागवत न्यूयॉर्क मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे, और कार्यक्रम को लेकर भारत में सियासी महाभारत छिड़े हुए हैं। सियासी दलों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, वो आपको सुनाते हैं।
2: देखिए, मोहन भागवत पूरी तरीके से बीजेपी के माउथ पीस हो गए हैं, और आरएसएस मतलब कुछ नहीं रह गया, अब सब बीजेपी और मोदी के साथ हो गया है। तो मुझे लगता है वहां जाकर भी बड़ाई करेंगे मोदी की और तारीफ करेंगे। तो मुझे जहां तक वहाँ पर मेरी जानकारी में है कि बहुत अच्छा निर्णय लोगों ने किया, और मोहन भागवत को कहीं पर भी स्थान इनको नहीं मिलना चाहिए।
3: अरे आप वो सवाल पूछ लीजिए, यूनाइटेड स्टेट रिलीजियस फ्रीडम का भी तो एक रिपोर्ट आया है आरएसएस के बारे में, भारत सरकार क्या बोलेगी उसके ऊपर? अब जोरान ममदानी को अपनी बात रखने का इख्तियार है, और हम थोड़ी उसके स्पोक्स पर्सन है। मोहन भागवत जा सकते हैं, और तेलंगाना का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर अमेरिका नहीं जा सकता है, ये क्या बात है बताइए? आरएसएस तो उनकी आइडियोलॉजी तो साफ है।
4: कौन है मोहन भागवत? कोई व्यक्ति है? कोई विचारधारा है? कौन है जिनके ऊपर भारत सरकार इतना ज्यादा खर्चा कर रही है? कहीं ना कहीं भारत के गृह मंत्रालय को, भारत सरकार को इस बात का स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि Z प्लस की सिक्योरिटी, जिसमें कम से कम 30 से 35 या 40 के ऊपर हमारे पुलिस के जवान लगते हैं, कई गाड़ियां लगती हैं, सैकड़ों का काफिला चलता है, वो एक व्यक्ति के पीछे क्यों खर्च किया जा रहा है? हम ऐसे किसी भी व्यक्ति, किसी भी सोच को जो भारत के खिलाफ उपजी है, जो भारत के संविधान को नहीं मानती है, हम उसको कतई नहीं मानते।
5: अभी संघ की शाखा में गए हो? आपने कभी देश के लिए त्यागपूर्ण समर्पित जीवन परिवार को छोड़ के देश को ही अपना परिवार मान करके जीने वाले स्वयंसेवक से मिले हो? एयर कंडीशन कमरे में बैठकर अपने विचार कहना, जमी पर जाकर के तुमको देखना होगा संघ क्या है, तब पता चलेगा ममदानी को। इसके लिए ऐसे छुटपुट विरोध करने वाले होते हैं इस दुनिया में, पर संघ का काम और आदरणीय सरसंघचालक जी के विचार प्रखरता के साथ समूचे विश्व में जा रहे हैं और आगे भी भविष्य में जाएंगे।
0: नेपाल त्रासदी पर आज तक की कवरेज लगातार जारी है, जहां ग्राउंड जीरो से आज तक आपको हर हालात से रूबरू करा रहे हैं। आज तक की अलग अलग टीमें इस समय अलग अलग हिस्सों से त्रासदी के दंश को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, अपनों की तलाश में लोग भटक रहे हैं। नेपाल के नवाकोट से अब एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
6: तबाही अपने पीछे ऐसा दर्द छोड़ गई जिसके जख्मों को भरने में कई साल लग जाएंगे। तस्वीरें नेपाल के नुआकोट की हैं। पूरे इलाके का मानो नक्शा ही बदल गया है। सड़क, दुकान, मकान सब बराबर हो गए हैं। जिन घरों में कभी खुशियां चहकती थी, आज उन्हीं घरों के बाहर बेबस और लाचार लोगों का दर्द नजर आ रहा है।
7: ये वो जिला है जो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ नेपाल में आई उस त्रासदी से। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मलबा हट रहा है तो त्रासदी का पैमाना दिख रहा है। इस ऊंचाई से आप वो पूरी तस्वीर देखिए, त्रिशूली नदी अपने तटों को तोड़कर दोनों तरफ ज्यादा चौड़ाई में बह रही है। वो तस्वीरें जहां पर आपको लोग खड़े हुए दिख रहे हैं वहां तक सड़क जाती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे शायद एक पगडंडी रही हो और बाकी केवल मलबा, पर ऐसा नहीं है। यहां पर एक बड़ी सी पार्किंग हुआ करती थी, ये बैंक, एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स और आगे आप होटल्स देख सकते हैं क्योंकि यहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में आया करते थे। अब जो इकलौता पर्यटन यहां पर है वो उन लोगों का है जो आकर देखना चाहते हैं कि कैसी विनाश लीला रही होगी। जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे। जब आगे वो त्रासदी आई, तबाही आई, बाढ़ मलबे के साथ पानी आया, तो ईश्वर को इस बात का शुक्र तो अदा किया कि अपनी जान बची, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को तिनका तिनका होते भी देखा।
6: स्थानीय लोगों ने ऐसा मंजर देखा जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएंगे।
8: मैंने देखा कि वहाँ से वो पुल से बाढ़ आ गया, तो मैं पहले तो मेरे मम्मी पापा थे दुकान पे ना, तो मैं गई अपनी मम्मी पापा को देखने के लिए कि वो अभी तक वहीं पे है या नहीं। अब स्कूटी तो छोड़ दो क्योंकि हमारा अभी यंग है तो हम कमा लेंगे, पर अपने मम्मी पापा को तो बचाना पड़ेगा ना। तो हम चले गए वहाँ पे, तो देखा मम्मी पापा दुकान बंद करके चले गए, भाग गए, तो मैं भी भाग गई उधर से। अगर मैं इधर से आई होगी तो मुझे भी लेके जाएगा था पार्टनर, पर वे उधर चले गए।
7: ऊंचा दिख रहा था, ऐसे कैसा होता वो दिख रहा था?
8: नहीं, ऐसे जैसे जो होते ना, जो स्नेक के आते ना, ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर करके हाई हाई हाई करके।
7: अच्छा अच्छा,
8: तो ऐसा चल के आ गया ना, तो कुछ सोचने समझने के टाइम भी नहीं हुआ उस टाइम कि क्या करना चाहिए। देख, क्योंकि कोई रो रहा है उस टाइम देख के, कोई क्या कर रहा है ना, तो ऐसे लगा कि
7: सबसे जरूरी था भागना,
8: भागना तेज, वही अपना जान बचाओ सबका। तो कितने लोग रो रहे थे और कितने लोग को तो हमने देखा कि उसको बाढ़ ने भगा के लेके गए। एक को तो हमने
7: देखा सामने,
8: हाँ नहीं ऐसे करके, वो जैसे हम यहाँ पे थे तो उसको हमने हाथ पकड़ के ऊपर
7: आपने बचा लिया। हाँ,
6: ऋषिका बताती है जिस मोहल्ले में वो खेलती थी आज वो मोहल्ला पूरी तरह से बदल चुका है। अब दूर खड़े होकर वो अपने घर को देख रही है। खुशी इस बात की है कि परिवार के लोग बच गए। उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन इस छोटी उम्र में तबाही ऐसा तजुर्बा दे गई कि जिंदगी को लेकर सोच ही बदल दी।
9: जो हल्का इधर हुआ है, जो ग्रीन कलर का हल्का दिखाई दे रहा है।
7: अच्छा, जो पूरी तरीके से नीचे है, सिर्फ एक मंजिल दिख रहा है जिसका ऊपर।
9: जी जी, जो दस्ता है ना ऊपर का, उस और साइड में है ना, वही मेरा घर है।
7: कितनी देर पहले मम्मी पापा निकल पाए थे?
9: मम्मी पापा बोल रहे थे अगर हम लोग ऐसे मुड़ के पीछे देखते लोग तो शायद पता नहीं क्या होता।
7: मतलब मुड़ के पीछे देखने का भी टाइम नहीं था?
9: था।
7: ये सब घर यहाँ पे, तो दोस्त वोस्त रहते होंगे तुम्हारे सब?
9: जी, मेरा फ्रेंड का भी घर जो है ना, जो मंदिर की तरह दिखाई दे रहा है, वो मेरे फ्रेंड का ही घर है। और वहाँ पे कुछ भी नहीं रहा, यहाँ पे एक सिस्टर आंटी का की थी, उनका होटल था, बहुत अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था।
7: हाँ।
9: बहुत अच्छा भी था, वो भी कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पे ब्लू कलर का जो है घर देख सकते हैं,
7: किसी का काम बचा ना घर बचा,
9: ना किसी का काम बचा ना घर बचा, कुछ भी नहीं बचा, बस आदमी बच गए ना, वही हम लोग के लिए बहुत काफी। हम लोग मैं खुशी हूँ कि मेरे पेरेंट्स बच गए, बस वही काफी है। पैसा तो धन बाद में भी हो सकता है ना, पहले आदमी बच गए वही काफी है।
6: रसिका की किस्मत अच्छी थी कि परिवार वाले बच गए, लेकिन यहाँ ऐसे भी कई परिवार हैं जो अपने ही मोहल्ले में अपनों की ही तलाश कर रहे हैं।
10: मेरी दीदी मिसिंग है और भांजी भी, तीन भांजी, एक दीदी और एक नतनी मिसिंग है।
7: कहाँ रह रहे थे
10: वो लोग? रसुआ और नुआकोट के बॉर्डर पे रहते थे। क्या कहता हूँ,
7: रसुआ नुआकोट के बॉर्डर पे। तो आप हर उस जगह आके ढूंढ रहे हैं कि
10: हर जगह जाने के वहाँ कोई साधन ही नहीं है।
7: हाँ।
10: और वहाँ तक मिसिंग ही है और जा नहीं पा रहे हैं।
7: फोटो एक बार दिखा दीजिए कैमरे पे।
10: ये भांजी हुई, ये भांजी की लड़की हुई।
7: कितने साल की है
10: ये बच्ची? दो साल की है।
7: दो साल की
10: जी। ये दीदी हुई।
7: हाँ।
10: ये भांजी है, ये भी भांजी है।
7: तो ये मिल नहीं पा रहे हैं?
10: नहीं मिल पा रहे हैं।
7: आप हर जगह जाके बस ढूंढ रहे हैं?
10: ढूंढ रहे हैं।
6: रेस्क ऑपरेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक बुरी खबर पूरे परिवार को तोड़कर रख देती है।
7: ये रसुवा की तरफ जाने वाली सड़क है, जैसे जैसे जो राहत कर्मी है वो थोड़ी सी सफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं, किसी न किसी को कोई न कोई बुरी खबर मिलती है।
6: इस इलाके में कई होटल भी थे जिसमें टूरिस्ट रुके हुए थे, जिनकी जान बचाने की अपनी कहानी है।
11: उस टाइम खाना खाने टाइम हुआ था, ऑर्डर था गेस्ट और का 20-25 जना गेस्ट का ऑर्डर था। उस टाइम में सब खबर आ गया, भागो भागो बोल के सब खाना खा के ये रास्ता हो गया।
7: आंखों के सामने आपने आते हुए देखा?
11: हाँ।
7: कैसा डरावना था?
11: बहुत एकदम डरावना था, बहुत।
7: नुकसान कितना हो गया आपको?
11: नुकसान था उधर 15 रूम था गेस्ट रूम होटल का, अटैच बाथरूम रूम, एसी रूम, हॉल था, डाइनिंग किचन। नुकसान तो कितना आप सरकार ने उसको जान किसी की नहीं गई। चार पांच मिनट के अंदर में भागने सफल हो गया। मोटरसाइकिल था उसमें, मोटरसाइकिल लेने के भी मौका न मिला और शटर लगाने की भी मौका न मिला।
7: यही रास्ता था,
11: ये रास्ता से काम करने वाला स्टाफ पांच जना थे, पांच आदमी थे और मेरा बेटा उधर काम करता थे, वो भी ये रास्ते से ऊपर भागने सफल हो गया।
6: यहाँ रहने वाले अमरीश बताते हैं कि इलाके का मानो भूगोल ही बदल गया है।
7: यहीं पर रहते हैं आप?
12: जी यहीं पर रहते हैं।
7: यहाँ क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं 26 अगस्त के बाद से?
12: बहुत बड़ा परिवर्तन है। हाँ। अब यहाँ पे जो है सड़क का हाइट बढ़ गया है। हाँ। खोला इधर थोड़ा सा उधर से इधर साइड में आ गया है पहले से।
7: मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि ये बैंक और ये जो
12: डेवलपमेंट विकास बैंक,
7: हाँ, ये सब नीचे है और सड़क ऊपर है, ऐसा था या नहीं
12: लग रहा है? नहीं, पहले नहीं था लेकिन अभी लग रहा है। थोड़ा सा नीचे तो था लेकिन कम था।
7: अच्छा, तो अब और नदी इसी तरीके से?
12: नदी तो बहुत परिवर्तन हुआ है पहले।
7: क्या परिवर्तन हुआ है?
12: इसका चौड़ाई बढ़ गया है पहले से।
7: हाँ।
12: ये पूरा खेत था इसके पछाड़ी, पूरे खेत में
7: ये खेत था
12: इसके पछाड़ी।
7: अच्छा।
12: इस साइड में पूरे घर था, यहाँ पे हर आदमी अपना बिजनेस व्यवसाय करता था लोग। यहाँ तक रोड था पहले,
7: यहाँ तक रोड था। अच्छा, इसीलिए ये हम रोड का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला वो चीजें आप देख रहे हैं।
12: हाँ,
7: और इसीलिए यहाँ पर खड़ा होना भी थोड़ी देर के लिए संभव हो पा रहा है।
12: यहाँ बाउंड्री था, यहाँ तक रोड था पहले।
6: इंसान तो इंसान, जानवर भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं।
13: ऊपर
7: छत में फंसा हुआ है कुत्ता, मुर्गा।
13: ये 40-50 है,
7: 40-50 ऊपर फंसा हुआ है,
13: दो आया और उधर है।
7: अच्छा, तो अभी उस सबको निकाल रहे हैं। ये कुत्ता भी ऊपर से है?
13: ऊपर से निकाला अभी,
7: दो
13: था, एक किधर गया मालूम नहीं। ये
7: एकदम ऊपर बेचारे को खाना भी नहीं मिला होगा।
13: खाना नहीं मिला।
7: यही जो छत पे ऊपर एकदम फंस गए थे उन सबको अभी निकाला जा रहा है। ये आपका था? आपका क्या नाम है इसका?
13: स्वीटी।
7: स्वीटी नाम है। स्वीटी आ गई तुम वापस?
14: उसका काम नहीं सुन पाया,
13: खराब हुआ।
6: सबका अपना दर्द है, किसी को अपनों की तलाश है तो कोई फिर से जिंदगी शुरू करने की खुद को हिम्मत दे रहा है। श्वेता सिंह, नुआकोट, नेपाल, आज तक।
0: नेपाल में हुई तबाही से कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। जहां एक घर मकान थे वहां सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है। कुछ गांव तो कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ अब कागजों पर बचे हैं, नामो निशान जिनका मिट गया है।
15: नेपाल की जल त्रासदी किस तीव्रता की थी, इसका अनुमान जब तक लगाया जा रहा होता है तब तक उससे भी विनाशकारी तस्वीरें आ जाती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि कितना विनाश हुआ है, किस स्तर का हुआ है, उसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह, आशुतोष मिश्रा, पंकज दास इस समय नेपाल में मौजूद हैं। संवाददाता आशुतोष मिश्रा जब नुआकोटी के ढुंगे बाजार पहुंचे तो वहां के हालात देखकर हैरान रह गए कि तबाही इस स्तर की भी हो सकती है।
16: इसके आगे जाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, ये लोगों के घर थे, मकान थे, सब कुछ कैसे पूरी तरह बर्बाद हो गया है। एक ऐसी आपदा और मानो जैसे कयामत बरसी हुई शहर पर, सब कुछ तबाह कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5 मंजिल, नीचे की जो 2 मंजिल है वो पूरी तरह मलबे में जा चुकी है और यहीं से ऊंचाई से सोचिए पूरा मलबा आया हुआ होगा। लोग जो घर में होंगे, अगर उन्होंने भागने की भी कोशिश की होगी, वो कैसे भागे होंगे? ऊपरी मंजिल के लोग नीचे कैसे आए होंगे? और क्या इस मलबे में अभी, क्योंकि यहां से लगभग 30 से ज्यादा लोगों को यहां से बरामद किए गए थे शव, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया था, यहां से एयरलिफ्ट किया गया था, लेकिन न जाने कितने लोग, क्योंकि 10,000 की आबादी वाला शहर, न जाने कितने लोग इस शहर के मलबे में अभी भी होंगे।
15: शिप नुआकोट का प्रमुख बाजार था, लेकिन अब इन तस्वीरों को देखिए, बाजार का कहीं नामो निशान नहीं है। ढोंगे के इस बाजार में कई होटल रेस्टोरेंट थे जो अब मलबे में सिमट चुके हैं। सामने एक पेट्रोल पंप भी था, लेकिन अब कुछ दिखाई नहीं देता।
16: ढोंगे बाजार के जिन इलाकों में अब मैं आया हूँ, थोड़े थोड़े करके दिखाई दे रहे हैं। ये जो इमारत है दरअसल निर्माणाधीन थी। अब सोचिए कि कोई अपना आशियाना बना रहा था, परिवार के लिए घर बना रहा था, उसके पहले ही वो घर तबाह हो गया। लोग कहाँ गए कोई नहीं जानता। यहाँ पर कई मंजिला थे, इसमें कुछ कमर्शियल होटल चलते थे। मैं कोशिश करता हूँ क्या इस इलाके तक जाया जा सकता है, लेकिन नहीं जाया जा सकते। देखिए, जूते डालते ही ना जूते यहाँ पर धंस रहे हैं, और इसी के साथ साथ ये जो मलबा है ये थोड़ा ज्यादा रिस्की है, ये लूज मलबा है। हाँ, ये देखिए पूरा दलदल है, इसके ऊपर जाया नहीं जा सकता। दिखने में लग रहा होगा कि मिट्टी का जमावड़ा है, लेकिन जैसे जैसे पानी नमी इसमें जा रही है, ये और पूरा दलदल बनता जा रहा है। आप सोचिए कि अगर इन जगहों से किसी को जाना भी हो, संभावना भी हो, अब आप समझिए कि जहां पर रेस्क्यू बचाव कार्य चल रहे हैं, वहां इस दलदल से लोगों को निकालना कितना मुश्किल होगा, खासकर अगर कोई इमारतों से SOS कॉल भी देता। और इसीलिए हेलीकॉप्टर के जरिए वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, वहां से विंचिंग किए जाते हैं, उन्हें नीचे से जो है लिफ्ट कर लिया जाता है। एयरलिफ्ट एकमात्र ऑप्शन बचा है, क्योंकि इस दलदल में आप चॉपर जो है लैंड नहीं कर सकते इन इलाकों में। देखिए, यहाँ से निकलना जो है ना, ये पूरा कीचड़ है, तो बहुत, अब आप समझिए कि राहत बचाव कार्य यहाँ पर कितना मुश्किल हो रहा होगा।
15: नुआकोटी के ढोंगे बाजार में अब कोई नहीं बचा है। यहाँ का बाजार, यहाँ का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सब खंडहर बन चुके हैं। एक ऐसा खंडहर जो मलबे से भरा हुआ है।
16: तो ढोंगे बाजार की सीमा यहाँ से मेरे लिए खत्म हो रही है, क्योंकि बाजार तो आगे तक है, लेकिन इसके आगे मलबे ने रास्ता रोक रखा है, और वो इतना खतरनाक है कि जोखिम भरा है। लेकिन यहाँ आकर के त्रासदी की जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ, वो बता रही हैं कि आखिर यहाँ जो लोग होंगे वो कितने डरे होंगे, कितने सहमे होंगे। समय था ही नहीं भागने के लिए, और जब तक वो भाग के ऊपर पहुंचते तब तक न जाने कितनी इसकी चपेट में आ गए थे। कहीं पेट्रोल पंप दब चुका है, कहीं कई मंजिला जो इमारत है वो खंडहर बन चुकी है। न जाने कितने लोग थे जो भाग पाए होंगे, न जाने कितने लोग थे जो मलबे में दफन होंगे। कई सारे लोग, निर्दोष लोग, जिन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला होगा। नेपाल की इस तबाही ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है।
15: नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर आसमान पर बनराते रहते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कोई फंसा तो नहीं। त्रिशूली नदी ढोंगे बाजार के बिल्कुल बगल से बहती है। यहीं पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी था। 26 अगस्त की आपदा में वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गया।
16: ये वो त्रिशूली के पास का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, दरअसल पाइपलाइन आपको दिखाई दे रही है, ये भी मलबे में पूरी तरह बह गया। क्योंकि आगे जो त्रिशूली की धारा आप देख रहे हैं, ये इतनी खतरनाक थी कि इसके साथ ये पानी का स्तर जो है ये इतना ऊपर गया 20 से 25 फीट, और उसके बाद इसने पूरे हाइड्रो प्रोजेक्ट को अपने साथ बहा ले गए। दरअसल पुल की कनेक्टिविटी इस इमारत के साथ लगती थी, लेकिन ये सब कुछ बह गया। और अब बड़ा खतरा इस बात का है कि जिस तरह से चीन ने चेतावनी दी है, उस चेतावनी के बाद दरअसल इसी त्रिशूली में, नारायणी में, भटकोशी में जिसका स्तर बढ़ा था, वो पानी फिर बढ़ सकता है। और ऐसे में हालांकि इन इलाके की तबाही अब इतनी हो चुकी है कि और नुकसान क्या ही होगा, लोग बचे नहीं है, जो बचे हैं वो पहाड़ी इलाकों पर चले गए हैं, बाकी की चेतावनी जारी की गई है। लेकिन ये तस्वीरें देख करके आपको अंदाजा लग सकता है कि जो नदी आज इतने नीचे से बह रही है, जिसका बहाव लगभग इतना ही है, वो भी तब जब बरसात हो रही है, वो जब जमीन से 60 से 70 फीट की ऊंचाई पर ले गई होगी, तो अपने साथ कितनी तीव्रता और ताकत लेकर के आई कि उन्हें इन बड़ी बड़ी इमारतों को, पुलों को, हाइड्रो प्रोजेक्ट को सब कुछ नष्ट कर दिया।
15: ढोंगे बाजार से नेपाली सेना ने कई लोगों के शव बरामद किए हैं। जो लोग किसी तरह से यहां से बच निकले थे, अब वो अपने घरों को देखने के लिए लौटे हैं। लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि नेपाली पुलिस लोगों को आगे जाने से रोक रही है।
16: आपका घर कहां पर है?
17: नीला है ना?
16: अच्छा, ऊपर की तरफ।
17: थैंक यू वाला।
16: आप, अच्छा, आप थे उस समय घर पे जब ये सब हो रहा था?
17: पूरा डूब जाए।
16: आप थे यहाँ पे जब देखा था आपने सब कुछ?
17: हाँ, देखा था। ऐसे से आया कि ऐसा उपहार के, ऐसा मार के, सब मार के चल गया। उसके लिए हम आदमी इधर भी आ सकता है समझ गया। उसके बाद हम ऊपर गए।
16: ढूंगे बाजार जैसे ही खत्म होता है उसके आगे त्रिशूली बाजार शुरू होता है और अब ये जो पुलिस वाले हैं वो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि लोग आगे ना जाएं। अभी देखिए महिलाएं बच्चे हैं जिनका अपना जरूरत का सामान है ये लोग। आप कहाँ जा रही हैं? आपका घर है आगे? आप आगे जा रही हैं? देखिए कई सारे लोग हैं जो अपने घरों की ओर या उन इलाकों की ओर जाना चाहते हैं देखने, लेकिन ये कितना जोखिम भरा है। देखिए देख रहे हैं पूरा रास्ता जो है कीचड़ में दबा हुआ है। इसके आगे जाने की पुलिस भी अनुमति नहीं दे रही, इसलिए जो स्थानीय प्रहरी हैं वो भी पहुंचे हैं। लोग अब आए हैं देखने के लिए कि वो इन इलाकों में आगे ना जाएं।
15: आशुतोष मिश्रा, नुआकोटी, नेपाल, आज तक।
0: आपदा नेपाल में आई लेकिन उसके पीड़ित दुनिया के कई देशों के लोग हुए हैं। ये त्रासदी कई परिवारों को कभी ना भरने वाला जख्म दे गए हैं। सैकड़ों भारतीय भी नेपाल में लापता हैं। आपदा की तस्वीरें देखकर परिजन सहमे हुए हैं। अनहोनी की आशंकाएं हैं लेकिन मन में उम्मीद भी है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए।

0: दिल में डर और किसी अनहोनी की आशंका के बीच आंखों में आंसू लिए ये लोग अपनों की तलाश में लगे हैं। इसी उम्मीद के साथ इधर उधर भटक रहे हैं कि किसी तरह अपनों का पता लग सके, उनके सलामत होने की खबर मिले। किसी के हाथों में तस्वीर है, कोई मोबाइल पर तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछताछ कर रहा है, कोई अस्पताल में लगी तस्वीरों के बीच अपनों को तलाश रहा है। नेपाल में आई सैलाबी त्रासदी ने कई परिवारों को दर्द में डुबो दिया है। रेस्क्यू सेंटर से लेकर अस्पताल तक लोग भटक रहे हैं, अपनों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब कोई खबर नहीं मिल रही, कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो आंखें भर आ रही हैं।
1: 8 बजे बात हुई थी उससे, और उसके बाद कुछ भी पता नहीं, किसी से हम लोग को कहीं किसी से कोई।
0: किसी का बेटा लापता, किसी का पति, किसी की बहन, तो किसी का भाई, दिल में आस लेकर उनकी तलाश जारी है।
2: भाई के पता नहीं है, किधर है मालूम नहीं है, हम बहुत दुखी है।
0: नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद से लापता अपने बेटे की तलाश के लिए ये माँ दर दर के चक्कर काट रही है। पहले कई गांव में बच्चों को ढूंढा, फिर रेस्क्यू सेंटर गई, अस्पताल पहुंची, लेकिन बेटे की कोई खबर नहीं लगी।
3: कॉल किया, कॉल नहीं लगा, इधर गांव में भी ढूंढ रहे नहीं मिला, अभी हम लोग भी हॉस्पिटल इधर ढूंढ रहे नहीं मिला।
0: लापता लोगों के परिवार वाले बेहद परेशान हैं। हर दिन बीतने के साथ कई आशंकाएं दिल को भारी कर रही हैं। स्थिति ऐसी है कि मांग हो रही है कि सरकार सुविधा दे, तो खुद रेस्क्यू में शामिल होने के लिए तैयार हैं।
4: अगर कोई सुविधा मिले तो मैं खुद जाना चाहती हूँ, सुविधा मिले तो
5: ढूंढने के लिए।
0: नेपाल की त्रासदी में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिससे अपनों को खोने वालों के मन में खौफ बढ़ता जा रहा है। अस्पताल के बाहर बरामद शवों की तस्वीर लगाई गई है, लोग दिल पर पत्थर रखकर इन तस्वीरों को देख रहे हैं।
6: ये काठमांडू का वो जगह है जहां से बाहर से डेड बॉडी लाके रखी गई है। आप ये पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि उन डेड बॉडी की यहाँ तस्वीर रखी गई है, ताकि इनके जो अपने लोग हैं, इनके रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पे आके इनकी पहचान कर सकें और यहाँ से डेड बॉडी ले जा सकें। इन तस्वीरों को देखकर आप देख सकते हैं कितनी भयावह तस्वीरें हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, विक्षिप्त कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये लोग जब इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो उनके आँखों में आंसू आ जा रहे हैं।
0: आपदा में कई लोग घायल हुए हैं, कई को गंभीर चोटें भी आई हैं, कई घायलों का इलाज काठमांडू के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। नेपाल की कुदरत की तबाही ने कई परिवारों को जीवन भर का जख्म दिया है, कई लोग अब भी लापता हैं, परिवार वाले उनकी तलाश में भटक रहे हैं। नेपाल से श्वेता सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा और पंकज दास आज तक।
7: खबरों का सिलसिला जारी है, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

न्यूयॉर्क के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा धर्म भले ही अलग अलग लेकिन इंसानियत एक, बोले हिंदुत्व का मतलब मुसलमानों को बाहर करना नहीं। उज़्बेकिस्तान दौरे पर ताशकंद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, भारतीय समुदाय से की मुलाकात, दो दिन के बाद विश्व के केएससीओ समिट में शामिल होंगे। खड़गे को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा हमेशा कांग्रेस ने किया दलितों का अपमान, नेता विपक्ष ने हल्द्वानी में शुद्धिकरण का उठाया था मामला। आरक्षण विवाद पर आमने सामने मोदी के दो मंत्री, रिजर्वेशन में जीतन राम मांझी के वर्गीकरण की मांग को चिराग पासवान ने किया खारिज, दोनों ने एक दूसरे का मांगा इस्तीफा।

0: काठमांडू के लिए भेजी राहत की चौथी खेप। नेपाल त्रासदी पर आज तक की कवरेज लगातार जारी है, जहां ग्राउंड जीरो से आज तक आपको हर हालात से रूबरू करा रहे हैं। आज तक की अलग अलग टीमें इस समय अलग अलग हिस्सों से त्रासदी के दंश को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, अपनों की तलाश में लोग भटक रहे हैं। नेपाल के नवाकोट से अब एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: तबाही अपने पीछे ऐसा दर्द छोड़ गई जिसके जख्मों को भरने में कई साल लग जाएंगे। तस्वीरें नेपाल के नुआकोट की हैं। पूरे इलाके का मानो नक्शा ही बदल गया है। सड़क, दुकान, मकान सब बराबर हो गए हैं। जिन घरों में कभी खुशियां चहकती थी, आज उन्हीं घरों के बाहर बेबस और लाचार लोगों का दर्द नजर आ रहा है।
2: ये वो जिला है जो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ नेपाल में आई उस त्रासदी से। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मलबा हट रहा है तो त्रासदी का पैमाना दिख रहा है। इस ऊंचाई से आप वो पूरी तस्वीर देखिए, त्रिशूली नदी अपने तटों को तोड़कर दोनों तरफ ज्यादा चौड़ाई में बह रही है। वो तस्वीरें जहां पर आपको लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, वहां तक सड़क जाती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे शायद एक पगडंडी रही हो और बाकी केवल मलबा। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक बड़ी सी पार्किंग हुआ करती थी। ये बैंक, एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स और आगे आप होटल्स देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में आया करते थे। अब जो इकलौता पर्यटन यहाँ पर है वो उन लोगों का है जो आकर देखना चाहते हैं कि कैसी विनाश लीला रही होगी। जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे। जब आगे वो त्रासदी आई, तबाही आई, बाढ़ मलबे के साथ पानी आया, तो ईश्वर को इस बात का शुक्र तो अदा किया कि अपनी जान बची, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को तिनका तिनका होते भी देखा।
1: स्थानीय लोगों ने ऐसा मंजर देखा जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएंगे।
3: मैंने देखा कि वहाँ से वो पुल से बाढ़ आ गया, तो मैं पहले तो मेरे मम्मी पापा थे दुकान पे ना, तो मैं गई अपनी मम्मी पापा को देखने के लिए कि वो अभी तक वहीं पे या नहीं। अब स्कूटी तो छोड़ दो क्योंकि हमारा अभी यंग है तो हम कमा लेंगे, पर अपने मम्मी पापा को तो बचाना पड़ेगा ना। तो हम चले गए वहाँ पे, तो देखा मम्मी पापा दुकान बंद करके चले गए, भाग गए, तो मैं भी भाग गई उधर से। अगर मैं इधर से आई होगी तो मुझे भी लेके जाएगा था पार्टने, पर वे उधर चले गए।
2: ऊंचा दिख रहा था, ऐसे कैसा आता वो दिख रहा था?
3: नहीं, ऐसे जैसे जो होते ना, जो इसने क्या आते ना, ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर करके हाई करके।
2: अच्छा अच्छा,
3: तो ऐसे चल के आ गया ना, तो कुछ सोचने समझने के टाइम भी नहीं हुआ उस टाइम कि क्या करना चाहिए। देख, क्योंकि कोई रो रहा है उस टाइम देख के, कोई क्या कर रहा है ना, तो ऐसे लगा कि
2: जरूरी था भागना,
3: तेज, वही अपना जान बचाओ सबका। तो कितने लोग रो रहे थे और कितने लोग को तो हमने देखा कि उसको बाढ़ ने भगा के लेके गए। एक को तो हमने
2: देखा सामने,
3: हाँ नहीं ऐसे करके, वो जैसे हम यहाँ पे थे तो उसको हमने हाथ पकड़ के ऊपर
2: आपने बचा लिया।
1: ऋषिका बताती है जिस मोहल्ले में वो खेलती थी आज वो मोहल्ला पूरी तरह से बदल चुका है। अब दूर खड़े होकर वो अपने घर को देख रही है। खुशी इस बात की है कि परिवार के लोग बच गए। उम्र भले ही कच्ची हो, लेकिन इस छोटी उम्र में तबाही ऐसा तजुर्बा दे गई कि जिंदगी को लेकर सोच ही बदल गई।
4: जो हल्का इधर हुआ है, जो ग्रीन कलर का हल्का दिखाई दे रहा है।
2: अच्छा, अच्छा, जो पूरी तरीके से नीचे है, सिर्फ एक मंजिल दिख रहा है जिसका ऊपर।
4: जी जी, जो दस्ता है ना ऊपर का, उस और साइड में है ना, वही मेरा घर है।
2: कितनी देर पहले मम्मी पापा निकल पाए थे?
4: मम्मी पापा बोल रहे थे अगर हम लोग ऐसे मुड़ के पीछे देखते लोग तो शायद पता नहीं क्या होता।
2: मतलब मुड़ के पीछे देखने का भी टाइम नहीं
4: था।
2: ये सब घर यहाँ पे, तो दोस्त वोस्त रहते होंगे तुम्हारे सब?
4: हाँ जी, मेरा फ्रेंड का भी घर जो है ना, जो मंदिर की तरह दिखाई दे रहा है, वो भी मेरे फ्रेंड का ही घर है। और वहाँ पे कुछ भी नहीं रहा, यहाँ पे एक सिस्टर आंटी का की थी, उनका होटल था, बहुत अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था, बहुत अच्छा भी था। वो भी कुछ भी नहीं रहा, यहाँ पे ब्लू कलर का जो है घर देख सकते हैं।
2: किसी का काम बचा ना घर बचा,
4: ना किसी का काम बचा ना घर बचा, कुछ भी नहीं बचा। बस आदमी बच गए ना, वही हम लोग के लिए बहुत काफी है। हम लोग मैं खुशी हूँ कि मेरे पेरेंट्स बच गए हैं, बस वही काफी है। पैसा तो धन बाद में भी हो सकता है ना, पहले आदमी बच गए वही काफी है।
1: रसिका की किस्मत अच्छी थी कि परिवार वाले बच गए, लेकिन यहाँ ऐसे भी कई परिवार हैं जो अपने ही मोहल्ले में अपनों की तलाश कर रहे हैं।
5: मेरी दीदी मिसिंग है और भांजी भी, तीन भांजी, एक दीदी और एक नतनी मिसिंग है।
6: कहाँ रह रहे थे
5: वो लोग? रसुआ और नुआकोट के बॉर्डर पे रहते थे।
6: अच्छा।
5: क्या कहता हूँ मैं,
6: रसुआ नुआकोट के बॉर्डर पे, तो आप हर उस जगह आके ढूंढ रहे हैं कि
5: हर जगह जाने के वहाँ कोई साधन ही नहीं है।
6: हाँ।
5: और वहाँ तक मिसिंग ही है और जा नहीं पा रहे हैं।
6: फोटो एक बार दिखा दीजिए कैमरे पे।
5: ये भांजी हुई, ये भांजी की लड़की हुई।
6: कितने साल की है
5: ये बच्ची? 2 साल की है।
6: 2 साल की
5: जी। ये दीदी हुई।
6: हाँ।
5: ये भांजी है, ये भी भांजी है।
6: तो ये मिल नहीं पा रहे हैं?
5: नहीं मिल पा रहे हैं।
6: आप हर जगह जाके बस
5: ढूंढ रहे हैं?
1: रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक बुरी खबर पूरे परिवार को तोड़कर रख देती है।
6: ये रसुआ की तरफ जाने वाली सड़क है, जैसे जैसे जो राहत कर्मी है वो थोड़ी सी सफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं, किसी न किसी को कोई न कोई बुरी खबर मिलती है।
1: इस इलाके में कई होटल भी थे जिसमें टूरिस्ट रुके हुए थे, जिनकी जान बचाने की अपनी कहानी है।
7: उस टाइम खाना खाने टाइम हुआ था, ऑर्डर था गेस्ट का, 15-20-25 जना गेस्ट का ऑर्डर था। उस टाइम में सब खबर आ गया, भागो भागो बोल गए, सब खाना खा के ये रास्ता हो गए।
6: आंखों के सामने आपने आते हुए देखा?
7: हाँ।
6: कैसा डरावना था?
7: बहुत एकदम डरावना था। बहुत
6: नुकसान कितना हो गया आपको?
7: नुकसान था उधर 15 रूम था गेस्ट रूम होटल का, अटैच बाथरूम रूम, एसी रूम, हॉल था, डाइनिंग किचन। नुकसान तो कितना आप सरकार ने उसको
6: जान किसी के नहीं गई,
7: सरकार ने
6: जान किसी के नहीं गई,
7: नहीं गए, नहीं गए, नहीं जान किसी के नहीं गए। 4-5 मिनट के अंदर में भागने सफल हो गया। मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल था उसमें, मोटरसाइकिल लेने के भी मौका न मिला और शॉटर लगाने की भी मौका नहीं मिला।
6: यही रास्ता था?
7: ये रास्ता से काम करने वाला स्टाफ 5 जना थे, 5 आदमी थे, और मेरा बेटा उधर काम करता थे, वो भी ये रास्ते से ऊपर भागने सफल हो गया।
1: यहाँ रहने वाले अमरीश बताते हैं कि इलाके का मानो भूगोल ही बदल गया है।
6: यहीं पर रहते हैं आप?
8: जी यहीं पर रहते हैं।
6: यहाँ क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं 26 अगस्त के बाद से?
8: बहुत बड़ा परिवर्तन है। हाँ। अब यहाँ पे जो है सड़क का हाइट बढ़ गया है।
6: हाँ।
8: खोला इधर थोड़ा सा उधर से इधर साइड में आ गया है पहले से।
6: मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि ये बैंक और ये जो
8: डेवलपमेंट विकास बैंक,
6: हाँ, ये सब नीचे है और सड़क ऊपर है, ऐसा था या नहीं
8: लग रहा है? नहीं, पहले नहीं था लेकिन अभी लग रहा है। थोड़ा सा नीचे तो था लेकिन कम था।
6: अच्छा, तो अब और नदी इसी तरीके से?
8: नदी तो बहुत परिवर्तन हुआ है पहले।
6: क्या परिवर्तन हुआ है?
8: इसका चौड़ाई बढ़ गया है पहले से।
6: हाँ।
8: ये पूरा खेत था इसके पछाड़ी, पूरे खेत में
6: ये खेत था?
8: खेत था इसके पछाड़ी।
6: अच्छा।
8: इस साइड में पूरे घर था यहाँ। हाँ। पे हर आदमी अपना बिजनेस व्यवसाय करता था लोग। यहाँ तक रोड था पहले,
6: यहाँ तक रोड था। अच्छा, इसीलिए ये हम रोड का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला वो चीजें आप देख रहे हैं।
8: हाँ,
6: और इसीलिए यहाँ पर खड़ा होना भी थोड़ी देर के लिए संभव हो पा रहा है।
8: यहाँ बाउंड्री था, यहाँ तक रोड था पहले।
1: इंसान तो इंसान, जानवर भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं।
9: ऊपर छत नहीं है,
6: छत में फंसा हुआ है कुत्ता मुर्गा।
9: ये 40-50 है,
6: 40-50 ऊपर फंसा हुआ है,
9: दो आया और उधर है।
6: अच्छा, तो अभी उस सबको निकाल रहे हैं। ये कुत्ता भी ऊपर से है?
9: ऊपर से निकाला अभी,
6: दो था,
9: एक किधर गया मालूम नहीं। एक
6: एकदम ऊपर बेचारे को खाना भी नहीं मिला होगा?
9: खाना नहीं मिला।
6: यही जो छत पे ऊपर एकदम फंस गए थे उन सबको अभी निकाला जा रहा है। ये आपका था? आपका क्या नाम है इसका?
9: स्वीटी।
6: स्वीटी नाम है। स्वीटी आ गई तुम वापस?
4: उसका काम नहीं सुनता है,
9: खराब हुआ।
1: सबका अपना दर्द है, किसी को अपनों की तलाश है तो कोई फिर से जिंदगी शुरू करने की खुद को हिम्मत दे रहा है। श्वेता सिंह, नुआकोट, नेपाल, आज तक।
0: नेपाल में हुई तबाही से कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। जहां एक घर मकान थे वहां सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है। कुछ गांव तो कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ अब कागजों पर बचे हैं, नामो निशान जिनका मिट गया है।
10: नेपाल की जल त्रासदी किस तीव्रता की थी इसका अनुमान जब तक लगाया जा रहा होता है तब तक उससे भी विनाशकारी तस्वीरें आ जाती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि कितना विनाश हुआ है, किस स्तर का हुआ है, उसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह, आशुतोष मिश्रा, पंकज दास इस समय नेपाल में मौजूद हैं। संवाददाता आशुतोष मिश्रा जब नुआकोटी के ढुंगे बाजार पहुंचे तो वहां के हालात देखकर हैरान रह गए कि तबाही इस स्तर की भी हो सकती है।
11: इसके आगे जाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, ये लोगों के घर थे, मकान थे, सब कुछ कैसे पूरी तरह बर्बाद हो गया है। एक ऐसी आपदा और मानो जैसे कयामत बरसी हुई शहर पर, सब

0: पूरा मलबा आया हुआ होगा। लोग जो घर में होंगे, अगर उन्होंने भागने की भी कोशिश की होगी, वो कैसे भागे होंगे? ऊपरी मंजिल के लोग नीचे कैसे आए होंगे? और क्या इस मलबे में अभी, क्योंकि यहाँ से लगभग 30 से ज्यादा लोगों को यहाँ से बरामद किए गए थे शव, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया था, यहाँ से एयरलिफ्ट किया गया था, लेकिन न जाने कितने लोग, क्योंकि 10,000 की आबादी वाला शहर, न जाने कितने लोग इस शहर के मलबे में अभी भी होंगे।
1: नुआकोट का प्रमुख बाजार था, लेकिन अब इन तस्वीरों को देखिए, बाजार का कहीं नामो निशान नहीं है। ढूंगे के इस बाजार में कई होटल रेस्टोरेंट थे जो अब मलबे में सिमट चुके हैं। सामने एक पेट्रोल पंप भी था, लेकिन अब कुछ दिखाई नहीं देता।
0: ढूंगे बाजार के जिन इलाकों में अब मैं आया हूँ, थोड़े थोड़े करके दिखाई दे रहे हैं। ये जो इमारत है दरअसल निर्माणाधीन थी। अब सोचिए, कोई अपना आशियाना बना रहा था, परिवार के लिए घर बना रहा था, उसके पहले ही वो घर तबाह हो गया। लोग कहाँ गए कोई नहीं जानता। यहाँ पर कई मंजिला थे, इसमें कुछ कमर्शियल होटल चलते थे। मैं कोशिश करता हूँ क्या इस इलाके तक जाया जा सकता है, लेकिन नहीं जाया जा सकते। देखिए, जूते डालते ही ना जूते यहाँ पर धंस रहे हैं, और इसी के साथ साथ ये जो मलबा है ये थोड़ा ज्यादा रिस्की है, ये लूज मलबा है। हाँ, ये देखिए पूरा दलदल, इसके ऊपर जाया नहीं जा सकता। दिखने में लग रहा होगा कि मिट्टी का जमावड़ा है, लेकिन जैसे जैसे पानी नमी इसमें जा रही है, ये और पूरा दलदल बनता जा रहा है। आप सोचिए कि अगर इन जगहों से किसी को जाना भी हो, संभावना भी हो, अब आप समझिए कि जहां पर रेस्क्यू बचाव कार्य चल रहे हैं, वहां इस दलदल से लोगों को निकालना कितना मुश्किल होगा, खासकर अगर कोई इमारतों से SOS कॉल भी देता। और इसीलिए हेलीकॉप्टर के जरिए वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, वहां से विंचिंग किए जाते हैं, उन्हें नीचे से जो है लिफ्ट कर लिया जाता है। एयरलिफ्ट एकमात्र ऑप्शन बचा है, क्योंकि इस दलदल में आप चॉपर जो है लैंड नहीं कर सकते। इन इलाकों में देखिए, यहाँ से निकलना जो है ना, ये पूरा कीचड़ है, तो बहुत, अब आप समझिए कि राहत बचाव कार्य यहाँ पर कितना मुश्किल हो रहा होगा।
1: नुआकोटी के ढूंगे बाजार में अब कोई नहीं बचा है। यहाँ का बाजार, यहाँ का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सब खंडहर बन चुके हैं। एक ऐसा खंडहर जो मलबे से भरा हुआ है।
0: ढूंगे बाजार की सीमा यहाँ से मेरे लिए खत्म हो रही है, क्योंकि बाजार तो आगे तक है, लेकिन इसके आगे मलबे ने रास्ता रोक रखा है, और वो इतना खतरनाक है कि जोखिम भरा है। लेकिन यहाँ आकर के त्रासदी की जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ, वो बता रही हैं कि आखिर यहाँ जो लोग होंगे वो कितने डरे होंगे, कितने सहमे होंगे। समय था ही नहीं भागने के लिए, और जब तक वो भाग के ऊपर पहुंचते तब तक न जाने कितनी इसकी चपेट में आ गए थे। कहीं पेट्रोल पंप दब चुका है, कहीं कई मंजिला जो इमारत है वो खंडहर बन चुकी है। न जाने कितने लोग थे जो भाग पाए होंगे, न जाने कितने लोग थे जो मलबे में दफन होंगे। कई सारे लोग, निर्दोष लोग, जिन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला होगा। नेपाल की इस तबाही सब कुछ बर्बाद कर दिया है।
1: नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर आसमान पर बनराते रहते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कोई फंसा तो नहीं। त्रिशूली नदी ढूंगे बाजार के बिल्कुल बगल से बहती है। यहीं पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी था। 26 अगस्त की आपदा में वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गया।
0: ये वो त्रिशूली के पास का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, दरअसल पाइपलाइन आपको दिखाई दे रही है, ये भी मलबे में पूरी तरह बह गया। क्योंकि आगे जो त्रिशूली की धारा आप देख रहे हैं, ये इतनी खतरनाक थी कि इसके साथ ये देखो पानी का स्तर जो है ये इतना ऊपर गया 20 से 25 फीट, और उसके बाद इसने पूरे हाइड्रो प्रोजेक्ट को अपने साथ बहा ले गए। दरअसल पुल की कनेक्टिविटी इस इमारत के साथ लगती थी, लेकिन ये सब कुछ बह गया। और अब बड़ा खतरा इस बात का है कि जिस तरह से चीन ने चेतावनी दी है, उस चेतावनी के बाद दरअसल इसी त्रिशूली में, नारायणी में, भटकोशी में जिसका स्तर बढ़ा था, वो पानी फिर बढ़ सकता है। और ऐसे में हालांकि इन इलाके की तबाही अब इतनी हो चुकी है कि और नुकसान क्या ही होगा। लोग बचे नहीं है, जो बचे हैं वो पहाड़ी इलाकों पर चले गए हैं, बाकी की चेतावनी जारी की गई है। लेकिन ये तस्वीरें देख करके आपको अंदाजा लग सकता है कि जो नदी आज इतने नीचे से बह रही है, जिसका बहाव लगभग इतना ही है, वो भी तब जब बरसात हो रही है, वो जब जमीन से 60 से 70 फीट की ऊंचाई पर ले गई होगी, तो अपने साथ कितनी तीव्रता और ताकत लेकर के आई कि उन्हें इन बड़ी बड़ी इमारतों को, पुलों को, हाइड्रो प्रोजेक्ट को सब कुछ नष्ट कर दिया।
1: ढूंगे बाजार से नेपाली सेना ने कई लोगों के शव बरामद किए हैं। जो लोग किसी तरह से यहाँ से बच निकले थे, अब वो अपने घरों को देखने के लिए लौटे हैं। लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि नेपाली पुलिस लोगों को आगे जाने से रोक रही है।
0: आपका घर कहाँ पर है? अच्छा, ऊपर की तरफ।
2: थैंक यू।
0: आप, अच्छा, आप थे उस समय घर पे जब ये सब हो रहा था?
2: पूरा डूब जाए।
0: आप थे यहाँ पे जब देखा था आपने सब कुछ?
2: हाँ, देखा था। ऐसे से आया कि ऐसा उपहार के, ऐसा मार के, सब मार के चल गया। उसके लिए हम बाद में इधर भी आ सकता है, समझ गया। उसके बाद हम ऊपर गए।
0: ढूंगे बाजार जैसे ही खत्म होता है, उसके आगे त्रिशूली बाजार शुरू होता है। और अब ये जो पुलिस वाले हैं, वो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि लोग आगे ना जाएं। अभी देखिए, महिलाएं, बच्चे हैं, जिनका अपना जरूरत का सामान है, ये लोग। आप कहाँ जा रही हैं? आपका घर है आगे? आप आगे जा रही हैं?

0: देखिए कई सारे लोग हैं जो अपने घरों की ओर या उन इलाकों की ओर जाना चाहते हैं देखने, लेकिन ये कितना जोखिम भरा है। देखिए देख रहे हैं पूरा रास्ता जो है कीचड़ में दबा हुआ है, इसके आगे जाने की पुलिस भी अनुमति नहीं दे रही, इसलिए जो स्थानीय प्रहरी हैं वो भी पहुंचे हैं। लोग अब आए हैं देखने के लिए कि वो इन इलाकों में आगे न जाए।
1: आशुतोष मिश्रा, नुआकोटी, नेपाल, आज तक।
2: आपदा नेपाल में आई लेकिन उसके पीड़ित दुनिया के कई देशों के लोग हुए हैं। ये त्रासदी कई परिवारों को कभी ना भरने वाला जख्म दे गए हैं। सैकड़ों भारतीय भी नेपाल में लापता हैं। आपदा की तस्वीरें देखकर परिजन सहमे हुए हैं, अनहोनी की आशंकाएं हैं, लेकिन मन में उम्मीद भी है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए।

0: दिल में डर और किसी अनहोनी की आशंका के बीच आंखों में आंसू लिए ये लोग अपनों की तलाश में लगे हैं। इसी उम्मीद के साथ इधर उधर भटक रहे हैं कि किसी तरह अपनों का पता लग सके, उनके सलामत होने की खबर मिले। किसी के हाथों में तस्वीर है, कोई मोबाइल पर तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछताछ कर रहा है, कोई अस्पताल में लगी तस्वीरों के बीच अपनों को तलाश रहा है। नेपाल में आई सैलाबी त्रासदी ने कई परिवारों को दर्द में डुबो दिया है। रेस्क्यू सेंटर से लेकर अस्पताल तक लोग भटक रहे हैं, अपनों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब कोई खबर नहीं मिल रही, कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो आंखें भर आ रही हैं।
1: 8 बजे बात हुई थी उससे, और उसके बाद कुछ भी पता नहीं, किसी से हम लोग को कहीं किसी से कोई
0: किसी का बेटा लापता, किसी का पति, किसी की बहन, तो किसी का भाई, दिल में आस लेकर उनकी तलाश जारी है।
2: भाई के पता नहीं है, किधर है मालूम नहीं है, हम बहुत दुखी है।
0: नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद से लापता अपने बेटे की तलाश के लिए ये माँ दर दर के चक्कर काट रही है। पहले कई गांव में बच्चों को ढूंढा, फिर रेस्क्यू सेंटर गई, अस्पताल पहुंची, लेकिन बेटे की कोई खबर नहीं लगी।
3: कॉल किया, कॉल नहीं लगा, इधर गांव में भी ढूंढ रहा है, नहीं मिला। अभी हम लोग भी हॉस्पिटल इधर ढूंढ रहे, नहीं मिला है।
0: लापता लोगों के परिवार वाले बेहद परेशान हैं। हर दिन बीतने के साथ कई आशंकाएं दिल को भारी कर रही हैं। स्थिति ऐसी है कि मांग हो रही है कि सरकार सुविधा दे, तो खुद रेस्क्यू में शामिल होने के लिए तैयार हैं।
4: अगर कोई सुविधा मिले तो मैं खुद जाना चाहती हूँ, सुविधा मिले तो
5: ढूंढने के लिए।
0: नेपाल की त्रासदी में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिससे अपनों को खोने वालों के मन में खौफ बढ़ता जा रहा है। अस्पताल के बाहर बरामद शवों की तस्वीर लगाई गई है, लोग दिल पर पत्थर रखकर इन तस्वीरों को देख रहे हैं।
6: ये काठमांडू का वो जगह है जहां से बाहर से डेड बॉडी लाके रखी गई है। आप ये पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि उन डेड बॉडी की यह तस्वीर रखी गई है, ताकि इनके जो अपने लोग हैं, इनके रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पे आके इनकी पहचान कर सके और यहाँ से डेड बॉडी ले जा सके। इन तस्वीरों को देखकर आप देख सकते हैं कितनी भयावह तस्वीरें हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, विक्षिप्त कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये लोग जब इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जा रहे हैं।
0: आपदा में कई लोग घायल हुए हैं, कई को गंभीर चोटें भी आई हैं, कई घायलों का इलाज काठमांडू के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। नेपाल की कुदरत की तबाही ने कई परिवारों को जीवन भर का जख्म दिया है, कई लोग अब भी लापता हैं, परिवार वाले उनकी तलाश में भटक रहे हैं। नेपाल से श्वेता सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा और पंकज दास आज तक।
7: अब बात करते हैं राहुल गांधी के दलित कार्ड की, जहां उन्होंने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस को घेरा है, और इतना ही राहुल गांधी ने हल्द्वानी में हुए शुद्धिकरण को भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान से जोड़ा और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
8: भले ही हल्द्वानी में खड़गे के दौरे के बाद हुए शुद्धिकरण की ये तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हो, लेकिन आज जब राहुल गांधी ने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा तो कांग्रेस अध्यक्ष के अपमान का मुद्दा भी उठाया।
9: कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी है, मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट है, वो रामलीला ग्राउंड में हल्द्वानी में जाते हैं भाषण देने और वहां पर शुद्धिकरण होता है, और उनकी पार्टी का उदाहरण बिहार के चीफ मिनिस्टर मांझी जी, वो मंदिर में जाते हैं और वहां शुद्धिकरण होता है। ये करता कौन है? ये बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं, सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग ये करते हैं और ये क्राइम है। राजस्थान के मंदिर जाते हैं,
8: राहुल गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण की याद दिलाई। एनडीए के नेता जीतन राम मांझी के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण का भी जिक्र किया और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
9: शुद्धिकरण होता है, जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में उन पर एफआईआर लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, आरएसएस के लोगों ने शुद्धिकरण किया है। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर एससी एक्ट में एफआईआर दर्ज किया।
8: जवाब में एनडीए के नेता कांग्रेस राज की याद दिला रहे हैं, दलितों के विकास के लिए कांग्रेस ने क्या किया वो बता रहे हैं।
10: खड़गे जी नामांकन केंद्र के कमरे के बाहर रहेंगे, वी नारायण स्वामी पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री ये इस प्रकार से चप्पल उठाएंगे तो कांग्रेस पार्टी कैसा मानसिकता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और हरियाणा में हरियाणा की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा, उनका क्या मान सम्मान हो रहा है हम सब जानते हैं, बैनर पोस्टर्स उनको गायब कर दिया गया है। तो ये कांग्रेस पार्टी का असल चाल चेहरा चरित्र है। ये दलित समाज दलित सम्मान की बात आपको सिर्फ राजनीति के लिए याद आती है?
11: जो लोग आज इस बात की चिंता कर रहे हैं, देश ने आजादी के बाद लंबे समय तक मौका तो उन्हीं को ही दिया था ना, आज किस मुंह से वो कह रहे हैं कि आज भी समाज में भेदभाव मिटा नहीं है। कई उदाहरण उन्होंने गिनाए, अगर ये उदाहरण आज वो गिना रहे हैं तो आप बताइए एक लंबे समय तक आजादी के बाद और लगभग 4.5-5 दशक तक तो निरंतरता में कांग्रेस की सरकारें रही, उसके बाद भी कांग्रेस के सहयोग की सरकारें रही, उसके बाद भी समाज में अगर भेदभाव अगर होता रहा तो कहीं ना कहीं नींव को मजबूत करने में सफल तो ये लोग भी नहीं रहे।
8: उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुद्धिकरण का मुद्दा राज्यसभा में गूंज चुका है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी।
12: लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए।
13: माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज।
8: उधर शुद्धिकरण के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर सियासत का आरोप लगा रही।
14: लेकिन उत्तराखंड में कोई नहीं जानता कि खड़गे जी की जाति क्या है, वो तो वहां पर जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए और वहां पर गंदगी की गई, वो एक शुद्ध स्थान था, धार्मिक स्थान था, जहां पर रामलीला का मंचन होता है, बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, ऐसे आयोजनों पर जो गंदगी हुई थी, जो धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए थे और एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाए थे, उसके विरोध में लोगों ने जो धार्मिक संगठन थे उन्होंने उस वहाँ पर शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम किया था वो कार्यक्रम था। और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है।
8: युवा महिला और हिंदुत्व के बाद अब राहुल गांधी ने इस बार दलित कार्ड खेला है, जिस पर घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो।
7: अब आज ममता बनर्जी की कैथेड्रल रोड पर टीएमसीपी की बैठक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। दरअसल आरोप है कि हाईकोर्ट की ओर से जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया। टीएमसीपी की बैठक आयोजित की गई और कोर्ट ने सड़क के सिर्फ एक हिस्से पर ही रैली की इजाजत दी थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने दोनों ही हिस्से को घेर लिया और तय समय के बाद भी कार्यक्रम चलता ही रहा।
15: देखिए ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एफआईआर है, तो हम लोग पूरा हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसका सम्मान करते हैं, अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन जनता का अदालत को भी सम्मान तो करना चाहिए। हम लोग कोशिश किया पूरा हाईकोर्ट का ऑर्डर को मानने के लिए, लेकिन अगर कोई ज्यादा कोई चला आएगा वो तो पुलिस का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है देखने का। वो ममता बनर्जी का खिलाफ एफआईआर का कोई वो पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है।
16: ममता बनर्जी को लग रहा है कि वो अभी भी मुख्यमंत्री है, वो न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर है, उनके ऊपर कोर्ट के किसी आदेश का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ममता जी, कानून का शासन चल रहा है बंगाल में, भारत के संविधान का शासन चल रहा है बंगाल में, बंगाल में डबल इंजन की ग्रोथ का शासन चल रहा है, परफॉर्मेंस की गारंटी का शासन चल रहा है। वो आपके भतीजे को बढ़ाने वाला कट मनी रंगदारी वाला शासन खत्म हो चुका है।
7: खबरों का सिलसिला जारी है, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

चुनाव के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा धर्म भले ही अलग अलग लेकिन इंसानियत एक, बोले हिंदुत्व का मतलब मुसलमानों को बाहर करना नहीं। उज़्बेकिस्तान दौरे पर ताशकंद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, भारतीय समुदाय से की मुलाकात, दो दिन के बाद विश्व के केएससीओ समिट में शामिल होंगे। खड़गे को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा हमेशा कांग्रेस ने किया दलितों का अपमान, नेता विपक्ष ने हल्द्वानी में शुद्धिकरण का उठाया था मामला। आरक्षण विवाद पर आमने सामने मोदी के दो मंत्री, रिजर्वेशन में जीतन राम मांझी के वर्गीकरण की मांग को चिराग पासवान ने किया खारिज, दोनों ने एक दूसरे का मांगा इस्तीफा।

0: काठमांडू के लिए भेजी राहत की चौथी खेप। नेपाल त्रासदी पर आज तक की कवरेज लगातार जारी है, जहां ग्राउंड जीरो से आज तक आपको हर हालात से रूबरू करा रहे हैं। आज तक की अलग अलग टीमें इस समय अलग अलग हिस्सों से त्रासदी के दंश को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, अपनों की तलाश में लोग भटक रहे हैं। नेपाल के नवाकोट से अब एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: तबाही अपने पीछे ऐसा दर्द छोड़ गई जिसके जख्मों को भरने में कई साल लग जाएंगे। तस्वीरें नेपाल के नुआकोट की हैं। पूरे इलाके का मानो नक्शा ही बदल गया है। सड़क, दुकान, मकान सब बराबर हो गए हैं। जिन घरों में कभी खुशियां चहकती थी, आज उन्हीं घरों के बाहर बेबस और लाचार लोगों का दर्द नजर आ रहा है।
2: ये वो जिला है जो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ नेपाल में आई उस त्रासदी से। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मलबा हट रहा है तो त्रासदी का पैमाना दिख रहा है। इस ऊंचाई से आप वो पूरी तस्वीर देखिए। त्रिशूली नदी अपने तटों को तोड़कर दोनों तरफ ज्यादा चौड़ाई में बह रही है। वो तस्वीरें जहां पर आपको लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, वहां तक सड़क जाती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे शायद एक पगडंडी रही हो और बाकी केवल मलबा। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक बड़ी सी पार्किंग हुआ करती थी। ये बैंक, एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स और आगे आप होटल्स देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में आया करते थे। अब जो इकलौता पर्यटन यहाँ पर है वो उन लोगों का है जो आकर देखना चाहते हैं कि कैसी विनाश लीला रही होगी। जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे। जब आगे वो त्रासदी आई, तबाही आई, बाढ़ मलबे के साथ पानी आया, तो ईश्वर को इस बात का शुक्र तो अदा किया कि अपनी जान बची, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को तिनका तिनका होते भी देखा।
1: स्थानीय लोगों ने ऐसा मंजर देखा जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएंगे।
3: देखा कि वहाँ से वो पुल से बाढ़ आ गया। तो मैं पहले तो मेरे मम्मी पापा थे दुकान पे ना, तो मैं गई अपनी मम्मी पापा को देखने के लिए कि वो अभी तक वहीं पे या नहीं। अब स्कूटी तो छोड़ दो क्योंकि हमारा अभी यंग है तो हम कमा लेंगे, पर अपने मम्मी पापा को तो बचा लेना पड़ेगा ना। तो हम चले गए वहाँ पे, तो देखा मम्मी पापा दुकान बंद करके चले गए, भाग गए, तो मैं भी भाग गई उधर से। अगर मैं इधर से आई होगी तो मुझे भी लेके जाएगा था पढ़ने, पर वे उधर चले गए।
2: ऊंचा दिख रहा था, ऐसे कैसा होता वो दिख रहा था?
3: नहीं, ऐसे जैसे जो होते ना, जो इसने क्या आते ना, ऐसे ऐसे करके। अच्छा। थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर करके हाई हाई हाई करके।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो ऐसा चल के आ गया ना, तो कुछ सोचने समझने के टाइम भी नहीं हुआ उस टाइम कि क्या करना चाहिए। देख, क्योंकि कोई रो रहा है उस टाइम देख के, कोई क्या कर रहा है ना, तो ऐसे लगा
2: सबसे जरूरी था भागना, तेज,
3: वही अपना जान बचाओ सबका। तो कितने लोग रो रहे थे और कितने लोग को तो हमने देखा कि उसको बाढ़ ने भगा के लेके गए। एक को तो हमने
2: देखा सामने,
3: हाँ नहीं ऐसे करके, वो जैसे हम यहाँ पे थे तो उसको हमने हाथ पकड़ के ऊपर
2: आपने बचा लिया। हाँ।
1: ऋषिका बताती है जिस मोहल्ले में वो खेलती थी आज वो मोहल्ला पूरी तरह से बदल चुका है। अब दूर खड़े होकर वो अपने घर को देख रही है। खुशी इस बात की है कि परिवार के लोग बच गए। उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन इस छोटी उम्र में तबाही ऐसा तजुर्बा दे गई कि जिंदगी को लेकर सोच ही बदल दी।
4: गमला खुला हुआ है ना, जो हल्का इधर जो ग्रीन कलर का हल्का दिखाई दे रहा है।
2: अच्छा, जो पूरी तरीके से नीचे है, सिर्फ एक मंजिल दिख रहा है जिसका ऊपर।
4: जी जी, जो दस्ता है ना ऊपर का, उस और साइड में है ना, वही मेरा घर है।
2: कितनी देर पहले मम्मी पापा निकल पाए थे?
4: मम्मी पापा बोल रहे थे अगर हम लोग ऐसे मुड़ के पीछे देखते लोग तो शायद पता नहीं क्या होता।
2: मतलब मुड़ के पीछे देखने का भी टाइम नहीं था?
4: नहीं था।
2: ये सब घर यहाँ पे, तो दोस्त वोस्त रहते होंगे तुम्हारे सब?
4: जी, मेरा फ्रेंड का भी घर जो है ना, जो मंदिर की तरह दिखाई दे रहा है, वो भी मेरे फ्रेंड का ही घर है। और वहाँ पे कुछ भी नहीं रहा, यहाँ पे एक मिस्टर आंटी का की थी, उनका होटल था, बहुत अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था।
2: हाँ।
4: बहुत अच्छा भी था, वो भी कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पे ब्लू कलर का जो है घर देख सकते हैं,
2: किसी का काम बचा ना घर बचा,
4: ना किसी का काम बचा ना घर बचा, कुछ भी नहीं बचा। बस आदमी बच गए वही हम लोग के लिए बहुत काफी है। हम लोग मैं खुशी हूँ कि मेरे पेरेंट्स बच गए हैं, बस वही काफी है। पैसा तो धन बाद में भी हो सकता है ना, पहले आदमी बच गए वही काफी है।
1: रसिका की किस्मत अच्छी थी कि परिवार वाले बच गए, लेकिन यहाँ ऐसे भी कई परिवार हैं जो अपने ही मोहल्ले में अपनों की ही तलाश कर रहे हैं।
5: मेरी दीदी मिसिंग है और भांजी भी, तीन भांजी एक हाँ। दीदी और एक नतनी मिसिंग है।
2: कहाँ रह रहे थे
5: वो लोग? रसुआ और नुआकोट के बॉर्डर पे रहते थे।
2: अच्छा।
5: क्या कहता हूँ मैं,
2: रसुआ नुआकोट के बॉर्डर पे, तो आप हर उस जगह आके ढूंढ रहे हैं कि
5: हर जगह जाने के वहाँ कोई साधन ही नहीं है और वहाँ तक मिसिंग ही है और जा नहीं पा रहे हैं।
2: फोटो एक बार दिखा दीजिए कैमरे पे।
5: ये भांजी हुई, ये भांजी की लड़की हुई।
2: कितने साल की है
5: ये बच्ची? दो साल की है।
2: दो साल की
5: जी। ये दीदी हुई, ये भांजी है, ये भी भांजी है।
2: तो ये मिल नहीं पा रहे हैं?
5: नहीं मिल पा रहे हैं।
2: आप हर जगह जाके बस
5: ढूंढ रहे हैं।
1: रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक बुरी खबर पूरे परिवार को तोड़कर रख देती है।
2: ये रसुआ की तरफ जाने वाली सड़क है, जैसे जैसे जो राहत कर्मी हैं वो थोड़ी सी सफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं, किसी न किसी को कोई न कोई बुरी खबर मिलती है।
1: इस इलाके में कई होटल भी थे जिसमें टूरिस्ट रुके हुए थे, जिनकी जान बचाने की अपनी कहानी है।
6: उस टाइम खाना खाने टाइम हुआ था, ऑर्डर था गेस्ट का, 15-20-25 जना गेस्ट का ऑर्डर था। उस टाइम में सब खबर आ गया, भागो भागो बोल के सब खाना खा के यही ये रहता हो गया।
2: आंखों के सामने आपने आते हुए देखा?
6: हाँ।
2: कैसा डरावना था?
6: बहुत एकदम डरावना था। बहुत
2: नुकसान कितना हो गया आपको?
6: नुकसान था उधर 15 रूम था गेस्ट रूम होटल का, अटैच बाथरूम रूम, एसी रूम, हॉल था, डाइनिंग किचन। नुकसान तो कितना आप सरकार ने उसको
2: जान किसी की नहीं गई,
6: किसी की सरकार ने
2: जान किसी की नहीं गई,
6: नहीं गई जान किसी की नहीं गई। 4-5 मिनट के अंदर में भागने सफल हो गया। मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल था उसमें, मोटरसाइकिल लेने के भी मौका न मिला और शटर लगाने की भी मौका नहीं मिला।
2: यही रास्ता था?
6: ये रास्ता से काम करने वाला स्टाफ 5 जना थे, 5 आदमी थे, और मेरा बेटा उधर काम करता थे, वो भी ये रास्ते से ऊपर भागने सफल हो गया।
1: यहाँ रहने वाले अमरीश बताते हैं कि इलाके का मानो भूगोल ही बदल गया है।
2: यहीं पर रहते हैं आप?
7: जी यहीं पर रहते हैं।
2: यहाँ क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं 26 अगस्त के बाद से?
7: बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब यहाँ पे जो है सड़क का हाइट बढ़ गया है, खोला इधर थोड़ा सा उधर से इधर साइड में आ गया है पहले से।
2: मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि ये बैंक और ये जो
7: डेवलपमेंट विकास बैंक
2: है, ये सब नीचे है और सड़क ऊपर है, ऐसा था या नहीं
7: लग रहा है? नहीं, पहले नहीं था, लेकिन अभी लग रहा है थोड़ा सा नीचे तो था लेकिन कम था।
2: अच्छा, तो अब और नदी इसी तरीके से?
7: नदी तो बहुत परिवर्तन हुआ है पहले।
2: क्या परिवर्तन हुआ है?
7: इसका चौड़ाई बढ़ गया है पहले से।
2: हाँ।
7: ये पूरा खेत था इसके पछाड़ी, पूरे खेत में
2: ये खेत था
7: इसके पछाड़ी।
2: अच्छा।
7: इस साइड में पूरे घर था, यहाँ पे हर आदमी अपना बिजनेस व्यवसाय करता था लोग। यहाँ तक रोड था पहले,
2: यहाँ तक रोड था। अच्छा, इसीलिए ये हम रोड का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला वो चीजें आप देख रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर खड़ा होना भी थोड़ी देर के लिए संभव हो पा रहा है।
7: यहाँ बाउंड्री था, यहाँ तक रोड था पहले।
1: इंसान तो इंसान, जानवर भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं।
8: ऊपर छत में है,
2: छत में फंसा हुआ है कुत्ता मुर्गा सा।
8: ये 40-50 है,
2: 40-50 ऊपर फंसा हुआ
8: है, दो आया और उधर है।
2: अच्छा, तो अभी उस सबको निकाल रहे हैं। ये कुत्ता भी ऊपर से है?
8: ऊपर से निकाला अभी,
2: दो था,
8: एक किधर गया मालूम नहीं, एक
2: एकदम ऊपर। बेचारे को खाना भी नहीं मिला होगा?
8: खाना नहीं मिला।
2: यही जो छत पे ऊपर एकदम फंस गए थे उन सबको अभी निकाला जा रहा है। ये आपका था? आपका है? क्या नाम है इसका?
8: स्वीटी।
2: स्वीटी नाम है? स्वीटी आ गई तुम वापस?
9: उसका काम नहीं सुन पाए,
8: खराब हुआ।
1: सबका अपना दर्द है, किसी को अपनों की तलाश है तो कोई फिर से जिंदगी शुरू करने की खुद को हिम्मत दे रहा है। श्वेता सिंह, नुआकोट, नेपाल, आज तक।
0: नेपाल में हुई तबाही से कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। जहां एक घर मकान थे वहां सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है। कुछ गांव तो कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ अब कागजों पर बचे हैं, नामो निशान जिनका मिट गया है।
10: नेपाल की जल त्रासदी किस तीव्रता की थी, इसका अनुमान जब तक लगाया जा रहा होता है तब तक उससे भी विनाशकारी तस्वीरें आ जाती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि कितना विनाश हुआ है, किस स्तर का हुआ है, उसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह, आशुतोष मिश्रा, पंकज दास इस समय नेपाल में मौजूद हैं। संवाददाता आशुतोष मिश्रा जब नुआकोटी के ढुंगे बाजार पहुंचे तो वहां के हालात देखकर हैरान रह गए कि तबाही इस स्तर की भी हो सकती है।
11: इसके आगे जाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, ये लोगों के घर थे, मकान थे, सब कुछ कैसे पूरी तरह बर्बाद हो गया है। एक ऐसी आपदा और मानो जैसे कयामत बरसी हो शहर पर, सब कुछ तबाह कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5 मंजिल, नीचे की जो 2 मंजिल है वो पूरी तरह मलबे में जा चुकी है। और यहीं से ऊंचाई से सोचिए पूरा मलबा आया हुआ होगा। लोग जो घर में होंगे, अगर उन्होंने भागने की भी कोशिश की होगी, वो कैसे भागे होंगे? ऊपरी मंजिल के लोग नीचे कैसे आए होंगे? और क्या इस मलबे में अभी, क्योंकि यहां से लगभग 30 से ज्यादा लोगों को यहां से बरामद किए गए थे शव, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया था, यहां से एयरलिफ्ट किया गया था, लेकिन न जाने कितने लोग, क्योंकि 10,000 की आबादी वाला शहर, न जाने कितने लोग इस शहर के मलबे में अभी भी होंगे।
10: नुआकोट का प्रमुख बाजार था, लेकिन अब इन तस्वीरों को देखिए, बाजार का कहीं नामो निशान नहीं है। ढुंगे के इस बाजार में कई होटल रेस्टोरेंट थे जो अब मलबे में सिमट चुके हैं। सामने एक पेट्रोल पंप भी था लेकिन अब कुछ दिखाई नहीं देता।
11: ढुंगे बाजार के जिन इलाकों में अब मैं आया हूँ, थोड़े थोड़े करके दिखाई दे रहे हैं। ये जो इमारत है दरअसल निर्माणाधीन थी। अब सोचिए कि कोई अपना आशियाना बना रहा था, परिवार के लिए घर बना रहा था, उसके पहले ही वो घर तबाह हो गया। लोग कहाँ गए कोई नहीं जानता। यहाँ पर कई मंजिला थे, इसमें कुछ कमर्शियल होटल चलते थे। मैं कोशिश करता हूँ क्या इस इलाके तक जाया जा सकता है, लेकिन नहीं जाया जा सकते। देखिए, जूते डालते ही ना जूते यहाँ पर धंस रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये जो मलबा है ये थोड़ा ज्यादा रिस्की है, ये लूज मलबा है। हाँ, ये देखिए पूरा दलदल, इसके ऊपर जाया नहीं जा सकता। दिखने में लग रहा होगा कि मिट्टी का जमावड़ा है, लेकिन जैसे जैसे पानी नमी इसमें जा रही है, ये और पूरा दलदल बनता जा रहा है। आप सोचिए कि अगर इन जगहों से किसी को जाना भी हो, संभावना भी हो, अब आप समझिए कि जहां पर रेस्क्यू बचाव कार्य चल रहे हैं वहां इस दलदल से लोगों को निकालना कितना मुश्किल होगा, खासकर अगर कोई इमारतों से SOS कॉल भी देता। और इसीलिए हेलीकॉप्टर के जरिए वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, वहां से विंचिंग किए जाते हैं, उन्हें नीचे से जो है लिफ्ट कर लिया जाता है। एयरलिफ्ट एकमात्र ऑप्शन बचा है, क्योंकि इस दलदल में आप चॉपर जो है लैंड नहीं कर सकते। इन इलाकों में देखिए, यहाँ से निकलना जो है ना, ये पूरा कीचड़ है, तो बहुत, अब आप समझिए कि राहत बचाव कार्य यहाँ पर कितना मुश्किल हो रहा होगा।
10: नुआकोटी के ढूंगे बाजार में अब कोई नहीं बचा है। यहाँ का बाजार, यहाँ का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सब खंडहर बन चुके हैं। एक ऐसा खंडहर जो मलबे से भरा हुआ है।
11: ढूंगे बाजार की सीमा यहाँ से मेरे लिए खत्म हो रही है, क्योंकि बाजार तो आगे तक है, लेकिन इसके आगे मलबे ने रास्ता रोक रखा है और वो इतना खतरनाक है कि जोखिम भरा है। लेकिन यहाँ आकर के त्रासदी की जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ, वो बता रही हैं कि आखिर यहाँ जो लोग होंगे वो कितने डरे होंगे, कितने सहमे होंगे। समय था ही नहीं भागने के लिए, और जब तक वो भाग के ऊपर पहुंचते तब तक न जाने कितनी इसकी चपेट में आ गए थे। कहीं पेट्रोल पंप दब चुका है, कहीं कई मंजिला जो इमारत है वो खंडहर बन चुकी है। न जाने कितने लोग थे जो भाग पाए होंगे, न जाने कितने लोग थे जो मलबे में दफन होंगे। कई सारे लोग, निर्दोष लोग, जिन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला होगा। नेपाल की इस तबाही ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है।
10: नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर आसमान पर बनराते रहते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कोई फंसा तो नहीं। त्रिशूली नदी ढुंगे बाजार के बिल्कुल बगल से बहती है। यहीं पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी था। 26 अगस्त की आपदा में वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गया।
11: ये वो त्रिशूली के पास का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, दरअसल पाइपलाइन आपको दिखाई दे रही है। ये भी मलबे में पूरी तरह बह गया, क्योंकि आगे जो त्रिशूली की धारा आप देख रहे हैं ये इतनी खतरनाक थी कि इसके साथ ये देखो पानी का स्तर जो है ये इतना ऊपर गया 20 से 25 फीट, और उसके बाद इसने पूरे हाइड्रो प्रोजेक्ट को अपने साथ बहा ले गए। दरअसल पुल की कनेक्टिविटी इस इमारत के साथ लगती थी, लेकिन ये सब कुछ बह गया। और अब बड़ा खतरा इस बात का है कि जिस तरह से चीन ने चेतावनी दी है उस चेतावनी के बाद दरअसल इसी त्रिशूली में, नारायणी में, भटकोशी में जिनका स्तर बढ़ा था वो पानी फिर बढ़ सकता है। और ऐसे में हालांकि इन इलाके की तबाही अब इतनी हो चुकी है कि और नुकसान क्या ही होगा, लोग बचे नहीं है, जो बचे हैं वो पहाड़ी इलाकों पर चले गए हैं, बाकी की चेतावनी जारी की गई है। लेकिन ये तस्वीरें देख करके आपको अंदाजा लग सकता है कि जो नदी आज इतने नीचे से बह रही है, जिसका बहाव लगभग इतना ही है, वो भी तब जब बरसात हो रही है, वो जब जमीन से 60 से 70 फीट की ऊंचाई पर ले गई होगी तो अपने साथ कितनी तीव्रता और ताकत लेकर के आई कि उन्हें इन बड़ी बड़ी इमारतों को, पुलों को, हाइड्रो प्रोजेक्ट को सब कुछ नष्ट कर दिया।
10: ढुंगे बाजार से नेपाली सेना ने कई लोगों के शव बरामद किए हैं। जो लोग किसी तरह से यहां से बच निकले थे अब वो अपने घरों को देखने के लिए लौटे हैं। लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि नेपाली पुलिस लोगों को आगे जाने से रोक रही है।
11: आपका घर कहां पर है?
12: नीला है ना?
11: अच्छा, ऊपर की तरफ।
12: थैंक यू।
11: आप अच्छा, आप थे उस समय घर पे जब ये सब हो रहा था?
12: पूरा डूब जाए।
11: आप थे यहाँ पे जब देखा था आपने सब कुछ?
12: हाँ देखा था। ऐसे से आया कि ऐसा उफर के, ऐसा मार के, सब मार के चल गया। उसके लिए हम बाद में इधर भी आ सकता है समझ गया। उसके बाद हम ऊपर गए।
11: ढूंगे बाजार जैसे ही खत्म होता है उसके आगे त्रिशूली बाजार शुरू होता है। और अब ये जो पुलिस वाले हैं वो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि लोग आगे ना जाएं। अभी देखिए महिलाएं बच्चे हैं जिनका अपना जरूरत का सामान है ये लोग। आप कहाँ जा रही हैं? आपका घर है आगे? आप आगे जा रही हैं? देखिए कई सारे लोग हैं जो अपने घरों की ओर या उन इलाकों की ओर जाना चाहते हैं देखने, लेकिन ये कितना जोखिम भरा है। देखिए देख रहे हैं पूरा रास्ता जो है कीचड़ में दबा हुआ है। इसके आगे जाने की पुलिस भी अनुमति नहीं दे रही, इसलिए जो स्थानीय प्रहरी हैं वो भी पहुंचे हैं। लोग अब आए हैं देखने के लिए कि वो इन इलाकों में आगे न जाएं।
10: आशुतोष मिश्रा, नुआकोटी, नेपाल, आज तक।
0: आपदा नेपाल में आई लेकिन उसके पीड़ित दुनिया के कई देशों के लोग हुए हैं। ये त्रासदी कई परिवारों को कभी ना भरने वाला जख्म दे गए हैं। सैकड़ों भारतीय भी नेपाल में लापता हैं। आपदा की तस्वीरें देखकर परिजन सहमे हुए हैं। अनहोनी की आशंकाएं हैं लेकिन मन में उम्मीद भी है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए।

0: दिल में डर और किसी अनहोनी की आशंका के बीच आंखों में आंसू लिए ये लोग अपनों की तलाश में लगे हैं। इसी उम्मीद के साथ इधर उधर भटक रहे हैं कि किसी तरह अपनों का पता लग सके, उनके सलामत होने की खबर मिले। किसी के हाथों में तस्वीर है, कोई मोबाइल पर तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछताछ कर रहा है, कोई अस्पताल में लगी तस्वीरों के बीच अपनों को तलाश रहा है। नेपाल में आई सैलाबी त्रासदी ने कई परिवारों को दर्द में डुबो दिया है। रेस्क्यू सेंटर से लेकर अस्पताल तक लोग भटक रहे हैं, अपनों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब कोई खबर नहीं मिल रही, कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो आंखें भर आ रही हैं।
1: 8 बजे बात हुई थी उससे, और उसके बाद कुछ भी पता नहीं, किसी से हम लोग को कहीं किसी से कोई
0: किसी का बेटा लापता, किसी का पति, किसी की बहन, तो किसी का भाई, दिल में आस लेकर उनकी तलाश जारी है।
2: भाई के पता नहीं है, किधर है मालूम नहीं है, हम बहुत दुखी है।
0: नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद से लापता अपने बेटे की तलाश के लिए ये माँ दर दर के चक्कर काट रही है। पहले कई गांव में बच्चों को ढूंढा, फिर रेस्क्यू सेंटर गई, अस्पताल पहुंची, लेकिन बेटे की कोई खबर नहीं लगी।
3: कॉल किया, कॉल नहीं लगा, इधर गांव में भी ढूंढ रहे नहीं मिला, अभी हम लोग भी हॉस्पिटल इधर ढूंढ रहे नहीं मिला।
0: लापता लोगों के परिवार वाले बेहद परेशान हैं। हर दिन बीतने के साथ कई आशंकाएं दिल को भारी कर रही हैं। स्थिति ऐसी है कि मांग हो रही है कि सरकार सुविधा दे, तो खुद रेस्क्यू में शामिल होने के लिए तैयार हैं।
4: अगर कोई सुविधा मिले तो मैं खुद जाना चाहती हूँ, सुविधा मिले तो
5: ढूंढने के लिए।
0: नेपाल की त्रासदी में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिससे अपनों को खोने वालों के मन में खौफ बढ़ता जा रहा है। अस्पताल के बाहर बरामद शवों की तस्वीर लगाई गई है, लोग दिल पर पत्थर रखकर इन तस्वीरों को देख रहे हैं।
6: ये काठमांडू का वो जगह है जहां से बाहर से डेड बॉडी लाके रखी गई है। आप ये पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि उन डेड बॉडी की यह तस्वीर रखी गई है, ताकि इनके जो अपने लोग हैं, इनके रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पे आके इनकी पहचान कर सके और यहाँ से डेड बॉडी ले जा सके। इन तस्वीरों को देखकर आप देख सकते हैं कितनी भयावह तस्वीरें हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, विक्षिप्त कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये लोग जब इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जा रहे हैं।
0: आपदा में कई लोग घायल हुए हैं, कई को गंभीर चोटें भी आई हैं, कई घायलों का इलाज काठमांडू के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। नेपाल की कुदरत की तबाही ने कई परिवारों को जीवन भर का जख्म दिया है, कई लोग अब भी लापता हैं, परिवार वाले उनकी तलाश में भटक रहे हैं। नेपाल से श्वेता सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा और पंकज दास आज तक।
7: अब बात करते हैं राहुल गांधी के दलित कार्ड की, जहां उन्होंने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस को घेरा है, और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने हल्द्वानी में हुए शुद्धिकरण को भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान से जोड़ा और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
8: भले ही हल्द्वानी में खड़गे के दौरे के बाद हुए शुद्धिकरण की ये तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हो, लेकिन आज जब राहुल गांधी ने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा तो कांग्रेस अध्यक्ष के अपमान का मुद्दा भी उठाया।
9: कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी है, मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट है, वो रामलीला ग्राउंड में हल्द्वानी में जाते हैं भाषण देने और वहां पर शुद्धिकरण होता है, और उनकी पार्टी का उदाहरण बिहार के चीफ मिनिस्टर मांझी जी, वो मंदिर में जाते हैं और वहां शुद्धिकरण होता है। ये करता कौन है? ये बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं, सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग ये करते हैं और ये क्राइम है। राजस्थान के मंदिर जाते हैं।
8: राहुल गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण की याद दिलाई। एनडीए के नेता जीतन राम मांझी के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण का भी जिक्र किया और मामले में FIR दर्ज करने की मांग की।
9: शुद्धिकरण होता है, जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में उन पर FIR लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, आरएसएस के लोगों ने शुद्धिकरण किया है। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ FIR SC एक्ट में FIR दर्ज किया।
8: जवाब में एनडीए के नेता कांग्रेस राज की याद दिला रहे हैं। दलितों के विकास के लिए कांग्रेस ने क्या किया वो बता रहे हैं।
10: खड़गे जी नामांकन केंद्र के कमरे के बाहर रहेंगे। वी नारायण स्वामी पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री ये इस प्रकार से चप्पल उठाएंगे तो कांग्रेस पार्टी कैसा मानसिकता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और हरियाणा में हरियाणा की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा, उनका क्या मान सम्मान हो रहा है हम सब जानते हैं। बैनर पोस्टर्स उनको गायब कर दिया गया है। तो ये कांग्रेस पार्टी का असल चाल चेहरा चरित्र है। ये दलित समाज दलित सम्मान की बात आपको सिर्फ राजनीति के लिए याद आती है।
11: जो लोग आज इस बात की चिंता कर रहे हैं, देश ने आजादी के बाद लंबे समय तक मौका तो उन्हीं को ही दिया था ना। आज किस मुंह से वो कह रहे हैं कि आज भी समाज में भेदभाव मिटा नहीं है। कई उदाहरण उन्होंने गिनाए। अगर ये उदाहरण आज वो गिना रहे हैं तो आप बताइए एक लंबे समय तक आजादी के बाद और लगभग 4.5-5 दशक तक तो निरंतरता में कांग्रेस की सरकारें रही, उसके बाद भी कांग्रेस के सहयोग की सरकारें रही, उसके बाद भी समाज में अगर भेदभाव अगर होता रहा तो कहीं ना कहीं नींव को मजबूत करने में सफल तो ये लोग भी नहीं रहे।
8: उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुद्धिकरण का मुद्दा राज्यसभा में गूंज चुका है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी।
12: लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए।
13: माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज।
8: उधर शुद्धिकरण के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर सियासत का आरोप लगा रही।
14: लेकिन उत्तराखंड में कोई नहीं जानता कि खड़गे जी की जाति क्या है। वो तो वहां पर जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए और वहां पर गंदगी की गई, वो एक शुद्ध स्थान था, धार्मिक स्थान था, जहां पर रामलीला का मंचन होता है, बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं। ऐसे आयोजनों पर जो गंदगी हुई थी, जो धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए थे और एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाए थे, उसके विरोध में लोगों ने, जो धार्मिक संगठन थे, उन्होंने उस वहाँ पर शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम किया था वो कार्यक्रम था। और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है।
8: युवा, महिला और हिंदुत्व के बाद अब राहुल गांधी ने इस बार दलित कार्ड खेला है, जिस पर घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो।
7: अब आज ममता बनर्जी की कैथेड्रल रोड पर TMCP की बैठक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ हेयर स्ट्रीट थाने में FIR दर्ज करवाए गए हैं। दरअसल आरोप है कि हाईकोर्ट की ओर से जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया। TMCP की बैठक आयोजित की गई और कोर्ट ने सड़क के सिर्फ एक हिस्से पर ही रैली की इजाजत दी थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने दोनों ही हिस्से को घेर लिया और तय समय के बाद भी कार्यक्रम चलता ही रहा।
15: ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एफआईआर है, तो हम लोग पूरा हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसका सम्मान करते हैं, अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन जनता का अदालत को भी सम्मान तो करना चाहिए। हम लोग कोशिश किया पूरा हाईकोर्ट का ऑर्डर को मानने के लिए, लेकिन अगर कोई ज्यादा कोई चला आएगा वो तो पुलिस का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखने का। वो ममता बनर्जी का खिलाफ एफआईआर का कोई वो पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है।
7: खबरों का सिलसिला जारी है, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

न्यूयॉर्क के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा धर्म भले ही अलग अलग लेकिन इंसानियत एक, बोले हिंदुत्व का मतलब मुसलमानों को बाहर करना नहीं। उज़्बेकिस्तान दौरे पर ताशकंद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, भारतीय समुदाय से की मुलाकात, दो दिन के बाद विश्व के केएससीओ समिट में शामिल होंगे। खड़गे को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा हमेशा कांग्रेस ने किया दलितों का अपमान, नेता विपक्ष ने हल्द्वानी में शुद्धिकरण का उठाया था मामला। आरक्षण विवाद पर आमने सामने मोदी के दो मंत्री, रिजर्वेशन में जीतन राम मांझी के वर्गीकरण की मांग को चिराग पासवान ने किया खारिज, दोनों ने एक दूसरे का मांगा इस्तीफा।

0: काठमांडू के लिए भेजी राहत की चौथी खेप। नेपाल त्रासदी पर आज तक की कवरेज लगातार जारी है, जहां ग्राउंड जीरो से आज तक आपको हर हालात से रूबरू करा रहे हैं। आज तक की अलग अलग टीमें इस समय अलग अलग हिस्सों से त्रासदी के दंश को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, अपनों की तलाश में लोग भटक रहे हैं। नेपाल के नवाकोट से अब एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: तबाही अपने पीछे ऐसा दर्द छोड़ गई जिसके जख्मों को भरने में कई साल लग जाएंगे। तस्वीरें नेपाल के नुआकोट की हैं। पूरे इलाके का मानो नक्शा ही बदल गया है। सड़क, दुकान, मकान सब बराबर हो गए हैं। जिन घरों में कभी खुशियां चहकती थी, आज उन्हीं घरों के बाहर बेबस और लाचार लोगों का दर्द नजर आ रहा है।
2: ये वो जिला है जो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ नेपाल में आई उस त्रासदी से। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मलबा हट रहा है तो त्रासदी का पैमाना दिख रहा है। इस ऊंचाई से आप वो पूरी तस्वीर देखिए, त्रिशूली नदी अपने तटों को तोड़कर दोनों तरफ ज्यादा चौड़ाई में बह रही है। वो तस्वीरें जहां पर आपको लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, वहां तक सड़क जाती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे शायद एक पगडंडी रही हो और बाकी केवल मलबा। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक बड़ी सी पार्किंग हुआ करती थी। ये बैंक, एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स और आगे आप होटल्स देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में आया करते थे। अब जो इकलौता पर्यटन यहाँ पर है वो उन लोगों का है जो आकर देखना चाहते हैं कि कैसी विनाश लीला रही होगी। जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे। जब आगे वो त्रासदी आई, तबाही आई, बाढ़ मलबे के साथ पानी आया, तो ईश्वर को इस बात का शुक्र तो अदा किया कि अपनी जान बची, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को तिनका तिनका होते भी देखा।
1: स्थानीय लोगों ने ऐसा मंजर देखा जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएंगे।
3: मैंने देखा कि वहाँ से वो पुल से बाढ़ आ गया, तो मैं पहले तो मेरे मम्मी पापा थे दुकान पे ना, तो मैं गई अपनी मम्मी पापा को देखने के लिए कि वो अभी तक वहीं पे या नहीं। अब स्कूटी तो छोड़ दो क्योंकि हमारा अभी यंग है तो हम कमा लेंगे, पर अपने मम्मी पापा को तो बचाना पड़ेगा ना। तो हम चले गए वहाँ पे, तो देखा मम्मी पापा दुकान बंद करके चले गए, भाग गए, तो मैं भी भाग गई उधर से। अगर मैं इधर से आई होगी तो मुझे भी लेके जाएगा था पार्टने, पर वे उधर चले गए।
2: ऊंचा दिख रहा था, ऐसे कैसा आता वो दिख रहा था?
3: नहीं, ऐसे जैसे जो होते ना, जो इसने क्या आते ना, ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर करके हाई करके।
2: अच्छा अच्छा,
3: तो ऐसे चल के आ गया ना, तो कुछ सोचने समझने के टाइम भी नहीं हुआ उस टाइम कि क्या करना चाहिए। देख, क्योंकि कोई रो रहा है उस टाइम देख के, कोई क्या कर रहा है ना, तो ऐसे लगा कि
2: जरूरी था भागना
3: तेज, वही अपना जान बचाओ सबका। तो कितने लोग रो रहे थे और कितने लोग को तो हमने देखा कि उसको बाढ़ ने भगा के लेके गए। एक को तो हमने
2: देखा सामने,
3: हाँ नहीं ऐसे करके, वो जैसे हम यहाँ पे थे तो उसको हमने हाथ पकड़ के ऊपर
2: आपने बचा लिया। हाँ,
1: ऋषिका बताती है जिस मोहल्ले में वो खेलती थी आज वो मोहल्ला पूरी तरह से बदल चुका है। अब दूर खड़े होकर वो अपने घर को देख रही है। खुशी इस बात की है कि परिवार के लोग बच गए। उम्र भले ही कच्ची हो, लेकिन इस छोटी उम्र में तबाही ऐसा तजुर्बा दे गई कि जिंदगी को लेकर सोच ही बदल गई।
4: जो हल्का इधर हुआ है, जो ग्रीन कलर का हल्का दिखाई दे रहा है।
2: अच्छा, जो पूरी तरीके से नीचे है, सिर्फ एक मंजिल दिख रहा है जिसका ऊपर।
4: जी जी, जो दस्ता है ना ऊपर का, उस और साइड में है ना, वही मेरा घर है।
2: कितनी देर पहले मम्मी पापा निकल पाए थे?
4: मम्मी पापा बोल रहे थे लोग, अगर हम लोग ऐसे मुड़ के पीछे देखते लोग तो शायद पता नहीं क्या होता।
2: मतलब मुड़ के पीछे देखने का भी टाइम नहीं था। ये सब घर यहाँ पे, तो दोस्त वोस्त रहते होंगे तुम्हारे सब?
4: हाँ जी, मेरा फ्रेंड का भी घर जो है ना, जो मंदिर की तरह दिखाई दे रहा है, वो भी मेरे फ्रेंड का ही घर है। और वहाँ पे कुछ भी नहीं रहा, यहाँ पे एक सिस्टर आंटी का की थी, उनका होटल था, बहुत अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था। हाँ। बहुत अच्छा भी था, वो भी कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पे ब्लू कलर का जो है घर देख सकते हैं।
2: किसी का काम बचा ना घर बचा,
4: ना किसी का काम बचा ना घर बचा, कुछ भी नहीं बचा। बस आदमी बच गए ना, वही हम लोग के लिए बहुत काफी है। हम लोग मैं खुशी हूँ कि मेरे पेरेंट्स बच गए हैं, बस वही काफी है। पैसा तो धन बाद में भी हो सकता है ना, पहले आदमी बच गए वही काफी है।
1: रसिका की किस्मत अच्छी थी कि परिवार वाले बच गए, लेकिन यहाँ ऐसे भी कई परिवार हैं जो अपने ही मोहल्ले में अपनों की ही तलाश कर रहे हैं।
5: मेरी दीदी मिसिंग है और भांजी भी, तीन भांजी, एक दीदी और एक नतनी मिसिंग है।
6: कहाँ रह रहे थे
5: वो लोग? रसुआ और नुआकोट के बॉर्डर पे रहते थे।
6: अच्छा।
5: क्या कहता हूँ मैं,
6: रसुआ नुआकोट के बॉर्डर पे, तो आप हर उस जगह आके ढूंढ रहे हैं कि
5: हर जगह जाने के वहाँ कोई साधन ही नहीं है। हाँ। और वहाँ तक मिसिंग ही है और जा नहीं पा रहे हैं।
6: फोटो एक बार दिखा दीजिए कैमरे पे।
5: ये भांजी हुई, ये भांजी की लड़की हुई।
6: कितने साल की है
5: ये बच्ची? 2 साल की है।
6: 2 साल की
5: जी। ये दीदी हुई। हाँ। ये भांजी है, ये भी भांजी है।
6: तो ये मिल नहीं पा रहे हैं?
5: नहीं मिल पा रहे हैं।
6: आप हर जगह जाके ढूंढ
5: रहे हैं?
1: रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक बुरी खबर पूरे परिवार को तोड़ कर रख देती है।
6: ये रसुआ की तरफ जाने वाली सड़क है, जैसे जैसे जो राहत कर्मी है वो थोड़ी सी सफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं, किसी न किसी को कोई न कोई बुरी खबर मिलती है।
1: इस इलाके में कई होटल भी थे जिसमें टूरिस्ट रुके हुए थे, जिनकी जान बचाने की अपनी कहानी है।
7: उस टाइम खाना खाने टाइम हुआ था, ऑर्डर था गेस्ट का, 15-20-25 जना गेस्ट का ऑर्डर था। हाँ। उस टाइम में सब खबर आ गया। हाँ। भागो भागो बोल गए। हाँ। सब खाना खा के ये रास्ता हो गए।
6: आंखों के सामने आपने आते हुए देखा?
7: हाँ।
6: कैसा डरावना था?
7: बहुत एकदम डरावना था। बहुत
6: नुकसान कितना हो गया आपको?
7: नुकसान था उधर 15 रूम था गेस्ट रूम होटल का, अटैच बाथरूम रूम, एसी रूम, हॉल था, डाइनिंग किचन। नुकसान तो कितना आप सरकार ने उसको जान किसी की नहीं गई। 4-5 मिनट के अंदर में भागने सफल हो गया। मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल था उसमें, मोटरसाइकिल लेने के भी मौका न मिला और शटर लगाने की भी मौका नहीं मिला।
6: यही रास्ता था?
7: ये रास्ता से काम करने वाला स्टाफ 5 जना थे, 5 आदमी थे, और मेरा बेटा उधर काम करता था, वो भी ये रास्ते से ऊपर भागने सफल हो गया।
1: यहाँ रहने वाले अमरीश बताते हैं कि इलाके का मानो भूगोल ही बदल गया है।
6: यहीं पर रहते हैं आप?
8: जी, यहीं पर रहते हैं।
6: यहाँ क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं 26 अगस्त के बाद से?
8: बहुत बड़ा परिवर्तन है। हाँ। अब यहाँ पे जो है सड़क का हाइट बढ़ गया है। हाँ। खोला इधर थोड़ा सा उधर से इधर साइड में आ गया है पहले से।
6: मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि ये बैंक और ये जो
8: डेवलपमेंट विकास बैंक,
6: हाँ, ये सब नीचे है और सड़क ऊपर है, ऐसा था या नहीं?
8: लग रहा है नहीं, पहले नहीं था लेकिन अभी लग रहा है। थोड़ा सा नीचे तो था लेकिन कम था।
6: अच्छा, तो अब और नदी इसी तरीके से?
8: नदी तो बहुत परिवर्तन हुआ है पहले।
6: क्या परिवर्तन हुआ है?
8: इसका चौड़ाई बढ़ गया है पहले से।
6: हाँ।
8: ये पूरा खेत था इसके पछाड़ी, पूरे खेत में
6: ये खेत था?
8: खेत था इसके पछाड़ी।
6: अच्छा।
8: इस साइड में पूरे घर था यहाँ। हाँ। पे हर आदमी अपना बिजनेस व्यवसाय करता था लोग। यहाँ तक रोड था पहले,
6: यहाँ तक रोड था। अच्छा, इसीलिए ये हम रोड का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला वो चीजें आप देख रहे हैं।
8: हाँ,
6: और इसीलिए यहाँ पर खड़ा होना भी थोड़ी देर के लिए संभव हो पा रहा है।
8: यहाँ बाउंड्री था, इसलिए यहाँ तक रोड था पहले।
1: इंसान तो इंसान, जानवर भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं।
9: ऊपर छत में है,
6: छत में फंसा हुआ है कुत्ता मुर्गा,
9: ये 40-50 है,
6: 40-50 ऊपर फंसा हुआ है,
9: दो आया और उधर है।
6: अच्छा, तो अभी उस सबको निकाल रहे हैं। ये कुत्ता भी ऊपर से है?
9: ऊपर से निकाला, अभी
6: दो था,
9: एक किधर गया मालूम नहीं, एक
6: एकदम ऊपर। बेचारे को खाना भी नहीं मिला होगा?
9: खाना नहीं मिला।
6: यही जो छत पे ऊपर एकदम फंस गए थे, उन सबको अभी निकाला जा रहा है। ये आपका था? आपका क्या नाम है इसका?
9: स्वीटी।
6: स्वीटी नाम है? स्वीटी, आ गई तुम वापस?
9: खराब हुआ।
1: सबका अपना दर्द है, किसी को अपनों की तलाश है तो कोई फिर से जिंदगी शुरू करने की खुद को हिम्मत दे रहा है। श्वेता सिंह, नुआकोट, नेपाल, आज तक।
0: नेपाल में हुई तबाही से कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। जहां एक घर मकान थे वहां सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है। कुछ गांव तो कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ अब कागजों पर बचे हैं, नामो निशान जिनका मिट गया है।
10: नेपाल की जल त्रासदी किस तीव्रता की थी, इसका अनुमान जब तक लगाया जा रहा होता है तब तक उससे भी विनाशकारी तस्वीरें आ जाती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि कितना विनाश हुआ है, किस स्तर का हुआ है, उसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह, आशुतोष मिश्रा, पंकज दास इस समय नेपाल में मौजूद हैं। संवाददाता आशुतोष मिश्रा जब नुआकोटी के ढुंगे बाजार पहुंचे तो वहां के हालात देखकर हैरान रह गए कि तबाही इस स्तर की भी हो सकती है।
11: इसके आगे जाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, ये लोगों के घर थे, मकान थे, सब कुछ कैसे पूरी तरह बर्बाद हो गया है। एक ऐसी आपदा और मानो जैसे कयामत बरसी हुए शहर पर, सब कुछ तबाह कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5 मंजिल, नीचे की जो 2 मंजिल है वो पूरी तरह मलबे में जा चुकी है और यहीं से ऊंचाई से सोचिए पूरा मलबा आया हुआ होगा। लोग जो घर में होंगे, अगर उन्होंने भागने की भी कोशिश की होगी, वो

0: किया गया था, लेकिन न जाने कितने लोग, क्योंकि 10,000 की आबादी वाला शहर, न जाने कितने लोग इस शहर के मलबे में अभी भी होंगे।
1: शिप नुआकोट का प्रमुख बाजार था, लेकिन अब इन तस्वीरों को देखिए, बाजार का कहीं नामो निशान नहीं है। ढूंगे के इस बाजार में कई होटल रेस्टोरेंट थे जो अब मलबे में सिमट चुके हैं। सामने एक पेट्रोल पंप भी था, लेकिन अब कुछ दिखाई नहीं देता।
0: ढूंगे बाजार के जिन इलाकों में अब मैं आया हूँ, थोड़े थोड़े करके दिखाई दे रहे हैं। ये जो इमारत है दरअसल निर्माणाधीन थी। अब सोचिए कि कोई अपना आशियाना बना रहा था, परिवार के लिए घर बना रहा था, उसके पहले ही वो घर तबाह हो गया। लोग कहाँ गए कोई नहीं जानता। यहाँ पर कई मंजिला थे, इसमें कुछ कमर्शियल होटल चलते थे। मैं कोशिश करता हूँ क्या इस इलाके तक जाया जा सकता है, लेकिन नहीं जाया जा सकते। देखिए जूते डालते ही ना जूते यहाँ पर धंस रहे हैं, और इसी के साथ साथ ये जो मलबा है ये थोड़ा ज्यादा रिस्की है, ये लूज मलबा है। हाँ ये देखिए पूरा दलदल है, इसके ऊपर जाया नहीं जा सकता। दिखने में लग रहा होगा कि मिट्टी का जमावड़ा है, लेकिन जैसे जैसे पानी नमी इसमें जा रही है ये और पूरा दलदल बनता जा रहा है। आप सोचिए कि अगर इन जगहों से किसी को जाना भी हो, संभावना भी हो, अब आप समझिए कि जहां पर रेस्क्यू बचाव कार्य चल रहे हैं वहां इस दलदल से लोगों को निकालना कितना मुश्किल होगा, खासकर अगर कोई इमारतों से SOS कॉल भी देता। और इसीलिए हेलीकॉप्टर के जरिए वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, वहां से विंचिंग किए जाते हैं, उन्हें नीचे से जो है लिफ्ट कर लिया जाता है। एयरलिफ्ट एकमात्र ऑप्शन बचा है, क्योंकि इस दलदल में आप चॉपर जो है लैंड नहीं कर सकते। इन इलाकों में देखिए यहाँ से निकलना जो है ना ये पूरा कीचड़ है, तो बहुत, अब आप समझिए कि राहत बचाव कार्य यहाँ पर कितना मुश्किल हो रहा होगा।
1: नुआकोटी के ढूंगे बाजार में अब कोई नहीं बचा है। यहाँ का बाजार, यहाँ का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सब खंडहर बन चुके हैं। एक ऐसा खंडहर जो मलबे से भरा हुआ है।
0: तो ढूंगे बाजार की सीमा यहाँ से मेरे लिए खत्म हो रही है, क्योंकि बाजार तो आगे तक है, लेकिन इसके आगे मलबे ने रास्ता रोक रखा है और वो इतना खतरनाक है कि जोखिम भरा है। लेकिन यहाँ आकर के त्रासदी की जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ वो बता रही हैं कि आखिर यहाँ जो लोग होंगे वो कितने डरे होंगे, कितने सहमे होंगे। समय था ही नहीं भागने के लिए, और जब तक वो भाग के ऊपर पहुंचते तब तक न जाने कितनी इसकी चपेट में आ गए थे। कहीं पेट्रोल पंप दब चुका है, कहीं कई मंजिला जो इमारत है वो खंडहर बन चुकी है। न जाने कितने लोग थे जो भाग पाए होंगे, न जाने कितने लोग थे जो मलबे में दफन होंगे। कई सारे लोग, निर्दोष लोग, जिन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला होगा। नेपाल की इस तबाही ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है।
1: नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर आसमान पर बनराते रहते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कोई फंसा तो नहीं। त्रिशूली नदी ढूंगे बाजार के बिल्कुल बगल से बहती है। यहीं पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी था। 26 अगस्त की आपदा में वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गया।
0: ये वो त्रिशूली के पास का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, दरअसल पाइपलाइन आपको दिखाई दे रही है। ये भी मलबे में पूरी तरह बह गया, क्योंकि आगे जो त्रिशूली की धारा आप देख रहे हैं ये इतनी खतरनाक थी कि इसके साथ ये पानी का स्तर जो है ये इतना ऊपर गया 20 से 25 फीट, और उसके बाद इसने पूरे हाइड्रो प्रोजेक्ट को अपने साथ बहा ले गए। दरअसल पुल की कनेक्टिविटी इस इमारत के साथ लगती थी, लेकिन ये सब कुछ बह गया। और अब बड़ा खतरा इस बात का है कि जिस तरह से चीन ने चेतावनी दी है, उस चेतावनी के बाद दरअसल इसी त्रिशूली में, नारायणी में, भटकोशी में जिनका स्तर बढ़ा था वो पानी फिर बढ़ सकता है। और ऐसे में हालांकि इन इलाके की तबाही अब इतनी हो चुकी है कि और नुकसान क्या ही होगा। लोग बचे नहीं है, जो बचे हैं वो पहाड़ी इलाकों पर चले गए हैं, बाकी की चेतावनी जारी की गई है। लेकिन ये तस्वीरें देख करके आपको अंदाजा लग सकता है कि जो नदी आज इतने नीचे से बह रही है, जिसका बहाव लगभग इतना ही है, वो भी तब जब बरसात हो रही है, वो जब जमीन से 60 से 70 फीट की ऊंचाई पर ले गई होगी, तो अपने साथ कितनी तीव्रता और ताकत लेकर के आई कि उन्हें इन बड़ी बड़ी इमारतों को, पुलों को, हाइड्रो प्रोजेक्ट को सब कुछ नष्ट कर दिया।
1: ढूंगे बाजार से नेपाली सेना ने कई लोगों के शव बरामद किए हैं। जो लोग किसी तरह से यहाँ से बच निकले थे अब वो अपने घरों को देखने के लिए लौटे हैं। लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि नेपाली पुलिस लोगों को आगे जाने से रोक रही है।
0: आपका घर कहाँ पर
2: है?
0: अच्छा, ऊपर की तरफ।
2: थैंक यू वाला।
0: आप, अच्छा आप थे उस समय घर पे जब ये सब हो रहा था?
2: पूरा डूब जाए।
0: आप थे यहाँ पे जब देखा था आपने सब कुछ?
2: हाँ देखा था। ऐसे से आया कि ऐसा उफर के, ऐसा मार के, सब मार के चल गया। उसके लिए हम बाद में इधर भी आ सकता है समझ गया, उसके बाद हम ऊपर गए।
0: ढूंगे बाजार जैसे ही खत्म होता है उसके आगे त्रिशूली बाजार शुरू होता है, और अब ये जो पुलिस वाले हैं वो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि लोग आगे ना जाएं। अभी देखिए महिलाएं बच्चे हैं जिनका अपना जरूरत का सामान है, ये लोग। आप कहाँ जा रही हैं? आपका घर है आगे? आप आगे जा रही हैं? देखिए कई सारे लोग हैं जो अपने घरों की ओर या उन इलाकों की ओर जाना चाहते हैं देखने, लेकिन ये कितना जोखिम भरा है, देखिए देख रहे हैं पूरा रास्ता जो है कीचड़ में दबा हुआ है। इसके आगे जाने की पुलिस भी अनुमति नहीं दे रही, इसलिए जो स्थानीय प्रहरी हैं वो भी पहुंचे हैं। लोग अब आए हैं देखने के लिए।

0: कि वो इन इलाकों में आगे ना जाए।
1: आशुतोष मिश्रा, नुआकोटी, नेपाल, आज तक।
2: आपदा नेपाल में आई, लेकिन उसके पीड़ित दुनिया के कई देशों के लोग हुए हैं। ये त्रासदी कई परिवारों को कभी ना भरने वाला जख्म दे गए हैं। सैकड़ों भारतीय भी नेपाल में लापता हैं। आपदा की तस्वीरें देखकर परिजन सहमे हुए हैं। अनहोनी की आशंकाएं हैं, लेकिन मन में उम्मीद भी है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए।

0: दिल में डर और किसी अनहोनी की आशंका के बीच आंखों में आंसू लिए ये लोग अपनों की तलाश में लगे हैं। इसी उम्मीद के साथ इधर उधर भटक रहे हैं कि किसी तरह अपनों का पता लग सके, उनके सलामत होने की खबर मिले। किसी के हाथों में तस्वीर है, कोई मोबाइल पर तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछताछ कर रहा है, कोई अस्पताल में लगी तस्वीरों के बीच अपनों को तलाश रहा है। नेपाल में आई सैलाबी त्रासदी ने कई परिवारों को दर्द में डुबो दिया है। रेस्क्यू सेंटर से लेकर अस्पताल तक लोग भटक रहे हैं, अपनों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब कोई खबर नहीं मिल रही, कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो आंखें भर आ रही हैं।
1: 8 बजे बात हुई थी उससे, और उसके बाद कुछ भी पता नहीं, किसी से हम लोग को कहीं किसी से कोई।
0: किसी का बेटा लापता, किसी का पति, किसी की बहन, तो किसी का भाई, दिल में आस लेकर उनकी तलाश जारी है।
2: भाई के पता नहीं है, किधर है मालूम नहीं है, हम बहुत दुखी है।
0: नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद से लापता अपने बेटे की तलाश के लिए ये माँ दर दर के चक्कर काट रही है। पहले कई गांव में बच्चों को ढूंढा, फिर रेस्क्यू सेंटर गई, अस्पताल पहुंची, लेकिन बेटे की कोई खबर नहीं लगी।
3: कॉल किया, कॉल नहीं लगा, इधर गांव में भी ढूंढ रहे नहीं मिला, अभी हम लोग भी हॉस्पिटल इधर ढूंढ रहे नहीं मिला।
0: लापता लोगों के परिवार वाले बेहद परेशान हैं। हर दिन बीतने के साथ कई आशंकाएं दिल को भारी कर रही हैं। स्थिति ऐसी है कि मांग हो रही है कि सरकार सुविधा दे, तो खुद रेस्क्यू में शामिल होने के लिए तैयार हैं।
4: अगर कोई सुविधा मिले तो मैं खुद जाना चाहती हूँ, सुविधा मिले तो
5: ढूंढने के लिए।
0: नेपाल की त्रासदी में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिससे अपनों को खोने वालों के मन में खौफ बढ़ता जा रहा है। अस्पताल के बाहर बरामद शवों की तस्वीर लगाई गई है, लोग दिल पर पत्थर रखकर इन तस्वीरों को देख रहे हैं।
6: ये काठमांडू का वो जगह है जहां से बाहर से डेड बॉडी लाके रखी गई है। आप ये पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि उन डेड बॉडी की यह तस्वीर रखी गई है, ताकि इनके जो अपने लोग हैं, इनके रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पे आके इनकी पहचान कर सके और यहाँ से डेड बॉडी ले जा सके। इन तस्वीरों को देखकर आप देख सकते हैं कितनी भयावह तस्वीरें हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, विक्षिप्त कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये लोग जब इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जा रहे हैं।
0: आपदा में कई लोग घायल हुए हैं, कई को गंभीर चोटें भी आई हैं, कई घायलों का इलाज काठमांडू के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। नेपाल की कुदरत की तबाही ने कई परिवारों को जीवन भर का जख्म दिया है, कई लोग अब भी लापता हैं, परिवार वाले उनकी तलाश में भटक रहे हैं। नेपाल से श्वेता सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा और पंकज दास आज तक।
7: अब बात करते हैं राहुल गांधी के दलित कार्ड की, जहां उन्होंने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस को घेरा है, और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने हल्द्वानी में हुए शुद्धिकरण को भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान से जोड़ा और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
8: भले ही हल्द्वानी में खड़गे के दौरे के बाद हुए शुद्धिकरण की ये तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हो, लेकिन आज जब राहुल गांधी ने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा तो कांग्रेस अध्यक्ष के अपमान का मुद्दा भी उठाया।
9: कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी है, मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट है, वो रामलीला ग्राउंड में हल्द्वानी में जाते हैं भाषण देने और वहां पर शुद्धिकरण होता है, और उनकी पार्टी का उदाहरण बिहार के चीफ मिनिस्टर मांझी जी, वो मंदिर में जाते हैं और वहां शुद्धिकरण होता है। ये करता कौन है? ये बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं, सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग ये करते हैं और ये क्राइम है। राजस्थान के मंदिर जाते हैं,
8: राहुल गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण की याद दिलाई। एनडीए के नेता जीतन राम मांझी के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण का भी जिक्र किया और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
9: शुद्धिकरण होता है, जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में उन पर एफआईआर लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, आरएसएस के लोगों ने शुद्धिकरण किया है। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर एससीएससी एक्ट में एफआईआर दर्ज किया।
8: जवाब में एनडीए के नेता कांग्रेस राज की याद दिला रहे हैं, दलितों के विकास के लिए कांग्रेस ने क्या किया वो बता रहे हैं।
10: खड़गे जी नामांकन केंद्र के कमरे के बाहर रहेंगे, वी नारायण स्वामी पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री ये इस प्रकार से चप्पल उठाएंगे तो कांग्रेस पार्टी कैसा मानसिकता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और हरियाणा में हरियाणा की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा, उनका क्या मान सम्मान हो रहा है हम सब जानते हैं, बैनर पोस्टर्स उनको गायब कर दिया गया है। तो ये कांग्रेस पार्टी का असल चाल चेहरा चरित्र है। ये दलित समाज दलित सम्मान की बात आपको सिर्फ राजनीति के लिए याद आती है?
11: जो लोग आज इस बात की चिंता कर रहे हैं, देश ने आजादी के बाद लंबे समय तक मौका तो उन्हीं को ही दिया था ना, आज किस मुंह से वो कह रहे हैं कि आज भी समाज में भेदभाव मिटा नहीं है। कई उदाहरण उन्होंने गिना, अगर ये उदाहरण आज वो गिना रहे हैं तो आप बताइए एक लंबे समय तक आजादी के बाद और लगभग 4.5-5 दशक तक तो निरंतरता में कांग्रेस की सरकारें रही, उसके बाद भी कांग्रेस के सहयोग की सरकारें रही, उसके बाद भी समाज में अगर भेदभाव अगर होता रहा तो कहीं ना कहीं नींव को मजबूत करने में सफल तो ये लोग भी नहीं रहे।
8: उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुद्धिकरण का मुद्दा राज्यसभा में गूंज चुका है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी।
12: लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए।
13: माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज।
8: उधर शुद्धिकरण के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर सियासत का आरोप लगा रही है।
14: लेकिन उत्तराखंड में कोई नहीं जानता कि खड़गे जी की जाति क्या है, वो तो वहां पर जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए और वहां पर गंदगी की गई, वो एक शुद्ध स्थान था, धार्मिक स्थान था, जहां पर रामलीला का मंचन होता है, बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, ऐसे आयोजनों पर जो गंदगी हुई थी, जो धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए थे और एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाए थे, उसके विरोध में लोगों ने जो धार्मिक संगठन थे उन्होंने उस वहाँ पर शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम किया था वो कार्यक्रम था। और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है।
8: युवा, महिला और हिंदुत्व के बाद अब राहुल गांधी ने इस बार दलित कार्ड खेला है, जिस पर घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो।
7: अब आज ममता बनर्जी की कैथेड्रल रोड पर टीएमसीपी की बैठक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। दरअसल आरोप है कि हाईकोर्ट की ओर से जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया। टीएमसीपी की बैठक आयोजित की गई और कोर्ट ने सड़क के सिर्फ एक हिस्से पर ही रैली की इजाजत दी थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने दोनों ही हिस्से को घेर लिया और तय समय के बाद भी कार्यक्रम चलता ही रहा।
15: ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एफआईआर है, तो हम लोग पूरा हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसका सम्मान करते हैं, अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन जनता का अदालत को भी सम्मान तो करना चाहिए। हम लोग कोशिश किया पूरा हाईकोर्ट का ऑर्डर को मानने के लिए, लेकिन अगर कोई ज्यादा कोई चला आएगा वो तो पुलिस का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है देखने का। वो ममता बनर्जी का खिलाफ एफआईआर का कोई, वो पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है।
16: ममता बनर्जी को लग रहा है कि वो अभी भी मुख्यमंत्री है, वो न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर है, उनके ऊपर कोर्ट के किसी आदेश का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ममता जी, कानून का शासन चल रहा है बंगाल में, भारत के संविधान का शासन चल रहा है बंगाल में, बंगाल में डबल इंजन की ग्रोथ का शासन चल रहा है, परफॉर्मेंस की गारंटी का शासन चल रहा है। वो आपके भतीजे को बढ़ाने वाला कट मनी रंगदारी वाला शासन खत्म हो चुका है।
7: खबरों का सिलसिला जारी है, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

न्यूयॉर्क के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा धर्म भले ही अलग अलग लेकिन इंसानियत एक, बोले हिंदुत्व का मतलब मुसलमानों को बाहर करना नहीं। उज़्बेकिस्तान दौरे पर ताशकंद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, भारतीय समुदाय से की मुलाकात, दो दिन के बाद विश्व के केएससीओ समिट में शामिल होंगे। खड़गे को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा हमेशा कांग्रेस ने किया दलितों का अपमान, नेता विपक्ष ने हल्द्वानी में शुद्धिकरण का उठाया था मामला। आरक्षण विवाद पर आमने सामने मोदी के दो मंत्री, रिजर्वेशन में जीतन राम मांझी के वर्गीकरण की मांग को चिराग पासवान ने किया खारिज, दोनों ने एक दूसरे का मांगा इस्तीफा।

0: काठमांडू के लिए भेजी राहत की चौथी खेप। नेपाल त्रासदी पर आज तक की कवरेज लगातार जारी है, जहां ग्राउंड जीरो से आज तक आपको हर हालात से रूबरू करा रहे हैं। आज तक की अलग अलग टीमें इस समय अलग अलग हिस्सों से त्रासदी के दंश को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, अपनों की तलाश में लोग भटक रहे हैं। नेपाल के नवाकोट से अब एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: तबाही अपने पीछे ऐसा दर्द छोड़ गई जिसके जख्मों को भरने में कई साल लग जाएंगे। तस्वीरें नेपाल के नुआकोट की हैं। पूरे इलाके का मानो नक्शा ही बदल गया है। सड़क, दुकान, मकान सब बराबर हो गए हैं। जिन घरों में कभी खुशियां चहकती थी, आज उन्हीं घरों के बाहर बेबस और लाचार लोगों का दर्द नजर आ रहा है।
2: ये वो जिला है जो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ नेपाल में आई उस त्रासदी से। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मलबा हट रहा है तो त्रासदी का पैमाना दिख रहा है। इस ऊंचाई से आप वो पूरी तस्वीर देखिए। त्रिशूली नदी अपने तटों को तोड़कर दोनों तरफ ज्यादा चौड़ाई में बह रही है। वो तस्वीरें जहां पर आपको लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, वहां तक सड़क जाती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे शायद एक पगडंडी रही हो और बाकी केवल मलबा। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक बड़ी सी पार्किंग हुआ करती थी। ये बैंक, एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स और आगे आप होटल्स देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में आया करते थे। अब जो इकलौता पर्यटन यहाँ पर है वो उन लोगों का है जो आकर देखना चाहते हैं कि कैसी विनाश लीला रही होगी। जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे। जब आगे वो त्रासदी आई, तबाही आई, बाढ़ मलबे के साथ पानी आया, तो ईश्वर को इस बात का शुक्र तो अदा किया कि अपनी जान बची, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को तिनका तिनका होते भी देखा।
1: स्थानीय लोगों ने ऐसा मंजर देखा जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएंगे।
3: देखा कि वहाँ से वो पुल से बाढ़ आ गया। तो मैं पहले तो मेरे मम्मी पापा थे दुकान पे ना, तो मैं गई अपनी मम्मी पापा को देखने के लिए कि वो अभी तक वहीं पे है या नहीं। अब स्कूटी तो छोड़ दो क्योंकि हमारा अभी यंग है तो हम कमा लेंगे, पर अपने मम्मी पापा को तो बचा लेना पड़ेगा ना। तो हम चले गए वहाँ पे, तो देखा मम्मी पापा दुकान बंद करके चले गए, भाग गए, तो मैं भी भाग गई उधर से। अगर मैं इधर से आई होगी तो मुझे भी लेके जाएगा था पढ़ने, पर वे उधर चले गए।
2: ऊंचा दिख रहा था, ऐसे कैसा होता वो दिख रहा था?
3: नहीं, ऐसे जैसे जो होते ना, जो इसने क्या आते ना, ऐसे ऐसे करके। अच्छा। थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर करके हाई हाई हाई करके।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो ऐसा चल के आ गया ना, तो कुछ सोचने समझने के टाइम भी नहीं हुआ उस टाइम कि क्या करना चाहिए। देख, क्योंकि कोई रो रहा है उस टाइम देख के, कोई क्या कर रहा है ना, तो ऐसे लगा कि
2: सबसे जरूरी था भागना तेज,
3: वही अपना जान बचाओ सबका। तो कितने लोग रो रहे थे और कितने लोग को तो हमने देखा कि उसको बाढ़ ने भगा के लेके गए। एक को तो हमने
2: देखा सामने।
3: हाँ, नहीं ऐसे करके वो जैसे हम यहाँ पे थे तो उसको हमने हाथ पकड़ के ऊपर
2: आपने बचा लिया। हाँ।
1: ऋषिका बताती है जिस मोहल्ले में वो खेलती थी आज वो मोहल्ला पूरी तरह से बदल चुका है। अब दूर खड़े होकर वो अपने घर को देख रही है। खुशी इस बात की है कि परिवार के लोग बच गए। उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन इस छोटी उम्र में तबाही ऐसा तजुर्बा दे गई कि जिंदगी को लेकर सोच ही बदल दी।
4: जंगला खुला हुआ है ना, जो हल्का इधर जो ग्रीन कलर का हल्का दिखाई दे रहा है।
2: अच्छा, जो पूरी तरीके से नीचे है, सिर्फ एक मंजिल दिख रहा है जिसका ऊपर।
4: जी जी, जो दस्ता है ना ऊपर का, उस और साइड में है ना, वही मेरा घर है।
2: कितनी देर पहले मम्मी पापा निकल पाए थे?
4: मम्मी पापा बोल रहे थे अगर हम लोग ऐसे मुड़ के पीछे देखते लोग तो शायद पता नहीं क्या होता।
2: मतलब मुड़ के पीछे देखने का भी टाइम नहीं था?
4: नहीं था।
2: ये सब घर यहाँ पे, तो दोस्त वोस्त रहते होंगे तुम्हारे सब?
4: जी, मेरा फ्रेंड का भी घर जो है ना, जो मंदिर की तरह दिखाई दे रहा है, वो भी मेरे फ्रेंड का ही घर है। और वहाँ पे कुछ भी नहीं रहा, यहाँ पे एक स्विस्ट आंटी का की थी, उनका होटल था, बहुत अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था।
2: हाँ।
4: बहुत अच्छा भी था, वो भी कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पे ब्लू कलर का जो है घर देख सकते हैं।
2: किसी का काम बचा ना घर बचा?
4: ना किसी का काम बचा ना घर बचा, कुछ भी नहीं बचा। बस आदमी बच गए वही हम लोग के लिए बहुत काफी है। हम लोग मैं खुशी हूँ कि मेरे पेरेंट्स बच गए हैं, बस वही काफी है। पैसा तो धन बाद में भी हो सकता है ना, पहले आदमी बच गए वही काफी है।
1: रसिका की किस्मत अच्छी थी कि परिवार वाले बच गए, लेकिन यहाँ ऐसे भी कई परिवार हैं जो अपने ही मोहल्ले में अपनों की ही तलाश कर रहे हैं।
5: मेरी दीदी मिसिंग है और भांजी भी, तीन भांजी एक हाँ। दीदी और एक नतनी मिसिंग है।
2: कहाँ रह रहे थे
5: वो लोग? रसुआ और नुआकोट के बॉर्डर पे रहते थे।
2: अच्छा।
5: क्या कहता हूँ मैं,
2: रसुआ नुआकोट के बॉर्डर पे, तो आप हर उस जगह आके ढूंढ रहे हैं कि
5: हर जगह जाने के वहाँ कोई साधन ही नहीं है और वहाँ तक मिसिंग ही है और जा नहीं पा रहे हैं।
2: फोटो एक बार दिखा दीजिए कैमरे पे।
5: ये भांजी हुई, ये भांजी की लड़की हुई।
2: कितने साल की है
5: ये बच्ची? 2 साल की है।
2: 2 साल की
5: जी। ये दीदी हुई, ये भांजी है, ये भी भांजी है।
2: तो ये मिल नहीं पा रहे हैं?
5: नहीं मिल पा रहे हैं।
2: आप हर जगह जाके बस ढूंढ
5: रहे हैं।
1: रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक बुरी खबर पूरे परिवार को तोड़कर रख देती है।
2: ये रसुआ की तरफ जाने वाली सड़क है, जैसे जैसे जो राहत कर्मी हैं वो थोड़ी सी सफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं, किसी न किसी को कोई न कोई बुरी खबर मिलती है।
1: इस इलाके में कई होटल भी थे जिसमें टूरिस्ट रुके हुए थे जिनकी जान बचाने की अपनी कहानी है।
6: उस टाइम खाना खाने टाइम हुआ था, ऑर्डर था गेस्ट का, 15-20-25 जना गेस्ट का ऑर्डर था। उस टाइम में सब खबर आ गया, भागो भागो बोल के सब खाना खा के यही ये रहता हो गया।
2: आंखों के सामने आपने आते हुए देखा?
6: हाँ।
2: कैसा डरावना था?
6: बहुत एकदम डरावना था। बहुत
2: नुकसान कितना हो गया आपको?
6: नुकसान था उधर 15 रूम था गेस्ट रूम होटल का, अटैच बाथरूम रूम, एसी रूम, हॉल था, डाइनिंग किचन। नुकसान तो कितना आप सरकार ने उसको
2: जान किसी की नहीं गई,
6: किसी की सरकार ने
2: जान किसी की नहीं गई।
6: नहीं गई जान किसी की नहीं गई। 4-5 मिनट के अंदर में भागने सफल हो गया। मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल था उसमें, मोटरसाइकिल लेने के भी मौका न मिला और शटर लगाने की भी मौका न मिला।
2: यही रास्ता था,
6: ये रास्ता से काम करने वाला स्टाफ 5 जना थे, 5 आदमी थे और मेरा बेटा उधर काम करता था, वो भी ये रास्ते से ऊपर भागने सफल हो गया।
1: यहाँ रहने वाले अमरीश बताते हैं कि इलाके का मानो भूगोल ही बदल गया है।
2: यहीं पर रहते हैं आप?
7: जी यहीं पर रहते हैं।
2: यहाँ क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं 26 अगस्त के बाद से?
7: बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब यहाँ पे जो है सड़क का हाइट बढ़ गया है, खोला इधर थोड़ा सा उधर से इधर साइड में आ गया है पहले से।
2: मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि ये बैंक और ये जो
7: डेवलपमेंट विकास बैंक
2: है, ये सब नीचे है और सड़क ऊपर है, ऐसा था या नहीं
7: लग रहा है? नहीं, पहले नहीं था लेकिन अभी लग रहा है। थोड़ा सा नीचे तो था लेकिन कम था।
2: अच्छा, तो अब और नदी इसी तरीके से?
7: नदी तो बहुत परिवर्तन हुआ है पहले।
2: क्या परिवर्तन हुआ है?
7: इसका चौड़ाई बढ़ गया है पहले से।
2: हाँ।
7: ये पूरा खेत था इसके पछाड़ी, पूरे खेत में
2: ये खेत था
7: इसके पछाड़ी।
2: अच्छा।
7: इस साइड में पूरे घर था, यहाँ पे हर आदमी अपना बिजनेस व्यवसाय करता था लोग। यहाँ तक रोड था पहले,
2: यहाँ तक रोड था। अच्छा, इसीलिए ये हम रोड का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला वो चीजें आप देख रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर खड़ा होना भी थोड़ी देर के लिए संभव हो पा रहा है।
7: यहाँ बाउंड्री था, यहाँ तक रोड था पहले।
1: इंसान तो इंसान, जानवर भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं।
8: ऊपर छत नहीं है,
2: छत में फंसा हुआ है कुत्ता मुर्गा।
8: ये 40-50 है,
2: 40-50 ऊपर फंसा हुआ है,
8: दो आया और उधर है।
2: अच्छा, तो अभी उस सबको निकाल रहे हैं। ये कुत्ता भी ऊपर से है?
8: ऊपर से निकाला अभी,
2: दो था,
8: एक किधर गया मालूम नहीं। एक
2: एकदम ऊपर बेचारे को खाना भी नहीं मिला होगा।
8: खाना नहीं मिला।
2: यही जो छत पे ऊपर एकदम फंस गए थे उन सबको अभी निकाला जा रहा है। ये आपका था? आपका क्या नाम है इसका?
8: स्वीटी
2: नाम है। स्वीटी आ गई तुम वापस?
9: उसका कान नहीं सुनता है,
8: खराब हुआ।
1: सबका अपना दर्द है, किसी को अपनों की तलाश है तो कोई फिर से जिंदगी शुरू करने की खुद को हिम्मत दे रहा है। श्वेता सिंह, नुआकोट, नेपाल, आज तक।
0: नेपाल में हुई तबाही से कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। जहां एक घर मकान थे, वहां सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है। कुछ गांव तो कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ अब कागजों पर बचे हैं, नामो निशान जिनका मिट गया है।
10: नेपाल की जल त्रासदी किस तीव्रता की थी, इसका अनुमान जब तक लगाया जा रहा होता है तब तक उससे भी विनाशकारी तस्वीरें आ जाती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि कितना विनाश हुआ है, किस स्तर का हुआ है, उसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह, आशुतोष मिश्रा, पंकज दास इस समय नेपाल में मौजूद हैं। संवाददाता आशुतोष मिश्रा जब नुआकोटी के ढुंगे बाजार पहुंचे तो वहां के हालात देखकर हैरान रह गए कि तबाही इस स्तर की भी हो सकती है।
11: इसके आगे जाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, ये लोगों के घर थे, मकान थे, सब कुछ कैसे पूरी तरह बर्बाद हो गया है। एक ऐसी आपदा और मानो जैसे कयामत बरसी हो शहर पर, सब कुछ तबाह कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5 मंजिल, नीचे की जो 2 मंजिल है वो पूरी तरह मलबे में जा चुकी है। और यहीं से ऊंचाई से सोचिए पूरा मलबा आया हुआ होगा। लोग जो घर में होंगे, अगर उन्होंने भागने की भी कोशिश की होगी, वो कैसे भागे होंगे? ऊपरी मंजिल के लोग नीचे कैसे आए होंगे? और क्या इस मलबे में अभी, क्योंकि यहां से लगभग 30 से ज्यादा लोगों को यहां से बरामद किए गए थे शव, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया था, यहां से एयरलिफ्ट किया गया था, लेकिन न जाने कितने लोग, क्योंकि 10,000 की आबादी वाला शहर, न जाने कितने लोग इस शहर के मलबे में अभी भी होंगे।
10: नुआकोट का प्रमुख बाजार था, लेकिन अब इन तस्वीरों को देखिए, बाजार का कहीं नामो निशान नहीं है। ढुंगे के इस बाजार में कई होटल रेस्टोरेंट थे जो अब मलबे में सिमट चुके हैं। सामने एक पेट्रोल पंप भी था, लेकिन अब कुछ दिखाई नहीं देता।
11: ढुंगे बाजार के जिन इलाकों में अब मैं आया हूँ, थोड़े थोड़े करके दिखाई दे रहे हैं। ये जो इमारत है दरअसल निर्माणाधीन थी। अब सोचिए कि कोई अपना आशियाना बना रहा था, परिवार के लिए घर बना रहा था, उसके पहले ही वो घर तबाह हो गया। लोग कहाँ गए कोई नहीं जानता। यहाँ पर कई मंजिला थे, इसमें कुछ कमर्शियल होटल चलते थे। मैं कोशिश करता हूँ क्या इस इलाके तक जाया जा सकता है, लेकिन नहीं जाया जा सकते। देखिए, जूते डालते ही ना जूते यहाँ पर धंस रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये जो मलबा है ये थोड़ा ज्यादा रिस्की है, ये लूज मलबा है। हाँ, ये देखिए पूरा दलदल, इसके ऊपर जाया नहीं जा सकता। दिखने में लग रहा होगा कि मिट्टी का जमावड़ा है, लेकिन जैसे जैसे पानी नमी इसमें जा रही है, ये और पूरा दलदल बनता जा रहा है। आप सोचिए कि अगर इन जगहों से किसी को जाना भी हो, संभावना भी हो, अब आप समझिए कि जहां पर रेस्क्यू बचाव कार्य चल रहे हैं, वहां इस दलदल से लोगों को निकालना कितना मुश्किल होगा, खासकर अगर कोई इमारतों से SOS कॉल भी देता। और इसीलिए हेलीकॉप्टर के जरिए वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, वहां से विंचिंग किए जाते हैं, उन्हें नीचे से जो है लिफ्ट कर लिया जाता है। एयरलिफ्ट एकमात्र ऑप्शन बचा है, क्योंकि इस दलदल में आप चॉपर जो है लैंड नहीं कर सकते। इन इलाकों में देखिए, यहाँ से निकलना जो है ना, ये पूरा कीचड़ है, तो बहुत, अब आप समझिए कि राहत बचाव कार्य यहाँ पर कितना मुश्किल हो रहा होगा।
10: नुआकोटी के ढूंगे बाजार में अब कोई नहीं बचा है। यहाँ का बाजार, यहाँ का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सब खंडहर बन चुके हैं। एक ऐसा खंडहर जो मलबे से भरा हुआ है।
11: ढूंगे बाजार की सीमा यहाँ से मेरे लिए खत्म हो रही है, क्योंकि बाजार तो आगे तक है, लेकिन इसके आगे मलबे ने रास्ता रोक रखा है और वो इतना खतरनाक है कि जोखिम भरा है। लेकिन यहाँ आकर के त्रासदी की जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ, वो बता रही हैं कि आखिर यहाँ जो लोग होंगे वो कितने डरे होंगे, कितने सहमे होंगे। समय था ही नहीं भागने के लिए, और जब तक वो भाग के ऊपर पहुंचते तब तक न जाने कितनी इसकी चपेट में आ गए थे। कहीं पेट्रोल पंप दब चुका है, कहीं कई मंजिला जो इमारत है वो खंडहर बन चुकी है। न जाने कितने लोग थे जो भाग पाए होंगे, न जाने कितने लोग थे जो मलबे में दफन होंगे। कई सारे लोग, निर्दोष लोग, जिन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला होगा। नेपाल की इस तबाही ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है।
10: नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर आसमान पर बनराते रहते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कोई फंसा तो नहीं। त्रिशूली नदी ढुंगे बाजार के बिल्कुल बगल से बहती है। यहीं पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी था। 26 अगस्त की आपदा में वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गया।
11: ये वो त्रिशूली के पास का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, दरअसल पाइपलाइन आपको दिखाई दे रही है। ये भी मलबे में पूरी तरह बह गया, क्योंकि आगे जो त्रिशूली की धारा आप देख रहे हैं ये इतनी खतरनाक थी कि इसके साथ ये देखो पानी का स्तर जो है ये इतना ऊपर गया 20 से 25 फीट, और उसके बाद इसने पूरे हाइड्रो प्रोजेक्ट को अपने साथ बहा ले गए। दरअसल पुल की कनेक्टिविटी इस इमारत के साथ लगती थी, लेकिन ये सब कुछ बह गया। और अब बड़ा खतरा इस बात का है कि जिस तरह से चीन ने चेतावनी दी है उस चेतावनी के बाद दरअसल इसी त्रिशूली में, नारायणी में, भटकोशी में जिनका स्तर बढ़ा था वो पानी फिर बढ़ सकता है। और ऐसे में हालांकि इन इलाके की तबाही अब इतनी हो चुकी है कि और नुकसान क्या ही होगा, लोग बचे नहीं है, जो बचे हैं वो पहाड़ी इलाकों पर चले गए हैं, बाकी की चेतावनी जारी की गई है। लेकिन ये तस्वीरें देख करके आपको अंदाजा लग सकता है कि जो नदी आज इतने नीचे से बह रही है, जिसका बहाव लगभग इतना ही है, वो भी तब जब बरसात हो रही है, वो जब जमीन से 60 से 70 फीट की ऊंचाई पर ले गई होगी तो अपने साथ कितनी तीव्रता और ताकत लेकर के आई कि उन्हें इन बड़ी बड़ी इमारतों को, पुलों को, हाइड्रो प्रोजेक्ट को सब कुछ नष्ट कर दिया।
10: ढूंगे बाजार से नेपाली सेना ने कई लोगों के शव बरामद किए हैं। जो लोग किसी तरह से यहाँ से बच निकले थे अब वो अपने घरों को देखने के लिए लौटे हैं। लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि नेपाली पुलिस लोगों को आगे जाने से रोक रही है।
11: आपका घर कहाँ पर है?
12: नीला है ना?
11: अच्छा, ऊपर की तरफ।
12: थैंक यू वाला।
11: आप अच्छा, आप थे उस समय घर पे जब ये सब हो रहा था?
12: पूरा डूब जाए।
11: आप थे यहाँ पे जब देखा था आपने सब कुछ?
12: हाँ देखा था। ऐसे से आया कि ऐसा उफर के, ऐसा मार के, सब मार के चल गया। उसके लिए हम बाद में इधर भी आ सकता है समझ गया। उसके बाद हम ऊपर गए।
11: ढूंगे बाजार जैसे ही खत्म होता है उसके आगे त्रिशूली बाजार शुरू होता है। और अब ये जो पुलिस वाले हैं वो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि लोग आगे ना जाएं। अभी देखिए महिलाएं बच्चे हैं जिनका अपना जरूरत का सामान है, ये लोग। आप कहाँ जा रही हैं? आपका घर है आगे? आप आगे जा रही हैं? देखिए कई सारे लोग हैं जो अपने घरों की ओर या उन इलाकों की ओर जाना चाहते हैं देखने, लेकिन ये कितना जोखिम भरा है। देखिए देख रहे हैं पूरा रास्ता जो है कीचड़ में दबा हुआ है। इसके आगे जाने की पुलिस भी अनुमति नहीं दे रही, इसलिए जो स्थानीय प्रहरी हैं वो भी पहुंचे हैं। लोग अब आए हैं देखने के लिए कि वो इन इलाकों में आगे न जाएं।
10: आशुतोष मिश्रा, नुआकोटी, नेपाल, आज तक।
0: आपदा नेपाल में आई लेकिन उसके पीड़ित दुनिया के कई देशों के लोग हुए हैं। ये त्रासदी कई परिवारों को कभी ना भरने वाला जख्म दे गए हैं। सैकड़ों भारतीय भी नेपाल में लापता हैं। आपदा की तस्वीरें देखकर परिजन सहमे हुए हैं। अनहोनी की आशंकाएं हैं लेकिन मन में उम्मीद भी है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए।

0: दिल में डर और किसी अनहोनी की आशंका के बीच आंखों में आंसू लिए ये लोग अपनों की तलाश में लगे हैं। इसी उम्मीद के साथ इधर उधर भटक रहे हैं कि किसी तरह अपनों का पता लग सके, उनके सलामत होने की खबर मिले। किसी के हाथों में तस्वीर है, कोई मोबाइल पर तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछताछ कर रहा है, कोई अस्पताल में लगी तस्वीरों के बीच अपनों को तलाश रहा है। नेपाल में आई सैलाबी त्रासदी ने कई परिवारों को दर्द में डुबो दिया है। रेस्क्यू सेंटर से लेकर अस्पताल तक लोग भटक रहे हैं, अपनों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब कोई खबर नहीं मिल रही, कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो आंखें भर आ रही हैं।
1: 8 बजे बात हुई थी उससे, और उसके बाद कुछ भी पता नहीं है। किसी से हम लोग को कहीं किसी से कोई
0: किसी का बेटा लापता, किसी का पति, किसी की बहन तो किसी का भाई, दिल में आस लेकर उनकी तलाश जारी है।
2: भाई के पता नहीं है, किधर है मालूम नहीं है, हम बहुत दुखी है।
0: नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद से लापता अपने बेटे की तलाश के लिए ये माँ दर दर के चक्कर काट रही है। पहले कई गांव में बच्चों को ढूंढा, फिर रेस्क्यू सेंटर गई, अस्पताल पहुंची, लेकिन बेटे की कोई खबर नहीं लगी।
3: कॉल किया, कॉल नहीं लगा, इधर गांव में भी ढूंढ रहे नहीं मिला, अभी हम लोग भी हॉस्पिटल इधर ढूंढ रहे नहीं मिला।
0: लापता लोगों के परिवार वाले बेहद परेशान हैं। हर दिन बीतने के साथ कई आशंकाएं दिल को भारी कर रही हैं। स्थिति ऐसी है कि मांग हो रही है कि सरकार सुविधा दे, तो खुद रेस्क्यू में शामिल होने के लिए तैयार हैं।
4: अगर कोई सुविधा मिले तो मैं खुद जाना चाहती हूँ, सुविधा मिले तो
5: ढूंढने के लिए।
0: नेपाल की त्रासदी में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिससे अपनों को खोने वालों के मन में खौफ बढ़ता जा रहा है। अस्पताल के बाहर बरामद शवों की तस्वीर लगाई गई है, लोग दिल पर पत्थर रखकर इन तस्वीरों को देख रहे हैं।
6: ये काठमांडू का वो जगह है जहां से बाहर से डेड बॉडी लाके रखी गई है। आप ये खींचे तस्वीरों में देख सकते हैं कि उन डेड बॉडी की यहाँ तस्वीर रखी गई है, ताकि इनके जो अपने लोग हैं, इनके रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पे आके इनकी पहचान कर सकें और यहाँ से डेड बॉडी ले जा सकें। इन तस्वीरों को देखकर आप देख सकते हैं कितनी भयावह तस्वीरें हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, विक्षिप्त कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये लोग जब इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो उनके आँखों में आंसू आ जा रहे हैं।
0: आपदा में कई लोग घायल हुए हैं, कई को गंभीर चोटें भी आई हैं, कई घायलों का इलाज काठमांडू के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। नेपाल की कुदरत की तबाही ने कई परिवारों को जीवन भर का जख्म दिया है, कई लोग अब भी लापता हैं, परिवार वाले उनकी तलाश में भटक रहे हैं। नेपाल से श्वेता सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा और पंकज दास आज तक।
7: अब बात करते हैं राहुल गांधी के दलित कार्ड की, जहां उन्होंने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस को घेरा है, और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने हल्द्वानी में हुए शुद्धिकरण को भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान से जोड़ा और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
8: भले ही हल्द्वानी में खड़गे के दौरे के बाद हुए शुद्धिकरण की ये तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हो, लेकिन आज जब राहुल गांधी ने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा तो कांग्रेस अध्यक्ष के अपमान का मुद्दा भी उठाया।
9: कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी है, मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट है, वो रामलीला ग्राउंड में हल्द्वानी में जाते हैं भाषण देने और वहां पर शुद्धिकरण होता है। और उनकी पार्टी का उदाहरण बिहार के चीफ मिनिस्टर मांझी जी, वो मंदिर में जाते हैं और वहां शुद्धिकरण होता है। ये करता कौन है? ये बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं, सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग ये करते हैं और ये क्राइम है। राजस्थान के मंदिर जाते हैं,
8: राहुल गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण की याद दिलाई। एनडीए के नेता जीतन राम मांझी के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण का भी जिक्र किया और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
9: शुद्धिकरण होता है, जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में उन पर एफआईआर लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, आरएसएस के लोगों ने शुद्धिकरण किया है। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर एससी एक्ट में एफआईआर दर्ज किया।
8: जवाब में एनडीए के नेता कांग्रेस राज की याद दिला रहे हैं, दलितों के विकास के लिए कांग्रेस ने क्या किया वो बता रहे हैं।
10: खड़गे जी नामांकन केंद्र के कमरे के बाहर रहेंगे, वी नारायण स्वामी पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री ये इस प्रकार से चप्पल उठाएंगे तो कांग्रेस पार्टी की ऐसा मानसिकता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और हरियाणा में हरियाणा की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा, उनका क्या मान सम्मान हो रहा है हम सब जानते हैं, बैनर पोस्टर से उनको गायब कर दिया गया है। तो ये कांग्रेस पार्टी का असल चाल चेहरा चरित्र है। ये दलित समाज दलित सम्मान की बात आपको सिर्फ राजनीति के लिए याद आती है?
11: जो लोग आज इस बात की चिंता कर रहे हैं, देश ने आजादी के बाद लंबे समय तक मौका तो उन्हीं को ही दिया था ना, आज किस मुंह से वो कह रहे हैं कि आज भी समाज में भेदभाव मिटा नहीं है। कई उदाहरण उन्होंने गिनाए, अगर ये उदाहरण आज वो गिना रहे हैं तो आप बताइए एक लंबे समय तक आजादी के बाद और लगभग 4.5-5 दशक तक तो निरंतरता में कांग्रेस की सरकारें रहीं, उसके बाद भी कांग्रेस के सहयोग की सरकारें रहीं, उसके बाद भी समाज में अगर भेदभाव अगर होता रहा तो कहीं ना कहीं नींव को मजबूत करने में सफल तो ये लोग भी नहीं रहे।
8: उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुद्धिकरण का मुद्दा राज्यसभा में गूंज चुका है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी।
12: लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किया।
13: माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज।
8: उधर शुद्धिकरण के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर सियासत का आरोप लगा रही।
14: लेकिन उत्तराखंड में कोई नहीं जानता कि खड़गे जी की जाति क्या है, वो तो वहां पर जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए और वहां पर गंदगी की गई, वो एक शुद्ध स्थान था, धार्मिक स्थान था, जहां पर रामलीला का मंचन होता है, बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, ऐसे आयोजनों पर जो गंदगी हुई थी, जो धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए थे और एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाए थे, उसके विरोध में लोगों ने जो धार्मिक संगठन थे उन्होंने उस वहाँ पर शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम किया था वो कार्यक्रम था, और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है।
8: युवा महिला और हिंदुत्व के बाद अब राहुल गांधी ने इस बार दलित कार्ड खेला है जिस पर घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो।
7: अब बात ममता बनर्जी की। कैथेड्रल रोड पर टीएमसीपी की बैठक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज करवाए गए हैं। दरअसल आरोप है कि हाईकोर्ट की ओर से जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया, टीएमसीपी की बैठक आयोजित की गई और कोर्ट ने सड़क के सिर्फ एक हिस्से पर ही रैली की इजाजत दी थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने दोनों ही हिस्से को घेर लिया और तय समय के बाद भी कार्यक्रम चलता ही रहा।
15: देखिए ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एफआईआर है, तो हम लोग पूरा हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसका सम्मान करते हैं, अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन जनता का अदालत को भी सम्मान तो करना चाहिए। हम लोग कोशिश किया पूरा हाईकोर्ट का ऑर्डर को मानने के लिए, लेकिन अगर कोई ज्यादा कोई चला आएगा वो तो पुलिस का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है देखने का। वो ममता बनर्जी का खिलाफ एफआईआर का कोई वो पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है।
7: खबरों का सिलसिला जारी है, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

का बड़ा बयान, कहा धर्म भले ही अलग अलग लेकिन इंसानियत एक, बोले हिंदुत्व का मतलब मुसलमानों को बाहर करना नहीं। उज़्बेकिस्तान दौरे पर ताशकंद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, भारतीय समुदाय से की मुलाकात, दो दिन के बाद बिश्केक के एससीओ समिट में शामिल होंगे। खड़गे को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा हमेशा कांग्रेस ने किया दलितों का अपमान, नेता विपक्ष ने हल्द्वानी में शुद्धिकरण का उठाया था मामला। आरक्षण विवाद पर आमने सामने मोदी के दो मंत्री, रिजर्वेशन में जीतन राम मांझी के वर्गीकरण की मांग को चिराग पासवान ने किया खारिज, दोनों ने एक दूसरे का मांगा इस्तीफा।

0: काठमांडू के लिए भेजी राहत की चौथी खेप। नेपाल त्रासदी पर आज तक की कवरेज लगातार जारी है, जहां ग्राउंड जीरो से आज तक आपको हर हालात से रूबरू करा रहे हैं। आज तक की अलग अलग टीमें इस समय अलग अलग हिस्सों से त्रासदी के दंश को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, अपनों की तलाश में लोग भटक रहे हैं। नेपाल के नवाकोट से अब एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: तबाही अपने पीछे ऐसा दर्द छोड़ गई जिसके जख्मों को भरने में कई साल लग जाएंगे। तस्वीरें नेपाल के नुआकोट की हैं। पूरे इलाके का मानो नक्शा ही बदल गया है। सड़क, दुकान, मकान सब बराबर हो गए हैं। जिन घरों में कभी खुशियां चहकती थी, आज उन्हीं घरों के बाहर बेबस और लाचार लोगों का दर्द नजर आ रहा है।
2: ये वो जिला है जो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ नेपाल में आई उस त्रासदी से। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मलबा हट रहा है तो त्रासदी का पैमाना दिख रहा है। इस ऊंचाई से आप वो पूरी तस्वीर देखिए। त्रिशूली नदी अपने तटों को तोड़कर दोनों तरफ ज्यादा चौड़ाई में बह रही है। वो तस्वीरें जहां पर आपको लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, वहां तक सड़क जाती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे शायद एक पगडंडी रही हो और बाकी केवल मलबा। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक बड़ी सी पार्किंग हुआ करती थी। ये बैंक, एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स और आगे आप होटल्स देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में आया करते थे। अब जो इकलौता पर्यटन यहाँ पर है वो उन लोगों का है जो आकर देखना चाहते हैं कि कैसी विनाश लीला रही होगी। जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे। जब आगे वो त्रासदी आई, तबाही आई, बाढ़ मलबे के साथ पानी आया, तो ईश्वर को इस बात का शुक्र तो अदा किया कि अपनी जान बची, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को तिनका तिनका होते भी देखा।
1: स्थानीय लोगों ने ऐसा मंजर देखा जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएंगे।
3: देखा कि वहाँ से वो पुल से बाढ़ आ गया। तो मैं पहले तो मेरे मम्मी पापा थे दुकान पे ना, तो मैं गई अपनी मम्मी पापा को देखने के लिए कि वो अभी तक वहीं पे है या नहीं। अब स्कूटी तो छोड़ दो क्योंकि हमारा अभी यंग है तो हम कमा लेंगे, पर अपने मम्मी पापा को तो बचाना पड़ेगा ना। तो हम चले गए वहाँ पे, तो देखा मम्मी पापा दुकान बंद करके चले गए, भाग गए, तो मैं भी भाग गई उधर से। अगर मैं इधर से आई होगी तो मुझे भी लेके जाएगा था पार्टनर, पर वे उधर चले गए।
2: ऊंचा दिख रहा था, ऐसे कैसा होता वो दिख रहा था?
3: नहीं, ऐसे जैसे जो होते ना, जो इसने क्या आते ना, ऐसे ऐसे करके।
2: अच्छा।
3: थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर करके हाई हाई हाई हाई करके।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो ऐसा चल के आ गया ना, तो कुछ सोचने समझने के टाइम भी नहीं हुआ उस टाइम कि क्या करना चाहिए। देख, क्योंकि कोई रो रहा है उस टाइम देख के, कोई क्या कर रहा है ना, तो ऐसे लगा कि
2: सबसे जरूरी था भागना,
3: तेज, वही अपना जान बचाओ सबका। तो कितने लोग रो रहे थे और कितने लोग को तो हमने देखा कि उसको बाढ़ ने भगा के लेके गए। एक को तो हमने
2: देखा सामने।
3: हाँ, नहीं ऐसे करके वो जैसे हम यहाँ पे थे तो उसको हमने हाथ पकड़ के ऊपर
2: आपने बचा लिया। हाँ।
1: ऋषिका बताती है जिस मोहल्ले में वो खेलती थी आज वो मोहल्ला पूरी तरह से बदल चुका है। अब दूर खड़े होकर वो अपने घर को देख रही है। खुशी इस बात की है कि परिवार के लोग बच गए। उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन इस छोटी उम्र में तबाही ऐसा तजुर्बा दे गई कि जिंदगी को लेकर सोच ही बदल दी।
4: जंगला खुला हुआ है ना, जो हल्का इधर हुआ है, जो ग्रीन कलर का हल्का दिखाई दे रहा है।
2: अच्छा, जो पूरी तरीके से नीचे है, सिर्फ एक मंजिल दिख रहा है जिसका ऊपर।
4: जी जी, जो दस्ता है ना ऊपर का, उस और साइड में है ना, वही मेरा घर है।
2: कितनी देर पहले मम्मी पापा निकल पाए थे?
4: मम्मी पापा बोल रहे थे अगर हम लोग ऐसे मुड़ के पीछे देखते लोग तो शायद पता नहीं क्या होता।
2: मतलब मुड़ के पीछे देखने का भी टाइम नहीं था।
4: नहीं था।
2: ये सब घर यहाँ पे तो दोस्त वोस्त रहते होंगे तुम्हारे सब?
4: हाँ जी, मेरा फ्रेंड का भी घर जो है ना, जो मंदिर की तरह दिखाई दे रहा है, वो भी मेरे फ्रेंड का ही घर है। और वहाँ पे कुछ भी नहीं रहा, यहाँ पे एक सिस्टर आंटी का की थी, उनका होटल था, बहुत अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था।
2: हाँ।
4: बहुत अच्छा भी था, वो भी कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पे ब्लू कलर का जो है घर देख सकते हैं,
2: किसी का काम बचा ना घर बचा,
4: ना किसी का काम बचा ना घर बचा, कुछ भी नहीं बचा। बस आदमी बच गए वही हम लोग बहुत काफी है। हम लोग मैं खुशी हूँ कि मेरे पेरेंट्स बच गए हैं, बस वही काफी है। पैसा तो धन बाद में भी हो सकता है ना, पहले आदमी बच गए वही काफी है।
1: रसिका की किस्मत अच्छी थी कि परिवार वाले बच गए, लेकिन यहाँ ऐसे भी कई परिवार हैं जो अपने ही मोहल्ले में अपनों की ही तलाश कर रहे हैं।
5: मेरी दीदी मिसिंग है और भांजी भी, तीन भांजी एक हाँ। दीदी और एक नतनी मिसिंग है।
2: कहाँ रह रहे थे
5: वो लोग? रसुआ और नुआकोट के बॉर्डर पे रहते थे।
2: अच्छा।
5: क्या कहता हूँ मैं,
2: रसुआ नुआकोट के बॉर्डर पे, तो आप हर उस जगह आके ढूंढ रहे हैं कि
5: हर जगह जाने के वहाँ कोई साधन ही नहीं है और वहाँ तक मिसिंग ही है और जा नहीं पा रहे हैं।
2: फोटो एक बार दिखा दीजिए कैमरे पे।
5: ये भांजी हुई, ये भांजी की लड़की हुई।
2: कितने साल की है
5: ये बच्ची? 2 साल की है।
2: 2 साल की
5: जी। ये दीदी हुई, ये भांजी है, ये भी भांजी है।
2: तो ये मिल नहीं पा रहे हैं?
5: नहीं मिल पा रहे हैं।
2: आप हर जगह जाके बस
5: ढूंढ रहे हैं।
1: रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक बुरी खबर पूरे परिवार को तोड़ कर रख देती है।
2: ये रसुआ की तरफ जाने वाली सड़क है, जैसे जैसे जो राहत कर्मी हैं वो थोड़ी सी सफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं, किसी न किसी को कोई न कोई बुरी खबर मिलती है।
1: इस इलाके में कई होटल भी थे जिसमें टूरिस्ट रुके हुए थे, जिनकी जान बचाने की अपनी कहानी है।
6: उस टाइम खाना खाने टाइम हुआ था, ऑर्डर था गेस्ट का, 15-20-25 जना गेस्ट का ऑर्डर था। उस टाइम में सब खबर आ गया, भागो भागो बोल गए, सब खाना खा के यही ये रास्ता हो गया।
2: आंखों के सामने आपने आते हुए देखा?
6: हाँ।
2: कैसा डरावना था?
6: बहुत एकदम डरावना था।
2: नुकसान कितना हो गया आपको?
6: नुकसान था उधर 15 रूम था गेस्ट रूम होटल का, अटैच बाथरूम रूम, एसी रूम, हॉल था, डाइनिंग किचन। नुकसान तो कितना आप सरकार ने उसको
2: जान किसी की नहीं गई,
6: सरकार ने
2: जान किसी की नहीं गई,
6: नहीं गई जान किसी की नहीं गई। 4-5 मिनट के अंदर में भागने सफल हो गया। मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल था उसमें, मोटरसाइकिल लेने के भी मौका न मिला और शटर लगाने की भी मौका न मिला।
2: यही रास्ता था?
6: ये रास्ता से काम करने वाला स्टाफ 5 जना थे, 5 आदमी थे, और मेरा बेटा उधर काम करता थे, वो भी ये रास्ते से ऊपर भागने सफल हो गया।
1: यहाँ रहने वाले अमरीश बताते हैं कि इलाके का मानो भूगोल ही बदल गया है।
2: यहीं पर रहते हैं आप?
7: जी, यहीं पर रहते हैं।
2: यहाँ क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं 26 अगस्त के बाद से?
7: बहुत बड़ा परिवर्तन है। हाँ। अब यहाँ पे जो है इस सड़क का हाइट बढ़ गया है। हाँ। खोला इधर थोड़ा सा उधर से इधर साइड में आ गया है पहले से।
2: मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि ये बैंक और ये जो
7: डेवलपमेंट विकास बैंक,
2: हाँ, ये सब नीचे है और सड़क ऊपर है, ऐसा था या नहीं
7: लग रहा है? नहीं, पहले नहीं था लेकिन अभी लग रहा है। थोड़ा सा नीचे तो था लेकिन कम था।
2: अच्छा, तो अब और नदी इसी तरीके से?
7: नदी तो बहुत परिवर्तन हुआ है पहले।
2: क्या परिवर्तन हुआ है?
7: इसका चौड़ाई बढ़ गया है पहले से।
2: हाँ।
7: ये पूरा खेत था इसके पछाड़ी, पूरे खेत में
2: ये खेत था
7: इसके पछाड़ी।
2: अच्छा।
7: इस साइड में पूरे घर था, यहाँ पे हर आदमी अपना बिजनेस व्यवसाय करता था लोग। यहाँ तक रोड था पहले,
2: यहाँ तक रोड था। अच्छा, इसीलिए ये हम रोड का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला वो चीजें आप देख रहे हैं।
7: हाँ,
2: और इसीलिए यहाँ पर खड़ा होना भी थोड़ी देर के लिए संभव हो पा रहा है।
7: यहाँ बाउंड्री था, यहाँ तक रोड था पहले।
1: इंसान तो इंसान, जानवर भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं।
2: ऊपर
8: छत नहीं
2: है, छत में फंसा हुआ है कुत्ता मुर्गा सा।
8: ये 40-50 है,
2: 40-50 ऊपर फंसा हुआ है,
8: दो आया और उधर है।
2: अच्छा, तो अभी उस सबको निकाल रहे हैं। ये कुत्ता भी ऊपर से है?
8: ऊपर से निकाला, अभी
2: दो
8: था, एक किधर गया मालूम नहीं।
2: एकदम ऊपर बेचारे को खाना भी नहीं मिला होगा?
8: खाना नहीं मिला।
2: यही कुछ जो छत पे ऊपर एकदम फंस गए थे उन सबको अभी निकाला जा रहा है। ये आपका था? आपका है? क्या नाम है इसका?
8: स्वीटी।
2: स्वीटी नाम है? स्वीटी, आ गई तुम वापस?
9: उसका काम नहीं सुन पाए,
8: खराब हुआ।
1: सबका अपना दर्द है, किसी को अपनों की तलाश है तो कोई फिर से जिंदगी शुरू करने की खुद को हिम्मत दे रहा है। श्वेता सिंह, नुआकोट, नेपाल, आज तक।
0: नेपाल में हुई तबाही से कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। जहां एक घर मकान थे वहां सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है। कुछ गांव तो कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ अब कागजों पर बचे हैं, नामो निशान जिनका मिट गया है।
10: नेपाल की जल त्रासदी किस तीव्रता की थी, इसका अनुमान जब तक लगाया जा रहा होता है तब तक उससे भी विनाशकारी तस्वीरें आ जाती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि कितना विनाश हुआ है, किस स्तर का हुआ है, उसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह, आशुतोष मिश्रा, पंकज दास इस समय नेपाल में मौजूद हैं। संवाददाता आशुतोष मिश्रा जब नुआकोटी के ढुंगे बाजार पहुंचे तो वहां के हालात देखकर हैरान रह गए कि तबाही इस स्तर की भी हो सकती है।
11: इसके आगे जाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, ये लोगों के घर थे, मकान थे, सब कुछ कैसे पूरी तरह बर्बाद हो गया है। एक ऐसी आपदा और मानो जैसे कयामत बरसी हो शहर पर, सब कुछ तबाह कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5 मंजिल, नीचे की जो 2 मंजिल है वो पूरी तरह मलबे में जा चुकी है। और यहीं से ऊंचाई से सोचिए पूरा मलबा आया हुआ होगा। लोग जो घर में होंगे, अगर उन्होंने भागने की भी कोशिश की होगी, वो कैसे भागे होंगे? ऊपरी मंजिल के लोग नीचे कैसे आए होंगे? और क्या इस मलबे में अभी, क्योंकि यहां से लगभग 30 से ज्यादा लोगों को यहां से बरामद किए गए थे शव, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया था, यहां से एयरलिफ्ट किया गया था, लेकिन न जाने कितने लोग, क्योंकि 10,000 की आबादी वाला शहर, न जाने

0: कहीं नामो निशान नहीं है। ढोंगे के इस बाजार में कई होटल रेस्टोरेंट थे जो अब मलबे में सिमट चुके हैं। सामने एक पेट्रोल पंप भी था लेकिन अब कुछ दिखाई नहीं देता।
1: ढोंगे बाजार के जिन इलाकों में अब मैं आया हूँ, थोड़े थोड़े करके दिखाई दे रहे हैं। ये जो इमारत है दरअसल निर्माणाधीन थी। अब सोचिए कि कोई अपना आशियाना बना रहा था, परिवार के लिए घर बना रहा था, उसके पहले ही वो घर तबाह हो गया। लोग कहाँ गए कोई नहीं जानता। यहाँ पर कई मंजिला थे, इसमें कुछ कमर्शियल होटल चलते थे। मैं कोशिश करता हूँ क्या इस इलाके तक जाया जा सकता है, लेकिन नहीं जाया जा सकते। देखिए जूते डालते ही ना जूते यहाँ पर धंस रहे हैं, और इसी के साथ साथ ये जो मलबा है ये थोड़ा ज्यादा रिस्की है, ये लूज मलबा है। हाँ ये देखिए पूरा दलदल है, इसके ऊपर जाया नहीं जा सकता। दिखने में लग रहा होगा कि मिट्टी का जमावड़ा है, लेकिन जैसे जैसे पानी नमी इसमें जा रही है ये और पूरा दलदल बनता जा रहा है। आप सोचिए कि अगर इन जगहों से किसी को जाना भी हो, संभावना भी हो, अब आप समझिए कि जहां पर रेस्क्यू बचाव कार्य चल रहे हैं वहां इस दलदल से लोगों को निकालना कितना मुश्किल होगा, खासकर अगर कोई इमारतों से SOS कॉल भी देता। और इसीलिए हेलीकॉप्टर के जरिए वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, वहां से विंचिंग किए जाते हैं, उन्हें नीचे से जो है लिफ्ट कर लिया जाता है। एयरलिफ्ट एकमात्र ऑप्शन बचा है, क्योंकि इस दलदल में आप चॉपर जो है लैंड नहीं कर सकते। इन इलाकों में देखिए यहाँ से निकलना जो है ना ये पूरा कीचड़ है, तो बहुत अब आप समझिए कि राहत बचाव कार्य यहाँ पर कितना मुश्किल हो रहा होगा।
0: नुआकोटी के ढोंगे बाजार में अब कोई नहीं बचा है। यहाँ का बाजार, यहाँ का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सब खंडहर बन चुके हैं। एक ऐसा खंडहर जो मलबे से भरा हुआ है।
1: तो ढोंगे बाजार की सीमा यहाँ से मेरे लिए खत्म हो रही है, क्योंकि बाजार तो आगे तक है लेकिन इसके आगे मलबे ने रास्ता रोक रखा है, और वो इतना खतरनाक है कि जोखिम भरा है। लेकिन यहाँ आकर के त्रासदी की जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ वो बता रही हैं कि आखिर यहाँ जो लोग होंगे वो कितने डरे होंगे, कितने सहमे होंगे। समय था ही नहीं भागने के लिए, और जब तक वो भाग के ऊपर पहुंचते तब तक न जाने कितनी इसकी चपेट में आ गए थे। कहीं पेट्रोल पंप दब चुका है, कहीं कई मंजिला जो इमारत है वो खंडहर बन चुकी है। न जाने कितने लोग थे जो भाग पाए होंगे, न जाने कितने लोग थे जो मलबे में दफन होंगे। कई सारे लोग, निर्दोष लोग, जिन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला होगा। नेपाल की इस तबाही सब कुछ बर्बाद कर दिया है।
0: नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर आसमान पर बनराते रहते हैं ये देखने के लिए कि कहीं कोई फंसा तो नहीं। त्रिशूली नदी ढोंगे बाजार के बिल्कुल बगल से बहती है। यहीं पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी था। 26 अगस्त की आपदा में वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गया।
1: ये वो त्रिशूली के पास का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, दरअसल पाइपलाइन आपको दिखाई दे रही है। ये भी मलबे में पूरी तरह बह गया, क्योंकि आगे जो त्रिशूली की धारा आप देख रहे हैं ये इतनी खतरनाक थी कि इसके साथ ये देखो पानी का स्तर जो है ये इतना ऊपर गया 20 से 25 फीट, और उसके बाद इसने पूरे हाइड्रो प्रोजेक्ट को अपने साथ बहा ले गए। दरअसल पुल की कनेक्टिविटी इस इमारत के साथ लगती थी, लेकिन ये सब कुछ बह गया। और अब बड़ा खतरा इस बात का है कि जिस तरह से चीन ने चेतावनी दी है, उस चेतावनी के बाद दरअसल इसी त्रिशूली में, नारायणी में, भटकोशी में जिनका स्तर बढ़ा था वो पानी फिर बढ़ सकता है। और ऐसे में हालांकि इन इलाके की तबाही अब इतनी हो चुकी है कि और नुकसान क्या ही होगा। लोग बचे नहीं है, जो बचे हैं वो पहाड़ी इलाकों पर चले गए हैं, बाकी की चेतावनी जारी की गई है। लेकिन ये तस्वीरें देख करके आपको अंदाजा लग सकता है कि जो नदी आज इतने नीचे से बह रही है, जिसका बहाव लगभग इतना ही है, वो भी तब जब बरसात हो रही है, वो जब जमीन से 60 से 70 फीट की ऊंचाई पर ले गई होगी, तो अपने साथ कितनी तीव्रता और ताकत लेकर के आई कि उन्हें इन बड़ी बड़ी इमारतों को, पुलों को, हाइड्रो प्रोजेक्ट को सब कुछ नष्ट कर दिया।
0: ढोंगे बाजार से नेपाली सेना ने कई लोगों के शव बरामद किए हैं। जो लोग किसी तरह से यहाँ से बच निकले थे अब वो अपने घरों को देखने के लिए लौटे हैं। लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि नेपाली पुलिस लोगों को आगे जाने से रोक रही है।
1: आपका घर कहाँ पर है? अच्छा ऊपर की तरफ।
2: थैंक यू वाला।
1: आप अच्छा आप थे उस समय घर पे जब ये सब हो रहा था?
2: पूरा डूब जाए।
1: आप थे यहाँ पे जब देखा था आपने सब कुछ?
2: हाँ देखा था। ऐसे से आया कि ऐसा उफर के, ऐसा मार के, सब मार के चल गया। उसके लिए हम बाद में इधर भी आ सकता है समझ गया, उसके बाद हम ऊपर गए।
1: ढोंगे बाजार जैसे ही खत्म होता है उसके आगे त्रिशूली बाजार शुरू होता है, और अब ये जो पुलिस वाले हैं वो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि लोग आगे ना जाएं। अभी देखिए महिलाएं बच्चे हैं जिनका अपना जरूरत का सामान है, ये लोग। आप कहाँ जा रही हैं? आपका घर है आगे? आप आगे जा रही हैं? देखिए कई सारे लोग हैं जो अपने घरों की ओर या उन इलाकों की ओर जाना चाहते हैं देखने, लेकिन ये कितना जोखिम भरा है। देखिए देख रहे हैं पूरा रास्ता जो है कीचड़ में दबा हुआ है। इसके आगे जाने की पुलिस भी अनुमति नहीं दे रही, इसलिए जो स्थानीय प्रहरी हैं वो भी पहुंचे हैं। लोग अब आए हैं देखने के लिए कि वो इन इलाकों में आगे ना जाएं।
0: आशुतोष मिश्रा, नुआकोटी, नेपाल, आज तक।
3: आपदा नेपाल में आई लेकिन उसके पीड़ित दुनिया के कई देशों के लोग हुए हैं। ये त्रासदी कई परिवारों को

ही ना भरने वाला जख्म दे गए हैं। सैकड़ों भारतीय भी नेपाल में लापता हैं। आपदा की तस्वीरें देखकर परिजन सहमे हुए हैं। अनहोनी की आशंकाएं हैं, लेकिन मन में उम्मीद भी है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए।

0: दिल में डर और किसी अनहोनी की आशंका के बीच आंखों में आंसू लिए ये लोग अपनों की तलाश में लगे हैं। इसी उम्मीद के साथ इधर उधर भटक रहे हैं कि किसी तरह अपनों का पता लग सके, उनके सलामत होने की खबर मिले। किसी के हाथों में तस्वीर है, कोई मोबाइल पर तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछताछ कर रहा है, कोई अस्पताल में लगी तस्वीरों के बीच अपनों को तलाश रहा है। नेपाल में आई सैलाबी त्रासदी ने कई परिवारों को दर्द में डुबो दिया है। रेस्क्यू सेंटर से लेकर अस्पताल तक लोग भटक रहे हैं, अपनों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब कोई खबर नहीं मिल रही, कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो आंखें भर आ रही हैं।
1: 8 बजे बात हुई थी उससे, और उसके बाद कुछ भी पता नहीं, किसी से हम लोग को कहीं किसी से कोई।
0: किसी का बेटा लापता, किसी का पति, किसी की बहन तो किसी का भाई, दिल में आस लेकर उनकी तलाश जारी है।
2: भाई के पता नहीं है, किधर है मालूम नहीं है, हम बहुत दुखी है।
0: नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद से लापता अपने बेटे की तलाश के लिए ये माँ दर दर के चक्कर काट रही है। पहले कई गांव में बच्चों को ढूंढा, फिर रेस्क्यू सेंटर गई, अस्पताल पहुंची, लेकिन बेटे की कोई खबर नहीं लगी।
3: कॉल किया, कॉल नहीं लगा, इधर गांव में भी ढूंढ रहा है, नहीं मिला। अभी हम लोग भी हॉस्पिटल इधर ढूंढ रहे, नहीं मिला।
0: लापता लोगों के परिवार वाले बेहद परेशान हैं। हर दिन बीतने के साथ कई आशंकाएं दिल को भारी कर रही हैं। स्थिति ऐसी है कि मांग हो रही है कि सरकार सुविधा दे, तो खुद रेस्क्यू में शामिल होने के लिए तैयार हैं।
4: अगर कोई सुविधा मिले तो मैं खुद जाना चाहती हूँ, सुविधा मिले तो
5: ढूंढने के लिए।
0: नेपाल की त्रासदी में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिससे अपनों को खोने वालों के मन में खौफ बढ़ता जा रहा है। अस्पताल के बाहर बरामद शवों की तस्वीर लगाई गई है, लोग दिल पर पत्थर रखकर इन तस्वीरों को देख रहे हैं।
6: ये काठमांडू का वो जगह है जहां से बाहर से डेड बॉडी लाके रखी गई है। आप ये पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि उन डेड बॉडी की यहाँ तस्वीर रखी गई है, ताकि इनके जो अपने लोग हैं, इनके रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पे आके इनकी पहचान कर सकें और यहाँ से डेड बॉडी ले जा सकें। इन तस्वीरों को देखकर आप देख सकते हैं कितनी भयावह तस्वीरें हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, विक्षिप्त कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये लोग जब इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जा रहे हैं।
0: आपदा में कई लोग घायल हुए हैं, कई को गंभीर चोटें भी आई हैं, कई घायलों का इलाज काठमांडू के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। नेपाल की कुदरत की तबाही ने कई परिवारों को जीवन भर का जख्म दिया है, कई लोग अब भी लापता हैं, परिवार वाले उनकी तलाश में भटक रहे हैं। नेपाल से श्वेता सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा और पंकज दास आज तक।
7: अब बात करते हैं राहुल गांधी के दलित कार्ड की, जहां उन्होंने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस को घेरा है। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने हल्द्वानी में हुए शुद्धिकरण को भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान से जोड़ा और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
8: भले ही हल्द्वानी में खड़गे के दौरे के बाद हुए शुद्धिकरण की ये तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हो, लेकिन आज जब राहुल गांधी ने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा तो कांग्रेस अध्यक्ष के अपमान का मुद्दा भी उठाया।
9: कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी है, मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट है, वो रामलीला ग्राउंड में हल्द्वानी में जाते हैं भाषण देने और वहां पर शुद्धिकरण होता है। और उनकी पार्टी का उदाहरण बिहार के चीफ मिनिस्टर मांझी जी, वो मंदिर में जाते हैं और वहां शुद्धिकरण होता है। ये करता कौन है? ये बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं, सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग ये करते हैं और ये क्राइम है। राजस्थान के मंदिर जाते हैं,
8: राहुल गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण की याद दिलाई। एनडीए के नेता जीतन राम मांझी के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण का भी जिक्र किया और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग।
9: शुद्धिकरण होता है, जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में उन पर एफआईआर लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, आरएसएस के लोगों ने शुद्धिकरण किया है। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर एससी एससी एक्ट में एफआईआर दर्ज किया।
8: जवाब में एनडीए के नेता कांग्रेस राज की याद दिला रहे हैं, दलितों के विकास के लिए कांग्रेस ने क्या किया वो बता रहे हैं।
10: खड़गे जी नामांकन केंद्र के कमरे के बाहर रहेंगे, वी नारायण स्वामी पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री ये इस प्रकार से चप्पल उठाएंगे तो कांग्रेस पार्टी की ऐसा मानसिकता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और हरियाणा में, हरियाणा की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा, उनका क्या मान सम्मान हो रहा है हम सब जानते हैं, बैनर पोस्टर से उनको गायब कर दिया गया है। तो ये कांग्रेस पार्टी का असल चाल चेहरा चरित्र है। ये दलित समाज दलित सम्मान की बात आपको सिर्फ राजनीति के लिए याद आती है?
11: जो लोग आज इस बात की चिंता कर रहे हैं, देश ने आजादी के बाद लंबे समय तक मौका तो उन्हीं को ही दिया था ना, आज किस मुंह से वो कह रहे हैं कि आज भी समाज में भेदभाव मिटा नहीं है। कई उदाहरण उन्होंने गिना, अगर ये उदाहरण आज वो गिना रहे हैं तो आप बताइए एक लंबे समय तक आजादी के बाद और लगभग 4.5-5 दशक तक तो निरंतरता में कांग्रेस की सरकारें रहीं, उसके बाद भी कांग्रेस के सहयोग की सरकारें रहीं, उसके बाद भी समाज में अगर भेदभाव अगर होता रहा तो कहीं ना कहीं नींव को मजबूत करने में सफल तो ये लोग भी नहीं रहे।
8: उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुद्धिकरण का मुद्दा राज्यसभा में गूंज चुका है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी।
12: लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए।
13: माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज।
8: उधर शुद्धिकरण के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर सियासत का आरोप लगा रही।
14: लेकिन उत्तराखंड में कोई नहीं जानता कि खड़गे जी की जाति क्या है, वो तो वहां पर जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए और वहां पर गंदगी की गई, वो एक शुद्ध स्थान था, धार्मिक स्थान था, जहां पर रामलीला का मंचन होता है, बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, ऐसे आयोजनों पर जो गंदगी हुई थी, जो धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए थे और एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाए थे, उसके विरोध में लोगों ने, जो धार्मिक संगठन थे उन्होंने उस वहाँ पर शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम किया था वो कार्यक्रम था। और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है।
8: युवा, महिला और हिंदुत्व के बाद अब राहुल गांधी ने इस बार दलित कार्ड खेला है, जिस पर घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो।
7: अब आज ममता बनर्जी की कैथेड्रल रोड पर टीएमसीपी की बैठक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज करवाए गए हैं। दरअसल आरोप है कि हाईकोर्ट की ओर से जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया, टीएमसीपी की बैठक आयोजित की गई और कोर्ट ने सड़क के सिर्फ एक हिस्से पर ही रैली की इजाजत दी थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने दोनों ही हिस्से को घेर लिया और तय समय के बाद भी कार्यक्रम चलता ही रहा।
15: ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एफआईआर है, तो हम लोग पूरा हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसका सम्मान करते हैं, अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन जनता का अदालत को भी सम्मान तो करना चाहिए। हम लोग कोशिश किया पूरा हाईकोर्ट का ऑर्डर को मानने के लिए, लेकिन अगर कोई ज्यादा कोई चला आएगा वो तो पुलिस का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है देखने का। वो ममता बनर्जी का खिलाफ एफआईआर का कोई वो पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है।
16: ममता बनर्जी को लग रहा है कि वो अभी भी मुख्यमंत्री है, वो न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर है, उनके ऊपर कोर्ट के किसी आदेश का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ममता जी, कानून का शासन चल रहा है बंगाल में, भारत के संविधान का शासन चल रहा है बंगाल में, बंगाल में डबल इंजन की ग्रोथ का शासन चल रहा है, परफॉर्मेंस की गारंटी का शासन चल रहा है। वो आपके भतीजे को बढ़ाने वाला कट मनी रंगदारी वाला शासन खत्म हो चुका है।
7: खबरों का सिलसिला जारी है, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

का बड़ा बयान, कहा धर्म भले ही अलग अलग लेकिन इंसानियत एक, बोले हिंदुत्व का मतलब मुसलमानों को बाहर करना नहीं। उज़्बेकिस्तान दौरे पर ताशकंद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, भारतीय समुदाय से की मुलाकात, दो दिन के बाद विश्व के केएससीओ समिट में शामिल होंगे। खड़गे को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा हमेशा कांग्रेस ने किया दलितों का अपमान, नेता विपक्ष ने हल्द्वानी में शुद्धिकरण का उठाया था मामला। आरक्षण विवाद पर आमने सामने मोदी के दो मंत्री, रिजर्वेशन में जीतन राम मांझी के वर्गीकरण की मांग को चिराग पासवान ने किया खारिज, दोनों ने एक दूसरे का मांगा इस्तीफा।

0: पांडू के लिए भेजी राहत की चौथी खेप। नेपाल त्रासदी पर आज तक की कवरेज लगातार जारी है, जहां ग्राउंड जीरो से आज तक आपको हर हालात से रूबरू करा रहे हैं। आज तक की अलग अलग टीमें इस समय अलग अलग हिस्सों से त्रासदी के दंश को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, अपनों की तलाश में लोग भटक रहे हैं। नेपाल के नवाकोट से अब एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: तबाही अपने पीछे ऐसा दर्द छोड़ गई जिसके जख्मों को भरने में कई साल लग जाएंगे। तस्वीरें नेपाल के नुआकोट की हैं। पूरे इलाके का मानो नक्शा ही बदल गया है। सड़क, दुकान, मकान सब बराबर हो गए हैं। जिन घरों में कभी खुशियां चहकती थी, आज उन्हीं घरों के बाहर बेबस और लाचार लोगों का दर्द नजर आ रहा है।
2: ये वो जिला है जो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ नेपाल में आई उस त्रासदी से। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मलबा हट रहा है तो त्रासदी का पैमाना दिख रहा है। इस ऊंचाई से आप वो पूरी तस्वीर देखिए। त्रिशूली नदी अपने तटों को तोड़कर दोनों तरफ ज्यादा चौड़ाई में बह रही है। वो तस्वीरें जहां पर आपको लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, वहां तक सड़क जाती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे शायद एक पगडंडी रही हो और बाकी केवल मलबा। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक बड़ी सी पार्किंग हुआ करती थी। ये बैंक, एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स और आगे आप होटल्स देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में आया करते थे। अब जो इकलौता पर्यटन यहाँ पर है वो उन लोगों का है जो आकर देखना चाहते हैं कि कैसी विनाश लीला रही होगी। जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे। जब आगे वो त्रासदी आई, तबाही आई, बाढ़ मलबे के साथ पानी आया, तो ईश्वर को इस बात का शुक्र तो अदा किया कि अपनी जान बची, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को तिनका तिनका होते भी देखा।
1: स्थानीय लोगों ने ऐसा मंजर देखा जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएंगे।
3: मैंने देखा कि वहाँ से वो पुल से बाढ़ आ गया। तो मैं पहले तो मेरे मम्मी पापा थे दुकान पे ना, तो मैं गई अपनी मम्मी पापा को देखने के लिए कि वो अभी तक वहीं पे या नहीं। अब स्कूटी तो छोड़ दो क्योंकि हमारा अभी यंग है तो हम कमा लेंगे, पर अपने मम्मी पापा को तो बचाना पड़ेगा ना। तो हम चले गए वहाँ पे, तो देखा मम्मी पापा दुकान बंद करके चले गए, भाग गए, तो मैं भी भाग गई उधर से। अगर मैं इधर से आई होगी तो मुझे भी लेके जाएगा था पार्टनर, पर वे उधर चले गए।
2: ऊंचा दिख रहा था, ऐसे कैसा होता वो दिख रहा था?
3: नहीं, ऐसे जैसे जो होते ना, जो इसने क्या आते ना, ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर करके हाई हाई हाई करके।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो ऐसा चल के आ गया ना, तो कुछ सोचने समझने के टाइम भी नहीं हुआ उस टाइम कि क्या करना चाहिए। देख, क्योंकि कोई रो रहा है उस टाइम देख के, कोई क्या कर रहा है ना, तो ऐसे लगा कि
2: सबसे जरूरी था भागना तेज,
3: वही अपना जान बचाओ सबका। तो कितने लोग रो रहे थे और कितने लोग को तो हमने देखा कि उसको बाढ़ ने भगा के लेके गए। एक को तो हमने
2: देखा सामने,
3: हाँ नहीं ऐसे करके, वो जैसे हम यहाँ पे थे तो उसको हमने हाथ पकड़ के ऊपर
2: आपने बचा लिया। हाँ,
1: ऋषिका बताती है जिस मोहल्ले में वो खेलती थी आज वो मोहल्ला पूरी तरह से बदल चुका है। अब दूर खड़े होकर वो अपने घर को देख रही है। खुशी इस बात की है कि परिवार के लोग बच गए। उम्र भले ही कच्ची हो, लेकिन इस छोटी उम्र में तबाही ऐसा तजुर्बा दे गई कि जिंदगी को लेकर सोच ही बदल दी।
4: जो हल्का इधर हुआ है, जो ग्रीन कलर का हल्का दिखाई दे रहा है।
2: अच्छा, जो पूरी तरीके से नीचे है, सिर्फ एक मंजिल दिख रहा है जिसका ऊपर।
4: जी जी, जो दस्ता है ना ऊपर का, उस और साइड में है ना, वही मेरा घर है।
2: कितनी देर पहले मम्मी पापा निकल पाए थे?
4: मम्मी पापा बोल रहे थे लोग, अगर हम लोग ऐसे मुड़ के पीछे देखते लोग तो शायद पता नहीं क्या होता।
2: मतलब मुड़ के पीछे देखने का भी टाइम नहीं था। ये सब घर यहाँ पे, तो दोस्त वोस्त रहते होंगे तुम्हारे सब?
4: जी, मेरा फ्रेंड का भी घर जो है ना, जो मंदिर की तरह दिखाई दे रहा है, वो भी मेरे फ्रेंड का ही घर है। और वहाँ पे कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पे एक स्विस्ट आंटी का की थी, उनका होटल था, बहुत अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था। बहुत अच्छा भी था, वो भी कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पे ब्लू कलर का जो है घर देख सकते हैं।
2: किसी का काम बचा ना घर बचा,
4: ना किसी का काम बचा ना घर बचा, कुछ भी नहीं बचा। बस आदमी बच गए वही हम लोग के लिए बहुत काफी है। हम लोग मैं खुशी हूँ कि मेरे पेरेंट्स बच गए हैं, बस वही काफी है। पैसा तो धन बाद में भी हो सकता है ना, पहले आदमी बच गए वही काफी है।
1: रसिका की किस्मत अच्छी थी कि परिवार वाले बच गए, लेकिन यहाँ ऐसे भी कई परिवार हैं जो अपने ही मोहल्ले में अपनों की ही तलाश कर रहे हैं।
5: मेरी दीदी मिसिंग है और भांजी भी, तीन भांजी एक हाँ। दीदी और एक नतनी मिसिंग है।
2: कहाँ रह रहे थे
5: वो लोग? रसुआ और नुआकोट के बॉर्डर पे रहते थे।
2: अच्छा।
5: क्या कहता हूँ मैं,
2: रसुआ नुआकोट के बॉर्डर पे, तो आप हर उस जगह आके ढूंढ रहे हैं कि
5: हर जगह जाने के वहाँ कोई साधन ही नहीं है और वहाँ तक मिसिंग ही है और जा नहीं पा रहे हैं।
2: फोटो एक बार दिखा दीजिए कैमरे पे।
5: ये भांजी हुई, ये भांजी की लड़की हुई।
2: कितने साल की है
5: ये बच्ची? 2 साल की है।
2: 2 साल की
5: जी। ये दीदी हुई, ये भांजी है, ये भी भांजी है।
2: तो ये मिल नहीं पा रहे हैं?
5: नहीं मिल पा रहे हैं।
2: आप हर जगह जाके बस
5: ढूंढ रहे हैं।
1: रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक बुरी खबर पूरे परिवार को तोड़कर रख देती है।
2: ये रसुआ की तरफ जाने वाली सड़क है, जैसे जैसे जो राहत कर्मी हैं वो थोड़ी सी सफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं, किसी न किसी को कोई न कोई बुरी खबर मिलती है।
1: इस इलाके में कई होटल भी थे जिसमें टूरिस्ट रुके हुए थे, जिनकी जान बचाने की अपनी कहानी है।
6: उस टाइम खाना खाने टाइम हुआ था, ऑर्डर था गेस्ट का, 15-20-25 जना गेस्ट का ऑर्डर था। उस टाइम में सब खबर आ गया, भागो भागो बोल गए, सब खाना खा के ये रास्ता हो गया।
2: आंखों के सामने आपने आते हुए देखा?
6: हाँ।
2: कैसा डरावना था?
6: बहुत एकदम डरावना था।
2: नुकसान कितना हो गया आपको?
6: नुकसान था उधर 15 रूम था गेस्ट रूम होटल का, अटैच बाथरूम रूम, एसी रूम, हॉल था, डाइनिंग किचन। नुकसान तो कितना आप सरकार ने उसको
2: जान किसी की नहीं गई।
6: चार पांच मिनट के अंदर में भागने सफल हो गया। मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल था उसमें, मोटरसाइकिल लेने के भी मौका न मिला और शटर लगाने की भी मौका नहीं मिला।
2: यही रास्ता था?
6: ये रास्ता से काम करने वाला स्टाफ 5 जना थे, 5 आदमी थे, और मेरा बेटा उधर काम करता थे, वो भी ये रास्ते से ऊपर भागने सफल हो गया।
1: यहाँ रहने वाले अमरीश बताते हैं कि इलाके का मानो भूगोल ही बदल गया है।
2: यहीं पर रहते हैं आप?
7: जी, यहीं पर रहते हैं।
2: यहाँ क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं 26 अगस्त के बाद से?
7: बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब यहाँ पे जो है सड़क का हाइट बढ़ गया है, खोला इधर थोड़ा सा उधर से इधर साइड में आ गया है पहले से।
2: मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि ये बैंक और ये जो
7: डेवलपमेंट विकास बैंक,
2: हाँ, ये सब नीचे है और सड़क ऊपर है, ऐसा था या नहीं
7: लग रहा है? नहीं, पहले नहीं था लेकिन अभी लग रहा है। थोड़ा सा नीचे तो था लेकिन कम था।
2: अच्छा, तो अब और नदी इसी तरीके से?
7: नदी तो बहुत परिवर्तन हुआ है पहले।
2: क्या परिवर्तन हुआ है?
7: इसका चौड़ाई बढ़ गया है पहले से।
2: हाँ।
7: ये पूरा खेत था इसके पछाड़ी, पूरे खेत में
2: ये खेत था
7: इसके पछाड़ी।
2: अच्छा।
7: इस साइड में पूरे घर था, यहाँ पे हर आदमी अपना बिजनेस व्यवसाय करता था लोग। यहाँ तक रोड था पहले,
2: यहाँ तक रोड था। अच्छा, इसीलिए ये हम रोड का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला वो चीजें आप देख रहे हैं।
7: हाँ, इसी
2: और इसीलिए यहाँ पर खड़ा होना भी थोड़ी देर के लिए संभव हो पा रहा है।
7: यहाँ बाउंड्री था, यहाँ तक रोड था पहले।
1: इंसान तो इंसान, जानवर भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं।
2: ऊपर
8: छत नहीं है,
2: छत में फंसा हुआ है कुत्ता मुर्गा सा।
8: ये 40-50 है,
2: 40-50 ऊपर फंसा हुआ है।
8: दो आया और उधर है।
2: अच्छा, तो अभी उस सबको निकाल रहे हैं। ये कुत्ता भी ऊपर से है?
8: ऊपर से निकाला अभी।
2: दो
8: था, एक किधर गया मालूम नहीं। एक
2: एकदम ऊपर बेचारे को खाना भी नहीं मिला होगा।
8: खाना नहीं मिला।
2: यही जो छत पे ऊपर एकदम फंस गए थे उन सबको अभी निकाला जा रहा है। ये आपका था? आपका क्या नाम है इसका?
8: स्वीटी
2: नाम है। स्वीटी आ गई तुम वापस?
9: उसका काम नहीं सुन पाए,
8: खराब हुआ।
1: सबका अपना दर्द है, किसी को अपनों की तलाश है तो कोई फिर से जिंदगी शुरू करने की खुद को हिम्मत दे रहा है। श्वेता सिंह, नुआकोट, नेपाल, आज तक।
0: नेपाल में हुई तबाही से कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। जहां एक घर मकान थे, वहां सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है। कुछ गांव तो कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ अब कागजों पर बचे हैं, नामो निशान जिनका मिट गया है।
10: नेपाल की जल त्रासदी किस तीव्रता की थी, इसका अनुमान जब तक लगाया जा रहा होता है तब तक उससे भी विनाशकारी तस्वीरें आ जाती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि कितना विनाश हुआ है, किस स्तर का हुआ है, उसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह, आशुतोष मिश्रा, पंकज दास इस समय नेपाल में मौजूद हैं। संवाददाता आशुतोष मिश्रा जब नुआकोटी के ढुंगे बाजार पहुंचे तो वहां के हालात देखकर हैरान रह गए कि तबाही इस स्तर की भी हो सकती है।
11: इसके आगे जाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, ये लोगों के घर थे, मकान थे, सब कुछ कैसे पूरी तरह बर्बाद हो गया है। एक ऐसी आपदा और मानो जैसे कयामत बरसी हुई शहर पर, सब कुछ तबाह कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5 मंजिल, नीचे की जो 2 मंजिल है वो पूरी तरह मलबे में जा चुकी है। और यहीं से ऊंचाई से सोचिए पूरा मलबा आया हुआ होगा। लोग जो घर में होंगे, अगर उन्होंने भागने की भी कोशिश की होगी, वो कैसे भागे होंगे? ऊपरी मंजिल के लोग नीचे कैसे आए होंगे? और क्या इस मलबे में अभी, क्योंकि यहां से लगभग 30 से ज्यादा लोगों को यहां से बरामद किए गए थे शव, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया था, यहां से एयरलिफ्ट किया गया था, लेकिन न जाने कितने लोग, क्योंकि 10,000 की आबादी वाला शहर, न जाने कितने लोग इस शहर के मलबे में अभी भी होंगे।
10: नुआकोट का प्रमुख बाजार था, लेकिन अब इन तस्वीरों को देखिए, बाजार का कहीं नामो निशान नहीं है। ढुंगे के इस बाजार में कई होटल रेस्टोरेंट थे जो अब मलबे में सिमट चुके हैं। सामने एक पेट्रोल पंप भी था, लेकिन अब कुछ दिखाई नहीं देता।
11: ढुंगे बाजार के जिन इलाकों में अब मैं आया हूँ, थोड़े थोड़े करके दिखाई दे रहे हैं। ये जो इमारत है दरअसल निर्माणाधीन थी। अब सोचिए कि कोई अपना आशियाना बना रहा था, परिवार के लिए घर बना रहा था, उसके पहले ही वो घर तबाह हो गया। लोग कहाँ गए कोई नहीं जानता। यहाँ पर कई मंजिला थे, इसमें कुछ कमर्शियल होटल चलते थे। मैं कोशिश करता हूँ क्या इस इलाके तक जाया जा सकता है, लेकिन नहीं जाया जा सकते। देखिए, जूते डालते ही ना जूते यहाँ पर धंस रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये जो मलबा है ये थोड़ा ज्यादा रिस्की है, ये लूज मलबा है। हाँ, ये देखिए पूरा दलदल, इसके ऊपर जाया नहीं जा सकता। दिखने में लग रहा होगा कि मिट्टी का जमावड़ा है, लेकिन जैसे जैसे पानी नमी इसमें जा रही है, ये और पूरा दलदल बनता जा रहा है। आप सोचिए कि अगर इन जगहों से किसी को जाना भी हो, संभावना भी हो, अब आप समझिए कि जहां पर रेस्क्यू बचाव कार्य चल रहे हैं, वहां इस दलदल से लोगों को निकालना कितना मुश्किल होगा, खासकर अगर कोई इमारतों से SOS कॉल भी देता। और इसीलिए हेलीकॉप्टर के जरिए वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, वहां से विंचिंग किए जाते हैं, उन्हें नीचे से जो है लिफ्ट कर लिया जाता है। एयरलिफ्ट एकमात्र ऑप्शन बचा है, क्योंकि इस दलदल में आप चॉपर जो है लैंड नहीं कर सकते। इन इलाकों में देखिए, यहाँ से निकलना जो है ना, ये पूरा कीचड़ है, तो बहुत, अब आप समझिए कि राहत बचाव कार्य यहाँ पर कितना मुश्किल हो रहा होगा।
10: नुआकोटी के ढूंगे बाजार में अब कोई नहीं बचा है। यहाँ का बाजार, यहाँ का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सब खंडहर बन चुके हैं। एक ऐसा खंडहर जो मलबे से भरा हुआ है।
11: ढूंगे बाजार की सीमा यहाँ से मेरे लिए खत्म हो रही है, क्योंकि बाजार तो आगे तक है, लेकिन इसके आगे मलबे ने रास्ता रोक रखा है और वो इतना खतरनाक है कि जोखिम भरा है। लेकिन यहाँ आकर के त्रासदी की जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ, वो बता रही हैं कि आखिर यहाँ जो लोग होंगे वो कितने डरे होंगे, कितने सहमे होंगे। समय था ही नहीं भागने के लिए, और जब तक वो भाग के ऊपर पहुंचते तब तक न जाने कितनी इसकी चपेट में आ गए थे। कहीं पेट्रोल पंप दब चुका है, कहीं कई मंजिला जो इमारत है वो खंडहर बन चुकी है। न जाने कितने लोग थे जो भाग पाए होंगे, न जाने कितने लोग थे जो मलबे में दफन होंगे। कई सारे लोग, निर्दोष लोग, जिन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला होगा। नेपाल की इस तबाही ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है।
10: नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर आसमान पर बनराते रहते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कोई फंसा तो नहीं। त्रिशूली नदी ढुंगे बाजार के बिल्कुल बगल से बहती है। यहीं पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी था। 26 अगस्त की आपदा में वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गया।
11: ये वो त्रिशूली के पास का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, दरअसल पाइपलाइन आपको दिखाई दे रही है। ये भी मलबे में पूरी तरह बह गया, क्योंकि आगे जो त्रिशूली की धारा आप देख रहे हैं ये इतनी खतरनाक थी कि इसके साथ ये देखो पानी का स्तर जो है ये इतना ऊपर गया 20 से 25 फीट, और उसके बाद इसने पूरे हाइड्रो प्रोजेक्ट को अपने साथ बहा ले गए। दरअसल पुल की कनेक्टिविटी इस इमारत के साथ लगती थी, लेकिन ये सब कुछ बह गया। और अब बड़ा खतरा इस बात का है कि जिस तरह से चीन ने चेतावनी दी है उस चेतावनी के बाद दरअसल इसी त्रिशूली में, नारायणी में, भटकोशी में जिनका स्तर बढ़ा था वो पानी फिर बढ़ सकता है। और ऐसे में हालांकि इन इलाके की तबाही अब इतनी हो चुकी है कि और नुकसान क्या ही होगा, लोग बचे नहीं है, जो बचे हैं वो पहाड़ी इलाकों पर चले गए हैं, बाकी की चेतावनी जारी की गई है। लेकिन ये तस्वीरें देख करके आपको अंदाजा लग सकता है कि जो नदी आज इतने नीचे से बह रही है, जिसका बहाव लगभग इतना ही है, वो भी तब जब बरसात हो रही है, वो जब जमीन से 60 से 70 फीट की ऊंचाई पर ले गई होगी, तो अपने साथ कितनी तीव्रता और ताकत लेकर के आई कि उन्हें इन बड़ी बड़ी इमारतों को, पुलों को, हाइड्रो प्रोजेक्ट को सब कुछ नष्ट कर दिया।
10: ढुंगे बाजार से नेपाली सेना ने कई लोगों के शव बरामद किए हैं। जो लोग किसी तरह से यहाँ से बच निकले थे, अब वो अपने घरों को देखने के लिए लौटे हैं। लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि नेपाली पुलिस लोगों को आगे जाने से रोक रही है।
11: आपका घर कहाँ पर है?
12: नीला है ना?
11: अच्छा, ऊपर की तरफ।
12: थैंक यू वाला।
11: आप अच्छा, आप थे उस समय घर पे जब ये सब हो रहा था?
12: पूरा डूब जाए।
11: आप थे यहाँ पे जब देखा था आपने सब कुछ?
12: हाँ देखा था। ऐसे से आया कि ऐसा उपहार के, ऐसा मार के, सब मार के चल गया। उसके लिए हम बाद में इधर भी आ सकता है समझ गया। उसके बाद हम ऊपर गए।
11: ढूंगे बाजार जैसे ही खत्म होता है उसके आगे त्रिशूली बाजार शुरू होता है। और अब ये जो पुलिस वाले हैं वो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि लोग आगे ना जाएं। अभी देखिए महिलाएं बच्चे हैं जिनका अपना जरूरत का सामान है, ये लोग। आप कहाँ जा रही हैं? आपका घर है आगे? आप आगे जा रही हैं? देखिए कई सारे लोग हैं जो अपने घरों की ओर या उन इलाकों की ओर जाना चाहते हैं देखने, लेकिन ये कितना जोखिम भरा है। देखिए देख रहे हैं पूरा रास्ता जो है कीचड़ में दबा हुआ है। इसके आगे जाने की पुलिस भी अनुमति नहीं दे रही, इसलिए जो स्थानीय प्रहरी हैं वो भी पहुंचे हैं। लोग अब आए हैं देखने के लिए कि वो इन इलाकों में आगे न जाएं।
10: आशुतोष मिश्रा, नुआकोटी, नेपाल, आज तक।
0: आपदा नेपाल में आई लेकिन उसके पीड़ित दुनिया के कई देशों के लोग हुए हैं। ये त्रासदी कई परिवारों को कभी ना भरने वाला जख्म दे गए हैं। सैकड़ों भारतीय भी नेपाल में लापता हैं। आपदा की तस्वीरें देखकर परिजन सहमे हुए हैं। अनहोनी की आशंकाएं हैं लेकिन मन में उम्मीद भी है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए।

0: दिल में डर और किसी अनहोनी की आशंका के बीच आंखों में आंसू लिए ये लोग अपनों की तलाश में लगे हैं। इसी उम्मीद के साथ इधर उधर भटक रहे हैं कि किसी तरह अपनों का पता लग सके, उनके सलामत होने की खबर मिले। किसी के हाथों में तस्वीर है, कोई मोबाइल पर तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछताछ कर रहा है, कोई अस्पताल में लगी तस्वीरों के बीच अपनों को तलाश रहा है। नेपाल में आई सैलाबी त्रासदी ने कई परिवारों को दर्द में डुबो दिया है। रेस्क्यू सेंटर से लेकर अस्पताल तक लोग भटक रहे हैं, अपनों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब कोई खबर नहीं मिल रही, कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो आंखें भर आ रही हैं।
1: 8 बजे बात हुई थी उससे, और उसके बाद कुछ भी पता नहीं। किसी से हम लोग को कहीं किसी से कोई
0: किसी का बेटा लापता, किसी का पति, किसी की बहन, तो किसी का भाई, दिल में आस लेकर उनकी तलाश जारी है।
2: भाई के पता नहीं है, किधर है मालूम नहीं है, हम बहुत दुखी है।
0: नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद से लापता अपने बेटे की तलाश के लिए ये माँ दर दर के चक्कर काट रही है। पहले कई गांव में बच्चों को ढूंढा, फिर रेस्क्यू सेंटर गई, अस्पताल पहुंची, लेकिन बेटे की कोई खबर नहीं लगी।
3: कॉल किया, कॉल नहीं लगा, इधर गांव में भी ढूंढ रहे नहीं मिला, अभी हम लोग भी हॉस्पिटल इधर ढूंढ रहे नहीं मिला।
0: लापता लोगों के परिवार वाले बेहद परेशान हैं। हर दिन बीतने के साथ कई आशंकाएं दिल को भारी कर रही हैं। स्थिति ऐसी है कि मांग हो रही है कि सरकार सुविधा दे, तो खुद रेस्क्यू में शामिल होने के लिए तैयार हैं।
4: अगर कोई सुविधा मिले तो मैं खुद जाना चाहती हूँ, सुविधा मिले तो
5: ढूंढने के लिए।
0: नेपाल की त्रासदी में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिससे अपनों को खोने वालों के मन में खौफ बढ़ता जा रहा है। अस्पताल के बाहर बरामद शवों की तस्वीर लगाई गई है, लोग दिल पर पत्थर रखकर इन तस्वीरों को देख रहे हैं।
6: ये काठमांडू का वो जगह है जहां से बाहर से डेड बॉडी लाके रखी गई है। आप ये पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि उन डेड बॉडी की यह तस्वीर रखी गई है, ताकि इनके जो अपने लोग हैं, इनके रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पे आके इनकी पहचान कर सके और यहाँ से डेड बॉडी ले जा सके। इन तस्वीरों को देखकर आप देख सकते हैं कितनी भयावह तस्वीरें हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, विक्षिप्त कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये लोग जब इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जा रहे हैं।
0: आपदा में कई लोग घायल हुए हैं, कई को गंभीर चोटें भी आई हैं, कई घायलों का इलाज काठमांडू के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। नेपाल की कुदरत की तबाही ने कई परिवारों को जीवन भर का जख्म दिया है। कई लोग अब भी लापता हैं, परिवार वाले उनकी तलाश में भटक रहे हैं। नेपाल से श्वेता सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा और पंकज दास आज तक।
7: अब बात करते हैं राहुल गांधी के दलित कार्ड की, जहां उन्होंने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस को घेरा है, और इतना ही राहुल गांधी ने हल्द्वानी में हुए शुद्धिकरण को भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान से जोड़ा और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
8: भले ही हल्द्वानी में खड़गे के दौरे के बाद हुए शुद्धिकरण की ये तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हो, लेकिन आज जब राहुल गांधी ने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा तो कांग्रेस अध्यक्ष के अपमान का मुद्दा भी उठाया।
9: कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी है, मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट है, वो रामलीला ग्राउंड में हल्द्वानी में जाते हैं भाषण देने और वहां पर शुद्धिकरण होता है, और उनकी पार्टी का उदाहरण बिहार के चीफ मिनिस्टर मांझी जी, वो मंदिर में जाते हैं और वहां शुद्धिकरण होता है। ये करता कौन है? ये बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं, सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग ये करते हैं और ये क्राइम है। राजस्थान के मंदिर जाते हैं,
8: राहुल गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण की याद दिलाई। एनडीए के नेता जीतन राम मांझी के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण का भी जिक्र किया और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
9: शुद्धिकरण होता है, जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में उन पर एफआईआर लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, आरएसएस के लोगों ने शुद्धिकरण किया है। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर एससीएससी एक्ट में एफआईआर दर्ज किया।
8: जवाब में एनडीए के नेता कांग्रेस राज की याद दिला रहे हैं, दलितों के विकास के लिए कांग्रेस ने क्या किया वो बता रहे हैं।
10: खड़गे जी नामांकन केंद्र के कमरे के बाहर रहेंगे, वी नारायण स्वामी पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री ये इस प्रकार से चप्पल उठाएंगे तो कांग्रेस पार्टी कैसा मानसिकता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और हरियाणा में हरियाणा की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा, उनका क्या मान सम्मान हो रहा है हम सब जानते हैं, बैनर पोस्टर्स उनको गायब कर दिया गया है। तो ये कांग्रेस पार्टी का असल चाल चेहरा चरित्र है। ये दलित समाज दलित सम्मान की बात आपको सिर्फ राजनीति के लिए याद आती है?
11: जो लोग आज इस बात की चिंता कर रहे हैं, देश ने आजादी के बाद लंबे समय तक मौका तो उन्हीं को ही दिया था ना, आज किस मुंह से वो कह रहे हैं कि आज भी समाज में भेदभाव मिटा नहीं है। कई उदाहरण उन्होंने गिनाए, अगर ये उदाहरण आज वो गिना रहे हैं तो आप बताइए एक लंबे समय तक आजादी के बाद और लगभग 4.5-5 दशक तक तो निरंतरता में कांग्रेस की सरकारें रही, उसके बाद भी कांग्रेस के सहयोग की सरकारें रही, उसके बाद भी समाज में अगर भेदभाव अगर होता रहा तो कहीं ना कहीं नींव को मजबूत करने में सफल तो ये लोग भी नहीं रहे।
8: उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुद्धिकरण का मुद्दा राज्यसभा में गूंज चुका है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी।
12: लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए।
13: माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज।
8: उधर शुद्धिकरण के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर सियासत का आरोप लगा रही है।
14: लेकिन उत्तराखंड में कोई नहीं जानता कि खड़गे जी की जाति क्या है, वो तो वहां पर जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए और वहां पर गंदगी की गई, वो एक शुद्ध स्थान था, धार्मिक स्थान था, जहां पर रामलीला का मंचन होता है, बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, ऐसे आयोजनों पर जो गंदगी हुई थी, जो धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए थे और एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाए थे, उसके विरोध में लोगों ने जो धार्मिक संगठन थे उन्होंने उस वहाँ पर शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम किया था वो कार्यक्रम था। और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है।
8: युवा महिला और हिंदुत्व के बाद अब राहुल गांधी ने इस बार दलित कार्ड खेला है, जिस पर घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो।
7: अब आज ममता बनर्जी की कैथेड्रल रोड पर टीएमसीपी की बैठक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। दरअसल आरोप है कि हाईकोर्ट की ओर से जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया। टीएमसीपी की बैठक आयोजित की गई और कोर्ट ने सड़क के सिर्फ एक हिस्से पर ही रैली की इजाजत दी थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने दोनों ही हिस्से को घेर लिया और तय समय के बाद भी कार्यक्रम चलता ही रहा।
15: ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एफआईआर है, तो हम लोग पूरा हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसका सम्मान करते हैं, अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन जनता का अदालत को भी सम्मान तो करना चाहिए। हम लोग कोशिश किया पूरा हाईकोर्ट का ऑर्डर को मानने के लिए, लेकिन अगर कोई ज्यादा कोई चला आएगा वो तो पुलिस का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखने का। वो ममता बनर्जी का खिलाफ एफआईआर का कोई वो पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है।
7: खबरों का सिलसिला जारी है, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

का बड़ा बयान, कहा धर्म भले ही अलग अलग लेकिन इंसानियत एक, बोले हिंदुत्व का मतलब मुसलमानों को बाहर करना नहीं। कहा धर्म भले ही अलग अलग लेकिन इंसानियत एक, बोले हिंदुत्व का मतलब मुसलमानों को बाहर करना नहीं। उज़्बेकिस्तान दौरे पर ताशकंद खड़गे को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा हमेशा कांग्रेस ने किया दलितों का अपमान, नेता विपक्ष ने हल्द्वानी में शुद्धिकरण का उठाया था मामला। आरक्षण विवाद पर आमने सामने मोदी के दो मंत्री, रिजर्वेशन में जीतन राम मांझी के वर्गीकरण की मांग को चिराग पासवान ने किया खारिज, दोनों ने एक दूसरे का मांगा इस्तीफा।

0: लोग लापता, भारत ने देर रात काठमांडू के लिए भेजी राहत की चौथी खेप। नेपाल त्रासदी पर आज तक की कवरेज लगातार जारी है, जहां ग्राउंड जीरो से आज तक आपको हर हालात से रूबरू करा रहे हैं। आज तक की अलग अलग टीमें इस समय अलग अलग हिस्सों से त्रासदी के दंश को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, अपनों की तलाश में लोग भटक रहे हैं। नेपाल के नवाकोट से अब एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: तबाही अपने पीछे ऐसा दर्द छोड़ गई जिसके जख्मों को भरने में कई साल लग जाएंगे। तस्वीरें नेपाल के नुआकोट की हैं। पूरे इलाके का मानो नक्शा ही बदल गया है। सड़क, दुकान, मकान सब बराबर हो गए हैं। जिन घरों में कभी खुशियां चहकती थी, आज उन्हीं घरों के बाहर बेबस और लाचार लोगों का दर्द नजर आ रहा है।
2: ये वो जिला है जो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ नेपाल में आई उस त्रासदी से। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मलबा हट रहा है तो त्रासदी का पैमाना दिख रहा है। इस ऊंचाई से आप वो पूरी तस्वीर देखिए। त्रिशूली नदी अपने तटों को तोड़कर दोनों तरफ ज्यादा चौड़ाई में बह रही है। वो तस्वीरें जहां पर आपको लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, वहां तक सड़क जाती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे शायद एक पगडंडी रही हो और बाकी केवल मलबा। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक बड़ी सी पार्किंग हुआ करती थी। ये बैंक, एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स और आगे आप होटल्स देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में आया करते थे। अब जो इकलौता पर्यटन यहाँ पर है वो उन लोगों का है जो आकर देखना चाहते हैं कि कैसी विनाश लीला रही होगी। जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे। जब आगे वो त्रासदी आई, तबाही आई, बाढ़ मलबे के साथ पानी आया, तो ईश्वर को इस बात का शुक्र तो अदा किया कि अपनी जान बची, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को तिनका तिनका होते भी देखा।
1: स्थानीय लोगों ने ऐसा मंजर देखा जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएंगे।
3: मैंने देखा कि वहाँ से वो पुल से बाढ़ आ गया। तो मैं पहले तो मेरे मम्मी पापा थे दुकान पे ना, तो मैं गई अपनी मम्मी पापा को देखने के लिए कि वो अभी तक वहीं पे है या नहीं। अब स्कूटी तो छोड़ दो क्योंकि हमारा अभी यंग है तो हम कमा लेंगे, पर अपने मम्मी पापा को तो बचाना पड़ेगा ना। तो हम चले गए वहाँ पे, तो देखा मम्मी पापा दुकान बंद करके चले गए, भाग गए। तो मैं भी भाग गई उधर से। अगर मैं इधर से आई होगी तो मुझे भी लेके जाएगा था पार्टनर, पर वे उधर चले गए।
2: ऊंचा दिख रहा था, ऐसे कैसा आता वो दिख रहा था?
3: नहीं, ऐसे जैसे जो होते ना, जो स्नेक के आते ना, ऐसे ऐसे करके। अच्छा। थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर करके हाई हाई हाई करके।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो ऐसा चल के आ गया ना, तो कुछ सोचने समझने के टाइम भी नहीं हुआ उस टाइम कि क्या करना चाहिए। देख, क्योंकि कोई रो रहा है उस टाइम देख के, कोई क्या कर रहा है ना, तो ऐसे लगा कि
2: सबसे जरूरी था भागना,
3: भागना
2: तेज,
3: वही अपना जान बचाओ सबका। तो कितने लोग रो रहे थे और कितने लोग को तो हमने देखा कि उसको बाढ़ ने भगा के लेके गए। एक को तो हमने
2: देखा सामने।
3: हाँ, नहीं ऐसे करके वो जैसे हम यहाँ पे थे तो उसको हमने हाथ पकड़ के ऊपर
2: आपने बचा लिया।
1: ऋषिका बताती है जिस मोहल्ले में वो खेलती थी आज वो मोहल्ला पूरी तरह से बदल चुका है। अब दूर खड़े होकर वो अपने घर को देख रही है। खुशी इस बात की है कि परिवार के लोग बच गए। उम्र भले ही कच्ची हो, लेकिन इस छोटी उम्र में तबाही ऐसा तजुर्बा दे गई कि जिंदगी को लेकर सोच ही बदल दी।
4: जो हल्का इधर हुआ है, जो ग्रीन कलर का हल्का दिखाई दे रहा है।
2: अच्छा, जो पूरी तरीके से नीचे है, सिर्फ एक मंजिल दिख रहा है जिसका ऊपर।
4: जी जी, जो दस्ता है ना ऊपर का, उस और साइड में है ना, वही मेरा घर है।
2: कितनी देर पहले मम्मी पापा निकल पाए थे?
4: मम्मी पापा बोल रहे थे अगर हम लोग ऐसे मुड़ के पीछे देखते लोग तो शायद पता नहीं क्या होता।
2: मतलब मुड़ के पीछे देखने का भी टाइम नहीं था। ये सब घर यहाँ पे, तो दोस्त वोस्त रहते होंगे तुम्हारे सब?
4: जी, मेरा फ्रेंड का भी घर जो है ना, जो मंदिर की तरह दिखाई दे रहा है, वो भी मेरे फ्रेंड का ही घर है। और वहाँ पे कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पे एक सिस्टर आंटी का की थी, उनका होटल था, बहुत अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था। बहुत अच्छा भी था, वो भी कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पे ब्लू कलर का जो है घर देख सकते हैं।
2: किसी का काम बचा ना घर बचा,
4: ना किसी का काम बचा ना घर बचा, कुछ भी नहीं बचा। बस आदमी बच गए वही हम लोग के लिए बहुत काफी है। हम लोग मैं खुशी हूँ कि मेरे पेरेंट्स बच गए हैं, बस वही काफी है। पैसा तो धन बाद में भी हो सकता है ना, पहले आदमी बच गए वही काफी है।
1: रसिका की किस्मत अच्छी थी कि परिवार वाले बच गए, लेकिन यहाँ ऐसे भी कई परिवार हैं जो अपने ही मोहल्ले में अपनों की ही तलाश कर रहे हैं।
5: मेरी दीदी मिसिंग है और भांजी भी, तीन भांजी एक हाँ। दीदी और एक नतनी मिसिंग है।
2: कहाँ रह रहे थे
5: वो लोग? रसुआ और नुआकोट के बॉर्डर पे रहते थे।
2: अच्छा।
5: क्या कहता हूँ मैं,
2: रसुआ नुआकोट के बॉर्डर पे, तो आप हर उस जगह आके ढूंढ रहे हैं कि
5: हर जगह जाने के वहाँ कोई साधन ही नहीं है और वहाँ तक मिसिंग ही है और जा नहीं पा रहे हैं।
2: फोटो एक बार दिखा दीजिए कैमरे पे।
5: ये भांजी हुई, ये भांजी की लड़की हुई।
2: कितने साल की है
5: ये बच्ची? 2 साल की है।
2: 2 साल की
5: जी। ये दीदी हुई, ये भांजी है, ये भी भांजी है।
2: तो ये मिल नहीं पा रहे हैं?
5: नहीं मिल पा रहे हैं।
2: आप हर जगह जाके बस
5: ढूंढ रहे हैं?
1: रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक बुरी खबर पूरे परिवार को तोड़कर रख देती है।
2: ये रसुआ की तरफ जाने वाली सड़क है, जैसे जैसे जो राहत कर्मी है वो थोड़ी सी सफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं, किसी न किसी को कोई न कोई बुरी खबर मिलती है।
1: इस इलाके में कई होटल भी थे जिसमें टूरिस्ट रुके हुए थे, जिनकी जान बचाने की अपनी कहानी है।
6: उस टाइम खाना खाने टाइम हुआ था, ऑर्डर था गेस्ट का, 20-25 जना गेस्ट का ऑर्डर था। उस टाइम में सब खबर आ गया, भागो भागो बोल गए, सब खाना खा के ये रास्ता हो गया।
2: आंखों के सामने आपने आते हुए देखा?
6: हाँ।
2: कैसा डरावना था?
6: बहुत एकदम डरावना था, बहुत।
2: नुकसान कितना हो गया आपको?
6: नुकसान था उधर 15 रूम था गेस्ट रूम होटल का, अटैच बाथरूम रूम, एसी रूम, हॉल था, डाइनिंग किचन। नुकसान तो कितना आप सरकार ने उसको जान किसी की नहीं गई। 4-5 मिनट के अंदर में भागने सफल हो गया। मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल था उसमें, मोटरसाइकिल लेने के भी मौका न मिला और शटर लगाने की भी मौका नहीं मिला।
2: यही रास्ता था?
6: ये रास्ता से काम करने वाला स्टाफ 5 जना थे, 5 आदमी थे, और मेरा बेटा उधर काम करता थे, वो भी ये रास्ते से ऊपर भागने सफल हो गया।
1: यहाँ रहने वाले अमरीश बताते हैं कि इलाके का मानो भूगोल ही बदल गया है।
2: यहीं पर रहते हैं आप?
7: जी यहीं पर रहते हैं।
2: यहाँ क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं 26 अगस्त के बाद से?
7: बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब यहाँ पे जो है सड़क का हाइट बढ़ गया है, खोला इधर थोड़ा सा उधर से इधर साइड में आ गया है पहले से।
2: मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि ये बैंक और ये जो
7: डेवलपमेंट विकास बैंक
2: है, ये सब नीचे है और सड़क ऊपर है, ऐसा था या नहीं
7: लग रहा है? नहीं, पहले नहीं था लेकिन अभी लग रहा है। थोड़ा सा नीचे तो था लेकिन कम था।
2: अच्छा, तो अब और नदी इसी तरीके से?
7: नदी तो बहुत परिवर्तन हुआ है पहले।
2: क्या परिवर्तन हुआ है?
7: इसका चौड़ाई बढ़ गया है पहले से।
2: हाँ।
7: ये पूरा खेत था इसके पछाड़ी, पूरे खेत में
2: ये खेत था
7: इसके पछाड़ी।
2: अच्छा।
7: इस साइड में पूरे घर था, यहाँ पे हर आदमी अपना बिजनेस व्यवसाय करता था लोग। यहाँ तक रोड था पहले,
2: यहाँ तक रोड था। अच्छा, इसीलिए ये हम रोड का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला वो चीजें आप देख रहे हैं।
7: हाँ, इसी
2: और इसीलिए यहाँ पर खड़ा होना भी थोड़ी देर के लिए संभव हो पा रहा है।
7: यहाँ बाउंड्री था, यहाँ तक रोड था पहले।
1: इंसान तो इंसान, जानवर भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं।
8: ऊपर
2: छत में फंसा हुआ है कुत्ता, मुर्गा।
8: ये 40-50 है,
2: 40-50 ऊपर फंसा हुआ है,
8: दो आया और उधर है।
2: अच्छा, तो अभी उस सबको निकाल रहे हैं। ये कुत्ता भी ऊपर से है?
8: ऊपर से निकाला अभी,
2: दो था,
8: एक किधर गया मालूम नहीं। ये
2: एकदम ऊपर बेचारे को खाना भी नहीं मिला होगा?
8: खाना नहीं मिला।
2: यही कुछ जो छत पे ऊपर एकदम फंस गए थे उन सबको अभी निकाला जा रहा है। ये आपका था? आपका क्या नाम है इसका?
8: स्वीटी।
2: स्वीटी नाम है? स्वीटी आ गई तुम वापस?
9: उसका काम नहीं सुन पाए,
8: खराब हुआ।
1: सबका अपना दर्द है, किसी को अपनों की तलाश है तो कोई फिर से जिंदगी शुरू करने की खुद को हिम्मत दे रहा है। श्वेता सिंह, नुआकोट, नेपाल, आज तक।
0: नेपाल में हुई तबाही से कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। जहां एक घर मकान थे वहां सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है। कुछ गांव तो कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ अब कागजों पर बचे हैं, नामो निशान जिनका मिट गया है।
10: नेपाल की जल त्रासदी किस तीव्रता की थी इसका अनुमान जब तक लगाया जा रहा होता है तब तक उससे भी विनाशकारी तस्वीरें आ जाती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि कितना विनाश हुआ है, किस स्तर का हुआ है, उसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह, आशुतोष मिश्रा, पंकज दास इस समय नेपाल में मौजूद हैं। संवाददाता आशुतोष मिश्रा जब नुआकोटी के ढुंगे बाजार पहुंचे तो वहां के हालात देखकर हैरान रह गए कि तबाही इस स्तर की भी हो सकती है।
11: इसके आगे जाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, ये लोगों के घर थे, मकान थे, सब कुछ कैसे पूरी तरह बर्बाद हो गया है। एक ऐसी आपदा और मानो जैसे कयामत बरसी हुई शहर पर, सब कुछ तबाह कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5 मंजिल, नीचे की जो 2 मंजिल है वो पूरी तरह मलबे में जा चुकी है और यहीं से ऊंचाई से सोचिए पूरा मलबा आया हुआ होगा। लोग जो घर में होंगे, अगर उन्होंने भागने की भी कोशिश की होगी, वो कैसे भागे होंगे? ऊपरी मंजिल के लोग नीचे कैसे आए होंगे? और क्या इस मलबे में अभी, क्योंकि यहां से लगभग 30 से ज्यादा लोगों को यहां से बरामद किए गए थे शव, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया था, यहां से एयरलिफ्ट किया गया था, लेकिन न जाने कितने लोग, क्योंकि 10,000 की आबादी वाला शहर, न जाने कितने लोग इस शहर के मलबे में अभी भी होंगे।
10: नुआकोट का प्रमुख बाजार था, लेकिन अब इन तस्वीरों को देखिए, बाजार का कहीं नामो निशान नहीं है। ढोंगे के इस बाजार में कई

0: सोचे कि कोई अपना आशियाना बना रहा था, परिवार के लिए घर बना रहा था, उसके पहले ही वो घर तबाह हो गया। लोग कहाँ गए कोई नहीं जानता। यहाँ पर कई मंजिला थे, इसमें कुछ कमर्शियल होटल चलते थे। मैं कोशिश करता हूँ क्या इस इलाके तक जाया जा सकता है, लेकिन नहीं नहीं जाया जा सकते। देखिए जूते डालते ही ना जूते यहाँ पर धंस रहे हैं, और इसी के साथ साथ ये जो मलबा है ये थोड़ा ज्यादा रिस्की है, ये लूज मलबा है। हाँ ये देखिए पूरा दलदल है, इसके ऊपर जाया नहीं जा सकता। दिखने में लग रहा होगा कि मिट्टी का जमावड़ा है, लेकिन जैसे जैसे पानी नमी इसमें जा रही है ये और पूरा दलदल बनता जा रहा है। आप सोचिए कि अगर इन जगहों से किसी को जाना भी हो, संभावना भी हो, अब आप समझिए कि जहां पर रेस्क्यू बचाव कार्य चल रहे हैं वहां इस दलदल से लोगों को निकालना कितना मुश्किल होगा, खासकर अगर कोई इमारतों से SOS कॉल भी देता। और इसीलिए हेलीकॉप्टर के जरिए वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, वहां से विंचिंग किए जाते हैं, उन्हें नीचे से जो है लिफ्ट कर लिया जाता है। एयरलिफ्ट एकमात्र ऑप्शन बचा है, क्योंकि इस दलदल में आप चॉपर जो है लैंड नहीं कर सकते इन इलाकों में। देखिए यहाँ से निकलना जो है ना ये पूरा कीचड़ है, तो बहुत, अब आप समझिए कि राहत बचाव कार्य यहाँ पर कितना मुश्किल हो रहा होगा।
1: नुआकोटी के ढूंगे बाजार में अब कोई नहीं बचा है। यहाँ का बाजार, यहाँ का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सब खंडहर बन चुके हैं। एक ऐसा खंडहर जो मलबे से भरा हुआ है।
0: तो ढूंगे बाजार की सीमा यहाँ से मेरे लिए खत्म हो रही है, क्योंकि बाजार तो आगे तक है, लेकिन इसके आगे मलबे ने रास्ता रोक रखा है, और वो इतना खतरनाक है कि जोखिम भरा है। लेकिन यहाँ आकर के त्रासदी की जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ वो बता रही हैं कि आखिर यहाँ जो लोग होंगे वो कितने डरे होंगे, कितने सहमे होंगे। समय था ही नहीं भागने के लिए, और जब तक वो भाग के ऊपर पहुंचते तब तक न जाने कितनी इसकी चपेट में आ गए थे। कहीं पेट्रोल पंप दब चुका है, कहीं कई मंजिला जो इमारत है वो खंडहर बन चुकी है। न जाने कितने लोग थे जो भाग पाए होंगे, न जाने कितने लोग थे जो मलबे में दफन होंगे। कई सारे लोग, निर्दोष लोग, जिन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला होगा। नेपाल की इस तबाही सब कुछ बर्बाद कर दिया है।
1: नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर आसमान पर बनराते रहते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कोई फंसा तो नहीं। त्रिशूली नदी ढूंगे बाजार के बिल्कुल बगल से बहती है। यहीं पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी था। 26 अगस्त की आपदा में वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गया।
0: ये वो त्रिशूली के पास का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, दरअसल पाइपलाइन आपको दिखाई दे रही है। ये भी मलबे में पूरी तरह बह गया, क्योंकि आगे जो त्रिशूली की धारा आप देख रहे हैं ये इतनी खतरनाक थी कि इसके साथ ये देखो पानी का स्तर जो है ये इतना ऊपर गया 20 से 25 फीट, और उसके बाद इसने पूरे हाइड्रो प्रोजेक्ट को अपने साथ बहा ले गए। दरअसल पुल की कनेक्टिविटी इस इमारत के साथ लगती थी, लेकिन ये सब कुछ बह गया। और अब बड़ा खतरा इस बात का है कि जिस तरह से चीन ने चेतावनी दी है, उस चेतावनी के बाद दरअसल इसी त्रिशूली में, नारायणी में, भटकोशी में जिसका स्तर बढ़ा था वो पानी फिर बढ़ सकता है। और ऐसे में हालांकि इन इलाके की तबाही अब इतनी हो चुकी है कि और नुकसान क्या ही होगा। लोग बचे नहीं है, जो बचे हैं वो पहाड़ी इलाकों पर चले गए हैं, बाकी की चेतावनी जारी की गई है। लेकिन ये तस्वीरें देख करके आपको अंदाजा लग सकता है कि जो नदी आज इतने नीचे से बह रही है, जिसका बहाव लगभग इतना ही है, वो भी तब जब बरसात हो रही है, वो जब जमीन से 60 से 70 फीट की ऊंचाई पर ले गई होगी, तो अपने साथ कितनी तीव्रता और ताकत लेकर के आई कि उन्हें इन बड़ी बड़ी इमारतों को, पुलों को, हाइड्रो प्रोजेक्ट को सब कुछ नष्ट कर दिया।
1: ढूंगे बाजार से नेपाली सेना ने कई लोगों के शव बरामद किए हैं। जो लोग किसी तरह से यहाँ से बच निकले थे अब वो अपने घरों को देखने के लिए लौटे हैं। लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि नेपाली पुलिस लोगों को आगे जाने से रोक रही है।
0: आपका घर कहाँ पर है? अच्छा, ऊपर की तरफ।
2: थैंक यू।
0: आप, अच्छा आप थे उस समय घर पे जब ये सब हो रहा था?
2: पूरा डूब जाए।
0: आप थे यहाँ पे जब देखा था आपने सब कुछ?
2: हाँ देखा था। ऐसे से आया कि ऐसा उभर के, ऐसा मार के, सब मार के चल गया। उसके लिए हम बाद में इधर भी आ सकता है समाज गया, उसके बाद हम ऊपर गए।
0: ढूंगे बाजार जैसे ही खत्म होता है उसके आगे त्रिशूली बाजार शुरू होता है, और अब ये जो पुलिस वाले हैं वो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि लोग आगे ना जाएं। अभी देखिए महिलाएं, बच्चे हैं जिनका अपना जरूरत का सामान है, ये लोग। आप कहाँ जा रही हैं? आपका घर है आगे? आप आगे जा रही हैं? देखिए कई सारे लोग हैं जो अपने घरों की ओर या उन इलाकों की ओर जाना चाहते हैं देखने, लेकिन ये कितना जोखिम भरा है। देखिए देख रहे हैं पूरा रास्ता जो है कीचड़ में दबा हुआ है, इसके आगे जाने के पुलिस भी अनुमति नहीं दे रही, इसलिए जो स्थानीय प्रहरी हैं वो भी पहुंचे हैं। लोग अब आए हैं देखने के लिए कि वो इन इलाकों में आगे ना जाएं।
1: आशुतोष मिश्रा, नुआकोटी, नेपाल, आज तक।
3: आपदा नेपाल में आई लेकिन उसके पीड़ित दुनिया के कई देशों के लोग हुए हैं। ये त्रासदी कई परिवारों को कभी ना भरने वाला जख्म दे गए हैं। सैकड़ों भारतीय भी नेपाल में लापता हैं। आपदा की तस्वीरें देखकर परिजन सहमे हुए हैं, अनहोनी की आशंकाएं हैं, लेकिन मन में उम्मीद भी है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए।

0: दिल में डर और किसी अनहोनी की आशंका के बीच आंखों में आंसू लिए ये लोग अपनों की तलाश में लगे हैं। इसी उम्मीद के साथ इधर उधर भटक रहे हैं कि किसी तरह अपनों का पता लग सके, उनके सलामत होने की खबर मिले। किसी के हाथों में तस्वीर है, कोई मोबाइल पर तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछताछ कर रहा है, कोई अस्पताल में लगी तस्वीरों के बीच अपनों को तलाश रहा है। नेपाल में आई सैलाबी त्रासदी ने कई परिवारों को दर्द में डुबो दिया है। रेस्क्यू सेंटर से लेकर अस्पताल तक लोग भटक रहे हैं, अपनों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब कोई खबर नहीं मिल रही, कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो आंखें भर आ रही हैं।
1: 8 बजे बात हुई थी उससे, और उसके बाद कुछ भी पता नहीं है। किसी से हम लोग को कहीं किसी से कोई
0: किसी का बेटा लापता, किसी का पति, किसी की बहन तो किसी का भाई, दिल में आस लेकर उनकी तलाश जारी है।
2: भाई के पता नहीं है, किधर है मालूम नहीं है, हम बहुत दुखी है।
0: नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद से लापता अपने बेटे की तलाश के लिए ये माँ दर दर के चक्कर काट रही है। पहले कई गांव में बच्चों को ढूंढा, फिर रेस्क्यू सेंटर गई, अस्पताल पहुंची, लेकिन बेटे की कोई खबर नहीं लगी।
3: कॉल किया, कॉल नहीं लगा, इधर गांव में भी ढूंढ रहे नहीं मिला, अभी हम लोग भी हॉस्पिटल इधर ढूंढ रहे नहीं मिला।
0: लापता लोगों के परिवार वाले बेहद परेशान हैं। हर दिन बीतने के साथ कई आशंकाएं दिल को भारी कर रही हैं। स्थिति ऐसी है कि मांग हो रही है कि सरकार सुविधा दे, तो खुद रेस्क्यू में शामिल होने के लिए तैयार हैं।
4: अगर कोई सुविधा मिले तो मैं खुद जाना चाहती हूँ, सुविधा मिले तो
5: ढूंढने के लिए।
0: नेपाल की त्रासदी में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिससे अपनों को खोने वालों के मन में खौफ बढ़ता जा रहा है। अस्पताल के बाहर बरामद शवों की तस्वीर लगाई गई है, लोग दिल पर पत्थर रखकर इन तस्वीरों को देख रहे हैं।
6: ये काठमांडू का वो जगह है जहां से बाहर से डेड बॉडी लाके रखी गई है। आप ये खींचे तस्वीरों में देख सकते हैं कि उन डेड बॉडी की यहाँ तस्वीर रखी गई है, ताकि इनके जो अपने लोग हैं, इनके रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पे आके इनकी पहचान कर सकें और यहाँ से डेड बॉडी ले जा सकें। इन तस्वीरों को देखकर आप देख सकते हैं कितनी भयावह तस्वीरें हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, विक्षिप्त कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये लोग जब इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो उनके आँखों में आंसू आ जा रहे हैं।
0: आपदा में कई लोग घायल हुए हैं, कई को गंभीर चोटें भी आई हैं, कई घायलों का इलाज काठमांडू के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। नेपाल की कुदरत की तबाही ने कई परिवारों को जीवन भर का जख्म दिया है, कई लोग अब भी लापता हैं, परिवार वाले उनकी तलाश में भटक रहे हैं। नेपाल से श्वेता सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा और पंकज दास आज तक।
7: अब बात करते हैं राहुल गांधी के दलित कार्ड की, जहां उन्होंने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस को घेरा है, और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने हल्द्वानी में हुए शुद्धिकरण को भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान से जोड़ा और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
8: भले ही हल्द्वानी में खड़गे के दौरे के बाद हुए शुद्धिकरण की ये तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हो, लेकिन आज जब राहुल गांधी ने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा तो कांग्रेस अध्यक्ष के अपमान का मुद्दा भी उठाया।
9: कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी है, मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट है, वो रामलीला ग्राउंड में हल्द्वानी में जाते हैं भाषण देने और वहां पर शुद्धिकरण होता है। और उनकी पार्टी का उदाहरण बिहार के चीफ मिनिस्टर मांझी जी, वो मंदिर में जाते हैं और वहां शुद्धिकरण होता है। ये करता कौन है? ये बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं, सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग ये करते हैं और ये क्राइम है। राजस्थान के मंदिर जाते हैं,
8: राहुल गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण की याद दिलाई। एनडीए के नेता जीतन राम मांझी के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण का भी जिक्र किया और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
9: शुद्धिकरण होता है, जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में उन पर एफआईआर लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, आरएसएस के लोगों ने शुद्धिकरण किया है। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर एससीएससी एक्ट में एफआईआर दर्ज किया।
8: जवाब में एनडीए के नेता कांग्रेस राज की याद दिला रहे हैं, दलितों के विकास के लिए कांग्रेस ने क्या किया वो बता रहे हैं।
10: खड़गे जी नामांकन केंद्र के कमरे के बाहर रहेंगे, वी नारायण स्वामी पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री ये इस प्रकार से चप्पल उठाएंगे तो कांग्रेस पार्टी कैसा मानसिकता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और हरियाणा में हरियाणा की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा, उनका क्या मान सम्मान हो रहा है हम सब जानते हैं, बैनर पोस्टर से उनको गायब कर दिया गया है। तो ये कांग्रेस पार्टी का असल चाल चेहरा चरित्र है। ये दलित समाज दलित सम्मान की बात आपको सिर्फ राजनीति के लिए याद आती है?
11: जो लोग आज इस बात की चिंता कर रहे हैं, देश ने आजादी के बाद लंबे समय तक मौका तो उन्हीं को ही दिया था ना, आज किस मुंह से वो कह रहे हैं कि आज भी समाज में भेदभाव मिटा नहीं है। कई उदाहरण उन्होंने गिना, अगर ये उदाहरण आज वो गिना रहे हैं तो आप बताइए एक लंबे समय तक आजादी के बाद और लगभग 4.5-5 दशक तक तो निरंतरता में कांग्रेस की सरकारें रहीं, उसके बाद भी कांग्रेस के सहयोग की सरकारें रहीं, उसके बाद भी समाज में अगर भेदभाव अगर होता रहा तो कहीं ना कहीं नींव को मजबूत करने में सफल तो ये लोग भी नहीं रहे।
8: उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुद्धिकरण का मुद्दा राज्यसभा में गूंज चुका है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी।
12: लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए।
13: माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज।
8: उधर शुद्धिकरण के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर सियासत का आरोप लगा रही।
14: लेकिन उत्तराखंड में कोई नहीं जानता कि खड़गे जी की जाति क्या है, वो तो वहां पर जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए और वहां पर गंदगी की गई, वो एक शुद्ध स्थान था, धार्मिक स्थान था, जहां पर रामलीला का मंचन होता है, बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, ऐसे आयोजनों पर जो गंदगी हुई थी, जो धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए थे और एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाए थे, उसके विरोध में लोगों ने जो धार्मिक संगठन थे उन्होंने उस वहाँ पर शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम किया था वो कार्यक्रम था, और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है।
8: युवा महिला और हिंदुत्व के बाद अब राहुल गांधी ने इस बार दलित कार्ड खेला है, जिस पर घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो।
7: अब आज ममता बनर्जी की कैथेड्रल रोड पर टीएमसीपी की बैठक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। दरअसल आरोप है कि हाईकोर्ट की ओर से जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया, टीएमसीपी की बैठक आयोजित की गई और कोर्ट ने सड़क के सिर्फ एक हिस्से पर ही रैली की इजाजत दी थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने दोनों ही हिस्से को घेर लिया और तय समय के बाद भी कार्यक्रम चलता ही रहा।
15: ये ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एफआईआर है तो हम लोग पूरा हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसका सम्मान करते हैं, अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन जनता का अदालत को भी सम्मान तो करना चाहिए। हम लोग कोशिश किया पूरा हाईकोर्ट का ऑर्डर को मानने के लिए, लेकिन अगर कोई ज्यादा कोई चला आएगा वो तो पुलिस का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है देखने का। वो ममता बनर्जी का खिलाफ एफआईआर का कोई वो पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है।
16: ममता बनर्जी को लग रहा है कि वो अभी भी मुख्यमंत्री है, वो न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर है, उनके ऊपर कोर्ट के किसी आदेश का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ममता जी, कानून का शासन चल रहा है बंगाल में, भारत के संविधान का शासन चल रहा है बंगाल में, बंगाल में डबल इंजन की ग्रोथ का शासन चल रहा है, परफॉर्मेंस की गारंटी का शासन चल रहा है। वो आपके भतीजे को बढ़ाने वाला कट मनी रंगदारी वाला शासन खत्म हो चुका है।
7: खबरों का सिलसिला जारी है, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

न्यूयॉर्क के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा धर्म भले ही अलग अलग लेकिन इंसानियत एक, बोले हिंदुत्व का मतलब मुसलमानों को बाहर करना नहीं। उज़्बेकिस्तान दौरे पर ताशकंद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, भारतीय समुदाय से की मुलाकात, दो दिन के बाद बिश्केक के केसियो समिट में शामिल होंगे। खड़गे को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा हमेशा कांग्रेस ने किया दलितों का अपमान, नेता विपक्ष ने हल्द्वानी में शुद्धिकरण का उठाया था मामला। आरक्षण विवाद पर आमने सामने मोदी के दो मंत्री, रिजर्वेशन में जीतन राम मांझी के वर्गीकरण की मांग को चिराग पासवान ने किया खारिज, दोनों ने एक दूसरे का मांगा इस्तीफा।

0: काठमांडू के लिए भेजी राहत की चौथी खेप। नेपाल त्रासदी पर आज तक की कवरेज लगातार जारी है, जहां ग्राउंड जीरो से आज तक आपको हर हालात से रूबरू करा रहे हैं। आज तक की अलग अलग टीमें इस समय अलग अलग हिस्सों से त्रासदी के दंश को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, अपनों की तलाश में लोग भटक रहे हैं। नेपाल के नवाकोट से अब एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: तबाही अपने पीछे ऐसा दर्द छोड़ गई जिसके जख्मों को भरने में कई साल लग जाएंगे। तस्वीरें नेपाल के नुआकोट की हैं। पूरे इलाके का मानो नक्शा ही बदल गया है। सड़क, दुकान, मकान सब बराबर हो गए हैं। जिन घरों में कभी खुशियां चहकती थी, आज उन्हीं घरों के बाहर बेबस और लाचार लोगों का दर्द नजर आ रहा है।
2: ये वो जिला है जो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ नेपाल में आई उस त्रासदी से। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मलबा हट रहा है तो त्रासदी का पैमाना दिख रहा है। इस ऊंचाई से आप वो पूरी तस्वीर देखिए। त्रिशूली नदी अपने तटों को तोड़कर दोनों तरफ ज्यादा चौड़ाई में बह रही है। वो तस्वीरें जहां पर आपको लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, वहां तक सड़क जाती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे शायद एक पगडंडी रही हो और बाकी केवल मलबा। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक बड़ी सी पार्किंग हुआ करती थी। ये बैंक, एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स और आगे आप होटल्स देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में आया करते थे। अब जो इकलौता पर्यटन यहाँ पर है वो उन लोगों का है जो आकर देखना चाहते हैं कि कैसी विनाश लीला रही होगी। जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे। जब आगे वो त्रासदी आई, तबाही आई, बाढ़ मलबे के साथ पानी आया, तो ईश्वर को इस बात का शुक्र तो अदा किया कि अपनी जान बची, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को तिनका तिनका होते भी देखा।
1: स्थानीय लोगों ने ऐसा मंजर देखा जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएंगे।
3: मैंने देखा कि वहाँ से वो पुल से बाढ़ आ गया। तो मैं पहले तो मेरे मम्मी पापा थे दुकान पे ना, तो मैं गई अपनी मम्मी पापा को देखने के लिए कि वो अभी तक वहीं पे या नहीं। अब स्कूटी को छोड़ दो क्योंकि हमारा अभी यंग है तो हम कमा लेंगे, पर अपने मम्मी पापा को तो बचाना पड़ेगा ना। तो हम चले गए वहाँ पे, तो देखा मम्मी पापा दुकान बंद करके चले गए, भाग गए। तो मैं भी भाग गई उधर से। अगर मैं इधर से आई होगी तो मुझे भी लेके जाएगा था पार्टनर, पर वे उधर चले गए।
2: ऊंचा दिख रहा था, ऐसे कैसा आता वो दिख रहा था?
3: नहीं, ऐसे जैसे जो होते ना, जो इसने क्या आते ना, ऐसे ऐसे करके। अच्छा। थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर करके हाई हाई हाई करके।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो ऐसा चल के आ गया ना, तो कुछ सोचने समझने के टाइम भी नहीं हुआ उस टाइम कि क्या करना चाहिए। देख, क्योंकि कोई रो रहा है उस टाइम देख के, कोई क्या कर रहा है ना, तो ऐसे लगा कि
2: सबसे जरूरी था भागना तेज,
3: वही अपना जान बचाओ सबका। तो कितने लोग रो रहे थे और कितने लोग को तो हमने देखा कि उसको बाढ़ ने भगा के लेके गए। एक को तो हमने
2: देखा सामने।
3: हाँ, नहीं ऐसे करके वो जैसे हम यहाँ पे थे तो उसको हमने हाथ पकड़ के ऊपर
2: आपने बचा लिया। हाँ,
1: ऋषिका बताती है जिस मोहल्ले में वो खेलती थी आज वो मोहल्ला पूरी तरह से बदल चुका है। अब दूर खड़े होकर वो अपने घर को देख रही है। खुशी इस बात की है कि परिवार के लोग बच गए। उम्र भले ही कच्ची हो, लेकिन इस छोटी उम्र में तबाही ऐसा तजुर्बा दे गई कि जिंदगी को लेकर सोच ही बदल दी।
4: जो हल्का इधर हुआ है, जो ग्रीन कलर का हल्का दिखाई दे रहा है।
2: अच्छा, जो पूरी तरीके से नीचे है, सिर्फ एक मंजिल दिख रहा है जिसका ऊपर।
4: जी जी, जो दस्ता है ना ऊपर का, उस और साइड में है ना, वही मेरा घर है।
2: कितनी देर पहले मम्मी पापा निकल पाए थे?
4: मम्मी पापा बोल रहे थे लोग, अगर हम लोग ऐसे मुड़ के पीछे देखते लोग तो शायद पता नहीं क्या होता।
2: मतलब मुड़ के पीछे देखने का भी टाइम नहीं था। ये सब घर यहाँ पे, तो दोस्त वोस्त रहते होंगे तुम्हारे सब?
4: जी, मेरा फ्रेंड का भी घर जो है ना, जो मंदिर की तरह दिखाई दे रहा है, वही मेरे फ्रेंड का ही घर है। और वहाँ पे कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पे एक सिस्टर आंटी का की थी, उनका होटल था, बहुत अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था। बहुत अच्छा भी था, वो भी कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पे ब्लू कलर का जो है घर देख सकते हैं।
2: किसी का काम बचा ना घर बचा,
4: ना किसी का काम बचा ना घर बचा, कुछ भी नहीं बचा। बस आदमी बच गए वही हम लोग के लिए बहुत काफी है। हम लोग मैं खुशी हूँ कि मेरे पेरेंट्स बच गए हैं, बस वही काफी है। पैसा तो धन बाद में भी हो सकता है ना, पहले आदमी बच गए वही काफी है।
1: रसिका की किस्मत अच्छी थी कि परिवार वाले बच गए, लेकिन यहाँ ऐसे भी कई परिवार हैं जो अपने ही मोहल्ले में अपनों की ही तलाश कर रहे हैं।
5: मेरी दीदी मिसिंग है और भांजी भी, तीन भांजी एक हाँ। दीदी और एक नतनी मिसिंग है।
2: कहाँ रह रहे थे
5: वो लोग? रसुआ और नुआकोट के बॉर्डर पर रहते थे।
2: अच्छा।
5: क्या कहता हूँ मैं,
2: रसुआ नुआकोट के बॉर्डर पे। तो आप हर उस जगह आके ढूंढ रहे हैं कि
5: हर जगह जाने के वहाँ कोई साधन ही नहीं है और वहाँ तक मिसिंग ही है और जा नहीं पा रहे हैं।
2: फोटो एक बार दिखा दीजिए कैमरे पे।
5: ये भांजी हुई, ये भांजी की लड़की हुई।
2: कितने साल की है
5: ये बच्ची? 2 साल की है।
2: 2 साल की
5: जी। ये दीदी हुई, ये भांजी है, ये भी भांजी है।
2: तो ये मिल नहीं पा रहे हैं?
5: नहीं मिल पा रहे हैं।
2: आप हर जगह जाके बस
5: ढूंढ रहे हैं।
1: रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक बुरी खबर पूरे परिवार को तोड़कर रख देती है।
2: ये रसुआ की तरफ जाने वाली सड़क है, जैसे जैसे जो राहत कर्मी है वो थोड़ी सी सफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं, किसी न किसी को कोई न कोई बुरी खबर मिलती है।
1: इस इलाके में कई होटल भी थे जिसमें टूरिस्ट रुके हुए थे, जिनकी जान बचाने की अपनी कहानी है।
6: उस टाइम खाना खाने टाइम हुआ था, ऑर्डर था गेस्ट का, 15-20-25 जना गेस्ट का ऑर्डर था। उस टाइम में सब खबर आ गया, भागो भागो बोल गए, सब खाना खा के यही ये रहता हो गया।
2: आंखों के सामने आपने आते हुए देखा?
6: हाँ।
2: कैसा डरावना था?
6: बहुत एकदम डरावना था।
2: नुकसान कितना हो गया आपको?
6: नुकसान था उधर 15 रूम था गेस्ट रूम होटल का, अटैच बाथरूम रूम, एसी रूम, हॉल था, डाइनिंग किचन। नुकसान तो कितना आप सरकार ने उसको
2: जान किसी की नहीं गई,
6: किसी की सरकार ने
2: जान किसी की नहीं गई,
6: नहीं गई जान किसी की नहीं गई। 4-5 मिनट के अंदर में भागने सफल हो गया। मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल था उसमें, मोटरसाइकिल लेने के भी मौका न मिला और शॉटर लगाने की भी मौका नहीं मिला।
2: यही रास्ता था,
6: ये रास्ता से काम करने वाला स्टाफ 5 जना थे, 5 आदमी थे और मेरा बेटा उधर काम करता थे, वो भी ये रास्ते से ऊपर भागने सफल हो गया।
1: यहाँ रहने वाले अमरीश बताते हैं कि इलाके का मानो भूगोल ही बदल गया है।
2: यहीं पर रहते हैं आप?
7: जी यहीं पर रहते हैं।
2: यहाँ क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं 26 अगस्त के बाद से?
7: बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब यहाँ पे जो है सड़क का हाइट बढ़ गया है, खोला इधर थोड़ा सा उधर से इधर साइड में आ गया है पहले से।
2: मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि ये बैंक और ये जो
7: डेवलपमेंट विकास बैंक
2: है, ये सब नीचे है और सड़क ऊपर है, ऐसा था या नहीं
7: लग रहा है? नहीं, पहले नहीं था लेकिन अभी लग रहा है, थोड़ा सा नीचे तो था लेकिन कम था।
2: अच्छा, तो अब और नदी इसी तरीके से?
7: नदी तो बहुत परिवर्तन हुआ है पहले।
2: क्या परिवर्तन हुआ है?
7: इसका चौड़ाई बढ़ गया है पहले से।
2: हाँ।
7: ये पूरा खेत था इसके पछाड़ी, पूरे खेत में
2: ये खेत था
7: इसके पछाड़ी।
2: अच्छा।
7: इस साइड में पूरे घर था, यहाँ पे हर आदमी अपना बिजनेस व्यवसाय करता था लोग। यहाँ तक रोड था पहले,
2: यहाँ तक रोड था। अच्छा, इसीलिए ये हम रोड का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला वो चीजें आप देख रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर खड़ा होना भी थोड़ी देर के लिए संभव हो पा रहा है।
7: यहाँ बाउंड्री था, यहाँ तक रोड था पहले।
1: इंसान तो इंसान, जानवर भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं।
8: ऊपर छत में है,
2: छत में फंसा हुआ है कुत्ता मुर्गा सा।
8: ये 40-50 है,
2: 40-50 ऊपर फंसा हुआ है,
8: दो आया और उधर है।
2: अच्छा, तो अभी उस सबको निकाल रहे हैं। ये कुत्ता भी ऊपर से है?
8: ऊपर से निकाला अभी,
2: दो
8: था, एक किधर गया मालूम नहीं। ये
2: एकदम ऊपर बेचारे को खाना भी नहीं मिला होगा?
8: खाना नहीं मिला।
2: यही जो छत पे ऊपर एकदम फंस गए थे उन सबको अभी निकाला जा रहा है। ये आपका था? आपका क्या नाम है इसका?
8: स्वीटी।
2: स्वीटी नाम है। स्वीटी आ गई तुम वापस?
9: उसका कान नहीं सुन पाए,
8: खराब हुआ।
1: सबका अपना दर्द है, किसी को अपनों की तलाश है तो कोई फिर से जिंदगी शुरू करने की खुद को हिम्मत दे रहा है। श्वेता सिंह, नुआकोट, नेपाल, आज तक।
0: नेपाल में हुई तबाही से कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। जहां एक घर मकान थे वहां सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है। कुछ गांव तो कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ अब कागजों पर बचे हैं, नामो निशान जिनका मिट गया है।
10: नेपाल की जल त्रासदी किस तीव्रता की थी इसका अनुमान जब तक लगाया जा रहा होता है तब तक उससे भी विनाशकारी तस्वीरें आ जाती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि कितना विनाश हुआ है, किस स्तर का हुआ है, उसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह, आशुतोष मिश्रा, पंकज दास इस समय नेपाल में मौजूद हैं। संवाददाता आशुतोष मिश्रा जब नुआकोटी के ढुंगे बाजार पहुंचे तो वहां के हालात देखकर हैरान रह गए कि तबाही इस स्तर की भी हो सकती है।
11: इसके आगे जाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, ये लोगों के घर थे, मकान थे, सब कुछ कैसे पूरी तरह बर्बाद हो गया है। एक ऐसी आपदा और मानो जैसे कयामत बरसी हुई शहर पर, सब कुछ तबाह कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5 मंजिल, नीचे की जो 2 मंजिल है वो पूरी तरह मलबे में जा चुकी है और यहीं से ऊंचाई से सोचिए पूरा मलबा आया हुआ होगा। लोग जो घर में होंगे, अगर उन्होंने भागने की भी कोशिश की होगी, वो कैसे भागे होंगे? ऊपरी मंजिल के लोग नीचे कैसे आए होंगे? और क्या इस मलबे में अभी, क्योंकि यहां से लगभग 30 से ज्यादा लोगों को यहां से बरामद किए गए थे शव, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया था, यहां से एयरलिफ्ट किया गया था, लेकिन न जाने कितने लोग, क्योंकि 10,000 की आबादी वाला शहर, न जाने कितने लोग इस शहर के मलबे में अभी भी होंगे।
10: नुआकोट का प्रमुख बाजार था, लेकिन अब इन तस्वीरों को देखिए, बाजार का कहीं नामो निशान नहीं है। ढुंगे के इस बाजार में कई होटल रेस्टोरेंट थे जो अब मलबे में सिमट चुके हैं। सामने एक पेट्रोल पंप भी था लेकिन अब कुछ दिखाई नहीं देता।
11: ढुंगे बाजार के जिन इलाकों में अब मैं आया हूँ, थोड़े थोड़े करके दिखाई दे रहे हैं। ये जो इमारत है दरअसल निर्माणाधीन थी। अब सोचिए कि कोई अपना आशियाना बना रहा था, परिवार के लिए घर बना रहा था, उसके पहले ही वो घर तबाह हो गया। लोग कहाँ गए कोई नहीं जानता। यहाँ पर कई मंजिला थे, इसमें कुछ कमर्शियल होटल चलते थे। मैं कोशिश करता हूँ क्या इस इलाके तक जाया जा सकता है, लेकिन नहीं जाया जा सकते। देखिए, जूते डालते ही ना जूते यहाँ पर धंस रहे हैं, और इसी के साथ साथ ये जो मलबा है ये थोड़ा ज्यादा रिस्की है, ये लूज मलबा है। हाँ, ये देखिए पूरा दलदल है, इसके ऊपर जाया नहीं जा सकता। दिखने में लग रहा होगा कि मिट्टी का जमावड़ा है, लेकिन जैसे जैसे पानी नमी इसमें जा रही है ये और पूरा दलदल बनता जा रहा है। आप सोचिए कि अगर इन जगहों से किसी को जाना भी हो, संभावना भी हो, अब आप समझिए कि जहां पर रेस्क्यू बचाव कार्य चल रहे हैं वहां इस दलदल से लोगों को निकालना कितना मुश्किल होगा, खासकर अगर कोई इमारतों से SOS कॉल भी देता। और इसीलिए हेलीकॉप्टर के जरिए वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, वहां से विंचिंग की जाती है, उन्हें नीचे से जो है लिफ्ट कर लिया जाता है। एयरलिफ्ट एकमात्र ऑप्शन बचा है, क्योंकि इस दलदल में आप चॉपर जो है लैंड नहीं कर सकते। इन इलाकों में देखिए, यहाँ से निकलना जो है ना ये पूरा कीचड़ है, तो बहुत, अब आप समझिए कि राहत बचाव कार्य यहाँ पर कितना मुश्किल हो रहा होगा।
10: नुआकोटी के ढूंगे बाजार में अब कोई नहीं बचा है। यहाँ का बाजार, यहाँ का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सब खंडहर बन चुके हैं। एक ऐसा खंडहर जो मलबे से भरा हुआ है।
11: तो ढूंगे बाजार की सीमा यहाँ से मेरे लिए खत्म हो रही है, क्योंकि बाजार तो आगे तक है, लेकिन इसके आगे मलबे ने रास्ता रोक रखा है और वो इतना खतरनाक है कि जोखिम भरा है। लेकिन यहाँ आकर के त्रासदी की जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ वो बता रही हैं कि आखिर यहाँ जो लोग होंगे वो कितने डरे होंगे, कितने सहमे होंगे। समय था ही नहीं भागने के लिए, और जब तक वो भाग के ऊपर पहुंचते तब तक न जाने कितनी इसकी चपेट में आ गए थे। कहीं पेट्रोल पंप दब चुका है, कहीं कई मंजिला जो इमारत है वो खंडहर बन चुकी है। न जाने कितने लोग थे जो भाग पाए होंगे, न जाने कितने लोग थे जो मलबे में दफन होंगे। कई सारे लोग, निर्दोष लोग, जिन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला होगा। नेपाल की इस तबाही ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है।
10: नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर आसमान पर बनराते रहते हैं ये देखने के लिए कि कहीं कोई फंसा तो नहीं। त्रिशूली नदी ढुंगे बाजार के बिल्कुल बगल से बहती है। यहीं पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी था। 26 अगस्त की आपदा में वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गया।
11: ये वो त्रिशूली के पास का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, दरअसल पाइपलाइन आपको दिखाई दे रही है, ये भी मलबे में पूरी तरह बह गया। क्योंकि आगे जो त्रिशूली की धारा आप देख रहे हैं ये इतनी खतरनाक थी कि इसके साथ ये देखो पानी का स्तर जो है ये इतना ऊपर गया 20 से 25 फीट, और उसके बाद इसने पूरे हाइड्रो प्रोजेक्ट को अपने साथ बहा ले गए। दरअसल पुल की कनेक्टिविटी इस इमारत के साथ लगती थी, लेकिन ये सब कुछ बह गया। और अब बड़ा खतरा इस बात का है कि जिस तरह से चीन ने चेतावनी दी है उस चेतावनी के बाद दरअसल इसी त्रिशूली में, नारायणी में, भटकोशी में जिनका स्तर बढ़ा था वो पानी फिर बढ़ सकता है। और ऐसे में हालांकि इन इलाके की तबाही अब इतनी हो चुकी है कि और नुकसान क्या ही होगा, लोग बचे नहीं है, जो बचे हैं वो पहाड़ी इलाकों पर चले गए हैं, बाकी की चेतावनी जारी की गई है। लेकिन ये तस्वीरें देख करके आपको अंदाजा लग सकता है कि जो नदी आज इतने नीचे से बह रही है, जिसका बहाव लगभग इतना ही है, वो भी तब जब बरसात हो रही है, वो जब जमीन से 60 से 70 फीट की ऊंचाई पर ले गई होगी तो अपने साथ कितनी तीव्रता और ताकत लेकर के आई कि उन्हें इन बड़ी बड़ी इमारतों को, पुलों को, हाइड्रो प्रोजेक्ट को सब कुछ नष्ट कर दिया।
10: ढूंगे बाजार से नेपाली सेना ने कई लोगों के शव बरामद किए हैं। जो लोग किसी तरह से यहाँ से बच निकले थे अब वो अपने घरों को देखने के लिए लौटे हैं। लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि नेपाली पुलिस लोगों को आगे जाने से रोक रही है।
11: आपका घर कहाँ पर है?
12: नीला है ना?
11: अच्छा, ऊपर की तरफ।
12: थैंक यू वाला।
11: आप अच्छा, आप थे उस समय घर पे जब ये सब हो रहा था?
12: पूरा डूब जाए।
11: आप थे यहाँ पे जब देखा था आपने सब कुछ?
12: हाँ देखा था। ऐसे से आया कि ऐसा उफर के, ऐसा मार के, सब मार के चल गया। उसके लिए हम बाद में इधर भी आ सकता है समझ गया। उसके बाद हम ऊपर गए।
11: ढूंगे बाजार जैसे ही खत्म होता है उसके आगे त्रिशूली बाजार शुरू होता है। और अब ये जो पुलिस वाले हैं वो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि लोग आगे ना जाएं। अभी देखिए महिलाएं बच्चे हैं जिनका अपना जरूरत का सामान है, ये लोग। आप कहाँ जा रही हैं? आपका घर है आगे? आप आगे जा रहे हैं? देखिए कई सारे लोग हैं जो अपने घरों की ओर या उन इलाकों की ओर जाना चाहते हैं देखने, लेकिन ये कितना जोखिम भरा है। देखिए देख रहे हैं पूरा रास्ता जो है कीचड़ में दबा हुआ है। इसके आगे जाने की पुलिस भी अनुमति नहीं दे रही, इसलिए जो स्थानीय प्रहरी हैं वो भी पहुंचे हैं। लोग अब आए हैं देखने के लिए कि वो इन इलाकों में आगे ना जाएं।
10: आशुतोष मिश्रा, नुआकोटी, नेपाल, आज तक।
0: आपदा नेपाल में आई लेकिन उसके पीड़ित दुनिया के कई देशों के लोग हुए हैं। ये त्रासदी कई परिवारों को कभी ना भरने वाला जख्म दे गए हैं। सैकड़ों भारतीय भी नेपाल में लापता हैं। आपदा की तस्वीरें देखकर परिजन सहमे हुए हैं। अनहोनी की आशंकाएं हैं लेकिन मन में उम्मीद भी है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए।

0: दिल में डर और किसी अनहोनी की आशंका के बीच आंखों में आंसू लिए ये लोग अपनों की तलाश में लगे हैं। इसी उम्मीद के साथ इधर उधर भटक रहे हैं कि किसी तरह अपनों का पता लग सके, उनके सलामत होने की खबर मिले। किसी के हाथों में तस्वीर है, कोई मोबाइल पर तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछताछ कर रहा है, कोई अस्पताल में लगी तस्वीरों के बीच अपनों को तलाश रहा है। नेपाल में आई सैलाबी त्रासदी ने कई परिवारों को दर्द में डुबो दिया है। रेस्क्यू सेंटर से लेकर अस्पताल तक लोग भटक रहे हैं, अपनों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब कोई खबर नहीं मिल रही, कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो आंखें भर आ रही हैं।
1: 8 बजे बात हुई थी उससे, और उसके बाद कुछ भी पता नहीं, किसी से हम लोग को कहीं किसी से कोई
0: किसी का बेटा लापता, किसी का पति, किसी की बहन, तो किसी का भाई, दिल में आस लेकर उनकी तलाश जारी है।
2: भाई के पता नहीं है, किधर है मालूम नहीं है, हम बहुत दुखी है।
0: नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद से लापता अपने बेटे की तलाश के लिए ये माँ दर दर के चक्कर काट रही है। पहले कई गांव में बच्चों को ढूंढा, फिर रेस्क्यू सेंटर गई, अस्पताल पहुंची, लेकिन बेटे की कोई खबर नहीं लगी।
3: कॉल किया, कॉल नहीं लगा, इधर गांव में भी ढूंढ रहे नहीं मिला, अभी हम लोग भी हॉस्पिटल इधर ढूंढ रहे नहीं मिला।
0: लापता लोगों के परिवार वाले बेहद परेशान हैं। हर दिन बीतने के साथ कई आशंकाएं दिल को भारी कर रही हैं। स्थिति ऐसी है कि मांग हो रही है कि सरकार सुविधा दे, तो खुद रेस्क्यू में शामिल होने के लिए तैयार हैं।
4: अगर कोई सुविधा मिले तो मैं खुद जाना चाहती हूँ, सुविधा मिले तो
5: ढूंढने के लिए।
0: नेपाल की त्रासदी में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिससे अपनों को खोने वालों के मन में खौफ बढ़ता जा रहा है। अस्पताल के बाहर बरामद शवों की तस्वीर लगाई गई है, लोग दिल पर पत्थर रखकर इन तस्वीरों को देख रहे हैं।
6: ये काठमांडू का वो जगह है जहां से बाहर से डेड बॉडी लाके रखी गई है। आप ये पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि उन डेड बॉडी की यहाँ तस्वीर रखी गई है, ताकि इनके जो अपने लोग हैं, इनके रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पे आके इनकी पहचान कर सकें और यहाँ से डेड बॉडी ले जा सकें। इन तस्वीरों को देखकर आप देख सकते हैं कितनी भयावह तस्वीरें हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, विक्षिप्त कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये लोग जब इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो उनके आँखों में आंसू आ जा रहे हैं।
0: आपदा में कई लोग घायल हुए हैं, कई को गंभीर चोटें भी आई हैं, कई घायलों का इलाज काठमांडू के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। नेपाल की कुदरत की तबाही ने कई परिवारों को जीवन भर का जख्म दिया है, कई लोग अब भी लापता हैं, परिवार वाले उनकी तलाश में भटक रहे हैं। नेपाल से श्वेता सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा और पंकज दास आज तक।
7: अब बात करते हैं राहुल गांधी के दलित कार्ड की, जहां उन्होंने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस को घेरा है, और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने हल्द्वानी में हुए शुद्धिकरण को भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान से जोड़ा और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
8: भले ही हल्द्वानी में खड़गे के दौरे के बाद हुए शुद्धिकरण की ये तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हो, लेकिन आज जब राहुल गांधी ने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा तो कांग्रेस अध्यक्ष के अपमान का मुद्दा भी उठाया।
9: कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी है, मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट है, वो रामलीला ग्राउंड में हल्द्वानी में जाते हैं भाषण देने और वहां पर शुद्धिकरण होता है। और उनकी पार्टी का उदाहरण बिहार के चीफ मिनिस्टर मांझी जी, वो मंदिर में जाते हैं और वहां शुद्धिकरण होता है। ये करता कौन है? ये बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं, सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग ये करते हैं और ये क्राइम है। राजस्थान के मंदिर जाते हैं,
8: राहुल गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण की याद दिलाई। एनडीए के नेता जीतन राम मांझी के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण का भी जिक्र किया और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग।
9: शुद्धिकरण होता है, जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में उन पर एफआईआर लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, आरएसएस के लोगों ने शुद्धिकरण किया है। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर एससी एससी एक्ट में एफआईआर दर्ज किया।
8: जवाब में एनडीए के नेता कांग्रेस राज की याद दिला रहे हैं, दलितों के विकास के लिए कांग्रेस ने क्या किया वो बता रहे हैं।
10: खड़गे जी नामांकन केंद्र के कमरे के बाहर रहेंगे, वी नारायण स्वामी पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री ये इस प्रकार से चप्पल उठाएंगे तो कांग्रेस पार्टी कैसा मानसिकता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और हरियाणा में हरियाणा की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा, उनका क्या मान सम्मान हो रहा है हम सब जानते हैं, बैनर पोस्टर से उनको गायब कर दिया गया है। तो ये कांग्रेस पार्टी का असल चाल चेहरा चरित्र है। ये दलित समाज दलित सम्मान की बात आपको सिर्फ राजनीति के लिए याद आती है?
11: जो लोग आज इस बात की चिंता कर रहे हैं, देश ने आजादी के बाद लंबे समय तक मौका तो उन्हीं को ही दिया था ना, आज किस मुंह से वो कह रहे हैं कि आज भी समाज में भेदभाव मिटा नहीं है। कई उदाहरण उन्होंने गिनाए, अगर ये उदाहरण आज वो गिना रहे हैं तो आप बताइए एक लंबे समय तक आजादी के बाद और लगभग 4.5-5 दशक तक तो निरंतरता में कांग्रेस की सरकारें रहीं, उसके बाद भी कांग्रेस के सहयोग की सरकारें रहीं, उसके बाद भी समाज में अगर भेदभाव अगर होता रहा तो कहीं ना कहीं नींव को मजबूत करने में सफल तो ये लोग भी नहीं रहे।
8: उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुद्धिकरण का मुद्दा राज्यसभा में गूंज चुका है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी।
12: लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए।
13: माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज।
8: उधर शुद्धिकरण के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर सियासत का आरोप लगा रही।
14: लेकिन उत्तराखंड में कोई नहीं जानता कि खड़गे जी की जाति क्या है, वो तो वहां पर जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए और वहां पर गंदगी की गई, वो एक शुद्ध स्थान था, धार्मिक स्थान था, जहां पर रामलीला का मंचन होता है, बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, ऐसे आयोजनों पर जो गंदगी हुई थी, जो धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए थे और एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाए थे, उसके विरोध में लोगों ने जो धार्मिक संगठन थे उन्होंने उस वहाँ पर शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम किया था वो कार्यक्रम था, और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है।
8: युवा महिला और हिंदुत्व के बाद अब राहुल गांधी ने इस बार दलित कार्ड खेला है, जिस पर घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो।
7: अब बात ममता बनर्जी की। कैथेड्रल रोड पर टीएमसीपी की बैठक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। दरअसल आरोप है कि हाईकोर्ट की ओर से जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया। टीएमसीपी की बैठक आयोजित की गई और कोर्ट ने सड़क के सिर्फ एक हिस्से पर ही रैली की इजाजत दी थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने दोनों ही हिस्से को घेर लिया और तय समय के बाद भी कार्यक्रम चलता ही रहा।
15: ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एफआईआर है, तो हम लोग पूरा हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसका सम्मान करते हैं, अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन जनता का अदालत को भी सम्मान तो करना चाहिए। हम लोग कोशिश किया पूरा हाईकोर्ट का ऑर्डर को मानने के लिए, लेकिन अगर कोई ज्यादा कोई चला आएगा वो तो पुलिस का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है देखने का। वो ममता बनर्जी का खिलाफ एफआईआर का कोई वो पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है।
7: खबरों का सिलसिला जारी है, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

न्यूयॉर्क के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा धर्म भले ही अलग अलग लेकिन इंसानियत एक, बोले हिंदुत्व का मतलब मुसलमानों को बाहर करना नहीं। उज़्बेकिस्तान दौरे पर ताशकंद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, भारतीय समुदाय से की मुलाकात, दो दिन के बाद विश्व के केएससीओ समिट में शामिल होंगे। खड़गे को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा हमेशा कांग्रेस ने किया दलितों का अपमान, नेता विपक्ष ने हल्द्वानी में शुद्धिकरण का उठाया था मामला। आरक्षण विवाद पर आमने सामने मोदी के दो मंत्री, रिजर्वेशन में जीतन राम मांझी के वर्गीकरण की मांग को चिराग पासवान ने किया खारिज, दोनों ने एक दूसरे का मांगा इस्तीफा।

0: अब काठमांडू के लिए भेजी राहत की चौथी खेप। नेपाल त्रासदी पर आज तक की कवरेज लगातार जारी है, जहां ग्राउंड जीरो से आज तक आपको हर हालात से रूबरू करा रहे हैं। आज तक की अलग अलग टीमें इस समय अलग अलग हिस्सों से त्रासदी के दंश को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, अपनों की तलाश में लोग भटक रहे हैं। नेपाल के नवाकोट से अब एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: तबाही अपने पीछे ऐसा दर्द छोड़ गई जिसके जख्मों को भरने में कई साल लग जाएंगे। तस्वीरें नेपाल के नुआकोट की हैं। पूरे इलाके का मानो नक्शा ही बदल गया है। सड़क, दुकान, मकान सब बराबर हो गए हैं। जिन घरों में कभी खुशियां चहकती थी, आज उन्हीं घरों के बाहर बेबस और लाचार लोगों का दर्द नजर आ रहा है।
2: ये वो जिला है जो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ नेपाल में आई उस त्रासदी से। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मलबा हट रहा है तो त्रासदी का पैमाना दिख रहा है। इस ऊंचाई से आप वो पूरी तस्वीर देखिए। त्रिशूली नदी अपने तटों को तोड़कर दोनों तरफ ज्यादा चौड़ाई में बह रही है। वो तस्वीरें जहां पर आपको लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, वहां तक सड़क जाती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे शायद एक पगडंडी रही हो और बाकी केवल मलबा। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक बड़ी सी पार्किंग हुआ करती थी। ये बैंक, एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स और आगे आप होटल्स देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में आया करते थे। अब जो इकलौता पर्यटन यहाँ पर है वो उन लोगों का है जो आकर देखना चाहते हैं कि कैसी विनाश लीला रही होगी। जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे। जब आगे वो त्रासदी आई, तबाही आई, बाढ़ मलबे के साथ पानी आया, तो ईश्वर को इस बात का शुक्र तो अदा किया कि अपनी जान बची, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को तिनका तिनका होते भी देखा।
1: स्थानीय लोगों ने ऐसा मंजर देखा जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएंगे।
3: मैंने देखा कि वहाँ से वो पुल से बाढ़ आ गया। तो मैं पहले तब मेरे मम्मी पापा थे दुकान पे ना, तो मैं गई अपनी मम्मी पापा को देखने के लिए कि वो अभी तक वहीं पे या नहीं। अब स्कूटी तो छोड़ दो क्योंकि हमारा अभी यंग है तो हम कमा लेंगे, पर अपने मम्मी पापा को तो बचाना पड़ेगा ना। तो हम चले गए वहाँ पे, तो देखा मम्मी पापा दुकान बंद करके चले गए, भाग गए। तो मैं भी भाग गई उधर से। अगर मैं इधर से आई होगी तो मुझे भी लेके जाएगा था पार्टनर, पर वे उधर चले गए।
2: ऊंचा दिख रहा था, ऐसे कैसा आता वो दिख रहा था?
3: नहीं, ऐसे जैसे जो होते ना, जो इसने क्या आते ना, ऐसे ऐसे करके। अच्छा। थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर करके हाई हाई हाई करके।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो ऐसा चल के आ गया ना, तो कुछ सोचने समझने के टाइम भी नहीं हुआ उस टाइम कि क्या करना चाहिए। देख, क्योंकि कोई रो रहा है उस टाइम देख के, कोई क्या कर रहा है ना, तो ऐसे लगा कि
2: सबसे जरूरी था भागना,
3: भागना तेज, वही अपना जान बचाओ सबका। तो कितने लोग रो रहे थे और कितने लोग को तो हमने देखा कि उसको बाढ़ ने भगा के लेके गए। एक को तो हमने
2: देखा सामने।
3: हाँ, नहीं ऐसे करके वो जैसे हम यहाँ पे थे तो उसको हमने हाथ पकड़ के ऊपर
2: आपने बचा लिया।
1: ऋषिका बताती है जिस मोहल्ले में वो खेलती थी आज वो मोहल्ला पूरी तरह से बदल चुका है। अब दूर खड़े होकर वो अपने घर को देख रही है। खुशी इस बात की है कि परिवार के लोग बच गए। उम्र भले ही कच्ची हो, लेकिन इस छोटी उम्र में तबाही ऐसा तजुर्बा दे गई कि जिंदगी को लेकर सोच ही बदल दी।
4: जो हल्का इधर हुआ है, जो ग्रीन कलर का हल्का दिखाई दे रहा है।
2: अच्छा, जो पूरी तरीके से नीचे है, सिर्फ एक मंजिल दिख रहा है जिसका ऊपर।
4: जी जी, जो दस्ता है ना ऊपर का, उस और साइड में है ना, वही मेरा घर है।
2: कितनी देर पहले मम्मी पापा निकल पाए थे?
4: मम्मी पापा बोल रहे थे अगर हम लोग ऐसे मुड़ के पीछे देखते लोग तो शायद पता नहीं क्या होता।
2: मतलब मुड़ के पीछे देखने का भी टाइम नहीं था। ये सब घर यहाँ पे, तो दोस्त वोस्त रहते होंगे तुम्हारे सब?
4: जी, मेरा फ्रेंड का भी घर जो है ना, जो मंदिर की तरह दिखाई दे रहा है, वही मेरे फ्रेंड का ही घर है। और वहाँ पे कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पे एक सिस्टर आंटी का की थी, उनका होटल था, बहुत अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था। बहुत अच्छा भी था, वो भी कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पे ब्लू कलर का जो है घर देख सकते हैं।
2: किसी का काम बचा ना घर बचा,
4: ना किसी का काम बचा ना घर बचा, कुछ भी नहीं बचा। बस आदमी बच गए वही हम लोग के लिए बहुत काफी है। हम लोग मैं खुशी हूँ कि मेरे पेरेंट्स बच गए हैं, बस वही काफी है। पैसा तो धन बाद में भी हो सकता है ना, पहले आदमी बच गए वही काफी है।
1: रसिका की किस्मत अच्छी थी कि परिवार वाले बच गए, लेकिन यहाँ ऐसे भी कई परिवार हैं जो अपने ही मोहल्ले में अपनों की ही तलाश कर रहे हैं।
5: मेरी दीदी मिसिंग है और भांजी भी, तीन भांजी एक हाँ। दीदी और एक नतनी मिसिंग है।
2: कहाँ रह रहे थे
5: वो लोग? रसुआ और नुआकोट के बॉर्डर पर रहते थे।
2: अच्छा।
5: क्या कहता हूँ मैं,
2: रसुआ नुआकोट के बॉर्डर पे, तो आप हर उस जगह आके ढूंढ रहे हैं कि
5: हर जगह जाने के वहाँ कोई साधन ही नहीं है और वहाँ तक मिसिंग ही है और जा नहीं पा रहे हैं।
2: फोटो एक बार दिखा दीजिए कैमरे पे।
5: ये भांजी हुई, ये भांजी की लड़की हुई।
2: कितने साल की है
5: ये बच्ची? दो साल की है।
2: दो साल की
5: जी। ये दीदी हुई, ये भांजी है, ये भी भांजी है।
2: तो ये मिल नहीं पा रहे हैं?
5: नहीं मिल पा रहे हैं।
2: आप हर जगह जाके बस
5: ढूंढ रहे हैं।
1: रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक बुरी खबर पूरे परिवार को तोड़कर रख देती है।
2: ये रसुआ की तरफ जाने वाली सड़क है, जैसे जैसे जो राहत कर्मी है वो थोड़ी सी सफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं, किसी न किसी को कोई न कोई बुरी खबर मिलती है।
1: इस इलाके में कई होटल भी थे जिसमें टूरिस्ट रुके हुए थे, जिनकी जान बचाने की अपनी कहानी है।
6: उस टाइम खाना खाने टाइम हुआ था, ऑर्डर था गेस्ट का, 15-20-25 जना गेस्ट का ऑर्डर था। उस टाइम में सब खबर आ गया, भागो भागो बोल के सब खाना खा के ये रास्ता हो गया।
2: आंखों के सामने आपने आते हुए देखा?
6: हाँ।
2: कैसा डरावना था?
6: बहुत एकदम डरावना था। बहुत
2: नुकसान कितना हो गया आपको?
6: नुकसान था उधर 15 रूम था गेस्ट रूम होटल का, अटैच बाथरूम रूम, एसी रूम, हॉल था, डाइनिंग किचन। नुकसान तो कितना आप सरकार ने उसको
2: जान किसी की नहीं गई,
6: किसी नहीं सरकार ने
2: जान किसी की नहीं गई।
6: नहीं गए जान किसी की नहीं गई। 4-5 मिनट के अंदर में भागने सफल हो गया। मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल था उसमें, मोटरसाइकिल लेने के भी मौका न मिला और शटर लगाने की भी मौका नहीं मिला।
2: यही रास्ता था?
6: ये रास्ता से काम करने वाला स्टाफ 5 जना थे, 5 आदमी थे, और मेरा बेटा उधर काम करता थे, वो भी ये रास्ते से ऊपर भागने सफल हो गया।
1: यहाँ रहने वाले अमरीश बताते हैं कि इलाके का मानो भूगोल ही बदल गया है।
2: यहीं पर रहते हैं आप?
7: जी यहीं पर रहते हैं।
2: यहाँ क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं 26 अगस्त के बाद से?
7: बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब यहाँ पे जो है सड़क का हाइट बढ़ गया है, खोला इधर थोड़ा सा उधर से इधर साइड में आ गया है पहले से।
2: मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि ये बैंक और ये जो
7: डेवलपमेंट विकास बैंक
2: है, ये सब नीचे है और सड़क ऊपर है, ऐसा था या नहीं
7: लग रहा है? नहीं, पहले नहीं था लेकिन अभी लग रहा है। थोड़ा सा नीचे तो था लेकिन कम था।
2: अच्छा, तो अब और नदी इसी तरीके से?
7: नदी तो बहुत परिवर्तन हुआ है पहले।
2: क्या परिवर्तन हुआ है?
7: इसका चौड़ाई बढ़ गया है पहले से।
2: हाँ।
7: ये पूरा खेत था इसके पछाड़ी, पूरे खेत में
2: ये खेत था
7: इसके पछाड़ी।
2: अच्छा।
7: इस साइड में पूरे घर था, यहाँ पे हर आदमी अपना बिजनेस व्यवसाय करता था लोग। यहाँ तक रोड था पहले,
2: यहाँ तक रोड था। अच्छा, इसीलिए ये हम रोड का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला वो चीजें आप देख रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर खड़ा होना भी थोड़ी देर के लिए संभव हो पा रहा है।
7: यहाँ बाउंड्री था, यहाँ तक रोड था पहले।
1: इंसान तो इंसान, जानवर भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं।
8: ऊपर
2: छत में फंसा हुआ है कुत्ता, मुर्गा।
8: ये 40-50 है,
2: 40-50 ऊपर फंसा हुआ है,
8: दो आया और उधर है।
2: अच्छा, तो अभी उस सबको निकाल रहे हैं। ये कुत्ता भी ऊपर से है?
8: ऊपर से निकाला अभी,
2: बेचारे
8: दो था, एक किधर गया मालूम नहीं। एक
2: एकदम ऊपर बेचारे को खाना भी नहीं मिला होगा?
8: खाना नहीं मिला।
2: यही जो छत पे ऊपर एकदम फंस गए थे उन सबको अभी निकाला जा रहा है। ये आपका था? आपका क्या नाम है इसका?
8: स्वीटी।
2: स्वीटी नाम है? स्वीटी आ गई तुम वापस?
9: उसका काम नहीं सुन पाए,
8: खराब हुआ।
1: सबका अपना दर्द है, किसी को अपनों की तलाश है, तो कोई फिर से जिंदगी शुरू करने की खुद को हिम्मत दे रहा है। श्वेता सिंह, नुआकोट, नेपाल, आज तक।
0: नेपाल में हुई तबाही से कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। जहां एक घर मकान थे वहां सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है। कुछ गांव तो कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ अब कागजों पर बचे हैं, नामो निशान जिनका मिट गया है।
10: नेपाल की जल त्रासदी किस तीव्रता की थी इसका अनुमान जब तक लगाया जा रहा होता है तब तक उससे भी विनाशकारी तस्वीरें आ जाती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि कितना विनाश हुआ है, किस स्तर का हुआ है, उसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह, आशुतोष मिश्रा, पंकज दास इस समय नेपाल में मौजूद हैं। संवाददाता आशुतोष मिश्रा जब नुआकोटी के ढुंगे बाजार पहुंचे तो वहां के हालात देखकर हैरान रह गए कि तबाही इस स्तर की भी हो सकती है।
11: इसके आगे जाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, ये लोगों के घर थे, मकान थे, सब कुछ कैसे पूरी तरह बर्बाद हो गया है। एक ऐसी आपदा और मानो जैसे कयामत बरसी हुई शहर पर, सब कुछ तबाह कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5 मंजिल, नीचे की जो 2 मंजिल है वो पूरी तरह मलबे में जा चुकी है और यहीं से ऊंचाई से सोचिए पूरा मलबा आया हुआ होगा। लोग जो घर में होंगे, अगर उन्होंने भागने की भी कोशिश की होगी, वो कैसे भागे होंगे? ऊपरी मंजिल के लोग नीचे कैसे आए होंगे? और क्या इस मलबे में अभी, क्योंकि यहां से लगभग 30 से ज्यादा लोगों को यहां से बरामद किए गए थे शव, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया था, यहां से एयरलिफ्ट किया गया था, लेकिन न जाने कितने लोग, क्योंकि 10,000 की आबादी वाला शहर, न जाने कितने लोग इस शहर के मलबे में अभी भी होंगे।
10: नुआकोट का प्रमुख बाजार था, लेकिन अब इन तस्वीरों को देखिए, बाजार का कहीं नामो निशान नहीं है। ढुंगे के इस बाजार में कई होटल रेस्टोरेंट थे जो अब मलबे में सिमट चुके हैं। सामने एक पेट्रोल पंप भी था, लेकिन अब कुछ दिखाई नहीं देता।
11: ढुंगे बाजार के जिन इलाकों में अब मैं आया हूँ, थोड़े थोड़े करके दिखाई दे रहे हैं। ये जो इमारत है दरअसल निर्माणाधीन थी। अब सोचिए कि कोई अपना आशियाना बना रहा था परिवार के लिए, घर बना रहा था, उसके

0: जा सकते हैं। देखिए जूते डालते ही ना जूते यहाँ पर धंस रहे हैं, और इसी के साथ साथ ये जो मलबा है ये थोड़ा ज्यादा रिस्की है, ये लूज मलबा है। हाँ ये देखिए पूरा दलदल है, इसके ऊपर जाया नहीं जा सकता। दिखने में लग रहा होगा कि मिट्टी का जमावड़ा है, लेकिन जैसे जैसे पानी नमी इसमें जा रही है ये और पूरा दलदल बनता जा रहा है। आप सोचिए कि अगर इन जगहों से किसी को जाना भी हो, संभावना भी हो, अब आप समझिए कि जहां पर रेस्क्यू बचाव कार्य चल रहे हैं वहां इस दलदल से लोगों को निकालना कितना मुश्किल होगा, खासकर अगर कोई इमारतों से SOS कॉल भी देता। और इसीलिए हेलीकॉप्टर के जरिए वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, वहां से विंचिंग किए जाते हैं, उन्हें नीचे से जो है लिफ्ट कर लिया जाता है। एयरलिफ्ट एकमात्र ऑप्शन बचा है, क्योंकि इस दलदल में आप चॉपर जो है लैंड नहीं कर सकते इन इलाकों में। देखिए यहाँ से निकलना जो है ना ये पूरा कीचड़ है, तो बहुत, अब आप समझिए कि राहत बचाव कार्य यहाँ पर कितना मुश्किल हो रहा होगा।
1: नुआकोटी के ढूंगे बाजार में अब कोई नहीं बचा है। यहाँ का बाजार, यहाँ का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सब खंडहर बन चुके हैं। एक ऐसा खंडहर जो मलबे से भरा हुआ है।
0: तो ढूंगे बाजार की सीमा यहाँ से मेरे लिए खत्म हो रही है, क्योंकि बाजार तो आगे तक है लेकिन इसके आगे मलबे ने रास्ता रोक रखा है, और वो इतना खतरनाक है कि जोखिम भरा है। लेकिन यहाँ आकर के त्रासदी की जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ वो बता रही हैं कि आखिर यहाँ जो लोग होंगे वो कितने डरे होंगे, कितने सहमे होंगे। समय था ही नहीं भागने के लिए, और जब तक वो भाग के ऊपर पहुंचते तब तक न जाने कितनी इसकी चपेट में आ गए थे। कहीं पेट्रोल पंप दब चुका है, कहीं कई मंजिला जो इमारत है वो खंडहर बन चुकी है। न जाने कितने लोग थे जो भाग पाए होंगे, न जाने कितने लोग थे जो मलबे में दफन होंगे। कई सारे लोग, निर्दोष लोग, जिन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला होगा। नेपाल की इस तबाही सब कुछ बर्बाद कर दिया है।
1: नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर आसमान पर बनराते रहते हैं ये देखने के लिए कि कहीं कोई फंसा तो नहीं। त्रिशूली नदी ढूंगे बाजार के बिल्कुल बगल से बहती है। यहीं पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी था। 26 अगस्त की आपदा में वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गया।
0: ये वो त्रिशूली के पास का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, दरअसल पाइपलाइन आपको दिखाई दे रही है। ये भी मलबे में पूरी तरह बह गया, क्योंकि आगे जो त्रिशूली की धारा आप देख रहे हैं ये इतनी खतरनाक थी कि इसके साथ ये देखो पानी का स्तर जो है ये इतना ऊपर गया 20 से 25 फीट, और उसके बाद इसने पूरे हाइड्रो प्रोजेक्ट को अपने साथ बहा ले गए। दरअसल पुल की कनेक्टिविटी इस इमारत के साथ लगती थी, लेकिन ये सब कुछ बह गया। और अब बड़ा खतरा इस बात का है कि जिस तरह से चीन ने चेतावनी दी है, उस चेतावनी के बाद दरअसल इसी त्रिशूली में, नारायणी में, भटकोशी में जिसका स्तर बढ़ा था वो पानी फिर बढ़ सकता है। और ऐसे में हालांकि इन इलाके की तबाही अब इतनी हो चुकी है कि और नुकसान क्या ही होगा। लोग बचे नहीं है, जो बचे हैं वो पहाड़ी इलाकों पर चले गए हैं, बाकी की चेतावनी जारी की गई है। लेकिन ये तस्वीरें देख करके आपको अंदाजा लग सकता है कि जो नदी आज इतने नीचे से बह रही है, जिसका बहाव लगभग इतना ही है, वो भी तब जब बरसात हो रही है, वो जब जमीन से 60 से 70 फीट की ऊंचाई पर ले गई होगी, तो अपने साथ कितनी तीव्रता और ताकत लेकर के आई कि उन्हें इन बड़ी बड़ी इमारतों को, पुलों को, हाइड्रो प्रोजेक्ट को सब कुछ नष्ट कर दिया।
1: ढूंगे बाजार से नेपाली सेना ने कई लोगों के शव बरामद किए हैं। जो लोग किसी तरह से यहाँ से बच निकले थे अब वो अपने घरों को देखने के लिए लौटे हैं। लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि नेपाली पुलिस लोगों को आगे जाने से रोक रही है।
0: आपका घर कहाँ पर है? अच्छा, ऊपर की तरफ।
2: थैंक यू।
0: आप, अच्छा आप थे उस समय घर पे जब ये सब हो रहा था?
2: पूरा डूब जाए।
0: आप थे यहाँ पे जब देखा था आपने सब कुछ?
2: हाँ देखा था। ऐसे से आया कि ऐसा उभर के, ऐसा मार के, सब मार के चल गया। उसके लिए हम बाद में इधर भी आ सकता है, समझ गया। उसके बाद हम ऊपर गए।
0: ढूंगे बाजार जैसे ही खत्म होता है उसके आगे त्रिशूली बाजार शुरू होता है, और अब ये जो पुलिस वाले हैं वो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि लोग आगे ना जाएं। अभी देखिए महिलाएं, बच्चे हैं जिनका अपना जरूरत का सामान है, ये लोग। आप कहाँ जा रही हैं? आपका घर है आगे? आप आगे जा रहे हैं? देखिए कई सारे लोग हैं जो अपने घरों की ओर या उन इलाकों की ओर जाना चाहते हैं देखने, लेकिन ये कितना जोखिम भरा है। देखिए देख रहे हैं पूरा रास्ता जो है कीचड़ में दबा हुआ है। इसके आगे जाने के पुलिस भी अनुमति नहीं दे रही, इसलिए जो स्थानीय प्रहरी हैं वो भी पहुंचे हैं। लोग अब आए हैं देखने के लिए कि वो इन इलाकों में आगे ना जाएं।
1: आशुतोष मिश्रा, नुआकोटी, नेपाल, आज तक।
3: आपदा नेपाल में आई लेकिन उसके पीड़ित दुनिया के कई देशों के लोग हुए हैं। ये त्रासदी कई परिवारों को कभी ना भरने वाला जख्म दे गए हैं। सैकड़ों भारतीय भी नेपाल में लापता हैं। आपदा की तस्वीरें देखकर परिजन सहमे हुए हैं, अनहोनी की आशंकाएं हैं, लेकिन मन में उम्मीद भी है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए।

0: दिल में डर और किसी अनहोनी की आशंका के बीच आंखों में आंसू लिए ये लोग अपनों की तलाश में लगे हैं। इसी उम्मीद के साथ इधर उधर भटक रहे हैं कि किसी तरह अपनों का पता लग सके, उनके सलामत होने की खबर मिले। किसी के हाथों में तस्वीर है, कोई मोबाइल पर तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछताछ कर रहा है, कोई अस्पताल में लगी तस्वीरों के बीच अपनों को तलाश रहा है। नेपाल में आई सैलाबी त्रासदी ने कई परिवारों को दर्द में डुबो दिया है। रेस्क्यू सेंटर से लेकर अस्पताल तक लोग भटक रहे हैं, अपनों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब कोई खबर नहीं मिल रही, कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो आंखें भर आ रही हैं।
1: 8 बजे बात हुई थी उससे, और उसके बाद कुछ भी पता नहीं, किसी से हम लोग को कहीं किसी से कोई।
0: किसी का बेटा लापता, किसी का पति, किसी की बहन, तो किसी का भाई, दिल में आस लेकर उनकी तलाश जारी है।
2: भाई के पता नहीं है, किधर है मालूम नहीं है, हम बहुत दुखी है।
0: नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद से लापता अपने बेटे की तलाश के लिए ये माँ दर दर के चक्कर काट रही है। पहले कई गांव में बच्चों को ढूंढा, फिर रेस्क्यू सेंटर गई, अस्पताल पहुंची, लेकिन बेटे की कोई खबर नहीं लगी।
3: कॉल किया, कॉल नहीं लगा, इधर गांव में भी ढूंढ रहे नहीं मिला, अभी हम लोग भी हॉस्पिटल इधर ढूंढ रहे नहीं मिला।
0: लापता लोगों के परिवार वाले बेहद परेशान हैं। हर दिन बीतने के साथ कई आशंकाएं दिल को भारी कर रही हैं। स्थिति ऐसी है कि मांग हो रही है कि सरकार सुविधा दे, तो खुद रेस्क्यू में शामिल होने के लिए तैयार हैं।
4: अगर कोई सुविधा मिले तो मैं खुद जाना चाहती हूँ, सुविधा मिले तो
5: ढूंढने के लिए।
0: नेपाल की त्रासदी में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिससे अपनों को खोने वालों के मन में खौफ बढ़ता जा रहा है। अस्पताल के बाहर बरामद शवों की तस्वीर लगाई गई है, लोग दिल पर पत्थर रखकर इन तस्वीरों को देख रहे हैं।
6: ये काठमांडू का वो जगह है जहां से बाहर से डेड बॉडी लाके रखी गई है। आप ये पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि उन डेड बॉडी की यह तस्वीर रखी गई है, ताकि इनके जो अपने लोग हैं, इनके रिश्तेदार हैं, वो यहां पे आके इनकी पहचान कर सके और यहां से डेड बॉडी ले जा सके। इन तस्वीरों को देखकर आप देख सकते हैं कितनी भयावह तस्वीरें हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, विक्षिप्त कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये लोग जब इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जा रहे हैं।
0: आपदा में कई लोग घायल हुए हैं, कई को गंभीर चोटें भी आई हैं, कई घायलों का इलाज काठमांडू के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। नेपाल की कुदरत की तबाही ने कई परिवारों को जीवन भर का जख्म दिया है। कई लोग अब भी लापता हैं, परिवार वाले उनकी तलाश में भटक रहे हैं। नेपाल से श्वेता सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा और पंकज दास आज तक।
7: अब बात करते हैं राहुल गांधी के दलित कार्ड की, जहां उन्होंने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस को घेरा है। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने हल्द्वानी में हुए शुद्धिकरण को भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान से जोड़ा और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
8: भले ही हल्द्वानी में खड़गे के दौरे के बाद हुए शुद्धिकरण की ये तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हो, लेकिन आज जब राहुल गांधी ने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा तो कांग्रेस अध्यक्ष के अपमान का मुद्दा भी उठाया।
9: कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी है, मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट है, वो रामलीला ग्राउंड में हल्द्वानी में जाते हैं भाषण देने और वहां पर शुद्धिकरण होता है। और उनकी पार्टी का उदाहरण बिहार के चीफ मिनिस्टर मांझी जी, वो मंदिर में जाते हैं और वहां शुद्धिकरण होता है। ये करता कौन है? ये बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं, सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग ये करते हैं और ये क्राइम है। राजस्थान के मंदिर जाते हैं।
8: राहुल गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण की याद दिलाई। एनडीए के नेता जीतन राम मांझी के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण का भी जिक्र किया और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
9: शुद्धिकरण होता है, जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में उन पर एफआईआर लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, आरएसएस के लोगों ने शुद्धिकरण किया है। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर एससीएससी एक्ट में एफआईआर दर्ज किया।
8: जवाब में एनडीए के नेता कांग्रेस राज की याद दिला रहे हैं। दलितों के विकास के लिए कांग्रेस ने क्या किया वो बता रहे हैं।
10: खड़गे जी नामांकन केंद्र के कमरे के बाहर रहेंगे। वी नारायण स्वामी पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री ये इस प्रकार से चप्पल उठाएंगे तो कांग्रेस पार्टी कैसा मानसिकता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और हरियाणा में हरियाणा की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा, उनका क्या मान सम्मान हो रहा है हम सब जानते हैं। बैनर पोस्टर्स उनको गायब कर दिया गया है। तो ये कांग्रेस पार्टी का असल चाल चेहरा चरित्र है। ये दलित समाज दलित सम्मान की बात आपको सिर्फ राजनीति के लिए याद आती है।
11: जो लोग आज इस बात की चिंता कर रहे हैं, देश ने आजादी के बाद लंबे समय तक मौका तो उन्हीं को ही दिया था ना। आज किस मुंह से वो कह रहे हैं कि आज भी समाज में भेदभाव मिटा नहीं है। कई उदाहरण उन्होंने गिनाए। अगर ये उदाहरण आज वो गिना रहे हैं तो आप बताइए एक लंबे समय तक आजादी के बाद और लगभग 4.5-5 दशक तक तो निरंतरता में कांग्रेस की सरकारें रही, उसके बाद भी कांग्रेस के सहयोग की सरकारें रही, उसके बाद भी समाज में अगर भेदभाव अगर होता रहा तो कहीं ना कहीं नींव को मजबूत करने में सफल तो ये लोग भी नहीं रहे।
8: उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुद्धिकरण का मुद्दा राज्यसभा में गूंज चुका है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी।
12: लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए।
13: माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज।
8: उधर शुद्धिकरण के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर सियासत का आरोप लगा रही।
14: लेकिन उत्तराखंड में कोई नहीं जानता कि खड़गे जी की जाति क्या है। वो तो वहां पर जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए और वहां पर गंदगी की गई, वो एक शुद्ध स्थान था, धार्मिक स्थान था, जहां पर रामलीला का मंचन होता है, बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं। ऐसे आयोजनों पर जो गंदगी हुई थी, जो धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए थे और एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाए थे, उसके विरोध में लोगों ने, जो धार्मिक संगठन थे, उन्होंने उस वहाँ पर शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम किया था वो कार्यक्रम था। और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है।
8: युवा, महिला और हिंदुत्व के बाद अब राहुल गांधी ने इस बार दलित कार्ड खेला है, जिस पर घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो।
7: अब आज ममता बनर्जी की कैथेड्रल रोड पर टीएमसीपी की बैठक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। दरअसल आरोप है कि हाईकोर्ट की ओर से जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया। टीएमसीपी की बैठक आयोजित की गई और कोर्ट ने सड़क के सिर्फ एक हिस्से पर ही रैली की इजाजत दी थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने दोनों ही हिस्से को घेर लिया और तय समय के बाद भी कार्यक्रम चलता ही रहा।
15: देखिए ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एफआईआर है, तो हम लोग पूरा हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसका सम्मान करते हैं, अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन जनता का अदालत को भी सम्मान तो करना चाहिए। हम लोग कोशिश किया पूरा हाईकोर्ट का ऑर्डर को मानने के लिए, लेकिन अगर कोई ज्यादा कोई चला आएगा वो तो पुलिस का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है देखने का। वो ममता बनर्जी का खिलाफ एफआईआर का कोई वो पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है।
16: ममता बनर्जी को लग रहा है कि वो अभी भी मुख्यमंत्री है, वो न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर है, उनके ऊपर कोर्ट के किसी आदेश का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ममता जी, कानून का शासन चल रहा है बंगाल में, भारत के संविधान का शासन चल रहा है बंगाल में, बंगाल में डबल इंजन की ग्रोथ का शासन चल रहा है, परफॉर्मेंस की गारंटी का शासन चल रहा है। वो आपके भतीजे को बढ़ाने वाला कट मनी रंगदारी वाला शासन खत्म हो चुका है।
7: खबरों का सिलसिला जारी है, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

बड़ा बयान कहा, धर्म भले ही अलग अलग लेकिन इंसानियत एक, बोले हिंदुत्व का मतलब मुसलमानों को बाहर करना नहीं। उज़्बेकिस्तान दौरे पर ताशकंद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, भारतीय समुदाय से की मुलाकात, दो दिन के बाद विश्व के केएससीओ समिट में शामिल होंगे। खड़गे को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा हमेशा कांग्रेस ने किया दलितों का अपमान, नेता विपक्ष ने हल्द्वानी में शुद्धिकरण का उठाया था मामला। आरक्षण विवाद पर आमने सामने मोदी के दो मंत्री, रिजर्वेशन में जीतन राम मांझी के वर्गीकरण की मांग को चिराग पासवान ने किया खारिज, दोनों ने एक दूसरे का मांगा इस्तीफा।

0: काठमांडू के लिए भेजी राहत की चौथी खेप। नेपाल त्रासदी पर आज तक की कवरेज लगातार जारी है, जहां ग्राउंड जीरो से आज तक आपको हर हालात से रूबरू करा रहे हैं। आज तक की अलग अलग टीमें इस समय अलग अलग हिस्सों से त्रासदी के दंश को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, अपनों की तलाश में लोग भटक रहे हैं। नेपाल के नवाकोट से अब एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: तबाही अपने पीछे ऐसा दर्द छोड़ गई जिसके जख्मों को भरने में कई साल लग जाएंगे। तस्वीरें नेपाल के नुआकोट की हैं। पूरे इलाके का मानो नक्शा ही बदल गया है। सड़क, दुकान, मकान सब बराबर हो गए हैं। जिन घरों में कभी खुशियां चहकती थी, आज उन्हीं घरों के बाहर बेबस और लाचार लोगों का दर्द नजर आ रहा है।
2: ये वो जिला है जो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ नेपाल में आई उस त्रासदी से। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मलबा हट रहा है तो त्रासदी का पैमाना दिख रहा है। इस ऊंचाई से आप वो पूरी तस्वीर देखिए, त्रिशूली नदी अपने तटों को तोड़कर दोनों तरफ ज्यादा चौड़ाई में बह रही है। वो तस्वीरें जहां पर आपको लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, वहां तक सड़क जाती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे शायद एक पगडंडी रही हो और बाकी केवल मलबा। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक बड़ी सी पार्किंग हुआ करती थी। ये बैंक, एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स और आगे आप होटल्स देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में आया करते थे। अब जो इकलौता पर्यटन यहाँ पर है वो उन लोगों का है जो आकर देखना चाहते हैं कि कैसी विनाश लीला रही होगी। जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे। जब आगे वो त्रासदी आई, तबाही आई, बाढ़ मलबे के साथ पानी आया, तो ईश्वर को इस बात का शुक्र तो अदा किया कि अपनी जान बची, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को तिनका तिनका होते भी देखा।
1: स्थानीय लोगों ने ऐसा मंजर देखा जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएंगे।
3: देखा कि वहाँ से वो पुल से बाढ़ आ गया। तो मैं पहले तो मेरे मम्मी पापा थे दुकान पे ना, तो मैं गई अपनी मम्मी पापा को देखने के लिए कि वो अभी तक वहीं पे या नहीं। अब स्कूटी तो छोड़ दो क्योंकि हमारा अभी यंग है तो हम कमा लेंगे, पर अपने मम्मी पापा को तो बचाना पड़ेगा ना। तो हम चले गए वहाँ पे, तो देखा मम्मी पापा दुकान बंद करके चले गए, भाग गए, तो मैं भी भाग गई उधर से। अगर मैं इधर से आई होगी तो मुझे भी लेके जाएगा था पार्टनर, पर वे उधर चले गए।
2: ऊंचा दिख रहा था, ऐसे कैसा आता वो दिख रहा था?
3: नहीं, ऐसे जैसे जो होते ना, जो इसने क्या आते ना, ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर करके हाई हाई हाई करके।
2: अच्छा अच्छा,
3: तो ऐसे चल के आ गया ना। तो कुछ सोचने समझने के टाइम भी नहीं हुआ उस टाइम कि क्या करना चाहिए, देख क्योंकि कोई रो रहा है उस टाइम देख के, कोई क्या कर रहा है ना, तो ऐसे लगा कि
2: सबसे जरूरी था भागना तेज,
3: वही अपना जान बचाओ सबका। तो कितने लोग रो रहे थे और कितने लोग को तो हमने देखा कि उसको बाढ़ ने भगा के लेके गए। एक को तो हमने
2: देखा सामने,
3: हाँ नहीं ऐसे करके वो जैसे हम यहाँ पे थे तो उसको हमने हाथ पकड़ के ऊपर
2: आपने बचा लिया। हाँ,
1: ऋषिका बताती है जिस मोहल्ले में वो खेलती थी आज वो मोहल्ला पूरी तरह से बदल चुका है। अब दूर खड़े होकर वो अपने घर को देख रही है। खुशी इस बात की है कि परिवार के लोग बच गए। उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन इस छोटी उम्र में तबाही ऐसा तजुर्बा दे गई कि जिंदगी को लेकर सोच ही बदल दी।
4: तो जंगला खुला हुआ है ना, जो हल्का इधर हुआ है, जो ग्रीन कलर का हल्का दिखाई दे रहा है।
2: अच्छा, जो पूरी तरीके से नीचे है, सिर्फ एक मंजिल दिख रहा है जिसका ऊपर।
4: जी जी, जो दस्ता है ना ऊपर का, उस और साइड में है ना, वही मेरा घर है।
2: कितनी देर पहले मम्मी पापा निकल पाए थे?
4: मम्मी पापा बोल रहे थे अगर हम लोग ऐसे मुड़ के पीछे देखते लोग तो शायद पता नहीं क्या होता।
2: मतलब मुड़ के पीछे देखने का भी टाइम नहीं था?
4: नहीं था।
2: ये सब घर यहाँ पे, तो दोस्त वोस्त रहते होंगे तुम्हारे सब?
4: हाँ जी, मेरा फ्रेंड का भी घर जो है ना, जो मंदिर की तरह दिखाई दे रहा है, वो भी मेरे फ्रेंड का ही घर है। और वहाँ पे कुछ भी नहीं रहा, यहाँ पे एक सिस्टर आंटी का की थी, उनका होटल था, बहुत अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था। हाँ। बहुत अच्छा भी था, वो भी कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पे ब्लू कलर का जो है घर देख सकते हैं,
2: किसी का काम बचा ना घर बचा,
4: ना किसी का काम बचा ना घर बचा, कुछ भी नहीं बचा। बस आदमी बच गए ना, वही हम लोग के लिए बहुत काफी है। हम लोग मैं खुशी हूँ कि मेरे पेरेंट्स बच गए, बस वही काफी है। पैसा तो धन बाद में भी हो सकता है ना, पहले आदमी बच गए वही काफी है।
1: रसिका की किस्मत अच्छी थी कि परिवार वाले बच गए, लेकिन यहाँ ऐसे भी कई परिवार हैं जो अपने ही मोहल्ले में अपनों की तलाश कर रहे हैं।
5: मेरी दीदी मिसिंग है और भांजी भी, तीन भांजी एक हाँ। दीदी और एक नतनी मिसिंग है।
2: कहाँ रह रहे थे
5: वो लोग? रसुआ और नुआकोट के बॉर्डर पे रहते थे।
2: अच्छा।
5: क्या कहता हूँ मैं,
2: रसुआ नुआकोट के बॉर्डर पे, तो आप हर उस जगह आके ढूंढ रहे हैं कि
5: हर जगह जाने के वहाँ कोई साधन ही नहीं है।
2: हाँ।
5: और वहाँ तक मिसिंग ही है और जा नहीं पा रहे हैं।
2: फोटो एक बार दिखा दीजिए कैमरे पे।
5: ये भांजी हुई, ये भांजी की लड़की हुई।
2: कितने साल की है
5: ये बच्ची? 2 साल की है।
2: 2 साल की
5: जी। ये दीदी हुई।
2: हाँ।
5: ये भांजी है, ये भी भांजी है।
2: तो ये मिल नहीं पा रहे हैं?
5: नहीं मिल पा रहे हैं।
2: आप हर जगह जाके बस
5: ढूंढ रहे हैं?
1: रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक बुरी खबर पूरे परिवार को तोड़कर रख देती है।
2: ये रसुआ की तरफ जाने वाली सड़क है, जैसे जैसे जो राहत कर्मी है वो थोड़ी सी सफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं, किसी न किसी को कोई न कोई बुरी खबर मिलती है।
1: इस इलाके में कई होटल भी थे जिसमें टूरिस्ट रुके हुए थे, जिनकी जान बचाने की अपनी कहानी है।
6: उस टाइम खाना खाने टाइम हुआ था, ऑर्डर था गेस्ट का, 15-20-25 जना गेस्ट का ऑर्डर था। उस टाइम में सब खबर आ गया, भागो भागो बोल के सब खाना खा के यही ये रास्ता हो गया।
2: आंखों के सामने आपने आते हुए देखा? कैसा डरावना था?
6: बहुत एकदम डरावना था। बहुत
2: नुकसान कितना हो गया आपको?
6: नुकसान था उधर 15 रूम था गेस्ट रूम होटल का, अटैच बाथरूम रूम, एसी रूम, हॉल था, डाइनिंग किचन। नुकसान तो कितना आप सरकार ने उसको जान किसी की नहीं गई। 4-5 मिनट के अंदर में भागने सफल हो गया। मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल था उसमें, मोटरसाइकिल लेने के भी मौका न मिला और शटर लगाने की भी मौका नहीं मिला।
2: यही रास्ता था?
6: ये रास्ता से काम करने वाला स्टाफ 5 जना थे, 5 आदमी थे, और मेरा बेटा उधर काम करता थे, वो भी ये रास्ते से ऊपर भागने सफल हो गया।
1: यहाँ रहने वाले अमरीश बताते हैं कि इलाके का मानो भूगोल ही बदल गया है।
2: यहीं पर रहते हैं आप?
7: जी यहीं पर रहते हैं।
2: यहाँ क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं 26 अगस्त के बाद से?
7: बहुत बड़ा परिवर्तन है। हाँ। अब यहाँ पे जो है इस सड़क का हाइट बढ़ गया है।
2: हाँ।
7: खोला इधर थोड़ा सा उधर से इधर साइड में आ गया है पहले से।
2: मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि ये बैंक और ये जो
7: डेवलपमेंट विकास बैंक,
2: हाँ, ये सब नीचे है और सड़क ऊपर है, ऐसा था या नहीं?
7: लग रहा है नहीं, पहले नहीं था लेकिन अभी लग रहा है। थोड़ा सा नीचे तो था लेकिन कम था।
2: अच्छा, तो अब और नदी इसी तरीके से?
7: नदी तो बहुत परिवर्तन हुआ है पहले।
2: क्या परिवर्तन हुआ है?
7: इसका चौड़ाई बढ़ गया है पहले से।
2: हाँ।
7: ये पूरा खेत था इसके पछाड़ी, पूरे खेत में
2: ये खेत था?
7: खेत था इसके पछाड़ी।
2: अच्छा।
7: इस साइड में पूरे घर था यहाँ। हाँ। पे हर आदमी अपना बिजनेस व्यवसाय करता था लोग। यहाँ तक रोड था पहले,
2: यहाँ तक रोड था। अच्छा, इसीलिए ये हम रोड का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला वो चीजें आप देख रहे हैं।
7: हाँ, इसी
2: और इसीलिए यहाँ पर खड़ा होना भी थोड़ी देर के लिए संभव हो पा रहा है।
7: यहाँ बाउंड्री था, यहाँ तक रोड था पहले।
1: इंसान तो इंसान, जानवर भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं।
8: ऊपर ऊपर
2: ऊपर
8: छत में
2: फंसा हुआ है कुत्ता मुर्गा?
8: ये 40-50 है।
2: 40-50 ऊपर फंसा हुआ है,
8: दो आया और उधर है।
2: अच्छा, तो अभी उस सबको निकाल रहे हैं। ये कुत्ता भी ऊपर से है?
8: ऊपर से निकाला अभी।
2: बिचारे
8: दो था, एक किधर गया मालूम नहीं। एक
2: एकदम ऊपर बेचारे को खाना भी नहीं मिला होगा?
8: खाना नहीं मिला।
2: यही जो छत पे ऊपर एकदम फंस गए थे उन सबको अभी निकाला जा रहा है। ये आपका था? आपका क्या नाम है इसका?
8: स्वीटी।
2: स्वीटी नाम है। स्वीटी आ गई तुम वापस?
9: उसका खाना नहीं सुनता है,
8: खराब हुआ।
1: सबका अपना दर्द है, किसी को अपनों की तलाश है तो कोई फिर से जिंदगी शुरू करने की खुद को हिम्मत दे रहा है। श्वेता सिंह, नुआकोट, नेपाल, आज तक।
0: नेपाल में हुई तबाही से कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। जहां एक घर मकान थे वहां सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है। कुछ गांव तो कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ अब कागजों पर बचे हैं, नामो निशान जिनका मिट गया है।
10: नेपाल की जल त्रासदी किस तीव्रता की थी, इसका अनुमान जब तक लगाया जा रहा होता है तब तक उससे भी विनाशकारी तस्वीरें आ जाती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि कितना विनाश हुआ है, किस स्तर का हुआ है, उसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह, आशुतोष मिश्रा, पंकज दास इस समय नेपाल में मौजूद हैं। संवाददाता आशुतोष मिश्रा जब नुआकोटी के ढुंगे बाजार पहुंचे तो वहां के हालात देखकर हैरान रह गए कि तबाही इस स्तर की भी हो सकती है।
11: इसके आगे जाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, ये लोगों के घर थे, मकान थे, सब कुछ कैसे पूरी तरह बर्बाद हो गया है। एक ऐसी आपदा और मानो जैसे कयामत बरसी हो शहर पर, सब कुछ तबाह कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5 मंजिल, नीचे की जो 2 मंजिल है वो पूरी तरह मलबे में जा चुकी है। और यहीं से ऊंचाई से सोचिए पूरा मलबा आया हुआ होगा। लोग जो घर में होंगे, अगर उन्होंने भागने की भी कोशिश की होगी, वो कैसे भागे होंगे? ऊपरी मंजिल के लोग नीचे कैसे आए होंगे? और क्या इस मलबे में अभी, क्योंकि यहां से लगभग 30 से ज्यादा लोगों को यहां से बरामद किए गए थे शव, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया था, यहां से एयरलिफ्ट किया गया था, लेकिन न जाने कितने लोग, क्योंकि 10,000 की आबादी वाला शहर, न जाने कितने लोग इस शहर के मलबे में अभी भी होंगे।
10: नुआकोट का प्रमुख बाजार था, लेकिन अब इन तस्वीरों को देखिए, बाजार का कहीं नामो निशान नहीं है। ढुंगे के इस बाजार में कई होटल रेस्टोरेंट थे जो अब मलबे में सिमट चुके हैं। सामने एक पेट्रोल पंप भी था, लेकिन अब कुछ दिखाई नहीं देता।
11: ढुंगे बाजार के जिन इलाकों में अब मैं आया हूँ, थोड़े थोड़े करके दिखाई दे रहे हैं। ये जो इमारत है दरअसल निर्माणाधीन थी। अब सोचिए, कोई अपना आशियाना बना रहा था, परिवार के लिए घर बना रहा था, उसके पहले ही वो घर तबाह हो गया। लोग कहाँ गए कोई नहीं जानता। यहाँ पर कई मंजिला थे, इसमें कुछ कमर्शियल होटल चलते थे। मैं कोशिश करता हूँ क्या इस इलाके तक जाया जा सकता है, लेकिन नहीं, नहीं जाया जा सकते। देखिए, जूते डालते ही ना जूते यहाँ पर धंस रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये जो मलबा है ये थोड़ा ज्यादा रिस्की है, ये लूज मलबा है। हाँ, ये देखिए पूरा दलदल है, इसके ऊपर जाया नहीं जा सकता। दिखने में लग रहा होगा कि मिट्टी का जमावड़ा है, लेकिन जैसे जैसे पानी नमी इसमें जा रही है, ये और पूरा दलदल बनता जा रहा है। आप सोचिए कि अगर इन जगहों से किसी को जाना भी हो, संभावना भी हो, अब आप समझिए कि जहां पर रेस्क्यू बचाव कार्य चल रहे हैं वहां इस दलदल से लोगों को निकालना कितना मुश्किल होगा, खासकर अगर कोई इमारतों से SOS कॉल भी देता। और इसीलिए हेलीकॉप्टर के जरिए वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, वहां से विंचिंग किए जाते हैं, उन्हें नीचे से जो है लिफ्ट कर लिया जाता है। एयर लिफ्ट एकमात्र ऑप्शन बचा है, क्योंकि इस दलदल में आप चॉपर जो है लैंड नहीं कर सकते। इन इलाकों में देखिए, यहाँ से निकलना जो है ना, ये पूरा कीचड़ है, तो बहुत, अब आप समझिए कि राहत बचाव कार्य यहाँ पर कितना मुश्किल हो रहा होगा।
10: नुआकोटी के ढूंगे बाजार में अब कोई नहीं बचा है। यहाँ का बाजार, यहाँ का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सब खंडहर बन चुके हैं। एक ऐसा खंडहर जो मलबे से भरा हुआ है।
11: तो ढूंगे बाजार की सीमा यहाँ से मेरे लिए खत्म हो रही है, क्योंकि बाजार तो आगे तक है, लेकिन इसके आगे मलबे ने रास्ता रोक रखा है, और वो इतना खतरनाक है कि जोखिम भरा है। लेकिन यहाँ आकर के त्रासदी की जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ, वो बता रहे हैं कि आखिर यहाँ जो लोग होंगे वो कितने डरे होंगे, कितने सहमे होंगे। समय था ही नहीं भागने के लिए, और जब तक वो भाग के ऊपर पहुंचते तब तक न जाने कितनी इसकी चपेट में आ गए थे। कहीं पेट्रोल पंप दब चुका है, कहीं कई मंजिला जो इमारत है वो खंडहर बन चुकी है। न जाने कितने लोग थे जो भाग पाए होंगे, न जाने कितने लोग थे जो मलबे में दफन होंगे। कई सारे लोग, निर्दोष लोग, जिन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला होगा। नेपाल की इस तबाही सब कुछ बर्बाद कर दिया है।
10: नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर आसमान पर बनराते रहते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कोई फंसा तो नहीं। त्रिशूली नदी ढूंगे बाजार के बिल्कुल बगल से बहती है। यहीं पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी था। 26 अगस्त की आपदा में वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गया।
11: ये वो त्रिशूली के पास का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, दरअसल पाइपलाइन आपको दिखाई दे रही है, ये भी मलबे में पूरी तरह बह गया। क्योंकि आगे जो त्रिशूली की धारा आप देख रहे हैं, ये इतनी खतरनाक थी कि इसके साथ ये पानी का स्तर जो है ये इतना ऊपर गया 20 से 25 फीट, और उसके बाद इसने पूरे हाइड्रो प्रोजेक्ट को अपने साथ बहा ले गए। दरअसल पुल की कनेक्टिविटी इस इमारत के साथ लगती थी, लेकिन ये सब कुछ बह गया। और अब बड़ा खतरा इस बात का है कि जिस तरह से चीन ने चेतावनी दी है उस चेतावनी के बाद दरअसल इसी त्रिशूली में, नारायणी में, भटकोशी में जिनका स्तर बढ़ा था वो पानी फिर बढ़ सकता है। और ऐसे में हालांकि इन इलाके की तबाही अब इतनी हो चुकी है कि और नुकसान क्या ही होगा, लोग बचे नहीं है, जो बचे हैं वो पहाड़ी इलाकों पर चले गए हैं, बाकी की चेतावनी जारी की गई है। लेकिन ये तस्वीरें देख करके आपको अंदाजा लग सकता है कि जो नदी आज इतने नीचे से बह रही है, जिसका बहाव लगभग इतना ही है, वो भी तब जब बरसात हो रही है, वो जब जमीन से 60 से 70 फीट की ऊंचाई पर ले गई होगी तो अपने साथ कितनी तीव्रता और ताकत लेकर के आई कि उन्हें इन बड़ी बड़ी इमारतों को, पुलों को, हाइड्रो प्रोजेक्ट को सब कुछ नष्ट कर दिया।
10: ढूंगे बाजार से नेपाली सेना ने कई लोगों के शव बरामद किए हैं। जो लोग किसी तरह से यहाँ से बच निकले थे अब वो अपने घरों को देखने के लिए लौटे हैं। लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि नेपाली पुलिस लोगों को आगे जाने से रोक रही है।
11: आपका घर कहाँ पर है?
12: नीला है ना?
11: अच्छा, ऊपर की तरफ।
12: थैंक यू वाला।
11: आप अच्छा, आप थे उस समय घर पे जब ये सब हो रहा था?
12: पूरा डूब जाए।
11: आप थे यहाँ पे जब देखा था आपने सब कुछ?
12: हाँ देखा था। ऐसे से आया कि ऐसा उपहार के ऐसा मार के सब मार के चल गया। उसके लिए हम बाद में इधर भी आ सकता है समझ गया। उसके बाद हम ऊपर गए।
11: ढूंगे बाजार जैसे ही खत्म होता है उसके आगे त्रिशूली बाजार शुरू होता है। और अब ये जो पुलिस वाले हैं वो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि लोग आगे ना जाएं। अभी देखिए महिलाएं बच्चे हैं जिनका अपना जरूरत का सामान है ये लोग। आप कहाँ जा रही हैं? आपका घर है आगे? आप आगे जा रहे हैं? देखिए कई सारे लोग हैं जो अपने घरों की ओर या उन इलाकों की ओर जाना चाहते हैं देखने, लेकिन ये कितना जोखिम भरा है। देखिए देख रहे हैं पूरा रास्ता जो है कीचड़ में दबा हुआ है। इसके आगे जाने की पुलिस भी अनुमति नहीं दे रही, इसलिए जो स्थानीय प्रहरी हैं वो भी पहुंचे हैं। लोग अब आए हैं देखने के लिए कि वो इन इलाकों में आगे ना जाए।
10: आशुतोष मिश्रा, नुआकोटी, नेपाल, आज तक।
0: आपदा नेपाल में आई लेकिन उसके पीड़ित दुनिया के कई देशों के लोग हुए हैं। ये त्रासदी कई परिवारों को कभी ना भरने वाला जख्म दे गए हैं। सैकड़ों भारतीय भी नेपाल में लापता हैं। आपदा की तस्वीरें देखकर परिजन सहमे हुए हैं। अनहोनी की आशंकाएं हैं लेकिन मन में उम्मीद भी है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए।

0: दिल में डर और किसी अनहोनी की आशंका के बीच आंखों में आंसू लिए ये लोग अपनों की तलाश में लगे हैं। इसी उम्मीद के साथ इधर उधर भटक रहे हैं कि किसी तरह अपनों का पता लग सके, उनके सलामत होने की खबर मिले। किसी के हाथों में तस्वीर है, कोई मोबाइल पर तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछताछ कर रहा है, कोई अस्पताल में लगी तस्वीरों के बीच अपनों को तलाश रहा है। नेपाल में आई सैलाबी त्रासदी ने कई परिवारों को दर्द में डुबो दिया है। रेस्क्यू सेंटर से लेकर अस्पताल तक लोग भटक रहे हैं, अपनों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब कोई खबर नहीं मिल रही, कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो आंखें भर आ रही हैं।
1: 8 बजे बात हुई थी उससे, और उसके बाद कुछ भी पता नहीं, किसी से हम लोग को कहीं किसी से कोई।
0: किसी का बेटा लापता, किसी का पति, किसी की बहन, तो किसी का भाई, दिल में आस लेकर उनकी तलाश जारी है।
2: भाई के पता नहीं है, किधर है मालूम नहीं है, हम बहुत दुखी है।
0: नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद से लापता अपने बेटे की तलाश के लिए ये माँ दर दर के चक्कर काट रही है। पहले कई गांव में बच्चों को ढूंढा, फिर रेस्क्यू सेंटर गई, अस्पताल पहुंची, लेकिन बेटे की कोई खबर नहीं लगी।
3: कॉल किया, कॉल नहीं लगा, इधर गांव में भी ढूंढ रहा है, नहीं मिला। अभी हम लोग भी हॉस्पिटल इधर ढूंढ रहे, नहीं मिला।
0: लापता लोगों के परिवार वाले बेहद परेशान हैं। हर दिन बीतने के साथ कई आशंकाएं दिल को भारी कर रही हैं। स्थिति ऐसी है कि मांग हो रही है कि सरकार सुविधा दे, तो खुद रेस्क्यू में शामिल होने के लिए तैयार हैं।
4: अगर कोई सुविधा मिले तो मैं खुद जाना चाहती हूँ, सुविधा मिले तो
5: ढूंढने के लिए।
0: नेपाल की त्रासदी में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिससे अपनों को खोने वालों के मन में खौफ बढ़ता जा रहा है। अस्पताल के बाहर बरामद शवों की तस्वीर लगाई गई है, लोग दिल पर पत्थर रखकर इन तस्वीरों को देख रहे हैं।
6: ये काठमांडू का वो जगह है जहां से बाहर से डेड बॉडी लाके रखी गई है। आप ये पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि उन डेड बॉडी की यह तस्वीर रखी गई है, ताकि इनके जो अपने लोग हैं, इनके रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पे आके इनकी पहचान कर सकें और यहाँ से डेड बॉडी ले जा सकें। इन तस्वीरों को देखकर आप देख सकते हैं कितनी भयावह तस्वीरें हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, विक्षिप्त कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये लोग जब इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो उनके आँखों में आंसू आ जा रहे हैं।
0: आपदा में कई लोग घायल हुए हैं, कई को गंभीर चोटें भी आई हैं, कई घायलों का इलाज काठमांडू के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। नेपाल की कुदरत की तबाही ने कई परिवारों को जीवन भर का जख्म दिया है। कई लोग अब भी लापता हैं, परिवार वाले उनकी तलाश में भटक रहे हैं। नेपाल से श्वेता सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा और पंकज दास आज तक।
7: अब बात करते हैं राहुल गांधी के दलित कार्ड की, जहां उन्होंने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस को घेरा है। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने हल्द्वानी में हुए शुद्धिकरण को भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान से जोड़ा और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
8: भले ही हल्द्वानी में खड़गे के दौरे के बाद हुए शुद्धिकरण की ये तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हो, लेकिन आज जब राहुल गांधी ने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा तो कांग्रेस अध्यक्ष के अपमान का मुद्दा भी उठाया।
9: कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी है, मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट है, वो रामलीला ग्राउंड में हल्द्वानी में जाते हैं भाषण देने और वहां पर शुद्धिकरण होता है। और उनकी पार्टी का उदाहरण बिहार के चीफ मिनिस्टर मांझी जी, वो मंदिर में जाते हैं और वहां शुद्धिकरण होता है। ये करता कौन है? ये बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं, सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग ये करते हैं और ये क्राइम है। राजस्थान के मंदिर जाते हैं।
8: राहुल गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण की याद दिलाई। एनडीए के नेता जीतन राम मांझी के मंदिर जाने के बाद हुए शुद्धिकरण का भी जिक्र किया और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
9: शुद्धिकरण होता है, जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में उन पर एफआईआर लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, आरएसएस के लोगों ने शुद्धिकरण किया है, तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर एससी एससी एक्ट में एफआईआर दर्ज किया।
8: जवाब में एनडीए के नेता कांग्रेस राज की याद दिला रहे हैं। दलितों के विकास के लिए कांग्रेस ने क्या किया वो बता रहे हैं।
10: खड़गे जी नामांकन केंद्र के कमरे के बाहर रहेंगे। वी नारायण स्वामी पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री ये इस प्रकार से चप्पल उठाएंगे तो कांग्रेस पार्टी कैसा मानसिकता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और हरियाणा में हरियाणा की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा, उनका क्या मान सम्मान हो रहा है हम सब जानते हैं। बैनर पोस्टर से उनको गायब कर दिया गया है। तो ये कांग्रेस पार्टी का असल चाल चेहरा चरित्र है। ये दलित समाज दलित सम्मान की बात आपको सिर्फ राजनीति के लिए याद आती है।
11: जो लोग आज इस बात की चिंता कर रहे हैं, देश ने आजादी के बाद लंबे समय तक मौका तो उन्हीं को ही दिया था ना, आज किस मुंह से वो कह रहे हैं कि आज भी समाज में भेदभाव मिटा नहीं है। कई उदाहरण उन्होंने गिना, अगर ये उदाहरण आज वो गिना रहे हैं तो आप बताइए एक लंबे समय तक आजादी के बाद और लगभग 4.5-5 दशक तक तो निरंतरता में कांग्रेस की सरकारें रहीं, उसके बाद भी कांग्रेस के सहयोग की सरकारें रहीं, उसके बाद भी समाज में अगर भेदभाव अगर होता रहा तो कहीं ना कहीं नींव को मजबूत करने में सफल तो ये लोग भी नहीं रहे।
8: उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुद्धिकरण का मुद्दा राज्यसभा में गूंज चुका है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी।
12: लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए।
13: माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज।
8: उधर शुद्धिकरण के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर सियासत का आरोप लगा रही।
14: लेकिन उत्तराखंड में कोई नहीं जानता कि खड़गे जी की जाति क्या है। वो तो वहां पर जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए और वहां पर गंदगी की गई, वो एक शुद्ध स्थान था, धार्मिक स्थान था, जहां पर रामलीला का मंचन होता है, बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, ऐसे आयोजनों पर जो गंदगी हुई थी, जो धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए थे और एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाए थे, उसके विरोध में लोगों ने जो धार्मिक संगठन थे उन्होंने उस वहाँ पर शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम किया था वो कार्यक्रम था। और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है।
8: युवा महिला और हिंदुत्व के बाद अब राहुल गांधी ने इस बार दलित कार्ड खेला है, जिस पर घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो।
7: अब आज ममता बनर्जी की कैथेड्रल रोड पर टीएमसीपी की बैठक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज करवाए गए हैं। दरअसल आरोप है कि हाईकोर्ट की ओर से जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया, टीएमसीपी की बैठक आयोजित की गई और कोर्ट ने सड़क के सिर्फ एक हिस्से पर ही रैली की इजाजत दी थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने दोनों ही हिस्से को घेर लिया और तय समय के बाद भी कार्यक्रम चलता ही रहा।
15: ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एफआईआर है, तो हम लोग पूरा हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसका सम्मान करते हैं, अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन जनता का अदालत को भी सम्मान तो करना चाहिए। हम लोग कोशिश किया पूरा हाईकोर्ट का ऑर्डर को मानने के लिए, लेकिन अगर कोई ज्यादा कोई चला आएगा वो तो पुलिस का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है देखने का। वो ममता बनर्जी का खिलाफ एफआईआर का कोई वो पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है।
7: खबरों का सिलसिला जारी है, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

बड़ा बयान कहा, धर्म भले ही अलग अलग लेकिन इंसानियत एक, बोले हिंदुत्व का मतलब मुसलमानों को बाहर करना नहीं। उज़्बेकिस्तान दौरे पर ताशकंद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, भारतीय समुदाय से की मुलाकात, दो दिन के बाद विश्व के केएसयू समिट में शामिल होंगे। खड़गे को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा हमेशा कांग्रेस ने किया दलितों का अपमान, नेता विपक्ष ने हल्द्वानी में शुद्धिकरण का उठाया था मामला। आरक्षण विवाद पर आमने सामने मोदी के दो मंत्री, रिजर्वेशन में जीतन राम मांझी के वर्गीकरण की मांग को चिराग पासवान ने किया खारिज, दोनों ने एक दूसरे का मांगा इस्तीफा।

0: काठमांडू के लिए भेजी राहत की चौथी खेप। नेपाल त्रासदी पर आज तक की कवरेज लगातार जारी है, जहां ग्राउंड जीरो से आज तक आपको हर हालात से रूबरू करा रहे हैं। आज तक की अलग अलग टीमें इस समय अलग अलग हिस्सों से त्रासदी के दंश को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, अपनों की तलाश में लोग भटक रहे हैं। नेपाल के नवाकोट से अब एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: तबाही अपने पीछे ऐसा दर्द छोड़ गई जिसके जख्मों को भरने में कई साल लग जाएंगे। तस्वीरें नेपाल के नुआकोट की हैं। पूरे इलाके का मानो नक्शा ही बदल गया है। सड़क, दुकान, मकान सब बराबर हो गए हैं। जिन घरों में कभी खुशियां चहकती थी, आज उन्हीं घरों के बाहर बेबस और लाचार लोगों का दर्द नजर आ रहा है।
2: ये वो जिला है जो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ नेपाल में आई उस त्रासदी से। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मलबा हट रहा है तो त्रासदी का पैमाना दिख रहा है। इस ऊंचाई से आप वो पूरी तस्वीर देखिए। त्रिशूली नदी अपने तटों को तोड़कर दोनों तरफ ज्यादा चौड़ाई में बह रही है। वो तस्वीरें जहां पर आपको लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, वहां तक सड़क जाती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे शायद एक पगडंडी रही हो और बाकी केवल मलबा। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक बड़ी सी पार्किंग हुआ करती थी। ये बैंक, एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स और आगे आप होटल्स देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में आया करते थे। अब जो इकलौता पर्यटन यहाँ पर है वो उन लोगों का है जो आकर देखना चाहते हैं कि कैसी विनाश लीला रही होगी। जैसे ही